0: खड़ा करेंगे तो चुनाव जीत जाएगा, कितने वोट से हारेंगे।
1: पीके के दावों में कितना दम है कल पता चल जाएगा, क्योंकि अब ना घोड़ा दूर है न मैदान। आज तक ब्यूरो।
2: चढ़ावा चोरी पर छिड़े नए संग्राम के शुक्रवार को संसद परिसर में अनोखी तस्वीर सामने। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर सांसद पप्पू यादव साधु के वेश में नजर आए। विरोध उन्होंने किया और इस विरोध में कुछ विपक्षी सांसद भी शामिल हुए, जिसे लेकर अब जबरदस्त बवाल है। कई शहरों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, वाराणसी में FIR हुई और BJP भी इस बहाने विपक्ष को घेर रही है।
1: संसद के मॉनसून सत्र में जिस चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में था, उसका दांव अब उल्टा पड़ता दिख रहा है। संसद परिसर में भगवा पहनकर पप्पू यादव के विरोध ने BJP को हमलावर होने का बड़ा मौका दे दिया है। BJP इसे लोगों की आस्था और सनातन के अपमान से जोड़ रही है। अब संसद से सड़क तक नई जंग छिड़ गई है, जिसे लेकर सड़कों पर उबाल है। कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। वाराणसी में FIR दर्ज कराई गई है, जिसमें पप्पू यादव के साथ साथ राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद का भी नाम है। वहीं एक दिन पहले दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंचकर BJP प्रतिनिधिमंडल ने भी केस दर्ज करने की मांग की है।
3: राहुल गांधी जी ने जो स्वांग रचा है संसद के परिसर में, वो विरोध नहीं है, वो प्रोटेस्ट नहीं है, वो सनातन संस्कृति का उपहास है, वो संत समाज का परिहास है और वो भारत की परंपराओं पर अट्टहास है।
1: उधर BJP के हमलों के बीच पप्पू यादव ने डैमेज कंट्रोल का प्रयास शुरू कर दिया है। एक दिन पहले सोशल मीडिया पर भगवान शिव की पूजा का वीडियो साझा किया था और फिर जवाब देते हुए कहा कि उनकी लड़ाई चंदा चोरों के खिलाफ है।
4: जब सनातन और मंदिर के सारे पैसे को लुटेरे को उजागर करना और उसके खिलाफ लड़ना गलत है, मंदिर की रक्षा करना गलत है, मंदिर के पैसे की रक्षा करना गलत है।
1: वहीं BJP की मोर्चाबंदी तेज है। साधु संत भी भगवा भेष में, विरोध के तरीके पर गुस्से में है। टकराव कानूनी लड़ाई तक पहुंच गया है और सियासत चरम पर। संसद का मॉनसून सत्र शुरू होते ही कांग्रेस SP की रणनीति चढ़ावा चोरी पर सरकार को घेरने की थी, लेकिन पेपर लीक पर बवाल के चलते विपक्ष ये मुद्दा आक्रामक तरीके से नहीं उठा सका और अब पप्पू यादव के विरोध प्रदर्शन को लेकर नया बवाल छिड़ गया है। आज तक ब्यूरो।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशव्यापी नशा मुक्त विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ किया है। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के तहत मेरा युवा भारत की ओर से संचालित इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करके स्वस्थ, जिम्मेदार और नशा मुक्त जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है।
5: कि आज जब देश ने
6: PM मोदी का नया अभियान नशा मुक्त हो हिंदुस्तान। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नशे के खिलाफ एक मुहिम छेड़ने की अपील की है। PM ने नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान लॉन्च किया।
7: विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा, इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है।
6: PM ने संदेश दिया कि अगर विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करना है तो युवाओं की भागीदारी अहम है और युवा ड्रग्स जैसी आदत से मुक्त रहे।
7: विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, दूर हो।
6: PM मोदी ने अपील की कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए सबको साथ आना होगा।
7: लेकिन जब सामूहिक अभियान बन जाता है, कंधे से कंधा मिलाकर करोड़ों लोग चल पड़ते हैं, तो ऐसे सभी जो व्यक्तिगत रूप से कुछ अपने आप नहीं कर पाते हैं, उनको भी एक नई ऊर्जा मिल जाती है। सामूहिकता की एक ताकत होती है और आज उस ताकत को लेकर के ये अभियान हर युवा मन को छूने वाला है।
6: PM ने बताया कि देश में नशे के कारोबार को बढ़ावा देने के पीछे इंटरनेशनल साजिश है। इस साजिश को तबाह करना हर युवा का मकसद होना चाहिए।
7: और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं। ड्रग्स सप्लाई कर करके कमाई करना और हमारे जैसे देश को तबाह करना, ये भी उनकी आतंकी साजिश का हिस्सा होता है।
6: इस कार्यक्रम का मकसद युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना और उन्हें अपने समाज में बदलाव लाने के लिए आगे बढ़ाना है। ये अभियान अगले 100 हफ्तों तक जारी रहेगा। इसके तहत हर रविवार देश भर में अलग अलग कार्यक्रम होंगे, जिनके जरिए लोगों को नशे के नुकसान के बारे में बताए जाएंगे और नशा मुक्त भारत का संदेश दिया जाएगा। आज तक ब्यूरो।
2: अब बात उत्तर प्रदेश की सियासत की करते हैं, जहां पर विधानसभा का सत्र आज से शुरू हो रहा है और इस विधानसभा के सत्र में चढ़ावा चोरी से लेकर अलग अलग मुद्दों पर बवाल होना तय है। मगर सत्र से पहले अखिलेश यादव ने सियासत में ये कहकर खलबली मचा दी कि पिछले 10 सालों में यूपी में 26,000 से ज्यादा स्कूल बंद हो गए।

0: सावन का मौसम है, लेकिन लखनऊ में बादल नहीं मुद्दे बरसेंगे। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र में शब्द बनेंगे शस्त्र, सवाल बनेंगे सियासी तूफान और हर बहस के पीछे छिपी होगी 2027 की दिसार। कल से शुरू होने वाले यूपी विधानसभा का मानसून सत्र दरअसल 2027 के रण का पहला बड़ा राजनीतिक रिहर्सल भी माना जा रहा है, क्योंकि जो सदन में मुद्दे उठेंगे वही असेंबली चुनाव में गूंजेगा।
1: पूरी कांग्रेस ने सदैव से प्रभु राम राम मंदिर को लांछित करने का ही प्रयास किया, हिंदू देवी देवताओं को बहुसंख्यकों के आस्था पर कुठाराघात करने का ही काम किया। ये वही कांग्रेस है जिसने प्रभु राम और कृष्ण को काल्पनिक बताया, राम मंदिर न बने इसके लिए वकीलों की फौज खड़ी की।
0: एक तरफ योगी सरकार जो अपने 10 साल के कामकाज को जनता के सामने सदन के जरिए रखने की तैयारी में है, यूपी सरकार के अपने
2: दिल्ली में हुए छात्र आंदोलन में जिस तरह पुलिस को निशाना बनाकर हमला किया गया उसे लेकर लगातार कई खुलासे हो रहे हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल एसटीएफ के शिकंजे में आए संदिग्ध आतंकवादियों से पूछताछ में चौंका देने वाली जानकारी सामने आई। पता चला कि छात्र आंदोलन की आड़ में बड़ी हिंसा फैलाने की प्लानिंग थी।
0: क्या दिल्ली में हुए छात्र आंदोलन में आतंकी साजिश का प्लान बनाया जा रहा था? क्या छात्रों के आंदोलन के बहाने अशांति फैलाने का खाका तैयार किया जा रहा था? क्या दिल्ली पुलिस की वर्दी की आड़ में बड़े उपद्रव की प्लानिंग थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये पूरी योजना पाकिस्तान में रची जा रही थी? दरअसल पश्चिम बंगाल के स्पेशल टास्क फोर्स ने बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश कर हमीम मंडल और एक महिला को गिरफ्तार किया, तो उनसे पूछताछ में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पता चला है कि हैंडलर ने इन संदिग्धों को दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के प्रदर्शन के दौरान गड़बड़ी फैलाने की जिम्मेदारी दी थी। हमीम मंडल को तो पुलिस की वर्दी का इंतजाम करने के निर्देश दिए गए थे ताकि वो आसानी से भीड़ में घुसकर माहौल बिगाड़ सके।
3: हम देख रहे थे कि वहां से जो हमारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट रिसेंटली हुआ है जंतर मंतर में, उसमें कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट करने के लिए ये हमीम मंडल जो है इसको बोला जा रहा था कि वो कुछ यूनिफॉर्म प्रोक्योर करे, पुलिस का यूनिफॉर्म प्रोक्योर करे। हम लोग वेरीफाई करें एग्जैक्टली वो क्या प्लान था इनका, तो उसके लिए भी इसको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा था।
0: ये बेहद सनसनीखेज खुलासा है। छात्र आंदोलन के दौरान साजिश का खुलासा बेहद चौंकाने वाला भी है। पश्चिम बंगाल एसटीएफ अब इस मॉड्यूल के और लोगों की भी गिरफ्तारी की कोशिश में लगी हुई है।
4: बहुत ही संगीन खुलासा है, इसलिए क्योंकि जो जंतर मंतर पे जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा था, उस प्रोटेस्ट को भारत में सरकार को टोपल करने के लिए, भारत में सरकार को गिराने के लिए, सरकार के खिलाफ साजिश करने का एक रूपरेखा यहाँ पे लोग बना रहे थे।
0: उधर संदिग्धों पर शिकंजे के बाद एक और चौंकाने वाला खुलासा ये भी हुआ है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इनके निशाने पर थे।
3: इमीडिएटली इस लड़के को कस्टडी में लिया 30-31 की रात को, और इसकी वेरिफिकेशन से हमें कुछ बड़े ही बहुत सीरियस मैटर्स पता चले। एक तो ये कि हमारे जो राज्य के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं वो इनकी टारगेट लिस्ट में थे।
0: बंगाल एसआईटी की छापेमारी जारी है। संदिग्धों से मिल रही जानकारी के बाद तफ्तीश तेज है और जल्द इस केस में और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। आज तक ब्यूरो।
2: उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बहुजन समाज पार्टी में बड़े पैमाने पर फेरबदल और कार्रवाई का दौर शुरू हुआ है। बीएसपी की तरफ से मुखिया मायावती ने चुनावों से पहले ऐलान कर दिया है कि पार्टी में उम्मीदवारों के नाम तय करने का पूरा अधिकार उनके तरीके से होगा और उनके पास ही रहेगा।
0: 27 के समर के लिए बीएसपी सुप्रीमो भी तैयार है। उन्होंने भी कमर कसनी शुरू कर दी है और पार्टी के भीतर के सारे कीलकांटे दुरुस्त करने की कवायद में जुट गई है। आज मायावती ने सोशल मीडिया पर बताया कि अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। बीएसपी कोऑर्डिनेटर रणधीर सिंह बेनीवाल को भी पार्टी से निकाल दिया गया है। बता दें कि अशोक सिद्धार्थ बीएसपी के नेता के साथ मायावती के समधी भी हैं। वो आकाश आनंद के ससुर हैं। इसके पहले मायावती ने अशोक सिद्धार्थ से दिल्ली, कर्नाटक, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्यों का प्रभार वापस ले लिया था। वहीं सभी जिम्मेदारियों से हटाने के बाद सोशल मीडिया पर आधिकारिक पोस्ट के जरिए दोनों नेताओं को पार्टी से निष्कासित करने का ऐलान किया गया। मायावती ने कहा कि यूपी में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी के लिए उम्मीदवारों को तय करने का अधिकार पूरी तरह से उनके पास है। उन्होंने लखनऊ पार्टी कार्यालय में खुद बैठके कर 2 दर्जन से ज्यादा उम्मीदवार फाइनल कर दिए हैं और आगे भी सभी सीटों पर टिकट वही तय करेंगी। मायावती ने साफ किया है कि पार्टी में अनुशासनहीनता करने वाले नेताओं को बख्शा नहीं जाएगा। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक।
2: दिल्ली में हुए छात्र आंदोलन में जिस तरह पुलिस को निशाना बनाकर हमला किया गया उसे लेकर लगातार कई खुलासे हो रहे हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल एसटीएफ के शिकंजे में आए संदिग्ध आतंकवादियों से पूछताछ में चौंका देने वाली जानकारी सामने आई। पता चला कि छात्र आंदोलन की आड़ में बड़ी हिंसा फैलाने की प्लानिंग थी।
0: क्या दिल्ली में हुए छात्र आंदोलन में आतंकी साजिश का प्लान बनाया जा रहा था? क्या छात्रों के आंदोलन के बहाने अशांति फैलाने का खाका तैयार किया जा रहा था? क्या दिल्ली पुलिस की वर्दी की आड़ में बड़े उपद्रव की प्लानिंग थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये पूरी योजना पाकिस्तान में रची जा रही थी? दरअसल पश्चिम बंगाल के स्पेशल टास्क फोर्स ने बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश कर हमीम मंडल और एक महिला को गिरफ्तार किया तो उनसे पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पता चला है कि हैंडलर ने इन संदिग्धों को दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के प्रदर्शन के दौरान गड़बड़ी फैलाने की जिम्मेदारी दी थी। हमीम मंडल को तो पुलिस की वर्दी का इंतजाम करने के निर्देश दिए गए थे ताकि वो आसानी से भीड़ में घुसकर माहौल बिगाड़ सके।
3: हम देख रहे थे कि वहां से जो हमारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट रिसेंटली हुआ है जंतर मंतर में, उसमें कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट करने के लिए ये हमीम मंडल जो है इसको बोला जा रहा था कि वो कुछ यूनिफॉर्म प्रोक्योर करे, पुलिस का यूनिफॉर्म प्रोक्योर करे। हम लोग वेरीफाई करें एग्जैक्टली वो क्या प्लान था इनका, तो उसके लिए भी इसको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा था।
0: ये बेहद सनसनीखेज खुलासा है। छात्र आंदोलन के दौरान साजिश का खुलासा बेहद चौंकाने वाला भी है। पश्चिम बंगाल एसटीएफ अब इस मॉड्यूल के और लोगों की भी गिरफ्तारी की कोशिश में लगी हुई है।
4: बहुत ही संगीन खुलासा है इसलिए क्योंकि जो जंतर मंतर पे जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा था उस प्रोटेस्ट को भारत में सरकार को टोपल करने के लिए, भारत में सरकार को गिराने के लिए, सरकार के खिलाफ साजिश करने का एक रूपरेखा यहाँ पे लोग बना रहे थे।
0: उधर संदिग्धों पर शिकंजे के बाद एक और चौंकाने वाला खुलासा ये भी हुआ है कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी भी इनके निशाने पर थे।
3: इमीडिएटली इस लड़के को कस्टडी में लिया 30-31 की रात को, और इसकी वेरिफिकेशन से हमें कुछ बड़े ही बहुत सीरियस मैटर्स पता चले। एक तो ये कि हमारे जो राज्य के ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं वो इनकी टारगेट लिस्ट में थे।
0: बंगाल एसआईटी की छापेमारी जारी है। संदिग्धों से मिल रही जानकारी के बाद तफ्तीश तेज है और जल्द इस केस में और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। आज तक ब्यूरो
2: में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर छात्रों का आंदोलन अब और तेज हो गया है। छात्र 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने, सीबीआई जांच करवाने और दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
5: रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम इन दिनों सिर्फ धरना स्थल नहीं बल्कि हजारों युवाओं की उम्मीदों का प्रतीक बन चुका है। जेपीएससी और जेएसएससी में कथित भ्रष्टाचार के खिलाफ छात्र 8वें दिन भी सत्याग्रह पर डटे हैं, तंबू लग चुके हैं, बिस्तर बिछ चुके हैं और साफ संदेश है कि लड़ाई अब आर पार की होगी। छात्रों की सबसे बड़ी मांग है 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा रद्द हो, पूरे मामले की सीबीआई जांच हो और जिन लोगों पर गड़बड़ी के आरोप हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। छात्रों का आरोप है कि वर्षों की मेहनत के बाद भी परीक्षा प्रक्रिया पर लगातार सवाल उठते रहे हैं और सबसे ज्यादा नुकसान मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों का हुआ है।
6: हमारे घर वाले भी जैसा पूछते हैं कि मैं 32 साल की हो गई हूँ कि एक बात बताओ, तू इन इतना दिन से तैयारी कर रहे थे, तू इनके सिलेक्शन का है ना खो हुआ।
7: सपना तो देखे मैं कि कुछ करेंगे, बड़ा कुछ करेंगे, इस राज्य में सरकारी नौकरी करेंगे, लेकिन हमारे सपने को सर हम लोग हारा हुआ इंसान नहीं सर, सरकार सिस्टम ने मुझे हराया है।
5: आंदोलन में शामिल छात्र सिर्फ रांची में ही नहीं पलामू, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो और दूसरे जिलों में भी बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। कई छात्राओं ने भी सत्याग्रह में हिस्सा लिया है। किसी के पिता किसान हैं तो कोई मजदूर परिवार से आता है, लेकिन सभी की उम्मीद सरकारी नौकरी से जुड़ी है।
8: शिक्षा से इतना दूर है हमारा समाज, अगर हम यहाँ पढ़े आए हैं सर, अगर हम पढ़ के कुछ नहीं करेंगे तो हमारा आने वाला जो पीढ़ी है वो देखेगा तो कहेगा कि भैया या चाचा पढ़ लेते तो क्या कर लेते। इसलिए हम सरकार से हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि हम लोग के साथ, हम लोग के तो बार बार हो ही रहा है, आवे वाला पीढ़ी भी हम लोग किससे देख के मोटिवेट, क्योंकि हम लोग तो गरीब आदमी हैं सर।
5: बीजेपी ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। बीजेपी नेता प्रतुल शाहदेव ने छात्रों की मांगों को गंभीर बताते हुए सरकार से संवेदनशीलता दिखाने की अपील की है।
9: के ऊपर भी रसूखदार थे, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई ख्यांगते की? आप बुलाकर पूछ कर सब कुछ छोड़ दे रहे हैं। और दूसरी बात, जब अभी तक परीक्षा रद्द क्यों नहीं हुई? 400 लोगों का पता है हरियाणा और यूपी से क्वालिफाई किए हैं, कुछ कुछ में तो एक एक सेंटर से 25-25 लोग। फिर सीबीआई ही जांच करने के लिए सक्षम एजेंसी है, इंटर स्टेट जांच है, बड़े पैमाने पर मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। ईडी को बुलाना चाहिए, राज्य सरकार सीआईडी के जरिए, अपनी स्टेट सीआईडी के जरिए कवर अप ऑपरेशन चला रही है।
5: पूर्व जेपीएससी चेयरपर्सन एल खियांगते से सीआईडी पहले ही 14वीं जेपीएससी परीक्षा अनियमितता मामले में कई दौर की पूछताछ कर चुकी है। 9 दिन से लगातार चल रहा यह आंदोलन अब सिर्फ परीक्षा विवाद तक सीमित नहीं रह गया। ये उन हजारों परिवारों की उम्मीदों की लड़ाई बन चुका है जिन्होंने अपने बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए गाँवों से शहर भेजा। सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।
2: देश के कई हिस्सों में इन दिनों मानसून का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश का दौर जारी है। आपको जम्मू कश्मीर में आसमानी आफत की तस्वीर दिखाते हैं।
10: इसे कहते हैं कुदरत का कोहरा, इसे कहते हैं प्रकृति का तांडव, इसे कहते हैं बर्बादी की बाढ़।
5: भारी बारिश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कैसी आफत लेकर आई है, इसे इन तस्वीरों से देखकर ही समझा जा सकता है। हाहाकार करता हुआ सैलाब तेजी से आगे बढ़ रहा है। लहरों का शोर इतना ज्यादा है जो खौफ पैदा कर रहा है।
10: कटरा रियासी पर पहाड़ ऐसे दरका कि भयानक तस्वीरें सामने आई। इस भयानक भूस्खलन से नेशनल हाईवे 144 बंद हो गया। मीना मार्ग पर यह कार बहाव में फंस गई। जैसे तैसे ज्वाइंट ऑपरेशन के जरिए इसे बाहर निकाला गया।
5: ये तस्वीरें करगिल की, जहां के चिकतन इलाके में हुई भारी बारिश की वजह से गांव के बीच से गुजरने वाला नाला उफान पर आ गया और कई इलाके सैलाब की चपेट में आ गए। बहाव बेहद तेज है, भारी मलबा भी साथ बह रहा है। ऐसे में लहरों के बीच से मलबे को हटाने की कोशिशें की जा रही है। अब गांदरबल की इन तस्वीरों को देखिए, जहां फ्लैश फ्लड के चलते कुछ ही देर में पूरा का पूरा इलाका डूब गया। घर पानी के बीच घिरे हैं, रास्तों पर पानी भरा है। यहां आसमानी आफत का असर साफ दिख रहा है। इन दिनों देश के कई हिस्सों में हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। इस बीच जम्मू कश्मीर से भी मूसलाधार बारिश में आफत की तस्वीरें सामने आ रही है। कई जगहों पर अचानक बाढ़ आने से घरों को नुकसान पहुंचा है। कई जगहों पर रास्तों पर मलबा बिखर गया है। लोगों को कुदरत की मार का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच कई जगहों पर लैंडस्लाइड ने इस संकट को और ज्यादा बढ़ा दिया है। सोनमर्ग से आई इन तस्वीरों को देखिए, सैलाब तेजी से आगे बढ़ रहा है जो कई इलाकों में खतरा बढ़ा सकता है। मौसम विभाग की माने तो जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में आने वाले 2 दिनों में भी तेज बारिश का अनुमान है, जिससे ये संकट और बढ़ सकता है।

0: कुशनगर को जाने वाले हाईवे बंद है और यहाँ ट्रकों की लंबी कतार लगी है।
1: जम्मू कश्मीर में पिछले 15 से 20 दिन में लगातार रुक रुक के बारिशें हो रही हैं और ये सिलसिला अभी भी चल रहा है। इस सब में जहां बहुत सारे इलाकों में जो है तबाही हुई है, लेकिन जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे जो हर बार थोड़ी भी बारिश होती है तो लैंडस्लाइड्स आ जाती हैं, शूटिंग स्टोन्स होते हैं और रास्ता बंद हो जाता है, और इस बार भी कुछ अलग नहीं हुआ है। मेरे पीछे जो लंबी कतार आप ट्रक की देख रहे हैं, ये लोग पिछले 3 से 4 दिन हो गए इनको यहाँ फंसे हुए और ये श्रीनगर से जम्मू जाने की कोशिश कर रहे थे। न सिर्फ यहाँ से बल्कि जम्मू से श्रीनगर जब आए, हमने इनमें से कई लोगों से बात की तो उधर भी इन्होंने 4 से 5 दिन दे दिए सड़कों पे। तो जिंदगी जो है बहुत मुश्किल हो गई है इन ट्रकर्स के लिए। इनसे हमने बात की, इनका कहना है कि पूरे इंडिया में वो जाते हैं लेकिन जितनी दिक्कत उनको इस रास्ते पे होती है वो कहीं नहीं होती।
0: जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बीते कुछ दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे यहाँ संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। आज तक पेरो।
2: ग्लासगो में बॉक्सर लवलीना ने एक भारतीय रेस्टोरेंट में भारतीय नक्शे के साथ छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने अपनी भावनाएं साझा की। आज तक ने इस मुद्दे पर उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की और रेस्टोरेंट के मालिक ने माफी मांगी है, नक्शा ठीक करने का वादा भी किया है।

0: ग्लासगो में भारत के नक्शे के साथ छेड़छाड़। बॉक्सर लवलीना ने उठाया राष्ट्रहित का मुद्दा। इन तस्वीरों को देखकर खून खौल गया होगा लवलीना बोरगोहेन का, उस खिलाड़ी का जिसने कॉमनवेल्थ गेम्स में रजत पदक जीतकर पूरे हिंदुस्तान का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया था। ये तस्वीरें ग्लासगो के उस मशहूर मिस्टर सिंह्स इंडिया रेस्टोरेंट के पेपर नैपकिन की है, जहां भारतीय खिलाड़ी पदक जीतने के बाद डिनर करने के लिए पहुंचे थे।
1: प्लीज आप लोग बुरा मत मानिए, मुझे ये थोड़ा सा बुरा लगा, ये इंडिया में अपने हमारे नोटिस नहीं है।
0: लवलीना की नजर जब नैपकिन पर पड़ी तो उन्होंने देखा कि उस पर भारत का नक्शा बना है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट से लेकर कश्मीर का एक बड़ा हिस्सा नक्शे से गायब है। लवलीना ने फौरन रेस्टोरेंट के मालिक से अपनी नाराजगी जाहिर की।
2: एग्जैक्टली आपने जो रिएक्शन दिया है वो, मतलब आप उसको कैसे एक्सप्लेन करोगे, क्या कुछ हुआ उस वक्त, पहले तो आप ये बताइए उस रेस्टोरेंट में, और आपने जो बात कही वो कितनी जरूरी थी एक्चुअली?
3: हम लोगों का कल मैच खत्म होने के बाद एक रेस्टोरेंट में, इंडियन रेस्टोरेंट में हम लोगों को लेके गए थे, तो नैपकिन के ऊपर जो एक लोगो है उन लोगों का, हमारे भारत का मैप का, तो मुझे हमारे नोटिस के ही दो लोग आके मुझे दिखाया कि हमारे इधर हमारे नोटिस वाले का मैप ही नहीं है।
0: लवलीना ने ग्लासगो से आज तक के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि भारतीय नक्शे के साथ छेड़छाड़ सिर्फ नैपकिन पर ही नहीं हुई, बल्कि रेस्टोरेंट में बाकी जगहों पर लगे लोगों में भी हुई थी। अब मालिक माफी मांग रहा है।
3: वो बोला कि ब्रिटिश के टाइम का उन लोगों का लोगो है शायद, तो इसको इसीलिए शायद चेंज नहीं कर पा रहे थे, और किसी ने शायद आज तक ऑब्जेक्शन भी नहीं उठाया। इतने सालों से इतने सारे इंडियन लोग ही रहते हैं वहाँ, इंडियन कम्युनिटी ही रहते हैं, किसी ने कभी भी सवाल कैसे नहीं उठाया, और तो वो लोग बोल रहे थे कि हम चेंज करेंगे इसको।
0: सोशल मीडिया पर लोग इस रेस्टोरेंट को खूब ट्रोल कर रहे हैं और लवलीना के साहस की तारीफ कर रहे हैं। दिल्ली से नितिन श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो।
4: वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

मानसून सत्र में आज फिर हंगामे के आसार, छात्रों पर एक्शन, चढ़ावा चोरी जैसे मसले पर विपक्ष का नॉनस्टॉप हल्ला बोल। आज 10 बजे खड़गे की अध्यक्षता में बैठक होगी। दिल्ली में पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जबरदस्त हंगामा, हमले की कोशिश का आरोप, सांसद बोले मेरी हत्या की थी साजिश, आरोपी गिरफ्तार।

0: आप देख रहे हैं आज तक सप्ताह के पहले दिन सुबह के 6 बजे पहला बुलेटिन लेकर मैं आशुतोष मिश्रा आपके साथ हूं और शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। देश दुनिया के तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले और बड़ी खबर, 3 राज्यों में 3 विधानसभा सीटों पर आज होने जा रही है मतगणना। सुबह 8 बजे से 3 सीटों पर मतगणना शुरू होगी और उसके कुछ ही घंटे के बाद जनादेश साफ हो जाएगा। आज फैसले का दिन है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात की मांजलपुर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के वोटों की गिनती शुरू होगी। 3 सीटों पर 30 जुलाई को वोटिंग हुई थी और आज अब फैसले की घड़ी है। तो अब से कुछ देर बाद सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी, उसके बाद ईवीएम में दर्ज वोटों की गिनती की जाएगी। चुनाव आयोग ने 3 राज्यों में शांतिपूर्ण तरीके से गिनती सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। बांकीपुर और दतिया में दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। हाल के छात्र के प्रदर्शन, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ये बेहद महत्वपूर्ण चुनावी नतीजे साबित हो सकते हैं। तो सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती शुरू हो जाएगी। पहले पोस्टल बैलेट और 3 राज्यों की 3 महत्वपूर्ण सीटें। उम्मीदवारों ने पूरी ताकत लगाई और उसके बाद आज जनादेश का दिन है। सुबह 8 बजे गिनती शुरू हो जाएगी। बांकीपुर, दतिया, मांजलपुर, ये वो 3 सीटें, 3 राज्य, 3 सीटों पर उपचुनाव। तो 30 जुलाई को यहां मतदान हुए थे और आज नतीजे का दिन है। बांकीपुर में लगभग 34% वोटिंग हुई थी, बेहद कम। मांजलपुर में भी मतदान 50% के नीचे रहा था। 30 जुलाई को जब मतदान हुए थे, चूंकि उपचुनाव थे, आमतौर पर उपचुनाव में मतदान बेहद कम रहा। और दतिया में सबसे ज्यादा 71% वोटिंग, 71.44% वोटिंग हुई थी। तो एक जगह 34, दूसरी जगह 37 और तीसरी जगह 71% मतदान हुआ था। और उन 3 सीटों के बाद ये देखिए, जनसुराज के प्रशांत किशोर को आप देख रहे हैं, इन्होंने भी बांकीपुर सीट से किस्मत आजमाने की कोशिश की है। प्रशांत किशोर पहली बार चुनावी अखाड़े में उतरे और 5 बार विधायक रहे नितिन नवीन। जब वहां से उन्होंने अपनी सीट छोड़ी, वो बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, तब वहां उपचुनाव हुआ और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट होने के नाते उनकी भी साख यहां पर दांव पर है। बतौर सीएम सम्राट चौधरी के लिए भी ये पहली चुनावी परीक्षा होगी, क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए यहां पर चुनाव प्रचार किया, लोगों से अपील भी की। और उसी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण ये कि जेन जी यानी जंतर मंतर जो आंदोलन हुआ, लेकिन आपको बता दें दतिया में जो कांटे का मुकाबला, वो कहां दिखाई देने को मिलेगा? आशुतोष बीजेपी के उम्मीदवार, उनके सामने कांग्रेस की ओर से घनश्याम सिंह, दतिया की सीट पर कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा। अब मांजलपुर देख लीजिए, सत्येंद्र भाई पटेल बीजेपी की ओर से और भीख भाई रबारी कांग्रेस की ओर से, और ये मुकाबला मांजलपुर सीट का है। तो ये वो दिग्गज हैं जो इस उपचुनाव में एक दूसरे के आमने सामने चुनावी मैदान में हैं। तो बिहार में बांकीपुर उपचुनाव का परिणाम आएगा। परिणाम से पहले जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने पुलिस अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यह दावा किया कि इस चुनाव में वो भारी मतों से जीतेंगे।
1: बांकीपुर का बादशाह कौन हुआ? बांकीपुर में हुए उपचुनाव का परिणाम आना है, मगर परिणाम से पहले जनसुराज पार्टी के संस्थापक और बांकीपुर से उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने एसएसपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रशांत किशोर ने आरोप लगाए हैं कि एसएसपी की अगुवाई में मतदान के दौरान गड़बड़ी की गई, इसलिए मतगणना के दौरान एसएसपी को मतगणना स्थल से बाहर रखा जाए।
2: एसएसपी को ये निर्देश दिया गया है कि वो इन चीज पूरे चीज से बाहर रहे। ये अपने आप में एसएसपी होने के नाते उनको शर्म आनी चाहिए कि एक आदमी को आपके जिले में हो रहे इतने बड़ी व्यवस्था से अलग करने का निर्देश दिया गया है। ये दिखाता है कि आपकी क्षमता कितनी है।
1: बांकीपुर में त्रिकोणीय टक्कर है। बीजेपी की ओर से अभिषेक कुमार मैदान में है तो आरजेडी की ओर से रेखा गुप्ता है। वैसे तो बांकीपुर बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी यहां कभी नहीं हारी, लेकिन पीके दावा कर रहे हैं कि बांकीपुर को वो बड़े अंतर से जीतेंगे।
2: इतने वोट से भाजपा हारेगी कि जीवन में कभी ये कहने का दुस्साहस नहीं कर पाएंगे कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो चुनाव जीत जाएगा। इतने वोट से हारेंगे।
1: पीके के दावों में कितना दम है पता चल जाएगा, क्योंकि अब ना घोड़ा दूर है न मैदान। आज तक ब्यूरो।
0: और आज की दूसरी बड़ी खबर होगी संसद के मानसून सत्र का। ये तीसरा सप्ताह आज एक बार फिर लोकसभा और राज्यसभा में पूरे हंगामे के आसार हैं। विपक्ष लगातार सरकार की मुश्किलें बढ़ाने में जुटा हुआ है। इस बीच राज्यसभा और लोकसभा में विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स की बैठक 4 घंटे बाद होने जा रही है। तो सुबह 10 बजे संसद में राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में विपक्ष की बैठक होगी। इस बैठक में चल रहे सत्र के दौरान विपक्षी दल अपनी रणनीति पर चर्चा करेंगे, सरकार को घेरने पर मंथन करेंगे। तो खड़गे के नेतृत्व में अब से 4 घंटे बाद ही बैठक होगी और इस बैठक में यह तय होगा कि तीसरे सप्ताह का पहला दिन कितना हंगामेदार होगा।
3: अगर भेज जाएंगे तो हम सदन चलाने के लिए कोशिश करेंगे।
4: संसद का मानसून सत्र आज 11वां दिन है। बीते 10 दिनों की कार्रवाई में जिस तरह से विपक्ष ने तेवर दिखाए हैं, उससे साफ है कि आज 11वां दिन भी हंगामेदार होगा। टकराव के कई मुद्दे हैं। सबसे पहला तो ये कि निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पर हमला। दूसरा मुद्दा राम मंदिर चंदा चोरी का है। तीसरा मुद्दा छात्र आंदोलन के दौरान हुए एक्शन पर गृह मंत्री के बयान की मांग है। चौथा ये कि राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस है। और पांचवा मुद्दा परिसीमन को लेकर राहुल के बयान का है। इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव जारी है। विपक्ष अभी इन्हीं दावों के सहारे संसद से सड़क तक सरकार को घेरने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। कांग्रेस और अन्य दल छात्रों पर हुए पुलिसिया एक्शन को लेकर लगातार गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे हैं। वहीं बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर राहुल के कुछ बयानों को लेकर कार्रवाई की मांग की है। लेकिन आज 11वें दिन फिर से संसद परिसर के अंदर और बाहर वैसी ही हंगामे की तस्वीर दिखने की पूरी संभावना है। केंद्र सरकार लोकसभा और राज्यसभा में कम से कम 6 बिल पास करने की तैयारी में है, लेकिन विपक्ष एक बार फिर आज तेवर दिखाने के लिए बैठक बुला चुका है। आज तक ब्यूरो।
0: उधर उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र भी आज से शुरू होने जा रहा है। इस सत्र के पहले दिन विपक्ष राम मंदिर दान में चोरी, नीट पेपर लीक जैसे मसले को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में। उसी के साथ साथ 2027 के चुनाव को देखते हुए भी ये आखिरी मानसून का सत्र होगा, तो ऐसे में चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर समाजवादी पार्टी राज्य सरकार के खिलाफ बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में जुटी है। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपील की है कि सदन में जनहित से जुड़े हर मुद्दे को उठाया जाए, स्वस्थ चर्चा हो, विकास और गति प्रदान करने में सरकार का सहयोग करे विपक्ष।

0: लखनऊ का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। मॉनसून सत्र से पहले ही विपक्ष तेवर दिखा रहा है। समाजवादी पार्टी राम मंदिर चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दों पर बड़ा नैरेटिव सेट करने में जुटी है। अभी एक दिन पहले ही अखिलेश यादव ने लखनऊ में विधायकों की बैठक की। पार्टी ने अपना एजेंडा साफ कर दिया है, कहा कि राम मंदिर में चोरी के आरोपियों पर सख्त कार्रवाई हो और हाई कोर्ट की निगरानी में जांच कराई जाए। इसके अलावा कई अन्य मसलों पर भी पार्टी सरकार को घेरने की कोशिश में है।
1: सबसे पहले है मंदिर की चढ़ावा चोरी, दूसरी मुद्दा है बिजली। बिजली गांव-गांव में नहीं पहुंचती है। मैं अपने घर गया था, मेरे घर कट गई थी, परेशान था, जनरेटर चलाना पड़ा तो बिजली नहीं पहुंच पा रही। तीसरी बात है इस समय खाद की जरूरत है, यूरिया नहीं पर्याप्त मात्रा में मिल पा रहा।
0: सत्र शुरू होने से पहले ही समाजवादी पार्टी के विधायक शिवपाल यादव ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला और कम दिनों के लिए मॉनसून सत्र बुलाने पर सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनता के सवालों से डर रही है। समाजवादी पार्टी के तेवर के बीच विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सर्वदलीय बैठक की है। बैठक को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने सभी विधायकों से अपील की है कि जनहित से जुड़े मुद्दे ही सदन में रखें।
2: सपा के जो कुकर्म हुआ है पिछले सत्र के पहले का जो कुकर्म हुआ है उसका जवाब हम लोग अपने विकास कार्यों से देंगे, जो विकास हम किए हैं।
0: यूपी विधानसभा का ये सत्र 6 अगस्त तक ही चलेगा। ऐसे में दोनों तरफ से हो रही बयानबाजी से साफ है कि टकराव बढ़ने वाला है। संतोष कुमार शर्मा, लखनऊ आज तक।
3: तो उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बहुजन समाजवादी पार्टी में बड़े पैमाने पर फेरबदल कार्यवाही का दौर शुरू हो गया है। बीएसपी की मुखिया मायावती ने चुनाव से पहले ऐलान किया है कि पार्टी में उम्मीदवारों के नाम तय करने का अधिकार पूरी तरह से उनके ही पास होगा। तो वैसे में सवाल ये उठता है कि आकाश आनंद क्या करेंगे? आकाश आनंद के परिवार के खिलाफ, उनके करीबियों के खिलाफ पहले मायावती कार्यवाही कर चुकी है। बहुत कुछ खास हो रहा बीएसपी में।
4: 27 के समर के लिए बीएसपी सुप्रीमो भी तैयार है। उन्होंने भी कमर कसनी शुरू कर दी है और पार्टी के भीतर के सारे कीलकांटे दुरुस्त करने की कवायद में जुट गई हैं। आज मायावती ने सोशल मीडिया पर बताया कि अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। बीएसपी कोऑर्डिनेटर रणधीर सिंह बेनीवाल को भी पार्टी से निकाल दिया गया है। बता दें कि अशोक सिद्धार्थ बीएसपी के नेता के साथ मायावती के समधी भी हैं। वो आकाश आनंद के ससुर हैं। इसके पहले मायावती ने अशोक सिद्धार्थ से दिल्ली, कर्नाटक, ओडिशा और पश्चिम बंगाल राज्यों का प्रभार वापस ले लिया था। वहीं सभी जिम्मेदारियों से हटाने के बाद सोशल मीडिया पर आधिकारिक पोस्ट के जरिए दोनों नेताओं को पार्टी से निष्कासित करने का ऐलान किया गया। मायावती ने कहा कि यूपी में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारी के लिए उम्मीदवारों को तय करने का अधिकार पूरी तरह से उनके पास है। उन्होंने लखनऊ पार्टी कार्यालय में खुद बैठ के कर 2 दर्जन से ज्यादा उम्मीदवार फाइनल कर दिए हैं और आगे भी सभी सीटों पर टिकट वही तय करेंगी। मायावती ने साफ किया है कि पार्टी में अनुशासनहीनता करने वाले नेताओं को बख्शा नहीं जाएगा। कुमार अभिषेक, लखनऊ आज तक।
3: चलिए बात करेंगे पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुए हंगामे की। पप्पू यादव दिल्ली में अपने घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, जमकर हंगामा हुआ। पप्पू यादव का आरोप है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक शख्स पहुंचा, वहां हंगामा किया और फिर उन पर चाकू से हमला करने की कोशिश की। आरोप यह भी है कि हमलावर जान से मारने आया था। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस की सूत्रों का दावा तो यह है कि अभी तक पप्पू यादव की तरफ से कोई शिकायत नहीं आई है। उधर हमले की कोशिश के बाद पप्पू यादव के पीएसओ हेड कांस्टेबल ने एक चाकू पुलिस को हैंडओवर किया है। अब बताया जा रहा है कि 2 आरोपी पप्पू यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पहुंचे। दोनों पप्पू यादव के 31 अगस्त वाले विरोध प्रदर्शन से नाराज थे। तो ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, अचानक हंगामा हुआ, कुछ लोग वहां पहुंचते हैं। पप्पू ने हमलावर को पकड़ भी लिया, हमलावर की देखिए वहां धुनाई भी हुई, उसके बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बीच में जो तस्वीरें देख रहे हैं वो उस चाकू की हैं जिसपे दावा किया गया है कि इसी चाकू से वो मारने आए थे। उनके पीएसओ ने वो चाकू भी दिल्ली पुलिस को हैंडओवर किया था। अब 31 अगस्त को क्या हुआ था? दरअसल सदन के दौरान संसद परिसर में पप्पू यादव चढ़ावा चोरी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के लिए साधु का वेश बना करके बैठे थे और उसी को लेकर के अब बीजेपी का आरोप यह है कि यहां सनातन का अपमान हुआ है। और वहां जो प्रदर्शन हो रहा था वो चंदा चोरी मामले पर हो रहा था, वहां पर वो बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे थे अयोध्या चंदा चोरी के मामले पर और उसके बाद। लेकिन पप्पू यादव ने इस पूरी घटनाक्रम के बाद क्या कहा, हमारे सहयोगी अनमोल बाली ने उनसे बात की, सुनवाते हैं आपको।
5: यादव जी, आज देखा गया कि आप पर किसी ने चप्पल से हमला किया, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधन कर रहे थे, आपके बड़े आरोप है कि चाकू तक चलाने की कोशिश।
1: तो सामने में पकड़ा है भैया, उसी एक मिनट में तो पकड़ा है। और हम नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं पप्पू यादव को जिंदा जला दो। हम बोल रहे हैं क्या? दूसरा ये बाबा बोल रहे हैं कि पप्पू यादव को एक साथ नहीं रखते, पप्पू यादव को जो मार देगा उसको 11 लाख रुपया देंगे। एक बाबा कह रहे हैं घर ढुक के मारेंगे, रात में मेरे बच्चों के घर पे चले गए, ये कह रहे हैं। ये बोल रहे हैं। अब आप हमको बताइए हमने क्या बात कही? शंकराचार्य पर हमला हुआ, ये लोग कुछ बोले? 200 किलो चांदी सिंधी का चोरी कर लिया चंपत राय, बोले? काल नेमी संत गिरी 3000 करोड़ रुपया चोरी करके गायब कर दिया, बोले? सोना का रामायण चोरी कर लिया, बोले? बद्रीनाथ केदारनाथ में मुकुट पकड़ाया, काल नेमी संतों के यहां से पुलिस ने पकड़ी, कुछ बोले? हनुमान जी को नचाया, कुछ बोले? संविधान जलाया, कुछ बोले? भगवान के अस्तित्व पर सवाल खड़ा किया सावरकर जी ने, कुछ बोले? झंडा नहीं लगाया, कुछ बोले? आप हमको बताओ ना।
5: यादव जी, आपकी सुरक्षा को लेकर आप दिल्ली पुलिस के पास भी गए, आपका कहना है एक दो दिन से आपको धमकियां दी जा रही हैं, बीजेपी से लेकर वीएचपी आपके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं।
1: तो बीजेपी का नाम कभी नहीं लिया मैंने, कहा कि कुछ गुंडे संगठन जिस तरीके से, और कुछ गुंडे बाबा, रियल संत तो किसी के लिए नहीं बोलेंगे। यदि आज हम आते हैं तो यहाँ 200-300 लोग रहते हैं, मिलने आते हैं, अभी भी आप सबसे देख लो, पीछे 400-500 गरीब लोग रहते हैं जिसका इलाज होता है। तो जो हमारे नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, विपक्ष के नेता अखिलेश जी लगातार देश के 100 करोड़ की आस्था के मुद्दों को लेकर आवाज उठा रहे हैं, ट्रस्ट में मंदिर चोरी के लेकर लड़ रहे हैं, देश के सनातन के विचारों की हिफाजत के लिए लड़ रहे हैं। मैंने काल नेमी संतों के तरीके से मैंने रूपांतरित किया, और मैंने क्या किया।
3: इस मामले में आरोपी हैप्पी शर्मा से आज तक संवाददाता अरविंद ओझा ने खास बात की, सुनिए।
6: पप्पू यादव के घर पर आप और आपके दोस्त सुमित गए थे, क्या हुआ था, क्या करने आप लोग गए थे वहां पर?
7: अरविंद जी, हम साधुओं का प्रोटेस्ट चल रहा था उनके घर के बाहर, तो हम वहां साधुओं के प्रोटेस्ट में गए थे। साधुओं का प्रोटेस्ट उन्होंने पुलिस द्वारा हटवा दिया था वहां से जब हम पहुंचे थे, तो हमने सोचा भीतर चल के बातचीत कर लेते हैं। तो
6: क्या बातचीत कर रहे थे? क्या बातचीत करूं
7: कि आप इन हिंदुओं की आस्था पर, ये साधु संतों पे तुम जो है ऐसा आक्षेप लगा रहे हो कि चोरी का, कि जो भगवान राम, हमारे जो भगवान राम आराध्य हैं उन्हें पैरों में गिर रहे हो, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? ये हमारे भगवान हैं, ये हमारे राजा राम हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? तो इतना कहने पर केवल उनके लोगों ने और उन्होंने हमें मार पीटना शुरू कर दिया।
6: तो आप तो चाकू बड़ा सा लेकर गए थे पप्पू यादव करें कि आप बड़ा?
7: नहीं भैया, हमारे पास कोई चाकू नहीं था। सांसद जी के जब घर गए थे तो जब चेकिंग हुई थी कोई चाकू नहीं था। अब क्या हम ऐसे लोग हैं क्या किसी को मानने जाएंगे? हम केवल बातचीत करने गए थे, लोकतंत्र में अधिकार है, सबको बातचीत तो कर सकते हैं।
6: अरे लोकतंत्र में अधिकार है, ऐसा अधिकार नहीं है ना कि आप किसी के घर में बिना बताए प्रवेश कर जाएंगे, वो लोकतंत्र में अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है। उसके लिए प्रदर्शन कर सकते हैं, पुलिस के पास शिकायत दे सकते हैं अगर आपत्ति हो। तो आप एक सांसद क्या, आप और आपके मित्र घुस गए और आप वो सांसद आरोप लगा रहा है कि आप बड़ा सा चाकू लेकर अंदर घुस गए और पप्पू यादव पर हमला करने वाले थे?
7: नहीं भैया, ऐसा नहीं, केवल बात करने गए थे भैया।
6: प्रेस कॉन्फ्रेंस अंदर चल रही थी क्या?
7: प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो हमने केवल उनसे ये कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में हम बोले, हमने कहा कि पप्पू यादव जी आप सनातन को भगवा वस्त्र पहनकर नीचे घूम रहे हो उन डिब्बों को लेकर, और भगवान राम की तस्वीर को नीचे कर रहे हो, कभी किसी के पैरों में गिर रहे हो, तो इसका क्या मतलब है? आप सनातन को इतना जो पैरों में गिर रहे हो इसका कोई मतलब है? इतने में तो उन्होंने मारपीट शुरू कर दी हमारे साथ।
6: फिर आप लोग की तरफ से क्या चप्पल किसने फेंका?
7: चप्पल हमने नहीं फेंका, चप्पल पता नहीं किसने फेंका, हमने नहीं फेंका, हम तो केवल बातचीत करने गए थे भैया।
6: नहीं वो तो वीडियो में दिख रहा है कि किसी ने चप्पल जूता निकाल कर फेंका पप्पू यादव की तरफ।
7: अच्छा, अब वो लोग के चाकू फेंका के जूते फेंके, केवल हम तो बात करने गए थे। सनातन सनातन को ऐसे जो है अभद्र भाषाओं का उपयोग करेंगे, उन पर टिप्पणी करेंगे तो चुप नहीं रहेगा। उत्तर प्रदेश का युवा जागरूक है और वो एक्शन लेगा। साधु संतों का अपमान नहीं सहेगा पूरा उत्तर प्रदेश।
6: अरे भाई साहब, एक्शन लेना होगा तो पुलिस में कंप्लेन दीजिए, प्रोटेस्ट करिए, किसी सांसद के घर घुस जाएंगे।
7: भैया बात करने गए थे अरविंद जी, बात करने गए थे केवल।
6: क्या बात करते उनसे, क्या समझाते उनको, क्या बात करते, क्या बोलने गए थे?
7: ये कहते कि भाई भगवान हमारे आराध्य हैं, आप ये क्या करते हो, आप भी यादव हो, आप भी हिंदू हो, इन हिंदुओं का जो है इतनी अभद्रता कर रहे हो, कोई ये तमीज थोड़ी है आपकी।
6: फिर आपको पिटाई हुई, आपके भी वीडियोस में दिख रही है कई मीडिया चल में, फिर आप वहां से क्या हुआ, भाग गए आप वहां से?
7: जी मैं वहां से बाहर निकल आया और सुमित को पकड़ लिया।
6: अच्छा तो अब क्या आप पुलिस के सामने जाएंगे, क्योंकि पुलिस आपको तलाश रही है?
7: जी
6: क्या पुलिस के साथ
7: जाएंगे? पुलिस में FIR हम भी करेंगे, हमारे साथ मारपीट हुई है।
6: अरे भाई आप किसी दूसरे के घर में जाएंगे तो मारपीट और फिर वो तो होगी। अब तो सांसद कह रहे हैं कि दो लड़के आए, उन्होंने बड़ा सा चाकू लिया हुआ था, मुझे जान से मारने की कोशिश थी, मुझे साजिश थी, तमाम चीजें कह रहे हैं।
7: झूठ बोल रहे हैं, सरासर झूठ बोल रहे हैं।
3: उधर पूर्व कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने भगवा का अपमान का आरोप लगाते हुए राहुल गांधी और पप्पू यादव पर बड़ा हमला बोला है।
8: पप्पू यादव जी ने जो पाप भारत की संसद के प्रांगण में बैठ के किया, उससे ये सिद्ध होता है कि ये सब रावण के खानदानी है। और जिस तरह रावण के परिवार में कोई खरदूषण था, मेघनाथ, कुंभकर्ण, तो ये जो पूरी जमात है ये रावण का कुनवा है। और पप्पू यादव जी ने कुंभकर्ण की भूमिका अदा की है। अब राहुल गांधी जी को ये सोचना है कि वो इस राक्षस मंडली के सरदार बनकर के सनातन को और कितना बदनाम करना चाहते।
3: तो आपको बताते हैं आखिर ये हंगामा हो क्यों रहा है। दरअसल शुक्रवार को संसद परिसर से एक अनोखी तस्वीर सामने आई। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर सांसद पप्पू यादव साधु के भेष में विरोध करते नजर आए। इस विरोध में कुछ विपक्षी सांसद भी शामिल हुए, जिसे लेकर यह जबरदस्त बवाल मचा। कई शहरों में विरोध प्रदर्शन हुआ, वाराणसी में FIR हुई। बीजेपी इस बहाने विपक्ष को घेर रही है।
4: संसद के मॉनसून सत्र में जिस चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में था, उसका दांव अब उल्टा पड़ता दिख रहा है। संसद परिसर में भगवा पहनकर पप्पू यादव के विरोध ने बीजेपी को हमलावर होने का बड़ा मौका दे दिया है। बीजेपी इसे लोगों की आस्था और सनातन के अपमान से जोड़ रही है। अब संसद से सड़क तक नई जंग छिड़ गई है, जिसे लेकर सड़कों पर उबाल है। कई शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। वाराणसी में FIR दर्ज कराई गई है, जिसमें पप्पू यादव के साथ साथ राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद का भी नाम है। वहीं एक दिन पहले दिल्ली के पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने पहुंचकर बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने भी केस दर्ज करने की मांग की है।
9: राहुल गांधी जी ने जो स्वांग रचा है संसद के परिसर में, वो विरोध नहीं है, वो प्रोटेस्ट नहीं है, वो सनातन संस्कृति का उपहास है, वो संत समाज का परिहास है और वो भारत की परंपराओं पर अट्टहास है।
4: उधर बीजेपी के हमलों के बीच पप्पू यादव ने डैमेज कंट्रोल का प्रयास शुरू कर दिया है। एक दिन पहले सोशल मीडिया पर भगवान शिव की पूजा का वीडियो साझा किया था और फिर जवाब देते हुए कहा कि उनकी लड़ाई चंदा चोरों के खिलाफ है।
10: जब सनातन और मंदिर के सारे पैसे को लुटेरे को उजागर करना और उसके खिलाफ लड़ना गलत है, मंदिर की रक्षा करना गलत है, मंदिर के पैसे की रक्षा करना गलत है।
4: वहीं बीजेपी की मोर्चाबंदी तेज है। साधु संत भी भगवा भेस में, विरोध के तरीके पर गुस्से में है। टकराव कानूनी लड़ाई तक पहुंच गया है और सियासत चरम पर। संसद का मानसून सत्र शुरू होते ही कांग्रेस एसपी की रणनीति चढ़ावा चोरी पर सरकार को घेरने की थी, लेकिन पेपर लीक पर बवाल के चलते विपक्ष ये मुद्दा आक्रामक तरीके से नहीं उठा सका और अब पप्पू यादव के विरोध प्रदर्शन को लेकर नया बवाल छिड़ गया है। आज तक ब्यूरो।
3: एक तरफ संसद में हंगामा, दूसरी तरफ कुछ दिन पहले आपने सड़कों पर हंगामा देखा, दिल्ली के जंतर मंतर को आपने देखा, लेकिन अब आपको दिल्ली से कुछ दूर एक ऐसे जंतर मंतर पर ले चलते हैं जो झारखंड में है। 10 दिनों से रांची में शांतिपूर्वक जयपाल सिंह स्टेडियम में धरना चल रहा है। 14वीं जेपीएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और बीती शाम बड़ी संख्या में छात्रों ने मशाल जुलूस निकाला, हाथों में बैनर पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान छात्रों ने मोबाइल की टॉर्च जलाई, सांकेतिक विरोध दर्ज कराया। उधर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीपके ने रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बात की और उन्हें अपना समर्थन दिया। सीजेपी ने भी रांची में जारी प्रदर्शन को अपना समर्थन दिया है। छात्र वहां बीते दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं।
11: रात के लगभग जो है 10 बज रहे हैं, आप देख सकते हैं। उनका कहना है कि रात भर इसी तरह से आंदोलन चलता है। ये
12: हम लोग पूरी तरह से जेएसएससी, जेपीएससी और सारे झारखंड के एग्जाम में रिफॉर्म चाहते हैं, बिना गड़बड़ी के एकदम निष्पक्ष एग्जाम हो, यही चाहते हैं। और सारे एग्जाम में सीबीआई इंक्वायरी की मांग करते हैं।
11: अरे रात कैसे कटता है?
13: हल्ला बोल, हल्ला बोल
11: जी। रात कैसे कटता? रात भर नारेबाजी होती है,
14: रात भर होती है।
11: जागते हैं,
14: जागते हैं,
11: कैसे आंदोलन करते हैं?
14: फिर सुबह उठ के फिर आंदोलन होती है हमारी।
15: थोड़ा मोड़ा बस
16: सोते हैं, उठने नींद नहीं आती है। नींद सोई हुई सरकार को जगाना है तो नींद नहीं आती है हम लोग को।
17: सरकार को जगाने के खुद जगना पड़ेगा
16: तो जगेंगे।
17: अगर नहीं हम लोग जगते हैं तो सरकार सोई रहेगी। इसीलिए आज जब तक सरकार हमारी बात नहीं मानती है,
16: मुख्यमंत्री
17: जगते रहेंगे। जब
16: अभी तक मुख्यमंत्री ने
17: सरकार का घुटना
16: गूंगी भैंस
11: के आने वाले भविष्य को जगाने के लिए
16: क्या बोल रहे
17: नहीं जा रही है।
14: हम बोला जाएंगे, हमारी नींद नौकरी नहीं लगने की वजह से पहले ही से उड़ी हुई है। ये नींद हमारी सामने क्या है, हम तो पहले ही से सो नहीं रहे हैं। तो हमारी मांग यही है कि जल्दी से जल्दी जेपीएससी में, जेएसए में रिफॉर्म की जाए और जल्दी से जल्दी सीटों को सुधार करके जिस प्रकार से बेहतर चीजें की जा सकती है।
11: आराम होना हो तो
14: कुछ लोग सोते हैं, कुछ लोग सोते हैं, कुछ लोग अपना कार्यक्रम करते हैं, लेकिन हमारे ये आंदोलन लगातार बनती रही है, चलती रही है और हमेशा चलती रहेगी। तब तक चलेगी जब तक जेएसपीएससी और जेएसएससी में रिफॉर्म नहीं हो जाती है।
11: नहीं नहीं तो सोने का कोई जगह इस तरह?
14: नहीं नहीं, बस इसी में सो जाते हैं।
11: यहाँ देख सकते हैं, इनका कहना है रात नहीं जागे तो आखिर क्या करें। नींद तो इनकी पहले से उड़ी हुई है क्योंकि इनके पास रोजगार नहीं है। भविष्य में पहले काले घाले घने बादल मंडरा रहे हैं तो नींद कैसे आएगी। यही वजह है कि रात जगा कर रहे हैं ये, और रात जागने में इन्हें कोई परेशानी नहीं हो रही है। आंदोलन का जो लौ है वो जलते रहना चाहिए, लिहाजा लगातार इसी तरह से एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं और जोश दिलाते रहते हैं।
3: रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबर जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
18: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से पर।
19: गाइडेड बाय अ शेयर्ड पर्पस एंड अ स्पिरिट ऑफ कोलैबोरेशन, एमरी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स पुश ईच अदर टू थिंक क्रिएटिवली एंड वर्क कोऑपरेटिवली, नोइंग दैट डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स लीड टू न्यू आइडियाज।
20: What makes Emory special is that it has very rigorous academics, but a community that is willing to support each other. People are always willing to study together and work hard together.
19: Learn more at emory.edu.
21: मंगल बदल रहे हैं अपनी चाल, किसकी बढ़ने वाली हैं मुश्किलें और कौन होने वाला है मालामाल? सावन के पहले सोमवार का क्या है पूजा विधान और कैसे मिलेगा भगवान शिव से वरदान? जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्यचक्र।
22: When your cat is acting weirder, or your dog is being louder, your turtle moves slower.
23: Hello, Ted.
22: Your cat seems thirsty-er.
0: Whoa, slow down, buddy.
22: Or your puppy is acting clumsy. Day or night, if you don't know what's wrong, know where to go.
2: Veg ER for pets. This is Kate.
22: Veg. The better, kinder ER for pets.
18: Presented by Patanjali Gaay Ka Ghee. Lagaye swaad aur sehat ka tadka har maa ka bharosa, pyar se parosa.
19: Explore what inspires you at Emory University. And Emory Education combines real-world learning with collaboration and discovery.
5: The smartest person will be in your bio class, will also be the best dancer that you know. And Emory allows people to kind of explore what they're interested in and find ways to turn that passion into something real.
19: Learn more at emory.edu.
22: When your cat is acting weirder, or your dog is being louder, your turtle moves slower.
2: Hello, Ted.
22: Your cat seems thirstier.
0: Whoa, slow down, buddy.
22: Or your puppy is acting clumsier. Day or night, if you don't know what's wrong, know where to go.
2: Veg ER for pets. This is Kate.
22: Veg. The better, kinder ER for pets.
18: Presented by Patanjali Gaay Ka Ghee. Lagaye swaad aur sehat ka tadka har maa ka bharosa, pyar se parosa.

तीन विधानसभा सीटों पर आज फैसले का दिन। बांकीपुर सीट पर बीजेपी के नीरज कुमार और जनसुराज के प्रशांत किशोर के बीच टक्कर। दतिया और मांजलपुर में भी सुबह 8 बजे काउंटिंग। संसद के मानसून सत्र में आज फिर हंगामे के आसार। छात्रों पर एक्शन, चढ़ावा चोरी जैसे मसले पर विपक्ष का नॉनस्टॉप हल्ला बोल। आज फिर 10 बजे खरगे की अध्यक्षता में विपक्ष की बैठक। दिल्ली में पप्पू यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जबरदस्त हंगामा, हमले की कोशिश का आरोप। सांसद बोले, मेरी हत्या की साजिश थी, आरोपी गिरफ्तार। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में बड़ा आत्मघाती हमला, 14 लोगों की मौत, कई गंभीर रूप से घायल। शांति रैली के दौरान मची अफरा तफरी। और सावन का पहला सोमवार आज देशभर के शिवालयों में जलाभिषेक और पवित्र दर्शन जारी। तमाम मंदिरों में भारी भीड़, कांवड़ यात्रियों में भी उत्साह। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। आज सावन का पहला सोमवार है। इस मौके पर तड़के से ही भोले के भक्त शिवालयों में पहुंचे हैं, शिवभक्त मंदिरों में जलाभिषेक कर रहे हैं, फूल अर्पित कर रहे हैं और सोमवार के मौके पर आशीर्वाद ले रहे हैं। दुनिया देश भर के अलग अलग शिवालयों में भारी भीड़ है। फिर क्या देवघर, क्या अयोध्या, क्या प्रयागराज, क्या वाराणसी, क्या उज्जैन, देश के अलग अलग शहरों में बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो शिवालयों में पहुंचे हैं। इसी के साथ कांवड़ यात्रा की जो शुरुआत है, सावन का पहला सोमवार है, तो तमाम शिवभक्त कांवड़ लेकर के हरिद्वार के अलग अलग घाटों से अपने अपने शिवालयों तक पहुंचेंगे, जहां जाकर के वो अपने अपने शिवालयों में जल चढ़ाएंगे। सावन की आस्था और उसी के साथ पहला सोमवार, ये हर शिवभक्त के लिए बेहद खास होता है।

0: आसमान में उमड़ते घुमड़ते मेघ फुहारों से भीगी मिट्टी की सौंधी खुशबू और हवाओं में तैरती हर हर महादेव की पवित्र गूंज भक्ति का यह अलौकिक रंग बता रहा है कि देवाधिदेव महादेव का सबसे प्रिय मास सावन अपनी पूरी रंगत में आ चुका है और जब सावन का पहला सोमवार आता है तो धरती पर मानो स्वर्ग सा माहौल बन जाता है सड़कों से लेकर शिवालयों तक हरिद्वार की पावन पैड़ी से लेकर प्रयागराज के संगम तक हर दिशा से केवल एक ही आवाज आती है बम बम भोले हर हर महादेव आज सावन का पहला सोमवार है श्रद्धा आस्था और संकल्प का ऐसा टूट पर्व जहां हर शिव भक्त भोलेनाथ के प्रेम में सराबोर है
1: श्रावण का पावन मास भगवान शिव के पूजन अर्चन के लिए विशेष रूप से जो है प्रशस्त होता है इस मास के अंदर विशेष रूप से भगवान शिव का जो है पूजन अर्चन किया जाता है और जलाभिषेक किया जाता है
0: सनातन परंपरा में सावन का महीना और विशेष रूप से इसका पहला सोमवार अत्यंत पावन माना गया है शास्त्रों के मुताबिक सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है मान्यता है कि इसी महीने में माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी सावन का पहला सोमवार इस भक्ति और साधना की शुरुआत का प्रतीक है सावन के सोमवार का व्रत रखने और इस दिन महादेव की सच्ची मन से पूजा करने से जीवन के सभी दुख दर्द मिट जाते हैं ये केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि महादेव के आशीर्वाद का द्वार है जहाँ से मनवांछित फलों की प्राप्ति का मार्ग खुलता है सावन के पहले सोमवार को महादेव के जलाभिषेक का विशेष आध्यात्मिक महत्व है पौराणिक कथा के मुताबिक जब समुद्र मंथन के दौरान हलाहल विष निकला तो संसार की रक्षा के लिए भगवान शिव ने उसे अपने कंठ में धारण कर लिया विष के प्रभाव से महादेव का शरीर तपने लगा तब देवताओं ने उनके ताप को शांत करने के लिए उन पर जल अर्पित किया था तभी से सावन में विशेष रूप से पहले सोमवार को शिवलिंग पर जल दूध गंगा जल बेलपत्र और धतूरा चढ़ाने की परंपरा है माना जाता है कि जलाभिषेक से भोलेनाथ जल्द प्रसन्न होते हैं जो भक्त सावन के प्रथम सोमवार को श्रद्धा पूर्वक शिवलिंग का अभिषेक करते हैं महादेव उनकी झोली खुशियों से भर देते हैं
1: श्रावण मास में ही समुद्र मंथन के समय हलाहल विष निकला था जिसको भगवान शिव ने उसका पान कर लिया था और उसको विष को कंठ में धारण कर लिया था तब से भगवान शिव जो नीलकंठ भी कहलाए विष पान के कारण उनके शरीर का ताप बहुत ज़्यादा बढ़ गया था उस समय सभी देवताओं ने मिलकर भगवान शिव का जो जलाभिषेक किया जिससे उनके शरीर का ताप कम हो सके तभी से जो है ये रुद्राभिषेक की जो है परंपरा चली आ रही है
0: आज देश का हर कोना शिवमय हो उठा है गुजरात के अरब सागर की लहरों के बीच स्थित प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ से लेकर मोक्षदायिनी नगरी काशी के काशी विश्वनाथ मंदिर तक हर तरफ आस्था का सागर उमड़ रहा है उज्जैन के महाकालेश्वर में तड़के हुई भस्म आरती के साथ ही अवंतिका नगरी शंख और डमरू की ध्वनियों से गुंजायमान हो उठी है तो झारखंड के बाबा बैद्यनाथ धाम में हजारों श्रद्धालु महादेव के दर्शन के लिए कतार में लगे हैं सावन के पहले सोमवार की असली रंगत कांवड़ियों के उत्साह में दिखती है हरिद्वार और प्रयागराज के पवित्र घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है कंधे पर कांवड़ लिए नंगे पैर सैकड़ों किलोमीटर की कठिन यात्रा तय करते शिव भक्तों का जज्बा देखते ही बनता है
2: जो अपनी कलश कांवड़ है ये 101 लीटर की है और ये जाएगी प्रयागराज से जी प्रतापगढ़ चिलबिला चौक बेलखरनाथ मंदिर पहले मुश्किल हुआ करती थी घर परिवारों में बड़ा बिखराव था लेकिन जब से भोलेनाथ के दरबार में जाने लगे तब से हमारा परिवार खूब खुशहाल है संपन्न है
0: जब जब सावन का पहला सोमवार आता है तब तब सिर्फ मंदिर नहीं सजते बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं के मन भी शिव भक्ति से अलौकिक हो उठते हैं जल की हर बूंद आस्था का हर भाव बेलपत्र का हर अर्पण और हर हर महादेव का हर उद्घोष महादेव के चरणों तक पहुँचने का जरिया बन जाता है सावन का ये पहला सोमवार हमें सिखाता है कि निश्चल भक्ति में कितनी शक्ति होती है भोले भंडारी तो भाव के भूखे हैं। एक लोटा जल और एक बेल पत्र से ही प्रसन्न होकर अपने भक्तों को अभय दान दे देते हैं। दिल्ली से आशुतोष कुमार और हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
3: वो कहते हैं ना, जीवन में कभी भी कोई संकट आए तो आप महादेव की शरण में चले जाइए, सारी समस्याओं का समाधान मिल जाता है। सावन का पहला सोमवार है तो देश के उन शिवालयों में सबसे ज्यादा भीड़ है जहां महादेव के प्रति आस्था रखने वाले हजारों लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। आपको देवघर लिए चलते हैं, देश के अलग अलग शहरों में लिए चलेंगे हर उस बड़े शिवालयों में जहां पर आज शंख भोले के भक्त पहुंचे हैं। तो देवघर लिए चलते हैं, वहां से हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और देवघर में आज सुबह का माहौल क्या दिखाई देता है हमें पता है, एक तो कांवड़ यात्रा शुरू हो जाती है, तो शैलेंद्र बताएं क्या माहौल दिख रहा है आपके पीछे?
4: देखिए, आज सावन मास की पहली सोमवारी है। यहाँ जो है बाबा बैद्यनाथ के दरबार में द्वादश ज्योतिर्लिंग है, ये उत्तर वाहिनी गंगा सुल्तानगंज से 105 किलोमीटर की यात्रा तय करके यहाँ आज श्रद्धालु बाबा को जल अर्पित करने के लिए पहुंचे हैं। तो ऐसी है कि यहाँ इस मंदिर को आज फूलों से, लाखों रुपए के फूलों से भी सजाया गया है। मंदिर परिसर में आज लाखों की भीड़ है। जिला प्रशासन का अनुमान है कि आज 2 लाख से अधिक कांवरिया पूजा करेंगे और कांवरिया के देखरेख के लिए पुलिस प्रशासन 10,000 पुलिस प्रशासन फोर्स को आज लगाया गया है, जिससे कहीं किसी भी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हो। जी
3: जी ठीक है, शैलेंद्र आप बने रहे हमारे साथ। संदीप कुलश्रेष्ठ के पास लिए चलते हैं, महाकाल की नगरी उज्जैन से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुबह की भस्म आरती के बाद श्रद्धालुओं का तांता वहां भी है। जरा उज्जैन कितना दिव्य दिख रहा है, जरा तस्वीरें दिखाइए।
5: जी बिल्कुल, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा किस तरह से श्रद्धालु है। और अभी हम महाकाल मंदिर में, आशुतोष जी मैं बताना चाहता हूँ, मेरे जस्ट पीछे आप देख रहे हैं कि महाकाल मंदिर का शिखर दिख रहा है और गर्भगृह में लगातार लाखों की लोग संख्या में दर्शन कर रहे हैं। सुबह तड़के 2:30 बजे से भगवान महाकाल ने दर्शन देना शुरू किए और देश और दुनिया के लाखों भक्त इस समय शिव के दर्शन कर अपने धन्य, अपने आप को धन्य मान रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं। भगवान आशुतोष जो कि भगवान शिव का एक नाम है कि जरा जल चढ़ाएं और भगवान प्रसन्न होते हैं। मंदिर समिति ने भी लगातार श्रद्धालुओं को सुलभ दर्शन हो सके उसके लिए पर्याप्त अरेंजमेंट किया है और 4 बजे पंडितों ने भगवान महाकाल को पंचामृत पूजन किया, दही दूध शक्कर और ये सारी सामग्री पूजन की लगाकर उन्हें भगवान को भस्मारती प्रारंभ की गई और फिर भगवान का सुंदर श्रृंगार किया। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि जो भक्तों की लाखों की भीड़ है वो उन्हें दिखाए और भगवान आज अपने श्रद्धालुओं को दर्शन देने के लिए प्रातः 2:30 बजे मतलब रोज से 1.5 घंटा पहले वो जगह है और लगातार ये देर रात मतलब सुबह 2:30 बजे से प्रारंभ हुए ये दर्शन लगातार रात के 11 बजे तक चलेंगे और लाखों जो ये सावन का पहला सोमवार
3: है। संदीप कुलश्रेष्ठ आप बने रहे हमारे साथ उज्जैन से। आपने हमारे तमाम उन दर्शकों को भी महाकाल की नगरी के दर्शन करा दिए जिन्होंने अपने टेलीविजन स्क्रीन के जरिए कम से कम उज्जैन की उस छटा को देख लिया। लेकिन अब आपको वाराणसी लिए चलते हैं, रोशन जायसवाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रोशन देखिए, किस्मत तो ये होती है कि आज सावन का पहला सोमवार है और आप बाबा के धाम में वहीं पर मौजूद हैं। बताइए क्या माहौल दिख रहा है वहां पर, कैसी है श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था?
6: ये देखिए, सावन जो महीना है वो पूरी तरह से काशमय हो जाती है बोलबम और हर हर महादेव घोष से।
7: और इस समय हम काशी विश्वनाथ मंदिर के गेट नंबर 4 पर मौजूद है और देख सकते हैं कि जो श्रद्धालुओं की संख्या है वे कल रात से भी यहाँ पर आना शुरू हो गई थी। हालांकि मंगला आरती के बाद से श्रद्धालुओं को यहाँ दर्शन, आम श्रद्धालुओं को दर्शन खोल दिया गया है और तब से लेकर लगातार बाबा अपने भक्तों को दर्शन दे रहे हैं और उनका जलाभिषेक कर रहे हैं, दुग्धाभिषेक कर रहे हैं, बिल पत्र चढ़ा रहे हैं। तो सावन का जो महीना है वह बेहद ही खास होता है। कहा जाता है कि सावन के महीने में द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक जो प्रधान शिवलिंग है बाबा काशी विश्वनाथ, उनके दर्शन मात्र से ही सारी मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है, सारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाती है और जो पाप है, जो इंसान के कष्ट है, इनका क्षय हो जाता है। तो यही वजह है कि मात्र एक लोटा जल के बाबा का जलाभिषेक करने के लिए आज न केवल देश बल्कि दुनिया के कोने कोने से शिव भक्त यहाँ पहुंच रहे हैं और गंगा स्नान कर रहे हैं, गंगा जल ले रहे हैं और सीधे बाबा के दरबार में आकर हाजिरी लगा रहे हैं। हालांकि मंदिर प्रशासन का दावा है कि वो जल्द से जल्द दर्शन कराने की पूरी कोशिश कर रहा है और मंदिर में व्यवस्थाएं भी तमाम की गई है जो दावे किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ भक्तों से अपील की जा रही है, क्योंकि पहला सोमवार है तो बहुत सारे जो भक्त हैं शिवभक्त हैं वे फलाहार खाकर या बगैर कुछ खाए पूरे व्रत के साथ निष्ठा के साथ आज का जो सावन का पहला दिन है सोमवार है उसको पूर्ण करते हैं। और मंदिर प्रशासन की तरफ से अपील की जाती है कि वे भक्तों इस तरह से बगैर कुछ खाए दर्शन न करें, क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त लग जाता है दर्शन में कतार में
3: और ऊपर से उमस और गर्मी है, तो ऐसे में प्रशासन की अपील भी सही है कि अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे दर्शकों को काशी वो नगरी भी दिखा दी। दिल्ली ले चलते हैं, मनीषा लड्डा हमारे साथ जुड़ रही है। मनीषा, कौन से मंदिर में हैं आप ये बताएं, और ऊपर से आज सावन के सोमवार में दिल्ली की छटा कैसी, अब तो कांवड़ यात्री भी जल लेकर के पहुंच रहे होंगे।
8: बिल्कुल आशुतोष, सावन का पहला दिन है, पहला सोमवार है और इस वक्त की जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ वो ऐतिहासिक गौरीशंकर मंदिर की तस्वीरें दिखा रही हूँ। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको यहाँ पर भक्तों का सैलाब जो है मंदिर परिसर के अंदर जो है वो दिखने वाला है। हालांकि सुबह की पहली किरण से पहले ही जो है मंदिर के बाहर लंबी लंबी लाइन जो है वो लगना शुरू हो गई थी, लेकिन अभी तक की अभी की आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से गौरीशंकर मंदिर में लोगों की उपस्थिति आपको जो है वो नजर आ जाएगी। चारों ओर आपको सिर्फ हर हर महादेव और बम बम भोले की जो जयकारे हैं वो सुनाई देंगे और इसी तरीके से जो भक्त है वो आपको नजर आने वाले हैं। हालांकि जो कावड़ है जो भोले हैं वो भी लगातार यहाँ पर जो है पहुंच रहे हैं अलग अलग पवित्र स्थानों से जल लेकर, तो कोई हरिद्वार से लेकर जल लेकर जो है वो यहाँ पर पहुंच रहा है, लेकिन हर कोई जो है एक आस्था के साथ यहाँ पर आपको नजर आएगा। सुख समृद्धि और अपने परिवार का जो स्वास्थ्य है उसके लिए मनोकामना जो है महादेव से मांगते हुए जो है आपको वो नजर आ जाएंगे। और आज दिन भर इसी तरीके का नजारा जो है देश भर के हर एक शिवालयों से जो है वो नजर आने वाला है। सबसे पहले तो मैं तस्वीरें आपको सीधा दिखाऊंगी कि किस तरीके से माँ गौरी और भगवान शंकर जी का जो श्रृंगार है वो किया गया है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, अंदर से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। हालांकि लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा है तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन मंदिर का नजारा बेहद ही अद्भुत इस वक्त जो है वो नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें जो है आपको मंदिर के बाहर और मंदिर के अंदर जो है वो नजर आने वाली। और ये मंदिर वाकई में बहुत प्राचीन है आशुतोष, 800 साल से ज्यादा पुराना ये मंदिर है और इसकी मान्यताएं उतनी ही ज्यादा पुरानी और लोगों के मन में जो विश्वास है वो अत्यंत है, क्योंकि कहते हैं कि ये मंदिर जो है मराठा समय में जो सैनिक थे अप्पा गंगाधर उन्होंने बनवाया था और उन्होंने महादेव के सामने जो है प्रार्थना करी थी कि युद्ध के समय में अगर आपका उनका जीवन अगर आप बचा लोगे तो मैं आपके लिए एक बहुत बड़ा जो है शिवालय बनाऊंगा, मंदिर बनाऊंगा। और भगवान शंकर ने उनकी ये प्रार्थना जो है वो सुनी थी और उसी के बाद इस मंदिर की जो है स्थापना की गई। और ये मंदिर उसी इतिहास विश्वास और अटूट श्रद्धा का एक उदाहरण है, एक संगम है जो यहाँ पर जो है वो देखने को मिलता है। हर कोई जो है मन में ढेर सारी आस्था के साथ आपको जो है यहाँ नजर आएगा। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा मंदिर जो है आपको हर हर महादेव और बम बम बोले की गूंज जो है आपको इस पूरे मंदिर में सुनाई देने वाली है। ये बाहर की तस्वीरें दिखा रही हूँ हालांकि मैं आपको कि किस तरीके से लंबी लंबी लाइनें जो है आपको इस मंदिर में नजर आने वाली और यही इस मंदिर की खासियत।
3: ठीक है मनीषा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। देखिए अच्छी बात यह रही ना कि आपने इस मंदिर का न सिर्फ महात्म्य बताया बल्कि ये इतिहास भी बता दिया कि 800 साल पुराना मंदिर। हमारे तमाम सहयोगी देश के अलग अलग शहरों से अलग अलग पवित्र नगरी से जुड़े थे। अब कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। महाकाल मंदिर की भस्म आरती हुई, सुबह की पूजा, सावन का पहला सोमवार और श्रद्धालु बड़ी संख्या में उमड़े। ये देखिए यदि उज्जैन से महाकाल की तस्वीरें आ रही हैं। महादेव की जयकार के साथ श्रद्धालुओं का तांता सुबह से

0: और उज्जैन के बाद आपको काशी नगरी लिए चलते हैं, भोलेनाथ की नगरी वाराणसी की तस्वीर आपको दिखाते हैं और देखिए कैसे सुबह से ही तड़के, दरअसल आधी रात से श्रद्धालुओं का तांता आपको दिखाई पड़ेगा। हजारों की संख्या में श्रद्धालु देश के अलग अलग कोने से काशी नगरी पहुंचे हुए हैं। सावन का पहला सोमवार है और कहते हैं आशुतोष महादेव एकदम जल्दी खुश हो जाते हैं एक लोटा जल से। ये देवघर की तस्वीरें, बाबा धाम की तस्वीरें, कांवड़ यात्री जो हैं अलग अलग घाटों से गंगा जल लेकर के पहुंचे हैं। गंगा जल अर्पित करते हुए, महादेव को खुश करते हुए, अपनी मन्नत मांगते हुए श्रद्धालुओं का ये हुजूम देवघर में, पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था के बीच ताकि श्रद्धालुओं की मनोकामना पूरी हो, वो दर्शन कर सकें, जल चढ़ा सकें और बाबा मंदिर पर ये व्यवस्था, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं श्रद्धालुओं की, जल अर्पित करते हुए श्रद्धालु अपनी मनोकामनाएं मांग रहे हैं। तो सावन का पहला सोमवार और वो तमाम शिवालय जो सनातनी श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र रहे हैं, देखिए एक लोटा जल और महादेव खुश। देश के अलग अलग के शिवालयों की तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं। तस्वीरें प्रयागराज से आई हैं। शिव के मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ पहुंची है। सावन के पहले सोमवार के प्रति आस्था, अपनी मन्नत लेकर के महादेव की पूजन के लिए, तो प्रयागराज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज के बाद आपको अयोध्या लिए चलते हैं। ये अयोध्या की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तड़के सुबह से ही श्रद्धालु, एक मान्यता ये भी होती है कि लोग खाली पेट जाते हैं इसके पहले कि वो जलपान करें, उसके पहले महादेव को जल चढ़ाने जाते हैं, दूध चढ़ाने जाते हैं, बेलपत्री चढ़ाने जाते हैं। जो परंपराएं हैं, जो महात्म्य हैं और उन्हीं के जरिए जो सनातन पद्धति है पूजा पाठ की, सावन के पहले सोमवार की जो मान्यता है, उन्हीं मान्यताओं के को लेकर ये श्रद्धालु बड़ी संख्या में अलग अलग शिवालयों में पहुंचे। ये अयोध्या की तस्वीरें हैं। सैकड़ों हजारों में महादेव के भक्त महादेव की पूजा के लिए शिवालयों की ओर जाते हुए।
1: आगे बढ़ते रहिए।

0: तो देश के अलग अलग शिवालयों की तस्वीरें हमने दिखाई और ये भी शुभकामनाएं आप सभी को कि महादेव आपकी मनोकामनाएं पूरी करें। रुक करते हैं अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशव्यापी नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ किया। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय के तहत मेरा युवा भारत की ओर से संचालित अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक कर स्वस्थ, जिम्मेदार और नशा मुक्त जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करता है।
1: क्योंकि आज जब देश ने
2: पीएम मोदी का नया अभियान नशा मुक्त हो हिंदुस्तान, जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नशे के खिलाफ एक मुहिम छेड़ने की अपील की है। पीएम ने नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान लॉन्च किया।
1: विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा, इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है।
2: पीएम ने संदेश दिया कि अगर विकसित भारत के लक्ष्य को पूरा करना है तो युवाओं की भागीदारी अहम है और युवा ड्रग्स जैसी आदत से मुक्त रहे।
1: विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, दूर हो।
2: पीएम मोदी ने अपील की कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए सबको साथ आना होगा।
1: लेकिन जब सामूहिक अभियान बन जाता है, कंधे से कंधा मिलाकर करोड़ों लोग चल पड़ते हैं, तो ऐसे सभी जो व्यक्तिगत रूप से कुछ अपने आप नहीं कर पाते हैं उनको भी एक नई ऊर्जा मिल जाती है। सामूहिकता की एक ताकत होती है और आज उस ताकत को लेकर के ये अभियान हर युवा मन को छूने वाला है।
2: पीएम ने बताया कि देश में नशे के कारोबार को बढ़ावा देने के पीछे इंटरनेशनल साजिश है। इस साजिश को तबाह करना हर युवा का मकसद होना चाहिए
1: और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं। ड्रग्स सप्लाई कर करके कमाई करना और हमारे जैसे देश को तबाह करना, ये भी उनकी आतंकी साजिश का हिस्सा होता है।
2: इस कार्यक्रम का मकसद युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना और उन्हें अपने समाज में बदलाव लाने के लिए आगे बढ़ाना है। ये अभियान अगले 100 हफ्तों तक जारी रहेगा। इसके तहत हर रविवार देश भर में अलग अलग कार्यक्रम होंगे जिनके जरिए लोगों को नशे के नुकसान के बारे में बताए जाएंगे और नशा मुक्त भारत का संदेश दिया जाएगा। आज तक ब्यूरो।
0: वक्त एक छोटे से ब्रेक का, खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
4: When your cat is acting weirder, or your dog is being louder, your turtle moves slower.
5: Hello, Ted.
4: Your cat seems thirstier.
6: Whoa, slow down, buddy.
4: Or your puppy is acting clumsy-er. Day or night, if you don't know what's wrong, know where to go.
5: Veg ER for Pets, this is Kate.
4: Veg, the better, kinder ER for Pets.
7: Mangal badal rahe hain apni chaal. Kiski badhne wali hain mushkilein aur kaun hone wala hai mala maal. सावन के पहले सोमवार का क्या है पूजा विधान और कैसे मिलेगा भगवान शिव से वरदान, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
4: When your cat is acting weirder, or your dog is being louder, your turtle moves slower.
5: Hello, Ted.
4: Your cat seems thirstier.
6: Whoa, slow down, buddy.

तीन विधानसभा सीटों पर आज फैसले का दिन। बांकीपुर सीट पर बीजेपी के नीरज कुमार और जनसुराज के प्रशांत किशोर के बीच टक्कर। दतिया और मांजनपुर में भी सुबह 8 बजे काउंटिंग। संसद के मानसून सत्र में आज फिर हंगामे के आसार। छात्रों पर एक्शन, चढ़ावा चोरी जैसे मसले पर विपक्ष का नॉनस्टॉप हल्ला बोल। आज फिर 10 बजे खरगे की अध्यक्षता में विपक्ष की बैठक। दिल्ली में पप्पू यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जबरदस्त हंगामा, हमले की कोशिश का आरोप। सांसद बोले, मेरी हत्या की साजिश थी, आरोपी गिरफ्तार। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में बड़ा आत्मघाती हमला, 14 लोगों की मौत, कई गंभीर रूप से घायल। शांति रैली के दौरान मची अफरा तफरी। और सावन का पहला सोमवार आज देशभर के शिवालयों में जलाभिषेक और पवित्र दर्शन जारी। तमाम मंदिरों में भारी भीड़, कांवड़ यात्रियों में भी उत्साह।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। मंगल देव अपनी राशि बदल रहे हैं और मंगल देव के इस राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव अलग अलग राशियों पर पड़ने वाला है, इस विषय में आज बात करेंगे। इसके अलावा सावन का पहला सोमवार है, सावन के सोमवार का पूजा विधान क्या होगा, इस पर भी चर्चा करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना विशेष है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग।

3 अगस्त 2026 दिन सोमवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, रात के 10:54 तक

में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 7:30 से लगभग 9 तक पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज बात कर रहे हैं मंगल देव के राशि परिवर्तन के बारे में। मंगल देव के राशि परिवर्तन की पूरी स्थिति क्या है, इसका प्रभाव क्या है, पहले ये समझते हैं। देखिए, मंगल अभी तक वृषभ राशि में विद्यमान थे, जो दूसरे नंबर की राशि है उसमें मौजूद थे। अब मंगल 2 अगस्त को रात के समय में मिथुन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। मिथुन राशि में मंगल की स्थिति को मध्यम माना जाता है, ना बहुत ज्यादा अच्छा ना बहुत ज्यादा खराब, लेकिन कुल मिला के ये स्थिति मंगल की कमजोर स्थिति है। तो मंगल की ये कमजोर स्थिति 18 सितंबर तक बनी रहेगी, यानी 2 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक मंगल देव मिथुन राशि में विद्यमान रहेंगे। और इस स्थिति में मंगल बहुत सारी समस्याओं को जन्म दे सकते हैं। दुनिया भर में जितने उपद्रव हैं, जितनी दुर्घटनाएं और विवाद हैं, उसके पीछे ज्यादातर मंगल होते हैं। इसीलिए मिथुन राशि का जो ये मंगल अब रहेगा, ये बहुत सारी समस्याओं का, बहुत सारी दिक्कतों का कारण बन सकता है। मंगल देव के राशि परिवर्तन का देश दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले। और सावन के पावन महीने का एक अचूक उपाय बताएंगे सावन सूत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, करियर में आपके समस्या हो सकती है, परिवार में विवादों से बचाव करें, संतान पक्ष का ध्यान रखें, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। मिथुन राशि, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा,
करियर की समस्या हल होगी, परिवार में मंगल कार्य के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। देखिए, मंगल एक ऐसा ग्रह है जो उपद्रव का, उत्पात का स्वामी है और बहुत जल्दी रिजल्ट दिखाता है या बहुत जल्दी रिजल्ट देता है। तो मंगल के इस राशि परिवर्तन का देश दुनिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, मंगल जिस समय राशि परिवर्तन कर रहे हैं उस समय मंगल और शनि परस्पर केंद्र में हैं, एक दूसरे से केंद्र में रहेंगे। अब ये समय दुनिया भर में अशांति फैला सकता है क्योंकि शनि लोकतंत्र का स्वामी है और मंगल उपद्रव का, निरंकुशता का स्वामी है। इसीलिए दुनिया भर में प्रदर्शन हो, दुनिया भर में जनता असंतुष्ट हो, दुनिया भर में उपद्रव हो, इसकी संभावना बनेगी। मंगल के राशि परिवर्तन से भयंकर दुर्घटनाएं, आतंकवादी घटनाएं और विस्फोट जैसी स्थिति बन सकती है। भारत की अपनी कुंडली में मंगल स्वयं मिथुन राशि में बैठे हुए हैं, इसलिए भारत में बेवजह की आंतरिक अशांति फैल सकती है। राजनैतिक रूप से बड़ा उथल पुथल हो सकता है, बहुत सारे बड़े पदों पर बैठे लोगों को अपना पद छोड़ना पड़ सकता है। जो तटीय इलाके हैं, समुद्र तट के इलाके हैं, मुंबई है, कोलकाता है, उड़ीसा है, तमिलनाडु है, इन तमाम जगहों पर प्राकृतिक आपदाओं की संभावना बनेगी और 18 सितंबर के पहले भूकंप के झटके भी देश दुनिया में महसूस किए जाएंगे। मंगल के राशि परिवर्तन पर चर्चा हमारी जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, पारिवारिक उलझने सुलझ जाएंगी, करियर में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पी।

समस्याएं बढ़ सकती हैं, धन का नुकसान हो सकता है, वाहन आज सावधानी से चलाइएगा। चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा ग्रीन।

राशि, करियर में सुधार होगा, धन का लाभ होगा, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न अविनाश जी ने हमें लिखा है और अविनाश जी हमें जयपुर से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 17 मई 1990। जन्म का समय रात में 11:52। जन्म स्थान है जयपुर, राजस्थान। अविनाश जी कह रहे हैं कि मेरा विवाह अब तक नहीं हो पाया है तो मेरे विवाह की क्या संभावना है और आने वाले समय में मेरा भविष्य कैसा रहेगा। अविनाश जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके विवाह का समय चल रहा है साल 2026 के अंत तक या 2027 के आरंभ तक आपका विवाह होगा। और जब भी विवाह करिएगा कुंडली मिला करके सोच समझ करके निर्णय लीजिएगा, क्योंकि आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कतों की संभावना बन रही है। आपका विवाह शीघ्र हो, बेहतर हो, इसके लिए एक मोती बनवा के पहन लें। 10-12 रत्ती की मोती चांदी में दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा के धारण करें। सुबह के समय जल में हल्दी मिलाकर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, आपको लाभ होगा। देखिए, मंगल का ये राशि परिवर्तन अलग अलग राशियों पर अब 2 अगस्त से लेकर 18 सितंबर तक प्रभाव डालेगा। तो आइए जानते हैं कि मंगल के राशि परिवर्तन का अलग अलग राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, मंगल का राशि परिवर्तन बहुत तेजी से अपना प्रभाव दिखा सकता है, बहुत तेज इसका प्रभाव आ सकता है। मेष राशि, सिंह राशि, कन्या राशि और मकर राशि के लिए ये परिवर्तन अच्छा है, इनके लिए अनुकूल रहेगा। इस समय इनके तमाम रुके हुए काम पूरे होंगे और इनको अपने कार्यों में इस समय सफलता मिलेगी। लेकिन इस समय इन लोगों को जल्दबाजी में और जोश में आकर निर्णय नहीं लेना चाहिए। इस समय शांति अगर बनाए रखें, आराम से निर्णय लें तो आपका समय अच्छा है। वृषभ, मिथुन, तुला, धनु और कुंभ राशि के लोगों के लिए ये परिवर्तन बहुत अच्छा नहीं है। तो इन राशि वालों को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और इस समय करियर में किसी भी तरह का कोई जोखिम, कोई रिस्क इनको नहीं लेना चाहिए। इस समय अगर आप करियर में कोई रिस्क लेंगे तो आपके लिए नुकसान होगा। मंगल का राशि परिवर्तन सबसे ज्यादा नकारात्मक है कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के लिए। इन लोगों को अपने पारिवारिक जीवन का, अपने व्यापार और रोजगार का ध्यान रखना होगा।
इस समय कर्क, वृश्चिक और मीन वाले दुर्घटनाओं से बचें, शल्य चिकित्सा का ध्यान रखें, कोई ऑपरेशन हो सकता है और बेवजह के झगड़े, लड़ाई, विवाद हो सकते हैं, मुकदमेबाजी की नौबत आ सकती है। अगर मंगल का राशि परिवर्तन आपके लिए अनुकूल नहीं है तो क्या उपाय करना चाहिए, इस पर बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, खान पान में सावधानी रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में अशांति से बचें, पैसे का नुकसान हो सकता है, धन की हानि हो सकती है। अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। अब अगर मंगल का ये राशि परिवर्तन आपके लिए अनुकूल नहीं है तो ऐसा क्या उपाय करें जिससे इस राशि परिवर्तन से दिक्कत ना हो। देखिए, मंगल का राशि परिवर्तन कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के लिए सबसे ज्यादा निगेटिव है। केवल चार राशियों के लिए ये परिवर्तन अच्छा है, मेष, सिंह, कन्या और मकर, इन चार राशि वालों के लिए मंगल का राशि परिवर्तन अच्छा है। बाकी की आठ राशि वालों के लिए मंगल का राशि परिवर्तन अच्छा नहीं है। इस समय रोज सवेरे सूर्य देव को जल चढ़ाइए, सादा पानी, प्लेन वाटर। सुबह और शाम एक एक बार संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करिएगा। संभव हो तो जब भी मौका मिले गुड़ का दान करिए और लाल रंग के कपड़े पहनने से, लाल रंग की वस्तुओं का प्रयोग करने से परहेज करिए। तो मंगल के राशि परिवर्तन के बाद अब आपको बताते हैं कि आज सावन का पहला सोमवार है। सावन का हर सोमवार अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण होता है।
पूरे सावन में सबसे ज्यादा महिमा सावन के सोमवार की मानी जाती है। तो आज सावन के पहले सोमवार पर क्या उपाय करेंगे? आज प्रयास करिएगा कि शिव जी की पूजा प्रदोष काल में की जाए, यानी सूर्यास्त के 24 मिनट पहले या 24 मिनट बाद में। प्रदोष काल में शिवलिंग पर बेलपत्र और जल की धारा अर्पित करिएगा और इसके बाद शिव जी के मंदिर में एक घी का दीपक जलाइएगा। दीपक जलाने के बाद शिवलिंग की एक बार परिक्रमा करिएगा। याद रखिए, शिवलिंग की पूर्ण परिक्रमा नहीं होती, शिवलिंग की अर्ध परिक्रमा की जाती है। इसके बाद शिव जी से मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करिएगा। तो आप सावन में कोई उपाय कर पाते हो या ना कर पाते हो, सावन के सोमवार पर, जैसे आज सावन का सोमवार है, तो आज प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा करें, आपकी कामनाएं पूरी होंगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी, कोई शुभ सूचना मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। कुंभ राशि, करियर में सफलता मिलेगी, धन की स्थिति में सुधार होगा, दूसरों के मामले में ना पड़े, शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा

पूर्ण काम बन जाएगा, धन संबंधी मुश्किलें दूर होंगी, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। हम सब जानते हैं कि शिव जी की पूजा बेलपत्र से करने पर कल्याण होता है, पापों का नाश होता है। क्या बेलपत्र से किसी और देवी या देवता की पूजा की जा सकती है? देखिए, बेलपत्र का प्रयोग अगर आप शिव पूजन में करें तो आपके कई जन्मों के पाप का नाश होता है, और बेलपत्र पूजा में रखने से धन समृद्धि की प्राप्ति होती है। भगवान शिव के अलावा अगर माता लक्ष्मी की पूजा आप बेलपत्र से करें तो आपका कल्याण होगा। अगर धन संबंधी बाधा जीवन में है तो माता लक्ष्मी को बेलपत्र अर्पित करने से धन संबंधी बाधा दूर हो जाती है। वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, करियर में बदलाव होगा। नंबर 2, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 3, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 4, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 5, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 6, कोई शुभ सूचना मिलेगी। नंबर 7, चोट चपेट से बचाव करें। नंबर 8, यात्रा के योग बन रहे हैं। और नंबर 9, करियर की समस्या हल होगी। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में शिव जी की कपूर से आरती करिएगा, आपको स्वास्थ्य और रोजगार की समस्याएं परेशान नहीं करेंगी, इन स्थितियों में सुधार होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई बड़ी मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज आपकी कोई परीक्षा है तो मिश्री खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, चीनी खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो शिव जी को जल चढ़ाइएगा, आपका काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है इलाज के लिए, चिकित्सा के लिए,
तो चंदन का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर कोई बड़ी खरीदारी करनी है, वाहन भूमि भवन, तो सफेद रुमाल अपने साथ में रखिएगा, आपको लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा।

वालों के लिए हर कार्य में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे। आज का दिन मंगलमय होगा। मिथुन राशि वालों के लिए स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन का लाभ होगा। आज सावधान रहना होगा, धनु राशि के लोगों को सेहत बिगड़ सकती है, चिंताएं बढ़ सकती हैं। अब जान लेते हैं कि आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है और आज के दिन क्या करें क्या ना करें। आज सावन का पहला सोमवार है। आज शिवलिंग पर जल अर्पित करिएगा और आज शाम के समय सूर्यास्त के बाद शिव मंदिर में घी का दीपक जलाइएगा, आपका कल्याण होगा। सावन का पावन महीना चल रहा है और इस महीने में ऐसा क्या करें जिससे जीवन में सफलता मिले, आइए जानते हैं सावन सूत्र में।

कल्याण चाहते हैं कि आपके संतान की उन्नति हो, तो सावन में जब भी मौका मिले एक पीपल का या एक बेलपत्र का पौधा लगाइएगा किसी सार्वजनिक स्थान पर, पार्क में, सड़क के किनारे पीपल का पौधा या बेलपत्र का पौधा लगाएं। जैसे जैसे वो पौधा उन्नति करेगा जीवन में खुशियां आती जाएंगी। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

बाकीपुर दतिया मांजलपुर विधानसभा उपचुनाव के वोटों की गिनती आज, दांव पर दिग्गजों के साथ। बिहार के बाकीपुर में बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार जनसुराज प्रत्याशी प्रशांत किशोर में टक्कर, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के सीट खाली होने के बाद उपचुनाव। प्रशांत किशोर ने प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप, कहा बांकीपुर उपचुनाव में प्रशासन का दुरुपयोग हुआ, पटना एसएसपी गैर पेशेवर, चुनाव आयोग से करेंगे शिकायत। बिहार के हाई प्रोफाइल सीट बांकीपुर में वोटों की गिनती को लेकर सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम, मतगणना केंद्रों में जाने वाले लोगों के लिए पास जारी किया गया। मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर कांग्रेस ने भारी मतों से जीत का दावा किया, अपने उम्मीदवार घनश्याम सिंह की जीत का दम भरा। आज से उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है, चढ़ावा चोरी, पेपर लीक, स्कूल बंद करने समेत कई मुद्दों पर सदन में हंगामे के आसार। मानसून सत्र से पहले सीएम योगी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, कहा लोकतंत्र में संवाद जरूरी है, जनहित के मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया कि यूपी में 10 साल में 26,000 से ज्यादा स्कूल बंद हुए हैं, जौहर यूनिवर्सिटी पर भी बीजेपी को घेरा। 5 अगस्त को जनेश्वर जयंती के मौके पर समाजवादी पार्टी करेगी भव्य ब्राह्मण सम्मेलन, चुनाव के मद्देनजर ब्राह्मण वोट बैंक पर भी सपा की नजर। बीएसपी से अशोक सिद्धार्थ को निष्कासित किया गया, अनुशासनहीनता के मामले में मायावती ने बाहर का रास्ता दिखाया। आज संसद में भी हंगामे के आसार हैं, चढ़ावा चोरी समेत कई मामलों पर सरकार को घेरने की तैयारी में जुटा है विपक्ष। विपक्ष के विरोध के बीच केंद्र सरकार आज संसद में एफसीआरए संशोधन विधेयक बिल पेश कर सकती है, कई एनजीओ ने भी इसका विरोध किया है। कावेरी जल विवाद में कर्नाटक के सीएम डीके शिवकुमार ने 13 अगस्त के बंद के खिलाफ अपील की है, कहा सरकार राज्य के हितों की रक्षा करेगी। पंजाब विधानसभा का मानसून सत्र भी आज से शुरू हो रहा है, 10 अगस्त तक सत्र चलेगा। यूपी में दिव्यांगजन को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आज से दिव्यांगजन रोजगार अभियान 3.0 शुरू किया जा रहा है। दिल्ली में पप्पू यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमकर हंगामा हुआ, पप्पू यादव का दावा चाकू लेकर मारने की कोशिश की गई, आरोपी को पकड़ा गया। पप्पू यादव पर कथित रूप से चप्पल फेंकने वाले शख्स का सोशल मीडिया पर तस्वीर आया, सीएम योगी के साथ तस्वीर में आरोपी का नाम हिमांशु शर्मा बताया गया। रांची में जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों का मशाल जुलूस देखने को मिला, अनियमितताओं के विरोध में उन्होंने आवाज उठाई, अब सीबीआई जांच की मांग हो रही है। रांची में छात्रों के प्रदर्शन पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि अब झारखंड का युवा जाग चुका है, कांग्रेस को समूल नष्ट करने का समय आ गया है। झारखंड के छात्रों के समर्थन में कांग्रेस जनता पार्टी भी आई, अभिजीत दीप ने कहा छात्रों से बात हुई है, सीजेपी उनकी मांगों का समर्थन करता है। रांची पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, सीएम योगी को गाली और जान से मारने की धमकी देने के मामले में कार्रवाई की गई है। जेन जी आंदोलन पर धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा देश में विरोध दर्ज कराना सभी का लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन प्रदर्शन के नाम पर अभद्र भाषा और अपशब्दों का इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत है। बरनाला में कांग्रेस की बैठक में हंगामा हुआ, चन्नी के समर्थन में नारेबाजी हुई, बैठक में राजा वडिंग और भूपेश बघेल भी मौजूद थे। कोलकाता में लेखिका तस्लीमा नसरीन ने भारत में यूसीसी लागू करने का समर्थन किया, बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी ऐसे कानून की जरूरत पर जोर दिया। ग्रीन एनर्जी में यूपी ने रास्ता दिखाया, पीएम सूर्यघर योजना में लखनऊ देश में नंबर 1 हो गया है, टॉप 100 में यूपी के 17 जिले शामिल हैं। कांग्रेस ने कर्नाटक कैबिनेट विस्तार के लिए 18 नामों को मंजूरी दिया, सुबह 10 बजे सीएम को अंतिम सूची भेजने की संभावना जताई गई। पुलवामा में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के संदिग्ध सहयोगी को गिरफ्तार किया, एक हैंड ग्रेनेड, एक आईफोन, 3 देश विरोधी पोस्टर और एक घड़ी भी बरामद की गई। कुलगाम में 2 प्रवासी मजदूर और अनंतनाग में पुलिसकर्मी की हत्या करने वालों की पहचान सार्वजनिक करने की फारूक अब्दुल्ला ने की मांग, कहा अगर बॉर्डर सील हैं तो आतंकवादी कहां से आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों के ठिकाने का खुलासा हुआ है, तलाशी अभियान के दौरान हिजबुल मुजाहिदीन का पोस्टर और आपत्तिजनक सामान जब्त किए गए। पाकिस्तान ने भारत से लगी सीमा पर तैनात किया चीन से मंगाई 250 होविजर तोपें, 72 किलोमीटर तक ये गोला दाग सकती है। टीएमसी के 3 बैंक खातों को फ्रीज करने के आदेश के खिलाफ अपील पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। देहरादून में रेलवे जमीन पर विवाद गहराया, नोटिस चस्पा करने से लोगों में आक्रोश, अधिकारियों के साथ तीखी नोकझोंक भी हुई। समस्तीपुर में 21 सितंबर से एनआईए कार्य को लेकर के ट्रेनों का परिचालन होगा रद्द, कुल 384 ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा। बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर का बड़ा बयान, कहा किसी भी धर्म का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है, भारत एक ऐसा देश है जहां सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है।
पटना के दीघा शमशान घाट पहुंचे तेजस्वी यादव, मृतक युवक के परिजनों से मुलाकात की, सम्राट चौधरी पर जमकर निशाना साधा। उत्तराखंड में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने भारी बारिश और सड़क पर गिरे पेड़ के बीच खुद संभाली कमान, आधे घंटे में नैनीताल हल्द्वानी हाईवे खुलवाया। कटरा रियासी हाईवे पर लैंडस्लाइड हुई, भारी बारिश से मलबा सड़क पर फैल गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ा, प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील। लद्दाख के कारगिल में भारी बारिश से चिप्तान और समरा इलाके में अचानक बाढ़ आई, कई निचले इलाकों में पानी भरा। यूपी के फर्रुखाबाद में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया, गंगा किनारे बसे करीब आधा दर्जन गांवों में कटान का खतरा भी बढ़ गया है। असम के शिवसागर में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए अभियान चलाया जा रहा है, सीआरपीएफ की मदद से लोगों तक भोजन पहुंचाया जा रहा है। सूरत का डुमास बीच भारी बारिश की वजह से बंद कर दिया गया, पुलिस की गश्त यहां पर तेज हो गई। केरलम के कई जिलों में भी जोरदार बारिश का दौर जारी है, कन्नूर में वालपट्टनम नदी के जलस्तर में भारी वृद्धि देखने को मिली है। कर्नाटक के कबिनी बांध से तमिलनाडु के लिए 12,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, भारी बारिश के बाद अचानक से पानी बढ़ा। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा बिलासपुर मार्ग पर पुल ढह गया, बस बीच में फंस गई, सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। जलंधर में मेयर की शुक्राना यात्रा में आपस में दो गुट भिड़ गए, बहसबाजी के बाद ही पत्थर चले, पुलिस मामले की जांच में जुटी। गाजियाबाद में दिनदहाड़ी चैन स्नेचिंग हुई, सीसीटीवी में वारदात कैद। सिंगरौली में महिला ने भांजे की गला दबाकर हत्या की, सीसीटीवी फुटेज ने घटना का राज खोला। गाजियाबाद की हाई राइज सोसाइटी में महिला मनोचिकित्सक की पांचवें मंजिल से गिरकर संदिग्ध मौत, पुलिस हर पहलू से मामले की जांच कर रही है। राजकोट में मिलावटी दूध का बड़ा भंडाफोड़ हुआ, 5400 लीटर मिलावटी दूध पुलिस ने नष्ट किया। उज्जैन में रतलाम कोटा पैसेंजर के इंजन पर 25,000 किलोवाट का तार गिरा, आग लगी लेकिन कोई जनहानि की खबर नहीं है। बिजनौर में 20 सड़क पर नाबालिग पर तमंचा ताना गया, दी जान से मारने की धमकी, वीडियो इसका वायरल हुआ। अमरावती में एमडी ड्रग्स जब्त की गई, 22 साल के युवक को गिरफ्तार किया गया, कार और मोबाइल समेत करीब 53 लाख रुपए का माल पुलिस ने बरामद किया। महाराजगंज में निर्माणाधीन सरोवर में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई, सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर कंस्ट्रक्शन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। रामगढ़ में बिजली गिरने से 3 महिलाओं की मौत हो गई, 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। वडोदरा में बारिश के कारण एक एक्टिवा फिसल गई, हादसे में 19 साल की युवती की मौके पर ही मौत हो गई। यूपी के महाराजगंज में 70 साल के बुजुर्ग ने 4 साल की बच्ची के साथ छेड़खानी की, ग्रामीणों ने आरोपी को पीटा, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बलिया में अश्लील वीडियो बनाने से डिप्रेशन में आकर नाबालिग बच्ची ने आत्महत्या कर ली, 2 युवक इस मामले में गिरफ्तार किए गए। रायबरेली में निर्माणाधीन बिल्डिंग का लिंटर भरभराकर गिर गया, गनीमत रहे कि सभी मजदूर बाल बाल बच गए। मेरठ एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई, आरोपी तमंचों को 21 अवैध तमंचों के साथ गिरफ्तार किया गया। बिहार के हाजीपुर में घर में सो रहे दिव्यांग बुजुर्ग की गला रेतकर हत्या कर दी गई, वारदात की गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस। बिहार के मुजफ्फरपुर में प्रेम प्रसंग में मां बेटी की निर्मम हत्या का खुलासा हुआ है, मुख्य आरोपी गिरफ्तार किया गया, 10 दिन बाद झाड़ियों से मासूम का शव बरामद किया गया। बिहार के मोतिहारी के चकिया में निर्मम हत्याकांड में खुलासा हुआ है, मृतक की पत्नी समेत 3 गिरफ्तार, आशिक के साथ वारदात को अंजाम दिया था। औरंगाबाद में कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या पर गुस्सा फूटा, दानापुर के गोला रोड पर नगर निगाह अधिकारियों ने शव के साथ सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। गोरखपुर जेल से 22 फीट ऊंची दीवार फांदकर कैदी भाग गया, रेप केस में आरोपी को गिरफ्तार किया गया था। सूरत में कार को ओवरटेक करने के चक्कर में एक ऑटो रिक्शा पलट गई, सीसीटीवी में घटना कैद हुई, लोगों ने ऑटो चालक को सुरक्षित बाहर निकाला। पालघर में नाले में गिरकर एक बुजुर्ग घायल हो गए, सीसीटीवी में पूरी घटना कैद हुई। अमरावती के दरियापुर में बंदूक और चाकू की नोक पर ज्वेलर्स की दुकान में डकैती हुई, 500 ग्राम सोना 13 किलो चांदी की लूट हुई। महाराष्ट्र के जालना में गोमांस बरामदगी पर हंगामा हुआ, बजरंग दल ने प्रदर्शन किया। हैदराबाद में नाबालिग ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए, सीसीटीवी में पूरी घटना कैद। आज सावन का पहला सोमवार है, काशी उज्जैन देवघर सहित अयोध्या में भी प्रशासन अलर्ट है, भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए भक्तों का तांता लगा है। देश भर के शिवालयों में सुबह से ही भक्तों की कतार देखने को मिल रही है, इस सावन में कुल 4 सोमवार पड़ेंगे। सावन के पहले सोमवार पर श्यामनाथ मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा, भोलेनाथ के जलाभिषेक के लिए देर रात से ही भक्तों की लंबी कतारें। कांवड़ यात्रा के चलते मेरठ में आज से 12 अगस्त तक स्कूल बंद रहेंगे, शिवालयों में जलाभिषेक को श्रद्धालु मर रहे हैं। हरिद्वार में 3 कांवड़ियों को एसडीआरएफ और पुलिस की संयुक्त टीम ने बचाया, कांवड़ यात्रा के दौरान हादसा हुआ था। हरिद्वार से मुजफ्फरनगर कांवड़ियों पर पहुंचे पुष्प वर्षा हुई, एडीजी ने कांवड़ियों का स्वागत किया।
सीकर के खाटू श्याम दरबार पहुंचे दिल्ली सरकार के मंत्री परवेश वर्मा, विधि विधान से पूजा अर्चना। बेतिया के एक शख्स ने बहादुरी की मिसाल पेश की, तालाब में डूबे बच्चे की जान बचाई। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का शानदार समापन हो गया, भारत को 2030 की मेजबानी की कमान भी मिल चुकी है। बॉलीवुड स्टार सनी देओल के बेटे करण देओल के साथ पटना साहिब गुरुद्वारा में मत्था टेका, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सरोपा सजा दिया। स्पाइडरमैन की धमाकेदार शुरुआत, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने पहले ही वीकेंड में दुनिया भर से $927 मिलियन की कमाई का रिकॉर्ड कमाया। फिल्म ने अमेरिका और कनाडा में $355 मिलियन कमाई, अब तक की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग बन गई है। टॉम हॉलैंड चौथी बार स्पाइडरमैन बने, उनकी वापसी को लेकर दर्शकों का जबरदस्त प्यार मिल रहा है। विदेशों में फिल्म ने $572 मिलियन कमाए, सबसे ज्यादा $121 मिलियन की कमाई चीन से हुई। फिल्म को क्रिटिक्स ने 90%, दर्शकों ने 98% रेटिंग दी है। दक्षिण फ्रांस में लगी जंगल की आग ने 100 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया, कई इलाकों से लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा रहा है। जंगल की आग पर काबू पाने के लिए 280 दमकलकर्मी आग बुझाने में जुटे हैं, 12 विमानों से पानी का छिड़काव हो रहा है। एक वाहन में लगी आग से भड़की ये पूरी घटना तेज हुई हवा और सूखे के कारण आग अब तेजी से फैल रही है। प्रशासन ने आसपास के इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजना शुरू कर दिया है। ऑस्ट्रेलियाई जूलॉजिकल पार्क में भी आग का खतरा मंडरा रहा है, यहां शुतुरमुर्ग समेत कई जानवर मौजूद हैं। ग्रीस में जंगल की आग बुझाने के दौरान एक फायर फाइटिंग हेलीकॉप्टर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनों में शांति रैली के दौरान धमाका हुआ, 15 लोगों की मौत, कई घायल। बांग्लादेश हाईकोर्ट से चिन्मय कृष्णदास को कई मामलों में जमानत मिली, लेकिन 4 दूसरे केस के कारण अभी भी जेल में रहेंगे। रूस की शैंडो फ्लीट टैंकर पर इटली की नौसेना का छापा, यूरोपीय संघ की कड़ी कार्यवाही का हिस्सा बताया जा रहा है। इसराइल का दावा, 7 अक्टूबर हमले में शामिल हमास कमांडर को ढेर कर दिया गया है।

0: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
1: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बाय एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी, हिंट बड़े आराम से।
2: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
3: द कांग्रेस गवर्नमेंट इन द सेंटर गॉट रिड ऑफ इट्स ओन गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ अ सीरीज ऑफ किलिंग्स इन पंजाब, इंक्लूडिंग मेनी प्रोमिनेंट पीपल। सो थिंग्स हैड गॉन रियली बैड इन पंजाब। कांग्रेस पार्टी वाज ट्राइंग टू से कि अकालीज हैव टू बी डिफीटेड, यू मस्ट नॉट अलाउ सम अदर फैक्शन ऑफ द अकालीज टू प्रॉप अप सो दैट वोट्स आर डिवाइडेड।
4: दे क्रिएटेड दिस फ्रैंकेनस्टाइन कॉल्ड भिंडरवाला।
5: जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिस कहानी के बहुत अच्छे परिणाम हैं और बहुत दुखद परिणाम हैं। भारत एक राजमहल है, समृद्ध है, सोने की चिड़िया है। गहरी बात है वो ये है कि इस राजमहल के चारों तरफ झोपड़ पट्टियां हैं, झुग्गियां हैं, चुनौती वाले क्षेत्र हैं। भारत आए अंग्रेज, यहाँ के लोगों को देखा उन्होंने, जब यहाँ के ग्रंथों को ट्रांसलेट करना शुरू किया, पढ़ा उन्होंने कि ब्राह्मण का जन्म मुंह से हुआ है। ये डिपार्टमेंट बनाया ही गया था शोषण के लिए। कौन सा? पुलिस। किसने बनाया था? कॉर्नवालिस ने। और पुलिस डिपार्टमेंट की खास बात यह है कि जब उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट भारत में बनाया, तब वो डिपार्टमेंट ब्रिटेन में नहीं था। जुडिशरी, मॉडर्न जुडिशरी उन्होंने अपने फायदे के लिए बनाया। अंग्रेजी कानून, अंग्रेजी जज। तुम कल्पना कर सकते हो आधुनिक काल से पहले LGBT सड़क पर आकर प्रदर्शन करें, इनको तोप में बांध के उड़ा दिया होता।
6: तो क्या सिर्फ अब हिस्ट्री सिर्फ जो बाहर से लोग आए थे यहाँ पे शासन करने के लिए उनको विलन के रूप में दिखा रहे हैं, या फिर
5: जो भी सरकार सत्ता में आती है वो शिक्षा का इस्तेमाल करती है अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने। वंदे मातरम पे बहस हो रही है, हर दिन मंदिर मस्जिद पे बहस हो रही है, मुसलमान पे बहस। ये संसद बनी किस लिए? औरंगजेब जो था भैया, डेली 200 किलो जनेऊ तोलता था। कितना? 200 किलो भी, मतलब डेली वो कम से कम 10,000 ब्राह्मणों को मारता था, हिंदुओं को। मैं देखता हूँ मुसलमानों को और हिंदुओं को, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ। पहले मैं सोचता था पुलिस वाले यहाँ लगा के पॉइंट ब्लैंक से क्यों मारते, क्योंकि यहाँ ताला लगा हुआ है, तो इसीलिए मारते कि यहाँ मारे तो अगले जन्म में खुला हुआ रहेगा।
7: आपको लगता है कि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद देश फिर बट सकता है?
5: इस बात को मैं रिपीटेडली कह चुका हूँ, एक विस्फोट होगा बेटा।
8: लेकिन आपके पढ़ाने के तरीके मुझे एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट लगता है कि आप जनता को ही बोल देते हैं कि जनता बड़ी बेवकूफ़ है, और फिर आप कहते हैं कि हमारे देश का युवा पढ़ना नहीं चाहता है।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: एक बार फिर जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने टारगेट किलिंग की, दो गैर कश्मीरी मजदूरों की हत्या की, सुरक्षा बल हमलावर आतंकियों की तलाश में जुटे। पुलवामा के केल्लम इलाके और आसपास सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन इस एक्शन के बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने आतंकी वारदात को अलग ही मुद्दे से जोड़ दिया। फारूक अब्दुल्ला ने सवाल किया कि जब भी उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग करती है, तभी ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं?
1: इसकी तहकीकात होनी चाहिए और ईमानदारी से तहकीकात होनी चाहिए, कौन मारने वाले। इससे पहले भी पुलिस वाले की उस पर अटैक हुआ है, मुझे नहीं पता ये क्यों उस वक्त होता है जब हम लोग स्टेटहुड मांग रहे होते हैं।
0: आतंकी वारदात के बीच फारूक अब्दुल्ला के सवाल पर सियासत भड़कते देर नहीं लगी। बीजेपी फारूक अब्दुल्ला और उनकी पार्टी पर हमलावर हो

0: एक बार फिर जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने टारगेट के लिए दो गैर कश्मीरी मजदूरों की हत्या की। सुरक्षा बल हमलावर आतंकियों की तलाश में जुटे। पुलवामा के केल्लम इलाके और आसपास सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन इस एक्शन के बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने आतंकी वारदात को अलग ही मुद्दे से जोड़ दिया। फारूक अब्दुल्ला ने सवाल किया कि जब भी उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग करती है, तभी ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं?
1: इसकी तहकीकात होनी चाहिए और ईमानदारी से तहकीकात होनी चाहिए, कौन मारने वाले। इससे पहले भी पुलिस वाले की उस पर अटैक हुआ है। मुझे नहीं पता ये क्यों उस वक्त होता है जब हम लोग स्टेटहुड मांग रहे हैं।
0: आतंकी वारदात के बीच फारूक अब्दुल्ला के सवाल पर सियासत भड़कते देर नहीं लगी। बीजेपी फारूक अब्दुल्ला और उनकी पार्टी पर हमलावर हो गई। वहीं कांग्रेस को इस बयान के बहाने केंद्र सरकार को घेरने का मौका मिल गया।
2: देखिए, पाकिस्तान को क्लीन चिट देना इन नेताओं की सोच में हमेशा रहता है, और हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के इशारे के ऊपर ही यहां पर अटैक्स होते रहे हैं। आज अगर हम लोग सुरक्षित हैं तो इन एजेंसीज के कारण जिनके ऊपर दोषारोपण इनके माध्यम से हो रहा है, सीमा पर प्रहरी बनकर रक्षा करने वाले हमारे सैनिक, सुरक्षा बल के लोग जिनके कारण घरों में हम लोग सुरक्षित हैं, और आज इन परिस्थितियों में ये लोग भी, ये जो बड़े नेता अपने आप को कहते हैं अगर सुरक्षित हैं तो इन एजेंसीज के कारण, इन सुरक्षा बलों के लोगों के कारण, इस पुलिस के कारण, आज उन्हीं के ऊपर दोषारोपण किया जा रहा है।
3: और इस तरह की बातें जो हैं वो चौंकाने वाली हैं। एक तरफ से केंद्र सरकार दावे करती है कि हालात बिल्कुल काबू में है, नॉर्मलसी है, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के पास है, और सिक्योरिटी बंदोबस्त इतने मजबूत होने चाहिए। इस वक्त अमरनाथ यात्रा चल रही है और उस वक्त ये वारदातें, पहले भी एक वारदात हुई, और इस तरह का अंजाम देने से ये वो बताते हैं कि उनकी प्रेजेंस है।
0: अभी स्टेटहुड को लेकर फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बवाल छिड़ा ही था कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए लंबी लड़ाई का दावा कर इस विवाद को और भड़का दिया।
4: हम भी जानते हैं ना, अब एक दिन में जंतर मंतर जाके हमें कोई स्टेटहुड मिलने वाला नहीं था। लाखों में स्टूडेंट्स आए, उन्हें भी 25 दिन लगे। हमें भी ये सिलसिला चलाना ही पड़ेगा, कुछ जम्मू कश्मीर के अंदर, कुछ दिल्ली आके, सिलसिला चलता रहेगा जब तक। और हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं जिसका हमारे साथ वादा ना किया गया हो।
0: उधर इस बयानबाजी के बीच मजदूरों को टारगेट कर जम्मू कश्मीर में हुआ ये हमला इसीलिए बेहद गंभीर और चिंताजनक है क्योंकि ऐसी आतंकी वारदात करीब 4 साल बाद दोहराई गई है, जिसके बाद से सुरक्षा एजेंसियां भी काफी चौकन्ना हो गई। आतंकी संगठन लश्कर से जुड़े संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF ने कुलगाम में हुए हमले की जिम्मेदारी ली, जिससे साफ है कि इस हमले की साजिश सीमा पार से रची गई। सुरक्षा एजेंसियां आतंकियों की धरपकड़ में लगी हैं, लेकिन इस बीच फारूक अब्दुल्ला के बयान पर नई सियासी जंग भी शुरू हो गई है। मीर फरीद

0: साथ आज तक ब्यूरो।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

बांकीपुर, दतिया और मांझलपुर सीट के उपचुनाव में आज फैसले का दिन। अध्यक्ष नितिन नवीन के गढ़ में बीजेपी की अग्नि परीक्षा, प्रशांत किशोर की साखबिदाओं पर। संसद के मानसून सत्र में आज फिर हंगामे के आसार, छात्रों पर एक्शन, चढ़ावा, चोरी जैसे मसले पर विपक्ष का नॉनस्टॉप हल्ला बोल। सुबह 10 बजे खड़गे की अध्यक्षता में विपक्ष की बैठक। भगवा भेष में चढ़ावा नाटक के बाद पप्पू यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस में जमकर हंगामा, हमले की कोशिश का आरोप। सांसद बोले हत्या की थी साजिश, आरोपी गिरफ्तार, अब तक दर्ज नहीं हुई FIR। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में बड़ा आत्मघाती हमला, 15 लोगों की मौत, कई गंभीर रूप से घायल। शांति रैली के दौरान मची अफरा तफरी। और सावन का पहला सोमवार आज देश भर के शिवालयों में जलाभिषेक और पवित्र दर्शन जारी, तमाम मंदिरों में भारी भीड़, कांवड़ यात्रियों में भी उत्साह।

0: सुबह के 8 बज चुके हैं और अब वक्त है खास बुलेटिन सुपर 8 का। आपके साथ मैं हूं आशुतोष मिश्रा। इस बुलेटिन में तमाम अहम खबरें दिखाएंगे। सबसे पहले 3 राज्यों में हो रहे मतगणना की बात करेंगे, आपको बताएंगे कि बांकीपुर में क्या हो रहा है, खबर संसद की भी दिखाएंगे जहां आज भी हंगामे के आसार हैं, साथ ही पप्पू यादव पर हमले की खबर भी आपको दिखाएंगे। बात करेंगे बिहार में हुई एक अधिकारी की हत्या की, रांची में छात्रों का प्रदर्शन चल रहा है उस पर भी हम आपको एक अपडेट देंगे, और बुलेटिन में बात करेंगे जम्मू कश्मीर में हुई तबाही की भी, तस्वीर दिखाएंगे सावन के पहले सोमवार की भी। तो इस बुलेटिन में सबसे पहले बड़ी खबर 3 राज्यों में 3 सीटों पर हुए उपचुनाव की। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि 3 सीटों पर मतगणना शुरू हो चुकी है, कुछ ही घंटे में जनादेश साफ हो जाएगा। आज फैसले का दिन है, 3 सीटों पर वोटों की गिनती हो रही है। बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात की मांजलपुर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के वोटों की गिनती हो रही है। 3 सीटों पर 30 जुलाई को वोटिंग हुई थी और आज फैसले की घड़ी है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है, शुरुआत हो चुकी है, कुछ ही देर में ईवीएम में दर्ज वोटों की गिनती भी होने वाली है। चुनाव आयोग ने 3 राज्यों में शांतिपूर्ण तरीके से गिनती सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा के कड़े और व्यापक इंतजाम किए हैं। बांकीपुर दतिया में दिलचस्प मुकाबला है, वो इसलिए क्योंकि हाल ही के छात्रों के प्रदर्शन के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद ये अहम चुनावी नतीजे होंगे। ये 3 आपको अलग अलग तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर तैयारियां की गई हैं, काउंटिंग शुरू हो चुका है, काउंटिंग के साथ साथ भारी सुरक्षा इंतजाम भी किए गए हैं। बांकीपुर में भी सबकी ज्यादा नजर है क्योंकि नितिन नवीन की वो सीट जो उनकी पारंपरिक सीट रही बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद, वहां पर चुनावी मैदान में बीजेपी के उम्मीदवार को टक्कर दे रहे हैं जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर। इसी के साथ साथ दतिया में भी सस्पेंस बरकरार है, जहां बीजेपी के अंदर भी घमासान मिटला टिकट को लेकर के, वहीं कांग्रेस ने भी अब उम्मीदवार उतारे हैं। तो ऐसे में यह त्रिकोणीय मुकाबला है, बेहद है। तो आपको ये भी बता दें आखिर कहां कहां पर कैसे हैं, हम आपको 3 तस्वीरें देखें। तो 3 राज्य, 3 विधानसभा सीट और फैसले का दिन है। तो आपको बताते हैं कि इन 3 सीटों पर जो मुकाबला है वो किनके बीच है। बांकीपुर, दतिया और मांजलपुर में जो मतगणना हो रही है वहां किन उम्मीदवारों की किस्मत जोरदार है, जिन पर दांव है, मुकाबला कितना दिलचस्प है। बांकीपुर बिहार, दतिया मध्य प्रदेश, मांजलपुर गुजरात, 3 राज्य, 3 सीटें, त्रिकोणीय मुकाबला हर जगह, बीजेपी आरजेडी जनसुराज के बीच जो कड़ी टक्कर है वो आपको बांकीपुर में देखिए कौन है। नीरज कुमार बीजेपी की ओर से उम्मीदवार हैं, रेखा कुमारी आरजेडी की ओर से उम्मीदवार हैं, तो प्रशांत किशोर भी किस्मत आजमा आ रहे हैं जनसुराज पार्टी। तेजस्वी यादव कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। तो तेजस्वी यादव को आप सुन रहे थे। बांकीपुर का मुकाबला बेहद दिलचस्प है, पहले उम्मीदवार ने जब वापस हाथ खींचे तो बीजेपी की ओर से दूसरे उम्मीदवार आए, आरजेडी ने भी अपने उम्मीदवार उतारे हैं, तो प्रशांत किशोर कितनी टक्कर दे पाएंगे उस पर नजर बनी रहेगी, और इसीलिए बिहार का यह मुकाबला बेहद दिलचस्प है। लेकिन अब आपको मध्य प्रदेश लिए चलते हैं। दतिया का मुकाबला इतना महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि आशुतोष तिवारी बीजेपी की ओर से उम्मीदवार, आपको याद होगी, इसको लेकर के एमपी के जो बड़े बीजेपी नेता थे उनके बीच घमासान मच गया था, और फिर घनश्याम सिंह कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार हैं। अब यहां जो भी नतीजा आता है वो मध्य प्रदेश की आगे की राजनीति तय करेगा। लेकिन आपको मध्य प्रदेश के बाद गुजरात ले चलते हैं। गुजरात का मुकाबला इसलिए दिलचस्प है, सत्येंद्र भाई पटेल बीजेपी के उम्मीदवार हैं, तो कांग्रेस की ओर से भीखा भाई रबारी। अब ये सीटें भी, क्योंकि आपको याद रहे अगले साल लगभग 1-1.5 साल के बाद गुजरात में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, और ऐसे में उपचुनाव कई बार नैरेटिव पर्सपेक्टिव सेट करने में बहुत भूमिका अदा करते हैं, तो ऐसे में गुजरात का भी ये जो मुकाबला है कांटे का मुकाबला है, और कई बार उपचुनावों को अलग नतीजे से पढ़ा जाता है। पहलू क्या रहे, हाल ही में आंदोलन हुआ, इसी के साथ क्या कोई एंटी इनकंबेंसी है, इन तमाम पहलुओं को अगर देखेंगे तो ये चुनाव बेहद दिलचस्प हो जाते हैं। यानी मतगणना शुरू हो चुकी है और इसी मतगणना के साथ 31 राउंड की मतगणना होगी, तब नतीजा आएगा। एक राउंड में 14 टेबल पर 14 ईवीएम में पड़े मतों की गिनती होगी। पटना के एएन कॉलेज में काउंटिंग सेंटर बनाया गया है, हम बात कर रहे हैं बिहार में जो बांकीपुर की विधानसभा सीट है जहां पर जो काउंटिंग होगी, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, तस्वीरें भी सुबह से आने लगी हैं, मतगणना केंद्रों की तस्वीरें आप देख रहे हैं भारी व्यवस्था के बीच, और बांकीपुर में 31 राउंड की मतगणना होगी। तो आपको सीधे 3 राज्य लिए चलते हैं, 3 जगहों पर यह कांटे का मुकाबला कितना दिलचस्प है। शशिभूषण हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं, अतुल तिवारी अहमदाबाद से हमारे साथ, गुजरात से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और रवीश पाल सिंह, क्योंकि दतिया का मुकाबला भी बेहद दिलचस्प है, सीधे पहले पटना लिए चलते हैं। शशिभूषण, पटना का मुकाबला ये सिर्फ पाटलिपुत्र की लड़ाई नहीं, कहते ना कि कई बार कोई उपचुनाव निशान छोड़ जाते हैं। जिस तरह बांकीपुर की चर्चा हुई, बीजेपी ने उम्मीदवार बदला, जन सुराज के प्रशांत किशोर की एंट्री होती है, आरजेडी ने उम्मीदवार उतारा है, तैयारियां कैसी हैं और बस क्या है, अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है?
1: देखिए आशुतोष, 8 बज चुके हैं, तो जाहिर तौर पे जो चुनाव आयोग ने समय तय किया है काउंटिंग का, वो समय आ चुका है। मतलब अंदर जो मतगणना की प्रक्रिया है वो धीरे धीरे शुरू हो चुकी है। जैसा हम बता रहे हैं कि 31 राउंड में मतगणना पूरी होनी है बांकीपुर विधानसभा सीट की, और इस वक्त मैं खुद एएन कॉलेज, जो पटना का एएन कॉलेज है, वहां पर ही स्ट्रांग रूम बनता है हर बार जो चुनाव होते हैं, तो इस बार भी बाई इलेक्शन में यहीं पर स्ट्रांग रूम बना है और वहीं पर मौजूदगी है हमारी। बांकीपुर सीट इस लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है आशुतोष, जैसा आप खुद बता रहे थे कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की ये परंपरागत सीट रही। जब वो राज्यसभा गए तो उन्होंने इस्तीफा दिया और फिर यहां पर बाय इलेक्शन जो है इसी वजह से हो रहा है कि नितिन नवीन अब विधायक नहीं है इस सीट से। बीजेपी ने पहले अभिषेक बंटी को उम्मीदवार बनाया था, व्यक्तिगत कारणों से अभिषेक बंटी ने नामांकन से इनकार किया, उम्मीदवारी से इनकार किया, तो फिर नीरज सिन्हा को उम्मीदवार बनाया। लेकिन इस चुनाव में अगर चर्चा हो रही है बांकीपुर की तो सिर्फ 2 वजहों से हो रही है आशुतोष। एक जो है वो नितिन नवीन, चूंकि उनकी परंपरागत सीट और बीजेपी का किला मानी जाती है बांकीपुर, और दूसरा प्रशांत किशोर पहली दफे चुनाव लड़ रहे हैं। 25 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद है, रेखा गुप्ता भी हैं जो महिला उम्मीदवार हैं आरजेडी की तरफ से। देखना होगा कि जो अब तक दावे हो रहे थे और जो मतदान हुआ 30 जुलाई को, उसके बाद अब वाकई क्या जमीन पर वो दावे आज दिखते हैं।
0: नहीं, दो और चीजें मुझे बताएगा, यहां तो किस्मत का फैसला ये भी होगा ना कि बीजेपी का सीएम बना है सम्राट चौधरी के बाद, ये पहला चुनाव है, उन्होंने कितनी मेहनत की है। और अभी प्रशांत किशोर का मैं देख रहा था, कल वो आरोप लगा रहे लोकल प्रशासन पर स्पीड कर कि आपने तो पूरे चुनाव में एक तरफा पक्ष दिखाया, रवैया दिखाया है, क्या उसका भी असर, ये सारे पहलू भी हैं इस समय चर्चा में?
1: देखिए 3 अलग अलग डायमेंशन हैं जैसा आप बता रहे थे, आप पूछना चाह रहे थे। एक तो नितिन नवीन की साख दांव पे है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं और उनकी खाली हुई सीट पर क्या बीजेपी फिर वही प्रदर्शन कर पाती है, पहला। दूसरा, बीजेपी का राज्य में पहली दफे अपना मुख्यमंत्री बनता है, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री है, उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला चुनाव है, तो इस चुनाव को लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है। प्रशांत किशोर जो जेडीयू से अपनी राजनीति जिन्होंने शुरू की, बाद में जनसुराज बनाई, पिछले चुनाव में हमने देखा बहुत बुरा प्रदर्शन रहा उनकी पार्टी का, लेकिन इस सीट पे बहुत मेहनत करी है उन्होंने, और उनकी राजनीतिक साख या वो क्या परफॉर्म करते हैं उनका राजनीतिक भविष्य तय करेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात आशुतोष, तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, उसका क्या होगा अगर प्रशांत किशोर ही मुकाबले में रहते हैं या प्रशांत किशोर चुनाव जीतते हैं, बीजेपी हारती है, बीजेपी जीतती है, प्रशांत किशोर हारते हैं, दोनों परिस्थितियों में क्या तेजस्वी यादव नंबर 2 की स्थिति में अपनी पार्टी को रख पाते हैं, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। और यहीं से मुझे ऐसा लगता है कि इस बाय इलेक्शन के रिजल्ट से बिहार में आगे अपोजिशन की जो पॉलिटिक्स है, विपक्ष की राजनीति, उसकी दिशा और दशा दोनों बदलेगी।
0: कई बार उपचुनाव इस तरह के नतीजे, लेकिन आप बने रहे शशभूषण हमारे साथ। पूर्वी भारत के बाद आपको मध्य भारत लिए चलते हैं। मध्य प्रदेश में भी एक उपचुनाव हो रहे हैं, दतिया में मतगणना शुरू हो चुकी है, पहले डाक मतपत्रों की गिनती होगी, दतिया में कुल 15 राउंड का काउंटिंग होगा और इस सीट पर मुख्य मुकाबला बीजेपी के आशुतोष तिवारी और कांग्रेस के घनश्याम सिंह के बीच में है। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव 2023 में हारे पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की जगह आशुतोष को टिकट दिया है। कांग्रेस ने दतिया राजघराने से आने वाले घनश्याम सिंह को प्रत्याशी बनाया है। दतिया उपचुनाव में कुल 2,20,410 मतदाताओं में से 1,57,473 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया था। तो कांग्रेस के घनश्याम सिंह से बीजेपी के आशुतोष की टक्कर होगी। तो सीधे रवीश पाल के पास आपको लिए चलते हैं। रवीश, ये मुकाबला इसलिए भी दिलचस्प हुआ कि यहां उम्मीदवारों के बीच की लड़ाई से ज्यादा नरोत्तम मिश्रा खुद मैदान में आ गए थे, बाद में ऐसा लगा कि उन्होंने खुद ही सरेंडर समर्पण कर दिया, लेकिन अंदर खाने कुछ और खिचड़ी पकी है या लड़ाई वाकई में पार्टी पूरी उसी समर्पण के साथ हुआ है?
2: देखिए, बात जब अंदर खाने की हो तो बड़ी खबर निकल के सामने ये आ रही है कि दोनों ही राजनीतिक दलों को इस बात का डर सता रहा था कि भीतर घात ना हो, और इसका पहला नतीजा नतीजों के पहले आ गया है। आज मतगणना शुरू हुई है, लेकिन कल देर रात को कांग्रेस ने बड़ा एक्शन लिया। जिस राजेंद्र भारती की वजह से, जिन्होंने नरोत्तम मिश्रा को हरा करके 2023 में यहां से विधानसभा की सदस्यता ली थी और उनकी सदस्यता चले जाने के बाद ही उपचुनाव हो रहे थे, उस राजेंद्र भारती को कल रात को कांग्रेस ने निलंबित कर दिया। आरोप क्या है? कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार घनश्याम सिंह ने आरोप लगाया है कि राजेंद्र भारती ने भीतरघात किया है नरोत्तम मिश्रा समर्थकों के साथ मिलकर, भाजपा के साथ मिलकर के। तो डर बीजेपी को ज्यादा था भीतरघात का, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद जो बवाल हुआ और जो बातें कयास लगाए गए, हालांकि बाद में नरोत्तम मिश्रा सामने आए, उन्होंने खुद कहा कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक जो है वो आशुतोष तिवारी के लिए प्रचार करेंगे, लेकिन नतीजे बताएंगे कि हुआ क्या है आखिरकार। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि ये ऐसा चुनाव है दतिया का जहां पे उम्मीदवार की हार जीत से कहीं ज्यादा तीन दूसरे चेहरों पे, जो चुनाव में सीधे तौर पे शामिल नहीं है, उनके चेहरे के राजनीतिक भविष्य पे चिंता होने वाली है, बात होने वाली है। मोहन यादव,
0: ठीक है रवीश, बड़ी खबर आपने ये दी कि अंदर खाने में डर का हार जो थी वो किसी और को डर सता रहा था, लेकिन रात बीतते बीतते काफी बातें बदल गई। मध्य भारत के बाद आपको पश्चिम भारत लिए चलते हैं। तीसरी सीट वडोदरा की है, गुजरात के वडोदरा की मांजलपुर, जहां 30 जुलाई को वोट डाले गए थे, वहां भी मतगणना शुरू हो गई है। मांजलपुर में मात्र 37.7% वोट पड़े। वहां बीजेपी के सतीश पटेल और कांग्रेस के भीखाभाई रबारी के बीच सीधी कांटे की टक्कर है। मांजलपुर विधानसभा सीट से साल 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के योगेश पटेल ने जीत दर्ज की थी, लेकिन योगेश पटेल के निधन के बाद मांजलपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ। वडोदरा की मांजलपुर सीट बीजेपी का गढ़ रही है। साल 2012, 2017, 2022 में लगातार बीजेपी से योगेश पटेल ने जीत हासिल की थी और अब वहां पर एक बार फिर उपचुनाव हो रहे हैं। तो वहां पर क्या हाल है? अतुल तिवारी हमारे सहयोगी वहीं से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अतुल, गुजरात और खासकर वडोदरा ज्यादातर सीटें बीजेपी का पारंपरिक गढ़ रही हैं। इस पारंपरिक गढ़ में उपचुनाव में कांग्रेस कितनी सेंध लगाने की संभावना रखती है?
3: देखिए, मांजलपुर विधानसभा सीट के लिए जो उपचुनाव हुआ है उसमें सबसे दिलचस्प जो बात है कि बीजेपी के ही उम्मीदवार जो 2022 में जो विजेता थे योगेश पटेल, जिनके निधन के बाद यहां पे उपचुनाव हो रहा है, लेकिन जब 2022 में बीजेपी ने इस सीट से जीत दर्ज की थी तब योगेश पटेल के पास 1,00,000 से भी ज्यादा वोटों की लीड थी, लेकिन जब 30 जुलाई के दिन उपचुनाव हुए और मतदान हुआ तब मात्र 82,000 जितने ही मतदाता वोटिंग बूथ तक पहुंचे और उन्होंने मतदान किया है। ऐसे में एक बात सब स्पष्ट है कि लगभग 1,00,000 से भी ज्यादा जो लीड 2022 में बीजेपी ने हासिल की थी उतने भी वोट इस बार नहीं पड़े हैं। ऐसे में लगातार बीजेपी के लिए भी कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय है और कांग्रेस के लिए भी कहीं ना कहीं एक उम्मीद है कि इस बार शायद परिणाम कहीं पलटने में कांग्रेस को भी कामयाबी मिल सकती है। लेकिन बीजेपी की बात करें तो मुख्यमंत्री से लेकर उपमुख्यमंत्री, जिला और प्रदेश स्तर और साथ ही में कैबिनेट मंत्रियों ने भी इस उपचुनाव के लिए प्रचार किया है, लेकिन अब जब आज काउंटिंग शुरू हो चुका है ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के दोनों उम्मीदवार के बीच में सीधी कांटे की टक्कर है। इस परिणाम से गुजरात विधानसभा और खास करके सरकार पर कोई सीधा असर तो नहीं होने वाला है, लेकिन आने वाले साल में जब गुजरात में अब विधानसभा के चुनाव भी आयोजित होने वाले हैं, ऐसे में ये उपचुनाव परिणामों पर सबकी नजर है। खास करके कांग्रेस को एक उम्मीद है, लेकिन बीजेपी की साख दांव पर है, क्योंकि ये बीजेपी।
0: बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए हमारे तमाम सहयोगी। इन तीनों सीटों पर हमारी नजर बनी रहेगी, जैसे भी नतीजे आते रहेंगे, ट्रेंड आते रहेंगे, हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन एक तरफ उपचुनाव तो दूसरी तरफ दूसरी लड़ाई सदन में हो रही है। राज्यसभा और लोकसभा में विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स की बैठक अब से 2 घंटे बाद होने जा रही है। सुबह 10 बजे संसद में राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में ये बैठक होगी। बैठक में चल रहे सत्र के दौरान विपक्षी दल अपनी रणनीति पर चर्चा करेंगे, सरकार को घेरने पर मंथन करेंगे।
4: आप अगर बैठ जाएंगे तो हम सदन चलाने के लिए कोशिश करेंगे।
5: संसद का मानसून सत्र आज 11वां दिन है। बीते 10 दिनों की कार्रवाई में जिस तरह से विपक्ष ने तेवर दिखाए हैं उससे साफ है कि आज 11वां दिन भी हंगामेदार होगा। टकराव के कई मुद्दे हैं। सबसे पहला तो ये कि निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पर हमला। दूसरा मुद्दा राम मंदिर चंदा चोरी का है। तीसरा मुद्दा छात्र आंदोलन के दौरान हुए एक्शन पर गृह मंत्री के बयान की मांग है। चौथा ये कि राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस है। और पांचवा मुद्दा परिसीमन को लेकर राहुल के बयान का है। इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच टकराव जारी है। विपक्ष अभी इन्हीं दावों के सहारे संसद से सड़क तक सरकार को घेरने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। कांग्रेस और अन्य दल छात्रों पर हुए पुलिसिया एक्शन को लेकर लगातार गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे हैं। वहीं बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर राहुल के कुछ बयानों को लेकर कार्रवाई की मांग की है। लेकिन आज 11वें दिन फिर से संसद परिसर के अंदर और बाहर वैसी ही हंगामे की तस्वीर दिखने की पूरी संभावना है। केंद्र सरकार लोकसभा और राज्यसभा में कम से कम 6 बिल पास करने की तैयारी में है, लेकिन विपक्ष एक बार फिर आज तेवर दिखाने के लिए बैठक बुला चुका है। आज तक ब्यूरो।
0: उधर उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र भी आज से शुरू हो रहा है। सत्र के पहले ही दिन विपक्ष राम मंदिर दान में चोरी, नीट पेपर लीक जैसे मसले को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। वहीं 2027 के चुनाव को देखते हुए चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर के समाजवादी पार्टी राज्य सरकार के खिलाफ बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपील की है, सदन में जनहित से जुड़े हर मुद्दे को उठाएं, स्वस्थ चर्चा कर विकास को और गति प्रदान करने में सरकार का सहयोग करें।
5: लखनऊ का सियासी पारा चढ़ा हुआ है। मानसून सत्र से पहले ही विपक्ष तेवर दिखा रहा है। समाजवादी पार्टी राम मंदिर चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दों पर बड़ा नैरेटिव सेट करने में जुटी है। अभी एक दिन पहले ही अखिलेश यादव ने लखनऊ में विधायकों की बैठक की। पार्टी ने अपना एजेंडा साफ कर दिया है, कहा कि राम मंदिर में चोरी के आरोपियों पर सख्त कार्रवाई हो और हाई कोर्ट की निगरानी में जांच कराई जाए। इसके अलावा कई अन्य मसलों पर भी पार्टी सरकार को घेरने की कोशिश में है।
6: सबसे पहले है मंदिर की चढ़ावा चोरी, दूसरी मुद्दा है बिजली। बिजली गांव-गांव में नहीं पहुंचती है। मैं अपने घर गया था, मेरे घर कट गई थी, परेशान था, जनरेटर चलाना पड़ा तो बिजली नहीं पहुंच पा रही। तीसरी बात है इस समय खाद की जरूरत है, यूरिया नहीं पर्याप्त मात्रा में मिल पा रहा।
5: सत्र शुरू होने से पहले ही समाजवादी पार्टी के विधायक शिवपाल यादव ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला और कम दिनों के लिए मानसून सत्र बुलाने पर सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनता के सवालों से डर रही है। समाजवादी पार्टी के तेवर के बीच विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सर्वदलीय बैठक की है। बैठक को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने सभी विधायकों से अपील की है कि जनहित से जुड़े मुद्दे ही सदन में रखें।
7: सपा के जो कुकर्म हुआ है पिछले सत्र के पहले का जो कुकर्म हुआ है उसका जवाब हम लोग अपने विकास कार्यों से देंगे, जो विकास हम किए हैं।
5: यूपी विधानसभा का ये सत्र 6 अगस्त तक ही चलेगा। ऐसे में दोनों तरफ से हो रही बयानबाजी से साफ है कि टकराव बढ़ने वाला है। संतोष कुमार शर्मा, लखनऊ आज तक।
0: उधर यूपी विधानसभा में हंगामे के आसार हैं, लेकिन बीते दिन दिल्ली में एक हंगामा हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पर चप्पल फेंकी गई, चाकू से हमले की कोशिश की गई। पप्पू यादव ने बेहद गंभीर आरोप लगाए, इसे लेकर उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है। उधर दिल्ली पुलिस की माने तो अब तक इस मामले में FIR ही दर्ज नहीं कराई गई है।
8: इकतीस जुलाई को भगवा कपड़े में पप्पू यादव ने चढ़ावा चोरी के खिलाफ संसद परिसर में प्रदर्शन किया। पप्पू यादव के इसी अंदाज की वजह से उन पर हमले की कोशिश की गई। उनका आरोप है कि रविवार को पहले उन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चप्पल फेंकी गई, फिर आरोपियों ने चाकू से हमला करना चाहा। तभी समर्थकों ने एक आरोपी को दबोच लिया, वहीं पर जमकर पिटाई की और फिर दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया। मौके से बरामद चाकू भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी दो थे। जिसने पप्पू यादव की तरफ चप्पल फेंकी वो आरोपी पकड़ा गया, उसका नाम सुमित है। अब तक की जानकारी के मुताबिक बुलंदशहर के रहने वाले सुमित का अब तक कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला है। सुमित अपने दोस्त हैप्पी शर्मा के साथ क्रेडा गाड़ी में मौके पर पहुंचा था। क्रेडा सुमित की अपनी गाड़ी है। सूत्रों के मुताबिक संतों के अपमान को लेकर सुमित नाराज था। ऐसे बवाल के बीच पप्पू यादव ने दावा किया है कि पिछले कुछ दिनों से उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं।
9: ये कह रहे हैं पप्पू यादव को जिंदा जला दो। हम बोल रहे हैं क्या? दूसरा ये बाबा बोल रहे हैं कि पप्पू यादव को एक सब नहीं रखता। पप्पू यादव को जो मार देगा उसको 11 लाख रुपया देंगे। रात में मेरे बच्चों के घर पे चले गए।
8: पप्पू यादव की लीगल टीम ने गंभीर सुरक्षा चूक बताया और इसके खिलाफ कानूनी टीम अदालत का रुख करने की तैयारी में है। अनमोल बाली, आज तक।
0: उधर बिहार के सासाराम नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। पुलिस कह रही है कि ईओ की हत्या ड्राइवर ने की है, उसने कबूल भी किया है, लेकिन घर वाले इसके पीछे डेहरी के एलजेपीआर विधायक का हाथ बता रहे हैं। मामले को लेकर तेजस्वी ने सीबीआई जांच की मांग की है।
10: कोई डेहरी का विधायक रोज फोन करता था, जो नया बना रोज
0: आंसुओं का सैलाब होता है। तड़पते घर वाले गंभीर सवाल उठा रहे हैं।
10: अकेले नहीं है, उसके साथ ग्रुप भी है।
0: 1 अगस्त की रात ईओ विमल कुमार की हत्या कर दी गई। एक दिन पहले उनके परिवार से तेजस्वी यादव ने मुलाकात की। इस दौरान परिजनों का आरोप सीधे सीधे डेहरी एलजीपीआर विधायक राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह पर था, लेकिन पुलिस कह रही है कि ईओ के ड्राइवर मिथिलेश कुमार ने ही उन्हें मार डाला। पुलिस की माने तो पूछताछ के दौरान ड्राइवर बार बार बयान बदल रहा था। पहले उसने कहा कि 2 अपाची बाइक पर अपराधी आए थे, बाद में उसने कहा कि 1 अपाची बाइक पर अपराधी आए थे। बदलते बयान पर शक हुआ तो पुलिस ने सख्ती बरती। तब ड्राइवर ने कबूला कि काम का दबाव और तनाव की वजह से उसने कार्यपालक पदाधिकारी को मार डाला।
11: स्वीकार किया कि उसने स्वयं उनकी हत्या की है। उसका कारण बताया कि लंबे समय से अत्यधिक ड्यूटी के कारण तनावग्रस्त चल रहा था और समय समय पर बहस होती थी, जिसका अन्य जो स्टाफ है नगर परिषद के उनके द्वारा भी पूछे जाने पर पता किया जा सकता है।
0: पुलिस के दावों के उलट तेजस्वी ने गंभीर सवाल उठाए हैं और इस हत्याकांड की सीबीआई जांच कराने की मांग की है।
12: अब पता नहीं आईजी साहब इतनी जल्दबाजी में क्यों हैं कि सारा निर्णय जो सुना दिया गया, लेकिन अभी तो इन्वेस्टिगेशन पूरी हुई नहीं। हमको लगता है कि इसकी न्यायिक निगरानी में जुडिशियल निगरानी में इसकी जो है सीबीआई जांच होनी चाहिए।
0: उधर आरोप लगने के बाद एलजीपीआर विधायक राजीव रंजन सिंह विपक्ष पर पलटवार कर रहे हैं।
13: एक पत्नी का पति गया है, उस पर कोई राजनीति न करे। एक हत्या हुई है, उस पर लोग औछी राजनीति कर रहे हैं, राजनीति न करें। उस
0: ईओ विमल कुमार की हत्या से एक बार फिर बिहार में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे हैं। शशिभूषण कुमार, पटना, आज तक। आज सावन का पहला सोमवार है। इस मौके पर तड़के से ही भोले के भक्त शिवालयों में पहुंचे हैं। शिवभक्त मंदिरों में जलाभिषेक कर रहे हैं, फूल अर्पित कर रहे हैं और सोमवार के मौके पर आशीर्वाद ले रहे हैं। गुजरात के सोमनाथ से लेकर मोक्षदायिनी नगरी काशी के विश्वनाथ मंदिर तक हर तरफ आस्था का सागर उमड़ रहा है। उज्जैन के महाकालेश्वर में तड़के भस्म आरती हुई। अवंतिका नगरी शंख और डम्बू की ध्वनियों से गुंजायमान हो उठी तो झारखंड के बाबा बैद्यनाथ धाम में हजारों श्रद्धालु महादेव के दर्शन के लिए कतार में लगे। सावन के पहले सोमवार की असली रंगत कांवड़ियों के उत्साह में दिखती है। हरिद्वार प्रयागराज के पवित्र घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। कंधे पर कांवड़ लिए नंगे पांव सैकड़ों किलोमीटर की कठिन यात्रा तय करते शिव भक्तों का जज्बा देखते ही बनता है। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से, इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी
15: इलेक्ट्रॉनिक्स। हाउ टू अ ब्रीफ लुक इन ऑल द स्पेशल फंक्शंस एंड थिंग्स यू माइट नॉट नो वी हैव।
16: गेट इनटू द गेम विद योर फेवरेट टीम्स एंड नेवर मिस अ गेम। फॉलो योर टीम्स ऑन TuneIn एंड गेट लाइव अपडेट्स। जस्ट सेलेक्ट टीम्स यू वांट टू फॉलो ऑन TuneIn एंड यू'ल गेट नोटिफिकेशंस लाइक व्हेन द गेम्स स्टार्ट। Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
17: सब ऑनलाइन ही हो जाता है। PNB, मेरा अपना बैंक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा, जीते हर बाजी।
5: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
6: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील टीएमटी से बना।
7: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड।

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: New entrepreneurs came up. There was Dhirubhai Ambani. He was a rag-to-riches story. He built industries. He built, you know, the whole nylon business, the textile, and then, of course, then into petrochemical.
2: There were others like him, but he was by far the biggest and the most prominent of them all. He was also the most controversial because of his business methods. We did the stories on him as a success. We did a story of him under pressure. It was a churn that was taking place, and it led to lots of stories.
3: जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिस कहानी के बहुत अच्छे परिणाम हैं और बहुत दुखद परिणाम हैं। भारत एक राजमहल है, समृद्ध है, सोने की चिड़िया है। गहरी बात है वो ये है कि इस राजमहल के चारों तरफ झोपड़ पट्टियां हैं, झुग्गियां हैं, चुनौती वाले क्षेत्र हैं। भारत आए अंग्रेज, यहाँ के लोगों को देखा उन्होंने, जब यहाँ के ग्रंथों को ट्रांसलेट करना शुरू किया, पढ़ा उन्होंने कि ब्राह्मण का जन्म मुंह से हुआ है। ये डिपार्टमेंट बनाया ही गया था शोषण के लिए। कौन सा? पुलिस। किसने बनाया था? कॉर्नवालिस ने। और पुलिस डिपार्टमेंट की खास बात यह है कि जब उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट भारत में बनाया, तब वो डिपार्टमेंट ब्रिटेन में नहीं था। जुडिशरी, मॉडर्न जुडिशरी उन्होंने अपने फायदे के लिए बनाया। अंग्रेजी कानून, अंग्रेजी जज। तुम कल्पना कर सकते हो, आधुनिक काल से पहले LGBT सड़क पर आकर प्रदर्शन करें, इनको तोप में बांध के उड़ा दिया होता।
4: तो क्या सिर्फ अब हिस्ट्री सिर्फ जो बाहर से लोग आए थे यहाँ पे शासन करने के लिए, उनको विलन के रूप में दिखा रहे हैं? या फिर
3: जो भी सरकार सत्ता में आती है वो शिक्षा का इस्तेमाल करती है अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने। वंदे मातरम पे बहस हो रही है, हर दिन मंदिर मस्जिद पे बहस हो रही है, मुसलमान पे बहस। ये संसद बनी किस लिए? औरंगजेब जो था भैया, डेली 200 किलो जनेऊ तोलता था। कितना? 200 किलो भी, मतलब डेली वो कम से कम 10,000 ब्राह्मणों को मारता था, हिंदुओं को। मैं देखता हूँ मुसलमानों को और हिंदुओं को, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ। पहले मैं सोचता था पुलिस वाले यहाँ लगा के पॉइंट ब्लैंक से क्यों मारते, क्योंकि यहाँ ताला लगा हुआ है, तो इसीलिए मारते कि यहाँ मारे तो अगले जन्म में खुला हुआ रहेगा।
5: आपको लगता है कि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद देश फिर बट सकता है?
3: इस बात को मैं रिपीटेडली कह चुका हूँ, एक विस्फोट होगा बेटा।
6: लेकिन आपके पढ़ाने के तरीके मुझे एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट लगता है कि आप जनता को ही बोल देते हैं कि जनता बड़ी बेवकूफ़ है, और फिर आप कहते हैं कि हमारे देश का युवा पढ़ना नहीं चाहता है।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

बांकीपुर दतिया और मांजलपुर सीट के उपचुनाव में आज फैसले का दिन। अध्यक्ष नितिन नवीन के गढ़ में बीजेपी की अग्नि परीक्षा, प्रशांत किशोर की साख भी दांव पर। संसद के मानसून सत्र में आज फिर हंगामे के आसार, छात्रों पर एक्शन, चढ़ावा चोरी जैसे मसले पर विपक्ष का नॉनस्टॉप हल्ला बोल। सुबह 10 बजे खड़गे की अध्यक्षता में विपक्ष की बैठक। भगवा वेश में चढ़ावा नाटक के बाद पप्पू यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा, हमले की कोशिश का आरोप। सांसद ने कहा हत्या की थी साजिश, आरोपी गिरफ्तार, अब तक दर्ज नहीं हुई एफआईआर।

खैबर पख्तूनवा में बड़ा आत्मघाती हमला, 15 लोगों की मौत, कई गंभीर रूप से घायल। शांति रैली के दौरान मची अफरा तफरी। और सावन का पहला सोमवार, आज देश भर के शिवालयों में जलाभिषेक और पवित्र दर्शन जारी। तमाम मंदिरों में भारी भीड़, कांवड़ यात्रियों में भी उत्साह। प्रेजेंटेड

सावन के पहले सोमवार पर शिव भक्तों का महासंगम, कांवड़ियों का उमड़ा सैलाब। शिव मंदिरों में सुबह से कांवड़ियों और शिव भक्तों की लंबी लाइन लगी। सावन के पहले सोमवार पर उज्जैन में बाबा की भव्य भस्म आरती हुई, बड़ी संख्या में भक्त मौजूद। परंपरागत विधि विधान से मंदिर के पट खोले गए। सावन के पहले सोमवार पर काशी विश्वनाथ मंदिर में जल चढ़ाने आए श्रद्धालुओं पर पुष्पवर्षा हुई। कमिश्नर और सीईओ ने फूल बरसाए। देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ा, शिव भक्तों से मंदिर का चप्पा चप्पा पड़ गया, आस्था से सराबोर हुआ पूरा माहौल। अयोध्या के नागेश्वरनाथ मंदिर में सावन के पहले सोमवार पर बड़ी संख्या में उमड़े श्रद्धालु, बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। बद्रीनाथ के आदि केदारेश्वर मंदिर में सुबह से उमड़ी श्रद्धालुओं की लंबी कतारें, सुबह से ही हर हर महादेव की जय घूंज गूंजते रहे, वातावरण भक्ति में रिखा। मुंबई में सावन के पहले सोमवार पर बाबुलनाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। पुरी के लोकनाथ मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ा, बड़ी संख्या में भक्तों ने भोलेनाथ का दर्शन किए। वाराणसी में पहले सोमवार को ब्रह्मा निवास मंदिर में महारुद्राभिषेक में बड़ी संख्या में लोगों ने पूजा अर्चना की। अयोध्या में पहले सावन पर सरयू में स्नान के लिए आस्था का जनसैलाब उमड़ा, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सरयू में डुबकी लगाई। बांकीपुर, दतिया और मांजलपुर विधानसभा उपचुनाव के वोटों की गिनती आज है, दांव पर दिग्गजों की साख है। बिहार के बांकीपुर में बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार और जन सुराज प्रत्याशी प्रशांत किशोर में कांटे की टक्कर है। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के सीट के खाली होने के बाद यहां उपचुनाव हुए। प्रशांत किशोर ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए, कहा बांकीपुर उपचुनाव में प्रशासन का दुरुपयोग हुआ, पटना एसएसपी गैर पेशेवर रहे, चुनाव आयोग से इसकी शिकायत करेंगे। बिहार की हाई प्रोफाइल सीट में बांकीपुर में वोटों की गिनती को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतगणना केंद्र में जाने वाले लोगों के लिए पास भी जारी किया गया है। एमपी के दतिया में सीट पर कांग्रेस भारी मतों से जीत का दावा किया है, अपने उम्मीदवार घनश्याम सिंह की जीत का दम भरा। आज से उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा, चढ़ावा चोरी, पेपर लीक, स्कूल बंद करने समेत मुद्दों पर सदन में हंगामे के आसार हैं। सत्र से पहले सीएम योगी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, कहा लोकतंत्र में संवाद जरूरी है, जनहित के मुद्दों पर चर्चा हो। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दावा किया यूपी में 10 साल में 26,000 से ज्यादा स्कूल बंद हुए हैं, जोहर यूनिवर्सिटी पर भी बीजेपी को घेरा। 5 अगस्त को जनेश्वर जयंती के मौके पर समाजवादी पार्टी करेगी भव्य ब्राह्मण सम्मेलन, चुनाव के मद्देनजर ब्राह्मण वोट बैंक पर नजर। बीएसपी से अशोक सिद्धार्थ निष्कासित किए गए, अनुशासनहीनता के मामले मायावती ने पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। आज संसद में भी हंगामे के आसार हैं, चढ़ावा चोरी समेत कई मामलों पर विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में। विपक्ष के विरोध के बीच केंद्र सरकार आज संसद में एफसीआरएस संशोधन बिल लागू कर सकती है, कई एनजीओ ने इस कानून का विरोध किया है। कावेरी जल विवाद में कर्नाटक के सीएम डीके शिवकुमार ने 13 अगस्त के बंद के खिलाफ अपील की है, कहा सरकार राज्य के हितों की रक्षा करेगी। पंजाब विधानसभा का मानसून सत्र से शुरू हो रहा, 10 अगस्त तक जारी रहेगा यह सत्र। यूपी में दिव्यांगजन को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आज से दिव्यांगजन रोजगार अभियान 3.0 शुरू किया जा रहा है। दिल्ली में सांसद पप्पू यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा हुआ, पप्पू यादव का दावा चाकू लेकर मारने की कोशिश की गई, आरोपी को पकड़ा गया। पप्पू यादव पर चप्पल फेंकने वाले शख्स का सोशल मीडिया पर तस्वीर डाली गई, सीएम योगी के साथ वाली तस्वीर में आरोपी का नाम हिमांशु शर्मा बताया जा रहा है। रांची में जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों ने मशाल जुलूस निकाला, अनियमितताओं के विरोध में आवाज उठाई, अब सीबीआई जांच की मांग हो रही है। रांची में छात्रों के प्रदर्शन पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा झारखंड का युवा जाग चुका है, कांग्रेस को समूल नष्ट करने का समय है। झारखंड के छात्रों के समर्थन में कांग्रेस जनता पार्टी भी आई है, विजय दीपके ने कहा छात्रों से बातचीत हुई है, सीजेपी उनकी मांगों का समर्थन करेगी। रांची की नगरी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है, पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, सीएम योगी को गाली देने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में कार्रवाई की गई। जेनजी आंदोलन पर धीरेन्द्र शास्त्री का बयान, देश में विरोध दर्ज कराना सभी का लोकतांत्रिक अधिकार, लेकिन प्रदर्शन के नाम पर अभद्र भाषा अपशब्दों का इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत। बरनाला में कांग्रेस की बैठक में हंगामा, चन्नी के समर्थन में नारेबाजी, बैठक में राजा वडिंग और भूपेश बघेल मौजूद थे। कोलकाता में तस्लीमा नसरीन ने भारत में यूसीसी लागू करने का समर्थन किया, बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी ऐसे कानून की जरूरत पर जोर दिया। ग्रीन एनर्जी में यूपी ने दिखाया रास्ता, पीएम सूर्यघर योजना में लखनऊ देश में नंबर 1, टॉप 100 में यूपी के 17 जिले शामिल। कांग्रेस ने कर्नाटक कैबिनेट विस्तार के लिए 18 नामों को मंजूरी दी, आज सुबह 10 बजे सीएम को अंतिम सूची भेजने की संभावना है। पुलवामा में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के संदिग्ध सहयोगी को गिरफ्तार किया, एक हैंड ग्रेनेड, एक आईफोन, 3 देश विरोधी पोस्टर और एक घड़ी बरामद की गई। कुलगाम में 2 प्रवासी मजदूर और अनंतनाग में पुलिसकर्मी की हत्या करने वालों की पहचान सार्वजनिक करने की फारूक अब्दुल्ला ने मांग की है, कहा अगर बॉर्डर सील है तो आतंकवादी कहां से आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों के ठिकाने का खुलासा हुआ है, तलाशी अभियान के दौरान हिजबुल मुजाहिदीन का पोस्टर और आपत्तिजनक सामान भी जब्त किया गया है। पाकिस्तान ने भारत से लगी सीमा पर चीन से मंगाई गई 250 होविजर तोपें तैनात की हैं, 72 किलोमीटर तक ये गोला दाग सकती है। तृणमूल कांग्रेस के 3 बैंक खातों को फ्रीज करने के आदेश के खिलाफ अपील में सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। देहरादून में रेलवे जमीन विवाद फिर से गहराया, नोटिस चस्पा करने से लोगों में आक्रोश है, अधिकारियों के साथ तीखी नोकझोंक। समस्तीपुर में 21 सितंबर से एनआई कार्य को लेकर के ट्रेनों का परिचालन रद्द होगा, कुल 384 ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा।
बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर ने बड़ा बयान दिया, कहा किसी भी धर्म का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है, भारत एक ऐसा देश है जहां सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने वर्ल्ड पीस एम्बेसडर ग्रंथ का लोकार्पण किया। अहिंसा विश्व भारत में आचार्य लोकेश से मिले। सांसद बांसुरी स्वराज भी इस मौके पर मौजूद रहे। उत्तराखंड में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने भारी बारिश और सड़क पर गिरे पेड़ के बीच खुद संभाली कमान, आधे घंटे में खुलवाया नैनीताल हल्द्वानी हाईवे। कटरा रियासी हाईवे पर लैंडस्लाइड हुई, भारी बारिश से मलबा सड़क पर फैल गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ा, प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की है। लद्दाख के कारगिल में भारी बारिश से चिक्तान और समराह इलाके में अचानक बाढ़ आई, कई इलाके निचले इलाकों में पानी भर गया। यूपी के फरुखाबाद में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ चुका है, गंगा किनारे बसे करीब आधा दर्जन गांव में कटान का खतरा बढ़ रहा है। असम के शिवसागर में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है, सीआरपीएफ की मदद से लोगों तक भोजन पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। सूरत के डुमास में भारी बारिश की वजह से उसे बंद कर दिया गया, पुलिस अब यहां गश्त कर रही है। केरलम के कई इलाकों में भी जोरदार बारिश का दौर जारी है, कन्नूर में वालपट्टनम नदी का जलस्तर में वृद्धि हुई है। कर्नाटक के कबिनी बांध से तमिलनाडु के लिए 12,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, भारी बारिश के बाद अचानक से पानी बढ़ा। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा बिलासपुर मार्ग पर पुल ढह गया, बस बीच में फंसी, सभी यात्रियों को निकाला गया। जलंधर में मेयर की शुक्राना यात्रा में आपस में दो गुट भिड़ गए, बहसबाजी के बाद ईंट पत्थर चले, पुलिस ने जांच में जुटी। गाजियाबाद में दिनदहाड़े चेन स्नैचिंग हुई, सीसीटीवी में वारदात कैद हुई। सिंदरौली में महिला ने की भांजे की गला दबाकर सीसीटीवी फुटेज में पूरा राज खोला। गाजियाबाद की हाईराइज सोसायटी में महिला मनोचिकित्सक पांचवें मंजिल से गिरकर संदिग्ध मौत, पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है। राजकोट में मिलावटी दूध का बड़ा भंडाफोड़ हुआ है, 5400 लीटर मिलावटी दूध पुलिस ने नष्ट किया। उज्जैन रतलाम कोटा पैसेंजर इंजन पर गिरा 25,000 किलोवाट का तार, कोई जनहानि की खबर नहीं है। बिजनौर में 20 सड़क पर नाबालिग पर ताना तमंचा, जान से मारने की धमकी दी, इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। अमरावती में एमडी ड्रग्स जब्त की गई, 22 साल के युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया, कार और मोबाइल समेत करीब 53,00,000 रुपए का माल बरामद किया गया। महाराजगंज में निर्माणाधीन सरोवर में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई, सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। रामगढ़ में बिजली गिरने से 3 महिलाओं की मौत हो गई, 2 की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। वडोदरा में बारिश के कारण एक एक्टिवा फिसल गई, हादसे में 19 साल की युवती की मौके पर ही मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में 70 साल के बुजुर्ग ने 4 साल की बच्ची के साथ छेड़खानी की, ग्रामीणों ने आरोपी को जमकर पीटा, वीडियो वायरल हुआ। बलिया में अश्लील वीडियो बनाने से डिप्रेशन में आकर नाबालिग बच्ची की आत्महत्या, 2 युवक गिरफ्तार किए गए। रायबरेली में निर्माणाधीन बिल्डिंग का लिंटर भरकर गिर गया, गनीमत रही कि सभी मजदूर बाल बाल बच गए। मेरठ एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई हुई है, आरोपी तजम्मुल 21 अवैध तमंचों के साथ गिरफ्तार किया गया। बिहार के हाजीपुर में घर में सो रहे दिव्यांग बुजुर्ग की गला रेतकर हत्या की गई, वारदात की गुत्थी सुलझाने में पुलिस जुटी। बिहार के मुजफ्फरपुर में प्रेम प्रसंग में मां बेटे की निर्मम हत्या कर दी गई, इसका खुलासा हुआ, मुख्य आरोपी गिरफ्तार किया गया। 10 दिन बाद झाड़ियों से मासूम का शव मिला था। मुंबई में शिपिंग कारोबारी से 41,00,000 रुपए की ठगी हुई, निवेश पर दोगुना रिटर्न का झांसा देकर शहबाज समेत 2 के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। औरंगाबाद में कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या पर लोगों का गुस्सा फूटा, दानापुर के गोला रोड पर नगर निकाय अधिकारियों ने शव के साथ सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। गोरखपुर जेल से 22 फीट ऊंची दीवार फांद कर एक कैदी भाग गया, रेप केस में वो आरोपी था। सूरत में कार को ओवरटेक करने के चक्कर में ऑटो रिक्शा पलट गई, सीसीटीवी में घटना कैद हुई, लोगों ने ऑटो चालक को सुरक्षित बाहर निकाला। पालघर में नाले में गिरकर एक बुजुर्ग घायल हो गए, सीसीटीवी में घटना सामने कैद हो गई। अमरावती के दरियापुर में बंदूक और चाकू की नोक पर ज्वेलर्स दुकान में डकैती हुई, 500 ग्राम सोना 13 किलो चांदी लूटी गई। महाराष्ट्र के जालना में गोमांस बरामदगी पर हंगामा हुआ, बजरंग दल ने जमकर प्रदर्शन किया। हैदराबाद में नाबालिग ने कई गाड़ियों को टक्कर मारी, 2 लोग घायल हुए, 2 गंभीर रूप से घायल हुए, सीसीटीवी में कैद हुई। हरिद्वार से मुजफ्फरनगर पहुंचे कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की गई, एडीजी ने कांवड़ियों का स्वागत किया। सीकर के खाटू श्याम दरबार पहुंचे दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा, विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। बेतिया के एक शख्स ने पेश की बहादुरी की मिसाल, तालाब में डूब रहे बच्चे की जान बचाई। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का शानदार समापन, भारत को मिली 2030 की मेजबानी की कमान। बॉलीवुड स्टार सनी देओल के बेटे करण देओल के साथ पटना साहिब में गुरुद्वारा में मत्था टेका, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने सरोपा। स्पाइडरमैन की धमाकेदार शुरुआत, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने पहले दिन में वीकेंड में दुनिया में $927 मिलियन की कमाई की। फिल्म ने अमेरिका और कनाडा में $355 मिलियन कमाए। टॉम हॉलैंड चौथी बार स्पाइडरमैन बने, उनकी वापसी को दर्शकों का जबरदस्त प्यार मिल रहा है। विदेशों में फिल्म ने $572 मिलियन कमाए, सबसे ज्यादा $121 मिलियन की कमाई चीन से हुई।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की। ये जानेंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज के दिन को बेहतर बनाने के उपाय क्या हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 3 अगस्त 2026 दिन सोमवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि, रात के 10:54 तक। नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र, रात के 10 तक। चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः 7:30 से लगभग 9 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी मिश्री खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। मेष राशि, करियर में आपके समस्या हो सकती है, परिवार में विवादों से बचाव करें, संतान पक्ष का ध्यान रखें, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। वृषभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला।

स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, करियर की समस्या हल होगी, परिवार में मंगल कार्य के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। कर्क राशि, पारिवारिक उलझने सुलझ जाएंगी, करियर में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य का अभी भी ध्यान बनाए रखें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। सिंह राशि, समस्याएं बढ़ सकती हैं, धन का नुकसान हो सकता है, वाहन आज सावधानी से चलाइएगा, चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। कन्या राशि, करियर में सुधार होगा, धन का लाभ होगा, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। तुला राशि, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, धन की स्थिति अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, खान पान में सावधानी रखें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। धनु राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में अशांति से बचें, पैसे का नुकसान हो सकता है, धन की हानि हो सकती है, अगर चावल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। मकर राशि, वैवाहिक जीवन में सुधार होगा, करियर की स्थिति अच्छी रहेगी, कोई शुभ सूचना मिलेगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन
बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी।

होगा दूसरों के मामले में ना पड़े, शिव जी को जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला।

बन जाएगा, धन संबंधी मुश्किलें दूर होंगी, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक। नमस्कार।

0: पेपर लीक के मुद्दे पर जेन जी का पारा हाई है। एक तरफ विपक्ष संसद से लेकर सड़क तक जेन जी के गुस्से को आवाज दे रहा है, तो दूसरी तरफ सरकार कड़े कानून, टास्क फोर्स और डिजिटल संवाद के जरिए युवाओं को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। सवाल ये है कि आंदोलन की इस आंधी के बाद आखिर जेन जी खड़ा किसके साथ है? कौन है जो आज के युवा के दिल और दिमाग पर राज कर रहा है? सीजेपी के नेतृत्व में जब सड़कों पर प्रदर्शन हुआ, तो उसमें पारंपरिक राजनीति से दूर रहने वाली जेन जी पीढ़ी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यहीं से विपक्ष को एक बड़ा मौका मिला। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी इस लड़ाई को सीधे प्रधानमंत्री आवास तक ले गए। संसद के भीतर से लेकर सड़क तक विपक्ष ने सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। विपक्षी नेताओं ने मंच संभाला, युवाओं की आवाज बनने और ये संदेश देने की कोशिश की कि वो जेन जी के सबसे बड़े हमदर्द हैं।
1: Every single university in India today has a vice chancellor from the RSS. Dharmendra Pradhan is a symbol. Your real enemy is the RSS. Keep it in mind. They are the people who are not letting you be students. They are the people who want you to be andhbhakt.
0: लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी कम दिलचस्प नहीं है। जेन जी की ताकत का असर ये हुआ कि सरकार डिफेंसिव होने के बजाय सीधे एक्शन मोड में आ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे सिर्फ एक विरोध नहीं बल्कि देश के भविष्य से जुड़ा गंभीर मुद्दा माना। सरकार ने पेपर लीक पर रोक के लिए फास्ट ट्रैक सुनवाई वाला बिल संसद के दोनों सदनों से पास करा लिया। परीक्षा प्रणाली को सुधारने के लिए इंफोसिस के सह संस्थापक नंदन नीलेखनी की अध्यक्षता में हाई पावर टास्क फोर्स का गठन किया। पीएम मोदी ने पारंपरिक तरीकों से हटकर इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स का सहारा लिया और जेन जी से सीधा संवाद स्थापित किया।
2: हम संसद में बिल लेकर के गए थे और जैसा मैंने आपको वादा किया था, संसद के दोनों सदनों ने, अधिकतम मान्य सांसदों ने विस्तार पूर्वक उससे चर्चा की है और दोनों सदनों ने इस कठोर कानूनों वाले, प्रावधानों वाले इस बिल को पास कर दिया है। अब विश्वस्त परीक्षा पद्धति की दिशा में जाने में एक महत्वपूर्ण काम पूर्ण हुआ है।
0: यानी एक तरफ विपक्ष के आक्रामक तेवर हैं जो युवाओं के गुस्से को ऊर्जा दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ सरकार का पॉलिसी ड्रिवन और टेक फ्रेंडली अप्रोच है जो समाधान देने का दावा कर रहा है। आज देश का जेन जी सिर्फ नारे नहीं सुन रहा बल्कि वो विपक्ष के तेवर और सरकार के एक्शन दोनों को बारीकी से तौल रहा है। सवाल अब भी यही है कि क्या विपक्ष का आंदोलन युवाओं के जज्बात को वोटों में बदल पाया है या फिर सरकार का संवाद जेन जी की उम्मीदों पर खरा उतरा है।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: बांकीपुर दतिया और मांझलपुर सीट के उपचुनाव में आज फैसले का दिन। अध्यक्ष नितिन नवीन के गढ़ में बीजेपी की अग्नि परीक्षा। प्रशांत किशोर की सख्त दांव पर। रिजल्ट से पहले तेजस्वी की पूजा। संसद के मॉनसून सत्र में आज फिर हंगामे के आसार। छात्रों पर एक्शन। चढ़ावा चोरी जैसे मसलों पर विपक्ष का नॉनस्टॉप हल्ला बोल। सुबह 10 बजे खड़गे की अध्यक्षता में विपक्ष की बैठक। आज से शुरू हो रहा है यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र। चढ़ावा चोरी। परीक्षा और शिक्षा पर घेराबंदी की तैयारी में समाजवादी पार्टी। सीएम योगी ने कहा जनहित के मुद्दे उठाएं। भगवाभीष में चढ़ावा चोरी ड्रामे के बाद अब प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामे पर पप्पू यादव का आरोप। मेरी हत्या की थी साजिश। आरोपी गिरफ्तार। सांसद ने अब तक दर्ज नहीं कराई है FIR। और आज सावन के पहले सोमवार पर देश भर में बम्बा भोले की जय का। शिवालयों में जलाभिषेक और पवित्र दर्शन जारी। कांवड़ यात्रियों में जबरदस्त उत्साह।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद भारत की।
0: नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बज गए हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। हफ्ते का नया दिन, नई शुरुआत और बिना ब्रेक के आपके पसंदीदा ब्रेकफास्ट न्यूज शो के साथ एक बार फिर से हम हाजिर हैं। खबरें रफ्तार से भी होंगी और विस्तार से भी, लेकिन सबसे पहले खबरों की झलकियों पर एक नजर डाल लेते हैं। बांकीपुर की चुनावी जंग में कौन बनेगा विजेता? पीके की पहली चुनावी परीक्षा। क्या बीजेपी के गढ़ में करेंगे उलटफेर? आज की यही है सबसे बड़ी स्टोरी। बिहार में डेयरी के ईओ का कातिल कौन? पत्नी ने उठाया विधायक पर सवाल। पुलिस ने ड्राइवर को बताया अपराधी। झारखंड में परीक्षा धांधली पर जोर पकड़ा। छात्रों का आंदोलन। सीजेपी की अभिजीत तिपके ने छात्रों को दिया समर्थन। ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करें 3 राज्यों की चुनावी जंग के साथ। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में एक एक सीट पर हुए उपचुनाव में वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। बिहार के बांकीपुर, MP के दतिया और गुजरात के मांझलपुर में सुबह 8 बजे से ही वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है। माना यह जा रहा है कि अगले 1 से 2 घंटे में तस्वीर साफ हो जाएगी। मांझलपुर से पहले रुझान आ गया है। बीजेपी यहां आगे चल रही है। सारी निगाहें बिहार के बांकीपुर के उपचुनाव के नतीजों पर हैं। बांकीपुर को बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन का गढ़ माना जा रहा है। यह सीट 1995 से उनके परिवार के ही कब्जे में है। नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद यह सीट खाली हो गई थी। नतीजतन यहां पहले पीके और बीजेपी दोनों अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं।
2: कितने वोट से जीत रहे? कल आप काउंट कीजिएगा और हर राउंड में जोड़ते चले जाइएगा। इतने वोट से भाजपा हारेगी कि जीवन में कभी ये कहने का दुस्साहस नहीं कर पाएंगे कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो चुनाव जीत जाएगा। कितने वोट से हारेंगे?
3: बांकीपुर का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार और बांकीपुर के बेटे नीरज जीत चुके हैं। बांकीपुर ने सेवा पे, काम पे, सुशासन पे वोट किया है और सेवा, काम और सुशासन के वोट का मतलब भारतीय जनता पार्टी को वोट होता है।
0: शशि भूषण मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शशि भूषण, क्या कह रहे हैं? रुझान किसकी तरफ पड़ रहा? भारी दिखाई दे रहा है।
4: नेहा, देखिए अभी तक पहला रुझान सामने नहीं आया है तो थोड़ा इंतजार लंबा खींचा जा रहा है। 8 बजे से वोट की गिनती शुरू हुई है और ये उम्मीद की जा रही थी कि 8:30 तक शायद और पहला रुझान आए, लेकिन जो जानकारी अंदर से निकल के आ रही है काउंटिंग सेंटर से उसके मुताबिक जो पोस्टल बैलेट है उसकी गिनती पहले हो रही है। हालांकि ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक नहीं आया है। अपने सहयोगी नदीम से एक बार कहेंगे, थोड़ा बारिश बहुत तेज हो रही है इस वक्त पटना में जहाँ काउंटिंग सेंटर है उसकी बाहर
5: है और यहाँ पर वोटों की गिनती हो रही है। 31 राउंड में यहाँ वोटों की गिनती होनी है। 31 राउंड में वोटों की गिनती होनी है और जाहिर तौर पे कह सकते हैं कि जो फैसला होगा वो फैसला अपने आप में बेहद दिलचस्प होगा। भारतीय जनता
3: अपने आप में बेहद दिलचस्प होगा। भारतीय
5: राउंड में वोटों की गिनती होनी है और जाहिर तौर पे कह सकते हैं कि जो फैसला होगा वो फैसला अपने आप में बेहद दिलचस्प होगा भारतीय जनता
6: अपने आप में बेहद दिलचस्प होगा भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने गढ़ बचाने वाली बात है। और जो प्रशांत किशोर हैं चूंकि वो चुनाव मैदान में हैं तो इस वजह से लड़ाई और दिलचस्प बताई जा रही है। माना जा रहा है कि अगले कुछ देर में पहला ट्रेंड पहला रुझान सामने आएगा, लेकिन अभी तक कोई रुझान सामने नहीं आया है। नेहा
0: ठीक है, नजर बनाए रखिए। इस बीच वहां पर वोटों की गिनती जारी है, क्या देरी से शुरू हुई वोटिंग, कब तक तस्वीर साफ हो जाएगी शशि भूषण?
6: देखिए वोटों की गिनती तो सही समय पर शुरू हुई थी, क्योंकि 14 अलग अलग टेबल लगाए गए हैं, जो जानकारी दी गई है आयोग की तरफ से या जो प्रशासनिक अधिकारी काउंटिंग में लगे हैं उनकी तरफ से 14 ईवीएम्स की गिनती एक बार में होनी है वहां पे और 31 राउंड में होनी है। पहला राउंड जो है उसमें देरी इस वजह से भी होती है क्योंकि पोस्टल बैलेट की अगर गिनती होती हो तो उसका अरेंजमेंट करना, उसका सब कुछ जो सिस्टम होता है उसको फॉलो करने में थोड़ा वक्त लगता है। एक बार जब पहला राउंड पूरा हो जाता है तो उसके बाद जल्दी जल्दी ट्रेंड सामने आते हैं, तो ये माना जा रहा है शायद इसी वजह से, कोई आधिकारिक पुष्टि है नहीं नेहा तो बहुत कुछ हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ अगर देरी हो रही है तो इस वजह को इस तौर पे समझा जा सकता है। थोड़ी देर में उम्मीद है कि पहला ट्रेंड सामने आएगा जी।
0: और क्योंकि ये गढ़ रहा है बीजेपी का, जाहिर तौर पर अब माना यही जा रहा है कि हो सकता है कि रुझान उन्हीं के पक्ष में जाए। हिमांशु मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, बांकीपुर की सीट सबकी निगाहें इसी पर टिकी हुई है क्योंकि प्रशांत किशोर वहां से दावेदार हैं, लेकिन ऐसे में ये साख की लड़ाई, नाक की लड़ाई और प्रशांत किशोर के लिए खास तौर पर एक बड़ी दिलचस्प लड़ाई है।
7: देखिये बिल्कुल, प्रशांत किशोर के लिए दिलचस्प लड़ाई इसलिए भी है क्योंकि जब बिहार विधानसभा चुनाव हुए तब प्रशांत किशोर ने जो है वो विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था और ये एक बड़ा मुद्दा बना। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो बांकीपुर सीट वो सीट है जहां से भारतीय जनता पार्टी के जो नए अध्यक्ष हैं नितिन नवीन वो चुनाव लड़ते रहे लंबे समय तक, और उसके उससे पहले उनके पिताजी ने वो उस सीट पर जो है चुनाव लड़ा है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों के लिए नाक की लड़ाई है। और एक बड़ा महत्वपूर्ण कारण ये भी है कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी का जो है वहां बिहार में मुख्यमंत्री बना है और उसके बाद ये उपचुनाव है, तो ये सम्राट चौधरी के लिए भी नाक की लड़ाई है, नितिन नवीन क्योंकि पार्टी अध्यक्ष है उनकी सीट है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक की लड़ाई, और दूसरी तरफ प्रशांत किशोर के लिए नाक की लड़ाई इसलिए भी है क्योंकि प्रशांत किशोर पहला चुनाव लड़ रहे हैं अपना, चाहे वो विधानसभा का हो लोकसभा, तो उनकी जीवन का ये पहला चुनाव है और अगर इसमें उनको शिकस्त मिलती है तो उनका जो एक मोमेंटो है उसको कहीं ना कहीं जो है वो धक्का लगेगा।
0: ठीक है, जैसे ही नतीजे आएंगे हम वहां एक बार फिर से तस्वीर आपको दिखाएंगे। लेकिन इस बीच गुजरात के वडोदरा की मांजलपुर सीट पर भी काउंटिंग इस वक्त जारी और पहले राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। बीजेपी के सतीश पटेल को 3,178 वोट हासिल हुए हैं, कांग्रेस के भीखा भाई रबारी को 1,578 वोट मिले हैं, वहीं नोटा में 144 वोट गए हैं। मांजलपुर में 30 जुलाई को वोट डाले गए थे। मांजलपुर विधानसभा सीट से साल 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के योगेश पटेल ने जीत दर्ज की थी, लेकिन योगेश पटेल के निधन के बाद मांजलपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव हुआ है। वडोदरा की मांजलपुर सीट बीजेपी का गढ़ रही है। साल 2012-17-2022 में लगातार बीजेपी से योगेश पटेल ने जीत हासिल की थी। तो पहले राउंड की गिनती पूरी हो गई है मांजलपुर में, गुजरात की मांजलपुर में अभी भी मतगणना जारी है। इस बार सत्येन भाई पटेल और भीखा भाई रबारी में मुकाबला है, बीजेपी और कांग्रेस से दोनों खड़े हुए हैं, कांटे का मुकाबला ये माना जा रहा है। योगेश पटेल की मौत के बाद ये उपचुनाव हो रहा है और जाहिर तौर पर बीजेपी का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है क्योंकि यहां पर शुरू से ही बीजेपी हावी रही है।

0: तो गुजरात की मांजलपुर सीट पे मतगणना कुछ देर बाद माना जा रहा है एक से दो घंटे में पूरी तरीके से रिजल्ट आ जाएंगे। पहले राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है, सुबह 8 बजे से ही इन सीटों पर गिनती जारी है। आपको बता दें कि मांजलपुर सीट जो बीजेपी का गढ़ मानी जाती है, लगातार 3 चुनाव में बीजेपी ने यहां से जीत दर्ज की और अब उपचुनाव हो रहे हैं यहां पर। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, मांजलपुर पर भी बीजेपी काबिज हो सकती है क्योंकि वहां पर तो ट्रेंड ही रहा है। तो बीजेपी के सतीश पटेल को 3,178 वोट हासिल हुए हैं, वो मांजलपुर सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 1,578 वोट हासिल हुए हैं। 3 सीटों पर फैसले का दिन आज है, बाकीपुर, दतिया और मांजलपुर, उपचुनाव यहां पर हो रहा है। और बात बिहार के सासाराम नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या की करेंगे क्योंकि इस पर मचे कोहराम पर अब बहुत हाई प्रोफाइल केस इसे माना जा रहा है। पुलिस ये कह रही है कि ईओ की हत्या ड्राइवर ने की है और ड्राइवर ने इसे कबूल भी किया है, लेकिन ईओ की पत्नी का आरोप है कि हत्या के पीछे डेयरी के एलजेपीआर विधायक का हाथ है।
1: आइए हमारे घर मिलने, आइए हमको 50 लाख दीजिए, हमको 25 लाख की, बोले हम गलत नहीं घर का हाथ
2: देंगे। कौन है विधायक?
3: कौन है विधायक?
1: वो डीरी का विधायक, रोज फोन करता था, जो नया बना रोज दिन फोन करता था, रोज हर 2 दिन।
4: बिहार के डेहरी के ईओ विमल कुमार की पत्नी का डेहरी के एलजेपी रामविलास के विधायक राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह पर संगीन आरोप। 1 अगस्त की रात डेहरी के ईओ विमल कुमार की औरंगाबाद के बारून में हत्या हो गई थी। ईओ की पत्नी का आरोप है कि हत्या के पीछे विधायक का ही हाथ है क्योंकि वही पैसे लेने के लिए बार बार फोन करते थे।
1: रोज दिन फोन करता था, रोज हर 2 दिन फोन कर
3: पैसा मांगता था।
1: हाँ।
4: लेकिन पुलिस का कहना है कि विमल कुमार की हत्या उन्हीं के ड्राइवर ने की है। पुलिस की माने तो पूछताछ में ड्राइवर ने कबूल किया कि काम के दबाव और तनाव की वजह से उसने कार्यपालक अधिकारी को मार डाला।
5: ड्राइवर ने स्वीकार किया कि उसने स्वयं उनकी हत्या की है और उसका कारण बताया कि लंबे समय से अत्यधिक ड्यूटी के कारण तनावग्रस्त चल रहा था और समय समय पर बहस होती थी, जिसका अन्य जो स्टाफ है नगर परिषद के उनके द्वारा भी पूछे जाने पर पता किया जा सकता है।
4: हालांकि ड्राइवर बार बार अपने बयान बदल चुका है। पहले उसने कहा कि कातिल अपाची बाइक पर सवार थे। ईओ की पत्नी आरोपी ड्राइवर का नार्को टेस्ट कराने की मांग कर रही है।
1: नार्को टेस्ट करवा के जितने भी लोग सारे लोगों को उसको जितना जैसे मेरे साहब को मारा वैसे ही मारो, वैसे ही मारो, काट दो।
4: डेहरी के ईओ की हत्या का मामला राजनीतिक रूप से भी तूल पकड़ चुका है। 1 दिन पहले बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ईओ के परिवार से मुलाकात कर चुके हैं। तेजस्वी ने इस हत्याकांड की सीबीआई जांच कराने की मांग की है।
6: अब पता नहीं आईजी साहब इतनी जल्दबाजी में क्यों हैं कि सारा निर्णय जो है सुना दिया गया है, लेकिन अभी तो इन्वेस्टिगेशन पूरी हुई नहीं। हमको लगता है कि इसकी न्यायिक निगरानी में, जुडिशियल निगरानी में इसकी जो है सीबीआई जांच होनी चाहिए।
4: उधर एलजेपीआर विधायक राजीव रंजन सिंह की सफाई भी सामने आई। उन्होंने कहा कि विपक्ष इस पर राजनीति ना करे,
7: एक पत्नी का पति गया है उस पर कोई राजनीति ना करे, एक हत्या हुई है उस पर लोग औछी राजनीति कर रहे हैं, राजनीति ना करें, उस पर सब कोई मिलकर सोनू सिंह उनके परिवार के साथ खड़ा है रहेगा। इसमें निष्पक्ष जांच कराने के लिए मैं कटिबद्ध हूं और मैं डेहरी के विकास की लड़ाई लड़ता हूं, न कि ऐसी औछी राजनीति पर हम विश्वास करते हैं।
4: सच का खुलासा तो जांच से होगा, लेकिन ईओ विमल कुमार की हत्या से एक बार फिर बिहार में कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे हैं। सासाराम से मनोज कुमार सिंह के साथ शशिभूषण कुमार, पटना आज तक।
0: और तीन सीटों पर उपचुनाव की गिनती जारी है वोटों की। वहीं गुजरात के वडोदरा की मांजलपुर सीट पर भी काउंटिंग इस वक्त हो रही है। पहले राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। बीजेपी के सतीश पटेल को 3,178 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस के भीखा भाई रबारी को 1,578 वोट मिले हैं। नोटा 144 वोट इसमें पड़े हैं। मांजलपुर में 30 जुलाई को वोट डाले गए थे। मांजलपुर विधानसभा सीट से साल 2022 की विधानसभा चुनाव बीजेपी के योगेश पटेल ने जीत दर्ज की थी, लेकिन उनके निधन के बाद इस सीट पर उपचुनाव हुआ है। मांजलपुर सीट बीजेपी का गढ़ रही है। साल 2012, 17 और 2022 में लगातार बीजेपी से योगेश पटेल ने जीत हासिल की। अतुल तिवारी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अतुल, रुझान तो बीजेपी की तरफ ही जा रहे हैं।
2: देखिए, मांजलपुर सीट की बात करें तो बीजेपी का गढ़ रहा है। 2017, 12, 17 और 22 में बीजेपी के ही योगेश पटेल ने यहाँ पे जीत दर्ज की थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि जब 2022 में चुनाव हुए थे, तब योगेश पटेल, जिनके निधन के बाद अब ये उपचुनाव हो रहा है, इसी सीट से योगेश पटेल ने 1 लाख से भी ज़्यादा वोटों के अंतर से, लीड से, इस सीट पर जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार जब उपचुनाव हुए हैं, तब मात्र 37% जितने वोट पड़े हैं, यानी कि वोटों की संख्या की बात करें तो 82,000 जितना ही वोटिंग इस उपचुनाव के दौरान हुआ है। यानी कि जो 2022 के दौरान जो लीड थी, उतने वोट भी इस बार के उपचुनाव में नहीं पड़े हैं। इसी वजह से सीधे तौर पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर के तौर पर ये उपचुनाव को देखा जा रहा है। लेकिन अभी तक जो 9 राउंड की गिनती इस उपचुनाव को लेकर होनी है,
0: दतिया से भी इस वक्त रुझान सामने आ रहे हैं, वहां पर भी गिनती जारी है। दतिया में भी उपचुनाव की वोटिंग की गिनती आज हो रही है। मध्यप्रदेश की दतिया सीट पर पहला रुझान सामने आ चुका है। सुबह 8 बजे से ये गिनती शुरू हुई, जिसमें पहले राउंड में बीजेपी के आशुतोष तिवारी आगे चल रहे हैं। पहले राउंड में आशुतोष तिवारी को 4,551 वोट हासिल हुए हैं। कांग्रेस के घनश्याम सिंह को 3,367 वोट मिले हैं। रवीश पाल सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रवीश, कब तक तस्वीर साफ होगी? हालांकि बीजेपी आगे चल रही है, यही ट्रेंड बरकरार रहने वाला है?
8: देखिए, बहुत जल्दी होगा ये कह पाना कि ये जो शुरुआती रुझान है, ये आगे नतीजों में कितने जल्दी परिवर्तित होते हैं। लेकिन मान के चला जा रहा है कि अगले 1 से 1.5 घंटे में, क्योंकि कुल 15 राउंड की काउंटिंग होनी है टोटल, और अभी पहला राउंड खत्म ही हुआ है लगभग, तो पहले राउंड के मुताबिक अगर देखा जाए तो शुरुआती रुझान में फिलहाल भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। 900 से ज्यादा वोटों से जो आशुतोष तिवारी है वो आगे फिलहाल चल रहे हैं। लेकिन ये मान के चलिए कि 11 बजे तक काफी हद तक तस्वीर साफ हो जाएगी कि दतिया ने आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को दोबारा मौका दिया, या फिर जो पिछले 2.5 साल में कांग्रेस के विधायक थे वहां पे, राजेंद्र भारती, उनको देखते हुए दतिया एक बार फिर से कांग्रेस के पास जाती है। ये 11 बजे तक तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन इतना तय है कि शुरुआती रुझानों ने भाजपा को जरूर एक संजीवनी दी है। संजीवनी इसीलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की भले ही मध्य प्रदेश में सरकार हो, लेकिन ठीक इससे पहले हुए उपचुनाव में जो श्योपुर में हुआ था, जो कि दतिया से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, ग्वालियर चंबल अंचल में ही आता है, वहां पे भाजपा को हार का मुंह देखना पड़े था सरकार होने के बावजूद। तो ऐसे में अगर शुरुआती रुझान में भाजपा आगे चल रही है, तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव हो, प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल हो, नरोत्तम मिश्रा हो, या फिर बीजेपी के उम्मीदवार आशुतोष तिवारी हो, ये चारों जो है फिलहाल खुशी मना रहे होंगे अभी, और अभी इंतजार करेंगे वो 1-2 घंटे, उसके बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन शुरुआती रुझानों ने भाजपा को एक चेयर करने का मौका फिलहाल जरूर दिया है, लेकिन अभी बहुत जल्दबाजी होगा कुछ और कहना, इसलिए देखने वाली बात होगी कि अगले 1.5-2 घंटे बाद रुझान जो आ रहे हैं वो भाजपा को ही आगे रखते हैं, या फिर यहाँ पे जो खेल है वो पलटता हुआ दिखता है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि श्योपुर में भी शुरुआती रुझानों में भाजपा कुछ हद तक आगे रही थी, लेकिन शाम होते होते जो है वो पूरा खेल पलट गया था और भाजपा के उम्मीदवार को हार का मुंह देखना पड़ा था। इसलिए देखना अभी ये है कि ये जो शुरुआती रुझान दतिया में आए हैं, क्या ये इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं या फिर किसी और दिशा में जाते हैं।
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। बात पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस की करेंगे। इसमें बवाल मच गया कि दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पर, वहां चप्पल फेंक दी गई, चाकू से हमले की कोशिश की गई, और इसे लेकर उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है। उधर दिल्ली पुलिस की माने तो अब तक इस मामले में FIR दर्ज नहीं हुई।
9: इकतीस जुलाई को भगवा कपड़े में पप्पू यादव ने चढ़ावा चोरी के खिलाफ संसद परिसर में प्रदर्शन किया। पप्पू यादव के इसी अंदाज की वजह से उन पर हमले की कोशिश की गई। उनका आरोप है कि रविवार को पहले उन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चप्पल फेंकी गई, फिर आरोपियों ने चाकू से हमला करना चाहा। तभी समर्थकों ने एक आरोपी को दबोच लिया, वहीं पर जमकर पिटाई की और फिर दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया। मौके से बरामद चाकू भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी दो थे। जिसने पप्पू यादव की तरफ चप्पल फेंकी वो आरोपी पकड़ा गया, उसका नाम सुमित है। अब तक की जानकारी के मुताबिक बुलंदशहर के रहने वाले सुमित का अब तक कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला है। सुमित अपने दोस्त हैप्पी शर्मा के साथ क्रेडा गाड़ी में मौके पर पहुंचा था। क्रेडा सुमित की अपनी गाड़ी है। सूत्रों के मुताबिक संतों के अपमान को लेकर सुमित नाराज था।
10: तो आप तो चाकू बड़ा सा लेकर गए थे पप्पू यादव कह रहे हैं कि आप बड़ा।
11: नहीं नहीं भैया, हमारे पास कोई चाकू नहीं था। सांसद जी के जब घर गए थे तो जब चेकिंग हुई थी कोई चाकू नहीं था। अब क्या हम ऐसे लोग हैं क्या किसी को मानने जाएंगे? हम केवल बातचीत करने गए थे, लोकतंत्र में अधिकार है, सबको बातचीत तो कर सकते हैं।
9: ऐसे बवाल के बीच पप्पू यादव ने दावा किया है कि पिछले कुछ दिनों से उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं।
12: ये कह रहे हैं पप्पू यादव को जिंदा जला दो। हम बोल रहे हैं क्या? दूसरा ये बाबा बोल रहे हैं कि पप्पू यादव को एक सब नहीं रखता। पप्पू यादव को जो मार देगा उसको 11 लाख रुपया देंगे। रात में मेरे बच्चों के घर पे चले गए।
9: पप्पू यादव की लीगल टीम ने गंभीर सुरक्षा चूक बताया और इसके खिलाफ कानूनी टीम अदालत का रुख करने की तैयारी में है। अनमोल बाली, आज तक।
0: इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, पप्पू यादव पर जूता फेंकने के मामले में दिल्ली पुलिस के सूत्र के हवाले से खबर आई है कि आरोपी सुमित उस वक्त नशे की हालत में था। अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अरविंद, आपने तो खुद आरोपी से बात करी है, सुमित तो ये कह रहा है कि वो बातचीत करने के लिए गया था, साक्ष्य क्या कह रहे हैं? वाकई दिल्ली पुलिस के मुताबिक वो नशे में था?
13: देखिए, जिससे आज तक में बात की उसका नाम हिमांशु शर्मा उर्फ हैप्पी शर्मा है, जो मौके से भाग गया था। जबकि जो एक आरोपी सुमित उसको मौके से पकड़ा गया था, जिस पर आरोप लगाया गया कि उसने जूता फेंका। अब दिल्ली पुलिस सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सुमित उस वक्त नशे की हालत में था। MLC में इस बात की पुष्टि हुई है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि फिलहाल पप्पू यादव की तरफ से कोई शिकायत नहीं मिली है। उनके PSO की तरफ से एक चाकू जरूर हैंडओवर किया गया था। अगर शिकायत मिलती है तो उस शिकायत के आधार पर लीगल एक्शन लिया जाएगा।
0: बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। बात यूपी विधानसभा की करेंगे, जिसका मॉनसून सत्र आज से शुरू हो रहा है। सत्र से पहले ही विपक्ष राम मंदिर दान में चोरी और नीट पेपर लीक जैसे मामलों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में दिख रहा है। 2027 के चुनाव को देखते हुए चढ़ावा चोरी के मामले को लेकर समाजवादी पार्टी राज्य सरकार के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में जुटी है। उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपील की कि सदन में जनहित से जुड़े हर मुद्दे को उठाएं और स्वस्थ चर्चा कर विकास को और गति प्रदान करने में सरकार का सहयोग करें।
14: सपा के जो कुकर्म हुआ है पिछले 17 के पहले का जो कुकर्म हुआ है उसका जवाब हम लोग अपने विकास कार्यों से देंगे, जो विकास हम किए हैं। और जो सपा शासन में दलितों शोषित वंचितों के खिलाफ अत्याचार हुआ उसका जवाब हम लोग सदन में यदि हो कुछ होगा तो ऐसा दिया जाएगा।
15: अखिलेश यादव शायद भूल गए हैं कि उत्तर प्रदेश में ठेकों पर नकल कराने का काम उनकी सरकार में हुआ। अखिलेश यादव की सरकार में खुलेआम नकल होती थी, नौकरियां पैसों की कीमत पे बिकती थी। अखिलेश यादव जी को याद रखना होगा कि उनके 5 साल के शासनकाल में 700 दंगे हुए थे, जाति के नाम पर धर्म के नाम पे फसाद हुए थे। उन अखिलेश यादव जी को आज उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की शिक्षा नीति पर सवाल उठाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।
16: देखिए, प्रमुखता से तो सबसे पहले है मंदिर की चढ़ावा चोरी, दूसरी मुद्दा है बिजली। बिजली गांव गांव में नहीं पहुंचती है। मैं अपने घर गया था, मेरे घर कट गई थी, परेशान था, जनरेटर चलाना पड़ा तो बिजली नहीं पहुंच पा रही। तीसरी बात है इस समय खाद की जरूरत है, यूरिया नहीं पर्याप्त मात्रा में मिल पा रहा, इसलिए खाद की समस्या पर उठाया जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या है हमारे यहाँ बेरोजगारी, तमाम स्कूल बंद कर दिए गए, इस सब पर चर्चा होगी, बहुत विषय है।
0: और यूपी के सरकारी स्कूलों के मर्जर का मुद्दा भी बेहद अहम बताया जा रहा है, क्योंकि अखिलेश यादव ने दावा किया है कि 26,000 स्कूल बंद हो गए हैं, सरकार इसे खारिज कर रही है और इसी मुद्दे पर हंगामा हो सकता है।
17: भाजपा सरकार के 10 साल में 26,000 स्कूल बंद हुए हैं। आपके पास कॉपी पहुंच गई होगी, उसमें पहले पेज पर अपील है और कुल सरकारी स्कूल जो बंद हुए हैं और मर्जर के नाम पर जो बंद हुए हैं वो 26,386 हैं। कुल बच्चों का नामांकन जो घटा है, जो एनरोलमेंट बढ़ा है वो 28 लाख के लगभग है, जिसमें पीडीए ओबीसी एससी एसटी के जो बच्चे हैं वो 25 लाख हैं। बेटियों का जो नामांकन कटा है वो 16 लाख है। सरकारी प्राइमरी शिक्षकों की संख्या घटी है वो 62,000 है। केवल स्कूल बंद होने से बच्चों की पढ़ाई नहीं छूट रही है, बेटियों की पढ़ाई नहीं छूट रही, साथ ही साथ ये नौकरी नहीं देना चाहते, सरकारी नौकरियां खत्म कर रहे हैं।
18: देखिए, सबसे पहले तो मैं अखिलेश यादव जी से कहना चाहूंगा कि अखिलेश यादव जी बिना जानकारी को लिए हुए, बिना तथ्यों को समझे हुए और जो वास्तविक में फैक्ट्स हैं उन सारी चीजों की उनको जानकारी नहीं है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना और किसी भी तरह की कोई जानकारी को साझा कर देने से हम तथ्यों को प्रस्तुत नहीं कर सकते हैं। अखिलेश यादव जी ने जो भी तथ्य प्रस्तुत किए हैं वो सरासर गलत हैं और बेबुनियाद हैं, मैं उनको पूरी तरह से खारिज करता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा वर्तमान में जितने भी परिषदीय विद्यालय हैं वो जो संचालित हैं, लगभग 1,32,773 परिषदीय विद्यालय हैं जो उत्तर प्रदेश में अभी संचालित हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अंतर्गत 71,877 बाल वाटिकाएं हैं जो संचालित हैं, जिसके माध्यम से हम सब लोगों ने इस वर्ष से प्री प्राइमरी की पाठशालाओं को प्रारंभ किया है, वे सब संचालित हैं। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था को चलाया जा रहा है, बच्चों के लिए नया नया पाठ्य पुस्तक हम सब लोग नया नया जो करिकुलम है उसको बना करके तैयार कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ी वृद्धि हुई है।
0: और यूपी विधानसभा का यह आखिरी मॉनसून सत्र है, इसके बाद आगे चुनाव होने हैं। ये सत्र क्यों खास है आपको दिखाते हैं। पहली बार विधानसभा में पूरा वंदे मातरम गाया जाएगा। 4 दिन के सत्र में सीएजी की रिपोर्ट पेश होंगी, अनुपूरक बजट भी पेश किया जाएगा। चुनाव से पहले का आखिरी मॉनसून सत्र है जो 6 अगस्त तक चलेगा।
19: तो पहली बार वंदे मातरम गीत पूरा गाया जाएगा, 6 पैराग्राफ्स, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका एक नोटिफिकेशन भी जारी किया है, और ये सदन पहला होगा जिसमें पूरा वंदे मातरम गीत गाया जाएगा। विधानसभा सुचारू रूप से चले, लगभग 4.5 साल हो रहे हैं सरकार को, सरकार की उपलब्धियां हैं जो सरकार बताना चाहेगी, विपक्ष के अपने कंसर्न्स होंगे जो रेज करेंगे, वो लोकतंत्र सहमति और असहमति से इसका एक पार्ट है, चर्चा परिचर्चा लोकतंत्र की मजबूती है, उसकी आत्मा है।
0: और अब बात रांची की करेंगे, जहां 14वीं जेपीएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ी का मामला सामने आया है। छात्रों का विरोध प्रदर्शन वहां लगातार जारी है और छात्र रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में 10 दिन से धरना दे रहे हैं। कल शाम बड़ी संख्या में छात्रों ने मशाल जुलूस निकाला, उन्होंने हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। उधर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीपके ने रांची में प्रदर्शन करे छात्रों से बातचीत की और उन्हें अपना समर्थन देने का ऐलान किया।
20: आप लोग स्टूडेंट्स झारखंड में प्रोटेस्ट कर रहे हो, हम पूरी तरह आपके साथ है, हमारा पूरा सपोर्ट आपके साथ है, और आपको किसी भी चीज की जरूरत रहेगी, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट होगी आप हमें बता दीजिए, हम वो सारी चीजें करेंगे जो आपके आंदोलन को मजबूत कर सकती है, और आपकी जितनी भी डिमांड्स है हम उन्हीं उन डिमांड्स का भी पूरा समर्थन करते हैं और हम हमारी तरफ से भी उन डिमांड्स को आगे रखेंगे।
0: और अब बात मानसूनी आफत की, जम्मू कश्मीर में यह आफत खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, वहां कई इलाकों में स्थिति गंभीर है। मूसलाधार बारिश के चलते कई हिस्सों में काफी ज्यादा परेशानी है, कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं बादल फटने के बाद हाहाकार मच गया है।
21: जम्मू कश्मीर में संकट काल की ये पहली तस्वीर देखिए, पानी का रौद्र रूप ऐसा है मानो वो सब कुछ अपने में समेट कर ले जाने को बेताब हो। ये तस्वीरें शोपिया के हिरपोरा इलाके की हैं। रविवार को यहाँ अचानक बादल फटा, इस घटना के बाद वहाँ अचानक बाढ़ आ गई। इस घटना को अपनी आंखों से देखकर हर कोई हैरान रह गया। उधर जम्मू में कटरा के बालनी चेक पोस्ट के पास जोरदार लैंडस्लाइड हुआ। पहाड़ टूटकर तिनके की तरह बिखरे तो आने जाने वालों पर आफत टूटी। पहाड़ का मलबा कटरा रियासी नेशनल हाईवे 144 तक जा गिरा। इस घटना के बाद नेशनल हाईवे 144 को बंद कर दिया गया। गाड़ियों की आवाजाही ठप हो गई। देर तक ऐसी ही स्थिति बनी रही। उधर म्यांमार जोजिला में भी तबाही हुई। शनिवार को वहां बादल फटे थे। घटना में कई कारें मलबे की चपेट में आईं। हालात ऐसे हो गए कि बचाव दल को जेसीबी और अन्य उपकरणों के साथ मोर्चा संभालना पड़ा। प्रशासन, पुलिस और प्रोजेक्ट विजयक टीम की संयुक्त टीम ने म्यांमार जोजिला में बादल फटने की घटना में फंसी गाड़ियों को निकालने के लिए जोरदार बचाव अभियान चलाया। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर आज तक।
0: और इसी संकट के बीच जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे NH44 पर लैंडस्लाइड के बाद प्रशासन राहत और बचाव अभियान चला रहा है। वहां लैंडस्लाइड के बाद रास्ता साफ करने के लिए जोर शोर से टीमें जुट गई हैं। NHAI ने उधमपुर के चेनानी के पास सड़क पर गिरे बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ने के लिए विस्फोटक का इस्तेमाल किया। बड़े पत्थर को तोड़ने और रास्ते की रुकावट हटाने के लिए कंट्रोल ब्लास्ट का सहारा लिया गया। राज सावन का पहला सोमवार है। इस मौके पर तड़के से ही भोले के भक्त शिवालयों में पहुंच रहे हैं। शिव भक्त मंदिरों में जलाभिषेक कर रहे हैं, फूल अर्पित कर रहे हैं और सोमवार के मौके पर आशीर्वाद ले रहे हैं। छह तस्वीरें आपके सामने हैं, वाराणसी, देवघर, दिल्ली, नोएडा, मुरादाबाद और उज्जैन की, जहां पर शिव भक्तों का हुजूम आज उमड़ पड़ा है।

0: तो बिना ब्रेक के खबरों का सिलसिला लगातार 9 बज गए में जारी रहेगा। वक्त हो गया हेडलाइंस का।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो। इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

पुर सीट के पहले राउंड की गिनती में बीजेपी आगे, बांकीपुर से थोड़ी देर में आएगा पहला रुझान। अध्यक्ष नितिन नवीन के गढ़ में बीजेपी की अग्नि परीक्षा, प्रशांत किशोर की सख्त दांव पर। संसद के मॉनसून सत्र में आज फिर हंगामे के आसार, छात्रों पर एक्शन, चढ़ावा चोरी जैसे मसलों पर विपक्ष का नॉनस्टॉप हल्ला बोल। सुबह 10 बजे खड़गे की अध्यक्षता में विपक्ष की बैठक। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र, चढ़ावा चोरी, परीक्षा धांधली और शिक्षा पर घेराबंदी की तैयारी में समाजवादी पार्टी। सीएम योगी ने कहा जनहित के मुद्दे उठाएंगे। भगवा बेश में चढ़ावा चोरी, ड्रामे के बाद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामे पर पप्पू यादव का आरोप, मेरी हत्या की थी साजिश, आरोपी गिरफ्तार, सांसद ने अब तक दर्ज नहीं कराई FIR। पहले सोमवार पर देश भर में बम बम भोले की जयकार, शिवालयों में जलाभिषेक और पवित्र दर्शन जारी, कांवड़ यात्रियों में जबरदस्त उत्साह।

मांझलपुर उपचुनाव में बीजेपी दमदार शुरुआत। पहले राउंड की मतगणना में सतीश पटेल ने बनाई निर्णायक बढ़त। मांझलपुर विधानसभा उपचुनाव से पहले राउंड की गिनती पूरी। बीजेपी के सतीश पटेल को 3,178 वोट जबकि कांग्रेस के भीकाभाई रबारी को 1,578 वोट मिले। दतिया उपचुनाव की मतगणना जारी। बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी बोले, विकास के दम पर जीत का भरोसा। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव रिजल्ट के पहले तेजस्वी पहुंचे मंदिर। बाबा हरिहरनाथ मंदिर में किया जलाभिषेक। बांकीपुर में मतगणना स्थल पर ड्रोन कैमरे से निगरानी। सुरक्षा चाक चौबंद। मतगणना स्थल पर उसके आसपास 5 किलोमीटर के दायरे में रखी जा रही है। आज से यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र। चढ़ावा चोरी, पेपर लीक, स्कूल बंद करने समेत कई मुद्दों पर सदन में हंगामे के आसार। मॉनसून सत्र से पहले सीएम योगी ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। कहा, लोकतंत्र में संवाद जरूरी, जनहित के मुद्दों पर हो चर्चा। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का दावा, यूपी में 10 साल में 26,000 से ज्यादा स्कूल हुए बंद। जौहर यूनिवर्सिटी पर बीजेपी को घेरा। 5 अगस्त को जनेश्वर जयंती के मौके पर समाजवादी पार्टी करेगी भव्य ब्राह्मण सम्मेलन। चुनाव के मद्देनजर ब्राह्मण वोट बैंक पर नजर। बीएसपी से अशोक सिद्धार्थ निष्कासित। अनुशासन नीता मामले में मायावती ने बाहर का रास्ता दिखाया। आज भी संसद में हंगामे के आसार। चढ़ावा चोरी मामले में सरकार को घेरने की तैयारी में है विपक्ष। विपक्ष के विरोध के बीच केंद्र सरकार आज संसद में एफसीआरए संशोधन बिल ला सकती है। कई एनजीओ ने किया है विरोध। कावेरी जल विवाद में कर्नाटक के सीएम डीके शिवकुमार ने 13 अगस्त के बंद के खिलाफ अपील की। पंजाब विधानसभा का मॉनसून सत्र चालू, 10 अगस्त तक रहेगा जारी। यूपी में दिव्यांगजन को आत्मनिर्भर बनाने के लिए आज से दिव्यांगजन रोजगार अभियान 3.0 शुरू। दिल्ली में पप्पू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा। पप्पू यादव का दावा, चाकू लेकर मारने की कोशिश, आरोपी पकड़ा गया। रांची में जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों का मशाल जुलूस। अनियमितताओं के खिलाफ उठाई आवाज, सीबीआई जांच की मांग की। रांची में छात्र प्रदर्शन में बोले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, जब झारखंड का युवा जाग चुका है, कांग्रेस को समूल नष्ट करने का समय है। झारखंड के छात्रों के समर्थन में आया कांग्रेस जनता पार्टी। अभिजीत दीपके बोले, छात्रों से हुई बात, सीजेपी उनकी मांगों का करता है समर्थन। रांची की नगरी पुलिस ने दर्ज कराई एफआईआर। पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, सीएम योगी को गाली देने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में कार्रवाई। जेएनजी आंदोलन पर बोले धीरेन्द्र शास्त्री, देश में विरोध दर्ज कराना सभी का लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन प्रदर्शन के नाम पर अभद्र भाषा और अपशब्दों का इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत है। बरनाला में कांग्रेस की बैठक में हंगामा। चन्नी के समर्थन में नारेबाजी। बैठक में मौजूद थे राजा वडिंग और भूपेश बघेल। कोलकाता में तस्लीमा नसरीन ने भारत में यूसीसी लागू करने का किया समर्थन। बांग्लादेश और पाकिस्तान में ऐसे कानून की जरूरत पर दिया जोर। ग्रीन एनर्जी में यूपी ने दिखाया रास्ता। पीएम सूर्य घर योजना में लखनऊ देश में नंबर 1। टॉप 100 में यूपी के 17 जिले। कांग्रेस ने कर्नाटक कैबिनेट विस्तार के लिए 18 नामों की मंजूरी दी। आज सुबह 10 बजे सीएम को अंतिम सूची भेजने की संभावना। पुलवामा में सुरक्षा बलों ने आतंकियों के संदिग्ध सहयोगी को गिरफ्तार किया। एक हैंड ग्रेनेड, एक आईफोन और 3 देश विरोधी पोस्टर और एक घड़ी बरामद। कुलगाम में 2 प्रवासी मजदूर। अनंतनाग में पुलिसकर्मी की हत्या करने वालों की पहचान सार्वजनिक करने की फारूक अब्दुल्ला ने की मांग। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों के ठिकाने का खुलासा। तलाशी अभियान के दौरान हिजबुल मुजाहिदीन का पोस्टर और आपत्तिजनक सामान बरामद। पाकिस्तान ने भारत से लगी सीमा पर तैनात किया चीन से महंगाई 250 हॉविट्जर तोपें। 72 किलोमीटर तक दागेंगी गोला। टीएमसी के 3 बैंक खातों को फ्रीज करने के आदेश खिलाफ अपील पर सुप्रीम कोर्ट में है आज सुनवाई। देहरादून में रेलवे जमीन विवाद पर गरमाया नोटिस। चस्पा करने से लोगों में आक्रोश। अधिकारियों के साथ हुई तीखी नोकझोंक। समस्तीपुर में 21 सितंबर से एनआई कार्य को लेकर कई ट्रेनों का परिचालन रद्द। कुल 384 ट्रेनों के परिवर्तन मार्ग से चलाया जाएगा। बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर का बड़ा बयान। कहा, किसी भी धर्म का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है। भारत एक ऐसा देश है जहां सभी धर्मों का सम्मान किया जाता है। उत्तराखंड में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने भारी बारिश और सड़क पर गिरे पेड़ के बीच खुद संभाली कमान। आधे घंटे में खुलवाया नैनीताल हल्द्वानी हाईवे। कटरा रियासी हाईवे पर लैंडस्लाइड। भारी बारिश से मलबा सड़क पर फैला। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश के बाद नदियों का जलस्तर बढ़ा। प्रशासन लोगों से दूर रहने की अपील की। लद्दाख के करगिल में भारी बारिश से चिकतान और समरा इलाके में अचानक आई बाढ़। कई निचले इलाकों में भरा पानी। यूपी के फरुखाबाद में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। गंगा किनारे बसे करीब आधा दर्जन गांव में कटान का खतरा। असम के शिवसागर में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए चलाया जा रहा है अभियान। सीआरपीएफ की मदद से लोगों तक पहुंचाया जा रहा है भोजन। सूरत का डुमास भारी बारिश की वजह से बंद। पुलिस की गश्त तेज।
केरलम के कई जिलों में जोरदार बारिश का दौर जारी। कन्नूर में वालपट्टनम नदी के जलस्तर में भारी वृद्धि। कर्नाटक के कबीनी बांध से तमिलनाडु के लिए छोड़ा गया 12,000 क्यूसेक पानी। भारी बारिश के बाद अचानक बढ़ा पानी। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा बिलासपुर मार्ग पर पुल ढहा, बस बीच में फंसी, सभी यात्री सुरक्षित। जलंधर मेयर की शुक्राना यात्रा में आपस में भिड़े दो गुट, बहसबाजी के बाद चले ईंट पत्थर। गाजियाबाद में दिनदहाड़े चेन स्नैचिंग, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। सिंगरौली में महिला ने भांजे की गला दबाकर हत्या की, सीसीटीवी में कैद हुई वारदात। गाजियाबाद की हाईड्रा सोसाइटी में महिला मनोचिकित्सक की पांचवें मंजिल से गिरकर संदिग्ध हालत में मौत, हर पहलू की पुलिस कर रही है जांच। राजकोट में मिलावटी दूध का बड़ा भंडाफोड़, 5400 लीटर मिलावटी दूध पुलिस ने किया नष्ट। उज्जैन के रतलाम में कोटा पैसेंजर के इंजन पर गिरा 25,000 किलोवाट का तार, लगी आग, कोई जनहानि नहीं। बिजनौर बीच सड़क पर नाबालिग पर ताना गया तमंचा, दी जान से मारने की धमकी, वीडियो हुआ वायरल। अमरावती में एमडी ड्रग्स जब्त, 22 साल का युवक गिरफ्तार, कार और मोबाइल समेत करीब 53 लाख रुपए का माल बरामद। महाराजगंज में निर्माणाधीन सरोवर में डूबने से 3 बच्चों की मौत, सुरक्षा मानकों की अनदेखी पर कंस्ट्रक्शन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। रामगढ़ में बिजली गिरने से 3 महिलाओं की मौत, 2 की हालत नाजुक। वडोदरा में बारिश के कारण फिसली एक्टिवा, हादसे में 19 साल की युवती की मौके पर मौत। यूपी के महाराजगंज में 70 साल के बुजुर्ग ने 4 साल की बच्ची के साथ छेड़खानी की, ग्रामीणों ने आरोपी को पीटा, वीडियो हुआ वायरल। बलिया में अश्लील वीडियो बनाने से डिप्रेशन में आकर नाबालिग बच्ची ने की आत्महत्या, 2 युवक गिरफ्तार। रायबरेली में निर्माणाधीन बिल्डिंग का लेंटर भरभराकर गिरा, गनीमत रही, बाल बाल बचे सभी मजदूर। मेरठ एसटीएफ पर बड़ी कार्रवाई, आरोपी तजम्मुल 21 अवैध तमंचों के साथ गिरफ्तार। सूरत में कार को ओवरटेक करने के चक्कर में पलटा ऑटो रिक्शा, सीसीटीवी में कैद हुआ हादसा, ऑटो चालक को सुरक्षित बाहर निकाला गया। पालघर में नाले में गिरकर बुजुर्ग घायल, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। अमरावती के दरियापुर में बंदूक और चाकू की नोक पर ज्वेलर्स की दुकान में डकैती, 500 ग्राम सोना 13 किलो चांदी लूटी गई। महाराष्ट्र जालना में गोमांस बरामदगी पर हंगामा, बजरंग दल ने किया प्रदर्शन। हैदराबाद में नाबालिग ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर, 2 लोग गंभीर रूप से घायल, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। सावन के पहले सोमवार पर शिव भक्तों का महासंगम, कांवड़ियों का उमड़ा जनसैलाब। सावन के पहले सोमवार को उज्जैन में हुई बाबा की भव्य रस्म आरती, बड़ी संख्या में भक्त मौजूद, परंपरागत विधि विधान से खुले मंदिर के कपाट। सावन के पहले सोमवार पर काशी विश्वनाथ मंदिर में जल चढ़ाने आए श्रद्धालु पर हुए पुष्प वर्षा, कमिश्नर और सीओ ने बरसाए फूल। देवघर के बाबा वैद्यनाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, शिव भक्तों से पटा मंदिर का चप्पा चप्पा। अयोध्या के नागेश्वरनाथ मंदिर में सावन के पहले सोमवार में बड़ी संख्या में उमड़े श्रद्धालु, बाबा भोलेनाथ का किया जलाभिषेक। बद्रीनाथ के आदि केदारेश्वर मंदिर में सुबह से उमड़ी श्रद्धालु की लंबी कतार, हर हर महादेव के जयघोष गूंजते ही वातावरण भक्तिमय दिखा। मुंबई में सावन के पहले सोमवार पर बाबुलनाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक। पुरी के लोकनाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में भक्तों ने किया बाबा भोलेनाथ का दूधाभिषेक। वाराणसी में पहले सोमवार को ब्रह्मा निवास मंदिर में महारुद्राभिषेक, बड़ी संख्या में लोगों ने की पूजा अर्चना। अयोध्या में पहले सावन पर सरयू में स्नान के लिए उमड़ा आस्था का जैन सैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सरयू में लगाई डुबकी। हरिद्वार से मुजफ्फरनगर पहुंचे कांवड़ियों का पर पुष्प वर्षा, एडीजी ने कांवड़ियों का किया स्वागत। सीकर के खाटू श्याम दरबार पहुंचे दिल्ली सरकार के मंत्री परवेश वर्मा, विधि विधान से की पूजा अर्चना। बेतिया के एक शख्स ने पेश की बहादुरी की मिसाल, तालाब में डूब रहे बच्चे की बचाई जान। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का शानदार समापन, भारत को 2030 की मेजबानी की कमान। बॉलीवुड स्टार सनी देओल के बेटे करण देओल ने पटना साहिब गुरुद्वारा में टेका मत्था, गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी ने भेंट किया सरोपा। स्पाइडरमैन की धमाकेदार शुरुआत, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने पहली वीकेंड में दुनिया भर में $927 मिलियन का कारोबार किया। फिल्म ने अमेरिका और कनाडा में $355 मिलियन कमाए, यह अब तक की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग बन गई। टॉम हॉलैंड चौथी बार बने हैं स्पाइडरमैन, उनकी वापसी को दर्शकों का जबरदस्त प्यार मिल रहा है। विदेशों में फिल्मों ने $572 मिलियन कमाए, सबसे ज्यादा $121 मिलियन की कमाई चीन से हुई। फिल्म ने को क्रिटिक्स ने 90% और दर्शकों ने 98% रेटिंग दी। रेटिंग से बॉक्स ऑफिस और फिल्म का दबदबा और मजबूत हो गया। दक्षिणी फ्रांस में लगी जंगल में आग में 100 हेक्टेयर से ज्यादा क्षेत्र को अपनी चपेट में लिया, कई इलाकों में लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। जंगल की आग पर काबू पाने के लिए 280 पुलिसकर्मी आग बुझाने में जुटे, 12 विमानों से हो रहा है पानी का छिड़काव।
एक वाहन में लगी आग से भड़की बड़ी घटना, तेज हवा और सूखे कारण आग तेजी से फैल रही है। प्रशासन ने आसपास के क्षेत्रों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजना शुरू कर दिया है। दमकल कर्मी इमारतों और दुकानों की आग बचाने में जुटे। ऑस्ट्रेलियाई जूलॉजिकल पार्क में मंडरा आग का खतरा, कई शुतुरमुर्ग समेत जानवर वहां मौजूद हैं।

0: और इस बीच बड़ी खबर बांकीपुर से आ रही है, जहां पर वोटों की गिनती में इस वक्त प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, ये सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। बीते कई वर्षों में बीजेपी ने यहां पर जीत हासिल करी है। अब उपचुनाव का पहला रुझान सामने आया है, जिसमें प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद ये सीट खाली हो गई थी, उसके बाद यहां उपचुनाव हुआ था। प्रशांत किशोर आगे बताए जा रहे हैं, पहला रुझान सामने आ चुका है। सुबह 8 बजे से ही वोटों की गिनती जारी है। 800 से ज्यादा वोट से आगे चल रहे हैं, हालांकि अप डाउन अभी भी चल रहा है। पूर्ण नतीजों का इंतजार करना होगा। बीजेपी के नीरज कुमार इस वक्त दूसरे नंबर पर चल रहे हैं, प्रशांत किशोर 800 वोट से आगे। पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं प्रशांत किशोर, 800 से ज्यादा वोट से बाकीपुर सीट से आगे हैं। नीरज कुमार दूसरे नंबर पर चल रहे हैं। बीजेपी का गढ़ ये सीट मानी जाती है। वहीं गुजरात के वडोदरा की मांजलपुर सीट पर भी काउंटिंग जारी है। दूसरे राउंड बीजेपी के सतीश पटेल को 3109 वोट मिले हैं। कांग्रेस के भीखाभाई रबारी को 1230 वोट मिले हैं। नोटा में 110 वोट पड़े हैं। 1640 के बाद अब दूसरे राउंड में 1879 मिलाकर बीजेपी के सतीश पटेल को कुल 3519 वोट से वो आगे हैं। मांजलपुर में 30 जुलाई को वोट डाले गए थे। इस विधानसभा सीट से साल 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के योगेश पटेल ने जीत दर्ज की थी। उनके निधन के बाद यहां पर उपचुनाव हुआ। अब इस सीट में बीजेपी रुझानों में आगे चल रही है, यह हमेशा से ही गढ़ रही है बीजेपी का। 2012, 2017 और 22 में लगातार बीजेपी के योगेश पटेल ने जीत हासिल की। बांकीपुर की अपडेट ले लेते हैं, मेरे सहयोगी शशि भूषण इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शशि भूषण, अब तो प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं 800 वोट से, हालांकि मार्जिन थोड़ा कम है, लेकिन क्या लग रहा है, लीड उन्हीं की रहेगी?
1: देखिए, लीड किसकी रहेगी ये नहीं बता सकते हैं, लेकिन एक बात जरूर है कि प्रशांत किशोर या जनसुराज के लिए एक अच्छी खबर है कि पहले राउंड की जो मतों की गिनती हुई है, उसके बाद बीजेपी उम्मीदवार नीरज सिन्हा से प्रशांत किशोर जो हैं वो 862 वोट से आगे हैं। तो अभी पहले राउंड की गिनती में अगर 862 की लीड है तो इसको कम नहीं माना जा सकता, क्योंकि बहुत ज्यादा मतों की गिनती हुई नहीं है, पहला राउंड ही खत्म हुआ है। और आपको बता दें कि प्रशांत किशोर को जो कुल मत मिले हैं पहले राउंड की वोटिंग गिनती खत्म होने के बाद, वो हैं 2225 वोट मिले हैं, 2225। और जबकि जो नीरज सिन्हा हैं वो उनके निकटतम प्रतिद्वंदी हैं इस वक्त, उनको 1363 वोट मिले हैं। आरजेडी के उम्मीदवार रेखा गुप्ता को 505 वोट मिले हैं। और इसी तरह तनवीर आलम, जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी मतलब पशुपति पारस की पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनको 203 वोट मिले हैं। तो ये मतों की स्थिति है पहले राउंड के बाद। प्रशांत किशोर जनसुराज के लिए एक अच्छी खबर है, हालांकि ये पहला राउंड है, आगे देखना होगा कि रुझान कैसे रहते हैं, क्या इस बढ़त को बरकरार रख पाते हैं प्रशांत किशोर। लेकिन जैसा पहले से माना जा रहा था कि बहुत कड़ी लड़ाई है बीजेपी और जनसुराज के बीच में, तो वो चीजें इस वक्त दिख रही हैं। जी
0: ठीक है, बने रही हमारे साथ। इस बीच मांजलपुर से अपडेट आ रहा है, मांजलपुर में तीसरे राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है, यहां पर भी बीजेपी आगे चल रही है। गुजरात की मांजलपुर में मतगणना अभी भी जारी है, तीसरे राउंड की मतगणना पूर्ण हो चुकी है। इस बीच खबर यह है कि इस गिनती के बाद बीजेपी के सतीश पटेल को 3058 वोट हासिल हुए हैं। कांग्रेस के भीखाभाई रबारी को 667 वोट मिले। अतुल तिवारी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अतुल, और कितने राउंड की मतगणना बाकी है, पूरी तस्वीर कब तक?
2: देखिए, 9 राउंड की पूरी मतगणना मांजलपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर होनी है, लेकिन अभी तक 3 राउंड की मतगणना के बाद 5900 से अधिक वोटों से बीजेपी के सतीश पटेल लीड कर रहे हैं। और भीखाभाई रबारी, जो कि अब तक की बात करें तो 3 राउंड के बाद उनको 3400 जितने ही वोट हासिल हुए हैं। जिस प्रकार से मांजलपुर विधानसभा की भी बात करें तो 2012, 17 और 22 में ये बीजेपी का गढ़ रहा है, और अब तक की जो वोटों की गिनती हुई है फिर एक बार वही दिखाई पड़ रहा है कि बीजेपी लीड कर रही है। और अब वाले बाकी के जो 6 राउंड है उसके परिणाम पर भी निर्भर करेगा कि परिणाम किसकी तरफ होगा, लेकिन फिलहाल बीजेपी 5910 वोटों से लीड कर रही है। साथ ही में अगर इस सीट की बात करें तो 83,000 जितने ही वोट यहाँ पे पड़े हुए हैं, यानी कि 37% मतदान 30 जुलाई के दिन हुआ था और अब जब वोटों की गिनती शुरू हो चुकी है तो करीब करीब 13,000 से 14,000 जितने वोटों का काउंटिंग इन तीन राउंड में हो चुका है।
0: उपचुनाव पर पल पल की अपडेट हम आज तक पर आपको दिखाते रहेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, उछला दिखते रहिए।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: No.
6: Oh, no.
5: Welcome to Get Real.
6: I got something to say.
5: A weekly talk show for the reality TV obsessed.
6: Oh, my God.
7: It's got to be deliciously desperate.
8: Why do these girls forgive him?
9: Well, she has a soft spot for troubled men.
7: Boo bloody hoo.
5: This is your show. Search Get Real on TuneIn to listen.
8: Love runs deeper than we know.
5: And stream new episodes Thursdays on Hulu and Hulu on Disney+.
10: कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
11: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद। लायन कश्मीर हनी,
10: असली शहद असली स्वाद।

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: जब बात हो रस चूसक कीटों से फसल सुरक्षा की, तो हर असली हीरो चुनता है जिवोरा। जिवोरा सफलता का शंखनाद।
2: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं।
3: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
4: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
5: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
6: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबा केसरी, हिंट बड़े आराम से।
2: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
3: Today at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests.
4: Nobody expected that he would test within 3 months of taking over as Prime Minister.
5: Two more tests were conducted simultaneously on 13th May 1998.
4: Secretly fooled some of the best CIA experts, and that became the incredible story about the bomb makers, which made cover of India Today.
6: जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिस कहानी के बहुत अच्छे परिणाम हैं और बहुत दुखद परिणाम हैं। भारत एक राजमहल है, समृद्ध है, सोने की चिड़िया है। गहरी बात है वो ये है कि इस राजमहल के चारों तरफ झोपड़ पट्टियां हैं, झुग्गियां हैं, चुनौती वाले क्षेत्र हैं। भारत आए अंग्रेज, यहाँ के लोगों को देखा उन्होंने, जब यहाँ के ग्रंथों को ट्रांसलेट करना शुरू किया, पढ़ा उन्होंने कि ब्राह्मण का जन्म मुंह से हुआ है। ये डिपार्टमेंट बनाया ही गया था शोषण के लिए। कौन सा? पुलिस। किसने बनाया था? कॉर्नवालिस ने। और पुलिस डिपार्टमेंट की खास बात यह है कि जब उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट भारत में बनाया, तब वो डिपार्टमेंट ब्रिटेन में नहीं था। ज्यूडिशियरी, मॉडर्न ज्यूडिशियरी उन्होंने अपने फायदे के लिए बनाया। अंग्रेजी कानून, अंग्रेजी जज। तुम कल्पना कर सकते हो, आधुनिक काल से पहले LGBT सड़क पर आकर प्रदर्शन करें, इनको तोप में बांध के उड़ा दिया होता।
7: तो क्या सिर्फ अब हिस्ट्री सिर्फ जो बाहर से लोग आए थे यहाँ पे शासन करने के लिए, उनको विलन के रूप में दिखा रहे हैं? या फिर
6: जो भी सरकार सत्ता में आती है वो शिक्षे का इस्तेमाल करती है अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने। वंदे मातरम पे बहस हो रही है, हर दिन मंदिर मस्जिद पे बहस हो रही है, मुसलमान पे बहस। ये संसद बनी किस लिए? औरंगजेब जो था भैया, डेली 200 किलो जनेऊ तोलता था। कितना? 200 किलो भी, मतलब डेली वो कम से कम 10,000 ब्राह्मणों को मारता था, हिंदुओं को। मैं देखता हूँ मुसलमानों को और हिंदुओं को, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ। पहले मैं सोचता था पुलिस वाले यहाँ लगा के पॉइंट ब्लैंक से क्यों मारते हैं, क्योंकि यहाँ ताला लगा हुआ है, तो इसीलिए मारते कि यहाँ मारे तो अगले जन्म में खुला हुआ रहेगा।
8: आपको लगता है कि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद देश फिर बट सकता है?
6: इस बात को मैं रिपीटेडली कह चुका हूँ, एक विस्फोट होगा बेटा।
9: लेकिन आपके पढ़ाने के तरीके मुझे एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट लगता है कि आप जनता को ही बोल देते हैं कि जनता बड़ी बेवकूफ़ है, और फिर आप कहते हैं कि हमारे देश का युवा पढ़ना नहीं चाहता है।

0: K-pop takes center stage. Bold sounds, global energy, and hits that move fast. Today's K-pop plays the biggest tracks, breakout anthems, and chart toppers. Fresh music on repeat, so you never miss a beat. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Today's K-pop to start listening now.
1: Finding myself. That's my moment of Sarah.
2: 몰디 छोले मसाले जहां जाए रिश्ते बनाए
3: मोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश
4: एक बार फिर जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने टारगेट किलिंग की दो गैर कश्मीरी मजदूरों की हत्या की सुरक्षा बल हमलावर आतंकियों की तलाश में जुटे पुलवामा के केल्लम इलाके और आसपास सर्च ऑपरेशन जारी है लेकिन इस एक्शन के बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने आतंकी वारदात को अलग ही मुद्दे से जोड़ दिया फारूक अब्दुल्ला ने सवाल किया कि जब भी उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग करती है तभी ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं
5: इसकी तहकीकात होनी चाहिए और ईमानदारी से तहकीकात होनी चाहिए कौन मारने वाले इससे पहले भी पुलिस वाले की उस पर अटैक हुआ है मुझे नहीं पता ये क्यों उस वक्त होता है जब हम लोग स्टेटहुड मांग रहे हैं
4: आतंकी वारदात के बीच फारूक अब्दुल्ला के सवाल पर सियासत भड़कते देर नहीं लगी बीजेपी फारूक अब्दुल्ला और उनकी पार्टी पर हमलावर हो गई वहीं कांग्रेस को इस बयान के बहाने केंद्र सरकार को घेरने का मौका मिल गया
6: देखिए पाकिस्तान को क्लीन चिट देना इन नेताओं की सोच में हमेशा रहता है और हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के इशारे के ऊपर ही यहां पर अटैक्स होते रहे हैं आज अगर हम लोग सुरक्षित हैं तो इन एजेंसीज के कारण जिनके ऊपर दोषारोपण इनके माध्यम से हो रहा है सीमा पर प्रहरी बनकर रक्षा करने वाले हमारे सैनिक सुरक्षा बल के लोग जिनके कारण घरों में हम लोग सुरक्षित हैं और आज इन परिस्थितियों में ये लोग भी ये जो बड़े नेता अपने आप को कहते हैं अगर सुरक्षित हैं तो इन एजेंसीज के कारण इन सुरक्षा बलों के लोगों के कारण इस पुलिस के कारण आज उन्हीं के ऊपर दोषारोपण किया जा रहा है
7: और इस तरह की बातें जो हैं वो चौंकाने वाली हैं एक तरफ से केंद्र सरकार दावे करती है कि हालात बिल्कुल काबू में है नॉर्मलसी है ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के पास है और सिक्योरिटी बंदोबस्त इतने मजबूत होने चाहिए इस वक्त अमरनाथ यात्रा चल रही है और उस वक्त ये वारदातें पहले भी एक वारदात हुई और इस तरह का अंजाम देने से ये वो बताते हैं कि उनकी प्रेजेंस है
4: अभी स्टेटहुड को लेकर फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बवाल छिड़ा ही था कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए लंबी लड़ाई का दावा कर इस विवाद को और भड़का दिया
8: हम भी जानते हैं ना अब एक दिन में जंतर मंतर जाके हमें कोई स्टेटहुड मिलने वाला नहीं था लाखों में स्टूडेंट्स आए उन्हें भी 25 दिन लगे हमें भी ये सिलसिला चलाना ही पड़ेगा कुछ जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ दिल्ली आके सिलसिला चलता रहेगा जब तक और हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं जिसका हमारे साथ वादा ना किया गया हो
4: उधर इस बयानबाजी के बीच मजदूरों को टारगेट कर जम्मू कश्मीर में हुआ ये हमला इसीलिए बेहद गंभीर और चिंताजनक है क्योंकि ऐसी आतंकी वारदात करीब 4 साल बाद दोहराई गई है जिसके बाद से सुरक्षा एजेंसियां भी काफी चौकन्ना हो गई आतंकी संगठन लश्कर से जुड़े संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF ने कुलगाम में हुए हमले की जिम्मेदारी ली जिससे साफ है कि इस हमले की साजिश सीमा पार से रची गई सुरक्षा एजेंसियां आतंकियों की धरपकड़ में लगी हैं लेकिन इस बीच फारूक अब्दुल्ला के बयान पर नई सियासी जंग भी शुरू हो गई है मीर फरीद के साथ आज तक ब्यूरो
9: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: mintmobile.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

नितिन नवीन के गढ़ बांकीपुर में बीजेपी और प्रशांत किशोर के बीच कांटे की टक्कर। पहले राउंड में प्रशांत किशोर को मामूली बढ़त, बीजेपी उम्मीदवार से करीब 800 वोट से आगे। दतिया और मांजलपुर सीट पर बीजेपी को बढ़त। संसद के मॉनसून सत्र में आज फिर हंगामे के आसार। छात्रों पर एक्शन, चढ़ावा चोरी जैसे मसले पर विपक्ष का नॉनस्टॉप हल्ला बोल। सुबह 10 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में विपक्ष की बैठक। आज से शुरू हो रहा है उत्तर प्रदेश विधानसभा का मॉनसून सत्र। चढ़ावा चोरी, परीक्षा और शिक्षा पर घेराबंदी की तैयारी में समाजवादी पार्टी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा जनहित के मुद्दे उठाएं। भगवा भेष में चढ़ावा चोरी ड्रामे के बाद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामे पर पप्पू यादव का आरोप, मेरी हत्या की थी साजिश, आरोपी गिरफ्तार, अब दर्ज हुई शिकायत। और आज सावन के पहले सोमवार पर देश भर में बम बम भोले की जयकार। शिवालयों में जलाभिषेक और पवित्र दर्शन जारी। कांवड़ यात्रियों में जबरदस्त उत्साह।

स्वागत है बुलेटिन की शुरुआत में बात तीन राज्यों की, तीन विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव की जिसकी काउंटिंग अभी जारी है। बिहार की बांकीपुर तीनों विधानसभाओं में से सबसे हॉट सीट बनी हुई है। वहीं मध्य प्रदेश की दतिया और गुजरात की मांजलपुर सीट पर भी वोटों की गिनती लगातार जारी है। तो शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। तीन राज्य और तीन विधानसभा सीटों के उपचुनाव पर वोटों की गिनती जारी है और सबसे बड़ा उलटफेर पटना के बांकीपुर में देखने को मिल रहा है, जहां से प्रशांत किशोर इस वक्त पता चल रहा है कि वो आगे चल रहे हैं। तो बीजेपी की पारंपरिक सीट रही है, वहां से बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन विधायक रहे हैं और उस सीट पर अब बीजेपी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। जन सुराज के प्रशांत किशोर यानी कि पीके अब आगे निकल आए हैं, ये उनके चुनाव में पहला कदम है और इसमें नजर आ रहा है कि इस वक्त जो रुझान आ रहे हैं उसमें प्रशांत किशोर बीजेपी को पछाड़ते हुए आगे बढ़ चुके हैं।

0: तो इन तीनों राज्यों के इन उपचुनावों के बारे में हम आपको बताएंगे। हमारे संवाददाता वहां से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं बांकीपुर का, जहां से जुड़ रहे हैं हमारे साथ शशि भूषण। शशि, आपसे जानना चाहेंगे कि जन सुराज के प्रशांत किशोर का इस वक्त रुझानों के मुताबिक आगे चलना क्या मायने है इसके?
1: देखिए अंजलि, प्रशांत किशोर ने जिस तरह से लड़ाई लड़ी और पूरी भारतीय जनता पार्टी को बांकीपुर में उतरना पड़ा, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद खाली हुई सीट, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष खुद यहां कैंप करते रहे और तमाम मुख्यमंत्री से लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्री गली गली में घूमते नजर आए थे। और स्टार कैंपेनर्स की एक बड़ी जो फौज है वो बीजेपी ने उतारी, जिसमें मनोज तिवारी भी आए, पवन सिंह भी आए, तमाम स्टारडम वाले नेता आए। उसके पीछे की वजह यह थी कि प्रशांत किशोर अकेले भारतीय जनता पार्टी के सामने ताल ठोक रहे थे। और देखिए, जो लड़ाई उन्होंने बनाई है उसका असर अब काउंटिंग में दिख रहा है। दो राउंड की काउंटिंग जो है, जो हमारे सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि अब दो राउंड की गिनती पूरी हो गई है। हालांकि आधिकारिक कन्फर्मेशन अभी एक राउंड का है, लेकिन हमारे पास जो जानकारी है, प्रशांत किशोर ने जो ऑफिशियली एक राउंड के काउंटिंग के बाद 862 वोटों की लीड बनाई है, वो अब दूसरे राउंड के बाद 1156 वोटों से लीड कर रहे हैं। थोड़ी देर में हो सकता है आधिकारिक पुष्टि आ जाए। हालांकि हम इलेक्शन कमीशन के ही डाटा को अगर देखें तो भी प्रशांत किशोर पहले राउंड की काउंटिंग के बाद आगे चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नीरज सिन्हा पीछे चल रहे हैं। हालांकि बड़ी चुनौती होगी नीरज सिन्हा के सामने भी, भारतीय जनता पार्टी के सामने। और सबसे बड़ी बात, कई अलग अलग राजनीतिक कोणों से अगर आप देखिए तो नितिन नवीन के लिए भी अपने आप में एक बहुत लिटमस टेस्ट होगा कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते हैं, इस सीट को खाली करते हैं, और उन्होंने जिस उम्मीदवार को खुद चुना, क्या वो उम्मीदवार प्रशांत किशोर को शिकस्त दे पाएगा इस चुनाव में, बेहद दिलचस्प होगा देखना। भारतीय जनता पार्टी का पहली बार बिहार में मुख्यमंत्री बना, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं और उसके बाद पहला कोई बाय इलेक्शन हो रहा है, उपचुनाव हो रहा है, और उसमें अगर भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन नहीं करती है बढ़िया या जीत नहीं हासिल करती है तो वहां भी सवाल उठ सकते हैं और सवाल बहुत सारे उठेंगे। लेकिन हाँ, एक बात जो इस वक्त दिख रही है जो बहुत ईमानदारी से कबूलनी होगी कि प्रशांत किशोर ने अकेले, उनके पास पार्टी के अंदर नेताओं की बहुत कोई फेहरिस्त नहीं है, अकेले वो कैंपेन करते रहे दूसरे नेताओं के साथ और नतीजा ये हुआ जो जमीन पर उतर करके उन्होंने मेहनत करी है पिछले दो महीने में, शायद ये उसका असर है कि पहले दो राउंड में इस वक्त प्रशांत किशोर बढ़त के साथ आगे हैं। राष्ट्रीय जनता दल तो अभी तीसरे नंबर की कहानी के साथ
0: जी बिल्कुल। शशि, आप हमारे साथ जुड़े रहे, इस वक्त बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है जहां की दतिया का भी रुझान अब हमारे पास आ चुका है। दतिया में बीजेपी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, तो आशुतोष तिवारी आगे चल रहे हैं। पहले राउंड में बीजेपी 1000 से अधिक वोट से आगे चल रही है। पहले राउंड में बीजेपी 4551 और कांग्रेस 3367 और चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को 1917 वोट मिले हैं। तो ये आपको बता रहे हैं अभी के रुझान हैं, इनके मुताबिक बीजेपी आगे चल रही है। तो चलिए, इस मुद्दे पर चर्चा के लिए आइए रुक करते हैं हमारे सहयोगी रवीश पाल सिंह का, जो जुड़ रहे हैं हमारे साथ भोपाल से। रवीश, यहां की कहानी बांकीपुर से बिल्कुल अलग है। यहां पर नरोत्तम मिश्रा का दबदबा रहा था, लेकिन पिछली बार कांग्रेस बाजी मार गई थी, तो ऐसे में अब एक नए नवेले कैंडिडेट का आगे चलना क्या बताता है हमको?
2: देखिए, नए नवेले कैंडिडेट का फिलहाल रुझानों में आगे चलना ये नरोत्तम मिश्रा के लिए संजीवनी साबित हो रहा है, क्योंकि जब नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा था और उस वक्त जो उपद्रव हुआ था, ये मान के चला जा रहा था कि नरोत्तम मिश्रा के समर्थक नाराज होंगे, वो भीतरघात कर सकते हैं और बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन इससे नरोत्तम मिश्रा भी जाहिर तौर पे चिंतित हुए होंगे कि अगर भीतरघात होता है, पार्टी का अधिकृत प्रत्याशी अगर हारता है, तो फिर स्वाभाविक सी बात है नरोत्तम मिश्रा के राजनीतिक भविष्य पर सवाल खड़े हो सकते थे। भारतीय जनता पार्टी एक्शन भी ले सकती थी अगर भीतरघात की खबरें सच साबित होती तो। बहरहाल, रुझानों में बीजेपी आगे बढ़ रही है तो नरोत्तम मिश्रा खुश हैं। थोड़ी देर पहले उन्होंने आज तक से बात भी की है और बीजेपी की जीत को लेकर के वो आश्वस्त दिखे हैं। उनका कहना है कि जब उपद्रव हुआ तो उन्होंने कार्यकर्ताओं से बात की, समर्थकों से बात की, उन्हें मनाया और उनकी नाराजगी को दूर किया। मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष हो या नरोत्तम मिश्रा हो, सबने उनके साथ बैठ करके उनसे बातचीत की और बीजेपी के जो अधिकृत उम्मीदवार हैं आशुतोष तिवारी, उनके पक्ष में प्रचार करने के लिए जब सबको मना लिया तो उसी का नतीजा है कि शुरुआती रुझान में भाजपा फिलहाल आगे दिख रही है। जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पहले चरण में बीजेपी की लीड बढ़ी थी, लेकिन दूसरे चरण में बीजेपी की जो लीड है वो करीब 200 वोटों से नीचे आई है और जो लीड 1000 के करीब आसपास थी बीजेपी की वो घटी है फिलहाल। लेकिन अभी भी दूसरे राउंड के बाद भी बीजेपी का प्रत्याशी जो है फिलहाल वो आगे चल रहा है। तो कहीं ना कहीं कुल 15 राउंड की जो वोटिंग होनी है उसमें से अब 13 राउंड और बचे हैं और शुरुआती दो चरणों के मुताबिक फिलहाल बीजेपी का जो अधिकृत प्रत्याशी है आशुतोष तिवारी वो आगे चल रहे हैं और इसी ने संजीवनी दी है नरोत्तम मिश्रा को, जो चिंतित चल रहे थे इस बात से।
0: जी बिल्कुल रवीश, आप हमारे साथ बने रहे क्योंकि जैसा कि आपने बताया नरोत्तम मिश्रा ने बातचीत की है आज तक के साथ, कितने आश्वस्त है ये आइए सुन लेते हैं।
2: क्या लगता है आपको जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं बीजेपी इसमें आगे चल रही है?
3: बीजेपी आगे रहेगी, मैं प्रारंभ से ही कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी आगे रहेगी।
2: शुरुआत में ऐसा लग रहा था जब आपका टिकट कटा था तो जो उपद्रव हुआ उस वक्त लगा कि शायद ऐसा तो नहीं, कि
3: सारे मना लिए थे, मान गए थे, सब काम में लग भी गए थे,
2: आप भी पहुंच गए थे नामांकन के अगले दिन फिर?
3: नहीं नहीं, मैं तो वहीं रहा, मैं आया नहीं भोपाल उस बीच में, पूरे चुनाव के दरमियान वहीं पर रहा।
2: आपने काफी समर्थकों को मनाया उस वक्त, हमने देखा था आपकी तस्वीरें भी काफी सामने आई।
3: होता है, एक छड़े का आवेश था, फ्लड था, आया निकल गया, आता भी है, सब मान गए थे।
2: कांग्रेस कह रही थी कि इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ेगा, लेकिन शुरुआती रुझान में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा।
3: नहीं, भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही हम कह रहे थे आगे रहेगी।
2: और लेकिन इसे कैसे देखते हैं आप? आपको जिसने चुनाव हराया था राजेंद्र भारती, जिनकी सदस्यता रद्द होने की वजह से ये उपचुनाव हुए, काउंटिंग से ठीक एक दिन पहले भी नहीं, चंद घंटों पहले ही उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया गया।
3: वो उनके लिए ये पार्टी से आना और जाना राजेंद्र भारती के लिए कोई नई बात नहीं है। कर तो तभी देना था उनको जब वो भ्रष्टाचार के केस में तिहाड़ जेल गए थे, आरोप सिद्ध हो गए थे, नहीं किया। खैर, उनकी पार्टी का मामला था, वो कई पार्टियों में रह चुके हैं, आधा दर्जन पार्टियों में रह चुके हैं वो, और चार पार्टियों से तो चुनाव ही लड़े हैं।
2: घनश्याम सिंह कह रहे हैं कि
3: सपा घड़ी राष्ट्रवादी और कांग्रेस, चार पार्टियों से चुनावी लड़ चुके हो।
2: घनश्याम सिंह का आरोप यह है कि राजेंद्र भारती आपके साथ मिले हुए थे और उनको नुकसान पहुंचाया है।
3: नहीं, उल्टा बोल गए आप, उल्टा बोल गए, ये उसका आरोप उस पर था, पर वो आरोप राजेंद्र भारती जी के आरोपों का कोई वो नहीं है। वो हमेशा ही हमारा नाम पे ही उनकी चल रही है दुकान, फोबिया है हमारे नाम का उनको।
2: अच्छा, ये मान के चला जाए कि जो रुझान है जो भाजपा के पक्ष में आते दिख रहे हैं ये नतीजों में परिलक्षित होंगे?
3: निश्चित रूप से।
0: और अब खबर गुजरात से, वडोदरा के मांझलपुर में बीजेपी को बंपर बढ़त मिली हुई है। 8,000 से ज्यादा वोटों से बीजेपी अब आगे चल रही है। बीजेपी के सत्येंद्र पटेल इस वक्त आगे चल रहे हैं और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी अतुल तिवारी का। अतुल, क्या स्थिति है वहां पर काउंटिंग की?
4: देखिए, काउंटिंग की बात करें तो 4 राउंड का काउंटिंग पूरा हो चुका है, कुल 19 राउंड काउंटिंग होना है, लेकिन जो 4 राउंड के परिणाम है उसने बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जोश का संचार कर दिया है, क्योंकि जिस प्रकार से साल 2022 में हुए चुनाव में बीजेपी को 1,00,000 से भी ज्यादा वोटों की लीड मिली थी, लेकिन इस बार के उपचुनाव में लगभग 82,000-83,000 जितना ही वोटिंग हो पाया था। उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही थी, लेकिन अब जिस प्रकार से एक के बाद एक वोटों की काउंटिंग शुरू हो चुकी है, 4 राउंड के बाद 8,300 से भी ज्यादा वोटों के अंतर से बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं वो आगे चल रहे हैं, यानी कि कांग्रेस के खेमे में अगर बात करें तो चिंता का माहौल जो है वो शुरू हो चुका है। लगभग आने वाले 1 घंटे के अंदर परिणाम बहुत हद तक साफ हो जाएंगे, क्योंकि 19 राउंड का काउंटिंग होना है, 4 राउंड के अंदर ही बीजेपी 8,300 से भी ज्यादा वोटों से बीजेपी के कैंडिडेट अभी आगे चल रहे हैं। जो कि मांझलपुर की भी बात कर लें तो ये सीट बीजेपी का गढ़ है और जिस प्रकार से 2022 के परिणाम भी बीजेपी के हक में रहे थे, 156 सीट बीजेपी ने इस गुजरात विधानसभा के 2022 के चुनाव में जीत हासिल की थी, उसके बाद बीजेपी के जो सीटों का आंकड़ा था वो बढ़कर 162 से 163 तक पहुंच चुका था, लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार योगेश पटेल के निधन के बाद इस सीट पर उपचुनाव हुए हैं और हमारे साथ जो बीजेपी के नेता हैं वो भी मौजूद है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। जिस प्रकार से चुनाव सामने आ रहे हैं, वोटों की काउंटिंग तो शुरू हुई लेकिन मतदान बहुत कम हुआ था, कितने आश्वस्त हैं, कितनी की लीड की उम्मीद है आपको?
5: पूरे गुजरात की नज़र, बड़ौदा महानगर की नज़र आज मांझलपुर के बाई इलेक्शन के रिजल्ट पे है। मांझलपुर की जनता ने, बड़ौदा महानगर की जनता ने हर हमेशा भारतीय जनता पार्टी की विकास की राजनीति को अनुमोदन दिया है। प्राप्त माहिती अनुसार 4 राउंड के अंत में 9,000 से ज़्यादा की लीड भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को प्राप्त हुई है। सभी कार्यकर्ता ने कर्मठता से कार्य करके अपना पूर्ण सहयोग दिया था। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को
0: जी बिल्कुल
5: मिला है विकास की राजनीति।
0: लगातार इस पर नजर रखेंगे हम, अतुल आपके पास आते रहेंगे। तो ये तो बात हो गई उपचुनावों की, लेकिन लेकिन अब रुख करते हैं उत्तर प्रदेश का, क्योंकि वहां पर विधानसभा का सत्र आज शुरू होने वाला है और उससे पहले ही वहां पर शोर शराबा शुरू हो गया। चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के विधायकों का प्रदर्शन इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तो आज जब सत्र शुरू होने वाला है और इन्हीं मुद्दों पर चर्चा और इन्हीं मुद्दों पर विवाद होने की बात थी, तो एक बार फिर से आप देख सकते हैं कि दान पेटी वाला वो प्रदर्शन जो हमने संसद में देखा वो अब विधानसभा में भी। हमारे साथ इस वक्त समर श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। समर्थ, यही तस्वीरें देश की संसद में भी देखने को मिली, वही पैटर्न अब लेकर समाजवादी पार्टी आ गई है विधानसभा में भी, तो साफ है ये मुद्दा है इसको छोड़ने को तैयार नहीं है।
6: हम लोग भारतीय जनता पार्टी के द्वारा
7: जो तस्वीरें देश की संसद में देखने को मिल रही थी, वही तस्वीरें अब प्रदेश की विधानसभा में देखने को मिल रही हैं। आप तस्वीरें देखें और खुद समझें कि इस वक्त यहां विधानसभा में क्या माहौल आन पड़ा है। एक घंटे बाद सत्र की शुरुआत होनी है, लेकिन उससे ठीक पहले समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक जो हैं वो हाथों में तख्तियां लेकर पहुंच चुके हैं ठीक यहां जहां पर कुल मिलाकर ये प्रदर्शन चल रहा है। इनकी कई अपने आप में जो मांगे हैं वो हैं, ये चंदा चोरी का प्रमुखता से इस पूरे विषय को उठा रहे हैं। कई विधायकों से हम बातचीत भी करेंगे। ये विधानसभा है, सामने चौधरी साहब की प्रतिमा है, आइए बात करते हैं क्या कुछ मुद्दा आप लोग का है।
8: हटियो साहब, हटियो, बताइए।
9: सबसे पहले हमारा मुद्दा पीडीए आरक्षण का घोटाला। राम मंदिर
7: पात्र देख लो, तमाम विधायक लिए यहाँ पर मौजूद है।
9: जो दान पत्र चोरी दान पत्र से हुआ है, उस चोरी को लेकर के हम दान पत्र उसका प्रतिरूप बना करके हम दान
7: अयोध्या से दान पात्र जो है वो आप जो है सिंबॉलिक तौर पर दिखा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे उसके बारे में?
10: जो चंदा चोरी किया है या करेगा वो पछताएगा।
7: क्या लिए आपने दिखाएंगे एक बार जरा? तो ये यहाँ पर स्कूल्स का जो मुद्दा है वो उठा रहे हैं सपा के विधायक, चंदा चोरी की जो बात है वो बता रहे हैं। आप क्या बता रहे हैं? नीट
11: देखिए, हम लगातार देख रहे हैं कैसे हमारे नौजवानों का भविष्य सरकार ने खराब करने का काम कर रही है। चाहे हम दरोगा भर्ती की बात करें, नीट, यूजीसी, टेट, पेट, सहायक प्रोफेसर, पंचायत, किसी भी आप परीक्षा की बात करें, यू नेम इट, दे आर लीकिंग इट।
0: इस वक्त परीक्षा समर्थ शिवपाल यादव बोल रहे हैं, आइए सुन लेते हैं।
12: युवाओं का सवाल और इतने कम समय में तो लोकतंत्र में जब समस्याओं से भाग रही है, तो लोकतंत्र में इतने समय से कम समय में समस्याओं का हल नहीं हो सकती है, तो हम इस सरकार के एक कम समय में बुलाने पर इस सरकार की निंदा करते हैं।
8: आप लोग राम मंदिर वाला मुद्दा उठा रहे हैं।
0: तो आप सुन रहे थे शिवपाल यादव को। लगातार समाजवादी पार्टी एक ही मुद्दे और आज जो तख्तियां पकड़ के बैठी है उसके साथ कुछ और मुद्दों को भी लेके बैठी है, लेकिन सामने सबसे आगे सबसे दान पात्र ही है और यही मुद्दा उसने संसद में उठाया और इसी मुद्दे को लेकर मानसून सत्र के शुरू होने से पहले ही प्रदर्शन जारी है। हाथ में तख्तियां आप देख सकते हैं, साथ में दान पात्र और मुद्दे कई हैं। सबसे बड़ा मुद्दा दान पात्र से चोरी का, अयोध्या दान की चोरी का। दूसरा मुद्दा नीट का, उसको भी उठा रहे हैं और साथ में स्कूल जो बंद हुए हैं उसके बारे में। आइए सुनते हैं कि मंत्री स्वतंत्र देव सिंह क्या कह रहे हैं इस मुद्दे पर, सुन लेते हैं।
6: भारतीय जनता पार्टी
13: सपा के जो कुकर्म हुआ है पिछले सत्र के पहले का जो कुकर्म हुआ है उसका जवाब हम लोग अपने विकास कार्यों से देंगे, जो विकास हम किए हैं। और जो सपा शासन में दलितों, शोषित, वंचितों के खिलाफ अत्याचार हुआ उसका जवाब हम लोग सदन में यदि हो कुछ होगा तो ऐसा दिया जाएगा।
0: और आपको बता दें इस वक्त बड़ी खबर उपचुनाव से आ रही है। बांकीपुर के उपचुनाव की खबर आपको बता देते हैं। इस वक्त जो खबर आ रही है, पीके यानी कि प्रशांत किशोर 1100 वोटों से आगे चल रहे हैं। दूसरे राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। प्रशांत किशोर का पहला दांव है ये चुनावी दांव और उसमें वो बांकीपुर में जो कि बीजेपी का गढ़ है, और छोड़िए बीजेपी का गढ़, वो नितिन नवीन की सीट है उसमें प्रशांत किशोर इस वक्त मतगणना में आगे चल रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। 1100 से ज्यादा वोट से आगे प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर जो लगातार जनसुराज के जो संस्थापक है वो वहां पर काम करते आए हैं, इस बार उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है इस सीट के लिए और मतगणना में इस वक्त वो सबसे आगे चल रहे हैं। तो इसके मायने जानने के लिए आइए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी शशिभूषण का। शशिभूषण, दूसरा राउंड भी पूरा और 1100 वोटों से ज्यादा की बढ़त।
1: बिल्कुल देखिए, थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि सोर्सेज बता रहे हैं कि दूसरे राउंड में भी प्रशांत किशोर को लीड है, तो अब ऑफिशियल कंफर्मेशन है। इलेक्शन कमीशन ने अपडेट भी कर दिया है, 1161 वोट से प्रशांत किशोर दूसरे राउंड की काउंटिंग खत्म होने के बाद आगे चल रहे हैं। प्रशांत किशोर को कुल 3795 वोट मिले हैं अब तक दूसरे राउंड की गिनती पूरी होने तक, और उसके बाद उनके ठीक पीछे 2634 वोट के साथ नीरज सिन्हा है, नीरज कुमार हैं जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं, 664 वोट उनको मिले हैं जो रेखा गुप्ता है। तो जाहिर तौर पे कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर जनसुराज के लिए ये बहुत ही एक अच्छा मैसेज है जो रुझान है उसके अंदर की वो शुरुआती बढ़त उन्होंने बनाकर रखी हुई है। ये बढ़त उनको आगे 29 राउंड में भी बनाकर रखनी होगी क्योंकि 31 राउंड की मतगणना जो है वो बांकीपुर में होनी है।
0: जी, बहुत अहम हो जाता है कि वो पूरे 29 राउंड में भी इस बढ़त को बना के रखे। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और ये तस्वीरें हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं इसी बांकीपुर की सीट को लेकर के। एक तरफ प्रशांत किशोर जो लगातार अपनी मेहनत और ताकत झोंकते आए लेकिन आगे भी चल रहे हैं, और दूसरी तस्वीर बीजेपी की है जो लड्डू तैयार कर रही है क्योंकि उसको आत्मविश्वास है कि वही इस सीट को जीतेगी। आखिरकार उसका गढ़ है बांकीपुर, तो उसने अपनी पूरी तैयारी कर ली है खुशियां मनाने की, सेलिब्रेशन की, और उसने अपने लड्डू तैयार कर लिए हैं। दूसरी तरफ प्रशांत किशोर जो लगातार चुनावी यात्राएं करते रहे, ताकत झोंकते रहे, कैंपेनिंग करते रहे, वो इस वक्त 1161 वोटों से आगे चल रहे हैं। और शुरुआती रुझान है, दो ही राउंड हुए हैं। एक बार फिर से रुक करते हमारे सहयोगी शशि भूषण का। शशि भूषण, कॉन्फिडेंस कुछ भी कहें बीजेपी का अलग है क्योंकि वो अपने लड्डू तैयार करके बैठे हैं।
1: बिल्कुल, और उनको ऐसा लगता है कि लड्डू खाने की बारी उनकी ही आएगी। हालांकि कई बार हमने लड्डू बनने के बाद भी माहौल उलट होते देखा है, क्योंकि जनता का जनादेश जो है सबसे बड़ा होता है अंजलि, उससे बड़ा कोई जनादेश होता नहीं है। प्रशांत किशोर फिलहाल बढ़त में है, लेकिन आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी को क्यों लगता है कि लड्डू उनके कुनबे में ही फूटेगा। आप इस सीट की अगर बात मैं करूं तो यहां पर हमेशा वोटिंग परसेंटेज बेहद लो रहा है। पिछले चुनाव में भी 40% से कम वोटिंग, 40% के आसपास वोटिंग हुई थी, इस बार 34% से थोड़ी ज्यादा वोटिंग हुई। इसको लेकर के कई राजनीतिक दल या उम्मीदवार चिंता भी जता रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अपना जो थिंक टैंक है या जो चुनावी गणित समझता है वो ये दावा कर रहा था कि इस कम वोटिंग परसेंटेज में भी उनके लिए जीत के संकेत छिपे हुए हैं। और क्यों भारतीय जनता पार्टी ये कहती है, साल 2006 में इसी विधानसभा सीट पे बाय इलेक्शन हुआ था, उपचुनाव हुआ था। 2005 में बिहार में आम असेंबली चुनाव हुए थे जिसमें नवीन किशोर सिन्हा जो नितिन नवीन के पिता थे वो जीत करके आए थे, हालांकि उनके निधन के बाद 2006 में यहां उपचुनाव हुआ। उस उपचुनाव में केवल 19 फीसदी वोट भारतीय जनता पार्टी को मिले थे, लेकिन उसके बावजूद नितिन नवीन चुनाव जीत करके पहली बार विधायक बने थे। उसके बाद कभी भी नितिन नवीन इस सीट से नहीं हारे। इस बार भी नीरज सिन्हा भले ही उम्मीदवार हो भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन चुनावी प्रबंधन, चुनावी जो पूरा मैकेनिज्म होता है उसको खुद नितिन नवीन पटना में बैठ करके कैंप करके अंजाम दे रहे थे। तो भारतीय जनता पार्टी का भरोसा इसी बात को लेकर के है। हालांकि प्रशांत किशोर अगर चौंकाते हैं, अगर बड़ा उलटफेर करते हैं अंजलि, तो ये लड्डू छिन जाएगा बीजेपी के हाथ से, ये भी तय मान।
0: जी, आप हमारे साथ बने रहे शशि भूषण। तो लगातार हमारी नजर रहेगी इन उपचुनावों पर, लेकिन फिलहाल ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
15: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
15: भारत की अपनी इलेक्ट।
16: When it comes to your favorite podcasts, missing an episode isn't an option. Luckily, TuneIn's got you covered. Start by creating a free TuneIn account and keep everything synced across your devices. Then favorite the shows you love. We'll bring new episodes right to your homepage, so they're always easy to find. And with notifications turned on, you'll get a heads up when new episodes drop. Stay in the loop effortlessly.
17: Jai Hind friends, आज हम एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिस कहानी के बहुत अच्छे परिणाम है और बहुत दुखद परिणाम है। भारत एक राजमहल है, समृद्ध है, सोने की चिड़िया है। गहरी बात है वो ये है कि इस राजमहल के चारों तरफ झोपड़पट्टियां हैं, झुग्गियां हैं, चुनौती वाले क्षेत्र हैं। भारत आए अंग्रेज, यहाँ के लोगों को देखा उन्होंने, जब यहाँ के ग्रंथों को ट्रांसलेट करना शुरू किया, पढ़ा उन्होंने कि ब्राह्मण का जन्म मुंह से हुआ है। ये डिपार्टमेंट बनाया ही गया था शोषण के लिए। कौन सा? पुलिस। किसने बनाया था? कॉर्नवालिस ने। और पुलिस डिपार्टमेंट की खास बात यह है कि जब उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट भारत में बनाया, तब वो डिपार्टमेंट ब्रिटेन में नहीं था। ज्यूडिशरी, मॉडर्न ज्यूडिशरी उन्होंने अपने फायदे के लिए बनाया। अंग्रेजी कानून, अंग्रेजी जज। तुम कल्पना कर सकते हो, आधुनिक काल से पहले LGBT सड़क पर आकर प्रदर्शन करें, इनको तोप में बांध के उड़ा दिया होता।
18: तो क्या सिर्फ अब हिस्ट्री सिर्फ जो बाहर से लोग आए थे यहाँ पे शासन करने के लिए, उनको विलन के रूप में दिखा रहे हैं? या फिर
17: जो भी सरकार सत्ता में आती है वो शिक्षा का इस्तेमाल करती है अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने। वंदे मातरम पे बहस हो रही है, हर दिन मंदिर मस्जिद पे बहस हो रही है, मुसलमान पे बहस। ये संसद बनी किस लिए? औरंगजेब जो था भैया, डेली 200 किलो जनेऊ तोलता था। कितना? 200 किलो भी, मतलब डेली वो कम से कम 10,000 ब्राह्मणों को मारता था, हिंदुओं। मैं देखता हूँ मुसलमानों को और हिंदुओं को, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ। पहले मैं सोचता था पुलिस वाले यहाँ लगा के पॉइंट ब्लैंक से क्यों मारते, क्योंकि यहाँ ताला लगा हुआ है, तो इसीलिए मारते कि यहाँ मारे तो अगले जन्म में खुला हुआ रहेगा।
19: आपको लगता है कि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद देश फिर बट सकता है?
17: इस बात को मैं रिपीटेडली कह चुका हूँ, एक विस्फोट होगा बेटा।
20: लेकिन आपके पढ़ाने के तरीके मुझे एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट लगता है कि आप जनता को ही बोल देते हैं कि जनता बड़ी बेवकूफ़ है, और फिर आप कहते हैं कि हमारे देश का युवा पढ़ना नहीं चाहता है।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

नितिन नवीन के गढ़ बांकीपुर में बीजेपी और पीके के बीच कांटे की टक्कर। दो राउंड में प्रशांत किशोर को 1100 से ज्यादा वोटों की बढ़त। दतिया और मांजलपुर सीट पर बीजेपी आगे। संसद के मॉनसून सत्र में आज फिर हंगामे के आसार। छात्रों पर एक्शन, चढ़ावा चोरी जैसे मसले पर विपक्ष का नॉनस्टॉप हल्ला बोल। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में विपक्ष की बैठक।

समाजवादी पार्टी विधायकों का प्रदर्शन, परीक्षा और शिक्षा पर भी घेराबंदी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, जनहित के मुद्दे उठाएं। भगवा भेष में चढ़ावा चोरी ड्रामे के बाद अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामे पर पप्पू यादव का आरोप, मेरी हत्या की थी साजिश, आरोपी गिरफ्तार, अब दर्ज हुई शिकायत। और आज सावन के पहले सोमवार पर देश भर में बम बम भोले की जयकार, शिवालयों में जलाभिषेक और पवित्र दर्शन जारी, कांवड़ यात्रियों में जबरदस्त उत्साह।

0: सेगमेंट की एक बड़ी खबर आ रही है। संसद में मोदी सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा के लिए राज्यसभा और लोकसभा में विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स की इस वक्त बैठक जारी है। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा के विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में इस वक्त ये बैठक हो रही है। तो क्या साझा रणनीति रहेगी, इस पर चर्चा की जा रही है। आपको बता दें कि लगातार जब से मॉनसून सत्र शुरू हुआ है, दोनों सदनों में हंगामा देखने को मिला है। खास तौर पर लोकसभा में किसी भी तरह से चर्चा नहीं चल पाती है। ऐसे में क्या रहेगी अब रणनीति, ये जानने के लिए आइए सीधा रुक करते हैं हमारी सहयोगी मौसमी सिंह का। मौसमी, इस चर्चा में क्या एजेंडा है?
1: देखिए, कुल मिला के फ्राइडे को देखा था हम लोग ने कि किस तरीके से बहुत जबरदस्त हंगामा हुआ, नाटकीय अंदाज में पूरा चंदा चोरी वाला मसला उठाया गया और उसके साथ ही अमित शाह कहाँ गायब है इसको लेकर भी सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश हुई है। एक तरीके से अगर आप देखें कि अंजलि पूरी तरीके से यहाँ समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और पूरा इंडिया ब्लॉक एक साथ सरकार को घेरते हुए नजर आ रहा है। तो आज मंडे को क्या रणनीति होगी, चंदा चोरी पे कैसे घेरा जाएगा, क्या चर्चा की मांग की जाएगी, दूसरी ओर गृह मंत्री अमित शाह कहाँ गायब है इसको लेकर भी नारा बुलंद किया जा रहा है। अभी थोड़ी देर में हम लोग देखेंगे मकर द्वार पे जबरदस्त प्रोटेस्ट होने वाला है। संजय जायसवाल पप्पू यादव के खिलाफ नोटिस दे रहे हैं, राहुल गांधी के खिलाफ पहले से ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है। तो बहुत धुआंधार आज वार और पलटवार होने वाला है।
0: बिल्कुल, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। उधर इस वक्त बड़ी खबर यही है कि पप्पू यादव पर हमले का मामला अब संसद तक पहुंच गया है। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल पप्पू यादव के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाएंगे। संजय जायसवाल ने कहा है कि, और हम उनको कोट कर रहे हैं, कि हम सभी जानते हैं कि पप्पू यादव हमेशा से असामाजिक गतिविधियों में लिप्त रहे हैं। पप्पू यादव पर कोई हमला नहीं हुआ, संभव है कि उन्होंने YouTube पर व्यूज पाने के लिए खुद ही पर पूरा ड्रामा रचा हो। जिस चाकू की वो बात कर रहे हैं वो शायद उनके अपने ही रसोई घर का रहा होगा। तो ये कह रहे संजय जायसवाल, जो पप्पू यादव के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस आज देने वाले हैं।
2: मैंने लिखा है कि रूल 222 और 223 के तहत हर हालत में माननीय स्पीकर साहब को संज्ञान में लेकर कार्रवाई करनी चाहिए और इसके साथ ही मैंने अनुरोध किया है कि रूल 227 के तहत उन्होंने जो किया है उसको विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाना चाहिए। आज मैं सदन में भी स्पीकर साहब से इसका मांग करूंगा। इस तरह के व्यक्ति जो कि पार्लियामेंट के भीतर और ये पूरा कैंपस के कस्टोडियन स्पीकर हैं, यह कहना कि मकर द्वार के सामने जो कुछ हो रहा है उसके लिए भी स्पीकर साहब को ही अधिकार है, यह हमारे यहाँ बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि जब कोई पुलिस अगर इस कैंपस के भीतर इन नहीं कर सकती है तो ये पूरे कैंपस के कस्टोडियन स्पीकर हैं, उनको संज्ञान में लेकर निश्चित तौर पे एक ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए जिससे कि कोई दूसरा व्यक्ति इस तरह का कार्य नहीं करे। और इस व्यक्ति को पर मुझे पूरा विश्वास है कि अध्यक्ष जी उचित कार्रवाई करेंगे।
0: और आइए इस पर ज्यादा चर्चा के लिए रुक करते हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा का। हिमांशु, वैसे ही संसद में विवाद की वजह कम नहीं थी, अब उसमें ये पप्पू यादव का विवाद भी जुड़ गया है।
3: देखिए, बिल्कुल, पप्पू यादव का विवाद जुड़ भी गया है और इसका संज्ञान खुद स्पीकर ऑफिस ने लिया था और उसके बाद ये कहा गया था कि इस मामले पे बहुत सीरियस है और आगे से जो है प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जाएगा मकर द्वार पर इस तरीके का, और जो कुछ पप्पू यादव ने किया वो ठीक नहीं है। और अब संजय जायसवाल क्योंकि विशेषाधिकार हनन का उनके खिलाफ जो है वो प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में जो
0: और है, आपको रोक रहे हैं इस वक्त मुख्यमंत्री आदित्यनाथ बोल रहे हैं, मॉनसून सत्र से पहले सुन लेते हैं।
4: विधानसभा सत्र में भाग लेने के लिए आए हुए सभी माननीय सदस्यों का हृदय से स्वागत करता हूं। यह सत्र हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सत्र है। वैसे भी विधायिका आम जन की आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का एक महत्वपूर्ण माध्यम होती है। गरीब, किसान, युवा और महिला इनसे जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा करने, समीक्षा करने और उसे परिणाम तक पहुंचाने का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म संसदीय प्रणाली में कोई है तो वह विधायिका होती है। हर जनप्रतिनिधि अपने अपने क्षेत्र की समस्या को वहां रख सकता है और सरकार से उसके समाधान का रास्ता निकलवा सकती है। इस प्लेटफॉर्म का बेहतर उपयोग हो यह बीजेपी के नेतृत्व में चलने वाली एनडीए सरकार की सदैव से प्राथमिकता रही है और डबल इंजन की सरकार इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य भी कर रही है। पिछले 9 वर्षों में इसी संवाद से जनप्रतिनिधियों के द्वारा उठाए गए मुद्दों की समीक्षा करने के उपरांत बनी हुई योजनाओं के माध्यम से ही हम प्रदेश में कुछ बेहतर करने का प्रयास कर पाए हैं। उत्तर प्रदेश के परसेप्शन को बदलने में, आमूलचूल परिवर्तन करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। उत्तर प्रदेश को देश के बीमारू राज्यों से उभार करके एक रेवेन्यू सरप्लस और इकोनॉमी का ब्रेक थ्रू स्टेट के रूप में प्रस्तुत करने का भी एक अवसर प्राप्त हुआ है। सदन के समय का बेहतर उपयोग हो और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी हुई आवाज को सदन के पटल पर रखने और सदन में उस पर चर्चा परिचर्चा कराने का एक अवसर प्राप्त हो सके। मैंने कल दलीय नेताओं की बैठक में भी और समय समय पर भी सभी माननीय सदस्यों से इस बारे में आग्रह किया है। अच्छा होता कि इन मुद्दों पर चर्चा करने की बजाय युवाओं के कल्याण के लिए क्या 9 वर्षों में हुआ है और वर्तमान में क्या कुछ करने जा रही है सरकार। आधी आबादी महिलाओं के सुरक्षा, उनके स्वावलंबन और उनके सम्मान के लिए क्या 9 वर्ष में क्या है और आगे क्या करने जा रही है। अन्नदाता किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने और उनके चेहरे पर खुशहाली लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। इन सभी मुद्दों को लेने के साथ ही गरीबों के कल्याण के लिए वेलफेयर स्कीम ने डबल इंजन की सरकार ने पिछले 9 वर्ष के अंदर 6 करोड़ से अधिक गरीबों को गरीबी रेखा से उभार करके एक मध्यम वर्गीय श्रेणी में ला करके उनके जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास किया है।
0: और आइए रुक करते हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर कवरेज। भूषण चरण सिंह को इस वक्त यौन शोषण के सभी मामलों से बरी कर दिया गया है। ये एक बड़ी खबर आ रही है। आपको याद होगा वेस्टिंग फेडरेशन के अध्यक्ष थे वो, उन पर आरोप लगे थे। कई बड़ी बड़े रेसलर्स, फीमेल रेसलर्स, महिला रेसलर्स ने उनके खिलाफ आंदोलन किया था और उनके ऊपर आरोप लगाए थे। लेकिन इस वक्त जो खबर आ रही है उसके मुताबिक उनको इस मामले में बरी कर दिया गया है। तो बड़ी खबर, महिला पहलवानों के आरोप जो लगे थे उनके ऊपर, जिसके लिए उनका पूरा एक आंदोलन चला था जिसे कई पार्टियों से समर्थन भी मिला था, उसके बाद उन्हें हटाया गया था। लेकिन अब खबर आ रही है कि उन्हें सभी आरोपों से बरी कर दिया गया है। तो बृजभूषण के लिए एक बड़ी राहत की खबर है, लेकिन वहीं महिला पहलवान जो उनके खिलाफ खड़ी थी, जो आरोप लगा रही थी, उनको एक बड़ा झटका लगा है। यह खबर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में जो मामला चल रहा था उसमें ये फैसला आया है और उन्हें आरोपों से बरी कर दिया गया है। आरोप उन पर कई थे, जिसमें पहले एक माइनर पहलवान का, महिला पहलवान का भी आरोप था। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी संजय शर्मा, आइए सीधा उनका रुख करते हैं। संजय, जरा जानकारी दे इस मुद्दे पर।
5: ज्यादा जानकारी यही है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत मिली है और कोर्ट ने सबूतों के अभाव में उन्हें बरी कर दिया है। पुख्ता सबूत नहीं है। जो गवाहों के बयान थे और जो आरोप लगाए गए थे उनमें कई तरह के वेरिएशंस मिले, जिससे उन्हें शक का फायदा मिला, यानी बेनिफिट ऑफ डाउट मिला। और इसके साथ ही चूंकि पहले जो नाबालिग पहलवान ने आरोप लगाए थे, फिर बाद में वो आरोप वापस ले लिए गए थे, इससे भी कोर्ट का शक बढ़ा है। तो कुल मिलाकर जो मामले को जितनी मजबूती से रखना चाहिए था वो मजबूती से नहीं रख पाए। ना तो महिला पहलवानों की तरफ से बहुत ठोस सबूत दिए गए और ना ही गवाहों ने इस मामले में महिला पहलवानों का साथ दिया।
0: जी संजय, ये भी जानना चाहेंगे, जब शुरुआती दौर में ये मामला उठा था तो इसे लेकर के बहुत बवाल हुआ था, कुछ नामी गिरामी महिला पहलवान थी जो इसका चेहरा बन के आए, बाद में ये राजनीतिक रूप भी ले गया, ये मामला लगातार चलता रहा और जिसकी वजह से जो रेसलिंग फेडरेशन है उसमें भी बदलाव आए, लेकिन वो बदलाव भी कुछ अजीबोगरीब थे। थोड़ा सा इस पूरे संक्रम को समझाएं और आज जो आया है फैसला उसका क्या असर होगा ये भी बताएं।
5: पूरी प्रक्रिया ये थी कि जब ये आरोप लगाए गए उस समय ये कहा गया, महिला पहलवानों की तरफ से ये कहा गया कि ब्रजभूषण शरण सिंह महिला पहलवानों का यौन शोषण करते हैं और उन्हें ब्लैकमेल किया जा रहा है कि आपको अच्छी जगह अच्छी ट्रेनिंग मिलेगी, अच्छी जगह आपको मौका मिलेगा। लेकिन वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ से कहा गया कि पहलवान ये दबाव बनाना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश या किसी हरियाणा को छोड़कर किसी अन्य राज्य के पहलवानों का दबदबा ना हो, उन्हें सीधा सीधा वाइल्ड कार्ड एंट्री मिले और उन्हें हर तरह से वो ना ट्रेनिंग में जाएं ना कहीं भी ऐसी जगह, और ट्रेनिंग बगैर पूरी ट्रेनिंग के उन्हें पूरा मौका मिलना चाहिए। क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह के वकीलों ने कहा कि महिला हरियाणा के पहलवान ये चाहते थे कि उन्हीं का दबदबा रहे और उन्हीं को अधिक मौके मिले और बाकी अन्य लोगों को ना मिले। और ये भी कहा गया कि नरसिंह यादव जिसे डोप टेस्ट में हराया गया वो हरियाणा के ही एक स्कूल से ट्रेनिंग कर रहा था, वहां उसके खिलाफ साजिश रची गई। तो ये तमाम चीजें उन पर ये प्रेशर डालने के लिए ये मुकदमा दर्ज कराया गया है कि वो या तो हरियाणा के पहलवानों का ब्लाइंडली सपोर्ट करें और नहीं तो उन पर आरोप लगा दिए जाएंगे। इसके बाद उन्हें ये आरोप लगे, आरोप लगने के साथ ही कोर्ट ने आदेश किया और ब्रजभूषण शरण सिंह को वर्ल्ड कुश्ती फेडरेशन से उन्हें मुक्त किया गया, यानी उन्हें हटाया गया। इसके साथ ही कुश्ती फेडरेशन में बहुत सारे बदलाव किए गए और बहुत सारे पहलवान जो आरोप लगाने वाले थे उनको वाइल्ड कार्ड एंट्री भी मिली, लेकिन वो अपना परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए थे। तो ये तमाम चीजें ऐसी थी जिसने भारतीय कुश्ती परिसंघ की के तस्वीर बदल कर रख दी थी, लेकिन उससे भी इस मुकदमे में बहुत फायदा नहीं हुआ। निचली अदालत ने ब्रजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया है, लेकिन महिला पहलवानों और उनके वकीलों का कहना है कि वो इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे, जल्दी ही इस मामले में याचिका दाखिल की जाएगी।
0: जी, तो महिला पहलवान इस मुद्दे को अभी छोड़ना नहीं चाहते हैं, वो हायर कोर्ट का रुख करने के मूड में है। लेकिन संजय, ये भी जानना चाहेंगे कि अब क्या लगता है, अब तक कोई रिएक्शन आया है ब्रजभूषण शरण सिंह के वकीलों की तरफ से, उनके पक्ष की तरफ से, कि आगे का उनका क्या प्लान है, वो क्या करेंगे?
5: अभी फिलहाल तो आगे का प्लान महिला पहलवानों की तरफ से है। ब्रजभूषण शरण सिंह तो बरी हो गए हैं, लिहाजा उनका आगे का प्लान तो क्या होगा? आगे का प्लान तो इनका है जो
0: रेसलिंग फेडरेशन पर एक बार फिर से दावा हो सकता है।
5: हाँ, ये तो आने वाला समय बताएगा कि रेसलिंग फेडरेशन में उनका दावा बनता है या नहीं, लेकिन सबसे बड़ी चीज कि वो टिकट के लिए दावा करने लगेंगे।
0: जी बिल्कुल, इस वक्त सवाल ये भी बनता है कि महिला पहलवान जो थी उनमें कई बड़े चेहरे थे, कई नामी गिरामी चेहरे थे जो उस वक्त बैठे थे, लंबा चला था ये पूरा जो उनका प्रोटेस्ट था, एक तरह से आंदोलन चला था और कई राजनीतिक पार्टियों का भी उसको सपोर्ट मिला था, इसके बारे में थोड़ा बना है, क्योंकि ये सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि सोशल मीडिया पे भी बहुत ज्यादा वायरल हो रहा था उस वक्त।
5: जी हाँ बिल्कुल, और राजनीतिक पार्टियों को तो सिर्फ जमीन चाहिए होती है, वो चाहे कॉकरोच आंदोलन हो या फिर पहलवानों का आंदोलन या कुछ ऐसा ही कोई आंदोलन, तो राजनीतिक पार्टियों ने, लेकिन इन्होंने पहले कोशिश की थी कि राजनेताओं को इससे दूर रखा जाए। उन्होंने ये भी कहा था कि राजनेताओं को मंच पर नहीं चढ़ने दिया जाए, लेकिन फिर बाद में राजनेता आए और इन्होंने सबका स्वागत किया और फिर बहुत सारे उसमें से कई ऐसे सपोर्टर भी थे जिन्होंने चुनाव भी लड़े और कुछ लोगों को चुनाव में सफलता हासिल हुई और कुछ लोगों ने मुंह की खाई।
0: जी, इस पूरे आंदोलन में से कुछ जो पहलवान है वो खुद राजनेता भी बन गए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर इस मामले को तकनीकी तौर पे देखें, अगर इसको लीगल वे में देखें, तो सबसे कमजोर कड़ी कौन सी रही संजय?
5: सबसे कमजोर कड़ी तो ये रही कि जिस तरह से नाबालिग पहलवान ने, महिला पहलवान ने अपना दावा वापस किया यौन उत्पीड़न का, तो वो सबसे कमजोर कड़ी रही। वहीं से अदालत का शक शुरू हो गया कि जिसमें उन्होंने अपना दावा वापस लिया। उसके बाद फिर गवाहों के बयान भी ऐसे मजबूत नहीं आए, और जो दावे किए गए थे उस पर बहुत सारे मतलब पक्के सबूत, महिला पहलवान आरोप तो लगा रही थी लेकिन पक्के सबूत नहीं पेश किए गए। ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ से कहा गया कि जिस दिन का ये आरोप है उस दिन वो वहां मौके पर मौजूद नहीं थे। तो ये तमाम ऐसी विसंगतियां रही जिन्होंने ब्रजभूषण शरण सिंह की मदद की, और निचली अदालत को ये सोचने, निचली अदालत ने ये सोचा, ये मन बनाया कि आरोपों में बहुत सच्चाई नहीं है, आरोप मनगढ़ंत भी हैं, चूंकि उनको सबूतों के साथ उनकी पुष्टि नहीं हो पा रही है। लिहाजा मुझे लग रहा है कि यही वजह है कि जिसपे अदालत ने फैसला सुनाया है और ब्रजभूषण शरण सिंह को बरी किया है।
0: जी संजय, हालांकि आपका जो पूरा इस पर नजरिया रहा और जो आपका फोकस रहा वो लीगल मुद्दे पर ही रहा, लेकिन इस मामले में लीगल से भी बहुत ज्यादा बातें हैं। इसमें स्पोर्ट्स की राजनीति है, इसमें देश की राजनीति है, इसमें महिलाओं का मुद्दा है, और इसमें कहीं ना कहीं विवाद को जरूरत से ज्यादा, कहीं ना कहीं विवाद को बड़ा करने की कोशिश राजनीति के जरिए करने की भी रही है। और उसके बाद वंशवाद का भी मुद्दा है कि जब हटे ब्रजभूषण सिंह उसके बाद कमान किसके हाथ में गई। लेकिन अगर हम इस पे राजनीति की बात करें तो किस तरीके से ये मुद्दा सिर्फ कोर्ट में नहीं रहेगा, जो उसकी सुनवाई निचली अदालत में हुई लेकिन जो उसकी दूसरी सुनवाई थी वो पटल था राष्ट्रीय।
5: जी हाँ बिल्कुल, एक तो राष्ट्रीय जो भारतीय कुश्ती महासंघ है उसकी उसकी पॉलिटिक्स पर भी इसका असर पड़ा, और साथ ही जो लोकसभा चुनाव की बीजेपी की जो रणनीति है उस पर भी असर पड़ा। ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट काट दिया गया, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह इतने दबदबे वाले आदमी हैं कि उन्होंने अपने बेटे को टिकट दिलवाई और बेटे को जीत दिलवाई। अब आने वाले विधानसभा चुनाव में भी ब्रजभूषण शरण सिंह का ये दावा रहेगा कि वो खुद की या अपने बेटे की टिकट के लिए दावा करें, और ऐसे में एक बार जब क्लीन चिट मिल गई है, कोर्ट से बरी कर दिया गया उन्हें, तो ऐसे में पूरे चांस इस बात के लगते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह बस अब आगे अपना दावा पेश करने वाले हैं। और उनका पहले से ही ये मन है, उन्होंने पहले भी ऐलान कर दिया था कि वो चुनाव तो लड़ेंगे अवश्य, चाहे पार्टी टिकट दे या नहीं।
0: बिल्कुल, और अब मौका मिल जाएगा बीजेपी को इस मुद्दे पर घेरने का, उन लोगों को जिन लोगों ने उन पर आरोप लगाए थे। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए संजय आपका। फिलहाल ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
8: Stay in the game with TuneIn. Hear non-stop sports talk, live games, and coverage that never slows down. Keep up with your favorite teams from every play to every post-game breakdown. Listen to sports stations like ESPN Radio, NBC Sports Radio, Big 12 Radio, Talk Sport, and more. Plus, catch live games all year round, so you never miss a moment of sports action. Start listening on TuneIn.
9: Sokudo.

0: रसोई के बजट पर महंगाई की एक और मार पड़ी है। खाने की थाली का स्वाद बढ़ाने वाला खाद्य तेल अब आम आदमी की जेब पर भारी पड़ने लगा है। त्योहारों का सीजन करीब आते ही सरसों, सोयाबीन और मूंगफली तेल के दामों में तेज उछाल देखने को मिल रहा है। घरों से लेकर होटल और स्ट्रीट फूड कारोबार तक हर जगह इस्तेमाल होने वाले इन तेल की कीमतों में बढ़ोतरी चिंता बढ़ा रही है। आंकड़ों के मुताबिक खाने के तेल की कीमतों में 10 से 15 रुपए प्रति किलो तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसकी वजह त्योहारों की बढ़ती मांग और बरसात के मौसम में सरसों की खपत बढ़ाना है। इसके साथ ही रुपए की कमजोरी से आयातित खाद्य तेल महंगे हो गए हैं, जबकि पाम और पामोलिन पर बढ़ी ड्यूटी का असर भी बाजार में दिख रहा है। बाजार के जानकारों के मुताबिक इस तेजी की सबसे बड़ी वजह तिलहन की कम आवक है। किसानों को पहले बेहतर भाव मिल चुके हैं, इसलिए वो कम कीमत पर बिक्री से बच रहे हैं। नतीजा ये हुआ कि मंडियों में सोयाबीन और सरसों की उपलब्धता घट गई है, जबकि मांग लगातार बनी हुई है। डेटा के मुताबिक सोयाबीन की रोजाना मांग करीब 2.5 से 3 लाख बोरी है, लेकिन मंडी में इसकी आवक घटकर करीब 10,000 बोरी रह गई है। किसानों को आकर्षित करने के लिए लातूर के बड़े प्लांट्स ने खरीद भाव बढ़ाकर 8,100 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। वहीं बिनौला तेल की कमी की वजह से मूंगफली तेल की मांग भी बढ़ गई है। डिमांड और सप्लाई के इस असंतुलन का असर थोक बाजारों में भी साफ दिखाई दे रहा है। बीते हफ्ते सरसों, सोयाबीन और मूंगफली तेल तिलहन के भाव में काफी तेजी दर्ज की गई है। कई उत्पादों में कीमतें एक ही हफ्ते में सैकड़ों रुपए तक बढ़ गई हैं, जिसमें सरसों दाना 8,075 से बढ़कर 8,100 रुपए प्रति क्विंटल, सरसों तेल का भाव 16,550 रुपए प्रति क्विंटल, सरसों कच्ची और पक्की घानी का 15 किलो टिन 2,705 से 2,855 रुपए और सोयाबीन दाना बढ़कर 7,550 से 7,600 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। अगर तिलहन की आवक में जल्द सुधार नहीं हुआ तो त्योहारी मांग इसी तरह बनी रही तो आने वाले दिनों में खाद्य तेल की कीमतों पर दबाव बना रह सकता है। इसका सीधा असर घर की रसोई पर पड़ेगा और त्योहारों के दौरान खाने पीने का खर्च और बढ़ सकता है। आज तक ब्यूरो।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: और रुक करते हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर का। ब्रिजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया गया है। राउस रेवेन्यू कोर्ट में उनके खिलाफ जो मामला चल रहा था यौन शोषण का, जो महिला पहलवानों ने लगाया था, उसमें सभी आरोपों से उनको बरी कर दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। बड़ी राहत है ये ब्रिजभूषण शरण सिंह के लिए।
4: सर आप कुछ कहिए,
5: आप क्या कहना चाहते हैं,
6: आपकी पहली प्रतिक्रिया?
7: सबसे पहले कोर्ट ने ये कहा माननीय जज साहब ने कि ब्रिजभूषण सिंह जी और विनोद तोमर आप दोनों लोगों को बाइज्जत बरी किया जाता है, बाइज्जत शब्द। मेरी प्रतिक्रिया ये है, फर्स्ट डे जब मेरा पहला वक्तव्य आया था तो हमने कहा था कि यदि कोई भी फैसला या कोई आरोप अगर साबित हो जाएगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। आज कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया, मेरे लिए प्रसन्नता का विषय है, मेरे समर्थकों को के लिए प्रसन्नता का विषय है और हमारे वकील साहब बहुत बहुत आपको धन्यवाद। कहाँ गए भाटी जी, ओ कहाँ का बिल्ला। और फिर इससे ज्यादा आज कुछ नहीं कह सकते हैं। अब बाकी अब कोर्ट का जो कॉपी मिलेगी, अब क्या जजमेंट आया, क्या
8: नेताजी एक सवाल, आरोप जिस तरह से लगाए गए उसको लेकर क्या कहेंगे कि आपके ऊपर लगातार एक
7: मेरी पहली बात सही हुई, मुझे सामने वाले के बारे में पता नहीं था। विनोद जी आइए, तोमर जी
9: आइए, तोमर साहब।
7: और ये हमारे दामाद हैं, ये हमारे बेटे हैं, आज सब लोग आए हैं पहली बार, ये हमारे बेटे हैं, विधायक हैं। तो मैंने, मेरी फर्स्ट प्रतिक्रिया यही थी कि मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। अब बाकी आज प्रसन्नता का विषय है,
8: मेरा सोमवार है, ईश्वर का धन्यवाद करना चाहेंगे,
7: ईश्वर हमेशा साथ रहते हैं।
3: और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
9: नो टिकट, नो लाइन, जस्ट शो टाइम। क्वेलो कॉन्सर्ट्स इज द डेस्टिनेशन फॉर म्यूजिक लवर्स, विद थाउजेंड्स ऑफ इलेक्ट्रिफाइंग कॉन्सर्ट्स एंड म्यूजिक डॉक्यूमेंट्रीज। ट्राई क्वेलो कॉन्सर्ट्स, दैट्स QELLO, फॉर फ्री ऑन Amazon Prime Video टुडे।
2: सोकुडो,

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: यौन शोषण केस से ब्रजभूषण शरण सिंह समेत सभी आरोपियों को बरी। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला, सबूतों के अभाव में अदालत ने किया बाइज्जत बरी।
1: नितिन नवीन के गढ़ बांकेपुर में लगातार 3 राउंड की गिनती में बीजेपी पीछे, प्रशांत किशोर की बढ़ा जारी। दतिया और मानचलपुर सीट पर बीजेपी आगे।
0: संसद के मॉनसून सत्र में आज फिर हंगामे के आसार। मकर द्वार पर विपक्ष का प्रदर्शन, छात्रों पर एक्शन, चढ़ावा चोरी जैसे मसले पर हल्ला बोल, खड़गे की अध्यक्षता में बैठक।
1: आज से शुरू हो रहा है यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र। चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी विधायकों का प्रदर्शन, सीएम योगी ने कहा विकास के मुद्दे उठाएं।
0: भगवा भीष्म चढ़ावा चोरी ड्रामे

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज, एक और 11 आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम।
1: नमस्कार, मैं हूं राजीव ढांडियाल। सीधा आपको संसद लिए चलते हैं। लोकसभा राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो गई।
2: खेलों में भारत के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 13 स्वर्ण, 17 रजत व 9 कांस्य पदक सहित 39 पदक जीते हैं और पदक तालिका में चौथा स्थान प्राप्त।
0: और इस बीच बड़ी खबर, बृजभूषण शरण सिंह को लेकर इन्हें बाइज्जत कोर्ट ने बरी कर दिया है। यौन उत्पीड़न मामले को लेकर बृजभूषण शरण सिंह बाइज्जत बरी हो गए। कोर्ट ने इन्हें बरी कर दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट का ये फैसला आ चुका है। अब से कुछ ही देर पहले जश्न मनाने की तस्वीरें, क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी थे। महिला पहलवानों ने, आपको याद होगा, इन पर आरोप लगाए थे, उसके बाद धरना प्रदर्शन किया था।
1: ब्रजभूषण शरण सिंह शुरुआत से कह रहे थे कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, कोर्ट पर पूरा भरोसा है, और जब कोर्ट से बहुत बड़ी राहत उनको मिली है। आपको याद होगा कि देश की राजधानी दिल्ली में कितना लंबा प्रोटेस्ट चला, जंतर मंतर पर कितना प्रोटेस्ट हुआ। अपोजिशन ने इस मुद्दे को बड़े जो है उठाया, बड़े तरीके से उठाया ब्रजभूषण शरण सिंह। इस वजह से बाद में उनको टिकट भी नहीं मिला, चुनाव भी नहीं लड़े। यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगे थे ब्रजभूषण शरण सिंह पर, बिना सहमति अनुचित तरीके से छूने के, संवेदनशील अंगों को छूना, पेशेवर मदद या अवसर के बदले यौन संबंध, सेक्सुअल फेवर की मांग करने जैसे गंभीर आरोप थे। पीछा करना, डराना, धमकाना, ये तमाम एक आरोपों की लंबी फेरिस्त थी जो महिला पहलवानों की थी, लेकिन उनके तमाम आरोप कोर्ट में सबूत नहीं बन पाए। वो सिर्फ आरोपों तक ही सीमित रहा और सबूतों के अभाव में कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। एक बहुत
3: जिस दिन यानी 18 जनवरी 2023 को आप लोग यहां पर मौजूद थे और तब मैंने कहा था कि ये एक साजिश है, षड्यंत्र है, और अगर मेरे ऊपर कोई आरोप सही पाया जाएगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। और आज तक मैं उसी बात पर कायम रहा और आज लगभग 3 साल के बाद कोर्ट ने मुझे और विनोद जी को बाइज्जत बरी किया है।
4: सर, एक लंबा संघर्ष आप लोगों ने झेला, जिस तरीके से आपके ऊपर लगातार आरोप लगाए जा रहे थे, जंतर मंतर में प्रदर्शन भी हो रहे थे, ऐसे में सर वो कितना वक्त, किस तरह का वक्त आपके लेता हूँ,
3: मैं क्या कहना चाहूंगा,
5: कैमरा कहाँ जाएगा,
3: थोड़ा पीछे हो जाओ भाई। 15-16 साल से की उम्र से ही संघर्ष देख रहा हूँ और मैं हमेशा जो कमजोर थे, जिनका हक मारा जाता था, मैं उनके पक्ष में खड़ा होता था और मुझे
5: भाई
3: अपने आप के ऊपर विश्वास था। मैं सामने वाले को नहीं जानता हूँ कि सामने वाले के दिल में क्या है, लेकिन मैं अपने आप को जानता था और मुझे पूरा विश्वास था कि मेरे साथ न्याय होगा, और मेरे साथ न्याय हुआ और कभी मैंने अपने आप को अपराधी महसूस ही नहीं किया।
0: और सीधे रुख करेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा का, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ बोल रहे हैं,
6: मायने नहीं रखते। सियालामपति सरल, विनम्र और जनसामान्य से जुड़े हुए एक जनप्रिय नेता थे। उत्तर प्रदेश के राजनीति में वे अपनी सादगी और वेदांत छवि के लिए जाने जाते थे। समाज के गरीब और वंचित वर्ग के उत्थान, सामाजिक कार्यों और शिक्षा के प्रसार में उनकी विशेष रुचि थी। वे अपने क्षेत्र के बुनियादी मुद्दों को लेकर के सदैव इस माननीय सदन में आवाज उठाते थे। एक व्यवहार कुशल और लोकप्रिय जनप्रतिनिधि तथा सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में वे अपने क्षेत्र के विकास और जनता के कल्याण के लिए सदैव समर्पित रहे। श्री आलामपति के निधन से प्रदेश ने एक कुशल राजनीतिज्ञ और समाजसेवी को खो दिया है। मैं उनके निधन पर इस माननीय सदन की ओर से उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आपसे अनुरोध करता हूं कि हमारी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों तक भेजने की कृपा करेंगे। धन्यवाद।
7: माननीय नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री माता प्रसाद पांडे जी।
8: माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा माननीय अलीम आलमबदी के देहावसान पर दी गई सब कही गई बातों से अपने को सम्मत करता हूं। आलमबदी जी इस सदन के कई बार सदस्य रहे हैं और मेरी पहली मुलाकात उनकी 2002 में जब वो फिर चुन के आए थे तो मैं यहाँ आया था। बाद में मैं स्पीकर बना तो उस स्पीकर के नाते भी वो मुझसे अक्सर मिलते जुलते रहते। बहुत साधारण स्वभाव के थे और उनकी भावनाएं कुछ वृद्धावस्था में भी बड़ी नई उम्र के बराबर थी, क्योंकि जब वो मेदांता में भर्ती थे तो मैं उनसे मिलने गया था, उनसे हालचाल पूछा, कहा चुनाव का क्या होगा, कहीं मैं फिर लड़ूंगा। हमने कहा इस उम्र में आप लड़ोगे, कहीं मेरी।
1: चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे उपचुनाव के नतीजों की, काउंटिंग की जो चल रही है। दतिया उपचुनाव में अभी इस समय कांग्रेस आगे और कुल 736 वोटों से इस समय कांग्रेस दतिया में बढ़त बनाए हुए है। तो उपचुनाव में जो मतगणना है वो इस समय चल रही है और कुछ समय के बाद जो तस्वीर है वो भी क्लियर होगी, लेकिन कहां कौन इस समय आगे चल रहा है वो भी हम आपको बता रहे हैं। कांग्रेस इस समय दतिया में आगे चल रही है, हालांकि अंतर बहुत बड़ा नहीं है, 736 वोट का ही है, लेकिन ये बढ़त दिख रही है चौथे राउंड में। ये बढ़त उपचुनाव चल रहा है और इस समय काउंटिंग का दौर देखने को मिल रहा है। इस समय चौथे राउंड में दतिया में इस समय कांग्रेस आगे चल रही है, बहुत बड़ा अंतर नहीं है। क्या अगले आने वाले राउंड्स में भी ये बढ़त बनी रहेगी या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। उसी तरह बांकीपुर की बात करें, वहां पर भी लगातार निकाय जहां प्रशांत किशोर जो है आगे इस समय चल रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग ये उपचुनाव हो गए।
0: रवीश पाल सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रवीश, 12-1 बजे तक हम माने कि तस्वीर साफ होगी।
9: बिल्कुल, आप मान के चलिए 12 से 1 बजे के बीच में तस्वीर लगभग साफ हो जाएगी। इस बीच में बड़ी खबर यह है कि बीजेपी जो आगे चल रही थी वो अब पीछे हो गई है। चौथे राउंड की जो मतगणना है उसमें कांग्रेस को बढ़त मिली है और कांग्रेस 700 वोटों से आगे चल रही है दतिया विधानसभा के उपचुनाव में। जो नतीजे सामने आ रहे हैं, एक एक करके 4 चरणों की गिनती जो है वो पूरी हो चुकी है और जानकारी मिल रही है कि चौथे चरण के बाद कांग्रेस पार्टी के जो अधिकृत उम्मीदवार है घनश्याम सिंह, फिलहाल वो आगे हो गए हैं। 700 से ज्यादा वोटों से फिलहाल वो आगे चल रहे हैं और अभी जितनी भी ईवीएम खुल रही हैं, बताया जा रहा है कि वो ग्रामीण इलाकों की है और इसके बाद जो शहरी इलाका है उसकी ईवीएम खुलेंगी। लेकिन अभी की जानकारी के मुताबिक जो सबसे लेटेस्ट अपडेट है कि चौथे राउंड के बाद भारतीय जनता पार्टी फिलहाल दतिया विधानसभा उपचुनाव में पीछे हो गई है और कांग्रेस उम्मीदवार तकरीबन 700 वोटों से इस वक्त अपनी बढ़त बना चुके हैं।
1: जी, बहुत शुक्रिया रवीश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अगर हम बांकीपुर की बात करें तो वहां से बड़ी खबर, प्रशांत किशोर बढ़त बनाए हुए हैं और जो उनकी बढ़त है वो 1000 के पार इस समय है। उनकी जो बढ़त है वो 1145 की इस समय, जबकि दूसरे नंबर पर बीजेपी है, नीरज कुमार बीजेपी से वो 1145 पीछे चल रहे हैं, 5124 अब तक उनको वोट मिले हैं। और तीसरे नंबर पर आरजेडी है और आरजेडी की रेखा कुमारी को सिर्फ 884 वोट ही अब तक मिले हैं, तो बहुत बड़ा अंतर है। और अब फाइट सिर्फ दो के बीच में, जनसुराज पार्टी, प्रशांत किशोर और नीरज कुमार के बीच में, और डिफरेंस 1145 का यह अंतर है। क्या ही अंतर आगे बना रहेगा, देखने वाली बात है। लेकिन ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का गढ़ है, उन्होंने सीट खाली इसलिए चुनाव हुआ और वहां पर प्रशांत किशोर जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, जो पहले चुनावों में उतरे भी नहीं और उनकी पार्टी का जो है अच्छा परफॉर्मेंस भी नहीं थी, अच्छा प्रदर्शन भी नहीं था, और प्रशांत किशोर पहली बार चुनाव में बीजेपी की गढ़ वाली सीट में अच्छा प्रदर्शन करते दिख रहे हैं।
0: बेहद महत्वपूर्ण ये सीट, सभी की निगाहें उपचुनाव में इसी सीट पर टिकी हुई है कि क्या प्रशांत भूषण वाकई प्रशांत किशोर माफ कीजिएगा प्रशांत किशोर चौथे राउंड की गिनती पूरी होने तक जो आगे चल रहे हैं, क्या ये बढ़त बनाए रह सकते हैं और इस सीट पर जीत हासिल कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो पुराने अगर नतीजे देखें तो उसमें बीजेपी हमेशा से ही सीट पर काबिज रही है, सीट पर बीजेपी का दबदबा रहा है। लेकिन प्रशांत किशोर बाकीपुर में चौथे राउंड की गिनती में आगे चल रहे हैं। 1145 उनकी लीड है, हालांकि ज्यादा लीड नहीं है, लेकिन माना यही जा रहा है कि लगभग एक से डेढ़ घंटे में ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि आखिरकार इस सीट से कौन जीत रहा है। बीजेपी नंबर दो पर चल रही है और जन स्वराज पार्टी नंबर एक पर।
1: तो उपचुनाव में हालांकि हर राउंड में चीजें बदल सकती हैं, अंतर बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये डोमिनेशन भी बहुत कुछ दिखाता है, बहुत कुछ दर्शाता है। फाइट यहाँ जो लड़ाई है वो सिर्फ अब दो पार्टियों के बीच में ही दिख रही है, बीजेपी और जन स्वराज पार्टी में। आरजेडी बहुत दूर दूर तक नहीं है, कोई दूसरी पार्टी दूर दूर तक नहीं है। हमारे संवाददाता शशि भूषण इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। शशि भूषण, 1145 का डिफरेंस है, ये कितना बड़ा अंतर है, ये कितना बड़ा डोमिनेशन, और कितने राउंड की अभी काउंटिंग बाकी है?
10: देखिए, चार राउंड की काउंटिंग के आंकड़े आ चुके हैं राजीव, और 31 राउंड टोटल होना है। मतलब आप समझिए कि कुल अभी लगभग 26 मतलब 27 राउंड की काउंटिंग अभी बची हुई है, तो काफ़ी अभी मतगणना होनी बाकी है। लेकिन हाँ, प्रशांत किशोर ने जो शुरुआती बढ़त बनाई है राजीव, वो अभी तक बनी हुई है। पहले राउंड से उनकी बढ़त रही और अभी तक लगातार वो बढ़त बनाए हुए हैं, और ये बीजेपी के नेताओं, बीजेपी के उम्मीदवार जो हैं, उनके जरूर उनकी परेशानी बढ़ा रहा होगा इस वक्त। जो लड्डू सुबह बन रहे थे भारतीय जनता पार्टी के खेमे में, शायद वो अब इंतजार हो रहा होगा कि आगे और लड्डू तब बनाए जाएं जब बीजेपी बढ़त ले ले, क्योंकि बीजेपी को या बीजेपी के नेताओं को ऐसा लगता था कि ये बीजेपी का गढ़ है ये सीट, और रही भी 1995 से कभी इस सीट पे बीजेपी चुनाव हारी नहीं। लेकिन हाँ, एक और आंकड़ा है कि कभी बहुत पीछे भी नहीं हुई है लगातार इतने राउंड में, लेकिन पहली दफे हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बांकीपुर सीट पर लगातार शुरुआती रुझान में ही पहले चार राउंड में पीछे है, और ये अपने आप में एक चिंता का सबब है। आखिर भारतीय जनता पार्टी के किले में ऐसा क्या किया प्रशांत किशोर ने कि वो शुरुआती बढ़त में है, और यही वजह है कि इस वक्त प्रशांत किशोर की चर्चा चारों तरफ हो रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को अभी भी उम्मीद है कि जो बढ़त है वो उनके उम्मीदवार के पास आएगी और जीत उनके उम्मीदवार की ही होगी। जी,
0: इसके अलावा शशि भूषण, जिस तरीके से लगातार बीजेपी का ये गढ़ रहा है, बीजेपी यहां पर जीतती आई है, एक सेंस ऑफ अर्जेंसी भी यहां पर दिखाई देता है, क्योंकि अगर आप किसी सीट को छोड़कर राज्यसभा के लिए नामांकित होते हैं उसके बाद सीट खाली रह जाती है, एक सिंबॉलिक तौर पर बीजेपी के लिए भी ये जीत बेहद महत्वपूर्ण है।
10: नहीं देखिए, सिर्फ सिंबॉलिक तौर पे नहीं, आप बीजेपी के साख का सवाल है, क्यों साख का सवाल है, हम बार बार ये क्यों कहते हैं जब बाकीपुर की चर्चा करते हैं। पहली बात ये है कि ये सीट बीजेपी के उस नेता के इस्तीफे के बाद, विधानसभा से इस्तीफे के बाद चुनाव यहां हो रहा है, जो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना नितिन नवीन इस सीट से लगातार विधायक रहे और उनके इस्तीफे के बाद यहां चुनाव हो रहा है। तो पहली चुनौती तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने आ गई कि अगर उनके इस्तीफे के बाद बाई इलेक्शन में बीजेपी हार जाती है या इस तरह पीछे है तो सवाल कहां उठेंगे। पहली बात, उम्मीदवार का चयन की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर थी, वो लगातार कैंप कर रहे थे पटना में बांकीपुर सीट को लेकर के। दूसरी बात, जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री है वो पहली दफे बिहार में बना, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने इसी साल मार्च के महीने में, और उसके बाद पहला चुनाव, पहला बाई इलेक्शन, अगर उसमें भारतीय जनता पार्टी अगर हार का सामना करती है तो वहां भी सवाल उठेंगे। तो बहुत सारे अलग,
1: ठीक है, शशि भूषण नजर बनाए रखें, अपडेट्स के लौटेंगे। इस समय ब्रजभूषण शरण सिंह से बातचीत कर रहे हैं हमारे संवाददाता, सुना
11: लग रहा है जब इतने लगभग जो है 3 साल के करीब हो गए, अब पूरा मामला जो है वो क्लियर हो गया, आपको बरी कर दिया गया।
12: हिमांशु जी, बरी शब्द का इस्तेमाल की जगह पर कोर्ट ने बाइज्जत बरी शब्द का इस्तेमाल किया है। बरी और बाइज्जत बरी में फर्क होता है। एक बरी होता है कि सबूतों के अभाव में आपको छोड़ा जा रहा है, यहां सीधे सीधे कहा गया कि आपको नाम लेकर के कि आपको बाइज्जत बरी किया जा रहा है। और जहां तक आप भी मौजूद थे पहले दिन, और जब मुझे थोड़ा सा मौका मिला था तब मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि ये सब झूठ है, और अगर इसमें एक भी आरोप साबित होगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। इतना कॉन्फिडेंस इसलिए था कि मैं अपने आप को जानता था, सामने वाले को नहीं जानता था लेकिन अपने आप को जानता था। और आज अभी कुछ दिन पहले भी मैंने कहा कि मैं उस बात पर कायम हूं। आज मेरी बात वो सत्य पाई गई और इस साजिश में पहलवानों के अलावा देश की लगभग लेफ्ट राइट कांग्रेस आम ममता यानी दो एक पार्टियों को छोड़ करके कोई बचा नहीं था। अब उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए क्योंकि उनके हिसाब से तो उसी दिन मुझे पकड़ करके फांसी दे देना चाहिए था। तो अब उनको अपने गिरेबान में देखना चाहिए कि उनका प्रोटेस्ट कहां तक सही था। और जहां तक मेरा सवाल है, मैं एक सामान्य परिवार में पैदा हुआ, 15 साल से की उम्र से मैं ऐसे साजिशों से लड़ते आया हूं, मेरे ऊपर बड़े आरोप लगे हैं और लेकिन वो आरोप जो भी लगे हैं वो कमजोर लोगों की लड़ाई के लिए लगे हैं। और इसीलिए मैं कभी कभी एक सर पढ़ता हूं, किसी सोते को गफलत से जगा देना बगावत है, किसी कमजोर के हक को दिला देना बगावत है। अगर सच्चाइयों का गीत गाना ही बगावत है तो हम भी एक बागी हैं। मेरा मजहब बगावत है। लेकिन और ये लड़ाई भी जो जूनियर खिलाड़ी हैं, कमजोर खिलाड़ी हैं, पूरे देश के खिलाड़ी हैं, ये लड़ाई भी हम उन्हीं के लिए लड़ रहे थे और उन्हीं के उसी कारण मेरे ऊपर ये आरोप लगा। अब ये बिना सोचे समझे ये जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, बड़े बड़े नेता हैं, अब आज हमारे देश की ये हालात हो गई है, विपक्षी पार्टियों की ये हालात हो गई है कि इनके अंदर तो कोई मादा है नहीं कि कोई आंदोलन खड़ा कर दें। कभी महिलाओं के पीछे खड़े होकर के आंदोलन खड़ा कर देते हैं, कोई कभी जीएनजी के पीछे खड़े होकर के आंदोलन कर दे रहे हैं। अरे भाई, अगर दम है तो कोई आंदोलन अपने बल पर खड़ा करो।
13: लेकिन इस पूरे केस में आपके खिलाफ आपने कहा साजिश हुई, किन लोगों ने साजिश की?
12: देखिए, एक तो जंतर मंतर पर कौन कौन बैठा था, आपके पास स्वयं का रिकॉर्ड है, स्वयं का रिकॉर्ड है कि कौन कौन सी पार्टी बैठी थी, कौन कौन से नेता बैठे थे, ये आपके पास स्वयं रिकॉर्ड है। बचा कौन था?
13: ये पहलवान, ये फेडरेशन के कुछ वो लोग जो बृजभूषण शरण सिंह को 12 साल बाद अध्यक्ष नहीं देखना चाहते थे, जनवरी में आरोप लग गए, अप्रैल में अध्यक्ष का चुनाव था, क्या ये उस लिए हुआ सारा? आपको लगता है कि ये सारी साजिशें कैसे एक साथ इतने सारे लोग आपके खिलाफ हो गए?
12: ये जो कथित पहलवान है, ओलंपियन, वर्ल्ड चैंपियन, ये जूनियर बच्चों का हक मार रहे थे और उसी उनका हक उन बच्चों को मिले इसलिए हमने कुछ नियम बनाए थे, कुछ रूल बनाए थे, इसको लेकर के इनके अंदर नाराजगी थी। ये आए और इनके पीछे बहुत लोग थे, आपको पता है कौन खाना ला रहा था, कौन पूड़ी ला रहा था, कौन बयान दे रहा था, कौन स्वागत कर रहा था, सबको पता है।
13: आज तो आपका भी स्वागत हो गया, इतना बड़ा शामियाना, ये पहले से आपको मालूम था कि आप इक्विटल होंगे? इतनी सेलिब्रेशन, इतनी आतिशबाजी।
12: आतिशबाजी क्या होती है गोंडा, जरा फोन करिए आप मेरे क्षेत्र में, जरा फोन करिए मेरे क्षेत्र में, जरा फोन करिए तब पता लगेगा।
13: एक चीज और, क्या इससे आपको राजनीतिक
0: बड़े होने के बाद आज तक से बोले बृजभूषण शरण सिंह कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया था, इसलिए उन्हें इस बात का यकीन था कि वो बाइज्जत बरी कर दिए जाएंगे। राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला आपसे कुछ ही देर पहले आया जिसमें उन्हें बरी कर दिया गया है, सबूतों के अभाव में बरी किया गया है। उन्होंने कहा कि मैंने जो कुछ कहा था वो सब साबित हो चुका है।
1: और अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
15: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
16: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay on top of the Major League Baseball season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
17: To right field, and it will leave.
16: From the first pitch of the season to the stretch run.
17: And that's the ball game.
16: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
15: Sokudo.

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर, तरक्की का ऑलराउंडर।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
4: Tune in How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: Tune in is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
6: जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिस कहानी के बहुत अच्छे परिणाम है और बहुत दुखद परिणाम है। भारत एक राजमहल है, समृद्ध है, सोने की चिड़िया है। गहरी बात है वो ये है कि इस राजमहल के चारों तरफ झोपड़पट्टियां हैं, झुग्गियां हैं, चुनौती वाले क्षेत्र हैं। भारत आए अंग्रेज, यहाँ के लोगों को देखा उन्होंने, जब यहाँ के ग्रंथों को ट्रांसलेट करना शुरू किया, पढ़ा उन्होंने कि ब्राह्मण का जन्म मुंह से हुआ है। ये डिपार्टमेंट बनाया ही गया था शोषण के लिए। कौन सा? पुलिस। किसने बनाया था? कॉर्नवालिस ने। और पुलिस डिपार्टमेंट की खास बात यह है कि जब उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट भारत में बनाया, तब वो डिपार्टमेंट ब्रिटेन में नहीं था। जुडिशरी, मॉडर्न जुडिशरी उन्होंने अपने फायदे के लिए बनाया। अंग्रेजी कानून, अंग्रेजी जज। तुम कल्पना कर सकते हो आधुनिक काल से पहले LGBT सड़क पर आकर प्रदर्शन करें, इनको तोप में बांध के उड़ा दिया होता।
7: तो क्या सिर्फ अब हिस्ट्री सिर्फ जो बाहर से लोग आए थे यहाँ पे शासन करने के लिए, उनको विलन के रूप में दिखा रहे हैं? या फिर
6: जो भी सरकार सत्ता में आती है वो शिक्षा का इस्तेमाल करती है अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने। वंदे मातरम पे बहस हो रही है, हर दिन मंदिर मस्जिद पे बहस हो रही है, मुसलमान पे बहस। ये संसद बनी किस लिए? औरंगजेब जो था भैया, डेली 200 किलो जनेऊ तोलता था। कितना? 200 किलो भी, मतलब डेली वो कम से कम 10,000 ब्राह्मणों को मारता था, हिंदुओं। मैं देखता हूँ मुसलमानों को और हिंदुओं को, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ। पहले मैं सोचता था पुलिस वाले यहाँ लगा के पॉइंट ब्लैंक से क्यों मारते, क्योंकि यहाँ ताला लगा हुआ है, तो इसीलिए मारते कि यहाँ मारे तो अगले जन्म में खुला हुआ रहेगा।
8: आपको लगता है कि आज से 5 साल बाद 10 साल बाद देश फिर बट सकता है?
6: इस बात को मैं रिपीटेडली कह चुका हूँ, एक विस्फोट होगा बेटा।
9: लेकिन आपके पढ़ाने के तरीके मुझे एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट लगता है कि आप जनता को ही बोल देते हैं कि जनता बड़ी बेवकूफ़ है, और फिर आप कहते हैं कि हमारे देश का युवा पढ़ना नहीं चाहता है।

भारी बारिश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कैसी आफत लेकर आई है, इसे इन तस्वीरों से देखकर ही समझा जा सकता है। हाहाकार करता हुआ सैलाब तेजी से आगे बढ़ रहा है। लहरों का शोर इतना ज्यादा है जो खौफ पैदा कर रहा है। ये तस्वीरें करगिल की, जहां के चिकतन इलाके में हुई भारी बारिश की वजह से गांव के बीच से गुजरने वाला नाला उफान पर आ गया और कई इलाके सैलाब की चपेट में आ गए। बहाव बेहद तेज है, भारी मलबा भी साथ बह रहा है। ऐसे में लहरों के बीच से मलबे को हटाने की कोशिशें की जा रही है। अब गांधरबल की इन तस्वीरों को देखिए, जहां फ्लैश फ्लड के चलते कुछ ही देर में पूरा का पूरा इलाका डूब गया। घर पानी के बीच घिरे हैं, रास्तों पर पानी भरा है। यहां आसमानी आफत का असर साफ दिख रहा है। इन दिनों देश के कई हिस्सों में हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। इस बीच जम्मू कश्मीर से भी मूसलाधार बारिश में आफत की तस्वीरें सामने आ रही है। कई जगहों पर अचानक बाढ़ आने से घरों को नुकसान पहुंचा है। कई जगहों पर रास्तों पर मलबा बिखर गया है। लोगों को कुदरत की मार का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच कई जगहों पर लैंडस्लाइड ने इस संकट को और ज्यादा बढ़ा दिया है। सोनमर्ग से आई इन तस्वीरों को देखिए, सैलाब तेजी से आगे बढ़ रहा है जो कई इलाकों में खतरा बढ़ा सकता है। मौसम विभाग की माने तो जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में आने वाले दो दिनों में भी तेज बारिश का अनुमान है, जिससे ये संकट और बढ़ सकता है। मौसम की इस मार का असर जम्मू कश्मीर के जनजीवन के साथ साथ कारोबार पर भी पड़ रहा है। श्रीनगर को जाने वाले हाईवे बंद हैं और यहां ट्रकों की लंबी कतार लगी है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बीते कुछ दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे यहां संकट लगातार बढ़ता जा रहा है। आज तक डरो।

0: अयोध्या में चढ़ावा चोरी के मामले पर सांसद पप्पू यादव के प्रदर्शन पर विवाद हुआ तो समाजवादी पार्टी ने इससे किनारा कर लिया। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि पप्पू यादव ने संसद परिसर में जो कुछ किया वो गलत था। उन्होंने आगे कहा कि हम राम मंदिर चंदा चोरी का मामला सदन में उठाएंगे, ये गंभीर मामला है।
1: ये बहुत बड़ी टिप्पणी है, ये बहुत बड़ी खबर है। आपको बता दें कि इसमें समाजवादी पार्टी के सांसद जो अयोध्या से आते हैं अवधेश, उन पर भी मुकदमा हुआ है, फायर हुए हैं, उन पर भी आरोप है क्योंकि वो भी तस्वीरों में दिख रहे थे, फिर राहुल गांधी भी हैं। लेकिन पप्पू यादव ने जो किया वो गलत था। उन्होंने कहा कि नुक्कड़ जो है राम मंदिर में चोरी संतों का उससे कोई वास्ता ही नहीं है, वो गलत चीज थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था।
2: हेडे को अंतिम दिन पप्पू यादव के रूप में उस पर बड़ा आपत्ति है, आक्रोश है देश में कि हिंदू और सनातन दास संतों का अपमान है ये।
3: देखिए वो गलत था क्योंकि जो राम मंदिर में चोरी हुई है उससे संतों का कोई वास्ता नहीं, तो बेसिकली गलत चीज थी, होना नहीं चाहिए था।
2: सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी शुरुआती दिनों से राम मंदिर दान चोरी का मुद्दा उठा रही है,
3: मुद्दा उठाएगी, उठाती रहेगी।
2: कांग्रेस जब साथ आई तो विवाद घिर गया,
3: अब दूसरी पार्टियों में कोई कमेंट नहीं करना चाहता।
2: सर, अखिलेश यादव जी ने बहुत सधे हुए शब्दों के साथ बीजेपी की आलोचना की है कि सरकार जो है वो रचनात्मक अभिव्यक्ति से डरती है।
3: जब सरकार रचनात्मक काम ही नहीं करेगी तो अभिव्यक्ति तो
0: दूसरी पार्टियों पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव का यह कहना है कि संसद में पप्पू यादव ने जो संतों की वेशभूषा में किया वो गलत था, दरअसल संतों का कोई लेना देना नहीं है। चंदा चोरी मामले में रामगोपाल यादव का ये बड़ा बयान ऐसे वक्त पर जब पप्पू यादव ये कह रहे हैं कि उन पर हमला करना एक सुनियोजित साजिश थी, उनकी हत्या करना दरअसल मकसद था।
1: तो समाजवादी पार्टी से भी अब अलग अलग बयान आ रहे हैं। हमारे साथ हमारी संवाददाता मौसमी सिंह इस खबर पर जुड़ गए। मौसमी, अब राम गोपाल यादव का जो बयान है अखिलेश यादव या अवधेश प्रसाद के बयानों से बिल्कुल अलग, क्या ये नई लाइन है जो समाजवादी पार्टी अब इस मामले में लेने वाली है?
4: देखिए राजीव, बड़ी अजीबोगरीब बात है, जब रामगोपाल यादव ये कह रहे थे तो डिंपल यादव उसी दान पेटी में पैसा डाल रही थी, पप्पू यादव जब भगवा वस्त्र धारी करके शुक्रवार को बैठे हुए थे, तो अब कहीं ना कहीं क्योंकि उनका भगवा जो है वो उसके कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि बीजेपी भी कह रही है कि साधु संतों का अपमान हो रहा है, तो वहां पर अखिलेश यादव एक नया एंगल और नया वार करते हुए सामने आ रहे हैं, जहाँ पे वो खुद ही के जो सांसद उस विरोध प्रदर्शन में थे उनके मौजूदगी में पप्पू यादव को गलत बता रहे हैं। तो बेसिकली इस पूरे मसले पर अब सियासत जो है वो जोरों से हो रही है लगातार, आज भी देखा हमने, लेकिन आज भगवा नजर नहीं आया, आज भी दान पेटी रखी थी और विरोध तो जरूर हो रहा था, सब लोग पैसा भी डाल रहे थे दान पेटी में, लेकिन आज साधु संत की देश में कोई सांसद बैठे हुए नहीं नजर आया। हालांकि सपा का ये कहना और बाकी नेताओं का कि वो भगवा वस्त्र में पाखंडी बीजेपी के पाखंडी बैठे थे, ना कि कोई साधु संत, वो पाखंडी का रूप धारण किया था पप्पू यादव।
0: वहीं चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर संसद में सियासत तेज है, यूपी विधानसभा में भी इसका असर दिख रहा है, जहां सत्र की शुरुआत से पहले समाजवादी पार्टी के विधायकों ने चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर जमकर हंगामा किया। आपसे कुछ ही देर पहले विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है, लेकिन वहां पर भी ये लग रहा है कि चढ़ावा चोरी का मुद्दा सबसे ज्यादा ज्वलनशील रहने वाला है।
1: तो सपा विधायक दान पात्र ही लेकर आए और दान पात्र के बाहर लिखा था चढ़ावा चोर गद्दी छोड़, और वही अपने संसद में जो हुआ था उससे इतर, यहां हालांकि वस्त्र वैसे नहीं थे लेकिन राम मंदिर का मुद्दा देखने को मिला। तो ये दो तस्वीरें हैं, एक लखनऊ की है, एक देश की राजधानी दिल्ली की पिछले हफ्ते की है, जिस पर बवाल अभी तक चल रहा है। आज मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई, हालांकि सत्र बहुत छोटा है, लेकिन सपा ने आज विरोध किया है, विधायकों ने बाहर राम मंदिर चंदा चोरी का मुद्दा उठाकर सरकार को घेरा है।
0: दरअसल चुनाव से पहले ये सत्र बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि विपक्ष के पास ये आखिरी मौका है तमाम मुद्दों को लेकर हावी रहने का, और ऐसे में चढ़ावा चोरी ही सर चढ़कर बोल रहा है। जिस तरीके से पप्पू यादव ने धरना प्रदर्शन करके इस मुद्दे को उठाया है, इधर लखनऊ में भी इस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है।
1: तो आज का दिन राजनीतिक सबकों के लिए बेहद एक्शन भरा है। बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात की एक सीट पर उपचुनाव में वोटों की गिनती समय चल रही है। बिहार के बांकीपुर में जनसुराज पार्टी के प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। एक और इसके अलावा हम बात करें संसद सत्र की, तो विपक्ष का लगातार प्रदर्शन यहां पर देखने को मिल रहा है।
0: तो तीन जगहों पर उपचुनाव, वहीं संसद सत्र का आगाज जिसमें लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हो चुकी है, वहीं यूपी विधानसभा का सत्र भी इस वक्त चालू है। संसद के मॉनसून सत्र में आज फिर विपक्ष ने चढ़ावा चोरी पर प्रदर्शन किया है। संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ जिसकी वजह से कार्यवाही बाधित हुई। उधर यूपी में आज से मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई। पहले दिन पेपर लीक और चढ़ावा चोरी पर विपक्ष का हल्ला बोल रहा।
1: बड़ी खबर हम आपको देते हैं। संसद में आज फिर से हंगामा रहा है। पेपर लीक, चढ़ावा चोरी, ये वो दो बड़े मुद्दे रहे हैं जिन पर विपक्ष ने प्रदर्शन किया है। नीट मामला ओपोजिशन छोड़ नहीं रहा है। राम मंदिर चंदा चोरी का मामला भी बहुत बड़ा है। विपक्ष उस पर भी सरकार को घेर रहा है। गतिरोध लगातार इसके चलते बना हुआ है। आज एक बार फिर से ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब ओपोजिशन के सांसद हाथों में ये प्लाकार्ड्स लिए हुए, पोस्टर्स लिए हुए प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए।
5: है वो है पैसे की गिनवाई, यानी कि पैसा गिना जा रहा है। डिंपल यादव आपको फ्रेम में पीछे नजर आ रही होंगी और इस समय कोशिश यही की जा रही है कि जितना भी पैसा है ये सब पैसे को अयोध्या के राम मंदिर में भेजा जाए। समाजवादी पार्टी के सारे नेता, बड़े बड़े नेता यहाँ पे आपको नजर आ रहे होंगे, डिंपल यादव भी नजर आ रही होंगी, उन सबका यही कहना है कि ये जितना पैसा यहाँ पे इकट्ठा किया गया है, थोड़ी देर पहले ही पैसा इकट्ठा किया गया था, ये सारा का सारा पैसा जो है अब अयोध्या के मंदिर में भेजा जाएगा। ये देखिए गिनती करते हुए आपको यहाँ पीछे नजर आ रहे होंगे जितने भी सांसद हैं वो सब, और ये जितना पैसा है इसको कलेक्ट किया जा रहा है, इसकी गिनती होगी और इसको आखिरकार दिया जाएगा मंदिर के अंदर। उन सबका ये कहना है कि इस तरीके से जो पैसा जो है जो दिया गया था उसको सही जगह पर अब लगाया जाएगा। ये देखिए डिंपल यादव यहाँ पे आपको नजर आ रही होंगी पीछे बैठी हुई मेरे, और इस समय पैसे की गिनती यहाँ पे की जा रही है। ऐश्वर्या पालीवाल, मकर द्वार से संसद दिल्ली आज तक। इस समय सारी विपक्षी बड़ी बड़ी पार्टियां आपको संसद के मकर द्वार पर नजर आ रही हैं। ये देखिए यहाँ से समाजवादी पार्टी की सांसद यहाँ पे नजर आई, पीछे महुआ मोहित्रा नजर आ रही हैं, प्रियंका गांधी नजर आ रही हैं। एक एक करके दान पात्र में जो बड़ी पार्टियां हैं उनके बड़े बड़े नेता यहाँ पे पैसे देते हुए आपको नजर आ रहे हैं, और इन सबका कहना है कि इसी तरीके से अयोध्या में चंदा चोरी हो रही है, ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना होगा। दूसरा सवाल पूछा जा रहा है गृह मंत्री अमित शाह से कि आखिरकार वो संसद आ रहे हैं तो लोकसभा में क्यों नहीं आ रहे। इसी तरीके का प्रदर्शन बीते कई दिनों से नजर आ रहा है। ये देखिए बड़े बड़े नेता जो है वो दान पात्र के अंदर यहाँ पर आपको पैसा देते हुए नजर आ रहे हैं। मकर द्वार से संसद में ऐश्वर्या पालीवाल आज तक दिल्ली।
0: वहीं यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र की धमाकेदार शुरुआत हुई। चढ़ावा चोरी मामले की बीजेपी ने घेराबंदी करते हुए समाजवादी पार्टी ने विधानसभा परिसर में दान पात्र के साथ प्रदर्शन किया। ये वो उस वक्त की तस्वीरें हैं जब समाजवादी पार्टी के विधायक बाहर प्रदर्शन करते हुए पोस्टर बैनर के साथ और साथ ही एक दान पेटी लिए हुए।
1: तो ये तस्वीरें हैं विधानसभा की। आज मॉनसून सत्र की शुरुआत हुई है और समाजवादी पार्टी के सांसद यहां भी प्रदर्शन करते दिखे। यहां विधायकों ने प्रदर्शन किया विधानसभा में और लोकसभा में सांसद प्रोटेस्ट करते दिखाई दिए। तो यूपी में चुनाव है और चुनाव से पहले विधानसभा का आखिरी मानसून सत्र हो रहा है और इस लिहाज से यह सत्र अहम हो जाता है। शायद यही वजह है कि इस सत्र को बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ही बेहद गंभीरता से ले रहे हैं।
0: समाजवादी पार्टी ने इस सत्र में योगी सरकार पर भरपूर हमले का प्लान बनाया और खासकर चढ़ावा चोरी पर बीजेपी को घेरने की तैयारी की है। उधर सीएम योगी ने अपने विधायकों को भी मानसून सत्र के लिए खास निर्देश दिए।
6: ये चंदा हो रहा है, ये बताया जा रहा है कि आस्था के साथ क्या शुरुआत हुआ है।
7: तस्वीरें आज की हैं, लेकिन तेवर आने वाले दिनों का है। आमना सामना आज हो रहा है, लेकिन ट्रेलर 2027 के विधानसभा चुनाव का है। जरा गौर कीजिए योगी सरकार और बीजेपी की किन मुद्दों पर घेराबंदी हो रही है। ये समझना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा कि आने वाले दिनों में यूपी की राजनीति किन मुद्दों पर उबलने वाली है। इस सत्र में जिन मुद्दों पर सदन में गर्मा गर्मी होना तय है उन पर पहले गौर करें। राम मंदिर चढ़ावा चोरी, नीट का पेपर लीक, सरकारी स्कूल मर्जर, E20 पेट्रोल और महंगाई, बेरोजगारी और आरक्षण, बिजली और खाद संकट, ये तो तय मुद्दे हैं। लेकिन लड़ाई इन्हीं दायरे में सीमित नहीं रहने वाली। सीएम योगी ने मानसून सत्र में मोर्चाबंदी की खास तैयारी कर रखी है। बीजेपी विधानमंडल दल की बैठक में सीएम योगी ने विपक्ष को घेरने की रणनीति पर विधायकों से खुलकर बात की। उन्होंने सदन में कम शब्दों में सटीक जवाब देने के निर्देश दिए, जेन जी और जेन अल्फा से लगातार संवाद बनाए रखने को कहा। बैठक में सीएम ने कहा कि 18 से 25 वर्ष के युवा जो नए वोटर बने हैं वो 2027 से पहले की एसपी सरकार की करतूतों के बारे में नहीं जानते, इसलिए जेन जी युवाओं से नियमित संवाद जरूरी है। सूत्रों के मुताबिक योगी ने चढ़ावा चोरी पर भी विपक्ष को आक्रामकता से जवाब देने को कहा।
8: मुख्यमंत्री ने कल की बैठक में ये कहा है कि मॉनसून सत्र में जितने विधायक हैं, जितने मंत्री हैं, वो विपक्ष के एक एक सवाल का सटीक जवाब दें। अयोध्या प्रकरण पर विपक्ष एक एजेंडा चला रहा है, उस एजेंडे को ध्वस्त करने की आवश्यकता है। ये नसीहत मुख्यमंत्री की तरफ से मंत्रियों और विधायकों को दी गई है, और कहीं ना कहीं चाहे जेन जी प्रोटेस्ट हो या अयोध्या राम मंदिर का मामला हो, बीजेपी के विधायक और मंत्री इस सत्र में अब मुख्यमंत्री की नसीहत के बाद विपक्ष को सटीक जवाब देते हुए नजर आने वाले हैं। तो इस बीच में समाजवादी पार्टी की भी तैयारियां पूरी हैं, जो अयोध्या के राम मंदिर प्रकरण को और जेन जी के प्रदर्शन को प्रमुखता से प्रदर्शनों के जरिए और अपने वक्तव्यों के जरिए सदन में उठाने वाली है।
7: उधर कुछ तैयारियां विधानसभा के बाहर भी चल रही हैं। खबर है कि समाजवादी पार्टी ने जातिगत लामबंदी को ध्यान में रखते हुए 5 अगस्त को जनेश्वर मिश्रा की जयंती पर ब्राह्मण सम्मेलन की तैयारी की है। पहले ये कार्यक्रम जनेश्वर मिश्र पार्क में होना था, लेकिन लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इजाजत नहीं दी। अब 5 अगस्त को समाजवादी पार्टी प्रदेश कार्यालय में ब्राह्मण सम्मेलन होगा। तो सदन के भीतर और बाहर दोनों ओर से तैयारियां जारी हैं, इसलिए इस लड़ाई में आगे क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: समर्थ श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं इस वक्त तमाम जानकारी के साथ। समर्थ, ये जो चढ़ावा चोरी का मुद्दा है जाहिर तौर पर हावी रहने वाला है इस बार के विधानसभा सत्र में भी, लेकिन इस तरफ समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि पप्पू यादव जो कर रहे हैं वो गलत है। तो किस तरह की मैसेजिंग पार्टी के अंदर जा रही है? क्या किसी तरह का विरोधाभास है कि कुछ लोग अलग धड़े में हैं, कुछ लोग अलग धड़े में?
8: देखिए नेहा, ये कुल मिलाकर कहा जाएगा कि जो समाजवादी पार्टी है वो सॉफ्ट हिंदुत्व से खुद को अब अलग नहीं करना चाहती। उसको मालूम है कि जिस तरीके से वो पीडीए को लेकर आगे चल रहे हैं, उसके साथ साथ जो अगड़ा वोटर है वो भी बहुत इस वक्त काम आने वाला है यूपी के विधानसभा चुनाव में। और यही नतीजा है कि आप देखें तो जब वकीलों का प्रोटेस्ट लखनऊ में होता है तो अगले दिन रामचरितमानस पटवा दी जाती है। उसके अलावा केदारेश्वर मंदिर अखिलेश यादव बना रहे हैं, कल भी उन्होंने एक नया वीडियो केदारेश्वर मंदिर का शेयर किया है। 5 को तो सनातन पांडे पूरी तरीके से लीड कर रहे हैं, एक बड़ा ब्राह्मण सम्मेलन हो रहा है जिसमें माता प्रसाद पांडे, तमाम सपा के जो ब्राह्मण चेहरे हैं वो शरीक होने वाले हैं। जनेश्वर मिश्र की जयंती पहले समाजवादी पार्टी ने शायद ही इतने बड़े स्तर पर की होगी, जिस स्तर पर इस बार हो रही है। तो समाजवादी पार्टी को समझ में आ गया है कि हमें सॉफ्ट हिंदुत्व को लेकर ही चलना होगा पीडीए के साथ साथ, तभी हम इस चुनाव में बढ़त बना सकते हैं, वो भी तब जब विपक्ष की तरफ से तमाम तरीके के आरोप ये सरकार पर लग रहे हैं कि ब्राह्मणों में नाराजगी है। अब धरातल पर क्या है वो तो चुनाव के नतीजे बताएंगे, लेकिन जिस तरीके से पप्पू यादव का प्रकरण हुआ उस पर समाजवादी पार्टी बैकफुट पर नजर आई। बीजेपी ने सवाल पूछे कि आप कुछ भी सवाल पूछे, लेकिन अब सनातन को
1: समर्थ आप नजर बनाए रखें, अपडेट्स के लौटेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका। एक बड़ी खबर आपको देते हैं, यौन शोषण के मामले में बीजेपी सांसद रहे ब्रजभूषण शरण सिंह को दिल्ली ग्राउंड एवेन्यू कोर्ट से राहत मिली है, उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया है। आज तक के साथ बातचीत में ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि उन्होंने जो कहा था वो सच साबित हुआ है।
0: तो महिला पहलवानों के शोषण मामले में अब ब्रजभूषण शरण सिंह को बाइज्जत बरी कर दिया गया है, राउज एवेन्यू कोर्ट का ये फैसला है। अब देखना ये होगा कि जिन महिला पहलवानों ने आरोप लगाए थे उनका क्या रिएक्शन रहता है।
9: हमारे साथ है बातचीत करने के लिए बीजेपी के पूर्व सांसद, भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और ब्रजभूषण शरण सिंह, जिनके ऊपर ये आरोप लगे थे कि उन्होंने महिला पहलवानों के साथ जो है वो सेक्सुअल हरासमेंट किया था। आज जो निचली अदालत है उन्होंने उनको इस पूरे मामले में जो है वो बरी कर दिया है। ब्रजभूषण जी, कैसा आपको लग रहा है जब इतने लगभग जो है 3 साल के करीब हो गए, अब पूरा मामला जो है वो क्लियर हो गया, आपको बरी कर दिया गया?
10: हिमांशु जी, बरी शब्द का इस्तेमाल के जगह पर कोर्ट ने बाइज्जत बरी शब्द का इस्तेमाल किया है। बरी और बाइज्जत बरी में फर्क होता है। एक बरी होता है कि सबूतों के अभाव में आपको छोड़ा जा रहा है। यहाँ सीधे सीधे कहा गया कि आपको नाम लेकर के कि आपको बाइज्जत बरी किया जा रहा है। और जहां तक आप भी मौजूद थे पहले दिन, और जब मुझे थोड़ा सा मौका मिला था तब मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि ये सब झूठ है। और अगर इसमें एक भी आरोप साबित होगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। इतना कॉन्फिडेंस इसलिए था कि मैं अपने आप को जानता था, सामने वाले को नहीं जानता था लेकिन अपने आप को जानता था। और आज अभी कुछ दिन पहले भी मैंने कहा कि मैं उस बात पर कायम हूं। आज मेरी बात वो सत्य पाई गई और इस साजिश में पहलवानों के अलावा देश की लगभग लेफ्ट राइट, कांग्रेस, आम, ममता, यानी दो एक पार्टियों को छोड़ करके कोई बचा नहीं था। अब उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए क्योंकि उनके हिसाब से तो उसी दिन मुझे पकड़ करके फांसी दे देना चाहिए था।
1: और अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर। आप देखते रहिए आज तक।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच In association with
12: Bharat ki apni electric savari, Sokudo.
13: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you non-stop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.

0: एक बार फिर जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने टारगेट की, दो गैर कश्मीरी मजदूरों की हत्या की। सुरक्षा बल हमलावर आतंकियों की तलाश में जुटे। पुलवामा के केल्लम इलाके और आसपास सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन इस एक्शन के बीच जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने आतंकी वारदात को अलग ही मुद्दे से जोड़ दिया। फारूक अब्दुल्ला ने सवाल किया कि जब भी उनकी पार्टी जम्मू कश्मीर के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग करती है, तभी ऐसी घटनाएं क्यों होती हैं?
1: इसकी तहकीकात होनी चाहिए और ईमानदारी से तहकीकात होनी चाहिए, कौन मारने वाले।
2: इससे पहले भी पुलिस वाले की उस पर अटैक हुआ है,
1: मुझे नहीं पता ये क्यों उस वक्त होता है जब हम लोग स्टेटहुड मांग रहे हैं।
0: आतंकी वारदात के बीच फारूक अब्दुल्ला के सवाल पर सियासत भड़कते देर नहीं लगी। बीजेपी फारूक अब्दुल्ला और उनकी पार्टी पर हमलावर हो गई। वहीं कांग्रेस को इस बयान के बहाने केंद्र सरकार को घेरने का मौका मिल गया।
3: देखिए, पाकिस्तान को क्लीन चिट देना इन नेताओं की सोच में हमेशा रहता है, और हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान के इशारे के ऊपर ही यहां पर अटैक्स होते रहे हैं। आज अगर हम लोग सुरक्षित हैं तो इन एजेंसीज के कारण जिनके ऊपर दोषारोपण इनके माध्यम से हो रहा है। सीमा पर प्रहरी बनकर रक्षा करने वाले हमारे सैनिक, सुरक्षा बल के लोग जिनके कारण घरों में हम लोग सुरक्षित हैं, और आज इन परिस्थितियों में ये लोग भी, ये जो बड़े नेता अपने आप को कहते हैं अगर सुरक्षित हैं तो इन एजेंसीज के कारण, इन सुरक्षा बलों के लोगों के कारण, इस पुलिस के कारण आज उन्हीं के ऊपर दोषारोपण किया जा रहा है।
4: और इस तरह की वारदातें जो हैं वो चौंकाने वाली हैं। एक तरफ से केंद्र सरकार दावे करती है कि हालात बिल्कुल काबू में है, नॉर्मलसी है, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के पास है, और सिक्योरिटी बंदोबस्त इतने मजबूत होने चाहिए। इस वक्त अमरनाथ यात्रा चल रही है और उस वक्त ये वारदातें, पहले भी एक वारदात हुई, और इस तरह का अंजाम देने से ये वो बताते हैं कि उनकी प्रेजेंस है।
0: अभी स्टेटहुड को लेकर फारूक अब्दुल्ला के बयान पर बवाल छिड़ा ही था कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पूर्ण राज्य के दर्जे के लिए लंबी लड़ाई का दावा कर इस विवाद को और भड़का दिया।
5: हम भी जानते हैं ना, अब एक दिन में जंतर मंतर जाके हमें कोई स्टेटहुड मिलने वाला नहीं था। लाखों में स्टूडेंट्स आए, उन्हें भी 25 दिन लगे। हमें भी ये सिलसिला चलाना ही पड़ेगा, कुछ जम्मू कश्मीर के अंदर, कुछ दिल्ली आके, सिलसिला चलता रहेगा जब तक। और हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे जिसका हमारे साथ वादा ना किया गया हो।
0: उधर इस बयानबाजी के बीच मजदूरों को टारगेट कर जम्मू कश्मीर में हुआ ये हमला इसीलिए बेहद गंभीर और चिंताजनक है क्योंकि ऐसी आतंकी वारदात करीब 4 साल बाद दोहराई गई है, जिसके बाद से सुरक्षा एजेंसियां भी काफी चौकन्ना हो गई। आतंकी संगठन लश्कर से जुड़े संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF ने कुलगाम में हुए हमले की जिम्मेदारी ली, जिससे साफ है कि इस हमले की साजिश सीमा पार से रची गई। सुरक्षा एजेंसियां आतंकियों की धरपकड़ में लगी हैं, लेकिन इस बीच फारूक अब्दुल्ला के बयान पर नई सियासी जंग भी शुरू हो गई है। मीर फरीद के साथ आज तक ब्यूरो।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: क्या दिल्ली में हुए छात्र आंदोलन में आतंकी साजिश का प्लान बनाया जा रहा था? क्या छात्रों के आंदोलन के बहाने अशांति फैलाने का खाका तैयार किया जा रहा था? क्या दिल्ली पुलिस की वर्दी की आड़ में बड़े उपद्रव की प्लानिंग थी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये पूरी योजना पाकिस्तान में रची जा रही थी? दरअसल पश्चिम बंगाल की स्पेशल टास्क फोर्स ने बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश कर हमीम मंडल और एक महिला को गिरफ्तार किया तो उनसे पूछताछ में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। पता चला है कि हैंडलर ने इन संदिग्धों को दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के प्रदर्शन के दौरान गड़बड़ी फैलाने की जिम्मेदारी दी थी। हमीम मंडल को तो पुलिस की वर्दी का इंतजाम करने के निर्देश दिए गए थे ताकि वो आसानी से भीड़ में घुसकर माहौल बिगाड़ सके।
1: हम देख रहे थे कि वहां से जो हमारे स्टूडेंट प्रोटेस्ट रिसेंटली हुआ है जंतर मंतर में, उसमें कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट करने के लिए ये हमीम मंडल जो है, इसको बोला जा रहा था कि वो कुछ यूनिफॉर्म प्रोक्योर करे, पुलिस का यूनिफॉर्म प्रोक्योर करे। हम लोग वेरीफाई करें एग्जैक्टली वो क्या प्लान था इनका, तो उसके लिए भी इसको इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा था।
0: ये खुलासा बेहद सनसनीखेज है। छात्र आंदोलन के दौरान साजिश का खुलासा बेहद चौंकाने वाला है। पश्चिम बंगाल एसटीएफ अब इस मॉड्यूल के और लोगों की भी गिरफ्तारी की कोशिश में लगी है।
2: जो जंतर मंतर पे जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहा था, उस प्रोटेस्ट को भारत में सरकार को चौपल करने के लिए, भारत में सरकार को गिराने के लिए, सरकार के खिलाफ साजिश करने का एक रूपरेखा यहाँ पे लोग बना रहे थे। और एसटीएफ ने यह भी बताया कि हालिम जिसको पकड़ा गया है, जो उग्रवादी है, उसके हैंडलर पाकिस्तान में बैठकर वो लोग इसे इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि जाए और वहां पे कोई कैओस तैयार करे और सरकार की

0: किशोर की बढ़त जारी, दतिया और मांजलपुर सीट पर बीजेपी आगे। चढ़ावा चोरी पर पप्पू यादव के भगवा ड्रामे के बाद समाजवादी पार्टी ने खुद को किया अलग। रामगोपाल यादव बोले, दान चोरी से साधु संतों का वास्ता नहीं, हमारी पार्टी गंभीर। संसद में खत्म नहीं हुआ गतिरोध, भारी हंगामे के बाद लोकसभा स्थगित। मकर द्वार पर विपक्ष का प्रदर्शन, छात्रों पर एक्शन, चढ़ावा चोरी पर हल्ला बोल। समाजवादी पार्टी के हंगामे के बाद शुरू हुआ यूपी विधानसभा का मानसून सत्र, चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर प्रदर्शन। सीएम योगी ने कहा, विकास के मुद्दे उठाएं।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
0: नमस्कार, 12 बजे 12 रिपोर्टर देख रहे हैं आप, मैं हूं राजीव ढौंडियाल। शुरुआत करते हैं 12 बजे 12 रिपोर्टर की। पहली रिपोर्ट बिहार के बांकीपुर से है। बांकीपुर में 5 दौर की गिनती हो गई है और 5 दौर की 5 चरणों की गिनती के बाद जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी प्रशांत किशोर 3,451 वोट से आगे हैं। 3,451 वोट से पीके इस समय आगे हैं। 1995 से ही ये बीजेपी का गढ़ रही है। बांकीपुर सीट पर बीजेपी का कब्जा रहा है और बीजेपी के नीरज कुमार इस समय दूसरे नंबर पर चल रहे हैं और 3,451 वोट से पीछे हैं। बांकीपुर सीट पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई। 5 दौर की गिनती खत्म होने तक प्रशांत किशोर 11,603 वोट उनको मिले हैं, जबकि बीजेपी के नीरज कुमार को 8,152 वोट मिले हैं। आरजेडी की रेखा कुमारी को वो तीसरे नंबर पर चल रहे हैं और फाइट अब से बीजेपी और जनसुराज पार्टी में ही दिखाई दे रही है। हमारे संवाददाता शशि भूषण इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शशि भूषण, बढ़त ऐसा लगता है कि बढ़ती चली जा रही है और ये शायद जितनी बढ़त बढ़ेगी बीजेपी के लिए चिंताएं और बढ़ेंगी।
2: बिल्कुल राजीव, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि शुरुआती राउंड से ही हमने देखा प्रशांत किशोर के पास बढ़त है और ये बढ़त उन्होंने ना केवल बनाकर रखी है बल्कि उस बढ़त को ज्यादा भी कर रहे हैं। वो 6 राउंड की गिनती ऑफिशियली पूरी हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो जानकारी दी गई है, 6 राउंड की गिनती पूरी होने के बाद प्रशांत किशोर 3400 से ज्यादा वोटों से आगे हैं, मतलब 3451 वोटों की बढ़त उन्होंने नीरज सिन्हा के मुकाबले बना करके रखी है। लेकिन जो हमारे पास जानकारी आ रही है, जो अनऑफिशियल सोर्सेज हैं उनके मुताबिक प्रशांत किशोर ने 8 राउंड की गिनती पूरी होने तक 4000 से ज्यादा वोटों की बढ़त बनाई है। तो भारतीय जनता पार्टी, उनके नेताओं, उनके उम्मीदवार के लिए चिंता का सबब है ये बढ़त। और हम ये बार बार ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 1995 के बाद कभी भी 1995 से इस सीट पर कभी हार का सामना नहीं किया। ऐसा कभी नहीं हुआ कि भारतीय जनता पार्टी लगातार इतने राउंड में वोटों के गिनती में पीछे रहे किसी चुनाव में। और एक और अहम बात जो थोड़ी देर में हम कंफर्म भी करेंगे, जो खुद उम्मीदवार हैं भारतीय जनता पार्टी के नीरज सिन्हा, संभव है कि वो अपने इलाके में जो उनका सेगमेंट है मंडल, शायद वहां पर भी वो पीछे रहे हैं। तो ये और चौंकाने वाली बात है। और भी बहुत सारे दिलचस्प आंकड़े आएंगे चूंकि रविशंकर प्रसाद बीजेपी के जो पूर्व केंद्रीय मंत्री पटना साहिब से सांसद हैं, उनका क्षेत्र भी है, उनका बूथ भी है, खुद वो वोट डालने गए थे, मैं था वहां पे, उनसे बातचीत की थी, उस बूथ पर क्या आंकड़ा आता है वो भी देखना दिलचस्प होगा। लेकिन बहुत ही बड़ा उलटफेर हो सकता है अगर प्रशांत किशोर इस तरह से बढ़त बनाकर रखते हैं और चुनाव में जीत हासिल करते हैं।
0: बिल्कुल शशि भूषण, नजर बनाए रखें, अपडेट्स के लिए आपके पास हम लौटेंगे। लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग तस्वीर बनती जा रही है बिहार की। लेकिन अब मध्य प्रदेश की बात करें, दतिया में भी जहां वोटों की गिनती चल रही है, दतिया से कांग्रेस के घनश्याम सिंह और बीजेपी के बीच में कांटे का मुकाबला चल रहा है और 833 वोटों से इस समय कांग्रेस आगे चल रही है। दतिया में 4 दौर की मतगणना के बाद यह स्थिति है। कांग्रेस के घनश्याम सिंह बीजेपी के आशुतोष तिवारी से 833 वोट से इस समय आगे हैं। रविश पाल सिंह हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। रविश, यहां पर कांग्रेस आगे चल रही है, बिहार में जनसुराज पार्टी आगे चल रही है, तो बीजेपी के लिए चिंता का सबब, लेकिन अभी कितने राउंड की काउंटिंग बाकी है वहां?
3: देखिए, जो जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक कुल 5 चरणों की जो मतगणना है वो पूरी हो चुकी है। कुल 15 चरण है काउंटिंग के और

0: पांचवें चरण की अगर हम बात करें तो कांग्रेस की लीड घटी जरूर है, लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह अभी भी करीब 500 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। यानी चौथे राउंड की मतगणना में तो वो करीब 800 वोटों से आगे थे, लेकिन चौथे में भले ही लीड कम हुई हो, लेकिन पांचवें राउंड के बाद वो अभी भी लीड घटने के बावजूद 500 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। लेकिन ये चिंता की बात भारतीय जनता पार्टी के लिए क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि दतिया उपचुनाव सिर्फ एक उपचुनाव नहीं है, दरअसल ये मध्य प्रदेश सरकार में जो भाजपा की सरकार है उसके बीते 2.5 सालों के कामकाज का लेखा जोखा भी है। और दूसरी तरफ श्योपुर में पहले ही भारतीय जनता पार्टी एक उपचुनाव हार चुकी है सत्ता में होने के बावजूद, तो ऐसे में अगर दतिया में भी रुझानों में जिस तरीके से कांग्रेस आगे चल रही है और यही अगर नतीजे में भी बदल जाता है तो फिर बीजेपी सत्ता में रहने के बावजूद ये दूसरा उपचुनाव होगा जो हारेगी। लेकिन अगर यहां से बीजेपी इस गेम को पलटती भी है तो फिर माना जा रहा है कि शायद थोड़ी संजीवनी रहेगी। लेकिन सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में बैठी है, एक तरफ वो बिहार में पीछे चल रही है, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में सत्ता में है, केंद्र में सत्ता है, लेकिन दतिया में पीछे चल रही है, तो कई सवाल खड़े हो जाएंगे। कामकाज को देखते हुए माना जा रहा है कि क्योंकि 2 साल बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो फिर ऐसे में बीजेपी के लिए संभवतः ये एक आखिरी उपचुनाव है, और उस चुनाव में भी अगर वो पीछे रह जाती है या हार जाती है तो फिर बीजेपी को बहुत ज्यादा चिंतन करने की जरूरत पड़ जाएगी। ऐसे समय में जिस राज्य में वो बीते 20 सालों से लगातार सत्ता में बनी हुई है उसमें एक के बाद एक अगर 2 उपचुनाव वो हार जाती है तो फिर कई गंभीर सवाल खड़े होंगे। ऐसे समय में जब पूरा का पूरा मंत्रिमंडल दतिया उपचुनाव में लगा हुआ था बीजेपी प्रत्याशी के प्रचार के लिए, और जैसे ही नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटा और जो हालात वहां बने थे, इन तमाम समीकरणों को देखते हुए बीजेपी को काफी ज्यादा सोच विचार की जरूरत पड़ेगी। लेकिन माना जा रहा है कि एक तरफ जहां दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन चल रहा था और उसी दौरान यह मतदान हुआ है, तो क्या युवाओं का गुस्सा भी सत्तारूढ़ दल के खिलाफ गया है, यह भी सोचने वाली बात यहां भाजपा के लिए होगी।
1: बिल्कुल, नरोत्तम मिश्रा के भी निगाहें होंगी इस रिजल्ट पर। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। एक और सीट है जहां पर मतगणना चल रही है, वो है मांजलपुर की सीट, जहां पर आपको बताते हैं कि बीजेपी बंपर यहां पर बढ़त बनाए हुए है। बीजेपी के सत्येंद्र भाई पटेल 13,591 वोट से आगे हैं, तो ये अंतर बहुत बड़ा अंतर है और ये एकमात्र सीट है जहां पर बीजेपी आगे है। 3 सीटों पर इस समय मतगणना चल रहे हैं, 2 पर बीजेपी पीछे है, लेकिन इस सीट पर सिर्फ आगे नहीं है, बहुत आगे दिख रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता अतुल तिवारी जुड़ गए। अतुल, क्या इस समय सिचुएशन, अभी कितने चरण की काउंटिंग बाकी है?
2: देखिए, 9 राउंड का काउंटिंग पूरा हो गया तब बीजेपी के उम्मीदवार सत्येंद्र पटेल, जो कि 13,500 से अधिक वोटों से आगे थे, लेकिन कुछ ही मिनटों पहले जो अपडेट्स सामने आ रही हैं उसके मुताबिक 10वें राउंड की गिनती भी पूर्ण हो चुकी है और 10वें राउंड में भी लगातार बीजेपी के कैंडिडेट सत्येंद्र पटेल कांग्रेस के भिखाभाई रबारी के खिलाफ बढ़त बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। 10वें भी राउंड में लगभग 2,000 वोटों का मार्जिन, यानी कि लीड सीधे तौर पर कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी के कैंडिडेट ने हासिल की है, और 10वें राउंड के बाद अब जो अपडेट आ रही है उसमें लगभग 15,500 से अधिक वोटों से अब बीजेपी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। यानी कि मांजलपुर सीट, जो कि साल 2012-17-22 में बीजेपी के खाते में रही थी और ये बीजेपी का गढ़ माना जाता है, उसी प्रकार से अब जो 10 राउंड की वोटों की गिनती पूर्ण हो चुकी है उसमें भी बीजेपी ने 15,500 वोट का जो बढ़त है वो हासिल कर लिया है। यानी कि लगभग अब ये साफ हो चुका है कि बीजेपी अपना ये गढ़ बचाने में सफल रह रही है और कांग्रेस को एक बार फिर से गुजरात विधानसभा के चुनाव हो चाहे अब ये उपचुनाव हो, निराशा उनके लिए एक बार सामने आ रही है। और अब थोड़े ही देर में बाकी के जो राउंड्स हैं, लगभग 19 राउंड इस पूरे उपचुनाव में पूरे करने हैं और लगभग अब 9 जितने राउंड अभी भी बाकी हैं, लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी के कैंडिडेट ने एक लीड हासिल कर ली है उसके बाद अब लगभग ये साफ हो चुका है कि बीजेपी अपना ये गढ़ बचाने में सफल रहेगी और बीजेपी की जीत लगभग अब तय मानी जा रही है। जी,
1: बहुत शुक्रिया अतुल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। यौन शोषण के मामले में बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को दिल्ली गिराव रेवेन्यू कोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिल गई है। आज तक के साथ बातचीत में ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा कि उन्होंने जो कुछ कहा था वो अब सच साबित हुआ, उन्हें बाइज्जत बरी किया गया।
3: भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह को अदालत ने बरी कर दिया है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में लंबे समय तक फैसले की सुनवाई की। फैसले की सुनवाई पूरी होने के बाद ऑर्डर रिजर्व रखा और आज कोर्ट ने ऑर्डर सुना दिया है जिसमें 6 महिला पहलवानों ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि अभियोजन पक्ष उन आरोपों को सबूतों के साथ साबित करने में नाकाम रहा है, लिहाजा ये सारे आरोपी यानी ब्रजभूषण शरण सिंह और उनके सहयोगी विनोद तोमर उन्हें अदालत बरी करती है। उधर महिला पहलवानों का कहना है कि वो इस मामले इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती देने जा रहे हैं, इसके लिए इस फैसले का पूरा अध्ययन किया जा रहा है। साथ ही ये भी कहा गया है कि चूंकि अदालत ने हमारे सबूतों और गवाहों के बयान पर कई ऐसे पहलू हैं जिन पर गौर नहीं किया है, जिन मुद्दों को आधार बनाते हुए हाईकोर्ट में इसे चुनौती दी जाएगी।
1: अब आज तक से बातचीत करते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी और कहा कि उसे बरी नहीं हुए हैं, बाइज्जत बरी हुए हैं।
4: बरी शब्द का इस्तेमाल के जगह पर कोर्ट ने बाइज्जत बरी शब्द का इस्तेमाल किया है। बरी और बाइज्जत बरी में फर्क होता है। एक बरी होता है कि सबूतों के अभाव में आपको छोड़ा जा रहा है। यहां सीधे सीधे कहा गया कि आपको नाम लेकर के कि आपको बाइज्जत बरी किया जा रहा है।
1: आज यूपी विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हुआ है। सत्र हंगामेदार रहने के पूरे आसार हैं, इसकी झलक शुरुआत में ही दिखी। विपक्ष ने चढ़ावा चोरी समेत कई मुद्दों पर जोरदार प्रदर्शन किया।
5: जो तस्वीरें देश की संसद में देखने को मिल रही थी, वही तस्वीरें अब प्रदेश की विधानसभा में देखने को मिल रही हैं। आप तस्वीरें देखें और खुद समझें कि इस वक्त यहां विधानसभा में क्या माहौल आन पड़ा है। समाजवादी पार्टी के तमाम विधायक जो हैं, वो हाथों में तख्तियां लेकर पहुंच चुके हैं ठीक यहां जहां पर कुल मिलाकर ये प्रदर्शन चल रहा है। इनकी कई अपने आप में जो मांगे हैं वो हैं, ये चंदा चोरी के प्रमुखता से इस पूरे विषय को उठा रहे हैं। कई विधायकों से हम बातचीत भी करेंगे। ये विधानसभा है, सामने चौधरी साहब की प्रतिमा है, आइए बात करते हैं क्या कुछ मुद्दा आप लोग का है।
6: हटियो साहब, हटियो, बताइए।
7: सबसे पहले हमारा मुद्दा पीडीए आरक्षण का घोटाला। राम मंदिर
5: पात्र देख लो, तमाम विधायक लिए यहाँ पर मौजूद है।
7: जो दान पत्र चोरी दान पत्र से हुआ है, उस चोरी को लेकर के हम दान पत्र उसका प्रतिरूप बना करके हम दान
5: अयोध्या से दान पात्र जो है वो आप जो है सिंबॉलिक तौर पर दिखा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे उसके बारे में?
8: जो चंदा चोरी किया है या करेगा वो पछताएगा।
5: क्या लिए आपने दिखाएंगे एक बार जरा? तो ये यहाँ पर स्कूल्स का जो मुद्दा है वो उठा रहे हैं सपा के विधायक, चंदा चोरी की जो बात है वो बता रहे हैं। आप क्या बता रहे हैं? नीट
9: देखिए, हम लगातार देख रहे हैं कैसे हमारे नौजवानों का भविष्य सरकार ने खराब करने का काम कर रही है। चाहे हम दरोगा भर्ती की बात करें, नीट, यूजीसी, टेट, पेट, सहायक प्रोफेसर, पंचायत, किसी भी आप परीक्षा की बात करें, यू नेम इट, दे आर लीकिंग इट। किसी भी परीक्षा को कराने में सरकार असफल है। जिसको हम यूथ को आने वाले कल का भविष्य कहते हैं, उसका ये भविष्य खतरे में डालने का काम कर रही है।
1: तो संसद के अंदर और बाहर आज फिर से हंगामा रहा। पेपर लीक और चढ़ावा चोरी दोनों ही मुद्दों पर विपक्ष ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। आज भी नारेबाजी देखने को मिली। संसद के बाहर की यह तस्वीर उस समय की जब हाथों में फिर से पोस्टर्स लिए हुए विपक्षी सांसद प्रदर्शन करते दिखे और गृहमंत्री अमित शाह संसद से गायब क्यों है ये सवाल पूछते दिखाई दिए।
10: ये तस्वीर आपको मकर द्वार के सामने दिखेगी, जहाँ पे आप ये देखिए कि चंदा चोरी की दान पेटियां तीन काफी छोटे साइज की नजर आ रही है। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि बड़ी चोरी बीजेपी ने की है और यहाँ पे आप देखिए पूरी फहरिस्त आपको विपक्षी नेताओं की नजर आ जाएगी, चाहे वो सपा ही हो या कांग्रेसी हो, इंडिया ब्लॉक के तमाम सांसद। और अमित शाह संसद में क्यों गायब है? वाइस अमित शाह एब्सेंट। रोज रोज नया बैनर और पोस्टर और लाल टोपियों का भी आपको यहाँ पे पूरा भीड़ और मजमा नजर आएगा। यहाँ पे आप देखिए बीच में पोस्टर बैनर लिए कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के सांसद है। और इस तरफ आप देखिए तो प्रियंका गांधी समेत आपको सब लोग नजर आ जाएंगे। कुल मिला के चंदा चोरी को लेकर यहाँ पे आप घेरने की तैयारी में विपक्ष नजर आ रहा है। दूसरी तरफ अमित शाह की भी मौजूदगी की और जवाबदेही की मांग कर रहा है। और इसको लेकर जहां सत्ता पक्ष भी हमलावर है, वहीं दूसरी ओर विपक्ष की ओर से आक्रामक तेवर।
1: अयोध्या में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर सांसद पप्पू यादव के प्रदर्शन पर विवाद हुआ तो समाजवादी पार्टी ने अब इससे किनारा कर लिया है। सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि पप्पू यादव ने संसद परिसर में जो किया वो गलत था। उन्होंने आगे कहा कि हम राम मंदिर चंदा चोरी का मामला सदन में उठाएंगे, ये गंभीर मामला है, लेकिन जो पप्पू यादव ने किया वो गलत था।
11: वो गलत था, क्योंकि जो राम मंदिर में चोरी हुई है उससे संतों का कोई वास्ता नहीं, तो बेसिकली गलत चीज थी, होना नहीं चाहिए था।
12: सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी शुरुआती दिनों से राम मंदिर दान चोरी का मुद्दा उठा रही है,
11: वो तो उठाएगी, उठाती रहेगी।
12: कांग्रेस जब साथ आई तो विवाद घिर गया।
11: अब दूसरी पार्टियों में कोई कमेंट नहीं करना चाहता।
12: दूसरा, सर, अखिलेश यादव जी ने बहुत सधे हुए शब्दों के साथ बीजेपी की आलोचना की है कि सरकार जो है वो रचनात्मक अभिव्यक्ति से डरती है।
11: जब सरकार रचनात्मक काम ही नहीं करेगी तो अभिव्यक्ति तो आएगी नहीं उसके पास, तो नैरेटिव बनाएगी किस तरह से इस बात को घुमा के कहा जाए और दूसरों पर आरोप लगा दिया जाए। इसमें एक्सपर्ट हैं ये, इनका जन कौन सा स्कूल है जिसमें ये चीज सिखाई जाती है।
12: आज भी
1: अब इस बीच खबर है कि सांसद पप्पू यादव के घर पर जो कल घटना हुई, इस मामले में दिल्ली पुलिस ने बीएनएस की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है और इसे लेकर जानकारी दे रहे हैं अरविंद ओझा।
13: रविवार को सांसद पप्पू यादव अपने घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उस दौरान जमकर हंगामा हुआ। आरोप है कि दो लड़के चाकू लेकर सांसद के घर पर पहुंचे और उन पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की। वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि मौके से सुमित नाम के एक लड़के को पकड़ा गया जो नशे की हालत में था। सांसद के पीएसओ ने एक चाकू दिल्ली पुलिस को सौंपा है जिसकी जांच चल रही है। वहीं सांसद ने दिल्ली पुलिस को शिकायत दी है और आरोप लगाया है कि कुछ लोगों ने उन्हें जान से मारने की कोशिश की, इसलिए एफआईआर दर्ज की जाए। मौके से हिमांशु शर्मा नाम का एक शख्स फरार हो गया था, उससे आज तक ने बातचीत की। उसने बताया कि वो अपने दोस्त सुमित के साथ सांसद के घर पहुंचा था क्योंकि दोनों के मुताबिक सांसद ने सनातन का अपमान किया, इसलिए सिर्फ बातचीत करने के लिए पहुंचे थे, उनके हाथ में किसी तरह का कोई चाकू नहीं था।
1: अब आज बिहार के डेहरी नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी की हत्या पर मचे कोहराम की इस हाई प्रोफाइल केस में अब नया मोड़ा है। पुलिस कह रही है कि ईओ की हत्या ड्राइवर मिथिलेश कुमार ने की है और ड्राइवर ने इसे स्वीकार भी किया है। ड्राइवर के मुताबिक छुट्टी ना मिलने पर ज्यादा काम लिए जाने से वो मानसिक रूप से परेशान था, इसी परेशानी में उसने ईओ विमल कुमार की हत्या कर दी। लेकिन ईओ की पत्नी का आरोप है कि हत्या के पीछे डेहरी के एलजेपीआर विधायक का हाथ है। तो ड्राइवर बोला मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा था, परेशान था इसलिए मर्डर किया। लेकिन जो ईओ की पत्नी है उनका आरोप है कि एलजेपीआर के विधायक इस हत्या के पीछे हैं, उनके पति का मर्डर किया गया।
14: रोज फोन कर आइए हमारे घर मिलने, आइए हमको 50 लाख दीजिए, हमको 25 लाख। बोले हम गलत नहीं कर, कहा
15: कौन है विधायक? कौन है विधायक?
14: वो डेहरी का विधायक, रोज फोन करता था, जो नया बना रोज दिन फोन करता था, रोज और दो दिन।
16: ड्राइवर ने स्वीकार किया कि उसने स्वयं उनकी हत्या की है। उसका कारण बताया कि लंबे समय से अत्यधिक ड्यूटी के कारण तनावग्रस्त चल रहा था और समय समय पर बहस होती थी, जिसका अन्य जो स्टाफ है नगर परिषद के उनके द्वारा भी पूछे जाने पर पता किया जा सकता है।
1: तो ये मामला गर्माता जा रहा है क्योंकि पत्नी के आरोप अलग है, दूसरी तरफ ड्राइवर सामने आया है, उसने हत्या की बात स्वीकार भी की है। और इस पर और ज्यादा जानकारी दे रहे संवाददाता रोहित सिंह।
17: बिहार के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विमल कुमार की निर्मम हत्या से बिहार में सनसनी फैल गई है। शुरुआत में लगा कि इस हत्याकांड को कुछ अपराधियों ने अंजाम दिया है, लेकिन इस मामले की जांच जैसे ही पुलिस ने आगे बढ़ाई, उसके बाद विमल कुमार के ड्राइवर ने अपना जुर्म कबूल लिया और पुलिस ने खुलासा किया कि इस घटना में 3-4 अपराधी नहीं बल्कि इस हत्याकांड को विमल कुमार के ड्राइवर मिथिलेश कुमार ने ही अंजाम दिया था। हालांकि विमल कुमार की पत्नी और परिवार वालों ने इस हत्याकांड में पॉलिटिकल कनेक्शन जोड़ दिया है। उनका दावा है कि इस हत्याकांड के पीछे डिहरी के विधायक और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता सोनू सिंह का हाथ है। तेजस्वी यादव ने भी इस पूरे मामले को लेकर सरकार पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
1: 12:12 रिपोर्ट। अब मैं अगली रिपोर्ट रांची से। रांची में 14वीं जेपीएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। छात्र रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में 10 दिनों से धरना दे रहे हैं। कल शाम बड़ी संख्या में छात्रों ने मशाल जुलूस निकाला। उन्होंने हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उधर कांग्रेस जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दिबके ने रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बात की, उन्हें अपना समर्थन देने का ऐलान किया।
18: रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में जेपीएससी और जेएसएससी में व्याप्त धांधली के खिलाफ लगातार छात्र आंदोलनरत हैं और प्रोटेस्ट जो है वो जारी है, राउंड द क्लॉक जारी है। रात को भी जाग रहे हैं क्योंकि इनका कहना है कि कैसे सोएंगे जब तक सरकार को नहीं जगाएं, और नारेबाजी चल रही है। और अब इस आंदोलन को अलग अलग जगह से समर्थन भी मिलने लगा है। बीजेपी ने इस प्रोटेस्ट का खुलकर समर्थन किया है। एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया है। साथ ही साथ कांग्रेस जनता पार्टी ने भी बात की है, उसके संस्थापक अभिजीत दिबके ने भी बात की है यहाँ पे, और कहा है कि जिस सपोर्ट की जरूरत है वो सपोर्ट देने को तैयार है ताकि जो आंदोलन अपने अंजाम तक पहुँच सके। तो लगातार जो है समर्थन चारों तरफ से छात्रों को मिल रहा है और छात्र भी जो है वो डटे हुए हैं इस मैदान में। इनकी जो मांग है वो क्लियर है कि ये जेपीएससी और जेएसएससी में रिफॉर्म्स चाहते हैं और उसके बिना जब तक इस दिशा में कठोर कदम और स्ट्रिक्ट जो मेजर्स है वो नहीं लिए जाते जब तक इनका आंदोलन जो है यूं ही जारी रहेगा।
1: अब अगली रिपोर्ट मौसम से जुड़े हुए। भारत में इस साल बारिश के 12% कमी दर्ज की गई और मानसून की बारिश के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 1 जून से 2 अगस्त 2026 के बीच भारत में कुल 410.1 mm बारिश हुई, जबकि सामान्य बारिश 463.6 mm होनी चाहिए थी। अब इसी तरह 2 अगस्त तक कुल मिलाकर 12% की कमी दर्ज की गई। हालांकि जुलाई में बारिश में काफी सुधार हुआ, लेकिन अलग अलग इलाकों में बारिश का असमान वितरण है, खेती और जल प्रबंधन के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। जुलाई में बारिश में काफी सुधार हुआ और देश में 283.3 mm बारिश हुई, जो सामान्य से यानी कि 280.5 mm से थोड़ी सी ज्यादा थी और 1% की अधिकता दर्ज की गई थी। मध्य भारत सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला क्षेत्र रहा है।
19: इस बार देश भर में मानसून उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पा रहा, जिसका बड़ा असर बारिश पर देखने को मिल रहा है। और मौसम विभाग की माने तो आने वाले अगस्त में भी जो मानसून है उसमें कम बारिश पड़ने की जो उम्मीद है वो जताई जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्व और पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं जहां देखा गया कि कम बारिश देखने को मिली, और आने वाले महीने में भी कम बारिश के जो असर है वो मानसून पर देखने को मिलेंगे, और साथ ही जो इसका असर है वो खारिफ की फसल पर भी देखने को मिलेगा, खेती बाड़ी पर भी देखने को मिलेगा, और साथ ही जो और जलाशयों में पानी का स्तर होता है उस पर भी देखने को मिल सकता है।
1: पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में कल हुए आत्मघाती हमले की अब बात करेंगे। इस हमले में 15 लोगों की जान चले गए।
20: पाकिस्तान के स्वात इलाके में कबाल पुलिस स्टेशन के बाहर रविवार को हुए आत्मघाती हमले ने एक बार फिर यह दिखा दिया है कि पाकिस्तान ने अपने घर में आतंकवाद की जिस विषबेल को बोया था भारत के खिलाफ, वो अब पाकिस्तान का ही घर घेर चुकी है, कई जिंदगियों को लील रही है। यह आतंकी हमला पुलिस स्टेशन के बाहर उस वक्त हुआ जब आतंकवाद के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा था, और इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी उस तहरीक तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने ली है जिसे खुद पाकिस्तान की फौज ने पाला पोसा और बढ़ाया था, लेकिन अब उसी के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। पाकिस्तान जो दुनिया के दूसरे देशों के बीच शांति की वकालत करने में इस समय मसरूफ नजर आता है या उसकी अगुवाई करता दिखना चाहता है, वो खुद अपने ही घर में कितना घिरा हुआ है इसकी तस्वीर न केवल स्वात इलाके से सामने आ रही है बल्कि बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा के दूसरे इलाके हो या फिर सिंध का इलाका हो, वहां कई नजीर के तौर पर दिखाई दे रही है।
1: भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए एक बेहद निराशाजनक खबर आई है। श्रीलंका के खिलाफ दोनों ही मैचों की टेस्ट सीरीज से भारतीय क्रिकेट टीम को झटका लगा है और पूरी खबर बता रहे नितिन श्रीवास्तव।
21: 15 अगस्त से भारतीय टीम को श्रीलंका में 2 महत्वपूर्ण टेस्ट मैचेस खेलने हैं और इससे ठीक पहले भारतीय टीम को एक तगड़ा झटका लगा है। जसप्रीत बुमराह इस सीरीज से अब बाहर हो चुके हैं। जसप्रीत बुमराह को इंग्लैंड में ओडीआई मैचों के दौरान घुटने में चोट लगी थी और उस वक्त से ही डॉक्टर्स ने उनको आराम करने की सलाह दी, रिहैब चल रहा था उनका। सब्जेक्ट ऑफ फिटनेस एस्ट्रिक्स के साथ उनको टीम में जरूर डाला गया था, लेकिन लग ही रहा था कि शायद ये टच एंड गो हो सकता है जसप्रीत बुमराह के लिए, और फाइनली बीसीसीआई ने ऐलान कर दिया है कि बुमराह इस सीरीज में नहीं खेलेंगे और उनको अपनी चोट से उबरने के लिए थोड़ा वक्त और और चाहिए। बुमराह की जगह आकिब नबी अब इस टीम में आए हैं और उनको देखना होगा कि क्या 11 में जगह मिलती है या नहीं। लेकिन अगर आप उनके दो सीजन यानी कि रणजी ट्रॉफी के दो सीजन देखेंगे, 104 विकेटें वहां पर ली थी और इंडिया ए जब हाल में ही गई थी वहां पर श्रीलंका, वो भी उस टीम के सदस्य थे। तो ये कॉल जसप्रीत बुमराह के ना रहने की वजह से आकिब नबी को मिली है, अब आकिब नबी के लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म हो सकता है।
1: अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
22: गेट इनटू द हडल विद TuneIn. TuneIn ब्रिंग्स यू नॉनस्टॉप स्पोर्ट्स टॉक, लाइव गेम्स एंड एक्सपर्ट एनालिसिस ऑल इन वन प्लेस, फ्रॉम किकऑफ टू फाइनल व्हिसल। फॉलो योर फेवरेट टीम्स ऑल सीजन लॉन्ग विद ESPN रेडियो, टॉक स्पोर्ट, बिग 12 रेडियो एंड मोर। Plus, listen to your favorite sports broadcasts on over 200 devices, so you never miss a moment of sports action with TuneIn. Stay in the game with TuneIn and start listening now.
23: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: माँ भी हमेशा पीमार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: पीमार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
5: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा। जीते हर बाजी।
6: धनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
7: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
8: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
3: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay on top of the Major League Baseball season with ESPN Radio. Get daily sports talk covering every big moment from around the league.
4: To right field, and it will leave.
3: From the first pitch of the season to the stretch run,
4: and that's the ball game.
3: We've got you covered with analysis, storylines, and insider perspective. And all season long, catch select live games so you can tune in for key matchups and hear the action unfold. Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
5: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
8: जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिस कहानी के बहुत अच्छे परिणाम हैं और बहुत दुखद परिणाम हैं। भारत एक राजमहल है, समृद्ध है, सोने की चिड़िया है। गहरी बात है वो ये है कि इस राजमहल के चारों तरफ झोपड़ पट्टियां हैं, झुग्गियां हैं, चुनौती वाले क्षेत्र हैं। भारत आए अंग्रेज, यहाँ के लोगों को देखा उन्होंने, जब यहाँ के ग्रंथों को ट्रांसलेट करना शुरू किया, पढ़ा उन्होंने कि ब्राह्मण का जन्म मुंह से हुआ है। ये डिपार्टमेंट बनाया ही गया था शोषण के लिए। कौन सा? पुलिस। किसने बनाया था? कॉर्नवालिस ने। और पुलिस डिपार्टमेंट की खास बात यह है कि जब उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट भारत में बनाया, तब वो डिपार्टमेंट ब्रिटेन में नहीं था। जुडिशरी, मॉडर्न जुडिशरी उन्होंने अपने फायदे के लिए बनाया। अंग्रेजी कानून, अंग्रेजी जज। तुम कल्पना कर सकते हो, आधुनिक काल से पहले LGBT सड़क पर आकर प्रदर्शन करें, इनको तोप में बांध के उड़ा दिया होता।
9: तो क्या सिर्फ अब हिस्ट्री सिर्फ जो बाहर से लोग आए थे यहाँ पे शासन करने के लिए, उनको विलन के रूप में दिखा रहे हैं? या फिर
8: जो भी सरकार सत्ता में आती है वो शिक्षा का इस्तेमाल करती है अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने। वंदे मातरम पे बहस हो रही है, हर दिन मंदिर मस्जिद पे बहस हो रही है, मुसलमान पे बहस। ये संसद बनी किस लिए? औरंगजेब जो था भैया, डेली 200 किलो जनेऊ तोलता था। कितना? 200 किलो भी, मतलब डेली वो कम से कम 10,000 ब्राह्मणों को मारता था, हिंदुओं। मैं देखता हूँ मुसलमानों को और हिंदुओं को, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ। पहले मैं सोचता था पुलिस वाले यहाँ लगा के पॉइंट ब्लैंक से क्यों मारते, क्योंकि यहाँ ताला लगा हुआ है, तो इसीलिए मारते कि यहाँ मारे तो अगले जन्म में खुला हुआ रहेगा।
10: आपको लगता है कि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद देश फिर बट सकता है?
8: इस बात को मैं रिपीटेडली कह चुका हूँ, एक विस्फोट होगा बेटा।
11: लेकिन आपके पढ़ाने के तरीके मुझे एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट लगता है कि आप जनता को ही बोल देते हैं कि जनता बड़ी बेवकूफ़ है, और फिर आप कहते हैं कि हमारे देश का युवा पढ़ना नहीं चाहता है।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: जब भी विधानसभा सत्र के हंगामेदार शुरुआत किसानों के मुद्दे को लेकर सीएम योगी ने जमकर साधा समाजवादी पार्टी पर निशाना, बोले कि किसानों के हितों की बात कर जले पर नमक छिड़कने का कर रहे हैं। अयोध्या चढ़ावा चोरी को लेकर भी सीएम योगी ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा कि अयोध्या के मुद्दे को वो लोग उठा रहे हैं जिन्होंने गोलियां चलवाई, राम भक्तों पर राम मंदिर निर्माण में रोक लगाने का काम किया। बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी समाजवादी पार्टी पर बोला हमला, प्रदर्शन को लेकर तंज कसते हुए कहा कि विधानसभा के कार्रवाई पर कोई असर नहीं। यूपी में विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले सपा के विधायकों ने किया हंगामा, विधानसभा परिसर में पोस्टर बैनर लेकर जोरदार नारेबाजी। सभा के कुछ विधायक पोस्टर लेकर पहुंचे तो कुछ विधायक दान पेटी लेकर पहुंचे। राम मंदिर दान चोरी, नीट पेपर लीक, आरक्षण समेत कई मुद्दों पर प्रदर्शन। सीएम योगी ने सत्र से पहले राज्य में लोगों को किया संबोधित, बोले कि विधानसभा लोगों की आवाज पहुंचाने का माध्यम। मॉनसून सत्र की शुरुआत पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने सरकार और विपक्ष को जनहित के मुद्दों पर गंभीर चर्चा करने की सलाह दी, लगातार छोटे होते सत्र पर भी चिंता जताई। इस 4 दिवसीय सत्र के दौरान योगी सरकार अनुपूरक बजट भी पेश करेगी, साथ ही 6 अगस्त को अनुपूरक बजट पर होगी चर्चा। योगी सरकार में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि हम विपक्ष के सभी सवालों पर चर्चा के लिए तैयार हैं, तो हंगामा ठीक नहीं है, पप्पू यादव पर भी निशाना। सपा नेता इरफान सोलंकी का बड़ा बयान, कहा कि मायावती पर दबाव बनाया जा रहा है, सत्ताधारी दलों के दबाव के कारण मजबूरन उनकी पार्टी में फेरबदल। दिल्ली के राउस रेवेन्यू हाईकोर्ट ने महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के मामलों में पूर्व WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह और सह आरोपी विनोद तोमर को बाइज्जत बरी। पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने अदालत के आदेश के बाद प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो उन्होंने पहले कहा था वो सही साबित हुआ। एसपी सांसद रामगोपाल यादव ने पप्पू यादव पर बोला हमला, कहा कि पप्पू यादव ने संसद परिसर में जो किया गलत था। लखनऊ के कसमंडी इलाके में चेहलुम और सावन के पहले सोमवार के संयोग से माहौल तनावपूर्ण, पुलिस ने बैरिकेडिंग की, आंसू गैस के गोले के विवादित स्थल पर फोर्स भी तैनात। सावन के पहले सोमवार पर काशी विश्वनाथ मंदिर में जल चढ़ाने आए श्रद्धालुओं पर फूलों की बारिश, कमिश्नर और सीईओ ने फूल बरसाए। अयोध्या के नागेश्वर नाथ मंदिर में सावन के पहले सोमवार पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे, बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। मथुरा में मामूली विवाद को लेकर आपस में भिड़े चचेरे भाई, सड़क पर ही जमकर पत्थरबाजी और खूनी संघर्ष, बीच बचाव करने आई एक युवती को भी बेरहमी से पीटा गया। सहारनपुर में कांवड़ियों के लिए बना हाईटेक शिविर, 80 लॉकर से लेकर फुट मसाज तक की सुविधा, 40 कूलर और 30 CCTV से सुरक्षा। यूपी के बाराबंकी में PAC में तैनात एक सिपाही ने बैरक के अंदर फांसी लगाकर खुदकुशी की, शुरुआती जांच में ऑनलाइन गेमिंग की लत, भारी कर्ज और मानसिक तनाव से जूझने की बात सामने आई।

0: और अब दिल्ली तक असर रखने वाली यूपी की सियासत की एक बड़ी खबर आपको देते हैं। खबर यह कि महिला पहलवानों के मामले में बजरंग पुनिया ने लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करने की बात कही है। इससे पहले आपको बता दें, आज ही यूपी के कैसरगंज से सांसद रह चुके ब्रजभूषण शरण सिंह को दिल्ली के राउस एवेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवानों के उत्पीड़न के आरोपों से बरी कर दिया है। कोर्ट ने ब्रजभूषण शरण सिंह सह आरोपी विनोद तोमर को बरी किया है। इससे पहले जुलाई में ही कोर्ट ने दोनों ही पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
1: कैसा आपको लग रहा है जब इतने लगभग जो है 3 साल के करीब हो गए, अब पूरा मामला जो है वो क्लियर हो गया, आपको बरी कर दिया गया?
2: हिमांशु जी, बरी शब्द का इस्तेमाल के जगह पर कोर्ट ने बाइज्जत बरी शब्द का इस्तेमाल किया है। बरी और बाइज्जत बरी में फर्क होता है। एक बरी होता है कि सबूतों के अभाव में आपको छोड़ा जा रहा है। यहां सीधे सीधे कहा गया कि आपको नाम लेकर के कि आपको बाइज्जत बरी किया जा रहा है। और जहां तक आप भी मौजूद थे पहले दिन, और जब मुझे थोड़ा सा मौका मिला था तब मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि ये सब झूठ है। और अगर इसमें एक भी आरोप साबित होगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। इतना कॉन्फिडेंस इसलिए था कि मैं अपने आप को जानता था, सामने वाले को नहीं जानता था, लेकिन अपने आप को जानता था। और आज अभी कुछ दिन पहले भी मैंने कहा कि मैं उस बात पर कायम हूं। आज मेरी बात वो सत्य पाई गई, और इस साजिश में पहलवानों के अलावा देश की लगभग लेफ्ट राइट, कांग्रेस, आम, ममता, यानी दो एक पार्टियों को छोड़ करके कोई बचा नहीं था। और इसीलिए मैं कभी कभी एक सर पढ़ता हूं, किसी सोते को गफलत से जगा देना बगावत है, किसी कमजोर के हक को दिला देना बगावत है। अगर सच्चाइयों का गीत गाना ही बगावत है तो हम भी एक बागी हैं। मेरा मजहब बगावत है।
1: ये पहलवान, ये फेडरेशन के कुछ वो लोग जो ब्रजभूषण शरण सिंह को 12 साल बाद अध्यक्ष नहीं देखना चाहते थे, जनवरी में आरोप लग गए, अप्रैल में अध्यक्ष का चुनाव था, क्या ये उसलिए हुआ सारा? आपको लगता है कि ये सारी साजिशें, कैसे एक साथ इतने सारे लोग आपके खिलाफ हो गए?
2: ये जो कथित पहलवान है, ओलंपियन, वर्ल्ड चैंपियन, ये जूनियर बच्चों का हक मार रहे थे, और उसी उनका हक उन बच्चों को मिले, इसलिए हमने कुछ नियम बनाए थे, कुछ रूल बनाए थे। इसको लेकर के इनके अंदर नाराजगी थी, ये आए, और इनके पीछे बहुत लोग थे।
0: दरअसल 3 साल पुराने इस मामले की बंद कमरे में हुई सुनवाई और तमाम गवाहों को तमाम सबूतों की पड़ताल के बाद अदालत के फैसले में जो बड़ी बातें सामने आई हैं वो एक एक करके आपको बता रहे हैं। उनमें से एक तो ये कि शिकायतकर्ता और पुलिस ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ के आरोपों को संदेह से जो है साबित नहीं कर पाए, और दूसरा ये कि शिकायतकर्ताओं के बयानों में तारीख, समय और घटनास्थल को लेकर विरोधाभास दर्ज किया गया था। महिला पहलवानों ने खेल मंत्रालय की ओवरसाइट कमेटी में दिए गए हलफनामे और अदालत में दिए गए बयानों में वहां अंतर था। कुछ घटनाओं में ब्रजभूषण शरण सिंह कथित घटनाओं के समय दूसरी जगह पर मौजूद रहने के उनके प्रमाण मौजूद थे कि वो वहां थे ही नहीं, कहीं और थे। और बाइज्जत बरी होने के पीछे की बड़ी वजह यह भी थी कि कथित घटनाएं 2016-2019 के बीच की थी, जिनका आरोप 2023 में लगाया गया था, यानी कि कई साल के बाद।
3: आज FIR नंबर 28 वीएस कनॉट प्लेस, इसका ट्रायल दोनों अभियुक्तों के बाइज्जत बरी होने पर आज निर्णय सुनाया गया। और अभी ऑर्डर की कॉपी मिली नहीं है, उसको मिलने के बाद में उसका किन आधार पर न्यायालय निष्कर्ष पर पहुंचा है उसमें हम आपको बता सकते हैं। अभी जो हमारी तरफ से जो तर्क रखे गए थे वो
4: मान लिए गए
3: जी, इनकंसिस्टेंसीज, कंट्राडिक्शंस, इम्प्रोबेबिलिटी और प्ले ऑफ एलिबी।
0: आपको ये याद दिला दें कि मामला 2023 में बहुत जोर शोर से उठा था, विपक्ष ने लगातार इसे एक चुनावी मुद्दा बनाया था, यहां तक कि ब्रजभूषण शरण सिंह को 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट तक नहीं मिला था। और इस मामले की शुरुआत 18 जनवरी 2023 को हुई थी, जब विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया कुछ पहलवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना शुरू किया था। इन लोगों ने तत्कालीन WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न और तानाशाही के गंभीर आरोप लगाए। 21 जनवरी 2023 को खेल मंत्रालय ने एक ओवरसाइट कमेटी बना दी, धरना खत्म हुआ, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट से नाराज महिला पहलवानों ने अप्रैल 2023 में फिर से धरना शुरू कर दिया और फिर 25 अप्रैल 2023 को महिला पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी थी। 28 अप्रैल 2023 को दिल्ली पुलिस ने कनॉट प्लेस थाने में ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पॉक्सो समेत 2 FIR दर्ज की। 15 जून को फिर दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट दाखिल करी। 21 मई 2024 को ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 354 महिला की अस्मत को ठेस पहुंचाने और 354A यौन उत्पीड़न के तहत आरोप हुए। 2 जुलाई 2026 को दोनों पक्षों की दलील सुनी गई और कोर्ट ने फिर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और अब ब्रजभूषण शरण सिंह आरोपों से बरी हो गए।
5: रेणुका जी, जंतर मंतर में इतनी रेसलर्स ने प्रोटेस्ट किया, अभी राउस अपनी कोर्ट से आया है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को बरी कर दिया।
6: क्यों नहीं, सबको करेंगे, सब चोर, जितने लोग पार्टी में दाखिल हुए दूसरे पार्टीज में, अरे यही तो प्रधानमंत्री थे, तो बंगाल के मुख्यमंत्री के बारे में क्या क्या बोले थे, अब लाके उसको मुकुट चढ़ा के बिठा दिए। बहुत अच्छी बात है, सारा देश गवाह है कि ये क्या है और इनकी सोच विचार,
5: देश के स्पोर्ट्स स्टार्स है इस तरीके से,
6: उनके तो बेइज्जती कर ही दिए, उन महिलाओं से माफी मांगे, कान पकड़े।
5: आपको लगता है कि इसमें जो पूरी पड़ताल हुई या सरकार की तरफ से ठीक से जांच पड़ताल नहीं हुई मामले में, तमाम रेस्टलर्स धरने पर बैठी थी, जंतर मंतर में तमाम आरोप लगे थे,
7: इसका जवाब तो सरकार देगी कि उन्हें पड़ताल ठीक से क्या नहीं किया। मैं तो एज ए विपक्ष के सांसद यही बोल सकता हूँ कि आरोप लगे थे, जांच होनी चाहिए थी, जांच होकर न्यायपालिका में गया, अब न्यायपालिका ने जो फैसला दे दिया उसका सम्मान करे, या तो सरकार को अगर लगता है कि सही नहीं है तो सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाए।
0: और इस बीच एक बड़ी खबर आपको देते हैं, लखनऊ के पास में मलिहाबाद कसमंडी किले को लेकर आज सुरक्षा व्यवस्था हाई अलर्ट पर है। ये बड़ी खबर, दरअसल सावन का पहला सोमवार है और चेहल्लूम का 40वां दिन है, इसको लेकर यूपी पुलिस ने कसमंडी किले पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम रखे हैं, क्योंकि पासी समाज के लाखन आदमी ने सावन के पहले सोमवार को ही यहां पर जलाभिषेक का ऐलान किया। दरअसल पासी समुदाय की ओर से लाखन आर्मी इस किले पर दावा कर रही है और उन्होंने ऐलान किया है कि सावन के पहले सोमवार पर पासी समाज 108 गांवों से लाई गई पवित्र मिट्टी विवादित किले में अर्पित करेगा और किले में मौजूद शिव मंदिर में वो जलाभिषेक करेगा। हमारे संवाददाता आशीष श्रीवास्तव इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आशीष, इस समय क्या हालात है वहां?
8: जी, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि लाखन पासी आर्मी को रोक लिया गया है यहाँ पर और पुलिस फोर्स पूरी तरीके से यहाँ पर खड़ी हुई है, चूंकि आप देखेंगे कि यहाँ पर जो बैरिकेडिंग लगी हुई है उसके आगे भी पुलिस ने पूरे तरीके से अपना पहरा लगा रखा है, किसी को भी आगे जाने नहीं दे रहे हैं। और ऐसी स्थिति में लाखन पासी के जो आर्मी कहते हैं जो यहाँ पर अपना जलाभिषेक करने जा रहे थे वो अब यहाँ पर रुक गए हैं और पूरी तरीके से यही जो मिट्टी है और इनके हाथ में जो गंगा जल है इसको चढ़ाने के लिए लाए थे, इसी को इस मिट्टी में 108 गांवों की जो मिट्टी है कह रहे हैं कि जो विवादित स्थल है वहीं पर उसको चढ़ाएंगे, इसी को लेकर ये पूरी तरीके से अभी यहां पर पुलिस फोर्स के सामने बातचीत नहीं करने को तैयार है, कह रहे हैं हम बिल्कुल आगे जाएंगे और ऐसी स्थिति में बनी हुई है। आप लोग ये बताइए कि आगे जाएंगे कि नहीं जाएंगे?
9: हम लोग जाएंगे, गंगा जल चढ़ाएंगे, सावन का पहला सोमवार है, प्रशासन अपना काम करेगा, हम लोग अपना काम करेंगे।
8: वो तो विवादित स्थल है, वहाँ पर तो अभी नहीं कुछ हो सकता है
9: भैया, वहाँ पे हमारा मंदिर है बड़े भाई, सब कुछ है, आप लोग जाके वहाँ पे देख लीजिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को
0: पुलिस ने चूंकि रोक लिया है, आप आगे जाएंगे कैसे?
8: विवादित काम करिए, मेरा निवेदन है, मैं अपने सभी पुलिस ने रोक लिया, आपको जाएंगे आप वहाँ पर कैसे जाएंगे? आप बताइए, आप तो रोक लिया गया है,
10: अब क्या? मेरा परिवार है, मेरे लोग हैं, न प्रशासन मेरा पराया है न मेरे लोग मेरे पराये हैं।
8: तो क्या मिट्टी कहाँ चढ़ाएंगे?
10: मैं मिट्टी अगर मुझे चढ़ाने नहीं दिया गया तो मैं नहीं चढ़ाऊंगा। यही शिवलिंग बना के ये पवित्र
8: विवादित स्थल यहाँ पर अभी कैसे चढ़ा देंगे
10: आप? विवादित मत कहिए।
9: विवादित है तो वो लोग क्यों आए?
10: विवादित मत कहिए,
9: पढ़ के क्यों चले गए?
10: लोगों को भी तो मना, पूरा हिंदू समाज कहता है कि साजिशन गंध साहिदा बना दिया गया, साजिशन कब्रिस्तान बना दिया गया। यहाँ आज भी हजारों साल पुराने अवशेष मिल रहे हैं। किस तरीके से पहले की सरकारों में पुरातन जमीनों को राजस्व में,
8: बिल्कुल देखिए यहाँ पर जो अभी भी बिल्कुल डटे हुए हैं और आगे बढ़ने की बात कह रहे हैं बिल्कुल वहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर एसीपी और जो पुलिस के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर क्या करेंगे सर? अब आपकी क्या स्थिति है?
11: अभी वार्ता चल रही है, अभी फाइनल डिस्कशन नहीं हो पाया। संवाद से इनको बताया जा गया कि इस पे आगे नहीं जाना।
8: स्थल के आगे वहाँ पर मिट्टी चढ़ाने की बात करें, क्या आपने रोकने के लिए क्या पीएसी लगाई तैयारी?
11: हम इनको यही इनसे संवाद चल रहा है, इनको समझाने बुझाने का प्रयास किया जा रहा है और संवाद से हल निकाला जाएगा।
8: बिल्कुल देखिए यहाँ पर पासी समाज के लोग रुकने को तैयार नहीं है। पुलिस कह रही है हम संवाद की कोशिश कर रहे हैं।
0: बिल्कुल पुलिस कह रही है संवाद की कोशिश कर, लेकिन आशीष मैं चाहता हूँ ये सवाल आप जरूर पूछें कि सावन तो पहले भी आए लेकिन आप चुनावों से पहले आपको प्रदर्शन की याद क्यों आई?
8: आप बताइए कि सावन तो पहले भी था, आज आप इसको क्यों लेकर आए चुनाव से पहले? क्या ये चुनावी एजेंडा है आपको लगता है?
9: सावन का पहला सोमवार है, हम लोग जाएंगे गंगा जल, ये है, ये हम लोग लेके आए हैं, ये मिट्टी लेके आए हैं, हम लोग आज चढ़ाएंगे गंगा जल। बिना चढ़ाए हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं।
8: प्रशासन क्या ये चुनावी मुद्दा है आपके लिए इस तरीके से अभी आप आए हैं चुनाव के पहले?
10: देखिए चुनावी मुद्दा उनके लिए होते हैं जो बरसाती मेढक होते हैं। आप सूरज पासी को देखेंगे तो साल के बारह मास सूरज पासी काम करने वाला व्यक्ति है, ठीक है ना? और जो लोग राजनीति कहते हैं वो लोग अभी मेढक की तरह टर्र टर्र करने आए हैं। दो तीन महीने में उनको मिल गया है पेट्रोल डीजल का पैसा। तो ऐसे लोग पासी समाज को पुनः दलितकरण करने में,
8: यहाँ तो नमाज पढ़ने के लिए भी लोग आते हैं, उनको क्या करेंगे?
9: भैया कल भी आए हैं नमाज पढ़ने के लिए, परसों भी आए हैं, उनको नहीं रोका गया है। हम लोगों को क्यों रोका जा रहा है?
8: देखिए बिल्कुल राजीव, यहाँ पर जो साफ तौर से कहना है कि जो नमाज पढ़ने के लिए लोग आ रहे हैं उनको रोक दिया जा रहा है, अब ये यहाँ नहीं रुकेंगे। देखिए राजा पासी राजा कंस का जो पोस्टर है हाथों में, ये मिट्टी है, अगर आप इसको देखेंगे तो इसमें मिट्टी है 108 गांव की, इसको लेकर आए हैं। और साथ ही साथ गंगा जल इनके हाथों में है, इस गंगा जल से इसको अर्पित करेंगे वहां पर। इसी को लेकर अब पुलिस और इसकी बैरिकेडिंग, हालांकि पूरा पीएसी तैनात है, फोर्स दूर दूर तक तैनात कर दी गई है कि कैसे भी वो ना पहुंच पाए वहां तक। अब ऐसी स्थिति में पुलिस पूरी तरीके से जद्दोजहद में लगी हुई है कि आखिर कैसे इनको बताया जाए, समझाया जाए। आरोप लग रहा है पीछे गाड़ियों से भी लोग आए हुए राजीव, लेकिन अब क्या स्थिति होती है ये तो बड़ा सवाल है।
0: बिल्कुल अभी तो फिलहाल पुलिस ने रोक दिया है। आशीष आप नजर बनाए रखें, अपडेट्स के लिए लौटेंगे आपके पास, पूरा मामला क्या है वो भी आपको बताते हैं। लखनऊ के पास मलिहाबाद इलाके में 10वीं और 11वीं सदी के शासक कंसा पासी का एक प्राचीन किला है। पासी समुदाय के लाखन आर्मी का दावा है कि किले में भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है, जबकि मुस्लिम पक्ष इस किले में सदियों से मकबरे और नमाज का दावा कर रहा है। अब उनका कहना है कि अवध के नवाब के समय में यह जमीन कब्रिस्तान के लिए दान कर दी गई, वक्फ संपत्ति के रूप में यह दर्ज भी है। इस कंसा पासी किले को लेकर काफी खींचतान चल रही है और पीछे काफी सियासत भी देखने को मिली। मलिहाबाद विधानसभा सीट पासी बहुल इलाका है जो कि मोहनलालगंज लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है। इस सीट पर दलितों की आबादी 36.17% है और इसमें सबसे बड़ा प्रभाव पासी समुदाय का है जिनके पास तकरीबन 80,000 वोट हैं। इस सीट पर दो चुनावों से विधायक बीजेपी के ही जीत रहे हैं, जबकि पिछली लोकसभा में यहां पर समाजवादी पार्टी ने जीत दर्ज की थी। इस चुनाव में बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजी थी क्योंकि सपा इस लोकसभा सीट पर 48.49% वोट उनको मिले थे, जबकि बीजेपी को 43.88% ही वोट मिले थे। 2022 में बीजेपी यहां बमुश्किल जीत पाई थी क्योंकि तब बीजेपी को 1,10,000 तो समाजवादी पार्टी को 1,02,000 वोट मिल गए थे। अब जीत के इसी अंतर को बढ़ाने और लोकसभा में मिली हार से सतर्क बीजेपी इस सीट पर अब दलित वोटों के एकीकरण की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि लाखन आर्मी से बीजेपी का कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं है, लेकिन एनडीए में बीजेपी के सहयोगी चिराग पासवान की पार्टी भी कंसा पासी किले के मामले को बहुत सक्रियता से उठा रहे हैं, वो भी इस मामले पर अपनी बात लगातार रख रहे हैं। अब एक और बड़ी खबर आपको देते हैं, राम मंदिर चढ़ावा चोरी से जुड़ा हुआ मामला है। इस मामले में प्रदर्शन को लेकर समाजवादी पार्टी के अंदर अब दो राय सामने आई, एक नहीं दो अलग अलग राय दिख रहे हैं। समाजवादी पार्टी के बड़े नेता रामगोपाल यादव ने संसद भवन के सामने पप्पू यादव के उस नुक्कड़ नाटक का घोर विरोध किया है। रामगोपाल यादव ने भगवा कपड़े पहनकर पप्पू यादव के चढ़ावा चोरी के नाटक को गलत बताया।

0: वो गलत था, क्योंकि जो राम मंदिर में चोरी हुई है उससे संतों का कोई वास्ता नहीं, तो बेसिकली गलत चीज थी, होना नहीं चाहिए था।
1: सवाल यह है कि
2: अब राम गोपाल यादव का यह बयान इसलिए काफी अहम हो जाता है क्योंकि एक तरफ जब पप्पू यादव भगवा कपड़ों में बैठकर चढ़ावा चोरी की घटना की स्क्रिप्ट को पेश कर रहे थे, प्रस्तुत कर रहे थे, तो वहां दान पात्र वाले डिब्बे में दान की राशि डालने राहुल गांधी से लेकर तमाम समाजवादी पार्टी के नेता भी मौजूद थे। पप्पू यादव संतों की वेशभूषा में बैठकर चढ़ावा चोरी का स्क्रिप्ट वहां पर परफॉर्म कर रहे थे और इतना ही नहीं, इस दौरान भगवा वस्त्रों में संत के रूप में खुद को दिखा रहे पप्पू यादव को समाजवादी पार्टी के सांसदों ने सांकेतिक रूप से चोरी करते हुए पकड़े जाने पर मारने पीटने और फांसी तक की मांग के उपक्रम को रेखांकित करने की कोशिश की थी। पप्पू यादव के इस नुक्कड़ नाटक को लेकर लोकसभा स्पीकर तक ने नाराजगी जाहिर की थी और यूपी में अब पुलिस में शिकायत दर्ज हो चुकी है। इस बीच राम गोपाल यादव ने बड़ा बयान दिया है, कहा कि उन्होंने संतों के अपमान के बीजेपी के सवाल का एक तरह के साथ जवाब दिया था। और वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: Die Hard music fan? Quello Concerts brings you thousands of full-length concert films and behind-the-scenes music documentaries. From today's icons to yesterday's legends, we have it all. Quello Concerts by Stingray. Now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
6: P-Mark the mustard specialist since 1933.
7: भाजपा सरकार के 10 साल में 26,000 स्कूल बंद हुए हैं। आपके पास कॉपी पहुंच गई होगी, उसमें पहले पेज पर अपील है और कुल सरकारी स्कूल जो बंद हुए हैं और मर्जर के नाम पर जो बंद हुए हैं वो 26,386 हैं। कुल बच्चों का नामांकन जो घटा है, जो एनरोलमेंट बढ़ा है वो 28 लाख के लगभग है, जिसमें पीडीए ओबीसी एससी एसटी के जो बच्चे हैं वो 25 लाख हैं। बेटियों का जो नामांकन कटा है वो 16 लाख है। सरकारी प्राइमरी शिक्षकों की संख्या घटी है वो 62,000 है। केवल स्कूल बंद होने से बच्चों की पढ़ाई नहीं छूट रही है, बेटियों की पढ़ाई नहीं छूट रही, साथ ही साथ ये नौकरी नहीं देना चाहते, सरकारी नौकरियां खत्म कर रहे हैं।
8: असल बात यह है कि 2017 में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और अखिलेश जी को जो करारी हार का सामना करना पड़ा, उस हार के बाद से अखिलेश यादव जी पूरी तरह से हाइबरनेशन में चले गए हैं। वे इस तरह के गलत बयानों को देकर के गलत तथ्यों को प्रस्तुत करके आम जन को भ्रमित करने का और भड़काने का प्रयास करते हैं। हमारी सरकार ने शिक्षा को एक नई दिशा देने का काम किया है।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: Take it easy with Soft Hits. Soft Hits brings together relaxing pop favorites from the 70s, 80s, and 90s. Familiar songs, easy melodies, and a sound that lets you slow down. Perfect for stepping back and catching your breath. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search Soft Hits to start listening now.
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: stay in the game with TuneIn. Hear nonstop sports talk, live games, and coverage that never slows down. Keep up with your favorite teams from every play to every post-game breakdown. Listen to sports stations like ESPN Radio, NBC Sports Radio, Big 12 Radio, Talk Sport, and more. Plus, catch live games all year round, so you never miss a moment of sports action. Start listening on TuneIn.
1: हमारे साथ है बातचीत करने के लिए बीजेपी के पूर्व सांसद, भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बृजभूषण शरण सिंह, जिनके ऊपर ये आरोप लगे थे कि उन्होंने महिला पहलवानों के साथ जो है वो सेक्सुअल हरासमेंट किया था। आज जो निचली अदालत है उन्होंने उनको इस पूरे मामले में जो है वो बरी कर दिया है। बृजभूषण जी, कैसा आपको लग रहा है जब इतने लगभग जो है 3 साल के करीब हो गए, अब पूरा मामला जो है वो क्लियर हो गया, आपको बरी कर दिया गया?
2: हिमांशु जी, बरी शब्द का इस्तेमाल की जगह पर कोर्ट ने बाइज्जत बरी शब्द का इस्तेमाल किया है। बरी और बाइज्जत बरी में फर्क होता है। एक बरी होता है कि सबूतों के अभाव में आपको छोड़ा जा रहा है। यहाँ सीधे सीधे कहा गया कि आपको नाम लेकर के कि आपको बाइज्जत बरी किया जा रहा है। और जहां तक आप भी मौजूद थे पहले दिन, और जब मुझे थोड़ा सा मौका मिला था तब मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि ये सब झूठ है। और अगर इसमें एक भी आरोप साबित होगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। इतना कॉन्फिडेंस इसलिए था कि मैं अपने आप को जानता था, सामने वाले को नहीं जानता था लेकिन अपने आप को जानता था। और आज अभी कुछ दिन पहले भी मैंने कहा कि मैं उस बात पर कायम हूं। आज मेरी बात वो सत्य पाई गई और इस साजिश में पहलवानों के अलावा देश की लगभग लेफ्ट राइट, कांग्रेस, आम, ममता, यानी दो एक पार्टियों को छोड़कर के कोई बचा नहीं था। अब उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, क्योंकि उनके हिसाब से तो उसी दिन मुझे पकड़ करके फांसी दे देना चाहिए था।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

अगर रामगोपाल बोले दान चोरी से साधु संतों का कोई लेना देना नहीं, हमारी पार्टी बेहद गंभीर। यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र में विपक्ष का चढ़ावा, चोरी के मुद्दे पर प्रदर्शन। सीएम योगी ने कहा विकास के मसले ना उठाएं, मुद्दे से ना भटकाएं।

0: बस का स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं लंच ब्रेक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें जो कि बाकीपुर सीट से आ रही है। यहां पर 10 राउंड की गिनती के बाद जनसुराज पार्टी प्रत्याशी प्रशांत किशोर 6011 वोट से आगे चल रहे हैं। 1995 से बीजेपी का गढ़ रही बाकीपुर सीट पर बीजेपी के नीरज कुमार 6011 वोट से पिछड़ गए हैं। बांकीपुर सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे से खाली हुई है और 10 राउंड की गिनती होने के बाद प्रशांत किशोर को 20,059 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी के नीरज कुमार को 14,048 वोट मिले हैं। आरजेडी की रेखा कुमारी तीसरे नंबर पर चल रही है, यानी कि प्रशांत किशोर के लिए यहां पर अच्छी खबर। शशिभूषण मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शशिभूषण, क्या ये जल्दबाजी होगा ये कहना कि प्रशांत किशोर यहां से जीत रहे हैं?
1: देखिए, जब तक हार और जीत का फैसला नहीं होता नेहा, तब तक तो इसका ऐलान नहीं किया जा सकता, मतलब हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन जो शुरुआती रुझान है, और शुरुआती ही नहीं, अब तो लगभग समझिए कि आधा काउंटिंग लगभग पूरा होने को है। क्योंकि हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आधिकारिक आंकड़े भले ही 10 राउंड की गिनती के आ रहे हों, जिसमें प्रशांत किशोर के पास कुल 6011 वोट की बढ़त है, लेकिन जो अनऑफिशियल सोर्सेज से हमें जानकारी मिल रही है 14 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है, जिसमें प्रशांत किशोर के पास 11,000 से ज्यादा वोटों की बढ़त है। और ये बढ़त बहुत बड़ी बढ़त है विधानसभा चुनाव के लिहाज से, और उस बाई इलेक्शन में नेहा जिसमें केवल 34% से थोड़ा ज्यादा वोटिंग हुई हो, तो बीजेपी के नेता भी अब ये मान रहे होंगे कि उनके हाथ से शायद बाजी निकल रही है। हालांकि अंतिम तौर पर जब तक नतीजे आते नहीं है तब तक कोई मानता नहीं है, लेकिन हाँ, प्रशांत किशोर, जनसुराज, उनकी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और जो समर्थक हैं उनके लिए, और खासतौर पे वो लोग जो बांकीपुर में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के साथ अपना समर्थन नहीं जता रहे थे बल्कि प्रशांत किशोर के साथ खड़े थे, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने उनको वोट करी है ताकि वो इतने बढ़त के साथ अभी हैं, तो हम इस बिना पे कह सकते हैं कि ये वाकई उनके लिए एक अच्छी खबर है। और जश्न का माहौल भी है जनसुराज पार्टी में, प्रशांत किशोर के समर्थकों में। प्रशांत किशोर ने 2-3 मुद्दों पर चुनाव लड़ा इस बिहार में, इस सीट पे। पहली बात जो उनकी तरफ से थी वो ये कि बीजेपी के कुछ नेताओं ने यह कहा कि बांकीपुर उनकी परंपरागत सीट है और यहां वो अगर कुत्ते बिल्ली को भी चुनाव लड़ा दें तो वो जीत जाए। तो ये बयान कहीं ना कहीं जो आया, उस बयान को उन्होंने केंद्र में बना कर रख करके और एक वोटर्स का सेल्फ रिस्पेक्ट जो होता है उसको कहीं ना कहीं हिट करने की कोशिश की, ये बताने की। बार बार वो चुनावी जनसभाओं में, छोटी नुक्कड़ सभाओं में कहते थे कि बीजेपी ने एक ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया है, और बीजेपी के बड़े नेता ये कहते हैं कि हम तो किसी को टिकट दे देंगे तो वो चुनाव जीत जाएंगे बांकीपुर में। तो यानी आपके लिए तो कोई बात उन्होंने छोड़ी ही नहीं, पहली बात ये। दूसरी बात वो लगातार कह रहे थे जनसभाओं में कि सम्राट चौधरी को हटाने के लिए आप वोट दीजिए, एक सीट से कुछ नहीं होने वाला है, सरकार की सेहत पे फर्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन आपने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वोट दिया था। अब प्रशांत किशोर ये कह रहे थे कि सम्राट चौधरी, जिनको बीजेपी ने थोपा है मुख्यमंत्री के तौर पर, उनको हटाने के लिए वोट दीजिए। तो आप समझ लीजिए कि जब नतीजे आएंगे उनके पक्ष में तो प्रशांत किशोर आगे कितने आक्रामक होने वाले हैं, इसका अंदाजा लगा सकती हैं।
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिए, लौटेंगे आपके पास जानकारी के लिए। अब रुक करेंगे नॉन स्टॉप 100 का।

बीजेपी के सत्येन पटेल 11वें राउंड के बाद कांग्रेस की भीका भाई रबारी से 17,198 वोट से आगे। दतिया उपचुनाव में मतगणना जारी, बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी बोले विकास के दम पर जीत का पूरा भरोसा। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव रिजल्ट से पहले तेजस्वी पहुंचे मंदिर, बाबा हरिहर नाथ मंदिर में किया जलाभिषेक। यूपी विधानसभा में मॉनसून सत्र की हंगामेदार शुरुआत, किसानों के मुद्दे को लेकर सीएम योगी ने जमकर साधा समाजवादी पार्टी पर निशाना, बोले किसानों के हित से जले पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं। अयोध्या चढ़ावा चोरी को लेकर सीएम योगी ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा अयोध्या के मुद्दे को लेकर वो लोग उठा रहे हैं जिन्होंने गोलियां चलवाई राम भक्तों पर, राम मंदिर निर्माण में रोक लगाने का काम किया। बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने समाजवादी पार्टी पर बोला हमला, प्रदर्शन को लेकर तंज कसते हुए कहा विधानसभा की कार्यवाही पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने से पहले समाजवादी पार्टी के विधायक का हंगामा, विधानसभा परिसर में पोस्टर बैनर लेकर जोरदार नारेबाजी। समाजवादी के कुछ विधायक पोस्टर लेकर पहुंचे तो कुछ विधायक दान पेटी लेकर पहुंचे। राम मंदिर दान चोरी, नीट पेपर लीक, आरक्षण सहित कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन। सीएम योगी ने सत्र से पहले राज्य के लोगों को किया संबोधित, बोले विधानसभा लोगों की आवाज पहुंचाने का माध्यम है। मॉनसून सत्र की शुरुआत पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने सरकार विपक्ष को जनहित के मुद्दों पर गंभीर चर्चा करने की सलाह दी, लगातार छोटे होते सत्र पर चिंता जताई। इस 4 दिवसीय सत्र के दौरान योगी सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी, 6 अगस्त को अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। योगी सरकार में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि जब हम विपक्ष के सभी सवालों पर चर्चा के लिए तैयार हैं तो हंगामा ठीक नहीं है, पप्पू यादव पर साधा निशाना। एसपी नेता इरफान सोलंकी का बड़ा बयान, कहा मायावती पर दबाव बनाया जा रहा है, सत्ताधारी दलों के दबाव के कारण मजबूरन कर रही है पार्टी में फेरबदल। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में महिला पहलवानों द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के मामले में पूर्व WFI अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह और सह आरोपी विनोद तोमर को बरी किया। पूर्व सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के अदालत के आदेश के बाद प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कोर्ट ने बरी नहीं बाइज्जत बरी किया है, मेरे खिलाफ साजिश की गई थी। एसपी सांसद रामगोपाल यादव ने पप्पू यादव पर बोला हमला, कहा पप्पू यादव ने संसद परिसर में जो किया वो गलत था। एसपी सांसद डिंपल यादव ने पप्पू यादव मुद्दे को लेकर सरकार पर साधा निशाना, बोली ये मुद्दे को भटकाने की कोशिश है, सरकार से लोग दुखी हैं। लखनऊ कसमंडी में एक पुराने ऐतिहासिक ढांचे को लेकर विवाद और तनाव, किले के मंदिर में जलाभिषेक पर 2,50,000 आर्मी। प्रशासन ने संभावित बड़ी भीड़ को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती की और संवेदनशील इलाकों की निगरानी बढ़ाई। पंजाब विधानसभा का मॉनसून सत्र आज से शुरू, प्रश्नकाल के दौरान प्रताप बाजवा ने पेपर लीक का मुद्दा उठाया, कहा शिक्षा मंत्री इस्तीफा देंगे या नहीं पहले ये बताया जाए। सदन में जोरदार हंगामे के बीच कांग्रेस विधायक वेल में पहुंचे, बीजेपी के विधायक अश्विनी शर्मा और संदीप जाखड़ विरोध में हुए शामिल। बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर और प्रवेश शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से राहत बरकरार, हेट स्पीच के मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली पुनर्विचार याचिका खारिज की। मॉनसून सत्र से पहले सीएम योगी ने बुलाई सर्वदलीय बैठक, कहा लोकतंत्र में संवाद जरूरी है, जनहित के मुद्दों पर हो चर्चा। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का दावा, यूपी में 10 साल में 26,000 से ज्यादा स्कूल हुए बंद, जौहर यूनिवर्सिटी पर बीजेपी को घेरा। 5 अगस्त को जनेश्वर जयंती के मौके पर समाजवादी पार्टी करेगा भव्य ब्राह्मण सम्मेलन, चुनाव के मद्देनजर ब्राह्मण वोट बैंक पर है नजर। बीएसपी से अशोक सिद्धार्थ निष्कासित, अनुशासनहीनता के मामले मायावती ने बाहर का रास्ता दिखाया। पप्पू यादव पर चाकू से हमले की साजिश का आरोप, दिल्ली पुलिस में की गई शिकायत। प्रेस कॉन्फ्रेंस में घुसकर हमले की कोशिश का दावा, पप्पू यादव की टीम ने मांगी हत्या के प्रयास की जांच। पप्पू यादव पर जूता फेंकने का मामला, दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी सुमित नशे की हालत में था। पप्पू यादव हमले मामले में दिल्ली पुलिस की जांच जारी, चाकू साथ नहीं लाए थे या लाए थे इसकी हो रही है पुष्टि। पप्पू यादव विवाद पर ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव को घेरा, सपा के रुख और नेताओं के बयानों में अंतर पर उठाए सवाल। हंगामे के साथ लोकसभा की शुरुआत, चढ़ावा चोरी समेत कई मामलों पर सरकार को घेरने की तैयारी। विपक्ष के विरोध के बीच केंद्र सरकार आज संसद में FCRA संशोधन बिल कर सकती है पेश, कई NGO ने किया है विरोध। कावेरी जल विवाद में कर्नाटक के सीएम DK शिवकुमार ने 13 अगस्त के बंद खिलाफ अपील की।

बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बढ़त हासिल की। 11 राउंड की गिनती के बाद 6,419 वोट से आगे। बांकीपुर उपचुनाव नतीजों से पहले जीत को खास बनाने के लिए बीजेपी ने 200 किलो स्पेशल लड्डू ऑर्डर किए हैं। बीजेपी ने अभी जीत का पूरा भरोसा जताया है। मंगलपुर उपचुनाव में जीत की ओर बीजेपी

0: सीबीएसई जेएसएससी अभ्यर्थियों का मशाल जुलूस, अनियमितताओं के विरोध में उठाई आवाज, सीबीआई जांच की मांग। रांची में छात्रों के प्रदर्शन पर बोले बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे, अब झारखंड का युवा जाग चुका है, कांग्रेस को समूल नष्ट करने का समय आ गया है। झारखंड के छात्रों के समर्थन में आया कॉकरोच जनता पार्टी, अभिजीत दीपके बोले छात्रों से हुई बात, बीजेपी उनकी मांगों का करता है समर्थन। रांची की नगरी पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, सीएम योगी को गाली देने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में कार्रवाई। जेएनजी आंदोलन पर बोले धीरेन्द्र शास्त्री, देश में विरोध दर्ज कराना सभी का लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन प्रदर्शन के नाम पर अभद्र भाषा और अपशब्दों का इस्तेमाल करना बिल्कुल गलत है। बरनाला में कांग्रेस की बैठक में हंगामा, चन्नी के समर्थन में नारेबाजी, बैठक में मौजूद थे राजा वडिंग और भूपेश बघेल। कोलकाता में तस्लीमा नसरीन ने भारत में यूसीसी लागू करने का किया समर्थन, बांग्लादेश और पाकिस्तान में ऐसे कानून की जरूरत पर दिया जोर। ग्रीन एनर्जी में यूपी ने दिखाया रास्ता, पीएम सूर्य घर योजना में लखनऊ देश में नंबर वन, टॉप 100 में यूपी के 17 जिले शामिल। कांग्रेस ने कर्नाटक कैबिनेट विस्तार के लिए 18 नामों की मंजूरी दी, आज सुबह 10 बजे सीएम को अंतिम सूची भेजी गई। पुलवामा में सुरक्षा बलों को आतंकी के संदिग्ध सहयोगी को गिरफ्तार किया, एक हैंड ग्रेनेड, एक आईफोन, 3 देश विरोधी पोस्टर बरामद। कुलगाम में 2 प्रवासी मजदूर और अनंतनाग में पुलिसकर्मी की हत्या करने वालों की पहचान सार्वजनिक करने की फारूक अब्दुल्ला ने की मांग। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों के ठिकाने का खुलासा, तलाशी अभियान दौरान हिजबुल मुजाहिदीन का पोस्टर और आपत्तिजनक सामान जब्त। पाकिस्तान ने भारत से लगी सीमा पर तैनात किया चीन से मंगाई 250 होबिट्जर तोप, 72 किलोमीटर तक दागेंगी गोला। पीएमसी के 3 बैंक खातों को फ्रीज करने के आदेश के खिलाफ अपील पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। देहरादून में रेलवे जमीन विवाद पर गरमाया मामला, नोटिस चस्पा करने से लोगों में आक्रोश, अधिकारियों के साथ हुई तीखी नोकझोंक। समस्तीपुर में 21 सितंबर से एनआईए कार्य को लेकर कई ट्रेनों का परिचालन रद्द, कुल 384 ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाया जाएगा। बीजेपी विधायक मैथिली ठाकुर का बड़ा बयान, कहा किसी भी धर्म का मजाक उड़ाना अच्छी बात नहीं है, भारत एक ऐसा देश है जहां सभी धर्मों का सम्मान होता है। उत्तराखंड में कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने भारी बारिश और सड़क पर गिरे पेड़ के बीच खुद संभाली कमान, आधे घंटे में उन्होंने खुलवाया नैनीताल हल्द्वानी हाईवे। कटरा रियासी हाईवे पर लैंडस्लाइड, भारी बारिश से मलबा सड़क पर फैला। जम्मू कश्मीर के रजौरी में भारी बारिश के बाद बढ़ा नदियों का जलस्तर, प्रशासन लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की। लद्दाख के करगिल में भारी बारिश से तान और समरा इलाके में अचानक आई बाढ़, कई निचले इलाकों में भरा पानी। यूपी के फरकाबाद में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा, गंगा किनारे बसे करीब आधा दर्जन गांवों में कटान का खतरा बढ़ा। असम के शिव सागर में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए चलाया जा रहा है अभियान, सीआरपीएफ की मदद से पहुंचाया जा रहा है भोजन। सूरत का डुमास बीच भारी बारिश में बंद, पुलिस की गश्त तेज। केरलम के कई जिलों में जोरदार बारिश, कन्नूर के वालपट्टनम नदी के जलस्तर में भारी वृद्धि। कर्नाटक के कबिनी बांध से तमिलनाडु के लिए छोड़ा गया 12,000 क्यूसेक पानी, भारी बारिश के बाद अचानक बढ़ा पानी। छत्तीसगढ़ के पेंड्रा बिलासपुर मार्ग पर पुल ढहा, बस बीच में फंसी, सभी यात्री सुरक्षित। सावन के पहले सोमवार पर शिव भक्तों का महासंगम, कांवड़ियों का उमड़ा सैलाब, शिव मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की लगी लंबी लाइन। सावन के पहले सोमवार पर उज्जैन में हुई बाबा की भव्य रस्म आरती, भस्म आरती, बड़ी संख्या में भक्त मौजूद, परंपरागत विधि विधान से खुले मंदिर के कपाट। सावन के पहले सोमवार पर काशी विश्वनाथ मंदिर में जल चढ़ाने आए श्रद्धालुओं पर हुई पुष्प वर्षा, कमिश्नर और सीईओ ने बरसाए फूल। देवघर में बाबा बैद्यनाथ मंदिर के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब, शिव भक्तों से पटा मंदिर का चप्पा चप्पा। अयोध्या के नागेश्वरनाथ मंदिर में सावन के पहले सोमवार पर बड़ी संख्या में उमड़े श्रद्धालु, बाबा भोलेनाथ का किया जलाभिषेक। बद्रीनाथ के आदि केदारेश्वर मंदिर में सुबह से उमड़ी श्रद्धालुओं की लंबी कतार, सुबह से ही हर हर महादेव के जय घोष गूंजते रहे और वातावरण भक्तिमय दिखा। मुंबई में सावन के पहले सोमवार पर बाबूलनाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने किया जलाभिषेक। पुरी के लोकनाथ मंदिर में उमड़ा आस्था का सैलाब, भक्तों ने किया बाबा भोलेनाथ का दूधाभिषेक। वाराणसी में पहले सोमवार को ब्रह्मा निवास मंदिर में महारुद्राभिषेक, बड़ी संख्या में लोगों ने की पूजा अर्चना। अयोध्या में पहले सावन पर सरयू में स्नान के लिए उमड़ा आस्था का जनसैलाब, बड़ी संख्या में सरयू में लगाई डुबकी। मथुरा में मामूली विवाद को लेकर आपस में भिड़े चचेरे भाई, सड़क पर ही जमकर पत्थरबाजी और खूनी संघर्ष, बीच बचाव करने आई युवती को बेरहमी से पीटा गया। बाराबंकी में पीएसी में तैनात एक सिपाही ने बैरक के अंदर फांसी लगाकर की आत्महत्या, शुरुआती जांच में ऑनलाइन गेमिंग की लत। महाराजगंज में लाठी से पीट पीट कर बुजुर्ग की हत्या, अमरूद तोड़ने का किया था विरोध, हिरासत में आरोपी महिला। राजस्थान के अलवर में आवारा कुत्ते ने किया 5 साल की बालिका पर हमला, हालत गंभीर, अस्पताल में चल रहा इलाज। मेरठ में फर्जी पुलिस अधिकारी और पत्रकार बनकर रंगदारी वसूलने के आरोप में गिरफ्तार आरोपियों की पुलिस अधिकारियों के साथ फोटो और वीडियो वायरल होने के बाद नया विवाद। हरिद्वार से मुजफ्फरनगर पहुंचे कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा, एडीजी ने कांवड़ियों का किया स्वागत। सीकर के खाटू श्याम दरबार पहुंचे दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा, विधि विधान से की पूजा अर्चना। बेटिया के एक शख्स ने पेश की बहादुरी की मिसाल, तालाब में डूब रहे बच्चे की बचाई जान। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 का शानदार समापन, भारत को मिली 2030 की मेजबानी की कमान। बॉलीवुड स्टार सनी देओल के बेटे करण देओल के साथ पटना साहिब गुरुद्वार में टेका मत्था, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने भेंट किया सरोपा। परमाणु समझौते और हॉर्मुज पर ट्रंप बोले, ईरान पर इसलिए नहीं किया था नया हमला, स्ट्रेट खोलने को लेकर सोमवार से होगी नई वार्ता। हॉर्मुज स्ट्रेट में शक्ति प्रदर्शन, अमेरिकी सेना ने यूएसएस एब्राहम लिंकन और F-35 का वीडियो जारी किया। ईरान का सख्त संदेश, हर धमकी को मानते हैं गंभीर, सैन्य तैयारी और ताकत बढ़ाना जारी रहेगा। गाजा के दीर अल बला में एक कार पर हवाई हमला, इजरायली हमले में कार सवार 2 लोगों की मौत, रविवार को इजरायल ने गाजा पर कई जगहों पर किया है हमला। दक्षिण यूक्रेन के शहर जापोरिज्या में हवाई हमले, रूसी हमले में एक व्यक्ति की मौत, 31 लोग घायल। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी इलाके में पुलिस स्टेशन के बाहर आत्मघाती धमाका, 14 लोगों की मौत, 18 घायल। ब्राजील की सत्ताधारी वर्कर्स पार्टी ने राष्ट्रपति लुला डे सिल्वा को अक्टूबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित किया। स्पेन की राजधानी मैड्रिड में मोरक्को दूतावास के बाहर भारी विरोध प्रदर्शन, स्पेन के इलाके स्यूटा में प्रवासियों के घुसने का विरोध। बोलिविया के लापाज में ग्रेट पावर उत्सव की भव्य परेड, 87,000 कलाकारों ने रंग बिरंगे नृत्यों से बांधा समा।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
0: और इस बीच मध्यप्रदेश दतिया से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, वोटों की गिनती वहां पर जारी है। दतिया सीट से कांग्रेस उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, कांग्रेस के घनश्याम सिंह 1,786 वोट से आगे चल रहे हैं। दतिया में 6 दौर की मतगणना के बाद ये स्थिति बताई जा रही है, जिसमें कांग्रेस के घनश्याम सिंह बीजेपी के आशुतोष तिवारी से 1,786 वोट आगे हैं। बीजेपी के आशुतोष तिवारी को लगभग 24,000 वोट मिले हैं। दतिया में 6 दौर का मतगणना खत्म हो चुकी है और उसके बाद कांग्रेस के घनश्याम सिंह आगे बताए जा रहे हैं। हालांकि वोट मार्जिन काफी कम है, लेकिन कांग्रेस के प्रत्याशी आगे। वहीं बांकीपुर में भी 10 राउंड की गिनती के बाद जनसराज प्रत्याशी प्रशांत किशोर 6,011 वोट से आगे बताए जा रहे हैं। 1995 से बीजेपी का गढ़ रही है बांकीपुर सीट और यहां से नीरज कुमार 6,011 वोट से पीछे चल रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे से यह सीट खाली हुई थी। 10 दौर की गिनती खत्म होने के बाद प्रशांत किशोर को 20,059 वोट मिले हैं, जबकि बीजेपी के नीरज कुमार को 14,048 वोट मिले हैं। आरजेडी की रेखा कुमारी 3rd नंबर पर चल रही है। 6,419 वोट से प्रशांत किशोर आगे हैं, ये ताजा आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। तो लगभग 6,000 की बढ़त है, तो 12 राउंड की वोटिंग पूरी, मतगणना पूरी हो चुकी है और इस 12 राउंड की गिनती तक प्रशांत किशोर लगभग 6,000 वोट से आगे। बांकीपुर सीट जो बीजेपी का गढ़ मानी जाती है, वहां पर इस वक्त मतगणना का 12 राउंड पूरा हो चुका है और इसमें प्रशांत किशोर आगे हैं। दरअसल ये बीजेपी के लिए साख का सवाल है और ऐसे में बेहद दिलचस्प होगा यहां का मुकाबला। लगभग 30 राउंड मतगणना के होने हैं, जिसमें 12 पूरे हो चुके हैं, तो अभी आधे के मार्ग पर भी पहुंचना बाकी है, लेकिन तब तक 6400 लगभग वोट हैं जिनसे प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं। 6,646 वोटों से ये आगे चल रहे हैं। शशि भूषण जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शशि भूषण, ये माना जा रहा था कि दोपहर तक रिजल्ट्स आ जाएंगे, देरी क्यों हो रही है, वजह क्या बताई जा रही है, या फिर ये प्रत्याशित था, इतना ही समय लगता है?
3: Thank you.
0: शशि भूषण आपको मेरी आवाज मिल रही है?

0: वक्त एक छोटे से ब्रेक का उछला, दिखते रहिए आज।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी
3: You're listening Uninterrupted with TuneIn Premium. Enjoy commercial-free news and music, plus ad-free ESPN Radio, and fewer ads across other stations. Whether you're listening for the latest news or the next big game, never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices at home, in the car, or on the go. So you can hear more. Ready to upgrade your listening? Upgrade to TuneIn Premium now.
4: Savari.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सम।
2: गुजरात की मांजलपुर सीट से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, यहाँ पर बीजेपी के सत्येन भाई पटेल 24,199 वोट से आगे हैं। कांग्रेस के बीका भाई रबारी पर भारी बढ़त उन्होंने बना ली है। 15 दौर की गिनती पूरी हो चुकी है। मांजलपुर में बीजेपी आगे चल रही है, 24,199 वोटों की लीड है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, देखते रहिए आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
3: Hear what the world is listening to. Global Hits brings together music in motion. From pop to K-pop, Latin dance and Afro beats. Chart-topping tracks to hidden gems. Whatever the globe is listening to, it's all right here. Explore the new Stingray Music Collection with stations like this. Just search today's Global Hits to start listening now.
4: सवारी याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
5: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
6: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
7: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
8: कुछ तो बात है इस दिल में।
0: In association with
1: Punjab National Bank, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबा केसरी, हिंट बड़े आराम से। शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
9: जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिस कहानी के बहुत अच्छे परिणाम हैं और बहुत दुखद परिणाम हैं। भारत एक राजमहल है, समृद्ध है, सोने की चिड़िया है। गहरी बात है वो ये है कि इस राजमहल के चारों तरफ झोपड़ पट्टियां हैं, झुग्गियां हैं, चुनौती वाले क्षेत्र हैं। भारत आए अंग्रेज, यहाँ के लोगों को देखा उन्होंने, जब यहाँ के ग्रंथों को ट्रांसलेट करना शुरू किया, पढ़ा उन्होंने कि ब्राह्मण का जन्म मुंह से हुआ है। ये डिपार्टमेंट बनाया ही गया था शोषण के लिए। कौन सा? पुलिस। किसने बनाया था? कॉर्नवालिस ने। और पुलिस डिपार्टमेंट की खास बात यह है कि जब उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट भारत में बनाया, तब वो डिपार्टमेंट ब्रिटेन में नहीं था। ज्यूडिशियरी, मॉडर्न ज्यूडिशियरी उन्होंने अपने फायदे के लिए बनाया। अंग्रेजी कानून, अंग्रेजी जज। तुम कल्पना कर सकते हो आधुनिक काल से पहले LGBT सड़क पर आकर प्रदर्शन करें, इनको तोप में बांध के उड़ा दिया होता।
10: तो क्या सिर्फ अब हिस्ट्री सिर्फ जो बाहर से लोग आए थे यहाँ पे शासन करने के लिए उनको विलन के रूप में दिखा रहे हैं? या फिर
9: जो भी सरकार सत्ता में आती है वो शिक्षे का इस्तेमाल करती है अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने। वंदे मातरम पे बहस हो रही है, हर दिन मंदिर मस्जिद पे बहस हो रही है, मुसलमान पे बहस। ये संसद बनी किस लिए? औरंगजेब जो था भैया, डेली 200 किलो जनेऊ तोलता था। कितना? 200 किलो भी, मतलब डेली वो कम से कम 10,000 ब्राह्मणों को मारता था, हिंदुओं को। मैं देखता हूँ मुसलमानों को और हिंदुओं को, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ। पहले मैं सोचता था पुलिस वाले यहाँ लगा के पॉइंट ब्लैंक से क्यों मारते हैं, क्योंकि यहाँ ताला लगा हुआ है, तो इसीलिए मारते हैं कि यहाँ मारे तो अगले जन्म में खुला हुआ रहेगा।
11: आपको लगता है कि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद देश फिर बट सकता है?
9: इस बात को मैं रिपीटेडली कह चुका हूँ, एक विस्फोट होगा बेटा।
12: लेकिन आपके पढ़ाने के तरीके मुझे एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट लगता है कि आप जनता को ही बोल देते हैं कि जनता बड़ी बेवकूफ़ है, और फिर आप कहते हैं कि हमारे देश का युवा पढ़ना नहीं चाहता है।

घर खरीदने का सपना हर किसी की जिंदगी में सबसे बड़ी उपलब्धि जैसा होता है। यही वजह है कि रियल एस्टेट मार्केट में जरा सी हलचल भी आम आदमी की जेब और उम्मीदों से सीधा जुड़ जाती है। हाल ही में आई नाइट फ्रैंक नारेडको की रिपोर्ट में रेजिडेंशियल सेगमेंट को लेकर कुछ बड़े रुझान सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक घरों की बिक्री में कमजोरी की आशंका जताने वालों की तादाद 52 से घटकर 45% रह गई है। वहीं नए प्रोजेक्ट लॉन्च कम होने की आशंका जताने वालों का आंकड़ा भी 45 से घटकर 38% पर आ गया है। इससे संकेत मिलता है कि बिक्री और नए लॉन्च को लेकर पहले के मुकाबले निराशा कुछ कम हुई है। हालांकि अब बात घरों की कीमतों की आती है तो तस्वीर थोड़ी अलग नजर आती है। रिपोर्ट के मुताबिक 74% लोगों का मानना है कि घरों के दाम या तो स्थिर रहेंगे या फिर इनमें और बढ़ोतरी होगी। यानी घर खरीदने का इरादा रखने वालों को महंगाई के मोर्चे पर फिलहाल राहत मिलने के आसार कम ही हैं। रेजिडेंशियल सेगमेंट की इस सुस्त रफ्तार को समझने के लिए ओवरऑल रियल एस्टेट सेंटीमेंट पर भी नजर डालना जरूरी है। रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा सेंटीमेंट स्कोर 48 है, जो पिछली तिमाही में 49 था और अब भी निराशा वाले दायरे में बना हुआ है। भविष्य को लेकर सेंटीमेंट स्कोर 50 पर स्थिर है, जिससे पिछली भारी गिरावट के बाद अब हालात संभलते दिख रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह देश की आर्थिक सूरत में दिख रहा हल्का सुधार भी माना जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 36% लोगों को आर्थिक हालात बिगड़ने की आशंका है, जबकि पहली तिमाही में ही ये आंकड़ा 50% था, जबकि 31% लोगों को आर्थिक स्थिति में सुधार की उम्मीद है। फंडिंग को लेकर भी बाजार में बहुत ज्यादा हलचल के आसार नहीं है। आधे लोगों का मानना है कि कैपिटल की उपलब्धता में कोई बदलाव नहीं आएगा, वहीं करीब 19% लोगों को इसमें सुधार की उम्मीद है। कुल मिलाकर रेजिडेंशियल मार्केट भले ही तेज उछाल की स्थिति में ना हो, लेकिन बिक्री और लॉन्च को लेकर घटती निराशा घर खरीदारों और डेवलपर्स दोनों के लिए राहत की खबर जरूर है। आदित्य के राणा आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

नितिन नवीन के गढ़ बांकीपुर से रुझानों में प्रशांत किशोर की बढ़त बरकरार, करीब 7,000 वोट से आगे, लगातार पीछे चल रहे बीजेपी के उम्मीदवार। मध्य प्रदेश के दतिया के रुझानों में भी कांग्रेस को मामूली बढ़त, बीजेपी को मिल रही है कड़ी टक्कर, लेकिन गुजरात के मांजलपुर उपचुनाव में केसरिया लहर। यौन शोषण केस में बरी होने के बाद आज तक ब्रजभूषण शरण सिंह का पहला इंटरव्यू, कहा पहले दिन से कहता रहा मैं निर्दोष हूं, प्रदर्शन करने वाले जवाब दें। चढ़ावा चोरी पर पप्पू यादव के भगवा ड्रामे से समाजवादी पार्टी ने किया अलग, रामगोपाल बोले दान चोरी से साधु संतों का कोई वास्ता नहीं, हमारी पार्टी बेहद गंभीर। यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र में विपक्ष का चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर प्रदर्शन, सीएम योगी ने कहा विकास के मसले उठाएं, मुद्दे से ना भटकाएं।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और अब हम बात करेंगे बृजभूषण शरण सिंह और पहलवानों की लड़ाई की, क्योंकि यौन शोषण के आरोप से बृजभूषण मुक्त हो गए हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह को बाइज्जत बरी कर दिया है। मामला साल 2023 का है, जब पहलवान विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे। सड़क पर धरना दिया था, संघर्ष किया, जंतर मंतर पर लाठियां खाई, लेकिन अब कोर्ट में पहलवान हार गए और बृजभूषण शरण सिंह जीत गए।
1: मैं ऐसे साजिशों से लड़ते आया हूं, बरी शब्द का इस्तेमाल के जगह पर कोर्ट ने बाइज्जत बरी शब्द का इस्तेमाल किया।
2: बृजभूषण शरण सिंह छूट गए। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व बीजेपी सांसद को आरोपों से मुक्त कर दिया है। 3 साल की कानूनी लड़ाई में कुश्ती संघ के इस पूर्व अध्यक्ष ने दंगल जीत लिया। आरोप यौन शोषण का था, नाबालिग पहलवानों से असभ्यता के आरोप थे, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह सब में छूट गए, साफ साफ बच गए।
3: जिस दिन जीवन के हान लाभ पर उतरूंगा, जिस दिन जीवन के हान लाभ पर उतरूंगा, जिस दिन संघर्षों में जाली लग जाएगी, यानी संघर्ष करने की क्षमता समाप्त हो जाएगी, जिस दिन जीवन की लाचारी मुझ पर तरस दिखाएगी, उस दिन जीवन से मृत्यु नहीं बढ़ जाएगी।
2: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सोमवार को फैसले का दिन था। अब तक न जाने कितनी बार बृजभूषण सिंह इस कोर्ट का चक्कर लगा चुके थे। आज फैसले के दिन एक बार फिर से वो कोर्ट में मौजूद रहे और जैसे ही न्यायालय ने फैसला सुनाया तो बृजभूषण और उनके समर्थक झूम उठे। ये पटाखे, ये जश्न, ये नारेबाजी सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि बृजभूषण शरण सिंह आरोप मुक्त कर दिए गए। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह और सहायक सचिव विनोद तोमर को सबूतों के अभाव में छोड़ दिया। अदालत ने माना कि अभियोजक पक्ष की ओर से पेश किए गए सबूत बृजभूषण सिंह के खिलाफ आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। बयानों में कई विरोधाभास पाए गए। 6 महिला पहलवानों ने बृजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न, पीछा करने और आपराधिक धमकी देने के गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन न्यायालय में कोई भी आरोप साबित नहीं हो सका।
4: आज FIR नंबर 28 VS कनॉट प्लेस, इसका ट्रायल दोनों अभियुक्तों के बाइज्जत बरी होने पर आज निर्णय सुनाया गया।
2: ये विवाद 18 जनवरी 2023 को पहली बार तब सामने आया जब दिल्ली के जंतर मंतर पर महिला पहलवानों ने बृजभूषण के खिलाफ मोर्चा खोला। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया जैसे पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। उस वक्त बृजभूषण शरण सिंह बीजेपी के सांसद थे, कुश्ती संघ अध्यक्ष थे। शुरुआत में पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर तानाशाही रवैये के आरोप लगाए, बाद में उसमें यौन शोषण के भी आरोप जुड़े। विनेश फोगाट ने बृजभूषण शरण पर नेशनल कैंप में महिला रेस्लर्स के साथ दुर्व्यवहार करने के साथ यौन उत्पीड़न के भी आरोप लगाए थे और मांग की थी कि बृजभूषण को गिरफ्तार किया जाए। हालांकि बृजभूषण सिंह कभी गिरफ्तार नहीं किए गए। इस केस के बाद बृजभूषण शरण सिंह की काफी फजीहत हुई। बीजेपी ने भी किनारा कर दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव में बृजभूषण को टिकट नहीं मिला। हालांकि बृजभूषण शरण सिंह पहले दिन से कहते आए थे कि उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश हो रही है, आरोप बेबुनियाद है। तब बृजभूषण ने नार्कोटेक्स की भी चुनौती दी थी कि जो चाहे टेस्ट कर लो, आरोप झूठे ही निकलेंगे। बहरहाल अब 3 साल बाद बृजभूषण सिंह इस केस से छूट गए। छूटने की बड़ी वजह ये भी है कि पहलवानों ने जो आरोप लगाए वो विरोधाभासी निकले। पहलवानों के वकील ने कहा कि पीड़ितों ने केस देर से किया और इस देरी की वजह से हम कोर्ट में बचाव नहीं कर पाए। पहले जंतर मंतर पर धरना दिया, फिर FIR करवाई। इससे ये मैसेज गया कि आरोप इनके मन में थे। जंतर मंतर पर धरना के दौरान ही बृजभूषण पर FIR का प्लान बना। कोर्ट में जब बयान दर्ज किए गए तो विरोधाभास दिखा। पहलवानों के बयान एक दूसरे के विरोधाभासी थे। घटना की तारीखों में हेर फेर की गई। पहलवानों का एक भी आरोप साबित नहीं हो सका। कुछ घटनाएं ऐसी तारीखों की बताई गईं जब ब्रिजभूषण शरण सिंह घटनास्थल से कहीं दूर थे। सुनवाई के दौरान ऐसे ही कई और तथ्य सामने आए जो ब्रिजभूषण के पक्ष में गए और कोर्ट ने उन्हें छोड़ दिया। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।
0: इस पूरे मामले पर बड़ी खबर आपको बता दें, विनेश फोगाट का बयान आया है। विनेश फोगाट ने कहा कि शुरू से ही पूरा सिस्टम और तंत्र ब्रिजभूषण शरण सिंह को बचाने में जुटा हुआ था। विनेश फोगाट ने लिखा है कि गवाहों को डरा धमका कर आरोप वापस कराए गए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लड़ाई आगे जारी रहेगी, मतलब साफ है कि राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दी जाएगी। आशुतोष मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। आशुतोष, विनेश के बयान से तो कम से कम यही लग रहा है कि मामला अभी थमा नहीं है, आगे की कोर्ट्स में जाएगा।
5: सिर्फ विनेश नहीं, बजरंग पुनिया की ओर से भी जो सोशल मीडिया पोस्ट है, दरअसल दोनों को हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनसे बात कर सके, और पहली प्रतिक्रिया यही है कि शुरू के दिन से पूरा सिस्टम, पूरा तंत्र यंत्र लगा रहा उनको बचाने में। पहली चीज, इतनी गंभीर धाराओं की शिकायत होने के बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई, उनको गिरफ्तार नहीं किया गया था, तो ये सबसे आरोप बड़ा था कि दिल्ली पुलिस दबाव में है। जांच में अगर आप इतनी गंभीर धाराओं में गिरफ्तारी नहीं करते तो आपकी जांच की दिशा क्या होगी? दूसरा, क्या सही गवाह, सही फॉरेंसिक टेस्ट, सही तरह से बयान दर्ज किए गए? क्योंकि अदालत का फैसला इस पर निर्भर करता है कि जो जांच एजेंसी है वो किस तरह के सबूत लाती है, उसकी जांच की दिशा क्या होती है और क्या वहां पर कोई समझौता हुआ है। अब अदालत का फैसला, उन्हें लग रहा है कि जब पहले दिन से ये कोशिश की गई थी, कई लड़कियों पर दबाव था, कई पीछे हट गई, उन्होंने सारी मुश्किलें झेली, उन्होंने इस आंदोलन को लड़ा, जंतर मंतर से लेकर के अदालत की लड़ाई लड़ी, और वो कह रहे हैं कि हम यहां हारेंगे नहीं, आगे लड़ाई जारी है। जाहिर है कि वो दिल्ली हाईकोर्ट में, उन्होंने अपने वकीलों को निर्देश दिया कि इस फैसले के खिलाफ वो दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएं।
0: इस बीच ब्रिजभूषण शरण सिंह कोर्ट से बाइज्जत बरी हो गए और दावा कर रहे हैं कि बाइज्जत बरी हुए हैं, सिर्फ बरी नहीं हुए हैं। कोर्ट के फैसले के बाद ब्रिजभूषण ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की और सत्यमेव जयते कहा।
6: हमारे साथ है बातचीत करने के लिए बीजेपी के पूर्व सांसद, भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और ब्रिजभूषण शरण सिंह, जिनके ऊपर ये आरोप लगे थे कि उन्होंने महिला पहलवानों के साथ जो है वो सेक्सुअल हरासमेंट किया था। आज जो निचली अदालत है उन्होंने उनको इस पूरे मामले में जो है वो बरी कर दिया है। ब्रिजभूषण जी, कैसा आपको लग रहा है जब इतने लगभग जो है 3 साल के करीब हो गए, अब पूरा मामला जो है वो क्लियर हो गया, आपको बरी कर दिया गया?
7: हिमांशु जी, बरी शब्द का इस्तेमाल के जगह पर कोर्ट ने बाइज्जत बरी शब्द का इस्तेमाल किया है। बरी और बाइज्जत बरी में फर्क होता है। एक बरी होता है कि सबूतों के अभाव में आपको छोड़ा जा रहा है, यहां सीधे सीधे कहा गया कि आपको नाम लेकर के कि आपको बाइज्जत बरी किया जा रहा है। और जहां तक आप भी मौजूद थे पहले दिन, और जब मुझे थोड़ा सा मौका मिला था तब मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि ये सब झूठ है, और अगर इसमें एक भी आरोप साबित होगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। इतना कॉन्फिडेंस इसलिए था कि मैं अपने आप को जानता था, सामने वाले को नहीं जानता था लेकिन अपने आप को जानता था। और आज अभी कुछ दिन पहले भी मैंने कहा कि मैं उस बात पर कायम हूं। आज मेरी बात वो सत्य पाई गई, और इस साजिश में पहलवानों के अलावा देश की लगभग लेफ्ट राइट, कांग्रेस, आम, ममता, यानी दो एक पार्टियों को छोड़ करके कोई बचा नहीं था। अब उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, क्योंकि उनके हिसाब से तो उसी दिन मुझे पकड़ करके फांसी दे देना चाहिए था। तो अब उनको अपने गिरेबान में देखना चाहिए कि उनका प्रोटेस्ट कहां तक सही था। और जहां तक मेरा सवाल है, मैं एक सामान्य परिवार में पैदा हुआ, 15 साल से की उम्र से मैं ऐसे साजिशों से लड़ते आया हूं, मेरे ऊपर बड़े आरोप लगे हैं, और लेकिन वो आरोप जो भी लगे हैं वो कमजोर लोगों की लड़ाई के लिए लगे हैं, और इसीलिए मैं कभी कभी एक सर पढ़ता हूं, किसी सोते को गफलत से जगा देना बगावत है, किसी कमजोर के हक को दिला देना बगावत है, अगर सच्चाइयों का गीत गाना ही बगावत है तो हम भी एक बागी हैं, मेरा मजहब बगावत है। लेकिन और ये लड़ाई भी जो जूनियर खिलाड़ी हैं, कमजोर खिलाड़ी हैं, पूरे देश के खिलाड़ी हैं, ये लड़ाई भी हम उन्हीं के लिए लड़ रहे थे और उन्हीं के उसी कारण मेरे ऊपर ये आरोप लगा। अब ये बिना सोचे समझे ये जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, बड़े बड़े नेता हैं, अब आज हमारे देश की ये हालात हो गई है, विपक्षी पार्टियों की ये हालात हो गई है कि इनके अंदर तो कोई मादा है नहीं कि कोई आंदोलन खड़ा कर दें, कभी महिलाओं के पीछे खड़े होकर के आंदोलन खड़ा कर देते हैं, कोई कभी जीएनजी के पीछे खड़े होकर के आंदोलन कर दे रहे हैं। अरे भाई, अगर दम है तो कोई आंदोलन अपने बल पर खड़ा करो।
8: लेकिन इस पूरे केस में आपके खिलाफ आपने कहा साजिश हुई, किन लोगों ने साजिश की?
7: देखिए, एक तो जंतर मंतर पर कौन कौन बैठा था, आपके पास स्वयं का रिकॉर्ड है, स्वयं का रिकॉर्ड है कि कौन कौन सी पार्टी बैठी थी, कौन कौन से नेता बैठे थे, ये आपके पास स्वयं रिकॉर्ड है। बचा कौन था?
8: ये पहलवान, ये फेडरेशन के कुछ वो लोग जो बृजभूषण शरण सिंह को 12 साल बाद अध्यक्ष नहीं देखना चाहते थे, जनवरी में आरोप लग गए, अप्रैल में अध्यक्ष का चुनाव था, क्या ये उसलिए हुआ सारा? आपको लगता है कि ये सारी साजिशें कैसे एक साथ इतने सारे लोग आपके खिलाफ हो गए?
7: ये जो कथित पहलवान है, ओलंपियन, वर्ल्ड चैंपियन, ये जूनियर बच्चों का हक मार रहे थे और उसी उनका हक उन बच्चों को मिले, इसलिए हमने कुछ नियम बनाए थे, कुछ रूल बनाए थे, इसको लेकर के इनके अंदर नाराजगी थी, ये आए और इनके पीछे बहुत लोग थे।
0: और अब बात झारखंड के छात्र आंदोलन की। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में धांधली के खिलाफ रांची में छात्रों ने आंदोलन किया है। छात्र इस बात पर अड़े हैं कि सीबीआई केस की जांच करे, और इस इधर सीजेपी ने भी इस छात्र आंदोलन का समर्थन किया है।
9: हाथ में मोबाइल टॉर्च वाली मशाल रूपी रोशनी लेकर ये उस अंधेरे से आजादी मांगते युवा जो झारखंड में भर्ती आयोगों की धांधली से त्रस्त आ चुके हैं। प्रदर्शन करते ये नौजवान झारखंड में लगातार धरना देते हुए झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और जेएसएससी के तहत होने वाली भर्तियों में होते भ्रष्टाचार से त्रस्त होकर एक हफ्ते से आंदोलन कर रहे हैं।
10: तराजू के माध्यम से हेमंत सोरेन को बता दे रहे हैं कि देखिए हेमंत सोरेन जी, ये रेट देखिए, रेट आप एफआरओ का 50 लाख, लेडी सुपरवाइजर का 20 लाख, मध्यमी आचार्य का 35 लाख, उत्पाद सिपाही का 15 लाख, पंचायत सचिव का 15 लाख रुपया। अब यहाँ जिस तरह के आप यहाँ पर एग्जाम लेते हैं, एग्जाम लेने के बाद यहाँ पर नेपाल ले जाते हैं, ये होता है झारखंड में एग्जाम होता है, बाप रे बाप, ले जाता है बिहार और उत्तर प्रदेश यहाँ पर रटवाने के लिए, रटवाने के बाद जब रट नहीं पाता है तो फिर अंदर से रंगवा देता है, और यही देखिए यही रेट होता है।
9: झारखंड के युवाओं के साथ जिस तरह का बुरा हाल किया गया है वो सुनकर ही आपको लगेगा कि ऐसा कौन कर सकता है, जिसकी वजह से ये धरने और प्रदर्शन की नौ बताई है।
11: हम लोग केस को लड़ रहे थे, एविडेंस दिए हैं, सारे एविडेंस को दिए हैं। डीजीपी महोदय जो झारखंड के डीजीपी हैं, वो बोले जहाँ भी पेपर लीक का मामला है वो हमें मेल कर दें। 53 लड़कों ने मेल किया, जब रिपोर्ट आया हाई कोर्ट का फाइनल सबमिट आया, एक भी उसका मेंशन नहीं था। हम लोग जिसपे बोल रहे कि ये पेपर लीक है, आप जेएसएससी सचिव से पूछे, अध्यक्ष से पूछे, एग्जामिनेशन कंट्रोलर से पूछे, नहीं पूछे, इसका मतलब आप जाँच कर ही नहीं रहे हैं। आप तो लीपापोती कर रहे हैं।
12: एक सुमन सौरभ जैसा लड़का जो 45 क्वेश्चन मात्र बबल्स भर के उसका सिलेक्शन हुआ और उसने इस अपराध को स्वीकार भी किया है। जब यह
13: गिरफ्तारी
12: ये जब आंदोलन धीरे धीरे सरकार के कानों में गूंज रही है तो कैसे लोग पकड़ा रहे हैं आप देख रहे होंगे।
13: लड़ाई जो लड़ रहे हैं उसको आउटपुट निकल नहीं रहा है सर, पढ़ तो रहे हैं दिन दिन भर मेहनत तो कर रहे हैं, सपना तो देखे हुए कि कुछ करेंगे, बड़ा कुछ करेंगे, इस राज्य में सरकारी नौकरी करेंगे, लेकिन हमारे सपने को सर हम लोग हारा हुआ इंसान नहीं सर, सरकार सिस्टम ने मुझे हराया है।
9: झारखंड में इस वक्त दावा है 10 भर्ती परीक्षा की जांच सीबीआई कर रही है, 6 भर्ती परीक्षा जांच के अलग से दायरे में है, जुलाई से सितंबर की 9 भर्ती परीक्षा को पोस्टपोन करना पड़ गया। वजह 14वीं कंबाइंड सिविल सर्विसेज परीक्षा के प्रीलिम्स के नतीजे हैं।
14: सीएम सर से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि सर अभी जो जंतर मंतर में हो रहा है वो यहाँ ना हो, इसलिए सर आपसे निवेदन है कि हम भविष्य हमारे हम जो छात्र छात्राएं हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें और सही तरीके से निष्पक्ष तरीके से एग्जाम को कैंसिल करा के फिर से ले लें ताकि हम सारे स्टूडेंट्स को आप पर भरोसा बना लें।
9: हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने इस वक्त 14वीं कंबाइंड सिविल सर्विसेज परीक्षा को लेकर जांच का आदेश दिया। सीआईडी जांच कर रही है लेकिन छात्रों को उस सरकारी एजेंसी पर भरोसा नहीं जहां चार तरह के आरोप लग रहे हैं। पहला आरोप है कि कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ मार्क्स क्यों नहीं जारी किए गए। दूसरा आरोप है कि जारी हुई मेरिट लिस्ट पर कमीशन के संवैधानिक सदस्यों के साइन क्यों नहीं थे। तीसरा आरोप है कि परीक्षार्थी ने ओएमआर शीट पर जितने गोले लगाए यानी जितने सवाल सॉल्व किए उससे ज्यादा नंबर वो कैसे पा जा रहे हैं। आरोप नंबर चार है कि लखनऊ की जो कंपनी TDPL परीक्षा कराने का ठेका पाती है वो एक महीने पहले झारखंड में ही ब्लैकलिस्ट की गई तो फिर परीक्षा का ठेका कैसे पा गई।
15: 14वीं जेपीसी में जब मामला खुल के आया है कि TDPL एक कंपनी जो ब्लैकलिस्टेड एजेंसी है जो लखनऊ की है जो ऑलरेडी दूसरे राज्यों में ब्लैकलिस्टेड उस एजेंसी को हायरिंग करता है। मैं पहला टेक्निकल पॉइंट का बताता हूँ कि कोई एजेंसी डिड जब फाइल करता है तो उसमें सचिव और अध्यक्ष का हाथ रहता है। गलती कहाँ हुई है कि अगर कोई परीक्षा को कराने के लिए प्रत्येक स्टूडेंट का 500 रुपया अगर खर्च है और अगर कोई 300 रुपया में फाइलिंग कर रहा है तो 200 रुपया कहाँ से आ रहा है। तो 200 रुपया के लिए सरकार जो है जो उसका जो जेपीसी का चेयरमैन और अध्यक्ष है वो मिल को साठ गांठ करके उसको कम पैसा में टेंडर देकर और वो क्या करता है सीटों को बेचा जा रहा है। आज 14वीं जेपीसी सबके सामने आया है।
9: हजारों नहीं लाखों छात्रों के साथ खिलवाड़ झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और झारखंड एसएससी के हाथों झेलते आ रहे छात्रों की हालत ये हो गई कि एक छोटे से कमरे में जहां किसी तरह घर से पैसा मंगाकर 6-6, 7-7 बेरोजगार युवा रहकर भर्ती इम्तिहान की तैयारी करते हैं वो लगातार झारखंड में भ्रष्टाचार में फंसती भर्तियों से हताश होने लगे हैं। किसी तरह उनका परिवार दिलासा दिलाता है कि भगवान पर भरोसा करो।
16: घर वाले क्या बोल रहे हैं
17: सर? कोई ऑप्शन नहीं है, घर वाले बस यही है कि अच्छा इस बार हो जाएगा। हम भी अब उन्हें मतलब आसरा देते हैं, वो हमें डांडस देते हैं, एक दूसरे को बस सहारा बने हुए हैं।
9: क्यों लगातार भर्ती आयोग भ्रष्टाचार का केंद्र बने हुए हैं? और दूसरा सवाल, क्या विपक्ष खुद अपने शासन वाले राज्य में झांकेंगे कि हाल बेरोजगारों का क्या है या फिर मीठा मीठा गप गप और अपने राज्य में भर्ती घोटाला हो तो चुप वाली राजनीति में देश के युवाओं को पीसा जाता रहेगा।
0: रुकेंगे यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए, फोन होंगे हाजिर, टिकते रहिए आज।
18: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
19: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
20: नीड अ गुड लाफ? वी नो अ प्लेस जस्ट फॉर लाफ्स रेडियो ब्रिंग्स यू नॉनस्टॉप स्टैंड अप बिट्स बाय द बेस्ट कॉमिक्स इन द गेम फ्रॉम ऑल टाइमर्स टू राइजिंग स्टार्स एंड द पंचलाइन इट्स ऑल वेटिंग फॉर यू ऑन TuneIn हेड ऑन ओवर टू जस्ट फॉर लाफ्स रेडियो टुडे।
19: सोकुडो
21: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
22: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
23: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
24: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933 बरसों से सरसों।
25: कुछ तो बात है इस दिल में।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो.
2: With Instacart Shopper Notes, you can be specific about what kind of steak you want. Like asking your shopper to get you thick cuts of steak. Bright red, marbling you can see from across the room. A fat cap that knows exactly what it's doing. While you're at it, ask for a cut that can single-handedly carry the cookout on its back. Something so tantalizing, even the neighbor you got beef with asks, "What's the secret?" Okay, so maybe you can't quite get that specific with Shopper Notes, but you get the idea. Want to get groceries just how you like? Download the Instacart app.
3: Tune in's how-to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
4: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
5: मैंने क्या सिखाया था सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क गोल्ड के लिए हॉल मार्क
6: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क
7: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना
8: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933 बरसों से सरसों
9: कुछ तो बात है इस दिल में
10: शेयर बाजार में इस समय सबसे ज्यादा हलचल प्राइमरी मार्केट में देखने को मिल रही है इस हफ्ते एक साथ कई कंपनियां आईपीओ के जरिए निवेशकों से पूंजी जुटाने के लिए तैयार हैं दिलचस्प बात यह है कि जुलाई के आखिरी हफ्ते बाद भी ये रफ्तार थमने वाली नहीं है दरअसल अगस्त में भी कंपनियों की लंबी पाइपलाइन तैयार है यानी निवेशकों के लिए आने वाले दिनों में प्राइमरी मार्केट लगातार व्यस्त रहने वाला है इस हफ्ते आने वाले 9 आईपीओ का लक्ष्य 11,707 करोड़ जुटाना है वहीं 7 कंपनियां इस वीक में शेयर बाजार में लिस्ट होने के लिए तैयार हैं इसके बाद अगस्त में भी 2 दर्जन से ज्यादा कंपनियों की बाजार में एंट्री की तैयारी है जानकार बता रहे हैं कि लगातार बढ़ती कारोबारी गतिविधियां दिखाती हैं कि कंपनियां पूंजी जुटाने के लिए इक्विटी मार्केट पर पहले से ज्यादा भरोसा जता रही हैं। आईपीओ बाजार में बढ़ती रौनक के पीछे केवल एक वजह नहीं है जिन कंपनियों की विस्तार योजनाएं तैयार हैं वो बैंकर्स की जगह शेयर मार्केट के जरिए पूंजी जुटाना चाहती हैं। वहीं हाल के महीनों में कई सफल आईपीओ के बाद कंपनियों का भरोसा भी बढ़ा है बेहतर निवेशक भागीदारी ने भी इस रुझान को मजबूती दी है यही वजह है कि मेन बोर्ड के साथ साथ एसएमई प्लेटफॉर्म पर भी लगातार नई कंपनियां दस्तक दे रही हैं आने वाले हफ्तों में जिप्टो शिप रॉकेट और ट्रू होम फाइनेंस जैसी कंपनियों के भी बाजार का रुख करने की तैयारी है जिससे प्राइमरी मार्केट की रफ्तार आगे भी बनी रह सकती है हालांकि ज्यादा आईपीओ आने का मतलब ये नहीं कि हर इशू निवेश के लिहाज से बेहतर हो मार्केट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि निवेश इससे पहले कंपनी के कारोबार उसकी कमाई कर्ज वैल्यूएशन और जुटाई जा रही रकम का इस्तेमाल किस काम में होगा इन सभी पहलुओं को समझना जरूरी है महज लिस्टिंग गेन की उम्मीद में लिया गया फैसला हर बार फायदे का सौदा साबित नहीं होता ऐसे में निवेशकों को फ्रेश इशू बनाम ओएफएस प्रमोटर होल्डिंग रेवेन्यू और प्रॉफिट के ट्रेंड को बारीकी से देख समझ कर ही निवेश के बारे में सोचना चाहिए इस हफ्ते 9 नए आईपीओ और 7 लिस्टिंग के साथ प्राइमरी मार्केट पूरी रफ्तार में रहेगा वहीं अगस्त के लिए भी मजबूत पाइपलाइन संकेत दे रही है कि कंपनियों की फंड जुटाने की योजना फिलहाल तो धीमी पड़ने वाली नहीं है ऐसे में आने वाले हफ्तों में निवेशकों के सामने विकल्प बढ़ेंगे लेकिन निवेश का फैसला कंपनी के फंडामेंटल वैल्यूएशन और जोखिम को ध्यान में रखकर ही लेना बेहतर होगा आदित्य के राणा के साथ आज तक ब्यूरो

अध्यक्ष नितिन नवीन के गढ़ बांकीपुर के रुझानों में प्रशांत किशोर की बढ़त बरकरार, करीब 8,000 वोटों से आगे लगातार पीछे चल रहे हैं बीजेपी के उम्मीदवार। मध्य प्रदेश के दतिया के रुझानों में भी कांग्रेस को मामूली बढ़त, बीजेपी को मिल रही है कड़ी टक्कर, लेकिन गुजरात के माजलपुर उपचुनावों में केसरिया की लहर।

0: चढ़ावा चोरी पर पप्पू यादव के भगवा ड्रामे से समाजवादी पार्टी ने खुद को किया अलग। रामगोपाल यादव बोले, दान चोरी से साधु संतों का कोई वास्ता नहीं, हमारी पार्टी बेहद गंभीर। यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र में विपक्ष का चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर प्रदर्शन। सीएम योगी ने कहा, विकास के मसले उठाएं, मुद्दों से ना भटकाएं।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन।
0: नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। न्यूज रूम लाइव में हम बात करेंगे उन तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे तीन विधानसभा चुनावों को लेकर जो गिनती चल रही है, उपचुनावों को लेकर उसमें क्या रुझान है। सबसे पहले हम बात करेंगे उन सीटों की, यानी तीन विधानसभा चुनाव और तीन राज्य, ये बहुत महत्वपूर्ण है राजनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से। और सबसे पहले बात करेंगे बिहार की बांकीपुर सीट की, इसके बाद बात करेंगे मध्य प्रदेश के दतिया की, और इसके साथ ही गुजरात के मांजलपुर की भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर आप बताएं कि ये चुनाव इतने ज्यादा अहम क्यों है, क्योंकि ये लगातार कहा जा रहा है कि छात्रों के प्रदर्शन के बाद एक वो लिटमस टेस्ट है जो लगातार सभी पार्टियों के लिए या फिर खासतौर पर बीजेपी के लिए एक अग्नि परीक्षा के तौर पर इसे देखा जा रहा है। बांकीपुर इसलिए भी क्योंकि इस समय के मौजूदा बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन की ये सीट रही है, और इसी वजह से इस पर चुनावी टक्कर बहुत मजबूत। सबसे पहले बात करते हैं बांकीपुर सीट की, जिसमें आपको बताएं कि बांकीपुर से प्रशांत किशोर करीबन 8,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। आपको बता दें कि बांकीपुर सीट बहुत महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए भी, और इसलिए क्योंकि नितिन नवीन यहां से कई बार विधायक रह चुके हैं, उनके पिता भी यहां से विधायक रह चुके हैं। ये साख की बात है। बांकीपुर से प्रशांत किशोर करीबन 8,000 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं, और 15 राउंड की काउंटिंग के बाद प्रशांत किशोर आगे हैं। और देखिए, आपको बताएं कि करीबन 8,000 से ज्यादा वोटों से इस समय प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं बीजेपी उम्मीदवार से। और सबसे खास बात है कि 15 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। हालांकि देखिए, कहा जा रहा है कि राउंड होंगे वो करीबन 30 या 35 राउंड तक जाएंगे, लेकिन 8,000 की बढ़त ने बीजेपी की चिंता या फिर बीजेपी के लिए परेशानी बढ़ा दी, और माना जा रहा है कि 8,000 की बढ़त धीरे धीरे प्रशांत किशोर अपनी बढ़त आगे लेकर जा रहे हैं, और 15 राउंड के बाद उनकी बढ़त 8,000 पर पहुंच चुकी है। आपको बताएं, दो उम्मीदवार खासतौर पर सीधे तौर पर बांकीपुर सीट, प्रशांत किशोर जो जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार और उनके संस्थापक भी, और इसके अलावा बीजेपी के उम्मीदवार के बीच करीबन ये कांटे की टक्कर चल रही है। इस समय जन स्वराज पार्टी यानी प्रशांत किशोर के खाते में 29,000 वोट है, और बीजेपी के खाते में 21,550।
2: देखें, क्रॉस द लाइन लगभग हर राउंड में एक्सेप्ट वन, हर राउंड में प्रशांत जी को पॉजिटिव सपोर्ट लोगों से मिला है।
3: समन्वय व संतुलन की दिशा निर्धारित करते हुए विकसित भारत निर्माण की राह प्रशस्त कर रहा है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म के मंत्र को आत्मसात करते हुए सामान्य मानवीय के जीवन से जुड़े लगभग प्रत्येक क्षेत्र में व्यापक सकारात्मक एवं संरचनात्मक परिवर्तन का साक्षी बना है। आज प्रस्तुत यह विधेयक भी न्याय क्षेत्र में उसी सुधार श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जिसके माध्यम से समानुकूल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। माननीय सभापति महोदय, संविधान के आर्टिकल 124A में सर्वोच्च न्यायालय की संरचना तथा न्यायाधीशों की संख्या के निर्धारण का प्रावधान किया गया है। संविधान लागू होने के समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 8 न्यायाधीश का प्रावधान किया गया था। तत्पश्चात स्वतंत्र भारत की बदलती आवश्यकताओं एवं न्यायिक दायित्वों के विस्तार के साथ न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता महसूस की गई, और इसी आर्टिकल 124A की मूल भावना के अनुरूप अगस्त 1956 में तत्कालीन गृह मंत्री श्री जीबी पंत द्वारा द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेज एक्ट 1956 इस सदन में प्रस्तुत किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर 11 कर दी गई। उसी मूल भावना को आगे बढ़ाते हुए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों की बढ़ती संख्या तथा न्यायिक कार्य प्रणाली को

0: अधिक एफिशिएंट एवं इफेक्टिव बनाने का उद्देश्य।
1: और संसद से आप एमओएस पार्लियामेंट्री अफेयर्स अर्जुन राम इकबाल को सुन रहे थे। दरअसल वो बता रहे थे कि किस तरीके से संसद की कार्यवाही के बारे में। लेकिन अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब सीधे आपको लिए चलते हैं बिहार के बांकीपुर में, जहां पर हमारे साथ हमारे सहयोगी शशि भूषण भी जुड़ने वाले हैं और हम आपको बताएंगे कि आखिरकार ये सीट इस समय बीजेपी के लिए क्यों साख का सवाल बन गई है। लेकिन सबसे पहले हम आपको जो सबसे बड़ा अपडेट दे रहे हैं कि प्रशांत किशोर इस सीट पर करीबन 8,000 वोटों से आगे चल रहे हैं और खासतौर पर ये सीधे तौर पर प्रशांत किशोर यानी जन स्वराज पार्टी और बीजेपी के बीच में एक कांटे की टक्कर बनती जा रही है। बीजेपी के उम्मीदवार के पाले में करीबन 21,000 से ज्यादा वोट पड़े हैं। वहीं जो जन स्वराज पार्टी के संस्थापक और उम्मीदवार प्रशांत किशोर के खाते में 29,000 वोट पड़े हैं। हमारे साथ शशि भूषण हमारे साथ जुड़े हैं। शशि भूषण, जिस तरीके से हम डिस्कस भी कर रहे थे पहले, खास तौर पे छात्रों के प्रदर्शन के बाद, ना सिर्फ ये बीजेपी के लिए उनके अध्यक्ष के लिए एक साख का सवाल है, बल्कि जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बाद से भी ये एक बड़ा महत्वपूर्ण उपचुनाव है जिसे पूरे देश के साथ जोड़कर देखा जाएगा, राष्ट्रीय राजनीति के साथ जोड़कर देखा जाएगा।
2: बिल्कुल देखा जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक की लड़ाई तो थी ही, क्योंकि बीजेपी अपना सबसे मजबूत किला बांधती है इस सीट को, बांकीपुर सीट को। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है सुमित कि 31 राउंड की वोट काउंटिंग होनी है जिसमें 15 राउंड ऑफिशियली हो चुके हैं, मतलब आधी जो लड़ाई है ना उसका रास्ता प्रशांत किशोर तय कर चुके हैं। हर राउंड में बढ़त है उनके नाम पर, 8200 वोटों की बढ़त अब तक है 15 राउंड में। लेकिन जो हमारे पास अनऑफिशियली जो सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि अगले 2-3 राउंड में भी प्रशांत किशोर ने यह लीड बरकरार रखी है, और न केवल लीड बल्कि उसका जो फासला है ना बीजेपी उम्मीदवार से वो भी बढ़ा है। तो जनसुराज के कार्यकर्ताओं में उत्साह है इसको लेकर के। प्रशांत किशोर जो मैसेज देना चाहते थे इस चुनाव के जरिए वो मैसेज देने में कामयाब रहे हैं। पहला जो हम लगातार कर रहे हैं कि जो पटना के अंदर बांकीपुर सीट पर जो वोटर्स थे उन वोटर्स के सेल्फ रिस्पेक्ट को लेकर के वो सवाल उठा रहे थे, जिस तरह से बीजेपी ने एक उम्मीदवार को उतारा मैदान में उसको लेकर के। साथ ही साथ वो जो सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने, बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री, उनको लेकर के काउंटर कर रहे थे। और सबसे अहम बात, जब ये चुनाव फोटो फिनिश होगा, अगर प्रशांत किशोर इसी तरह की लीड बरकरार रखते हैं और वो जीतते हैं चुनाव जैसा अब लग रहा है, तो उन परिस्थितियों में ये भी एक विश्लेषण होगा, अपने आप में समीक्षा की स्थिति होगी कि नीतीश कुमार के बगैर आखिर पटना की इस शहरी सीट पर एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की इतनी पतली हालत क्यों हो गई। मैं बार बार कह रहा हूं 1995 से लगातार भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर चुनाव जीतती रही। पहले पटना पश्चिमी सीट होती थी, बाद में परिसीमन के बाद बांकीपुर सीट बन गई, लेकिन बीजेपी हारी नहीं इस सीट पे, नितिन नवीन लगातार जीते इस सीट पे। लेकिन देखिए राजनीति का चक्र ऐसा और चुनावी राजनीति क्या रंग दिखाती है। प्रशांत किशोर इस सीट पर लड़ने आए, विधानसभा चुनाव जो पिछला हुआ उसमें उनके पार्टी की बुरी हार हुई थी, अपने राजनीतिक भविष्य को तलाशते हुए यहां लड़ने आए, और आज देखिए गेम चेंजर के तौर पे वो लीड लेते नजर आ रहे हैं। और उम्मीद उनकी पार्टी को, उनके समर्थकों को और खुद प्रशांत किशोर को भरोसा है कि जीत उन्हीं के नाम होगी।
1: बिल्कुल, एक और इंपॉर्टेंट बात यह, क्योंकि आप शशि लगातार हम जब बात कर रहे हैं कि किस तरीके से चीजों को देखा जाए, खासतौर पर ना सिर्फ बिहार की राजनीति से बल्कि अब राष्ट्रीय राजनीति से जोड़कर भी, लेकिन अभी के मौजूदा हालात में, क्योंकि आप इन चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं, अभी किस तरीके से सम्राट चौधरी की सरकार के साथ या फिर अगर प्रशांत किशोर जीतते हैं तो उसका प्रभाव बिहार की राजनीति पे कैसे पड़ेगा?
2: देखिए एनडीए के पास बड़ा मैंडेट है, तो ऐसा नहीं है कि इस सीट पे जो हार और जीत होगी उसका असर कोई सरकार के ऊपर पड़ना है, ना तो मुख्यमंत्री के कुर्सी पे पड़ना है। बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, लेकिन लिटमस टेस्ट किस बात का? इस बात का कि बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नवीन, उनके इस्तीफे के बाद जो सीट खाली हुई जिसपे उन्होंने खुद अपना उत्तराधिकारी चुना, वो उत्तराधिकारी उपचुनाव में हार जाता है तो विश्लेषण होगा, उसकी समीक्षा होगी, उसकी चर्चा होगी। बीजेपी का अपना मुख्यमंत्री राज्य में पहली दफे होने के बाद कोई पहला चुनाव, कोई पहला उपचुनाव होता है, उसमें अगर बीजेपी हार जाती है तो वहां पर एक सवाल उठेंगे, वहां पर एक समीक्षा होगी। और साथ ही साथ जो हम पहले बता रहे थे सुमित, तात्कालिक कारण कई रहे, एक तो नीट का जो आंदोलन रहा वो आंदोलन भी उसी दौर में पटना में हुआ, हमने देखा 30 जुलाई को यहां वोटिंग थी, 22 जुलाई को पटना में क्या बवाल हुआ ये छिपा नहीं है किसी से, सबको मालूम है। इसके अलावा यूजीसी का एक मसला रहा, ये भी कहीं ना कहीं एक नैरेटिव सेट करने में, बिल्डअप करने में मददगार रहा। और नीतीश कुमार, मैं बार बार कहता हूं बिहार में एनडीए की ताकत नीतीश कुमार रहे हैं और शायद बीजेपी के नेताओं को भी थिंक टैंक या चुनावी मैनेजमेंट से जुड़े लोगों का अंदाजा था और इसी वजह से वोटिंग से ठीक पहले नीतीश कुमार का एक वीडियो मैसेज भी रिलीज किया गया अपने उम्मीदवार के पक्ष में, लेकिन शायद बहुत देर हो चुकी थी, शायद एक लो प्रोफाइल उम्मीदवार को या वर्कर को उतार करके चुनाव जीतने या क्लिंच करने की कोशिश बीजेपी जो कर रही थी वहां पर उनको एक सेटबैक मिल सकता है। हालांकि अभी फोटो फिनिश बाकी है, आधी काउंटिंग पूरी हुई है, आधे पर अभी और काउंटिंग बाकी है।
1: बिल्कुल शशि, देखिए ये रुझान है और इन रुझानों के हिसाब से जो चीजें इंडिकेट हो रही हैं वो तो यही दिखा रही है कि बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली। हालांकि देखिए जब फाइनल रिजल्ट आएगा तभी कुछ कहा जा सकता है, लेकिन इस पूरे उपचुनाव को लेकर वार पलटवार भी जारी है, इसको लेकर भी कई तरफ से राजनीतिक दलों से कई स्टेटमेंट आ रहे हैं, आइए आपको वो भी सुनाते हैं।
3: देखें क्रॉस द लाइन लगभग हर राउंड में एक्सेप्ट वन, हर राउंड में प्रशांत जी को पॉजिटिव सपोर्ट लोगों से मिला है और बढ़त पॉजिटिव रही है। ये दिखाता है कि पूरे बांकेपुर में कोई भी ऐसा पॉकेट नहीं था जहां जनसुराज की आवाज नहीं पहुंची हो और जहां प्रशांत किशोर के व्यक्तित्व की छाप नहीं पड़ी हो। मेरे ख्याल से यह एक बहुत बड़ी विक्ट्री है बिहार में प्रजातंत्र को जिंदा रखने के लिए। एक आदमी जो विपक्ष को रिप्रेजेंट करेगा सही ढंग से वो अब विधानसभा में पहुंचने वाला है और इससे बिहार की आगे की राजनीति पर बहुत गहरा असर पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं।
1: मनोज भारती को आप सुन रहे थे, लेकिन एक बार फिर से आपने दर्शकों को बता दें कि इस समय बांकीपुर सीट के ऊपर प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं, 8,000 से ज्यादा वोटों से वो आगे चल रहे हैं। जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर इस सीट से उम्मीदवार भी हैं और करीबन 8,966 वोटों से वो आगे चल रहे हैं। 16 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है, लगातार 8,900 से ज्यादा वोटों से वो बीजेपी के उम्मीदवार नीरज सिन्हा के से आगे चल रहे हैं। आपको बता दें कि 16 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। चलिए हमारे साथ हमारे सहयोगी रोहित सिंह भी हमारे साथ जुड़े हैं, रोहित सिंह का रुख भी कर लेते हैं। रोहित, इस समय आप पार्टी दफ्तर पर हैं जनसुराज के, क्या कुछ माहौल वहां पर है और खासतौर पे उनके कार्यकर्ताओं में, क्योंकि बिहार के रिजल्ट आने के बाद तो ऐसा लगा था कि शायद जो कार्यकर्ता है उनका मोराल बहुत ज्यादा नीचे गिर गया था, लेकिन अभी वहां के ताजा हालात कैसे हैं?
4: नहीं देखिए, पार्टी का जो जनसुराज पार्टी का जो कार्यालय है पटना में, वहां इस वक्त हालांकि बहुत ज्यादा कह सकते हैं गहमा गहमी नहीं है, क्योंकि तमाम जो बड़े नेता हैं कार्यकर्ता जो हैं वो सब लोग जो है सुबह से ही काउंटिंग सेंटर पर जो है वो मौजूद हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं और फिर कह सकते हैं गहमा गहमी धीरे धीरे जो है वो बढ़ना शुरू होगी, क्योंकि जिस तरीके के नतीजे आए हैं ये शायद प्रशांत किशोर के लिए देखिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है बांकीपुर का चुनाव, क्योंकि जो जिस तरीके से खराब प्रदर्शन 2025 के चुनाव में रहा था, 238 की सीटों पर चुनाव लड़ी थी पार्टी, सब सीटों पर हार हो गई थी, कई पर जमानत जब्त हो गया था, उसके बाद प्रशांत किशोर ने कहा था कि अगला चुनाव लड़ेंगे 2030 में, लेकिन ये बांकीपुर का जो संजीवनी उन्हें मिला जिसे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज कहा जा रहा है, इसको जबरदस्त तरीके से लपका है प्रशांत किशोर ने और बीजेपी ने भी कह सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी कह सकते हैं गलतियां की है, जिस तरीके से प्रत्याशी उतारे, प्रत्याशी को बदला गया, फिर जिस तरीके से कैंपेन जो है देर से शुरू किया गया, प्रशांत किशोर बांकीपुर में 2 महीने से प्रचार कर रहे थे, उससे जब तक बीजेपी और आरजेडी ने प्रचार शुरू किया उसके 2 महीने पहले से वहां पर उन्होंने जनसंपर्क शुरू कर दिया था, डोर टू डोर जा रहे थे, मुलाकात कर रहे थे, सभाएं कर रहे थे, तो बहुत सारा फैक्टर है जो काम किया प्रशांत किशोर के फेवर में। और दो चीज जो महत्वपूर्ण वो रही वो ये कि उन्होंने सीधा कहा था लोगों से कि भाई मुझे मौका दीजिए, एक सीट अगर बीजेपी हार जाएगी सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक सीट अगर आरजेडी भी जीत जाएगी उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसीलिए आप लोग न्यूट्रल होकर मुझे वोट करेंगे तो मैं कुछ परिवर्तन कर सकता हूँ, तो इसीलिए लगता है ये नैरेटिव जो है ये सेट हुआ है, ये जनता को भी लगा कि चले कोई नुकसान तो नहीं होने वाला है, क्यों नहीं प्रशांत किशोर को कोशिश ट्राई किया जाए, क्योंकि पिछले 3-4 सालों से काफी सक्रिय राजनीति में प्रशांत किशोर रहे हैं, बहुत सारे लोग उनको पसंद करते हैं, उनकी राजनीति पसंद करते हैं, लेकिन देखिये पिछले बार चुनाव में क्या हुआ था, लोगों ने कहा कि प्रशांत किशोर सही तो है लेकिन क्या उनको वोट करेंगे, क्या उनके बटन दबाया जाएगा जन स्वराज पे, वहां कहीं ना कहीं लोगों से थोड़ा सा कह सकते हैं मन में एक डाउट आ गया था, जिसके वजह से चुनाव प्रचार प्रशांत किशोर की पार्टी पूरी तरीके से।
1: रोहित, आपका रुख दोबारा से करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार जो अपडेट मिल रहा है गिनती को लेकर, 16 राउंड की काउंटिंग हमने अपने दर्शकों को बताया कि पूरी हो चुकी है, लेकिन इसको लेकर जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो भी अपने दर्शकों को सुनाते हैं।
5: अभी हम दावा जो किया था उसको कहां नकार रहे हैं, अभी उस दावे पर हम कायम हैं, 31 राउंड की गिनती बाकी है। नहीं, हम लोग भी चुनाव लड़े हैं और हम लोग भी 8 टर्म चुनाव जीते हैं, हम भी कभी कभी फर्स्ट राउंड सेकेंड राउंड थर्ड राउंड में पीछे चलते थे, इसका मतलब थोड़ी था कि मैं हार के आया हूँ यहाँ। ये जनता का जो जनादेश है वो जनादेश पूरा आने दीजिए, और जो भी जनता का जनादेश प्राप्त होगा उसका हम सब लोग मिलकर के सम्मान करेंगे।
6: देखिए, मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि एक उम्मीद है और लोगों की निगाहें हैं प्रशांत किशोर जी पे, क्योंकि वो खुद एक चुनाव के रणनीतिकार रहे हैं और अपनी रणनीति में कितने सफल हो पाते हैं ये बिहार की जनता आज बतलाएगी। और हम उम्मीद करते हैं कि जो भी जीते वो कम से कम बिहार के प्रति और एक जो उनकी जिम्मेवारी है उसके प्रति वो समर्पित रहे।
1: और हमारे साथ शशि भी जुड़े हैं। शशि, देखिए, लगातार बांकीपुर सीट को एक अर्बन सीट के तौर पर देखा जाता और इस समय मौजूदा हालात में अगर प्रशांत किशोर यहां से जीतते हैं, क्योंकि आपने बताया कि देखिए इससे सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन एक और विपक्ष का सेंटर, एक और बड़ा आप कह सकते हैं कि एक बड़ा चेहरा खासतौर पर सम्राट चौधरी के सामने खड़ा हो जाएगा।
2: देखिए, इसका एक अलग इस रिजल्ट को, अगर प्रशांत किशोर वाकई चुनाव जीतते हैं जैसा जो लीडिंग है और जैसे उम्मीद कर रही है उनकी पार्टी, अगर यही नतीजे होते हैं सुमित, तो एक बहुत सबसे बड़ी दिलचस्प बात या सबसे बड़ी चुनौती कह लीजिए वो तो तेजस्वी यादव के लिए होनी है। तेजस्वी यादव की पार्टी को यहां सबसे पिछड़ते हुए हम देख सकते हैं, मतलब तीसरे नंबर पर उनकी पार्टी और वोट भी इतने ज्यादा नहीं है रेखा गुप्ता के जैसा तेजस्वी यादव क्लेम कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात, प्रशांत किशोर उस खालीपन को, उस रिक्तता को, उस वैक्यूम को जरूर फुलफिल करने की कोशिश करेंगे जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन के असेंबली में नहीं रहने के कारण है। आप देखिए, विधानसभा का मानसून सत्र हुआ था अभी 5 दिनों का, हमने देखा तेजस्वी यादव यूरोप दौरे पे थे, वो सदन में नहीं थे, विपक्ष नाम की कोई चीज दिखी नहीं। एक इकलौते प्रशांत किशोर, भले वो अपनी पार्टी के इकलौते विधायक होंगे, लेकिन क्या वो इस स्थिति में होंगे कि सरकार के सामने विपक्ष का विकल्प बन के वो खड़े रहेंगे, मजबूती के साथ तमाम सवालों पर घेरेंगे सरकार को, और अगर वो उस वैक्यूम को भरने के साथ साथ अगर एक बड़ी तस्वीर पेश कर पाते हैं तो यकीन मानिए फिर राष्ट्रीय जनता दल या जो बिहार में महागठबंधन है ना, उसकी पूरी राजनीति बदल जाएगी। तो ये एक अलग दृष्टिकोण है इस चुनाव नतीजे को लेकर के, हो सकता है जब फोटो फिनिश हो उसके बाद, लेकिन हाँ, बीजेपी के नेताओं ने अब तक गिव अप नहीं किया है, वो हार नहीं मान रहे हैं, सन्नाटा पसरा हुआ है पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर, नेता उनके बयान दे नहीं रहे हैं, सुबह लड्डू कुछ कार्यकर्ताओं ने बनवा दिए थे, अब उनको मलाल भी लग रहा होगा कि लड्डू बनाने में जल्दबाजी क्यों कर दी, 15 के विधानसभा चुनाव में हमने देखा था सुबह।
1: बिल्कुल बिल्कुल, शशि आपको बीच में रोकेंगे, माफ कीजिएगा, लेकिन हमारे साथ जन स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अक्षत सोनक हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। अक्षत साहब, किस तरीके से देखते हैं अभी 16 राउंड की काउंटिंग पूरी, हालांकि देखिए जो बढ़त मिली है वो निश्चित तौर पर आपको, आपके लिए आप कह सकते हैं बड़ा पॉजिटिव साइन है, लेकिन अभी इन सारी चीजों को आप कैसे देखते हैं?
7: जी, अभी तो जो रुझान आए हैं वो हमारे फेवर में ही आते दिख रहे हैं, और ये बहुत रुझान जो है आपको ये कॉन्टिन्यूसली 31 राउंड की जब वोटिंग खत्म होगी तब आपको, तब ये पूरे पूर्ण रूप से जो बांकीपुर की जनता ने जो फैसला कर लिया है वो सभी के समक्ष आ जाएगा कि प्रशांत किशोर जी को जन स्वराज को एज अ क्रेडिबल अल्टरनेटिव, जो पिछले 3-3.5 साल से प्रशांत जी ने 5,000 गांव में घूम घूम कर लोगों को शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, ऐसी मूलभूत समस्याओं को जो बताने का उन्होंने प्रयास किया था, वो कहीं ना कहीं आपको 31 राउंड के बाद सफल होता दिखे।
1: और हमारे साथ बीजेपी के से प्रवक्ता प्रीति जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, उनका रुख भी कर लेते हैं। प्रीति जी, खासतौर पे देखा जाए जिस तरीके से जो बढ़त मिली है जन स्वराज पार्टी को, निश्चित तौर पर उनके उनके लिए एक मोराल बूस्टर है, लेकिन ये तो बीजेपी की एक पारंपरिक सीट रही है, एक बड़ा गढ़ रही है, ऐसे में इतना ज्यादा आप कह सकते हैं कि इतनी ज्यादा बढ़त खासतौर पर बीजेपी के लिए सेटबैक के तौर पर देखा जा रहा है इसको?
8: देखिए, भारतीय जनता पार्टी को बांकीपुर की जनता ने लगातार कई वर्षों वर्ष तक इस सीट पर अपना आशीर्वाद और स्नेह हमारे पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को प्रदान किया है। इस बार के भी चुनाव में लगातार बहुत ही अच्छा माहौल दिखा, चुनाव वाले दिन भी बहुत अच्छी स्थिति दिखी। उसके बावजूद भी अभी चुनाव के कुछ राउंड के परिणाम में जो दृश्य हमें देखने को मिल रहे हैं, निश्चित तौर पर उन सभी विषयों पर हम सब लोगों की समीक्षा होगी। एक दो तीन इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस बांकीपुर उपचुनाव को लेकर। सबसे पहली बात तो ये उपचुनाव है, कोई पूरा राजनीतिक परिणाम तय नहीं करता, इसलिए आम मतदाताओं का भी बहुत ज्यादा उत्साह इसमें देखने को नहीं मिलता। इसमें चुनाव में जो परसेंटेज रहा उसको उस ओर भी इंगित करता है कि लोगों का उतना बहुत इंटरेस्ट नहीं हुआ, पहली बात। दूसरी बात कि बिहार में राष्ट्रीय जनता दल मुख्य विपक्षी पार्टी है, लेकिन उसके बावजूद भी राष्ट्रीय जनता दल ने जिस प्रकार से जन सुराज के लिए फील्डिंग करने का काम किया और खुद उस चक्कर में खुद अपना सूपरा साफ करने के लिए वो आतुर दिखे, और वही हाल हो गया कि जिस प्रकार से कांग्रेस ने वेस्ट बंगाल में वाम दल का सफाया करने के चक्कर में अपना ही नाश कर लिया, उसी प्रकार से राष्ट्रीय जनता दल की स्थिति इस चुनाव में दिखी। यानी कि उन्होंने अपने वोट बैंक को शिफ्ट करने की कोशिश में वो लगे रहे। ये दो मुख्य बिंदु हैं। तीसरी बात यह है कि जो परिणाम आ रहे हैं, हम लोगों की स्ट्रेटजी की बात तो सेकेंडरी है, लेकिन जो नीति नियत और नेतृत्व की बात होती है, भारतीय जनता पार्टी समेत पूरी एनडीए की सरकार ने बिहार में लंबे समय तक पूर्व में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में या वर्तमान में सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में लगातार जनोपयोगी क्रियाकलापों के माध्यम से जनता का दिल जीतने का काम हमारे एनडीए ने किया है। चाहे हम युवाओं के को रोजगार देने की बात हो, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, और अगर बांकीपुर की बात करूं पर्टिकुलरली, तो बांकीपुर में भी ऐसे ऐसे नाले थे जहां से हमेशा जल जमा होता था, मंदिरी नाला के ऊपर
1: बिल्कुल। प्रीति जी आप बिल्कुल ठीक कह रही है, लेकिन बात यह है कि जब नितिन नवीन इतने सालों से इतनी बार जीते आए, उनके पिता जीते आए, तब ये सीट लगातार अगर बीजेपी के हाथ से जाती है तो निश्चित तौर पर इसके ऊपर सवाल तो खड़े होंगे। एक छोटे से वक्त का समय है, लेकिन वक्त के बाद भी इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप देखते रहिए आज तक।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो, इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
11: $20 billion of precious metals sold to 1.8 million customers means Atmex knows how to help you find the investment you want, when you want it. Our logistics experts get it to you fast, and our support team is ready to solve any issue by phone, email, or chat. Over 220,000 reviews have one common thread: satisfied customers insisting we're the best precious metals retailer. When you're ready to join them, shop Atmex.com. That's APMEX.com.
12: Did you know that Byers Airport Subaru is the oldest Subaru retailer in the entire country? And we're conveniently located right by the airport. Start your journey today at columbussubaru.com. Byers Auto, driving the next generation of buyers.
13: Tune in is your all-in-one audio app. Radio, music, sports, news, and podcasts all in one place. But here's something you might not know. You can explore the world through sound. With TuneIn Explore, you can browse an interactive map and listen to local radio stations from across the globe. Just head to the radio tab and start discovering what's playing anywhere. Tap location, hit play, and you're instantly connected. It's a whole new way to listen.
14: Sokudo.
15: जब बात हो फसलों के बेहतर पोषण की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का न्यूट्रिजन। न्यूट्रिजन संपूर्ण पोषण का वादा, फसल मिले ज्यादा ज्यादा और ज्यादा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
2: कुछ तो बात है इस दिल में।
3: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
2: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
2: ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन सबसे पहले बात इस बड़ी खबर से जो गुजरात से आ रही है। गुजरात के माजलपुर सीट से बड़ा अपडेट मिल रहा है, जहां पर बीजेपी के उम्मीदवार करीबन 29,000 वोटों से आगे बताए जा रहे हैं। माजलपुर सीट पर बीजेपी की बंपर बढ़त लगातार बरकरार है, 29,008 वोटों से आगे चल रहे हैं माजलपुर से बीजेपी के उम्मीदवार। आपको बता दें कि ये खासतौर पर गुजरात की सीट शुरू से बीजेपी के खाते में ही रही है, लेकिन बीजेपी के सत्येंद्र पटेल को बढ़त यहाँ से मिली है और माजलपुर से करीबन 29,008 वोटों से वो आगे। 18 दौर की गिनती के बाद माजलपुर पर बीजेपी की बढ़त बरकरार है। चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो,
1: इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
3: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
4: When it comes to your favorite podcasts, missing an episode isn't an option. Luckily, TuneIn's got you covered. Start by creating a free TuneIn account and keep everything synced across your devices. Then favorite the shows you love. We'll bring new episodes right to your homepage, so they're always easy to find. And with notifications turned on, you'll get a heads up when new episodes drop. Stay in the loop effortlessly.
1: Sokudo.
5: Jai Hind friends, aaj hum ek aisi kahani batane ja rahe hain jis kahani ke bahut acche parinam hai aur bahut dukhad parinam hai. Bharat ek राजमहल है, समृद्ध है, सोने की चिड़िया है। गहरी बात है वो ये है कि इस राजमहल के चारों तरफ झोपड़ पट्टियां हैं, झुग्गियां हैं, चुनौती वाले क्षेत्र हैं। भारत आए अंग्रेज, यहाँ के लोगों को देखा उन्होंने, जब यहाँ के ग्रंथों को ट्रांसलेट करना शुरू किया, पढ़ा उन्होंने कि ब्राह्मण का जन्म मुंह से हुआ है। ये डिपार्टमेंट बनाया ही गया था शोषण के लिए। कौन सा? पुलिस। किसने बनाया था? कॉर्नवालिस ने। और पुलिस डिपार्टमेंट की खास बात यह है कि जब उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट भारत में बनाया, तब वो डिपार्टमेंट ब्रिटेन में नहीं था। जुडिशरी, मॉडर्न जुडिशरी उन्होंने अपने फायदे के लिए बनाया। अंग्रेजी कानून, अंग्रेजी जज। तुम कल्पना कर सकते हो, आधुनिक काल से पहले LGBT सड़क पर आकर प्रदर्शन करें, इनको तोप में बांध के उड़ा दिया होता।
6: तो क्या सिर्फ अब हिस्ट्री सिर्फ जो बाहर से लोग आए थे यहाँ पे शासन करने के लिए, उनको विलन के रूप में दिखा रहे हैं? या फिर
5: जो भी सरकार सत्ता में आती है वो शिक्षा का इस्तेमाल करती है अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने। वंदे मातरम पे बहस हो रही है, हर दिन मंदिर मस्जिद पे बहस हो रही है, मुसलमान पे बहस। ये संसद बनी किस लिए? औरंगजेब जो था भैया, डेली 200 किलो जनेऊ तोलता था। कितना? 200 किलो भी, मतलब डेली वो कम से कम 10,000 ब्राह्मणों को मारता था, हिंदुओं को। मैं देखता हूँ मुसलमानों को और हिंदुओं को, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ। पहले मैं सोचता था पुलिस वाले यहाँ लगा के पॉइंट ब्लैंक से क्यों मारते, क्योंकि यहाँ ताला लगा हुआ है, तो इसीलिए मारते कि यहाँ मारे तो अगले जन्म में खुला हुआ रहेगा।
7: आपको लगता है कि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद देश फिर बट सकता है?
5: इस बात को मैं रिपीटेडली कह चुका हूँ, एक विस्फोट होगा बेटा।
8: लेकिन आपके पढ़ाने के तरीके मुझे एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट लगता है कि आप जनता को ही बोल देते हैं कि जनता बड़ी बेवकूफ़ है, और फिर आप कहते हैं कि हमारे देश का युवा पढ़ना नहीं चाहता है।

केरल में एक बार फिर मॉनसून ने रफ्तार पकड़ी और कई जगहों से भारी बारिश के बीच मुसीबत वाली तस्वीरें सामने आने लगी। कहीं पूरा का पूरा इलाका ही पानी में डूबा नजर आ रहा है, कहीं पानी घरों के अंदर तक पहुंच गया है और कहीं लैंडस्लाइड से सड़कों को भारी नुकसान हुआ है। लगातार हो रही बारिश ने केरल के कई इलाकों में हालात बेहद खराब कर दिए हैं। भारी बारिश के बीच कई जिलों में लोग संकट में घिरे हैं। ये तस्वीरें कुन्नूर के श्रीकंदपुरम की है। भारी बारिश के बाद पूरा इलाका पानी से घिरा है, बाजारों में घुटनों तक पानी भरा है। केरल में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ गया है और पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया है। अब पथानमथिट्टा का हाल देखिए, यहाँ के कई गांव बाढ़ की चपेट में, घरों में पानी भरा हुआ है, दुकानों को नुकसान पहुंचा है। लगातार हो रही बारिश ने यहाँ जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। केरलम के कई इलाकों में हालात बेहद खराब है, कई जगहों पर लोग बाढ़ के बीच फंसे हुए हैं। राहत कर्मी प्रभावित लोगों तक पहुंचकर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की कोशिश में लगे हैं। मौसम विभाग ने केरल के 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। अगर बारिश का दौर जारी रहा तो ये संकट और भी ज्यादा बढ़ सकता है। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

अध्यक्ष नितिन नवीन के गढ़ बांकीपुर में रुझानों में प्रशांत किशोर की बढ़त बरकरार, करीब 9,500 वोटों से आगे लगातार पीछे चल रहे बीजेपी के उम्मीदवार। मध्य प्रदेश के दतिया में रुझानों में भी कांग्रेस को भारी बढ़त, बीजेपी को मिल रही है कड़ी टक्कर, लेकिन गुजरात के मांजलपुर उपचुनावों में केसरिया लहर। यौन शोषण केस में बरी होने के बाद आज तक पर ब्रिजभूषण सरन सिंह का पहला इंटरव्यू, कहा कि पहले दिन से कहता रहा मैं निर्दोष हूं, प्रदर्शन करने वाले जवाब दे। चढ़ावा चोरी पर पप्पू यादव के भगवा ड्रामे में समाजवादी पार्टी ने खुद को किया अलग, रामगोपाल यादव बोले दान चोरी से साधु संतों का कोई वास्ता नहीं, हमारी पार्टी बेहद गंभीर। यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र में विपक्ष का चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर प्रदर्शन, सीएम योगी ने कहा विकास के मसले उठाएं, मुद्दों से ना भटकाएं।

ब्रेक के बाद रणभूमि आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज रूम लाइव में। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं खासतौर पे मध्य प्रदेश के दतिया की। दतिया के अंदर भी कांग्रेस उम्मीदवार की बढ़त बरकरार है। करीबन 8,000 से ज्यादा वोटों से वो बढ़त बरकरार रखे हुए हैं। आपको बता दें कि जहां पर उपचुनावों के बाद वोटों की गिनती चल रही है, कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने बढ़त बना रखी है। 9 राउंड की गिनती के बाद कांग्रेस के उम्मीदवार करीबन 8,400 वोटों से आगे बने हुए हैं।

0: और हमारे साथ हमारे सहयोगी रवीश पाल सिंह भी हमारे साथ जुड़े हैं। रवीश, देखिए 9 राउंड की गिनती हो चुकी है, यहां पर भी 8,000 वोटों से ज्यादा कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। अभी किस तरीके से कितने राउंड की गिनती होनी बाकी है और क्या रुझान जो नतीजों में आपको डेवलप होते हुए नजर आ रहे हैं?
1: देखिए, अगर देखा जाए तो फिलहाल 7 और राउंड बाकी है मतगणना के, लेकिन यहां से ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए वापसी की राह फिलहाल दतिया में बेहद मुश्किल नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से चौथे राउंड से बढ़त बनाई थी घनश्याम सिंह ने, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार है, वो बढ़त लगातार बढ़ती जा रही है, वो लीड कम नहीं हो रही है, और ये बता रहा है कि फिलहाल जो दतिया है उसने एक बार फिर से 2023 का जो विधानसभा चुनाव परिणाम था उसी को दोहरा दिया है, ऐसा मान के चला जा रहा है। क्योंकि भले ही अब 7 राउंड की गणना बाकी है, लेकिन जहां तक हमारे सूत्र हैं, जितना दतिया की राजनीति को हम देख रहे हैं या हमने मतदान को देखा है पिछले कुछ सालों में दतिया में, उससे इतना साफ है कि अब यहां से भाजपा जो है वो वापसी कर पाए इसके आसार बेहद कम है। क्योंकि अभी कई ऐसे इलाके जो ईवीएम खुली है जहां पे, जो कि कांग्रेस समर्थित इलाके हैं, ऐसे में कांग्रेस की लीड अप कम होने के बजाय इसी बात की उम्मीद है कि वो बढ़ने वाली है। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने ये एक गंभीर चुनौती होगी कि अगर जो रुझान बन रहे हैं, अगर यही नतीजों में, क्योंकि अगले एक घंटे का इंतजार और है, एक घंटे में तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी। वैसे तो 11-12 बजे तक तस्वीर साफ हो जानी चाहिए थी, लेकिन जिस तरीके से बहुत सावधानी के साथ इस मतगणना को अंजाम दिया जा रहा है, इसलिए इसमें देरी लग रही है, और माना जा रहा है कि अगले एक घंटे में नतीजे पूरी तरीके से साफ हो जाएंगे कि दतिया में अगला विधायक कांग्रेस का होगा या भारतीय जनता पार्टी का होगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए रवीश, यही बात कही जा रही है कि इस सीट पर भी कांग्रेस बरकरार रह सकती है। अगली खबर का रुख करते हैं जो बांकीपुर से। बांकीपुर में भी लगातार जन स्वराज पार्टी के संस्थापक और जन स्वराज पार्टी के उम्मीदवार प्रशांत किशोर बढ़त बनाए हुए। 17 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, कहा जा रहा है कि वहां पर भी वो करीबन कई वोटों से 9,581 वोटों से आगे चल रहे हैं। 17 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है। अगर प्रशांत किशोर ये बढ़त जीत में तब्दील हो जाते हैं तो बिहार की सियासत में आप एक कह सकते हैं कि बड़ा बदलाव हो सकता है। नए विकल्पों के लिए एक बड़े तलाश के तौर पर इसे देखा जा रहा है। और हमारे साथ बीजेपी और प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हैं, अक्षत। हमारे साथ अक्षत, खास तौर पर अभी 17 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, जिस तरीके से हमने अपने दर्शकों को अपडेट दिया और बढ़त बरकरार है, क्या कुछ ऐसे मुद्दे हैं आपको लगा खासतौर पर इस उपचुनाव को लेकर कि आपके लिए बहुत ज्यादा मददगार साबित हुए? अक्षत, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही, अगर आप अपने वॉल्यूम को अनम्यूट कर सके तो।
2: अब आवाज आ रही है आपको मेरी?
0: जी, आपकी आवाज आ रही है जी।
2: देखिए, जो शुरुआती रुझान हमारे पक्ष में आपको दिख रहे हैं, ये एक अचानक से नहीं आए हैं। पिछले 30 साल से ये सीट भाजपा की सीट रही है। ये भाजपा का बिहार में सबसे मजबूत किला कहा गया है, उसको गढ़ कहा गया है। बट जब आप इसको जमीन पर जाकर, हमने जब गली गली में इसको जाके प्रशांत किशोर जी के साथ हमने लोगों के बीच में जाके उनकी समस्याओं को सुना, तो पता चला जो पेरिस बना दिया गया जिसको भाजपा कहती थी, वो उससे पूरा विपरीत है। वहां नाली गली की समस्या इतनी है कि अगर आधे घंटे की बारिश होती है तो वहां पर पानी जल जमाव की समस्या हो जाती है। तो जो स्थानीय जनता है उसने पहली बार बिहार में एक मजबूत संदेश देने का प्रयास किया है कि जाति धर्म से विपरीत उन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को आगे लाके रखा है। और इसी बीच में जो कई घटनाक्रम हुए उनको भी हमें भूलना नहीं चाहिए, जहां छात्रों की आवाज को दबाया गया है वहां की इनकम्बेंट सरकार द्वारा। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर जी को लोगों ने जो पिछले 3 साल से संघर्ष करते हुए जमीन पर देखा है, तो एज ए क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव के रूप में आज उन्हें चुनकर दिखा दिया है। मैं परिणाम जब आ जाएंगे तो इसको और मजबूती से कहूंगा, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बड़ी विक्ट्री है, क्योंकि जैसे ही लोगों को उनके बीच में हमने जो जाके उन्हें सेकंड ऑल्टरनेटिव की एक बात पिछले साल बोली थी, वो आज कहीं ना कहीं पूर्ण होते दिखाई
0: दे रही है। प्रीति जी का खास तौर पे, क्योंकि सवाल ये भी उठ रहे थे कि देखिए बीजेपी ने बहुत जल्दबाजी कर दी कैंडिडेट चुनने में, और कैंडिडेट उस तरीके का नहीं था जो लगातार जमीन से लोगों के साथ जुड़ा, क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं कैंडिडेट चुनने में भी कोई गलती हुई है आप लोगों से?
3: मैं तो एक साधारण कार्यकर्ता को मौका दिया और उनकी जिम्मेदारी हमारे एक मंडल के अध्यक्ष के रूप में रही, लंबे समय तक वो काम करते हुए आए और भारतीय जनता पार्टी ने उन वैसे ही प्रत्याशी को मैदान में उतारा। अब बाकीपुर की जनता को ये बात पसंद नहीं आई या इस पर उन्होंने नहीं भरोसा जताया, ये हम सब लोग के लिए एक विचारणीय प्रश्न है जिस पर कि हम सब लोग की समीक्षा होगी। लेकिन जिस हमारे अभी साथी प्रवक्ता कह रहे थे जनसुराज के कि यहाँ पर कुछ काम ही नहीं हुआ, तो शायद उस नजारे को ये नहीं देख पाए होंगे कि बिहार में क्या नहीं था और हमारी एनडीए की सरकार होने के बाद क्या क्या परिवर्तन हुए, ये इन्होंने नहीं देखा शायद, और या उनकी नजरें वहां नहीं गई या इनके चश्मे पर धूल पड़े हुए थे। बांकीपुर में लगातार चहुं और विकास के कार्य हुए हैं, यहाँ पर पार्कों का जाल बिछा, लोग महिलाएं युवा और बच्चों को टहलने के लिए पार्क नहीं हुआ करता था, नितिन नवीन जी के लंबे कार्यकाल में कई पार्क का निर्माण हुआ। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं कि किस प्रकार से एक मंदिरी नाला में किस तरह जल जमा हुआ करता था, पूरे नाले थे, बड़े बड़े बड़े ड्रेनेज थे, उसके ऊपर से बहुत अच्छी सड़क बना करके वहाँ के लोगों
0: का। बिल्कुल बिल्कुल प्रीति जी, हमारे साथ हमारे सहयोगी रोहित सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए। रोहित, देखिए एक तरफ थी बीजेपी की लेगेसी, करीबन 3 दशकों से ज्यादा ये सीट बीजेपी के हाथ में रही, वहीं दूसरी तरफ जन स्वराज पार्टी के जो अपने आप कह सकते हैं उनके जो संस्थापक है प्रशांत किशोर का करिश्मा था, उनके एक बड़ी चेहरा था। क्या आपको लगता है कि उस चेहरे के सामने बीजेपी का चेहरा फीका पड़ गया?
4: बिल्कुल, देखिए ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था, एक कमज़ोर चेहरा, एक नया चेहरा कार्यकर्ता को उठाया, लेकिन प्रशांत किशोर के मुकाबले अगर आप उस चेहरे को देखेंगे तो चेहरा बेहद कमज़ोर था नीरज कुमार सिन्हा का, और वो भी चेहरा कब आया, एक बार रिप्लेस करना पड़ा था चेहरे को भी, तो क्योंकि अभिषेक बंटी जिसको पहले टिकट मिला था उनके खिलाफ भी कुछ बहुत ज़्यादा विवाद आ गया था, इसीलिए कमज़ोर चेहरा तो था ही प्रशांत किशोर जैसे एक हाई प्रोफाइल नेता के सामने। और बीजेपी को कहीं ना कहीं ऐसा लगा होगा कि जो वो हमेशा से बात कहती थी कि किसी कुत्ते बिल्ली को भी हम अगर टिकट देंगे तो चुनाव जीत जाएंगे, तो शायद उनको ऐसा लगा होगा कि हम किसी भी कार्यकर्ता आम कार्यकर्ता को देकर टिकट एक मैसेज भी देना चाहेंगे कि हमने एक आम कार्यकर्ता को आगे बढ़ाया है। लेकिन जो बीजेपी का मुझे ऐसा लग रहा है अभी तक का जो ट्रेंड चल रहा है कि वो दाव भी जो है वो कहीं ना कहीं सफल नहीं हुआ है, और प्रशांत किशोर जैसे बड़ा चेहरे के सामने जो देश विदेश में जो कह सकते हैं विख्यात हैं, और प्रशांत किशोर का ये चुनाव था और इसीलिए बाकी देश विदेश में जो है लोगों की नज़रें थी, और क्योंकि देखिए प्रशांत किशोर का हम क्यों कह रहे हैं, बड़ा चेहरा होने के साथ साथ उन्होंने इस चुनाव को बड़ा बना दिया था। अगर प्रशांत किशोर इस चुनाव में नहीं खड़े होते तो फिर ये बीजेपी के लिए एक आम सा चुनाव था, बहुत ही एक केक वॉक जिसे कहा जाता है, लेकिन क्योंकि प्रशांत किशोर मैदान में उतरे, इस सीट को हाई प्रोफाइल सीट बना दिया, हॉट सीट बना दिया, और इसीलिए बीजेपी को अपना पूरा का पूरा कुनबा उतारना पड़ गया यहाँ पे।
0: बिल्कुल,
4: 40-40 स्टार कैंपेनर, हजारों कार्यकर्ता, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को खुद 3-3, 4-4 दिन कैंप करना पड़ा यहाँ पर, पवन सिंह, भोजपुरी सुपरस्टार, सबको उतारा गया था इस मैदान में, केवल किसके खिलाफ, एक आदमी के खिलाफ, प्रशांत किशोर, जो अपनी पार्टी के स्टार प्रचारक भी अकेले थे और वन मैन आर्मी और उम्मीदवार भी थे।
0: बिल्कुल रोहित, लेकिन चेहरे के साथ साथ टाइमिंग भी एक बड़ा फैक्टर था, टाइमिंग ऐसे वक्त में जब देश भर के अंदर हमने देखा छात्रों का प्रदर्शन चल रहा था, बिहार में भी छात्रों का प्रदर्शन बहुत ज्यादा उग्र हो गया, हमने वो भी तस्वीरें दिखाई थी, तो क्या आपको लगता है कि चेहरे के साथ साथ टाइमिंग भी एक बड़ा फैक्टर रहा?
4: बिल्कुल, देखिए टाइमिंग पे सबसे ज़्यादा हम मैं फोकस करना चाहूँगा, 2-3 घटनाएं ऐसी हुई हैं बैक टू बैक जिसने बीजेपी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। नीट छात्रा पटना में जो उनकी मौत हुई थी उसको लेकर वो मामला अभी तक अनसुलझा हुआ है, उसको लेकर बवाल हुआ था। 2 महीने पहले भोजपुर में भरत तिवारी का एनकाउंटर, जबरदस्त बवाल 1.5 महीने तक चलता रहा, ब्राह्मण समाज से आते थे, उसको उनकी मौत के बाद जो फॉरवर्ड कास्ट था वो नाराज हो गया, और फॉरवर्ड कास्ट जो है कायस्थ जो समाज है जो सबसे ज़्यादा वोट बैंक जिनका है बांकीपुर में उन्हीं का है, तो कहीं ना कहीं एक परसेप्शन ये बन गया कि भाई फॉरवर्ड कास्ट जो है वो नाराज है, और जो घटना भोजपुर में हुई थी उसका खामियाजा भी यहाँ पर देखा गया है। और सबसे महत्वपूर्ण जेंजी आंदोलन, मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जो बांकीपुर का सीट है वहाँ पर वो इलाके आते हैं जहाँ पर युवा छात्र बिहार भर के आते हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं, मुसल्लमपुर हाट, ये सब इलाके हैं जहाँ पर हजारों की संख्या में कोचिंग सेंटर्स हैं, वहाँ पे लड़के लड़कियाँ बिहार से पढ़ने के लिए कंपटीशन की तैयारी करने के लिए आते हैं, और उसी इलाके में ये जनजी प्रोटेस्ट हुआ, उसी इलाके में लाठीचार्ज हुआ, उसी इलाके में जो है बवाल कटा, उसी इलाके में सबसे ज़्यादा FIR भी दर्ज किया गया छात्रों के खिलाफ। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि बहुत दो तीन चीज़ें ऐसी हुई हैं बिहार में पिछले दो तीन महीनों में जिसका असर हो सकता है इस चुनाव में देखने को जरूर मिला।
0: हमारे साथ रोहित, क्योंकि आप बने रहिएगा हमारे साथ, और हमारे साथ हमारे दोनों खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। खास तौर पर अक्षत जी एक बात बताइए, क्योंकि कहा जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि ये सारा का सारा फील्ड तो RJD की तरफ से सेट करके मिला है, इसमें जन स्वराज का कोई बड़ा रोल नहीं है, उनके लिए कोई बड़ी उपलब्धि नहीं, लेकिन ये टाइमिंग और खासतौर पर जो RJD की तरफ से जो इनडायरेक्ट सपोर्ट मिला उसकी वजह से ये जीत देखी जा रही है।
2: देखिए, अंगूर खट्टे हैं ये अक्सर आपने सुना होगा, वही मैं अपनी बहन प्रीति जी को ये बोलना चाहूंगा, क्योंकि इसकी जो पृष्ठभूमि है वो किसी और पार्टी ने नहीं बना के दी है। इसका धन्यवाद तो मैं आदरणीय CM सम्राट चौधरी जी को करना चाहूंगा, जो गमछे का कलर पूछकर इनकाउंटर करने की बात कर रहे थे। और रही बात जैसे प्रवक्ता जी ने जो बताया कि बांकेपुर में राजद ने हमें मदद की, अरे जब इनके खुद के नेता आके कहते हैं कि बांकेपुर की जनता इतनी मूर्ख है कि हम अगर कुत्ते और बिल्ली को भी वहां से खड़ा कर दें तो उसको भी वोट दे देगी, आपको लगता है कि वहां की जनता जो पढ़ी लिखी है, सबसे ज्यादा लिटरेसी है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वहां की जनता को जाकर आप फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते? वो जनता ऐसी नहीं है जिसको जाति धर्म में बरगला सकते हैं। उन्हें प्रशांत किशोर जी में एक पढ़ा लिखा समझदार व्यक्ति दिखा। प्रशांत किशोर जी ने दो बातें बहुत महत्व पूर्ण कही, उन्होंने कहा अगर वो जीतते हैं तो उस जगह के सारे बच्चों को जो कि EWS है उनको एजुकेशनली इंग्लिश स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में उनको भर्ती कराएंगे टिल द टाइम वहां के सरकारी स्कूल की व्यवस्था ठीक नहीं होती है। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने आचरण से कभी भी वहां की जनता को वो शर्मसार नहीं होने देंगे, और ऐसी जनता को ये लोग कहते हैं कि वो कुत्ते बिल्ली को वोट देगी। भरत तिवारी जी की हत्याकांड में जो जिस तरीके से निष्पक्ष जांच नहीं हुई, वो सारी बातों ने जुड़कर एक ऐसी पृष्ठभूमि बनाई जहां की जनता ने इनको नकार दिया है। और आने वाले समय में आप देखिए बिहार की बदलाव की घड़ी यही इस सीट से तय की जाएगी, और ये शुरू हो चुका है।
0: बिल्कुल, और प्रीति जी खास तौर पे क्योंकि जिस तरीके से हम आपका प्रीति जी रुक करूंगा, लेकिन शशिभूषण हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हैं। शशिभूषण, जिस तरीके से ये जनस्वराज की तरफ से कहा जा रहा था कि देखिए ये बीजेपी की नाराजगी थी जो टर्न हुई है खासतौर पे जनस्वराज की तरफ, क्या आप इसे मानते हैं? क्या सच में स्टूडेंट्स के अंदर वो आक्रोश था, वो गुस्सा था खासतौर पे सरकार को लेकर, या स्टूडेंट प्रोटेस्ट जिस तरीके से हमने देखा दिल्ली में भी हो रहा था उसको लेकर भी एक बड़ा टर्न अराउंड हुआ है?
5: नहीं,
0: शशि
5: सुमित माफ कीजिएगा, मैं आपका सवाल सुन नहीं पाया, चूंकि जी
0: शशि हम जो बात कर रहे थे वो ये कि
5: एक बार
0: कि जो कहा जा रहा था कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट ने एक बड़ा टर्न अराउंड किया है खासतौर पर, ये जीत जो है वो बीजेपी की नाराजगी में टर्न अराउंड हो गई, खासतौर पर जनस्वराज के पाले में आ गई।
5: देखिए, जहां तक मैं समझ पाया हूं इस इलेक्शन को बांकीपुर को कवर करते हुए सुमित, मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का जो नाराज वोटर है, मतलब बीजेपी से जो विमुख हुआ, वो वोटर प्रशांत किशोर को एक विकल्प के तौर पे देख रहा था, और इसी वजह से प्रशांत किशोर जो है वो इस वक्त इस स्थिति में है कि वो चुनाव जीत सकते हैं। पहली बात, चूंकि लगातार वो ट्रेंड में है, लीडिंग में रुझानों में वो आगे हैं और अच्छी खासी बढ़त के साथ हैं, तो ये अपने आप में बेहद दिलचस्प है। और सबसे बड़ी बात, कौन कौन से वो मुद्दे थे जहां भारतीय जनता पार्टी का जो आधार वोट है, जो बीजेपी का किला माना जाता है बांकीपुर, वो उससे दूर हुआ? पहला, मुझे ये लगता है कि युवाओं में बीजेपी को लेकर के नाराजगी बढ़ी है, उसके दो फैक्टर हैं हो सकते हैं। पहला, जो नीट वाला एजिटेशन हुआ, वो चूंकि 22 तारीख को पटना में भी एक प्रोटेस्ट हुआ था, और ये पूरा प्रोटेस्ट उसी बांकीपुर जोन में था, हमको नहीं बोलना चाहिए। दूसरा, जो UGC का मसला है, UGC के मसले पे भी एक सेक्शन नाराज है, वो सेक्शन चाहता था कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले पर रोल बैक की स्थिति में आए। दूसरा और तीसरा, जो मैं शुरू से कह रहा हूं, सेल्फ रिस्पेक्ट, एक ऐसा वोटर जो कमिटेड तौर पे भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा रहता है, अगर वो आपका कैडर वोटर, कार्यकर्ता वोटर नहीं है तो भी एक लिबरल वोटर एक डेवलपमेंट के एजेंडे पर बीजेपी के साथ खड़ा रहता रहा, वो वोटर ये सोच रहा था कि आपने शायद ये समझ लिया बीजेपी के नेतृत्व ने कि हम किसी तरह का कोई उम्मीदवार उठा करके दे देंगे, हमारी मजबूरी होगी कि हम उसको वोट कर देंगे। तो यहां पर जब आत्मसम्मान को जब चोट पहुंचती है ना, तो वोटर इसी तरह का मैंडेट देता है, जैसा मैंडेट इस वक्त, मैंडेट तो नहीं कह सकते हैं लेकिन जो ट्रेंड है कम से कम वो। लेकिन एक बात बहुत जरूरी हो जाती है सुमित,
0: बिल्कुल आपको बीच में रुकूं शशि, लेकिन इस बीच एक बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को बता दे कि प्रशांत किशोर भारी बढ़त के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आपको बता दें कि करीबन 18 से 19 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है और इसी बीच 11,000 से ज्यादा वोटों से आगे निकल गए हैं प्रशांत किशोर। ये बड़ा अपडेट हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि अभी भी बांकीपुर सीट पर प्रशांत किशोर की भारी बढ़त बरकरार है। वो करीबन 11,289 वोटों से आगे बताए जा रहे हैं और प्रशांत किशोर लगातार करीबन 18 से 19 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। और हमारे साथ हमारे तमाम खास मेहमान और हमारे सहयोगी भी बने हुए हैं। 19 राउंड की काउंटिंग हम बता रहे हैं। प्रीति जी, खासतौर पर जिस तरीके से मैं देख रहा था, बांकीपुर सीट पर करीबन 18 से 29 साल के एज ग्रुप के 33% से ज्यादा वोटर्स है। क्या जिस तरीके से शशि बता रहे थे कि एक बड़ा राह की जो सेल्फ रिस्पेक्ट थी, खासतौर पर जो बयान दिए गए उन्होंने भी बड़ा डैमेज किया, खासतौर पर जो रुझान बता रहे हैं वो तो इसी तरह का अंदेशा दे रहे हैं कि देखिए जो ओवर कॉन्फिडेंस था बीजेपी का लीडरशिप का खासतौर पर बिहार में, उसने बहुत नुकसान पहुंचाया।
3: देखिए सुमित जी, मैं इस पर चर्चा करना चाहूंगी कि जिस प्रकार से प्रशांत किशोर जी ने एक छद्म नैरेटिव एक सेट करने की कोशिश की, जिस बात की चर्चा हमारे किसी नेता ने किसी भी प्रकार से कुत्ते बिल्ली वाला शब्द जो ये बार बार प्रयोग करके एक लोगों को दिग्भ्रमित करने का कार्य किए, इसमें मैं बिल्कुल खंडित करती हूँ, क्योंकि इसकी कोई ऐसी बात हमारे किसी नेता की तरफ से यदि हुई हो तो ये दिखा दें, लेकिन इन्होंने एक ऐसा नैरेटिव, एक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की, एक भ्रमजाल फैलाने की कोशिश की और उसमें कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि लोग फंसते हुए नजर आए। दूसरी बात कि जहां तक युवाओं की बात है तो चाहे नीट के मुद्दे हो या कोई भी अन्य मुद्दा हो, हमारे देश की यशस्वी सरकार जो है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर निर्णय के साथ युवाओं के साथ खड़ी नजर आई और जहां भी उनको कोई भी परेशानी आई तो अपने फैसले के साथ उनके हिसाब से उनके अनुसार से अपने फैसलों को बदलने का काम की या उनके रास्ते उनको समझाने का प्रयास किया गया, उनके जो मुद्दे थे।
0: प्रीति जी, आपका दोबारा से रुक करूंगा क्योंकि हमारे साथ हमारे सहयोगी शशि भी जुड़े। शशि, देखिए आपने तो लंबे समय तक ये चुनाव ऐसे कवर किए होंगे, करीबन 18 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, आप बता रहे थे 30 से 35 राउंड की काउंटिंग होती है, क्या आपको लगता है ये रुझान बहुत जल्दी जीत में तब्दील होते हुए नजर आ रहे हैं या फिर हमें कुछ और वक्त इंतजार करना पड़ेगा ताकि जो आखिरी राउंड की काउंटिंग होगी उसमें कुछ चीजें निर्णायक रूप से सामने आ पाएंगी?
5: सुमित, जब आप बात कर रहे थे बीजेपी प्रवक्ता से तो मैं वही कैलकुलेशन कर रहा था। अब तक जो वोटों की गिनती ऑफिशियली मैं बता रहा हूं, जो 18-19 राउंड की जो काउंटिंग हुई है आधिकारिक तौर पे, हो सकता है अनधिकारिक तौर पे ये 21-22 हुआ हो, तो वो आंकड़ा जो है टोटल वोटों की जो गिनती हुई है ना वो लगभग 80,000 हुई है। इसको अगर आप 85,000 भी मान लेते हैं अगले एक आध राउंड जोड़ करके, तो भी अभी लगभग 50,000 वोटों की गिनती होनी है और बीजेपी की उम्मीद यहीं पर है, हो सकती है। बीजेपी नेता अभी इंतजार कर सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी को अभी उम्मीद अगर बना करके रखनी है तो उनको इस बात के लिए इंतजार करना होगा कि उन 50,000 वोटों की गिनती हो जाए। प्रशांत किशोर के पास 10,000 से ज्यादा की बढ़त है, ये कोई ऐसी बढ़त नहीं है जिसको अपराजेय बढ़त मान लिया जाए, क्योंकि देखिए 50,000 से ज्यादा वोट अभी गिने जाने हैं और 10,000 का मार्जिन है, तो कहां पर बाजी पलट जाए, कहां क्या हो जाए, ये कोई नहीं जानता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए घंटी कहां बजी है सुमित, मैं ये बताना चाहता हूं। बीजेपी को यह समझना होगा, उनका थिंक टैंक इस पर कैलकुलेशन कर रहा होगा कि जो उसका गढ़ माना जाता था, इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं ना, ये बोरिंग रोड है, ये बोरिंग रोड है, एएन कॉलेज इसी बोरिंग रोड में है और यहीं से एक नंबर बूथ और बाकी
0: बिल्कुल आगे की बिल्कुल बिल्कुल। शशि माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोकना पड़ रहा है, वक्त की कमी है, लेकिन हम तमाम खास मेहमानों के साथ बने रहेंगे और आपको बताते रहेंगे, बड़ी खबर पर बड़े अपडेट हम आपको देते रहेंगे, आप देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
8: Every game, every moment, TuneIn keeps you close to the action. Follow your favorite teams all season long with live games, nonstop sports talk, and expert sports analysis so you can jump into the action. Hear it all on ESPN Radio, NBC Sports Radio, Big 12 Radio, Talk Sport, and more. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices at home, in the car, or on the go. So you never miss a second of sports action. Search sports to start listening now.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
3: Tune in is your MVP for everything sports audio. With live sports and a full lineup of podcasts and sports talk shows, you'll get all the sports action you'll ever need. Get updates on your favorite sports teams and alerts when they play. Just follow your favorite teams on TuneIn and you'll receive notifications. Plus, you'll also get recommendations based on your favorite teams. Start following your team and stay in the loop.
4: हाथ में मोबाइल टॉर्च वाली मशाल रूपी रोशनी लेकर ये उस अंधेरे से आजादी मांगते युवा हैं जो झारखंड में भर्ती आयोगों की धांधली से त्रस्त आ चुके हैं। प्रदर्शन करते ये नौजवान झारखंड में लगातार धरना देते हुए झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और JSSC के तहत होने वाली भर्तियों में होते भ्रष्टाचार से त्रस्त होकर एक हफ्ते से आंदोलन कर रहे हैं। झारखंड के युवाओं के साथ जिस तरह का बुरा हाल किया गया है वो सुनकर ही आपको लगेगा कि ऐसा कौन कर सकता है, जिसकी वजह से ये धरने और प्रदर्शन की नौबत आई है। झारखंड में इस वक्त दावा है 10 भर्ती परीक्षा की जांच CBI कर रही है, 6 भर्ती परीक्षा जांच के अलग से दायरे में है। जुलाई से सितंबर की 9 भर्ती परीक्षा को पोस्टपोन करना पड़ गया। वजह 14वीं कम्बाइंड सिविल सर्विसेज परीक्षा के प्रीलिम्स के नतीजे हैं। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने इस वक्त 14वीं कंबाइंड सिविल सर्विसेज परीक्षा को लेकर जांच का आदेश दिया। CID जांच कर रही है, लेकिन छात्रों को उस सरकारी एजेंसी पर भरोसा नहीं जहां 4 तरह के आरोप लग रहे हैं। पहला आरोप है कि कैटेगरी के हिसाब से कट ऑफ मार्क्स क्यों नहीं जारी किए गए। दूसरा आरोप है कि जारी हुई मेरिट लिस्ट पर कमीशन के संवैधानिक सदस्यों के साइन क्यों नहीं थे। तीसरा आरोप है कि परीक्षार्थी ने OMR शीट पर जितने गोले लगाए यानी जितने सवाल सॉल्व किए उससे ज्यादा नंबर वो कैसे पा जा रहे हैं। आरोप नंबर 4 है कि लखनऊ की जो कंपनी TDPL परीक्षा कराने का ठेका पाती है वो 1 महीने पहले झारखंड में ही ब्लैकलिस्ट की गई, तो फिर परीक्षा का ठेका कैसे पा गई। हजारों नहीं लाखों छात्रों के साथ खिलवाड़ झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और झारखंड SSC के हाथों झेलते आ रहे छात्रों की हालत ये हो गई कि एक छोटे से कमरे में जहां किसी तरह घर से पैसा मंगाकर 6-6, 7-7 बेरोजगार युवा रहकर भर्ती इम्तिहान की तैयारी करते हैं, वो लगातार झारखंड में भ्रष्टाचार में फंसती भर्तियों से हताश होने लगे हैं। किसी तरह उनका परिवार दिलासा दिलाता है कि भगवान पर भरोसा करो। क्यों लगातार भर्ती

मामले पर पप्पू यादव के भगवा ड्रामे से समाजवादी पार्टी ने किया अलग। रामगोपाल बोले, दान चोरी से साधु संतों का कोई वास्ता नहीं, हमारी पार्टी बेहद गंभीर। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र में विपक्ष का चढ़ावा, मुद्दे पर प्रदर्शन। सीएम योगी ने कहा, विकास के मसले उठाएं, मुद्दे से न भटकाएं।

0: नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। सबसे पहले बात हम बांकीपुर उपचुनाव की करेंगे। अलग अलग सीटों पर आज उपचुनाव चल रहा है, जिसमें बांकीपुर वो सीट है जहां पर सबकी निगाहें रही, क्योंकि पहली बार चुनाव में उतरे हैं जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर और उनकी बढ़त लगातार जारी है। 19 राउंड से अधिक अभी तक काउंटिंग हो चुकी है बांकीपुर सीट के लिए। करीब 12,000 वोटों से आगे निकल चुके हैं प्रशांत किशोर। भारतीय जनता पार्टी की ये सीट जो है, लगभग 3 दशकों से इस पर अपना दबदबा बनाए हुए थी, लेकिन आज सूरत कुछ अलग नजर आ रही है। बिहार की बांकीपुर में 20 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। 20 राउंड की काउंटिंग के बाद प्रशांत किशोर 11,600 से ज्यादा वोटों से आगे चल रहे हैं। अगर प्रशांत किशोर की ये बढ़त जीत में तब्दील होती है तो बिहार की सियासत में एक नए राजनीतिक विकल्प के तौर का सीधा संकेत यह हो सकता है। बांकीपुर सीट को लंबे समय से बीजेपी का मजबूत गढ़, सुरक्षित गढ़ माना जाता रहा है। यहां पर कड़ी टक्कर देना भी बहुत मुश्किल समझ में आ रहा था। इसके साथ ही बांकीपुर उपचुनाव का नतीजा आरजेडी के लिए भी एक झटके जैसा हो सकता है, क्योंकि अगर यहां प्रशांत किशोर जीत हासिल करते हैं तो यह माना जाएगा कि बिहार का वोटर पारंपरिक राजनीतिक दलों से हटकर नए विकल्प की ओर देख रहा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता शशि भूषण फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं। इसके साथ ही हम कुछ और मेहमानों के साथ भी चर्चा करेंगे अपनी इस खास पेशकश में, जहां पर हम अलग अलग उपचुनावों पर क्या चल रहा है वहां पर गणना के रूप में वो आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले शशि ये बताइए, कितने राउंड की वोटिंग की गणना अब तक हो गई है? और प्रशांत किशोर हालांकि बिहार विधानसभा चुनावों के दौरान भी बहुत दावा कर रहे थे, लेकिन खुद चुनाव नहीं लड़े। आज जब खुद चुनाव लड़ने के लिए मैदान में उतरे हैं तो इसका नतीजा देखकर शायद उनको पलट कर थोड़ा अफसोस भी हो सकता है कि शायद विधानसभा चुनाव ही लड़ लेते।
1: बिल्कुल हो सकता है, इससे इंकार नहीं किया सकता है, लेकिन परिस्थितियां भी बदली हुई हैं, इससे भी इंकार नहीं किया सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नितिन नवीन मैदान में नहीं थे। उन्होंने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर जिसको चुना, नीरज सिन्हा, एक तो वो उम्मीदवार शायद उतने लोकप्रिय नहीं हो पाए उनके कैडर वोटर्स के बीच ही, ये भी कहा जा सकता है। और दूसरी रणनीति कहीं ना कहीं बीजेपी की फेल रही है। हालांकि अभी भी भारतीय जनता पार्टी के मान के चल रही है कि तकरीबन 50,000 वोटों की गिनती बाकी है, तो कोई करिश्मा हो जाए, लेकिन प्रशांत किशोर या जनसुराज के लोगों के मन में अब कोई संदेह नहीं है।
0: चूंकि कितने राउंड कुल होगी काउंटिंग, कितने राउंड?
1: श्वेता देखिए, 31 राउंड की काउंटिंग होनी है।
0: हम दोबारा शशि भूषण के पास आपको लिए चलेंगे। 31 राउंड की कुल काउंटिंग होनी है। 20 राउंड में लगभग 11,600 वोटों से आगे चल रहे हैं प्रशांत किशोर। हालांकि मुख्य मुकाबला यहां पर अगर हम पारंपरिक रूप से देखें तो बीजेपी आरजेडी के बीच था, लेकिन प्रशांत किशोर नंबर वन पर इस समय चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नीरज कुमार इस समय नंबर टू पर चल रहे हैं, और फिर आता है आरजेडी का नंबर। बाकी जगहों पर भी अभी जो चुनाव चल रहे हैं, जो मतदान चल रहा है, उसका भी हम आपको आकलन दिखाते रहेंगे, क्योंकि यहां पर एक तो गुजरात और एक मध्य प्रदेश, दतिया में बीजेपी कैंडिडेट पीछे चल रहे हैं, हालांकि ये कांग्रेस पार्टी की ही सीट थी। एक फ्रॉड के मामले में कन्विक्शन के साथ ही यहां पर सीट खाली हुई और वहां से जो कांग्रेस कैंडिडेट हैं फिलहाल वही आगे चल रहे हैं। गुजरात की सीट का हालांकि जहां तक सवाल है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी की निर्णायक जीत। हमारे

0: साथ दो खास मेहमान इस समय जुड़ रहे हैं, धनंजय गिरी जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, और कुमार सौरभ सिंह जो प्रवक्ता है जन स्वराज पार्टी के। हालांकि अभी वाकई 50,000 मतों का की जो गणना है वो बाकी है, लेकिन कुमार सौरभ जी, ये 20 राउंड तक आगे रहना, आपको उम्मीद है कि 31 राउंड के बाद भी, पूरी काउंटिंग के बाद भी प्रशांत किशोर ही यहां से विजयी रहेंगे?
1: जी स्वेता जी, सबसे पहले आपके माध्यम से बाकीपुर के मतदाताओं को बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपनी ओर से, और पूरे देश और बिहार के लोगों को मेरा प्रणाम। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अभी तक जिस 20 राउंड की आप बात कर रही हैं, यह औपचारिक आपके पास आंकड़ा है। अंदर जो मतगणना है वो लगभग अब समाप्ति की ओर पर, मेरे ख्याल से 2 या 3 राउंड बचा हुआ है।
0: क्योंकि
1: हमारे लोग भी हैं अभी तक, श्वेता जी, एक भी ऐसा राउंड नहीं है जहां हम किसी भी राउंड में पीछे हुए हों। दो प्रमुख बातें निकल कर आई हैं कि नितिन नवीन जी का जो स्वयं का बूथ है, वैसे वो दीघा के मतदाता हैं, लेकिन जहां उनका आवास है या बाकी की चीजें हैं वहां भी जनसुराज अच्छे मार्जिन से जीती है, और जो भाजपा के प्रत्याशी हैं नीरज सिन्हा जी, उनके भी बूथ से जनसुराज जीता है। ये एक बात बिल्कुल क्लियर है कि बांकीपुर के लगभग मतदाताओं ने जाति, धर्म, विचारधारा, इवन राजनीतिक दलों का बंधन तोड़कर प्रशांत जी को अपना आशीर्वाद दिया है। सबसे पहले हम उनके लिए उनका अभिनंदन करना चाहते हैं, उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। ये एक नए राजनीति, एक नए शुरुआत है, एक नया उदय है, जहां 242 चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के हों, प्रशांत किशोर जी अगर उस विधानसभा में बैठेंगे तो मेरे ख्याल से बिहार के मुद्दों को प्राथमिकता मिलेगी। वो 242 विधायक जो कहीं ना कहीं अपने दायित्वों को लेकर बहुत संजीदा नहीं थे, वो 30 सांसद या 6 मंत्री जो केंद्र में हैं, उनका जो स्पीड ऑफ वर्क था वो थोड़ा ढीला था। 7 महीने में सम्राट चौधरी जी की निरंकुश बिहार की सरकार, जिसमें भरत तिवारी की हत्या,
0: कुमार सौरभ जी, अभी थोड़ी देर के लिए विक्ट्री स्पीच हम थोड़ी देर के लिए बचा लें, अगर
1: मैडम आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, मुझे, मैं किसी अहंकार में ये बातें नहीं कह रहा, हम लोग सब लोग उसके फाइनल आंकड़े का इंतजार करेंगे। लेकिन आपको भी पता है, हमको भी पता है कि आगे का रास्ता क्या है।
0: धनंजय जी, चूंकि देखिए बहुत सारी चीजें उस समय से बदली, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं है, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री है, मैं मानती हूँ कि एक बायपोल का रिजल्ट आपको पूरी तरीके से कोई एक मैंडेट नहीं देता है, लेकिन संकेत थोड़े से संकेत तो देता है, और खासकर बांकीपुर जैसा सीट जिस पर हमने नवीन किशोर जी को जीतते हुए सालों तक देखा, फिर नितिन नवीन जी को भी जीतते हुए देखा, लेकिन आज जब भरत तिवारी एनकाउंटर हो चुका, आज जब जेनजी वाला आंदोलन हो चुका, आपको लगता है कि मुद्दे कुछ ऐसे बदले हैं कि इस समय आप लोग इस तरह से पिछड़ रहे हैं?
2: प्रताप जी, पॉलिटिक्स पर आपकी पहली नजर की मैं प्रशंसा करता हूं, जो आपने कहा कि विपक्ष के लिए जो स्पेस है वो तेजस्वी जी के पास रहेगा कि पीके के पास रहेगा, ये देखने वाला विषय होगा, क्योंकि सरकार हमारी वहां स्टेबल है। 202 सीट पर हम जीत करके आए हैं और जनता ने हमें मैसिव मैंडेट दिया है, और उस मैसिव मैंडेट के साथ हम सरकार में पिछले 20-22 सालों से हम सरकार में है, जन सरोकार में है, बिहार को हम वहां से निकाल करके लाए हैं, कट्टे और गोलियों की गूंज से गुंजायमान बिहार को आज चौड़े सड़कें, पक्की सड़कें और बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रास्ते पर लेकर के हम अग्रसर हुए हैं। 202 का बैसिक मैंडेट जी जनता ने हमें दिया, उस जनता के कदमों में हम सर झुका करके जो भी जनता आशीर्वाद दे रही है, जो भी जनता का मैंडेट होगा उसको हम स्वीकार करेंगे। हाँ, पीके जी का एक लंबे समय से चला और 6 महीने पहले ही उनकी बुरी तरह से हार हुई, मुश्किल से कहीं उनकी जमानत बची होगी, और जनता जो अभी निर्णय करेगी, जनता के निर्णय के साथ हम जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की खासियत है कि क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, हम लोगों को जनता जो भी आशीर्वाद देगी, ना हमने कभी ईवीएम पर आरोप मढ़ा, ना कभी प्रशासनिक, ये तो मानना पड़ेगा ना कि भाई ईवीएम पर कोई आरोप अब नहीं लग सकता है, अब प्रशासनिक दुरुपयोग का आरोप नहीं लग सकता है। जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, जो भी आगे चल रहा है, हालांकि अभी रिजल्ट नहीं आया है, जब तक रिजल्ट नहीं आया था कुछ हार या जीत, 21वें राउंड मैं स्क्रीन पर देख रहा हूँ, 31 राउंड तक होना है वोट, तो अब देखते हैं क्या जनता आशीर्वाद देती है। और सबसे बड़ी बात ये होगी कि जनता ने भर भर के हमें आशीर्वाद दिया, 6 महीने पहले चुनाव हुए थे और हमें 202 के मैंडेट के साथ, महती आशीर्वाद के साथ बिहार में काम कर रहे हैं। हाँ, ये विपक्ष में अब कांग्रेस के पास विपक्ष का दायित्व रहेगा कि पीके के पास, कि एकला चलोले के पास रहेगा, कि आरजेडी के पास रहेगा, किसके पास रहेगा, वो देखने वाली चीजों में जो आपने अपने विश्लेषण में बताया, हमारे पास तो मैसिव मैंडेट है, जनता का भरपूर के आशीर्वाद प्राप्त है।
0: नहीं, वो तो सही बात है कि 6 महीने पहले बिहार की जनता ने पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड को अपना पूरा मैंडेट दिया, लेकिन क्या बड़े संकेत यहां से निकल सकते हैं? कुमार सौरभ जी, मैं आऊंगी आपके पास, रोहित सिंह भी हमारे संवाददाता वहां से जुड़ गए हैं। रोहित, 21 राउंड की अब तक वोट काउंटिंग हो गई है, यानी 10 राउंड अभी बाकी हैं। हालांकि वहां पर अनौपचारिक रूप से बहुत सारी जानकारियां और भी उपलब्ध होती हैं काउंटिंग सेंटर्स पर, लेकिन ये जो कुल आंकड़ा हमारे सामने 42,159 वोटों के साथ प्रशांत किशोर के आगे चलने का है, ये एक भले एक पार्टी इसे पूरी तरीके से किनारे करना चाहे और एक पार्टी इसे पूरी तरीके से अपना जीत दिखाए, लेकिन संकेत तो बहुत बड़े निकलेंगे रोहित।
3: नहीं बिल्कुल, देखिए संकेत यहाँ सबके लिए है, यहाँ बीजेपी के लिए तो संकेत है कि किस तरीके से ये बांकीपुर सीट जो कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट रही है पिछले 5 बार से, 35 सालों से बीजेपी का गढ़ रहा है, वो किला अगर ध्वस्त हो जाता है तो बीजेपी को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आखिर क्यों हुआ और क्या मतलब इस तरीके क्या कारण रहे कि इसके इस तरीके के जो परिणाम आए हैं ऐसी सीट पर जहां बीजेपी कभी नहीं चाहती होगी कि लड़े यहां से उनकी हार हो, क्योंकि नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है और खुद नितिन नवीन ने यहाँ आखिरी के 2-3 दिनों में जब प्रचार वोटिंग से पहले ताबड़तोड़ रोड शोज किए, जनसंपर्क किया था और पूरा का पूरा बीजेपी और एनडीए का कुनबा यहाँ पर प्रचार प्रसार कर रहा था। उसके बावजूद भी अगर प्रशांत किशोर ये चुनाव अगर जीत जाते हैं तो जाहिर सी बात है सोचना होगा गलती कहाँ पे हुई है और क्या इस चुनाव को बीजेपी ने हल्के में ले लिया। लेकिन दूसरी तरफ ज़्यादा बड़ा संकेत जो मुझे लगता है वो तेजस्वी यादव के लिए है, क्योंकि देखिए ऑपोजिशन स्पेस जो है अब एक तरीके से कहें तो प्रशांत किशोर उस ऑपोजिशन स्पेस में जो हैं वो प्रवेश कर चुके हैं। अगर ये चुनाव वो जीत जाते हैं, कल से अगर माननीय विधानसभा में प्रशांत किशोर की एंट्री हो जाएगी तो वो तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं और उनको ये एक तरीके से कहें तो अपने आप को इसमें रहते हैं कि मैं नेता प्रतिपक्ष हूँ और विपक्ष की आवाज मैं उठा रहा हूँ। हाँ। तो कल से ये होगा कि
0: नहीं, रोहित यही होता था ना, जो यंगस्टर्स थे, जो युवा पॉपुलेशन जो पिछले चुनावों तक हमें तेजस्वी के साथ चलता हुआ दिखता था, इस बार कम से कम जब तक प्रशांत किशोर ने ये नहीं कहा था कि वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, वो तब तक उनकी तरफ से रुझान दूसरी तरफ हो चुका था, जनसुराज की तरफ। लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ क्या ग्राउंड पे इस बांकीपुर सीट की कवरेज करते हुए आप लोगों को ये एहसास हो रहा था कि जो कोर है वो दूसरी तरफ शिफ्ट कर रहा है, या ये पूरी तरीके से शॉकिंग है? शांत किशोर और यहां पर वो लहराते हुए पीले झंडे और पीला अबीर गुलाल ये नजर आ रहा है यहां पर, हम सुनाते हैं, शायद उन्होंने मीडिया से थोड़ी बात की, हम आपको सुनाते हैं क्या कह रहे हैं।
4: आगे ऑफिस के पास बढ़ो, एक आदमी ऑफिस के पास, ऑफिस के पास।
0: ये तस्वीर आप देख रहे हैं, प्रशांत किशोर बढ़ रहे हैं आगे और कुमार सौरभ जी जो आप बात कह रहे थे कि जो काउंटिंग सेंटर है वहां से आप लोगों को अलग खबर आ रही है, लग रहा है इसीलिए यहां पर ये पूरी पूरा जश्न दिख रहा है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने श्वेता जी, मैं आपको बड़े जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं कि आपके पास जो आंकड़े हैं और हमारे पास जो सूचना है उसमें लगभग 4 से 5 राउंड का फर्क है, इनफैक्ट उससे ज्यादा का। और जब आखिरी बार मैं आपके साथ डिबेट पर बैठा हूं उस समय 26 से 27 राउंड की काउंटिंग लगभग समाप्त हो गई है और हमारे पास जो आंकड़े, इनफैक्ट मैं कोट नहीं करूंगा क्योंकि आधिकारिक आंकड़ों को आने देते हैं, कयास लगाने की जरूरत नहीं है। विषय ये है श्वेता जी कि देखिए इस चुनाव से पहले किस प्रकार के शब्द, किस प्रकार के कैंपेन और किस प्रकार के दावे किए जाते थे, ये गढ़ बताया जाता था, दुर्ग बताया जाता था, किला बताया जाता था, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है, ये भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है, ये वो सीट है जहां 30 वर्षों से भाजपा हारी नहीं है, वहां प्रशांत किशोर जी के जमानत जब्त और पता नहीं, मैं उन शब्दों में जाना भी नहीं चाहता हूं, जिस प्रकार का कैंपेन भारतीय जनता पार्टी ने किया, और उससे भी ज्यादा सबसे जो चौंकाने वाली चीज थी जो बिहार ने देखा कि राष्ट्रीय जनता दल के समय में भी, वो जंगल राज के समय में भी, इस प्रकार की प्रशासनिक गुंडई और भाजपा के लोगों का जो रूप देखा है बिहार ने, बोरिंग रोड, आप भी पटना की हैं, आप भी बिहार से हैं, बोरिंग रोड जैसे रिहायशी जगह पर जिस प्रकार का उदंडता किया जा रहा था चुनाव के दौरान।
0: नहीं, कुमार सौरभ जी, ये भी बात समझाइए, आपको बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि देखिए 6 महीने पहले ही हम लोगों ने इतना बड़ा मैंडेट हासिल किया। मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ, हालांकि क्योंकि जनसुराज के कार्यकर्ताओं में उस समय बड़ी निराशा हुई थी जब प्रशांत किशोर ने ये कहा था, ऐलान किया था कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्या अगर वो चुनाव लड़ते तो तस्वीर दूसरी होती, या फिर 6 महीने में और 6 महीने के मुद्दों में कुछ बदला है?
1: जी बिल्कुल, बहुत बदलाव है। पहला तो अब व्हाट बाइगॉन्स आर बाइगॉन्स, श्वेता जी, अगर उस समय वो लड़ते तो क्या होता, नहीं लड़े तो उसका क्या फायदा हुआ। लेकिन ये आपने सही पूछा कि भाई 7 महीने में क्या बदल गया है। 3 चीजें बदल गई हैं श्वेता जी। पहली बात, आप देखें पिछले 3 दशक में जितने भी चुनाव एनडीए ने लड़े हैं वो लगभग नीतीश कुमार जी के चेहरे पर लड़ा है। ये पहला चुनाव है जो सम्राट चौधरी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है। तो इसीलिए मेरे नेता ने कहा कि ये रेफरेंडम होगा कि बिहार में सम्राट चौधरी स्वीकार हैं कि नहीं, इसलिए कि जनादेश 25 से 30 फिर से नीतीश और बिहार के 40,000 करोड़ को फेंककर 10,000 रुपए और 2 लाख का वादा कर लिया गया था। दूसरा जो सबसे बड़ा चेंज है कि पिछले 7 महीने में एज अ गृह मंत्री या एज अ मुख्यमंत्री एक निरंकुश शासन रहा है। नीट छात्रा की हत्या, भरत तिवारी की हत्या, बेगूसराय में नृशंस बलात्कार, और जो है आप नालंदा में 2 दलित युवकों की हत्या, ऐसे असंख्य, दिल्ली में पांडव की हत्या, और वहां सरकार की उदासीनता और सरकार का अहंकार कि हम कुत्ता बिल्ली को खड़ा कर देंगे तब भी जीत जाएंगे। आप यहां देखिए 201 विधायक जो है, 40 स्टार प्रचारक, 35 जो है मंत्री, 45 विधान पार्षद, और सभी पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, और उसके साथ साथ हजारों कार्यकर्ताओं की फौज। क्यों भाई, आप तो 30 वर्ष से बाकीपुर में थे, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत तो थी नहीं, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सीट थी भारतीय जनता पार्टी की। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भी अंत में आकर इमोशनल अपील करना पड़ा कि हम यहां गलियों में खेले हैं, चौराहे पर चाय पीना पड़ा। तो ये पता था भारतीय जनता पार्टी को कि बाकीपुर के मन में क्या चल रहा है, प्रशांत किशोर जी को लेकर उनके मन में क्या चल रहा है। पहली बार पार्टी को नहीं, उम्मीदवार को चुना है बाकीपुर ने। बाकीपुर ने एक ऐसी आवाज दी है जो सिर्फ बिहार के विधानसभा में नहीं, अब दिल्ली तक उसकी आवाज गूंजेगी। वो जब कहेंगे कोई बात तो सीरियसनेस के साथ बिहार के 242 विधायक, यहां की सरकार और केंद्र की सरकार भी, बिहार को प्राथमिकता मिलेगी। वो 30 सांसद एनडीए के डबल इंजन के सरकार के, 202 विधायक, कहां काम हो रहा है, कौन सी योजनाएं आई, 6-6 मंत्री हैं केंद्र में। ये सब मोदी जी को अब दिखेगा कि अगर बांकीपुर हराया जा सकता है तो इनको कहीं भी हराया जा सकता है, और यही बात बांकीपुर से निकल कर जाएगी।
0: धनंजय गिरी जी, आपकी पार्टी का हालांकि ये हमेशा अप्रोच रहता है कि जितनी शिद्दत से आप लोग जीत का जश्न मनाते हैं उतनी ही शिद्दत से आप लोग एक हार का पूरा आकलन करते हैं, यानी मैं समझ सकती हूं कि अभी जब नतीजा आएगा, मैं एक बार फिर कह रही हूं कि भले ही कुमार सौरभ जी अभी कह रहे हैं कि जीत हो चुकी है, लेकिन ऐलान का इंतजार सबको करना पड़ेगा। 21 राउंड वोटिंग, 21 राउंड काउंटिंग के साथ हमारे सामने जो आंकड़ा है, और प्रशांत किशोर के समर्थक जिस तरीके से इस समय सेलिब्रेट करते हुए धनंजय दिख रहे हैं तस्वीर में, मुझे लगता है कि बांकीपुर का आकलन बहुत गहराई में जाके करना पड़ेगा।
2: दादाजी, भारतीय जनता पार्टी हर चीज का आकलन करती है, और हम कई चुनाव हारते हैं, हारने के बाद जीतते हैं, और लगातार हारते हारते जीतते रहे हैं। हार को भी गले का हार और जीत को जनता का प्यार समझ के स्वीकार किया है। और हमारे साथी प्रवक्ता जो कह रहे थे कि इतने विधायक लगा दिए, इतने मंत्री लगा दिए, भाई भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, 14 करोड़ कार्यकर्ता है हमारे, इतने सारे हमारे विधायक जीते हुए हैं, 201 वहीं की जनता ने हमें विधायक जीता करके दिए हैं, कहीं अलग से उठा करके नहीं लाए हैं। अगर आपके पास वन मैन शो चल रहा है तो ये आपकी समस्या है। धीरे धीरे आपकी पार्टी का विस्तार होगा, आपको शुभकामनाएं देंगे हम लोग, असहमतियों का सम्मान ही तो लोकतंत्र लोकतंत्र है, और सबसे बड़ी बात है कि आप असहमति की आवाज बने, तो आपकी आवाज कहां तक जाएगी, कौन कितना सुनेगा, आप जनता को आपने कितना प्रोपेगेंडा दिया, कितना प्रैक्टिकल करके दिखा पाएंगे, क्या कर पाएंगे। अभी तो आपकी परीक्षा होनी बाकी है, अभी तो असली एग्जाम बाकी है, अभी तो शिद्दत से शुरू हो रहा है आपका सफर, अभी तो आपका सफर सरीके सफर भी शुरू नहीं हुए। आप अभी आप जितनी बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं और जितनी बड़ी बड़ी बातें पूर्व में आप कह चुके हैं उसको जनता ने पहले खारिज किया हुआ है, फिर भी हम आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं, बड़े हृदय के साथ दे रहे हैं, लेकिन आप इतने लोग लाए कहां से लाए, कहीं पकड़ के तो नहीं लाए थे, हमारी जनता ने जिताया था, 40-40 वही के लोग हैं हमारे मुख्यमंत्री।
1: मुझे
2: मैं आपके बीच में कहा बोला था, आप तो इतने ज्यादा उतावले हो रहे हैं कि बीच में भी बोलने जा रहे हैं, मैं तो आपको कितना ध्यान से सुना, कितना असहमतियों का सम्मानित लोकतंत्र है। अभी तो आपके बोलने का समय भी नहीं शुरू हुआ है ठीक से, अभी तो आधे सफर में है। स्वेता जी, हम तो भारतीय जनता पार्टी का चिंतन मनन की प्रक्रिया लगातार जारी रहती है, और आप देखें तो बहुत से ऐसे जो 2018 में हम गोरखपुर सीट आ रहे थे, लेकिन लोगों को लगा कि नहीं खत्म हो गया, मैजिक खत्म हो गया, 2019 में हम 303 सीट जीत करके आए, तो ये हार और जीत तो लगी रहती है, इसके हमने तो बड़े हृदय स्वीकार करते हैं। सबसे बड़ी बात यह होगी स्वेता जी, अब कोई ईवीएम को दोष नहीं दे पाएगा, सबसे बड़ी बात यह होगी ये कोई नहीं कह पाएगा कि भारतीय जनता पार्टी प्रशासनिक दुरुपयोग करती है। अब ये सारी नैरेटिव जो है उस पर विपक्ष क्या कह पाएगा, सवाल वहां खड़े हो पाएंगे, विपक्ष का कौन चेहरा बनेगा, कि अकेले बन पाएंगे कि 22 सीट लेकर के आरजेडी बन पाएगी, कि 6 सीट लेकर के लालू जी के पास जितने बाल बच्चे उससे कम सीट बच्चे, उससे कम कांग्रेस के पास विधायक बचे हैं वो ले पाएंगे, कौन किसके पास विपक्ष की जगह होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जदयू और हमारे एनडीए के पास तो मैसिव जनादेश, जनता का सर झुका करके जनता के कदमों में कह रहे हैं कि हमारे पास मैसिव जनादेश है ऑलरेडी, और सरकार बहुत ही स्मूथली सरोकार के साथ जन सरोकार को सिरोधार्य करते हुए हम लोग चला रहे हैं। अब पीके जो प्रोपेगेंडा थ्योरी उनकी है, जो तमाम बातें कह के आ रहे हैं, तमाम चीजें कह के आ रहे हैं, जनता अब उनके चीजों का जब आपको जिम्मेवारी जनता देती है तब वो आकलन करती है कि आप क्या कह पाए और कितना उसको डिलीवर कर पाते हैं, कितना कर पाते हैं, क्या उसकी परिणति लेकर के आते हैं। और फिर वो अंतिम बात जो आप भी कह रहे हैं और मैं भी कह रहा हूं कि अभी बस 11 राउंड और बाकी है, 11 राउंड के बाद जो परिणाम आते हैं उसको सर झुका करके लोकतंत्र में सर झुकाना पड़ता है जनता के कदमों में, सियासत में हाथ सरदारी नहीं आती,
0: सर झुका के मुद्दों की तरफ देख के देखना पड़ेगा, क्योंकि भले ये बात सही है कि जिस तरह का मैंडेट भारत बीजेपी को एनडीए को है यहां पर, उसमें किसी भी तरीके से उस सरकार को कोई अभी परेशान नहीं कर सकता है, डगमगा नहीं सकता है, लेकिन एक अकेले व्यक्ति से ही शुरुआत होती है हर लड़ाई की। कुमार सौरभ जी, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चला है, ब्रेक के बाद फौरन आप उन सभी मुद्दों पर जवाब दें, और साथ ही इस मुद्दे का जवाब तो जरूर दें जो आपके सभी विरोधी अभी बोलेंगे कि केवल एक व्यक्ति, उसके आगे क्या, तो हम इस ब्रेक के बाद जानेंगे, देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
7: Every game, every moment, TuneIn keeps you close to the action. Follow your favorite teams all season long with live games, nonstop sports talk, and expert sports analysis so you can jump into the action. Hear it all on ESPN Radio, NBC Sports Radio, Big 12 Radio, Talk Sport, and more. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices at home, in the car, or on the go, so you never miss a second of sports action. Search sports to start listening now.
8: सवारी आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफ टाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
2: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
3: कुछ तो बात है इस तेल में।
4: जब बात हो धान की फसल को रोगों से बचाने की तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का मेंटर। मेंटर तरक्की का ऑलराउंडर।
5: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
6: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
7: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बाय एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी, हिंट बड़े आराम से।
2: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। वेयर आर यू?

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक।
2: Hey, it's Billy Bush. Tune into my show Hot Mics Monday to Thursday at noon Eastern, 9 a.m. Pacific for the latest in politics, entertainment, tech, sports, pop culture and much more. Just tell your device to play Hot Mics on TuneIn to listen.
3: सवारी सुपर

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
3: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
4: कुछ तो बात है इस तेल में।
5: In association with
6: Punjab National Bank, भरोसे का प्रतीक।
5: विमल बोलो जुबां केसरी। हिंट बड़े आराम से।
7: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। वेयर आर यू?
8: His two biggest blunders have defined Indian politics since he responded to the Shahmano judgment.
9: He didn't quite understand the interplay between judiciary, society, Muslims, personal law. Shabanu was a disastrous decision.
8: That made the Hindus very angry. Then he made other mistakes with the unlocking of the doors at Ayodhya, the Shilanyas, and that's how the BJP rolled.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

नितिन नवीन के किले में प्रशांत किशोर की सर्जिकल स्ट्राइक, बांकीपुर में पीके 12,000 वोटों से आगे। दतिया में कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने बनाया 9,000 से ज्यादा का फासला, गुजरात के मांजलपुर में बीजेपी की बची लाज। यौन शोषण केस में छूटते ही गरजे बृजभूषण शरण सिंह, आज तक पर बोले मैं था निर्दोष, झूठ की खेती करने वाले आंदोलनकारी अब दें जवाब। चढ़ावा मामले पर पप्पू यादव के ड्रामे से समाजवादी पार्टी का किनारा, रामगोपाल यादव का बड़ा हमला, दान चोरों से साधु संतों का कोई वास्ता नहीं। यूपी विधानसभा में चढ़ावा मामले पर भारी हंगामा, विपक्ष के शोर शराबे पर मुख्यमंत्री योगी का करारा प्रहार, जनता को गुमराह न करें, दम है तो विकास पर करें बात।

0: राज्यों में 3 सीटों पर उपचुनाव में वोटों की गिनती जारी है। सबसे चर्चित और हॉट सीट पटना के बांकीपुर, जहां जन स्वराज के प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार से काफी आगे चल रहे हैं। वहीं एमपी की दतिया सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। यहां कई सालों बाद कांग्रेस दफ्तर में जश्न का माहौल है। वहीं गुजरात में बीजेपी उम्मीदवार कांग्रेस उम्मीदवार से भारी मतों से आगे हैं। यानी हर जगह अलग अलग पार्टी में जश्न आप देख सकते हैं। लेकिन जो बांकीपुर सीट है, वहां जो उपचुनाव हुआ है उसकी बात ही हम कर रहे हैं। पहली बार चुनाव में उतरे हैं यहां पर जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर, और हर राउंड में उनकी लगभग बढ़त जारी है। बिहार की बांकीपुर में 22 राउंड की काउंटिंग के आंकड़े आ चुके हैं और प्रशांत किशोर 12,809 वोटों से 22वें राउंड के बाद भी आगे हैं। प्रशांत की यह बढ़त अगर आगे चलती रही, 31 राउंड कुल है, 9 राउंड की काउंटिंग अब बाकी है, ये बिहार की सियासत में एक बहुत बड़ा राजनीतिक उलटफेर होगा। क्योंकि अब तक जो आरजेडी विकल्प थी वहां पर, अब जन स्वराज के साथ क्या एक नए विकल्प के उभार के संकेत मिल रहे हैं? क्योंकि बांकीपुर सीट बीजेपी के साथ रही लंबे समय तक, 3 दशक से ज्यादा का समय बीत गया जहां बीजेपी के उम्मीदवार ही वहां से जीतते आए। इतना कि इसे न केवल एक मजबूत सीट बल्कि एक सुरक्षित सीट माना जाने लगा। यहां पर यह माना जा रहा था कि जीत तो बीजेपी की ही होगी, लेकिन कड़ी टक्कर भी मिल जाए बहुत बड़ी चीज हो जाएगी। अब यहां पर कड़ी टक्कर दूर, जीत मिलती हुई नजर आ रही है प्रशांत किशोर को। बांकीपुर उपचुनाव का नतीजा आरजेडी के लिए बहुत बड़े झटके के जैसा होगा। शशि भूषण हमारे साथ फोन लाइन पर है। शशि, आधिकारिक रूप से अब तक कितने का आंकड़ा दिया जा रहा है, कितने राउंड्स पूरे, कितने बाकी?
1: देखिए, आधिकारिक तौर पर अभी कंफर्मेशन तो नहीं है जीत की, लेकिन जो बढ़त है प्रशांत किशोर के बाद, वो बढ़त हर राउंड के बाद बढ़ रही है। पहले हमने देखा 10,000 की बढ़त वो उन्होंने बना के रखी, फिर 11,000 और 12,000 से ज्यादा, मतलब तकरीबन 12,800 से ज्यादा वोटों से बढ़त है उनकी। तो जाहिर तौर पर अब चूंकि कुछ ही राउंड बचे हुए हैं, तो उनको और जनसुराज के लोगों को भी भरोसा हो गया है कि जीत या जनता का जनादेश उन्हीं के पक्ष में है। और यही वजह है कि वो पटना के पाटलिपुत्रा इलाके में, जो जहां उनका जनसुराज का कार्यालय भी है, वहां पर ही वो सड़क पे निकल गए हैं। अभिवादन एक तरह से स्वीकार कर रहे हैं, ये मानिए कि विजय जुलूस ही है एक तरह से उनका, क्योंकि बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उनके साथ हैं, हाथ हिलाते हुए अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं प्रशांत किशोर। और उनको ये लग रहा है कि एक ये जो बड़ी जीत है वो बिहार में न केवल उनकी बल्कि उनकी पार्टी जनसुराज के लिहाज से, उसके राजनीतिक भविष्य के लिहाज से बेहद खास और बेहद बड़ी है। जी,
0: हमारे साथ दो खास मेहमान इस समय जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धनंजय गिरी जी हमारे साथ हैं और जन स्वराज पार्टी की ओर से कुमार सौरभ सिंह जी हमारे साथ हैं। कुमार सौरभ जी, एक तो जो आरोप आप पर अभी लगा रहे थे धनंजय जी, उनकी बातों का जवाब मैं चाहती हूं, और साथ ही ये भी कि एक अकेले रहेंगे जन स्वराज की तरफ, ऐसा नहीं है कि देखिए असेंबली इलेक्शंस में भी जन स्वराज ने बहुत अच्छे कैंडिडेट्स को टिकट दिया था, कई सारे ऐसे थे जो अपने अपने क्षेत्रों में जिन्होंने अच्छा किया था, राजनीतिक अनुभव हालांकि नहीं था, और बिहार की जो परिपक्व जनता मानी जाती है, पॉलिटिकली परिपक्व जनता, उसने ये तय किया कि नहीं, हम या तो एनडीए के साथ जाएंगे या विकल्प के तौर पर आरजेडी के साथ जाएंगे। इसीलिए ये समझाइए कि एक अकेले प्रशांत किशोर, आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं उनसे?
2: बिल्कुल सही कहा आपने, और आपने मोस्टली असेसमेंट कर दिया है श्वेता जी। देखिए, सबसे पहली बात जो मैं कहूंगा वो ये है कि शायद लंबे कालखंड में ये पहला चुनाव होगा जिसमें जंगल राज कीवर्ड नहीं चला। ठीक है, जनता के पास एक स्पष्ट विकल्प था, वरना पिछले चुनाव में जो हमारे भाई धनंजय गिरी जी कह रहे थे, भाई 7 महीने पहले ही तो चुनाव हुआ था, कहां आपने बांकीपुर में ये कार्यकर्ताओं और नेताओं और मंत्रियों और स्टार प्रचारकों की फौज लगा रखी थी? बिकॉज एक तरफ वही था जंगल राज, और दूसरी तरफ आपको घर से निकलने की भी जरूरत नहीं थी, और यही अहंकार आपको लगा शायद कि इस बार भी आपने जब इस प्रकार के वक्तव्य देना शुरू किया कि कौन है प्रशांत किशोर, प्रशांत किशोर का जमानत नहीं बचेगा। तो बांकीपुर की जनता, जो बिहार एक प्रबुद्ध राज्य के तौर पर जाना जाता है, और उस बिहार के सबसे प्रबुद्ध जो है राजधानी के सबसे प्रबुद्ध विधानसभा का चुनाव था, तो जनता ने कहा कि नहीं, हम कुत्ता बिल्ली को नहीं, हम इंसान को चुनेंगे। और प्रशांत किशोर जी की क्षमता का गुणगान मुझे नहीं लगता है कि करने की जरूरत है, आप सब उससे वाकिफ हैं। एक व्यक्ति क्या कर सकता है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमने पहले ही कहा था कि इससे ना सरकार बनेगी ना बिगड़ेगी। हाँ भाई, एनडीए की सरकार रहेगी बिकॉज 202 होते अब 201 है, लेकिन चेंज ये है कि बिहार के जो मुद्दे हैं अब आपको विधानसभा का दृश्य बदला हुआ दिखेगा, आपको पहली बार रॉ डेटा और आंकड़े और तथ्यों के आधार पर बहस सुनाई देगी। बिहार का बजट 11 महीने में पढ़ के बिहार के गृहमंत्री नहीं भाग पाएंगे, उनको ये जवाब देना पड़ेगा कि 3 महीने पहले अगर बिहार का बजट पेश हुआ था तो अभी मुख्यमंत्री जी 12,000 करोड़ या शिक्षा मंत्री जी 1130 करोड़ मांगने क्यों जा रहे हैं, तरह तरह के लेवी और टैक्सेस क्यों लगाए जा रहे हैं, छात्रों की जो फीस है डीआरसीसी के माध्यम से वो क्यों नहीं दिए जा रहे हैं, संवेदकों का जो विकास का कार्य हुआ पेमेंट क्यों नहीं दिए जा रहे हैं, भाई ट्रेजरी पर दो दो बार ये निर्देश क्यों हुआ कि हम कोई पेमेंट नहीं करेंगे, तो ऐसे बहुत। और इसके साथ साथ कानून व्यवस्था अपराध चरम पर है, इन सारे विषयों पर आपको प्रतिदिन प्रशांत किशोर जी की आवाज बिहार में गूंजती हुई आपको सुनाई देगी। जनसुराज अगले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, कुछ वर्षों में बिहार के सभी 38 जिलों में ऐसा ही सशक्त माहौल तैयार करेगा जिससे बिहार को एक एक प्रतिबद्ध बिहार के लिए विकल्प मिले।
0: लेकिन उसमें आवाज सुनने के लिए कंपटीशन उनका आरजेडी से भी रहेगा, आपको लग रहा है कि तो, केवल केवल एनडीए उनके विरुद्ध रहेगा या फिर जो जो सबसे मुख्य राजनीतिक दल है वहां पर?
2: एक लाइन में इसका जवाब दे देता हूं, पूरे बांकीपुर का चुनाव और खासकर ये ऐसा चुनाव जो विधानसभा के बाद तुरंत राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सीट पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, 30 वर्षों से वहां शासन रहा और जिनको जनता ने पिछली बार 45-50 हजार वोट दिए थे, लेकिन नामांकन में राष्ट्रीय जनता दल का कोई बड़ा नेता नहीं, प्रचार में उनके 4 सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं, गठबंधन के घटक दलों के कोई बड़े नेता नहीं। स्वयं तेजस्वी यादव जी चुनाव के 2 दिन पहले आए तो उनकी भी जो है प्रतिबद्धता और सीरियसनेस को ये दिखाता है कि वो कितने सीरियस थे। और भाई मेरा विषय जनसुराज है, मैं इतना मानता हूं कि बाकीपुर के 3,80,000 मतदाताओं ने ये दिखा दिया है कि वो सबसे प्रबुद्ध विधानसभा के मतदाता हैं और आगे बिहार को एक नया रास्ता, एक नई दिशा, एक नया राजनीति देखने को मिलेगा। यही हम बार बार कह रहे थे कि बिहार में अब ये जाति धर्म जो है इनके डर से वो, उनके डर से ये, जब भी कुछ होगा तो जंगल राज, टेक्सटाइल मिल हमको नहीं चाहिए, आईटी और सेमीकंडक्टर हब नहीं चाहिए, इसकी बात नहीं होगी, अब होगी और अब विधानसभा में औपचारिक रूप से होगी, अभी तक हम लोग सड़क पर कर रहे थे, हाँ अब विधानसभा के पटल पर ये बातें होंगी और आपको पटल पर जवाब देना होगा कि आपने जो 1 करोड़ रोजगार देने की बात की है उसका क्या, 2 करोड़ महिलाओं को रोजगार से जोड़ने की बात कही है उसका क्या, बिहार को 29 चीनी मिले देने की बात कही है उसका क्या, आईटी सेमीकंडक्टर और एआई हब बनाने की बात की है उसका क्या।
0: सौरभ जी, एक जिले में एक इंडस्ट्री लगाएंगे, ये बातें वो करें विधानसभा में और उनको वो विपक्ष भी इन बातों को उठाने दे जी, उनको उनको खुलकर उतना बोलने का समय मिले क्योंकि एक इकलौते कैंडिडेट है, पर पूरी पूरी जनता ये भी देखेगी कि एक कैंडिडेट के साथ कितना बदल सकता है। लेकिन बांकीपुर सीट से प्रशांत किशोर को भारी बढ़त इस समय बनी हुई है, 13,000 से ज्यादा वोटों का फासला अब उनका हो चुका है, 13,000 से ज्यादा वोटों से आगे निकल चुके हैं प्रशांत किशोर। यहां पर बहुत आसान लग रहा था इस सीट से जीत जाना बीजेपी कैंडिडेट का, लेकिन 23 राउंड की काउंटिंग के बाद, 23 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, प्रशांत किशोर आगे चल रहे हैं और कोई मामूली बढ़त नहीं है, बढ़त भी 13,000 से अधिक वोटों की है। और इसीलिए हम जो कुल 31 राउंड के की काउंटिंग और उसकी सूरत आने से पहले इन जो ये बढ़त है उसकी चर्चा इस रूप में कर रहे हैं कि 23 राउंड के बाद 13,269 वोटों से प्रशांत किशोर इस समय बांकीपुर में आगे चल रहे हैं। बहुत सारी चीजें यहां पर महत्वपूर्ण हैं क्योंकि भले ही एक सीट का उपचुनाव है लेकिन वो सीट 3 दशकों से बीजेपी के साथ रही, मौजूदा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट है, सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद का पहला उपचुनाव है। यहाँ प्रशांत किशोर, जहां पर जनसुराज का कार्यालय है वहां पर उनको हम देख रहे हैं और वो एक तरीके से एक विक्ट्री परेड वहां पर उनकी दिख रही है। गुजरात की जो सीट है वहां पर मांजलपुर सीट, वहां से बीजेपी की जीत हो गई है। 30,000 से अधिक वोटों से बीजेपी कैंडिडेट सतीश पटेल वहां से जीत दर्ज कर चुके हैं। मध्य प्रदेश के दतिया से इस समय कांग्रेस कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। लेकिन धनंजय गिरी जी, यहां पर जो उत्साह इस समय जनसुराज पार्टी के भीतर है, उनके कार्यकर्ताओं नेताओं के बीच जो है, आप लोग अब आगे का जो यहां से मतलब अब जो 4.5 साल का आगे का फासला है सरकार का, उसमें एक अलग तरह की राजनीति की अपेक्षा आप लोग कर रहे हैं?
3: देखिए श्वेता जी, जो हम 20 सालों से अगर जनता के बीच में है, जनता की सेवा में है, कहते हैं ना कि खुद से चल के नहीं ये तर्ज सुखन आया है, पांव बुजुर्गों के दबाए हैं तो ये फन पाया है। जनता की सेवा करके ही आज 202 का मैंडेट 20 साल के बाद भी अगर किसी पार्टी को मिला है, किसी से गठबंधन को मिला है एनडीए को, तो हम जनता की सेवा के कारण ही मिला है। ठीक है भाई, प्रशांत किशोर जी को बढ़त है तो उनके लिए शुभकामनाएं दी जा सकती हैं, और जो तमाम बातें कर रहे थे कि हम ये मुद्दा उठाएंगे वो मुद्दा उठाएंगे, वो मुद्दे हैं और मुद्दों पर से मुठभेड़ करके ही हम सरकार में और सियासत में और जन सरोकार में हैं। और मुखालफत से मेरी शख्सियत समझते हैं, विरोधियों का तो हम बहुत एहतराम करते हैं। हम लगातार चूंकि लंबे समय तक विपक्ष में रहे, विपक्ष में रहकर मर्यादित विपक्ष की भूमिका निभाई है। आज बिहार को हम जहां से निकाल करके ले आए हैं, जिस जगह पर लाकर जिस प्लेटफॉर्म पर हमने खड़ा किया है, और जिस तरह से एनडीए को 6-7 महीने पहले के चुनाव में हमने मैंडेट, जो भारी मैंडेट जनता ने दिया था, हम उसी को लेकर के आगे बढ़ेंगे। हमारा लाइन डिफाइन है, कितना आगे जाना है, क्या क्या काम करने हैं, विकास के कौन कौन से मानक गढ़ने हैं और किस मानक को हम गढ़ चुके हैं। पीके बहुत सी बातें कहते हैं लोगों के बीच में, और लोगों के बीच में तमाम डाटा तमाम आंकड़े रखते हैं, जनता ने उनको शायद स्वीकार किया है। इस बार जब रिजल्ट आ जाएगा तो पता चल जाएगा, तो उनको वो भी आए अपने जनसरोकार में, लोकतंत्र में अपनी भूमिका निभाए। बिहार एक विराट लोकतंत्र की, लोकतंत्र की जननी है। बुद्ध महावीर का बिहार, कपिल कनाथ का बिहार, लगातार आर्यभट्ट का बिहार, और बिहार में तो बहुत सी विभूतियां हुई हैं। उन गौरवशाली इतिहास की परंपरा में बिहार को हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, बिहार को लगातार निरंतर आगे के मार्ग पर लेकर के प्रशस्त कर रहे हैं हम। तो अब बिहार की जनता ने एक क्या डिसीजन लिया, क्या सोच कर लिया, इनके प्रोपेगेंडा को सही समझा या पीके में कोई संभावना उन्हें दिखी है, तो जनता मालिक है। लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है, और जनता जिसके पक्ष में जो निर्णय करती है उसे सर झुकाकर हम सभी स्वीकार करते हैं। हम कहां, मैंने पहले भी कहा कि हम किसी पर कोई आरोप प्रत्यारोप तो लगाते नहीं है, हम तो बड़े हृदय के साथ सभी का स्वीकार करते हैं। लोकतंत्र में आस्था रखने वाले, गहरी आस्था रखने वाले लोग हैं, इसलिए लोक में लोक जो तय करे इस तंत्र।
4: इतनी मेहनत की है तो जीतना, और बाकी वोटा जनता
5: पास्टिंग में सबको मिलेगा।
0: यहाँ पर जन सुराज के झंडे और तिरंगे के साथ थोड़ी देर पहले पीके निकले थे वहां पे, लेकिन अब वो लगता है भीतर अपने कार्यालय में दाखिल हो चुके हैं और जन सुराज के कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ पड़ी है यहां पर। बिहार विधानसभा चुनावों के जब नतीजे आए थे तो ऐसा लगा कि शायद एक सोशल मीडिया सेंसेशन केवल ये पार्टी रही, जन सुराज पार्टी, लेकिन एक सीट के उपचुनाव के नतीजे ने वो किस तरीके से और कितनी तेजी से बदला है वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। अधिकांश आपको युवा नजर आएंगे इस पूरी उस भीड़ में, जो सारे जन सुराज पार्टी के समर्थक हैं। हम अपने संवाददाता से भी वहां पर संपर्क करेंगे जल्दी, क्योंकि सामने जो जो तस्वीर दिख रही है, शशि भूषण हमारे साथ हैं। शशि, ये बहुत सारे संकेत लिए हुए एक सीट का नतीजा आज सामने आएगा, 23 राउंड की काउंटिंग अभी तक हो चुकी है, और जो बढ़त इस समय है वो वाकई इतनी बड़ी है कि इसे ये नहीं कहा जा सकता है कि इतने लोगों को आपने बरगला दिया या कुछ कुछ ऐसे मुद्दे जमीन के रहे हैं मुमकिन है जिन पर अब आगे वहां की रूलिंग कोलिशन को विचार करना होगा। बहुत तेजी से वो जीत की तरफ बढ़ते हुए इस समय प्रशांत किशोर दिख रहे हैं और जन स्वराज पार्टी को उम्मीद है कि यहां से बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय होगा जब वो मुद्दे रखे जाएंगे जो जन सरोकार के मुद्दे रहेंगे। शशि
6: बिल्कुल, और वो मुद्दे शायद प्रशांत किशोर अपने दिल दिमाग में रख करके आगे भी बढ़ रहे हो जिस वक्त वो थोड़ी देर पहले अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। और 23 राउंड की जो गिनती पूरी हुई है उसके बाद जो वोटों के नंबर्स हैं 1,38,000 से ज्यादा वोट पड़े थे बांकीपुर बाय इलेक्शन में। अब एक ही परिस्थिति या एक ही सूरत भारतीय जनता पार्टी को बचा सकती है या फिर बीजेपी उम्मीदवार की जीत हो सकती है अगर चमत्कार हो कि प्रशांत किशोर की वोटों की संख्या वहीं रुक जाए और नीरज सिन्हा जो है उनके उनको लगातार हर राउंड में वोट मिलता जाए जो अमूमन होता नहीं है। हम देख रहे हैं लगातार हर राउंड के बाद अगर नीरज सिन्हा को 2000 वोट मिल रहे हैं तो लगभग 3,000 से 4,000 वोट प्रशांत किशोर को मिल रहे हैं। तो ये ट्रेंड बहुत स्पष्ट है। जब शुरुआत हुई काउंटिंग की श्वेता तो बहुत दिलचस्प था, एक नंबर मूच से ही शुरुआत होती है काउंटिंग की और वो पूरा इलाका जो है ना जो एक नंबर से लेकर के 50 नंबर मूच का इलाका जो है वहां पर जो प्रशांत किशोर की लीड थी वो एक बड़ा संकेत दे गई थी कि शायद भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगने वाला है क्योंकि पटना का बोरिंग रोड, श्रीकृष्णापुरी, मंदिरी, वो मंदिरी जो नितिन नवीन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का घर वहीं बन रहा है, मतलब उनका घर है, आवासीय है। रविशंकर प्रसाद पटना साहिब से सांसद है, पटना विमेंस कॉलेज में वोट करने जाते हैं, उस बूथ पे भारतीय जनता पार्टी हार गई है। और साथ ही साथ आप देखिए जिस इलाके से उम्मीदवार का चयन किया भारतीय जनता पार्टी ने नीरज सिन्हा वो अपने मंडल में अपने बूथ में हार गए हैं। तो ये चीजें बताती है कि बीजेपी कहीं ना कहीं चुनाव तो बहुत हाई प्रोफाइल तरीके से लड़ रही थी, मैन टू मैन मार्किंग कर रही थी, संगठन को लगा के रखा, एक एक मंत्री एक एक गली में घूम रहे थे 10-10 दफे, लेकिन वो सारी चीजें बेकार हुई। फैक्टर्स क्या रहे चुनाव में ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहला हम कह सकते हैं एक तो भारतीय जनता पार्टी ने जो उम्मीदवार का चयन किया उस पर सवाल उठेंगे ही उठेंगे, आप उसको दरकिनार नहीं कर सकते हैं। ठीक है आपने पार्टी के एक निचले स्तर के मंडल स्तर के कार्यकर्ता को मंडल अध्यक्ष का उम्मीदवार बनाया नीरज सिन्हा को, लेकिन आपके पास कई बड़े चेहरे थे, कई ऐसे चेहरे थे जो ज्यादा पढ़े लिखे थे, प्रशांत किशोर जैसे नेता के सामने टक्कर ले सकते थे, लेकिन आपने कोशिश क्या की, आपने कोशिश ये की कि एक कार्यकर्ता को हम चुनाव दें और एक नैरेटिव करने की कोशिश करें कि हमारे तरफ से तो एक कार्यकर्ता आपको हरा सकता है। नतीजा क्या हुआ, ये मामला उल्टा पड़ गया। प्रशांत किशोर ये मैसेज देने में कामयाब रहे कि भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि वो किसी को भी सीट पे चुनाव लड़ा देगी वो जीत जाएगा, और यहीं पर उन्होंने कहीं ना कहीं जो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है वोटर्स का जो बीजेपी को वोट करते रहे हैं पिछले कई चुनाव दर चुनाव उसको कहीं ना कहीं साधने की कोशिश की और उसमें वो सफल रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हर बूथ पे जहां भी भारतीय जनता पार्टी मजबूत दिखती है उस बूथ पे इस बार प्रशांत किशोर
0: जी उसी जगह पर सुजीत गुप्ता इस समय मौजूद हैं। सुजीत आवाज आ रही है आपको उस भीड़ में, तो हमें दिखाएं क्या क्या क्या हो रहा है, कौन है कुछ लोग उस जी
7: बिल्कुल देखिए अभी एक कॉलेज काउंटिंग सेंटर पर जो है जन स्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पहुंच गए यहाँ पे और यहाँ पे जो जितने भी समर्थक है वो प्रशांत किशोर के साथ है और काउंटिंग सेंटर पर पहुंच गए क्योंकि जिस तरीके से शुरुआत से जो बर्फ बनी हुई थी वो लगातार बनी हुई है और यही वजह है कि जन स्वराज को पूरी उम्मीद है कि प्रशांत किशोर ने बाकी जीत हासिल कर ली है। यही समर्थक काउंटिंग सेंटर से है जहाँ प्रशांत किशोर अभी फौरन पहुंचे हैं और यहाँ अंदर जा रहे हैं। इस तस्वीर को साफ तौर पर काफी उत्साहित है लोग और जो जन स्वराज की समस्या को
0: जी आवाज आपकी थोड़ी कम आ रही है सुजीत, लेकिन हाँ बात कीजिए। चलिए काफी काफी शोर, काफी भीड़ और काफी जो जोश है लोगों का क्योंकि इस समय काउंटिंग सेंटर के बाहर की ये तस्वीरें सुजीत हमें दिखा रहे थे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, धनंजय जी, कुमार सौरभ जी। लेकिन 24 राउंड की काउंटिंग के बाद बांकीपुर में प्रशांत किशोर की लीड अभी भी न केवल कायम है बल्कि थोड़ी सी और मजबूत होती हुई दिख रही है। 13,868 वोटों के साथ वो आगे चल रहे हैं। 31 कुल राउंड की काउंटिंग अभी होनी है, यानी कि 7 राउंड अभी बाकी है, लेकिन 24 राउंड के बाद भी एक बहुत बड़ी बढ़त प्रशांत किशोर के साथ इस समय दिख रही है। काउंटिंग सेंटर के बाहर की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई और साथ में जो जन स्वराज पार्टी का कार्यालय है उसके बाहर की भी तस्वीरें आपको दिखाई हैं। इस खबर पर खास नजर हमारी बनी हुई है, ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
10: You may already think of TuneIn as your go-to audio app, but it's also your go-everywhere audio app. Because TuneIn works on just about every device you already use. Smart speakers? Yep. In your car? Absolutely. Phone or tablet? Yeah, of course. Wherever you are, your audio comes with you. And if you want to go hands-free, just say open TuneIn Live on your Alexa-enabled device and follow the interactive prompts to find the station you're looking for. No tapping, no searching. Just press play with your voice.
11: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
12: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933 बरसों से सरसों।
13: कुछ तो बात है इस तेल में।
14: जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिस कहानी के बहुत अच्छे परिणाम है और बहुत दुखद परिणाम है। भारत एक राजमहल है, समृद्ध है, सोने की चिड़िया है। गहरी बात है वो ये है कि इस राजमहल के चारों तरफ झोपड़ पट्टियां हैं, झुग्गियां हैं, चुनौती वाले क्षेत्र हैं। भारत आए अंग्रेज, यहाँ के लोगों को देखा उन्होंने, जब यहाँ के ग्रंथों को ट्रांसलेट करना शुरू किया, पढ़ा उन्होंने कि ब्राह्मण का जन्म मुंह से हुआ है। ये डिपार्टमेंट बनाया ही गया था शोषण के लिए। कौन सा? पुलिस। किसने बनाया था? कॉर्नवालिस ने। और पुलिस डिपार्टमेंट की खास बात यह है कि जब उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट भारत में बनाया तब वो डिपार्टमेंट ब्रिटेन में नहीं था। जुडिशरी, मॉडर्न जुडिशरी उन्होंने अपने फायदे के लिए बनाया। अंग्रेजी कानून, अंग्रेजी जज। तुम कल्पना कर सकते हो आधुनिक काल से पहले एलजीबीटी सड़क पर आकर प्रदर्शन करें, इनको तोप में बांध के उड़ा दिया होता।
15: तो क्या सिर्फ अब हिस्ट्री सिर्फ जो बाहर से लोग आए थे यहाँ पे शासन करने के लिए उनको विलन के रूप में दिखा रहे हैं? या फिर
14: जो भी सरकार सत्ता में आती है वो शिक्षे का इस्तेमाल करती है अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने। वंदे मातरम पे बहस हो रही है, हर दिन मंदिर मस्जिद पे बहस हो रही है, मुसलमान पे बहस। ये संसद बनी किस लिए है? औरंगजेब जो था भैया डेली 200 किलो जनेऊ तोलता था। कितना? 200 किलो भी, मतलब डेली वो कम से कम 10,000 ब्राह्मणों को मारता था, हिंदुओं को। मैं देखता हूँ मुसलमानों को और हिंदुओं को, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ। पहले मैं सोचता था पुलिस वाले यहाँ लगा के पॉइंट ब्लैंक से क्यों मारते हैं, क्योंकि यहाँ ताला लगा हुआ है, तो इसीलिए मारते हैं कि यहाँ मारे तो अगले जन्म में खुला हुआ रहेगा।
16: आपको लगता है कि आज से 5 साल बाद 10 साल बाद देश फिर बट सकता है?
14: इस बात को मैं रिपीटेडली कह चुका हूँ, एक विस्फोट होगा बेटा।
17: लेकिन आपके पढ़ाने के तरीके मुझे एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट लगता है कि आप जनता को ही बोल देते हैं कि जनता बड़ी बेवकूफ है और फिर आप कहते हैं कि हमारे देश का युवा पढ़ना नहीं चाहता है।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: Diehard music fan? Quello Concerts brings you thousands of full-length concert films and behind-the-scenes music documentaries. From today's icons to yesterday's legends, we have it all. Quello Concerts by Stingray. Now available for free on Pluto TV. Stream now, pay never.
1: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
2: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
3: कुछ तो बात है इस तेल में।
4: भाजपा सरकार के 10 साल में 26,000 स्कूल बंद हुए हैं। आपके पास कॉपी पहुंच गई होगी, उसमें पहले पेज पर अपील है। और कुल सरकारी स्कूल जो बंद हुए हैं और मर्जर के नाम पर जो बंद हुए हैं वो 26,386 हैं। कुल बच्चों का नामांकन जो घटा है, जो एनरोलमेंट बढ़ा है वो 28 लाख के लगभग है, जिसमें पीडीए ओबीसी एससी एसटी के जो बच्चे हैं वो 25 लाख हैं। बेटियों का जो नामांकन कटा है वो 16 लाख है। सरकारी प्राइमरी शिक्षकों की संख्या घटी है वो 62,000 है। केवल स्कूल बंद होने से बच्चों की पढ़ाई नहीं छूट रही है, बेटियों की पढ़ाई नहीं छूट रही, साथ ही साथ ये नौकरी नहीं देना चाहते, सरकारी नौकरियां खत्म कर रहे हैं।
5: असल बात यह है कि 2017 में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और अखिलेश जी को जो करारी हार का सामना करना पड़ा, उस हार के बाद से अखिलेश यादव जी पूरी तरह से हाइबरनेशन में चले गए हैं। वे इस तरह के गलत बयानों को देकर के, गलत तथ्यों को प्रस्तुत करके आम जन को भ्रमित करने का और भड़काने का प्रयास करते हैं। हमारी सरकार ने शिक्षा को एक नई दिशा देने का काम किया है।

0: देख रहे हैं रणभूमि और बात सबसे पहले बांकीपुर के रण की करेंगे। बिहार का ये रण बांकीपुर का, जहां जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने लगातार हर राउंड के बाद बीजेपी पर बीजेपी के गढ़ में ही बढ़त बना रखी है। अब तक जो कुल 31 राउंड है उनमें 24 राउंड की गिनती हो चुकी है। प्रशांत किशोर ने बीजेपी के उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा पर 13,868 वोटों की बढ़त अब तक बना ली है। जन स्वराज पार्टी के खेमे में जश्न का, जीत का सा माहौल इस समय है। पार्टी के कार्यकर्ता पटना की सड़कों पर जीत का जश्न मना रहे हैं, झूम रहे हैं। जन स्वराज के लिए ये ऐतिहासिक एक बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि ये जीत उसे उस बांकीपुर सीट पर मिलती नजर आ रही है जो बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट है, और उनके राज्यसभा जाने के बाद यह सीट खाली हुई थी। जब वो 2025 में चुनाव जीते थे तो एक बहुत बड़ी मार्जिन से वो जीते थे, लगभग उनको 98,299 वोट मिले थे। लेकिन इस समय जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं उनको महज कुछ 30-35% वोट मिल रहा है। नीरज कुमार सिन्हा को 34% वोट अभी तक मिल रहा है। इस सीट पर बीजेपी का जो दबदबा है ये बीते 31 वर्षों से बना हुआ है। जी हाँ, 1995 से 2005 तक नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा लगातार यहां से विधायक चुने गए। उनके निधन के बाद 2006 में जो उपचुनाव हुआ उसे लेकर 2025 के मुख्य विधानसभा चुनावों तक उनके बेटे नितिन नवीन लगातार 5 बार इस सीट पर बीजेपी को वो भारी बहुमत से जीत दिला चुके हैं। लेकिन उन्होंने जब ये सीट खाली की तो अब उस पर जो चुनाव हो रहा है बीजेपी समय काफी पीछे चल रही है, और बीजेपी के पिछड़ने का सिलसिला और फासला दोनों लगातार बढ़ रहा है। बांकीपुर के चुनाव परिणाम पर न केवल पूरे बिहार की बल्कि पूरे देश की, दिल्ली के राजनीतिक गलियारों की खास तौर पर नजर बनी हुई है, क्योंकि इस चुनाव को बहुत बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है, न केवल बीजेपी की दृष्टि से बल्कि आरजेडी और बिहार की राजनीति के दृश्य से भी।
1: बांकीपुर, आई थैंक द पीपल ऑफ बांकीपुर फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट।
2: जय बिहार, जय बिहार।
1: कितनी मेहनत की है तो जीतना, और बाकी पूरा जनता जीता।
0: तो जानवी दास, जन स्वराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर की पत्नी देर कह रही है, तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रही हूं वोटरों का, उन्होंने ये जो जीत दिलाने और अभी बढ़त बन की जो जबरदस्त बनती जा रही है। शशि भूषण मेरे सहयोगी ताजा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शशि, पहले राउंड से देखा जाए तो पहले 800 वोटों की बढ़त, फिर पांचवें राउंड में 2500 वोटों की बढ़त, चौदहवें राउंड में लगभग वो 11,000 और अब 13,500 की बढ़त, हर राउंड में बढ़त बनती जा रही है, तो हर जगह उनका मतलब उनको वोट मिल रहा है।
3: बिल्कुल मिल रहे हैं, और जब जनता का जनादेश मिलता है गौरव, तभी इस तरह की जीत जो है वो किसी उम्मीदवार की हो पाती है। प्रशांत किशोर के लिए अच्छी बात ये रही है कि पहले राउंड से, मतलब वो सेगमेंट जहां पर सबसे अधिक भारतीय जनता पार्टी मजबूत मानी जाती है इस असेंबली सेगमेंट में, उन बूथों पर ही शुरुआती बढ़त प्रशांत किशोर ने ले ली, और शुरुआती राउंड में उन्होंने 800 से ज्यादा वोटों से बढ़त ली, सिवाय तीसरे राउंड के जिसमें कुछ देर के लिए 20 वोट से बताया जा रहा है कि नीरज सिन्हा आगे हुए थे। हालांकि वो फाइनल टैली नहीं थी, एक ऐसा सेगमेंट आया जब 20 वोट से नीरज सिन्हा आगे थे, उसको आप छोड़ दीजिए। तो अब तक जो 24 राउंड की मतगणना हुई है, प्रशांत किशोर ने हर राउंड के बाद बढ़त बनाई है, और ना अपने बढ़त बना के रखी है बल्कि बढ़त को बढ़ाई भी है। अब तक 1,00,000 से ज्यादा वोटों की गिनती हो चुकी है। कुल वोट जो पड़े थे इस विधानसभा चुनाव में वो 1,38,000 से थोड़े ज्यादा पड़े थे।
0: बड़ी खबर इस समय आ रही है, 25 राउंड हो गए और बांकीपुर में प्रशांत किशोर बीजेपी

0: चल रहे हैं यहाँ पर। 25 राउंड की काउंटिंग के बाद 14,953 वोटों से आगे चल रहे हैं। केवल 6 राउंड की गिनती इस समय बाकी है और इसीलिए अब पटना की सड़कों पर ये देखिए जन सुराज के जितने भी कार्यकर्ता हैं और प्रशांत किशोर खुद बहुत प्रसन्न नजर आ रहे हैं, क्योंकि 6-7 महीने पहले जब वो खुद नहीं लड़े थे, केवल अपनी पार्टी को उन्होंने लड़वाया था, तो बहुत कुछ उनके बारे में कहा गया था, लेकिन अब जिस तरह से वो खुद लड़े हैं, एक बहुत बड़ा संदेश। देखिए ये जो संदेश वो दे रहे हैं 25 राउंड की गिनती के बाद जो 14,953 वोटों से आगे चल रहे हैं, बीजेपी के लिए बड़ा झटका, लेकिन बीजेपी के साथ साथ आरजेडी के लिए बड़ा झटका ये होगा। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे बीजेपी की, नितिन नबीन की ये सीट जिसको मजबूती से वो पांच बार के चुनावों में जीत चुके थे। आखिर एकाएक स्थिति पलटी कैसे कि पिछली बार मतलब 6-7 महीने पहले वो लगभग 98,000 वोट लेकर आए थे नितिन नबीन खुद, लेकिन इस बार जब नीरज कुमार सिन्हा को खड़ा किया गया तो जनता बिल्कुल बदल गई, इसका क्या कारण नजर आ रहा है?
1: हम लोगों ने जो बात रखी थी, ये विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, ये भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये संदेश देने का एक प्रयास है बिहार की जनता के द्वारा कि बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। आपको जनता ने 202 विधायक जिताए हैं, किसी अपराधी किसी गलत चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मत दीजिए, अच्छे आदमी को बनाइए ताकि बिहार में भी शिक्षा हो, बिहार में भी बच्चों के लिए रोजगार हो, बिहार के बच्चों को भी बाहर मजदूरी करने न जाना पड़े। ये संदेश बांकीपुर के लोगों ने दिया है। बाकी विधायक जीतना हारना ये तो राजनीति है, चलता रहता है। जिन लोगों ने मत दिया उनका धन्यवाद कर रहे हैं, जिन्होंने मत नहीं दिया है उनको यही कहेंगे कि आपसे आपका विश्वास जीतने के लिए और मेहनत और प्रयास करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार को अच्छा नेतृत्व मिलना चाहिए, बिहार सुधरना चाहिए, और लोकसभा से पहले मोदी जी को, भाजपा को, अमित शाह जी को ये देखना चाहिए कि बिहार में कैसे बेहतरी हो, बिहार में बच्चों को रोजगार कैसे हो, पलायन कैसे बंद हो। एकमात्र यही उद्देश्य है, हम लोग को विधायक बन के ठेका पट्टा नहीं करना है, एक और एकमात्र उद्देश्य है, चाहते हैं कि बिहार में बेहतरी हो, बिहार में भी सिर्फ 5 किलो अनाज के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट न मांगा जाए। अगर 25 MP गुजरात से जीत कर गए हैं, प्रधानमंत्री बनाने में मोदी जी को गुजरात के लोगों ने योगदान किया है, तो बिहार के भी 13 करोड़ लोगों ने आंख बंद करके मोदी जी को वोट दिया है। तो जितनी चिंता उनको गुजरात की है, उतनी थोड़ी चिंता उनको बिहार की भी करनी चाहिए। बिहार के जो 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चे बाहर मजदूरी कर रहे हैं, उनकी चिंता होनी चाहिए। बिहार के लिए कोई एक स्पेशल प्रोग्राम बनाना चाहिए ताकि बिहार से पलायन बंद हो, कोई भी बच्चा यहाँ से 10-15 हज़ार रुपए के लिए अपने घर परिवार समाज को छोड़कर उसको गुजरात, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, कोयम्बटूर, तमिलनाडु, कर्नाटक न जाना पड़े। इसी उद्देश्य को लेकर हम लोग यहाँ आए हैं और आज की जीत उसी बात को फिर से मजबूत करने के लिए है कि NDA को, भाजपा को लोगों ने जिताया है। अब भाजपा के नेतृत्व की ये जिम्मेवारी है कि किसी ऐसे व्यक्ति को बिहार का मुख्यमंत्री बनाए जो कि बिहार में रोजगार लाए, बिहार में शिक्षा की स्थिति को सुधारे, भ्रष्टाचार कम हो और सबसे बढ़कर पलायन बंद हो। ये सीधा सीधा मैसेज है। 30 बरस का जो गढ़ है वो सिर्फ 30 दिनों में ढह गया। वो सिर्फ इसलिए ढहा है कि बिहार के लोग भी चाहते हैं कि अब 4 किलो 5 किलो अनाज और जाति से ऊपर उठकर हम लोग के बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार काम करे। अगर वो काम नहीं करेंगे तो आगे चुनाव के परिणाम उनको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। बिल्कुल देखिए, ऐसा है, लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है। सम्राट चौधरी का जो चाल चरित्र चेहरा है वो पब्लिक डोमेन में है। अगर आप किसी अपराधी को बिहार का राजा मुख्यमंत्री बनाएंगे तो बिहार की तरक्की नहीं हो सकती है। तो हम लोग की लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, बहुमत भाजपा का है, NDA का है, मुख्यमंत्री तो उन्हीं का बनेगा। हम लोग बस इतना ही आग्रह कर रहे हैं, बिहार की जनता इतना ही आग्रह कर रही है, बांकीपुर की जनता इतना ही मोदी जी से आग्रह कर रही है कि किसी अच्छे चरित्रवान काबिल आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए, ताकि बिहार के लोग भी इस बात का गौरव, बिहारी होने का गौरव कर सके, ताकि हम लोग के बच्चों के लिए भी पढ़ाई रोजगार की व्यवस्था हो, सब कुछ सुविधा अगर गुजरात के ही लोगों को मिलेगी तो सिर्फ बिहार के लोग कहाँ जाएंगे। गुजरात के लोग 1,00,000 करोड़ के बुलेट ट्रेन पर चलेंगे वो ठीक है, लेकिन हम लोगों को कम से कम पैसेंजर भी तो मिलना चाहिए। बिहार के लोग सिर्फ मजदूरी करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं, और 5 साल के लिए भाजपा को मैंडेट मिला है, उनको अच्छा आदमी देना चाहिए, अच्छे लोगों को मंत्रिमंडल में रखना चाहिए, ताकि बिहार की तरक्की हो, बिहार का विकास हो।
2: अगला टारगेट क्या है प्रशांत जी?
1: हमारी
3: पहला काम क्या होगा सर जीतने के जीत के बाद?
1: भाई पहला काम बस यही है कि बाकीपुर की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, अपनी ओर से जो हो सकेगा बाकीपुर में सुधार का प्रयास करेंगे। अगले 2-3 महीने में आपको वो चीज दिखेंगी भी। मैं कोई बहुत बड़ी बड़ी बात बोलना नहीं चाहता हूँ। विधायक, मेरे विधायक बनने से बाकीपुर बेंगलोर नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ सुधार होता अगले 2-3 महीने में दिखेगा। बड़ी बात यह है कि ये चुनाव बाकीपुर के नाली गली पर नहीं लड़ा गया है, ये चुनाव लड़ा गया है कि बिहार का नेतृत्व किसके हाथ में होना चाहिए। और बाकीपुर की जनता ने ये संदेश दिया है भाजपा के नेतृत्व को कि भाई आप अच्छे आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए, सम्राट चौधरी की जगह किसी कुशवाहा को बनाना है बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कुशवाहा को ही बनाइए, लेकिन कुशवाहा समाज के ही किसी अच्छे आदमी को बनाइए। हर हालत में बिहार की तरक्की होनी चाहिए, बिहार का विकास होना चाहिए। व्यक्ति कोई जीते, दल कोई जीते, लोकतंत्र है, हार जीत होती रहती है, कोई फर्क नहीं।
0: बड़ी बात कह रहे हैं समय प्रशांत किशोर। बांकीपुर में बढ़त के बाद प्रशांत किशोर का पहला बयान। प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर बड़ा वार किया, कहा ये जो संदेश है ये बिहार की जनता का भारतीय जनता पार्टी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, केंद्र को बड़ा संदेश है। सम्राट चौधरी के बनाए के बजाय किसी चरित्रवान व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए, ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए जो बिहार के विकास के लिए काम करे, किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं जो केवल शिक्षा रोजगार बाहर ना जाना पड़े। इन मुद्दों पर वोट आया है 2029 से पहले पलायन बंद हो, ये जो वोट पड़ा है ये ठेका पट्टा के लिए नहीं पड़ा है। धर्म जाति से ऊपर उठकर, 5 किलो अनाज से ऊपर उठकर पलायन बंद हो, जो वोट पड़े वो बिहार के विकास के लिए पड़े, पलायन को रोकने के लिए बने, केवल 15,000 रुपए की नौकरी के लिए बिहार के लोगों को बाहर न जाना पड़े। और लगातार अपने पूरे चुनावी प्रचार में प्रशांत किशोर इस चुनाव को एक रेफरेंडम के रूप में देख रहे थे, क्योंकि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद और सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये जो पहला चुनाव है इसे एक तरह से वो रेफरेंडम के रूप में देख रहे थे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर। और अब उन्होंने कह दिया है कि जनता ने जो बढ़ चढ़कर उनको वोट दिया है, बांकीपुर की जनता ने, वो यही संदेश देता जाता है कि किसी चरित्रवान व्यक्ति को, ये उनके शब्द है, उसको मुख्यमंत्री बनाने की आवश्यकता है। सुनिए।
1: बांकीपुर की जनता की जीत है, और जैसा कि चुनाव प्रचार के दौरान हम लोगों ने जो बात रखी थी, ये विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, ये भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये संदेश देने का एक प्रयास है बिहार की जनता के द्वारा कि बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। आपको जनता ने 202 विधायक जिताए हैं, किसी अपराधी, किसी गलत चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मत दीजिए, अच्छे आदमी को बनाइए, ताकि बिहार में भी शिक्षा हो, बिहार में भी बच्चों के लिए रोजगार हो, बिहार के बच्चों को भी बाहर मजदूरी करने न जाना पड़े। ये संदेश बांकीपुर के लोगों ने दिया है। बाकी विधायक जीतना हारना ये तो राजनीति है, चलता रहता है। जिन लोगों ने मत दिया उनका धन्यवाद कर रहे हैं, जिन्होंने मत नहीं दिया है उनको यही कहेंगे कि आपसे, आपका विश्वास जीतने के लिए और मेहनत और प्रयास करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार को अच्छा नेतृत्व मिलना चाहिए, बिहार सुधरना चाहिए, और लोकसभा से पहले मोदी जी को, भाजपा को, अमित शाह जी को ये देखना चाहिए कि बिहार में कैसे बेहतरी हो, बिहार में बच्चों को रोजगार कैसे हो, पलायन कैसे बंद हो, एकमात्र यही उद्देश्य है। हम लोग को विधायक बन के ठेका पट्टा नहीं करना है, एक और एकमात्र उद्देश्य है, चाहते हैं कि बिहार में बेहतरी हो। बिहार में भी सिर्फ 5 किलो अनाज के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट न मांगा जाए। अगर 25 MP गुजरात से जीत कर गए हैं, प्रधानमंत्री बनाने में मोदी जी को गुजरात के लोगों ने योगदान किया है, तो बिहार के भी 13 करोड़ लोगों ने आंख बंद करके मोदी जी को वोट दिया है। तो जितनी चिंता उनको गुजरात की है, उतनी थोड़ी चिंता उनको बिहार की भी करनी चाहिए। बिहार के जो 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे बाहर मजदूरी कर रहे हैं, उनकी चिंता होनी चाहिए। बिहार के लिए कोई एक स्पेशल प्रोग्राम बनाना चाहिए ताकि बिहार से पलायन बंद हो। कोई भी बच्चा यहाँ से 10-15 हजार रुपए के लिए अपने घर परिवार समाज को छोड़कर उसको गुजरात, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, कोयम्बटूर, तमिलनाडु, कर्नाटक न जाना पड़े। इसी उद्देश्य को लेकर हम लोग यहाँ आए हैं, और आज की जीत उसी बात को फिर से मजबूत करने के लिए है कि NDA को, भाजपा को लोगों ने जिताया है। अब भाजपा के नेतृत्व की ये जिम्मेवारी है कि किसी ऐसे व्यक्ति को बिहार का मुख्यमंत्री बनाए जो कि बिहार में रोजगार लाए, बिहार में शिक्षा की स्थिति को सुधारे, भ्रष्टाचार कम हो, और सबसे बढ़कर पलायन बंद हो। ये सीधा सीधा मैसेज है। 30 बरस का जो गढ़ है वो सिर्फ 30 दिनों में ढह गया। वो सिर्फ इसलिए ढहा है कि बिहार के लोग भी चाहते हैं कि अब 4 किलो 5 किलो अनाज और जाति से ऊपर उठकर हम लोग के बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार काम करे। अगर वो काम नहीं करेंगे तो आगे चुनाव के परिणाम उनको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। बिल्कुल देखिए, ऐसा है, लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है। सम्राट चौधरी का जो चाल चरित्र चेहरा है वो पब्लिक डोमेन में है। अगर आप किसी अपराधी को बिहार का राजा मुख्यमंत्री बनाएंगे तो बिहार की तरक्की नहीं हो सकती है। तो हम लोग की लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है। बहुमत भाजपा का है, NDA का है, मुख्यमंत्री तो उन्हीं का बनेगा। हम लोग बस इतना ही आग्रह कर रहे हैं, बिहार की जनता इतना ही आग्रह कर रही है, बांकीपुर की जनता इतना ही मोदी जी से आग्रह कर रही है कि किसी अच्छे चरित्रवान काबिल आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए, ताकि बिहार के लोग भी इस बात का गौरव, बिहारी होने का गौरव कर सकें, ताकि हम लोग के बच्चों के लिए भी पढ़ाई रोजगार की व्यवस्था हो, सब कुछ सुविधा। अगर गुजरात के ही लोगों को मिलेगी तो सिर्फ बिहार के लोग कहाँ जाएंगे? गुजरात के लोग 1 लाख करोड़ के बुलेट ट्रेन पर चलेंगे वो ठीक है, लेकिन हम लोगों को कम से कम पैसेंजर भी तो मिलना चाहिए। बिहार के लोग सिर्फ मजदूरी करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं, और 5 साल के लिए भाजपा को मैंडेट मिला है, उनको अच्छा आदमी देना चाहिए, अच्छे लोगों को मंत्रिमंडल में रखना चाहिए ताकि बिहार की तरक्की हो, बिहार का विकास हो।
2: अगला टारगेट क्या है प्रशांत जी?
1: हमारी
3: पहला काम क्या होगा सर जीतने के जीत के बाद?
1: भाई पहला काम बस यही है कि बांकीपुर की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, अपनी ओर से जो हो सकेगा बांकीपुर में सुधार का प्रयास करेंगे। अगले 2-3 महीने में आपको वो चीज दिखेंगी भी। मैं कोई बहुत बड़ी बड़ी बात बोलना नहीं चाहता हूँ। विधायक, मेरे विधायक बनने से बांकीपुर बेंगलोर नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ सुधार होता अगले 2-3 महीने में दिखेगा। बड़ी बात यह है कि ये चुनाव बांकीपुर के नाली गली पर नहीं लड़ा गया है, ये चुनाव लड़ा गया है कि बिहार का नेतृत्व किसके हाथ में होना चाहिए। और बांकीपुर की जनता ने ये संदेश दिया है भाजपा के नेतृत्व को कि भाई आप अच्छे आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए, सम्राट चौधरी की जगह किसी कुशवाहा को बनाना है बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कुशवाहा को ही बनाइए, लेकिन कुशवाहा समाज के ही किसी अच्छे आदमी को बनाइए। हर हालत में बिहार की तरक्की होनी चाहिए, बिहार का विकास होना चाहिए। व्यक्ति कोई जीते, दल कोई जीते, लोकतंत्र है, हार जीत होती रहती है, कोई फर्क नहीं।
0: तो जो सीट दशकों से भारतीय जनता पार्टी के पास थी, प्रशांत किशोर ने एक बहुत बड़े प्रहार में, एक तरह से कहा जाए, उसे ले लिया है। लगभग जीतने की दहलीज पर वो पहुंच चुके हैं। 24 राउंड की गिनती के बाद 15,000 से ज्यादा वोटों से उनकी बढ़त बना ली है उन्होंने। इस पर विजय कुमार सिन्हा का क्या कहना है, हम आपको वो भी सुनवाते हैं।
4: ये लोकतंत्र की भूमि है और जनता के जनादेश को भारतीय जनता पार्टी हमेशा शिरोधार्य की है। हम कभी भी ठीकरा चुनाव आयोग या EVM पर नहीं फोड़ते हैं, ये विपक्ष के लोगों के तरह। लोकतंत्र में हम विश्वास करते हैं, संवैधानिक संस्था का हम सम्मान करते हैं और जनता के जनादेश को हम स्वीकार करते हैं।
5: सर कहां चूक हो गई? सर क्यों चूक हो गई? सर
4: पार्टी गहन समीक्षा करेगी। बिहार कि यही धरती है जहां अभी 6 महीना भी नहीं बीता है 202 सीट भी हम जीते हैं, ये याद रखें।
0: तो बीजेपी का कहना है कि वो इस हार की समीक्षा करेंगे। हालांकि अभी 25वें राउंड की गिनती हो गई है, कुल मिलाकर 31 राउंड की गिनती होनी है, लेकिन 25 राउंड वोटिंग के गिनती के बाद प्रशांत किशोर जबरदस्त तरीके से आगे निकल रहे हैं। 24 राउंड के बाद वो 13,868 वोट से आगे थे, 26 राउंड के बाद, अब 26 राउंड हो गए हैं, 26 राउंड की गिनती के बाद 15,864 वोटों से आगे हैं। अभूतपूर्व इस विजय को माना जाएगा, और खासतौर पर उस दृष्टि से देखा जाए जब 6 महीने पहले खुद नहीं लड़े थे लेकिन उनकी पार्टी की बहुत ही खराब स्थिति रही थी और लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था केवल पेपर टाइगर है, लेकिन अब बदल दिया। शशि भूषण मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शशि, अपने पूरे चुनाव प्रचार में वो लगातार कह रहे थे प्रशांत किशोर कि एक तरह से रेफरेंडम है, जनमत संग्रह है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर, क्योंकि ये पहला चुनाव है जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं थे, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री थे। जनता ने जो वोट दिया, क्या इसे असल में एक तरह से रेफरेंडम माना जाए कि सम्राट चौधरी के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ ये जबरदस्त वोट पड़ा है?
5: देखिए गौरव, मैं लगातार बता रहा हूँ, 10वें राउंड की गिनती के बाद जब वोट के आंकड़े सामने आए थे उसके बाद ये लगने लगा था कि प्रशांत किशोर कहीं भारी पड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पे, और उसी वक्त मैंने दो बातें कोट करी थी। एक ये, पहला ये कि प्रशांत किशोर ने जो इस पूरे चुनाव का एजेंडा है उसको इस तौर पे सेट किया कि भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक वोटर तबका है वो भी ये मान रहा था कि जो भारतीय जनता पार्टी ने उजाड़ दिया बांकीपुर में वो उनके मुकाबले इनकम्पिटेंट था। तो ये पहली बात ये। दूसरी बात वो कह रहे थे कि आपको एक विधानसभा चुनाव में वोट नहीं करना है, केवल एक विधायक नहीं चुनना है, आपको इतनी जोर से घंटी जमानी है ईवीएम की कि दिल्ली में बैठे भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व तक मैसेज है। और तीसरी बात वो कहते थे कि सम्राट चौधरी को जनादेश नहीं मिला था, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए मिला था, सम्राट चौधरी जो है वो उस लेवल के नेता नहीं है, उन पर कई तरह के आरोप वो लगाते थे, और ये कहते थे कि अगर आप यहाँ हमें जीत दिलाइएगा, भारतीय जनता पार्टी को झटका दीजिएगा, तो सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। तो अब वही बातें वो कह रहे हैं जो बातें वो पहले चुनाव कैंपेन के दौरान कह रहे थे। और देखिए आज उन्होंने जब शुरुआती बढ़त के बाद जब सबसे बड़ी बढ़त पे वो पहुंचे, और एक बात मैं कल्पना कर लो गौरव, अब जितनी बढ़त है प्रशांत किशोर की, अब वो हार नहीं, हार का सामना उनको नहीं करना है, मतलब वो जीत उनकी पक्की मानी है, क्योंकि राउंड इतने हो चुके हैं और वोटों के नंबर सब इतने कम बचे हैं कि अब वो वोट पूरे के पूरे भी अगर नीरज सिन्हा को मिल जाए तो नीरज सिन्हा चुनाव नहीं जीत सकते हैं। तो अपने आप में ये बहुत दिलचस्प है, और इसी वजह से प्रशांत किशोर मीडिया से बात कर रहे हैं, उन्होंने वही तमाम बातें कही हैं, उन्होंने पलायन का मामला उठाया, शिक्षा का, रोजगार का मामला उठाया,
0: और एक बहुत बड़ा संदेश जो वो लगातार कह रहे थे कि ईवीएम का बटन दबाओ, तो ये केवल बिहार की जनता को नहीं, ये केवल ये देश में केंद्र को यह संदेश जाना चाहिए। कई इसके महत्वपूर्ण पहलू हैं। देखिए वो जो दिल्ली में भी छात्रों का अनरेस्ट था, उसके बाद ये पहला चुनाव का नतीजा निकल कर आया है, क्या कहता है ये बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को भी इसको करना पड़ेगा, अच्छे से सोचना पड़ेगा। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात, ईवीएम की लाज बच गई, प्रजातंत्र की लाज बच गई और प्रशासन की लाज बच गई कि केवल चुनाव एक तरफा नहीं होते, हर पहलू पर रहेगी नजर। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत होंगे हाजिर, देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
7: Hi, I'm Jennifer Garner. Being a business owner takes hard work and a whole lot of miles. So once upon a farm needed a serious business card. We chose the Capital One Venture X business card. With unlimited double miles on every purchase, we earn rewards on all the things we need to grow our business. Venture X business gives us big purchasing power so we can spend more and earn more. We redeemed miles to travel the country and partner with new stores. Capital One, what's in your wallet?
8: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
9: Hey, this is Freddie Coleman from Freddie and Harry. Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
10: Third period comes to an end, game two, headed to overtime.
9: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a section of action. They score! Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen. Sokudo.
10: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
11: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
12: कुछ तो बात है इस तेल में।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जब बात हो सोयाबीन और मक्के की फसलों को सूंडियों से बचाने की, तो हर असली हीरो की पहली पसंद है क्रिस्टल क्रॉप का प्रोक्लेम एक्स्ट्रा, जीते हर बाजी।
3: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी।
4: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
6: सरसों
7: द गवर्नमेंट कंट्रोल्ड एवरीथिंग। They didn't want too much private industry.
8: The big family groups at that time, who traditionally were dominating Indian industry at that time, slowly, I think new entrepreneurs came up.
7: There were businessmen who were coming into prominence and rising. Nobody had heard of Vijay Mallya's father, Vittal Mallya, at that time, because he very quietly operated to get this monopoly on the brewery and liquor business.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: Summer hits blends old school jams with fresh favorites so you can get the party started. Listen to your summer soundtrack made for sunshine, vibes, and summer heat. Hear all your favorites and more right here on TuneIn. Explore the new Stingray music collection with stations like this. Just search Summer Hits and start listening now.
3: जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिस कहानी के बहुत अच्छे परिणाम हैं और बहुत दुखद परिणाम हैं। भारत एक राजमहल है, समृद्ध है, सोने की चिड़िया है। गहरी बात है वो ये है कि इस राजमहल के चारों तरफ झोपड़ पट्टियां हैं, झुग्गियां हैं, चुनौती वाले क्षेत्र हैं। भारत आए अंग्रेज, यहाँ के लोगों को देखा उन्होंने, जब यहाँ के ग्रंथों को ट्रांसलेट करना शुरू किया, पढ़ा उन्होंने कि ब्राह्मण का जन्म मुंह से हुआ है। ये डिपार्टमेंट बनाया ही गया था शोषण के लिए। कौन सा? पुलिस। किसने बनाया था? कॉर्नवालिस ने। और पुलिस डिपार्टमेंट की खास बात यह है कि जब उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट भारत में बनाया, तब वो डिपार्टमेंट ब्रिटेन में नहीं था। ज्यूडिशियरी, मॉडर्न ज्यूडिशियरी उन्होंने अपने फायदे के लिए बनाया। अंग्रेजी कानून, अंग्रेजी जज। तुम कल्पना कर सकते हो आधुनिक काल से पहले LGBT सड़क पर आकर प्रदर्शन करें, इनको तोप में बांध के उड़ा दिया होता।
4: तो क्या सिर्फ अब हिस्ट्री सिर्फ जो बाहर से लोग आए थे यहाँ पे शासन करने के लिए उनको विलन के रूप में दिखा रहे हैं? या फिर
3: जो भी सरकार सत्ता में आती है वो शिक्षे का इस्तेमाल करती है अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने। वंदे मातरम पे बहस हो रही है, हर दिन मंदिर मस्जिद पे बहस हो रही है, मुसलमान पे बहस। ये संसद बनी किस लिए? औरंगजेब जो था भैया, डेली 200 किलो जनेऊ तोलता था। कितना? 200 किलो भी, मतलब डेली वो कम से कम 10,000 ब्राह्मणों को मारता था, हिंदुओं को। मैं देखता हूँ मुसलमानों को और हिंदुओं को, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ। पहले मैं सोचता था पुलिस वाले यहाँ लगा के पॉइंट ब्लैंक से क्यों मारते हैं, क्योंकि यहाँ ताला लगा हुआ है, तो इसीलिए मारते कि यहाँ मारे तो अगले जन्म में खुला हुआ रहेगा।
5: आपको लगता है कि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद देश फिर बट सकता है?
3: इस बात को मैं रिपीटेडली कह चुका हूँ, एक विस्फोट होगा बेटा।
6: लेकिन आपके पढ़ाने के तरीके मुझे एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट लगता है कि आप जनता को ही बोल देते हैं कि जनता बड़ी बेवकूफ है, और फिर आप कहते हैं कि हमारे देश का युवा पढ़ना नहीं चाहता है।
7: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: आप देख रहे हैं रणभूमि, मैं हूं गौरव सावंत और इस समय बांकीपुर के रण में अपनी अजय बढ़त बनाने के बाद जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को बिहार की जनता ने एक बड़ा संदेश दिया है कि एक अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने की आवश्यकता है, एक ऐसे व्यक्ति को जो बिहार में शिक्षा, रोजगार और पलायन को रोकने के लिए काम करे। अपराधी, ये उनके शब्द है प्रशांत किशोर के, अपराधी को अगर मुख्यमंत्री बनाया जाएगा तो बिहार प्रगति नहीं कर पाएगा। हम आपको विस्तार से इस पर चर्चा भी करेंगे, क्या इसका संदेश निकल कर आता है वो भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए प्रशांत किशोर ने क्या कहा।
1: बांकीपुर की जनता की जीत है,
2: लाइट खोलो,
1: और जैसा कि चुनाव प्रचार के दौरान हम लोगों ने जो बात रखी थी, ये विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, ये भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये संदेश देने का एक प्रयास है बिहार की जनता के द्वारा कि बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। आपको जनता ने 202 विधायक जिताए हैं, किसी अपराधी, किसी गलत चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मत दीजिए, अच्छे आदमी को बनाइए ताकि बिहार में भी शिक्षा हो, बिहार में भी बच्चों के लिए रोजगार हो, बिहार के बच्चों को भी बाहर मजदूरी करने न जाना पड़े। ये संदेश बांकीपुर के लोगों ने दिया है। बाकी विधायक जीतना हारना ये तो राजनीति है, चलता रहता है। जिन लोगों ने मत दिया उनका धन्यवाद कर रहे हैं, जिन्होंने मत नहीं दिया है उनको यही कहेंगे कि आपसे आपका विश्वास जीतने के लिए और मेहनत और प्रयास करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार को अच्छा नेतृत्व मिलना चाहिए, बिहार सुधरना चाहिए, और लोकसभा से पहले मोदी जी को, भाजपा को, अमित शाह जी को ये देखना चाहिए कि बिहार में कैसे बेहतरी हो, बिहार में बच्चों को रोजगार कैसे हो, पलायन कैसे बंद हो। एकमात्र यही उद्देश्य है, हम लोग को विधायक बन के ठेका पट्टा नहीं करना है, एक और एकमात्र उद्देश्य है, चाहते हैं कि बिहार में बेहतरी हो, बिहार में भी सिर्फ 5 किलो अनाज के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट न मांगा जाए। अगर 25 MP गुजरात से जीत कर गए हैं, प्रधानमंत्री बनाने में मोदी जी को गुजरात के लोगों ने योगदान किया है, तो बिहार के भी 13 करोड़ लोगों ने आंख बंद करके मोदी जी को वोट दिया है। तो जितनी चिंता उनको गुजरात की है, उतनी थोड़ी चिंता उनको बिहार की भी करनी चाहिए। बिहार के जो 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चे बाहर मजदूरी कर रहे हैं, उनकी चिंता होनी चाहिए। बिहार के लिए कोई एक स्पेशल प्रोग्राम बनाना चाहिए ताकि बिहार से पलायन बंद हो, कोई भी बच्चा यहाँ से 10-15 हज़ार रुपये के लिए अपने घर परिवार समाज को छोड़कर उसको गुजरात, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, कोयम्बटूर, तमिलनाडु, कर्नाटक न जाना पड़े। इसी उद्देश्य को लेकर हम लोग यहाँ आए हैं, और आज की जीत उसी बात को फिर से मजबूत करने के लिए है कि NDA को, भाजपा को लोगों ने जिताया है। अब भाजपा के नेतृत्व की ये जिम्मेवारी है कि किसी ऐसे व्यक्ति को बिहार का मुख्यमंत्री बनाए जो कि बिहार में रोजगार लाए, बिहार में शिक्षा की स्थिति को सुधारे, भ्रष्टाचार कम हो, और सबसे बढ़कर पलायन बंद हो। ये सीधा सीधा मैसेज है। 30 बरस का जो गढ़ है वो सिर्फ 30 दिनों में ढह गया। वो सिर्फ इसलिए ढहा है कि बिहार के लोग भी चाहते हैं कि अब 4 किलो 5 किलो अनाज और जाति से ऊपर उठकर हम लोग के बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार काम करे। अगर वो काम नहीं करेंगे तो आगे चुनाव के परिणाम उनको ऐसे ही देखने को मिलेंगे।
0: और जनसुराज पार्टी के खेमे में इस समय जबरदस्त जश्न का माहौल है। ऐतिहासिक जीत प्रशांत किशोर के लिए, लगभग 7 महीने में क्या बदला पिछले बिहार के विधानसभा चुनावों में और इन उपचुनावों में। रोहित सिंह मेरे सहयोगी हमारे साथ ताजा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। रोहित, हम आपको देख रहे हैं इस समय जनसुराज पार्टी के खेमे में जबरदस्त जश्न इस समय।
3: बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जन सुराज पार्टी के खेमे में बहुत जबरदस्त जश्न है, और हमारे साथ वो व्यक्ति मौजूद हैं जो प्रशांत किशोर के पिलर हैं। उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर जानवी दास इस वक्त लाइव हमारे साथ आज तक पर मौजूद हैं। बहुत बहुत बधाई हो आपको।
4: थैंक यू सो मच।
3: डिड यू एक्सपेक्ट दिस काइंड ऑफ अ रिजल्ट? मतलब कि आप बांकीपुर में, आपको लग रहा था कि प्रशांत इतनी मेहनत कर रहे हैं कि ऐसा कुछ होने जा रहा है एकदम?
4: Definitely means I thought because he's been working quite hard, but did not expect to be honest such a huge margin because ये तो BJP का like the
3: stronghold
4: hai. It has been their seat for last, I believe, 35-40 years.
3: Yes.
4: So very, very happy, definitely. बहुत ज़्यादा खुश हूँ.
3: Because last time what happened is that प्रशांत किशोर चुनाव लड़ना चाहते थे 25 में दो करगहर से राघोपुर से, but somehow he could not fight elections. Yes. He said कि नहीं. इस बार उन्होंने आपको कब बताया कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ बाकीपुर के, that I'm ready to fight?
4: He was contemplating it since quite some time, maybe I think Feb, March onwards. पूरा याद नहीं है, but definitely before April onwards he was thinking about it. I think when this seat became vacant, that idea, I believe he was just toying with it. I do not.
3: Did he tell you about that?
4: Yes. He was asking us, me and my son, दोनों को पूछ रहे थे कि क्या करो, करना चाहिए नहीं. I was very little hesitant, but my son was like, yes.
3: करो पापा, करना चाहिए.
4: हाँ, करना तो कुछ चाहिए. He was like that.
3: प्रचार प्रसार में आप भी बहुत, हम लोगों ने देखा कि आप भी घूम रही थी, आपके बेटे भी जो है घूम रहे थे, तो माहौल क्या लग रहा था? बिकॉज बीजेपी का स्ट्रॉन्ग होल्ड, इट्स अ स्ट्रॉन्ग होल्ड, तो वहाँ आपको लग रहा था कि प्रशांत कुछ मैजिक कर पाएंगे?
4: आई वॉज होपफुल, क्योंकि प्रशांत भी यू नो बाकीपुर का जो जनता है, आई एम नॉट फ्रॉम हियर, बट आई हियर कि दे आर द मोस्ट एजुकेटेड पीपल इन बिहार. सो डेफिनेटली आई बिलीव कि आई हैड दिस बिलीव दैट जो भी करेंगे सोच समझ के ये लोग करेंगे.
3: और क्योंकि प्रशांत की पॉलिटिक्स कोई कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं है, व्हेनेवर ही सिंस द टाइम ही हैज कम टू बिहार, वो जाति वाति पे नहीं बिलीव करते हैं, वो परिवर्तन, पढ़ाई लिखाई, ये सब चीजों की बात करते हैं. तो आपको लगता है कि अब दैट वो एमएलए बन ही जाएंगे, अब तो लगभग जीत तक की पक्की हो गई है, ही विल बी रेजिंग दीज इशूज एंड देर कुड बी सम डेवलपमेंट दैट कैन टेक प्लेस, सम चेंजेस दैट कैन टेक प्लेस इन बाकीपुर?
4: यस ऑफ कोर्स, बिकॉज आई थिंक वॉट एवर ही स्पीक्स ही बिलीव्स इन इट, तो वो जरूर यही जो उनका जो पॉइंट्स है, ही विल वर्क ऑन दैट फॉर श्योर.
3: और चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी को लेके आल्सो ही हैज बीन वेरी क्रिटिकल.
4: दैट आई डोंट थिंक आई वांट टू कमेंट ऑन एनीथिंग ऑन दैट.
3: व्हाट वुड यू लाइक टू एडवाइस टू योर हस्बैंड प्रशांत किशोर, भाई क्या करो, अब आप राजनीति में आ गए हो, अब तो आप विधायक बन गए हो, अब आप यू आर नो मोर इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट एंड बिहाइंड द सीन.
4: Right. So he, I believe now he'll work, like he'll continue doing what he has been doing, in fact, since last 3-4 years.
3: Did you get disappointed in 2025 when Jan Suraj lost all the seats, 238 they contested, and Prashant was also upset that point of time?
4: Yes, a little sad, and I think that's very normal.
3: You felt sad?
4: Yes.
3: But now that he has almost won this election,
4: yes,
3: it's going to be a...
4: we are all very, very happy.
3: So will he be spending more time in Patna or Delhi right now?
4: I think he should spend more time in Patna now that he has been elected here. So he should give more time here.
3: आपको लग रहा है कि प्रशांत ने इतनी मेहनत की है, आखिरकार God has blessed him with that, the
4: result?
3: Yes,
4: I really thank Ma Kamakhya and also the people of Bakipur and the people of Bihar and the entire Jan Suraj team.
3: For,
4: yes, they have worked very hard along with him.
3: Because it's a relatively new party.
4: Yes.
3: Just one or two years.
4: And without the blessings of the people of Bankipur, he would not have been able to do what he did.
3: And one final question.
4: The belief that they showed in him, I'm extremely thankful. And through your channel, I really like to thank the people of Bankipur with folded hands.
3: It was a BJP stronghold and making inroads there really big.
4: Any fight is big, I think.
3: Any fight? Yes. Happy for you?
4: Yes. Yes. Very happy.
3: The family is also very happy.
4: Of course, it's a normal thing to feel happy today.
3: Thank you so much for speaking.
4: Thank you so much.
3: तो गौरव, ये थी डॉक्टर जानवी दास आज तक पे एक्सक्लूसिव हमसे बातचीत करते हुए. काफी खुश नजर आ रही हैं और कह रही हैं कि बाकीपुर से अब चुनाव जीते हैं तो उनको पटना में ज्यादा वक्त देना चाहिए और यहाँ बदलाव के लिए जो है वो उनको काम करना चाहिए.
0: जी अच्छा, रोहित चुनाव जीतने की बिल्कुल 27 राउंड. अच्छा ताजा खबर अभी मैं फिर बता दूं, 27 राउंड की गिनती हो चुकी है और एक बड़ी जीत की ओर प्रशांत किशोर बढ़ रहे हैं. पीके नाम से बहुत प्रसिद्ध 16,888 वोटों की बढ़त उनको मिल चुकी है. अब केवल 4 राउंड की गिनती बाकी है और ये जो 4 राउंड बचे हैं इसमें अब केवल यही अंतर होगा कि कितने बड़े मार्जिन से पीके ने भारतीय जनता पार्टी के नीरज कुमार सिन्हा को हराया, क्योंकि आरजेडी तो यहां तीसरे नंबर पर एक तरह से लुढ़क गई है और बहुत बुरी तरह से. आरजेडी और बीजेपी के साथ भी फासला बहुत जबरदस्त पीके ने बना लिया है. तो बढ़ चढ़कर रोहित पीके को यहां पर वोट मिले हैं. 6 महीने पहले, 7 महीने पहले की अगर बात की जाए, शशि भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुजीत मेरे सहयोगी वो भी यहाँ जुड़ गए हैं। और सुजीत, बहुत पैनी निगाह चुनाव के नतीजों पर दशकों से रखते आए हैं। सुजीत, क्या इस तरह की उम्मीद पीके को भी रही होगी कि इस बड़ी मार्जिन के साथ बीजेपी के गढ़ में सेंध लगाने में वो सफल होंगे, वो भी तब जहां पर पीके ने कहा था कि बीजेपी के कुछ लोग कह रहे हैं कि यहां से तो किसी को खड़ा कर दो, बीजेपी जीत जाएगी।
2: देखिए गौरव, जिस दिन चुनाव था उस दिन शाम में मैं पीके से मिला था, प्रशांत किशोर से, और उनसे जो बातचीत हुई उसमें मैंने पूछा था कि भाई आप तो रणनीतिकार रहे हैं और 2015 में आपने महागठबंधन के लिए काम किया और उस समय आपने जो भी कहा कि भाई ये विधायक इतने वोट से जीतेगा, ये विधायक इतने वोट से जीतेगा, तो आप बताइए कि आप कितने से आप जीतेंगे, हाँ। जीतने का दावा कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा था मैं 15,000 से ऊपर वोट से जीतूंगा और करीब करीब वही आंकड़ा जो है सामने दिखाई दे रहा है निश्चित तौर पर। देखिए क्या है गौरव की, जो जब चुनाव का अनाउंसमेंट हुआ बाकीपुर उपचुनाव का, उसके बाद से स्थितियां ऐसी बनती चली गई प्रशांत किशोर के पक्ष में, और बीजेपी की तरफ से जो लगातार मुझे लगता है कि कोई चूक, जैसे कि पहला चूक तो यही हुआ कि उम्मीदवार बदलना पड़ा उनको, और उम्मीदवार पहले जो बदला गया फिर दूसरा उम्मीदवार आया, वो जो है उससे मजबूत होना चाहिए लेकिन वो कमजोर निकला। बातचीत में चाहे अपने मतलब लोगों के सामने अपनी बातों को रखने में वो उस तरह से कामयाब नहीं थे, और चूंकि बांकीपुर शिक्षित लोगों का एक
0: पटना साहिब पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का हिस्सा है, अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसी, जी
2: बिल्कुल, तो वो जो है वो उनको लगा कि भाई कैसे लोगों को थोपा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये एक विरोधा मतलब एक लोगों में मतदाताओं में इस बात को लेकर जरूर रोष था कि भाई।
0: लेकिन शशि ये बताइए कि नितिन नवीन खुद भी पहुंचे, बीजेपी के अध्यक्ष खुद, मुख्यमंत्री बीजेपी का, बीजेपी अध्यक्ष की सीट, दिल्ली से भी जो कहा जा रहा है डबल इंजन की सरकार है, इतने बड़े पूरे लाव लश्कर के साथ सब वहां पहुंचे, फिर क्या हुआ? प्रशांत किशोर लगातार ये कहते रहे कि ये तो रेफरेंडम है, जनमत संग्रह है मुख्यमंत्री पर, इसके बाद देखा गया कि कुछ तालमेल की कमी रह गई बीजेपी खेमे में। शशि से फिर संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। सुजीत, एक शब्द आरजेडी के बारे में भी, कि आरजेडी की स्थिति इस समय इतनी कमजोर क्यों?
2: देखिए आरजेडी मुझे नहीं लगता है कि उसने मतलब चुनाव लड़ा है। आरजेडी ने अपना उम्मीदवार जरूर खड़ा किया और लोगों ने जो विपक्षी दल के ही तरफ से ये कहा गया कि उम्मीदवार खड़ा नहीं करना चाहिए, कांग्रेस जो कि सहयोगी दल रही है महागठबंधन में उसने खुलकर समर्थन किया प्रशांत किशोर का, लेकिन आरजेडी की तरफ से जो रेखा गुप्ता हैं, जो 2025 के चुनाव में उनको 46,000 से ज्यादा वोट आए थे
0: जी,
2: उनको फिर से टिकट दे दिया, बनिया जाति से हैं, तो कहीं ना कहीं ये बातें थी। लेकिन तेजस्वी यादव जो कि प्रमुख चेहरा हैं आरजेडी के, वो विदेश चले गए और विदेश चले गए उनका यहाँ इंतजार होता रहा, आखिरी के दो दिन उन्होंने प्रचार किया, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक बड़ा मतलब मैंने कहा शुरू में कि स्थितियां बलती चली गई, तो आरजेडी की तरफ से भी प्रशांत किशोर को मदद मिली। आप देखिए कि आरजेडी का बहुत बड़ा वोट बैंक जो है वो खिसक कर प्रशांत किशोर के साथ चला गया, हाँ। तो निश्चित तौर पर आरजेडी ने जो चुनाव लड़ा एक तरीके से, अब कहने वाले तो ये भी कहते हैं, अब बीजेपी ने ये आरोप लगाया कि प्रशांत किशोर ने आरजेडी पर कोई अटैक नहीं किया, जबकि इधर से कहा जा रहा है कि जानबूझ के ये आरजेडी ने उम्मीदवार खड़ा किया बनिया जाति का, क्योंकि बीजेपी का वो वोट बैंक है, तो बहुत सारी बातें हैं। लेकिन आखिरकार
0: मुख्यमंत्री शशि, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के लिए भी सोचने की बात होगी, क्योंकि प्रशांत किशोर लगातार ये कहते रहे हैं कि जो वोट मिला 202 सीटें जो आई वो तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, उनका बीजेपी के साथ गठबंधन था, इसीलिए बीजेपी की 202 सीटें आई, इनके सम्राट चौधरी के नाम पर तो आई नहीं। अब क्या ये प्रशांत किशोर के मुताबिक क्या ये सम्राट चौधरी के लिए भी एक खतरे की घंटी है?
5: बिल्कुल, देखिए प्रशांत किशोर लगातार हमलावर रहे हैं सम्राट चौधरी पे, और आज भी जब वो पहली दफे आए बढ़त के बाद तो उन्होंने सम्राट चौधरी को ही निशाने पे लिया। वो सीधा कहते रहे पटना में बांकीपुर के अंदर बटन दबाइए दिल्ली में घंटी बजेगी, और बिहार में मुख्यमंत्री के लिए एक रेफरेंडम के तौर पर वो ले रहे थे। लेकिन तस्वीरें क्या है गौरव, आपको दिखाते हैं, ये काउंटिंग सेंटर है, और देखिए सुबह से हम यहाँ देख रहे हैं जो जन सुराज के कार्यकर्ता हैं वो मौजूद थे। बीजेपी के लोग लड्डू बनवा रहे थे लेकिन लड्डू बांटने का वक्त नहीं आया, और अब तो लड्डू लगता है, लड्डू बड्डू आप लोग अब बांटिएगा लगता है।
6: अरे लड्डू उनका जो लड्डू बना था जिस दुकान पर वो ट्रांसफर हो गया वो बहुत गुमान में थे, बहुत घमंड में थे, और बांकीपुर के समृद्ध जनता विद्वान जनता ने उनका पूरा खेल बिगाड़ दिया।
5: कहा जा रहा है कि युवाओं का बड़ा फैक्टर रहा है इस चुनाव में प्रशांत किशोर के साथ, क्या वाकई जो दिल्ली में चल रहा था, जो पटना में 22 तारीख को एजुटेशन हुआ, वो सब चीजें आप लोग जैसे यूथ के मन में थी क्या?
7: देखिए जो एजुकेटेड लोग होते हैं उनके लिए मंदिर मस्जिद और ये सड़क और ये सब जो मुद्दे होते हैं वो पुराने हो चुके हैं। जो एजुकेटेड इंसान है वो चाहता है कि बिहार में रोजगार आए, बिहार में पलायन की समस्या कम हो, बिहार में विकास हो। मुझे बाहर जाके क्यों पढ़ना पड़ रहा है, किसी को बाहर जाके क्यों काम करना पड़ रहा है? हर घर जो है उसमें से 2-3 लोग बाहर जाके काम करते हैं, भले 1 लाख की नौकरी करते हो लेकिन बाहर काम करते हैं। इन चीजों को सोच के जो उनके पेरेंट्स है यहाँ पे, जो उनके पिता माता थे और जो बच्चे खुद है यहाँ पे, उन्होंने जाके जन सुराज पार्टी को वोट।
5: आपसे बात करेंगे फिर, बांकीपुर की वोटर हैं आप या बाहर की हैं? मतलब
8: जन सुराज संघर्ष वाहिनी उपाध्यक्ष हूं।
5: अच्छा, मतलब वॉलंटियर हैं आप। देखिए कई सारे वॉलंटियर्स भी हैं और झंडा वही है जो जन सुराज का, और जय जय वाला जो नारा है ना, आप लोग तो बड़े 2020 में जब पार्टी हार गई थी प्रशांत किशोर चुनाव नहीं लड़े थे, लगता गलत फैसला हो गया था, उसी समय प्रशांत किशोर को लड़ना चाहिए था 2025 में, उसी समय लड़ना चाहिए?
9: ऐसा कुछ नहीं है, ये सब स्ट्रेटजी रहती है, राजनीति की स्ट्रेटजी है। हम लोग हारे जरूर हैं लेकिन आज हम लोग 242 सीट जीत गए।
5: लग रहा है?
9: लग रहा है हम लोग जीत गए।
5: इसके बाद जश्न मनेगी रात भर,
9: देख रहे हैं आप
5: जहाँ तक। चलिए ये उत्साह है, और देखिए हर तरफ नारेबाजी है, हर तरफ जो कार्यकर्ता हैं उत्साहित हैं, और ये देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग निकल रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ पे उनको ऐसा लग गया है कि अब यहाँ रहने से कोई बहुत फायदा नहीं है। ये एक बॉडी लैंग्वेज होता है अपने तरफ से जय श्रीराम की नारेबाजी, और अब बीजेपी के नेता यहां से निकलते हुए, कार्यकर्ता अभिकर्ता जो काउंटिंग में शामिल होते हैं वो निकलते हुए यहां से जा रहे हैं। जाहिर तौर पे चुनाव का ये अपना रंग है गौरव,
0: तो बीजेपी के खेमे से जो मिठाइयां थी अब वो जनसुराज के खेमे से बांटी जाएंगी। ऐतिहासिक जीत की दहलीज पर इस समय है प्रशांत किशोर जनसुराज पार्टी के। बड़ी खबर पर रहेगी नजर, एक छोटा सा ब्रेक, देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
10: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
11: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
12: Whatever you're in the mood for, there's always something to listen to on TuneIn. Music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Enjoy over 100,000 stations, from local favorites to global voices. So you never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices. At home, in the car, or on the go. Hear it all and more right here on TuneIn.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: This is Radio Reimagined. With TuneIn, you get music, news, sports, podcasts, and live radio from around the world. All in one place. Hear from stations like today's hits. Talk sport.
2: Oh, I think we still can win the World Cup with this squad.
1: The Daily and more. Available on over 200 devices. So you can enjoy TuneIn Radio anytime, anywhere. Just sit back and start listening now.
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: बांकीपुर के दंगल में निर्णायक बढ़त के बाद पीके ने नितिन नवीन का किला ढहाया, बोले बीजेपी सम्राट चौधरी को तुरंत हटाए, नया चेहरा लाए। दतिया में बीजेपी के पैर उखड़े, घनश्याम सिंह ने बनाया 9000 से ज्यादा का फासला, गुजरात के मांजलपुर में बीजेपी की बची लाज। यौन शोषण केस में छुटते ही गरजे ब्रजभूषण शरण सिंह, आज तक पर बोले मैं था निर्दोष, झूठ की खेती करने वाले आंदोलनकारी अब दे जवाब। चढ़ावा चोरी पर पप्पू यादव के ड्रामे से समाजवादी पार्टी का किनारा, रामगोपाल यादव का बड़ा हमला, दान चोरों से साधु संतों का कोई वास्ता नहीं। यूपी विधानसभा में चढ़ावा चोरी पर भारी हंगामा, विपक्ष के शोर शराबे पर सीएम योगी का प्रहार, जनता को गुमराह न करे, दम है तो विकास पर करे बात।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल देश के 3 राज्यों में 3 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव नतीजों पर है। आज बिहार की बांकीपुर, एमपी की दतिया और गुजरात की मांजलपुर सीट पर उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं। बिहार में जनसुराज, एमपी में कांग्रेस आगे चल रही है और गुजरात में बीजेपी जीत चुकी है। लेकिन हैरान करने वाले नतीजे बिहार के बांकीपुर से आ रहे हैं, जहां 1-2 चुनाव पुरानी पार्टी ने देश की सबसे बड़ी पार्टी को पछाड़ दिया है, और वो भी उस सीट पर जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की परंपरागत सीट रही है। बांकीपुर से जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर 19,000-20,000 वोट से आगे निकल चुके हैं। जिस सीट पर बीजेपी हार रही है वो बीजेपी के मौजूदा अध्यक्ष नितिन नवीन की परंपरागत सीट रही है। 3 दशकों तक इस सीट पर करीब 60% वोट बैंक हासिल करने वाली बीजेपी को प्रशांत किशोर ने हरा दिया है। बीजेपी की इस हार ने पहली बार बिहार में बीजेपी के सीएम बने सम्राट चौधरी के शासन पर जनता के भरोसे पर सवाल खड़ा कर दिया है। और चंद महीने पहले

0: हर राउंड में प्रशांत जी को पॉजिटिव सपोर्ट लोगों से मिला है और बढ़त पॉजिटिव रही है। ये दिखाता है कि पूरे बांकेपुर में कोई भी ऐसा पॉकेट नहीं था जहां जनसुराज की आवाज नहीं पहुंची हो।
1: बिहार की राजनीति एक एमएलए से जीतने से थोड़ी स्थापित होता है।
2: इस विजय का महत्व तो बस ऐसे समझ में आता है कि 1995 के बाद से बीजेपी कभी बांकीपुर विधानसभा सीट नहीं हारी। 2005 के बाद से पार्टी को लगातार इस सीट पर 60% से ज्यादा वोट मिलते रहे। महागठबंधन की लहर के बावजूद 2015 में भी पार्टी ने ये सीट बचाए रखी थी और पिछले चुनाव के आंकड़े देखें तो 2025 के चुनाव में नितिन नवीन ने यहाँ 62.66% वोट हासिल कर आरजेडी को सिर्फ 29.55% तक समेट दिया। 2020 के चुनाव में 59.05% वोट पाकर नितिन नवीन ने कांग्रेस को 31.57% पर रोका और 2015 में भी नितिन नवीन ने 60.19% वोट लिए जबकि कांग्रेस 32.59% वोट पर रही थी। 2025 के चुनावी मैदान में जिन प्रशांत किशोर को पूरे राज्य में केवल 4.92% वोट मिल पाए उन्होंने ऐसे किले में सेंध लगाई है जिससे बिहार में विपक्ष की राजनीति की धार बदलने की उम्मीद लगाई जाने लगी।
0: एक आदमी जो विपक्ष को रिप्रेजेंट करेगा सही ढंग से वो अब विधानसभा में पहुंचने वाला है और इससे बिहार की आगे की राजनीति पर बहुत गहरा असर पड़ेगा, इसमें कोई शक नहीं।
1: क्या असर पड़ेगा? 202 का बहुमत है, जनता ने अपार समर्थन दिया है, असर तो पड़ेगा आरजेडी पर, असर हमारे ऊपर क्या पड़ेगा?
2: बांकीपुर में बीजेपी के पिछड़ जाने का अंदेशा बीजेपी के ही नेताओं को हरगिज नहीं था क्योंकि बांकीपुर में 34% सामान्य, 20% ओबीसी, 8% दलित, 28% ईबीसी और 10% मुस्लिम वोटर है। इसी बांकीपुर में पिछली बार बीजेपी को सामान्य वर्ग का 75-80% वोट मिला तो इंडिया गठबंधन को 15-20%, बीजेपी को 80% ओबीसी वोट मिले थे तो इंडिया गठबंधन को 20%, बीजेपी को 50% दलित वोट मिला था, इंडिया गठबंधन को 40%। वहाँ आखिरकार उपचुनाव में ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की परंपरागत सीट हार गई? जानकार बताते हैं, एक तो 3 दशकों की एंटी इनकम्बेंसी, ऊपर से प्रशांत किशोर ने यह अफवाह उड़ा दी कि बीजेपी वाले कहते हैं कि किसी भी कुत्ते बिल्ली को भी लड़ा देंगे तो बांकीपुर जीत जाएंगे। इसके अलावा आरजेडी का वोट जन सुराज को शिफ्ट हो गया। बीजेपी के पारंपरिक शहरी वोटर्स ने वोट नहीं किया क्योंकि पिछली बार के मुकाबले 7% कम और सिर्फ 34.30% वोटिंग हुई। बिहार के विपक्षी दल कहते हैं कि बिहार में बीजेपी के सीएम सम्राट चौधरी के शासन के खिलाफ जनता का पहला रेफरेंडम है।
3: सम्राट जी को डरने की जरूरत कल परिणाम आने के बाद है क्योंकि हम लोगों ने कहा है कि कल का जो चुनाव है वो सम्राट सरकार पर रेफरेंडम है और जिस तरीके से पूरी सम्राट सरकार, उनके विधायक, मंत्री, सांसद, अफसर, पुलिस सब लगे हुए थे, अगर कल भाजपा हारी तो सम्राट चौधरी को उसकी नैतिक जिम्मेवारी लेनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए।
2: दरअसल इस हार ने बिहार के पहले बीजेपी के सीएम और बीजेपी के पहले बिहारी अध्यक्ष दोनों की साख पर सवाल खड़े किए हैं। बाकी राजनीतिक हालात कुछ ऐसे रहे हैं कि नितिन नवीन की सीट पर वोटर दूसरे प्रत्याशी को कबूल नहीं कर सके। बीजेपी ने पहले चारा घोटाले से जुड़े परिवार के अभिषेक बंटी को टिकट दिया था लेकिन फिर आनन फानन में उम्मीदवार बदला गया। इस बीच देश में नीट पेपर लीक और बिहार में भरत तिवारी एनकाउंटर जैसे मसले आए जिसका प्रचार पीके ने बखूबी किया। रही सही कसर वोटिंग से ठीक पहले इनकम टैक्स के छापे ने पूरी कर दी और प्रशांत किशोर को बांकीपुर की जनता ने विजय का तिलक दे दिया। चंद महीनों पहले 238 सीटों पर लड़कर एक भी सीट नहीं जीतने वाले पीके अब एक सीट लड़कर 100% स्ट्राइक रेट से खाता खोलने वाले राजनीतिक दल है। शशि भूषण के साथ रोहित सिंह, पटना आज तक।
4: कुछ ही महीने पहले यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना पहला मुख्यमंत्री बनाया था और इसीलिए प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि ये रेफरेंडम इस मुख्यमंत्री के नाम पर है लेकिन उसके साथ साथ क्या बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के लिए भी एक संदेश है क्योंकि जब भी एक छोटा बाय इलेक्शन, भले छोटा क्यों ना हो, उसमें अगर सत्ताधारी पार्टी हारती है तो उसके कई मतलब निकल सकते हैं। चर्चा करेंगे, हमारे साथ डॉक्टर अजय आलोक भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ रहे हैं, कुमार सौरभ सिंह जनसुराज पार्टी की तरफ से चर्चा में शामिल होंगे, राजीव रंजन जनता दल यूनाइटेड की तरफ से, धीरेन्द्र कुमार लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता और प्रोफेसर सुबोध मेहता आरजेडी की तरफ से भी चर्चा में शामिल होंगे क्योंकि सवाल विपक्ष के लिए है, विपक्ष के

0: ये भी है आरजेडी का जो पतन यहां पर इस सीट पर बीजेपी के साथ साथ हुआ है उस पर भी सवाल पूछे जाएंगे। तीन सवाल इस पैनल के सामने। पहला सवाल, बांकीपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के गढ़ में चुनावी हार के राजनीतिक संदेश क्या निकलते हैं? क्या ये लोकल चुनाव की तरह इसे देखना चाहिए या देश की राजनीति में भी इसका संदेश जा सकता है? दूसरा सवाल, क्या बांकीपुर ने देश में वैकल्पिक राजनीति की संभावनाओं को एक बार फिर जिंदा किया है? और तीसरा सवाल, सीएम सम्राट चौधरी के खिलाफ पीके के पहले मोर्चे के मायने क्या है, क्योंकि बार बार पीके कह रहे हैं कि ये रेफरेंडम सम्राट चौधरी पर है और बीजेपी अब अपना मुख्यमंत्री बदले। इन सवालों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर, बीजेपी ने बांकीपुर में हार स्वीकार कर ली है। हालांकि अब तक मतगणना चल रही है, 32 राउंड्स की वोट की गिनती होगी, लेकिन बीजेपी के एजेंट मतगणना केंद्र से बाहर निकल चुके हैं। आखिरी सूचना तक प्रशांत किशोर 19,000 वोट से आगे निकल चुके हैं, करीब 28 राउंड काउंटिंग हो चुका है। लेकिन सुनाते हैं पीके ने हमारे संवाददाता से क्या कहा।
1: जीत हो जाने दीजिए,
2: रेफरेंडम है ये सम्राट चौधरी पे।
1: बिल्कुल, वो तो है,
2: बार बार कह रहे थे जनमत संग्रह है ये।
1: बिल्कुल, सम्राट चौधरी के नेतृत्व को बिहार की जनता स्वीकार्य नहीं करती है, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है।
2: और नितिन नवीन के सीट पे इतनी बड़ी जीत, किला ध्वस्त किया है बीजेपी का आपने।
1: किला किसी का नहीं होता है। 30 साल का किला 30 दिन भी नहीं लगा, और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि भाजपा ने चुनाव जीतने के बाद यहाँ पर एक अपराधी प्रवृत्ति के आदमी को, एक गलत चाल चरित्र के चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व दिया है, जो बिहार के लोगों को स्वीकार्य नहीं है।
3: चैनल का नाम
2: पर अभी आप एक्सक्लूसिव प्रशांत किशोर को सुन रहे थे।
0: तो प्रशांत किशोर यहाँ पर चाल चरित्र की बात भी कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आरजेडी की ओर से भी प्रशांत किशोर की जीत पर एक बड़ा बयान आया है। बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत को लेकर आरजेडी की ओर से एक बड़ा बयान। लालू यादव की बेटी और आरजेडी की सांसद मीसा भारती ने कहा है कि कुत्ते बिल्ली को लड़ाने की बात करने वाली बीजेपी ने लोमड़ी लड़ाकर चुनाव जीता है। मीसा भारती ने प्रशांत किशोर को बीजेपी का लोमड़ी कहा है।
4: जिस तरीके से बीजेपी ने लड़ाई लड़ी सम्राट चौधरी से लेकर नितिन नवीन और बीजेपी की साख और नाक दांव पर थी, क्या लगता है आपको ये किसके लिए सबसे बड़ा झटका, नितिन नवीन की सम्राट
5: जब चौधरी? बांकीपुर का चुनाव जब प्रारंभ हुआ और ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा, और ये 5 वर्षों से गढ़ नहीं है, करीब 40 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का वो गढ़ रहा है। वहाँ से राष्ट्रीय अध्यक्ष इस्तीफा देके, वहाँ से एमएलए के इस्तीफा देके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया उनको, यहाँ राज्यसभा में आए, वहाँ के सांसद भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। और उस एरिया को अगर बांकीपुर का खासतौर पर आप देखिएगा तो वहाँ जो बासिंदे हैं, जो रहने वाले लोग हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी के एकदम कट्टर समर्थक हैं। लेकिन
4: बोरिंग रोड से लेके सारी
5: जगह पे आप नहीं मतलब सुनने को मिला, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा ही एक सुनने को मिला, जो आप भी प्रश्न में पूछ रही थी कि हम कुत्ता बिल्ली को भी दे देंगे तो वहां से जीत जाएगा।
4: हाँ।
5: लेकिन भैया, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कुत्ता बिल्ली पे विश्वास नहीं किया है, वो एक लोमड़ी दे दिया है।
4: लोमड़ी दे दिया है
5: प्रशांत किशोर के रूप में,
4: यानी कि जो जीते प्रशांत किशोर लोमड़ी है।
5: बस बिल्कुल, और उनको जिता दिया गया। तो जो नीरज सिन्हा जी थे वो असली उम्मीदवार नहीं है भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी का असली उम्मीदवार प्रशांत किशोर जी।
4: अच्छा, मतलब कि वो आए थे अपनी पार्टी के फेस में पर बीजेपी के उम्मीदवार थे।
5: बिल्कुल,
0: किशोर की जीत सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को नहीं चुभ रही है तो आरजेडी को भी यहां पर चुभ रही है। बड़ी दिलचस्प बात है, कुमार सौरभ सिंह लोमड़ी कह रही है आपको, और ये कुत्ता बिल्ली वाली बात बीजेपी के किसी नेता ने तो कही नहीं थी, लेकिन नैरेटिव तो ऐसे बना दिया गया था कि भाई कुत्ता बिल्ली भी लड़ेगी तब भी जीत जाएगी, और यहां पर लोमड़ी चुनाव लड़ रहा है। दोनों को कहीं ना कहीं लग रहा है कि यह जीत सही नहीं है दोनों के लिए, सत्ताधारी पार्टी के लिए भी और विपक्षी पार्टी के लिए भी।
6: जी, बेचैनी स्वाभाविक है साहिल जी। देखिए, एक व्यक्ति और उसके सामने 40 स्टार प्रचारक, 201 विधायक, 33 मंत्री, 45 विधान पार्षद, और जो है सभी पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, और उससे बड़ा, सबसे बड़ा जो तंत्र था पटना का एसएसपी और उसकी पूरी पटना पुलिस, कैसे देखा है आपने कि किस प्रकार से जन स्वराज के कार्यकर्ताओं को थाने में बिठाया जा रहा था? और ये वो सीट है जो भारतीय जनता पार्टी का दुर्ग, किला, अभेद कहा जाता था, गढ़ कहा जाता था। भाई यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सीट था, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी, और पटना जैसे जगह में जहाँ 3 दशक से ज़्यादा शासन रहा हो, स्वयं नगर विकास मंत्री रहे हो, उसके बाद भी 64 स्लम की स्थिति जाकर बांकीपुर में आप देखिए, तो सबसे पहले आपके माध्यम से बांकीपुर की 380,000 जो मतदाता मालिक हैं उनका विशेष रूप से हृदयपूर्वक आभार कि उन्होंने इस बार पार्टी को नहीं एक कर्मठ और सुयोग्य उम्मीदवार को चुना है। उन्होंने बिहार की राजनीति को एक नई दिशा दी है। उन्होंने बिहार में आने वाले कई दशकों की राजनीति की दशा और दिशा क्या होगी इसकी भी परिकल्पना दिखाई है। और इसके साथ साथ सम्राट चौधरी जी को लेकर जो हम सब ने कहा कि ये पहला चुनाव है जो सम्राट चौधरी जी के चेहरे पर लड़ा जा रहा है और ये एक प्रकार का रेफरेंडम है, चूंकि बिहार के जनादेश के साथ धोखा हुआ, इन्होंने 25 से 30 फिर से नीतीश 2026 नीतीश फिनिश, हाँ ये कहते हुए सम्राट चौधरी जी को पिछले दरवाजे से भेज दिया। और पहले भी हम लोग कह चुके कि ये चुनाव कोई सरकार बनाने या गिराने का नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति प्रशांत किशोर उस विधानसभा में होंगे तो उसका परिदृश्य कुछ और होगा, न सिर्फ बिहार बल्कि देश में जो 30 सांसद यहां से चुनकर दिए, 2014 में 31 सांसद, 2019
0: प्रतिक्रियाएं दोनों तरफ से आ रही हैं, बीजेपी कह रही है कि एक बाय चुनाव, एक बाय पोल से क्या होगा? नहीं
7: नहीं साहिल जी, मुझे
0: बीजेपी कह रही है एक बाय पोल से क्या होगा?
7: और देखिए इतने सांसद,
0: मैं आप ही को 30 सेकंड दे रहा हूँ,
7: इनके प्राथमिकता के केंद्र नहीं रहा है।
0: मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूँ, लेकिन सवाल तो सुन लीजिए। जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि एक बाईपोल से क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ मीसा भारती कह रही है कि आप तो बीजेपी के ही उम्मीदवार है, आरजेडी भी आपको लोमड़ी कह रही है
6: जी,
0: ये दोनों तरफ से हमला क्यों हो रहा है आप पर?
6: जी जी, बहुत अच्छी बात है। तो शाहिल जी ये समझना पड़ेगा कि सबसे पहले तो ये 380,000 बांकीपुर के मतदाताओं का अपमान है कि आप अपने अहंकार में और अब अपने भय में, एक तरफ अहंकार में कहा जा रहा था कि कौन है प्रशांत किशोर, हाँ क्या है उनका, जमानत जब्त हो जाएगी, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सीट है, गढ़ है, इतने मेरे प्रचारक हैं, 6,000 कार्यकर्ता हैं, और अब दूसरी तरफ जमीन खिसकने लगी है और पहली बार बिहार में जाति, धर्म, वर्ग, संप्रदाय और विचारधारा और इवन राजनीतिक दलों का बंधन तोड़कर बिहार ने ये बताया है कि कैसे जो बिहार की सड़कों पर चलेगा, जो गांव गांव घूमेगा, जो यहां भरत तिवारी से लेकर जो है नीट की छात्रा और नालंदा की घटना, या बेगूसराय में महिला के साथ जघन्य बलात्कार, या पांडव की दिल्ली में प्रशासनिक हत्या पर आवाज उठाएगा, उसके लिए लड़ेगा, उसी के लिए जनता खड़ी रहेगी। ये चांदी के चम्मच लेकर आने वाले लोग जो अपने घरों से 12 बजे और 1 बजे सोकर उठते हैं, ये इस प्रकार की टिप्पणी हम पर नहीं कर रहे हैं, ये बिहार की जनता और बांकीपुर की जनता पर कर रहे हैं। हम इस पर कल भी प्रतिक्रिया नहीं दिए थे पूरे चुनाव के दौरान, ये लोग यही तो नैरेटिव चाहते हैं कि हम लोग इन
0: जनसुराज पार्टी के प्रवक्ता इस चर्चा में कह रहे हैं कि जाति समुदाय से उठकर मुद्दों के आधार पर बिहार की जनता ने, बांकीपुर की जनता ने उनको वोट दिया हुआ है। यही बात जब 202 सीटें एनडीए को मिली थी 2025 में, एक साल पहले, तब भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की तरफ से भी कहा गया था कि जाति से उठकर वोटिंग हुआ है, इसीलिए 202 सीटें हमको मिली है। क्या बदल गया ऐसा?
6: भैया ऐसा है साहिल जी, आप
8: एक साल पहले नहीं साहिल जी, 8 महीने पहले,
0: अजय आलो,
8: सिर्फ 8 महीने पहले, और मैं आज सिर्फ 8 महीने पहले जनादेश आया था जिसमें हमें 202 मिले। आज फिर एक बांकीपुर की जनता ने जनादेश दिया है और जनादेश को बिल्कुल हाथ जोड़ के नमन करते हैं और स्वीकार करते हैं और बधाई देते हैं प्रशांत किशोर जी को, जन स्वराज को, कि उनपे बांकीपुर की जनता ने विश्वास दिलाया है। देखिए कोई राजा रजवाड़ों का जमाना नहीं है कि किसी का अभेद किला, अभेद दुर्ग। मैं मानता हूं इस बात को कि एक नैरेटिव की लड़ाई थी, एक स्ट्रेटेजिक वोटिंग हुई, इसमें कोई शक नहीं है। नैरेटिव चला कि कोई सरकार बदलने की लड़ाई नहीं है, एक व्यक्ति है, आप मौका देके देखिए विधानसभा में आवाज उठाएगा। बांकीपुर की जनता प्रबुद्ध है, बुद्धिजीवी है, उन्होंने कहा, सोचा कि चलो ठीक है, प्रशांत जी वैसे ही बहुत पॉपुलर है, इसमें से कोई शक है नहीं, सब लोग जानते हैं। उनको लगा कि प्रशांत किशोर एक आवाज बनकर उठेगा। चैलेंज तो अब उनके सामने है ना कि 4.5 साल बचे हुए हैं, कितनी आवाज बनते हैं, कितना बाकीपुर की जनता की अपेक्षा पे उतरते हैं, ये तो अब उनको साबित करना है। हम बिल्कुल सर झुका के बाकीपुर की जनता को नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनके डिसीजन को बिल्कुल स्वीकार करते हैं। लोकतंत्र में कोई बहाना नहीं चलता है। आप हमें जनता ने अस्वीकारा है, उनको मौका दिया है और बिल्कुल हम स्वीकार करते हैं कि प्रशांत किशोर जी जीते हैं और मुझे लगता है कि बाकीपुर की जनता के लिए काम करते रहेंगे। जहां तक रही उपचुनाव, एक उपचुनाव से कोई सरकार का परसेप्शन नहीं बदलता है, ना ही कोई सरकार पे या राजनीतिक तंत्र के बहुत दूर तक मैसेज जाते हैं। आपको याद दिला देता हूं, 2012 में जनरल इलेक्शन, गुजरात में जनरल इलेक्शन के पहले हम बाई इलेक्शन हार गए, तो हुआ कि मोदी जी हार जाएंगे, हम नहीं जीतेंगे, प्रचंड बहुमत से मोदी जी आ गए। 2018 में यूपी में सरकार बनने के बाद 3-3 लोकसभा पे चुनाव हुए, कैराना में विधानसभा उपचुनाव हुआ, गोरखपुर की सीट, पार्लियामेंट सीट हम हार गए जस्ट सरकार बनने के 6 महीने बाद, जैसे आज हुआ है। तो उससे क्या सरकार का परसेप्शन बदल गया? 19 में हम बहुत दुगने मार्जिन से लौटे, 22 में हमने दोबारा सरकार बनाई। तो एक चुनाव से पूरे सरकार का विश्लेषण कर लेना, केंद्र को मैसेज चला गया, इसको मैसेज चला गया, ये अपने नैरेटिव बनाना, ये सब चलेगा नहीं। ठीक है, जनादेश को हम स्वीकार करते हैं और स्ट्रैटेजिक वोटिंग हुई, कोई शक ही नहीं। आरजेडी जो 46,500 वोट लाई थी 8 महीने पहले, आज 12,000 पे रह गई, कहां गया उसका 34,000 वोट?
0: 34,000 वोट कह रहे हैं कि आरजेडी ने स्ट्रैटेजिक वोटिंग कराई
8: निश्चित तौर पर
0: जन स्वराज के लिए।
8: बिल्कुल, मैंने शुरू में बोला कि स्ट्रैटेजिक वोटिंग और नैरेटिव दो चीज चला है, इसमें कोई शक नहीं है मुझे स्वीकार करने में। नैरेटिव था प्रशांत जी का,
0: मुझे आरजेडी के प्रवक्ता के पास जाना है क्योंकि
8: ये चुनाव है।
0: बड़ी दिलचस्प बात है कि बीजेपी और आरजेडी के आरजेडी एक ही जैसी बात कर रही है। बीजेपी आरजेडी कह रही है कि बीजेपी ने ऐसा उम्मीदवार दिया कि वो वहां पर जीत जाए, आरजेडी के वोट खा दिए। बीजेपी कह रही है कि आरजेडी का स्ट्रैटेजिक वोटिंग हुआ, कहीं ना कहीं वोट शिफ्ट हुआ है जन स्वराज की तरफ, ये बात तो साफ नजर आ रही है। लेकिन अजय आलोक जी, आपने कुछ उदाहरण दिए, कुछ उदाहरण मैं भी आपको देता हूं। कई बार कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, एक बाइपोल बहुत सारी बातें कह देता है। राजीव रंजन जी को भी याद होगा जब इलाहाबाद लोकसभा का चुनाव वीपी सिंह जीत गए थे, जो अमिताभ बच्चन ने सीट छोड़ी थी, उसके बाद देश का माहौल बदल गया था क्योंकि देश में कुछ और माहौल चल रहा था उस वक्त। शरद यादव खुद मध्य प्रदेश से लोकसभा का चुनाव जीते थे इमरजेंसी के दौरान, उसके बाद के चुनाव में क्या हुआ था यह भी देश ने देखा था। शायद इसीलिए प्रशांत किशोर ये कहने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व को भी सुध लेनी चाहिए। और दूसरी बड़ी बात कि जब बिहार का चुनाव, अच्छा वो आपने कहा 8 महीने पहले ये चुनाव हुआ है, 8 महीने के भीतर नीतीश कुमार को बदल देना और सम्राट चौधरी को लेकर आना, ये थोड़ा सा गड़बड़ तो नहीं हो गया कहीं? लोगों को लगा कि दिखाया चेहरा कोई और लाए किसी और को।
8: देखिए, समीक्षा हमें हर स्तर पे करनी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। आप जो कह रहे हैं वो भी एक फैक्टर हो सकता है, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा हूं। मैंने कहा ना कि नैरेटिव का खेल चलता है, नैरेटिव तो लगाया गया। प्रशांत जी ये भी कह रहे थे कि नीतीश के नाम पे चुनाव लड़ा सम्राट चौधरी को, बीजेपी ने पीछे दरवाजे से मुख्यमंत्री बना दिया। प्रशांत किशोर अपनी हर सभा में कहते थे। तो नैरेटिव क्या होता है? नैरेटिव यही होता है जो जनता को हिट करता है। सबसे बड़ा नैरेटिव था सरकार बदलने का, चुनाव नहीं है लेकिन एमएलए बन आप बदल के मैं आपकी आवाज बन सकता हूं। निश्चित तौर पर यह नैरेटिव कहीं ना कहीं काम किया। स्ट्रैटेजिक वोटिंग आरजेडी ने की, यह सबके सामने देखने के लिए है, इसमें कोई छिपा हुआ बात नहीं है, इफ एंड बट नहीं है। बधाई हो प्रशांत किशोर को कि उन्होंने इस तरह के नैरेटिव सेट किया, अब जनता को उन पर विश्वास आया है, मैं तो बधाई दे रहा हूं। लेकिन साथ में चैलेंज उन्हीं के सामने, हमारे सामने नहीं है, हम आज भी 201 हैं। चैलेंज उनके सामने है कि अब 4.5 साल में बाकीपुर की प्रबुद्ध जनता के सामने जितनी बातें उन्होंने कही उसको साबित कैसे करेंगे। ये सिर्फ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की बात करके आप बांकीपुर में नहीं रह सकते हैं, थोड़ा विधायक बनके काम करना पड़ेगा ना, पटना में रहना पड़ेगा 30 दिन, गली गली जैसे भी 30 दिन।
0: पहली बार प्रशांत किशोर किसी चुनाव में जीतकर, खुद जीतकर विधायक बने हुए हैं, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव बने हुए हैं, अब वहां पर उन्हें पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर भी काम करना होगा। नहीं, एक मिनट, मैं आपके पास आता हूं कुमार सौरभ, लेकिन जरा आरजेडी से भी प्रतिक्रिया लेना जरूरी है क्योंकि उनको भी चुभ रहा है आप जीत रहे हैं वहां पर। सुबोध जी, ये तो बात ठीक नहीं है ना, आपने बड़े सारे बहाने बनाए कि भाई SIR के वजह से हारे, EVM के वजह से हारे, 8 महीने के भीतर वही SIR वही EVM, लेकिन प्रशांत किशोर कर दिखाते हैं और अब आप उन्हें लोमड़ी भी कह देते हैं, ये कौन सी बात हो गई? देखिए अजय आलोक जो भी है लेकिन बांध रहे हैं कि भाई जीत गए, बधाई भी दे रहे हैं, बधाई दे दीजिएगा, लोमड़ी कहां से कह रहे हैं आप?
9: देखिए साहिल भाई, आपको पूरा जो है डेमोग्राफी पे जाना पड़ेगा बांकीपुर का। हम कभी भी बांकीपुर में मजबूत नहीं थे और ना आज हैं, जितना पूरा बिहार का जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं उसमें सबसे कमजोर अगर कहीं आरजेडी है तो वो बांकीपुर की थी। 2015 में जब हम नीतीश जी और लालू जी एक साथ आए थे, जब मैसिव मैंडेट मिला था हम लोगों को, उस वक्त भी हम बांकीपुर हार गए थे। 2017 में भी 2010 में भी हम देखिए 17,000 पे आ गए थे बांकीपुर में। तो ये एक बात है, लेकिन इसके पीछे की जो बात है ऐसा क्यों हुआ है, देखिए आपके क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है कि क्या संदेश है बांकीपुर का। बांकीपुर का संदेश साफ है साहिल भाई कि जिस तरीके से भरत तिवारी जी का इनकाउंटर किया गया, जिस तरीके से नीट छात्रों और बच्चों के ऊपर पैलेट गन और AK-47 और लाठियों से प्रहार किया गया, जिस तरीके से अपोजिशन पार्टियों को जो है लथारा जाता है, जिस तरीके से जो राम जी के जो मंदिर बनाने की जो बात कही गई उसमें से चंदा चोरी हुआ, जो 1990 से लेकर आज तक ये चंदा चोर कहलाते गए उसका प्रमाण मिल गया, जनता जो है इसके खिलाफ वोटिंग की है। अब जहां तक बात रही कि बाई इलेक्शन में, तो बाई इलेक्शन में ये चीजें होती है। 2018 में दो बाई इलेक्शन,
0: तो आप कह रहे हैं कि सरकार के खिलाफ रेफरेंडम नजर आ रहा है, जो जो मुद्दे आप यहां पर गिनवा रहे हैं उसी के वजह से जनता उनके खिलाफ वोट कर रही है, सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ वोट करी, आप खुद ही कह रहे हैं। आप ये भी कह रहे हैं कि ये सीट ऐसी थी कि जहां पर राष्ट्रीय जनता दल हो या कांग्रेस पार्टी हो कभी भी 40% के ऊपर वोट नहीं ले पाई। ऐसा क्या है कि जनसुराज पार्टी वहां पर जीत गई जो एक खुद अपोजिशन पार्टी है? 8 महीने पहले जो चुनाव हुए हैं वहां पर तो उनकी जमानत जब्त हो गई थी, लेकिन आप नहीं कर पाए, यानी आप पर भी भरोसा जनता का उठ गया है एज अ अपोजिशन पार्टी।
9: देखिए जो अभी मीसा भारती जी ने कहा और जो प्रशांत किशोर हैं, आप जानते हैं कि प्रशांत किशोर एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने प्रशांत किशोर जी को भी मदद किया, उनका वोट जो है शिफ्ट किया प्रशांत किशोर जी के तरफ, 1 लाख वोट आई थी भारतीय जनता पार्टी को, लगभग 1 लाख वोट आई थी 8 महीना पहले, वो वोट घटकर जो है 50,000 वोट जो है शिफ्ट हो गई है उस तरफ। 38,000 वोट ही तो कम पड़े हैं ना, उस 38,000 वोट में से जो है मैसिव वोट जो है बीजेपी का वोट है वो प्रशांत किशोर के तरफ गया है। और ये जो वोटिंग है देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि
0: आपका भी वोट गया है,
9: यहाँ पे
0: आपके उम्मीदवार 3 नंबर पर है और
9: हमारा भी वोट गया है,
0: यादव और मुस्लिम वोट भी जनसुराज की तरफ चले गए हैं, आपका वोट भी चला गया है।
9: देखिए हमारा,
0: और ये दूसरा उदाहरण है,
9: हमारा वोट भी
0: एक तरफ वो सीजेपी वहां पर खड़ी होती है, यंगस्टर्स जाके वहां पर प्रचार करते हैं, प्रसार करते हैं, आंदोलन करते हैं, सरकार को झुकना पड़ता है जो विपक्ष नहीं कर पाया। और ये दूसरा उदाहरण है बांकीपुर का कि जो बीजेपी का गढ़ है वो जनसुराज लेकर जाता है, आरजेडी नहीं जीत पा रहा। ये दो उदाहरण यहाँ पर नजर आ रहे हैं।
9: देखिए मैं तो कह ही रहा हूं, देखिए इन्होंने परसेप्शन ऐसा बनाया प्रशांत किशोर जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी जी को आगे कर दिया लड़ने के लिए, जबकि ये मानना होगा कि जो माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे बॉस हैं नितिन नवीन जी अपने जो है बूथ पे इलेक्शन हार गए, रविशंकर प्रसाद जी जो पूरे भारत में जो है लालू प्रसाद यादव जी तेजस्वी जी को बोलते रहते हैं अपने बूथ पे वो हार गए, रामकृपाल यादव जी जो मंत्री हैं अपने बूथ पे वो हार गए। तो हमें आप ये बताइए कि
0: एक और बड़ी दिलचस्प बात जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं
9: और वो
0: कि लालू यादव या आरजेडी का डर दिखाकर इसके आगे चुनाव नहीं जीता जा सकता। एक जनसुराज पार्टी के नाम पर एक व्यक्ति वहां पर खड़ा है, राजीव रंजन जी आपके मंत्री कह रहे थे कि एक सीट से क्या होता है, 202 का 201 हो गया, लेकिन एक सीट कभी कभी एक ऐसी चिंगारी बन जाती है कि 201 को भी फूंक देती है। और ये भारत की राजनीति में कई बार देखा गया है, दो एग्जाम्पल तो मैंने दे दिए, दो उदाहरण, एक उदाहरण राम मनोहर लोहिया का भी दिया जा सकता है जो आप सभी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं, जो पहली बार जब लोकसभा में पहुंचे थे उसके बाद देश की राजनीति को बदलना शुरू कर दिया था। तो क्या आप भी मानते हैं कि एक सीट से कोई फर्क नहीं पड़ता?
10: देखिए साहिल जी, मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी भी चुनाव नतीजे का कोई असर नहीं होता है, विश्लेषण होगा, समीक्षा की जाएगी और उसमें कई तथ्य सामने आएंगे। ये अजय आलोक जी ने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक सफल राजनीतिक दल के तौर पर इसीलिए कि जीत हो या हार हमारी रणनीति में कोई कमी थी, हम विकास को हर घर तक नहीं पहुंचा पाए, जो मुद्दे ज्वलंत है उनको किस तरह से हमने संबोधित करने का काम किया, कई ऐसे प्रश्न हैं जिन प्रश्नों का समाधान मिलता है जब विमर्श होगा और विश्लेषण के जरिए उनका हम लोग हल निकालेंगे। लेकिन एक विराट संगठन और एक बहुत ही मजबूत गठबंधन जिसने अभी 8 महीने पहले 202 सीटों पर जीत दर्ज की, हो सकता है मतदाताओं को निराशा हुई होगी कि नितिन नवीन जी एक समर्पित प्रतिबद्ध राजनेता हैं, उनके मुकाबले नए उम्मीदवार में उतना दम हो सकता है उन्हें नहीं दिखा हो, यह भी विश्लेषण का एक पक्ष। लेकिन इतनी बात तय है कि आज प्रशांत जी आज के बाद कम से कम चुनाव आयोग को गालियां नहीं, क्योंकि ये ट्रेंड था कि जीत गए तो चुप रहेंगे, हार गए तो फिर ईवीएम से लेकर के और निर्वाचन आयोग। अब जो बड़ी बात है, अब तक आप तेलंगाना, बंगाल, तमिलनाडु कई चुनाव आप लड़वा चुके थे, एक रणनीतिकार के तौर पर आपका ज्यादा वक्त बिहार के बाहर ही गुजरा है, एक जनप्रतिनिधि के तौर केवल ये कहकर के आप अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकते हैं कि मैं केवल नाली
0: के लिए नहीं। वो तो आकलन उनका होगा, एक जनप्रतिनिधि के तौर पर प्रशांत किशोर क्या करते हैं, स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर तो उनकी जीत यहां पर नजर आ रही है क्योंकि खुद के लिए भी उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई है। लेकिन राजीव जी, एक आकलन आप भी हमारे लिए कर लीजिएगा। कई लोग ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का चेहरा न होना ये भी एनडीए के लिए भारी पड़ रहा है। बिहार के भीतर सम्राट चौधरी का चेहरा नहीं चल पा रहा है, 3 महीने के भीतर ही उसका एक नतीजा हमें देखने को मिल रहा है। क्या ये बात सही साबित होगी? नीतीश जी को जिस तरीके से हटाया गया उसका भी खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ रहा है।
10: नहीं, सबसे पहले किस तरह से हटाया गया ये तो आपका अनुमान हो सकता है, आप अपने तरीके से उस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण कर रहे हैं। लेकिन ये एक शांतिपूर्ण सत्ता का हस्तांतरण था, एक सहमति, और उसके आधार पर अनेक अवसरों पर आपने नीतीश कुमार जी और सम्राट जी को मिलते हुए देखा है और बॉडी लैंग्वेज भी देखा है। और मैं समझता हूँ राजनीति में चेहरे और बॉडी लैंग्वेज से किसी दो राजनीतिक दलों के दो प्रमुख नेताओं के बीच के संबंध कैसे हैं उसको समझा जा सकता है। गठबंधन में शामिल जनता दल यूनाइटेड के साथ
0: नहीं, लेकिन राजीव जी आखिरकार नीतीश जी को भी स्टेट पर निकालना पड़ा, वीडियो स्टेट पर निकालना पड़ा ताकि ओबीसी वोट ना खिसके, उनको भी तो स्टेट पर निकालना पड़ा ना। इसी में आकलन, देखिए राजनीति का आकलन, चुनाव प्रचार का आकलन हम उस तरीके से करते हैं जब बड़े बड़े लोगों को एक छोटे चुनाव में बाय इलेक्शन में कूदना पड़ता है, स्टेटमेंट निकालना पड़ता है, उसी से आकलन हो रहा है। चलिए मैं सवाल घुमा देता हूँ। चलिए आप मुझे बताइए, नीतीश जी का चेहरा होता तो ज्यादा फायदा होता ऐसा नहीं लगता आपको? राजीव जी
10: देखिए, जो काल्पनिक परिस्थितियों पर मैं चर्चा नहीं करूंगा, नीतीश कुमार जी सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री बिहार के हैं और देश के चंद ऐसे राजनेताओं में एक रहे जिनको भीड़ से अलग हम सब मानते रहे हैं, और उन्होंने संसाधनों के अभाव के बावजूद बिहार को जिन आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा है, हर बिहारी को उन पर फक्र है और गर्व। लेकिन उन्होंने अपना उत्तराधिकारी चुना और सम्राट जी ये जो सरकार है उनके नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है लगातार योजनाओं के अवलोकन से लेकर आप राज्य में उनकी सक्रियता।
0: यह आकलन तो बड़ा दिलचस्प है। नीतीश कुमार ने अपना उत्तराधिकारी किसी और पार्टी से चुना, ये तो बड़ी दिलचस्प बात है कि नीतीश कुमार ने जनता दल यूनाइटेड से अपना उत्तराधिकारी नहीं चुना है, बीजेपी से अपना उत्तराधिकारी चुना है, यह भी बड़ी दिलचस्प बात है। चलो जल्दी से वीरेंद्र कुमार जी की पे प्रतिक्रिया ले लेते हैं।
10: मुझे केवल 30 सेकंड दे दीजिए,
0: ठीक है? एनडीए के भीतर
10: केवल 30 सेकंड
0: जी, मैं दोबारा आता हूँ आपके पास, जरा वीरेंद्र जी से एक प्रतिक्रिया ले लेते हैं, दोबारा आपके पास आऊंगा।
10: साहिल जी बस 30 सेकंड। नीतीश कुमार जी एनडीए गठबंधन के सबसे बड़े नेता है और गठबंधन के एक नेता के तौर पर उनकी भूमिका अगर मतदाताओं को एनडीए के पक्ष में मतदान करने के संबंध में एक अपील करने की है तो फिर इस पर किसी को क्यों एतराज है? वो गठबंधन के सर्वमान्य नेता है, सबसे बड़े नेता, उन्होंने अपनी
0: अच्छी बात है कि आज प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि जो चेहरा था वो बदला, उसका भी खामियाजा यहां पर भुगतना पड़ रहा है और इसीलिए ये सवाल उठता है। धीरेन्द्र कुमार, क्या एनडीए के भीतर कोई नया चेहरा लेकर आपका भी कहना था कि नया चेहरा होना चाहिए, हालांकि नीतीश जी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा गया था, चेहरा बदलना मुश्किल हो गया थोड़ा, उसके वजह से दिक्कत हो गई है?
11: सबसे पहले तो आज जन सुराज के संस्थापक का चुनाव जीते हैं, मैं उन्हें बधाई देता हूं और शुभकामना देता हूं। तीन दशकों से बाकीपुर की जनता ने हमें प्रतिनिधित्व दिया था, आज प्रतिनिधित्व उनके कंधे पर दिया है, तो जीत बाकीपुर की जनता ने उन्हें दिया है, तो शुभकामना।
0: चलिए बड़ी खबर इस वक्त, बाकीपुर के उपचुनाव आखिरकार प्रशांत किशोर जीत गए हैं। 18,953 वोट से प्रशांत किशोर की जीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी के नीरज कुमार दूसरे नंबर पर रहे और बाकीपुर से आखिरकार उपचुनाव प्रशांत किशोर जीत गए। 28वें राउंड तक 19,000 वोट से भी ज्यादा वोट से प्रशांत किशोर आगे चल रहे थे और अब 32 राउंड का पूरा काउंटिंग खत्म हो चुका है और नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के नीरज कुमार को प्रशांत किशोर ने 18,953 वोट से हरा दिया। ये बड़ी बात है। शशि भूषण इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शशि, आखिरकार ये जीत हो ही गई क्योंकि लगातार हर राउंड में प्रशांत किशोर आगे चल रहे थे, किसी भी राउंड में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को प्रशांत किशोर से आगे निकलने का मौका नहीं मिल पाया। वन साइडेड एक तरीके से हम जीत मान सकते हैं प्रशांत किशोर।
12: बिल्कुल, और देखिए 1995 के बाद कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि भारतीय जनता पार्टी 1995 से लगातार इस सीट पे जीत हासिल करते रही साहिल, लेकिन आज प्रशांत किशोर ने एक इतिहास रचा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने इस्तीफे के बाद जो सीट खाली की उस सीट पे उपचुनाव हुआ और बीजेपी का सबसे मजबूत किला या गढ़ माना जाता है बांकीपुर, और उस बांकीपुर सीट पर अब प्रशांत किशोर ने जीत का परचम लहराया है। आपको दिखाते हैं तस्वीरें, देखिए जहां तक नजर जाती है साहिल, प्रशांत किशोर के समर्थक के सड़क पर नजर आते हैं पीला गमछा लिए और जय जय जय जय बिहार वाला नारा, क्योंकि सबको ये उम्मीद थी कि शायद प्रशांत किशोर यहां बड़ा उलटफेर करेंगे। और अगर आंकड़ों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं नीरज सिन्हा, उनको कुल 44,250 वोट आए, प्रशांत किशोर को 66,203 वोट, रेखा गुप्ता तीसरे नंबर पर रही हैं, उनको 14,085 वोट मिले हैं, तो आरजेडी तीसरे नंबर पर काफी पीछे छूट गई। प्रशांत किशोर जो लड़ाई में शुरू से बताए जा रहे थे भारतीय जनता पार्टी के साथ, उन्होंने बीजेपी को इस बड़ी सीट पर बड़ी शिकस्त दी है, लगभग 20,000 वोट यानी 18,953 वोटों से प्रशांत किशोर विजयी घोषित कर दिए गए हैं। 31 राउंड की गिनती थी और अब गिनती का काम पूरा हो चुका है, थोड़ी देर में जीत का सर्टिफिकेट भी प्रशांत किशोर को दे दिया जाएगा। जी
0: ठीक है, इसका आकलन होना बहुत जरूरी है और इसीलिए मेरे साथ धीरेन्द्र कुमार भी यहां पर जुड़े हुए, कुछ बात कर रहे थे। आपका आकलन क्या होगा, क्या जेंजी प्रोटेस्ट के वजह से जो बिहार के भीतर भी बड़े पैमाने पर किया गया था, बिहार सरकार को उनके खिलाफ मामले वापस लेने पड़े थे और बाकी जो लोकल मुद्दे थे, जो लॉ एंड ऑर्डर से लेकर गवर्नेंस तक कई मुद्दे प्रशांत किशोर अपने चुनाव प्रचार में उतार रहे थे, इन सभी मुद्दों का असर कहीं ना कहीं इस उपचुनाव के रिजल्ट पर नजर आ रहा है। धीरेन्द्र कुमार।
11: साहिल जी देखिए, सबसे पहले तो आज ईवीएम चैन की नींद सोएगा, आज उसने आरोप जो लगे थे उससे बाइज्जत बरी किया है बाकीपुर के लोगों ने, नहीं तो जिस तरह के आरोप हर एक चुनाव में लगाए जा रहे थे तंत्र पे भी और ईवीएम पे भी, तो ये लोकतंत्र खतरे में डाल रहे थे लोग, आज इससे ईवीएम मुक्त हुआ है। दूसरी बात है कि जिस तरह से आज उनका जीत ये भी बता रहा है कि राष्ट्रीय जनता दल के जैसे नेता और उनके विपक्ष के नेता जो कि कभी सदन में नहीं बैठते थे, मुझे लगता है कि अब विपक्ष में भी बैठने के लिए सीरियस पॉलिटिक्स करनी होगी। और जो विकास के एजेंडे पर एनडीए आज तक 20 सालों से बिहार में काम हो रहा है, उस एजेंडे पर ही चल करके बिहार के विपक्ष
0: तो गवर्नेंस के खिलाफ भी तो जीत मानी जा रही है ना। गवर्नेंस का मॉडल आपका नहीं चल पाया, जीविका दीदी को आपने वहां पर प्रचार में उतार दिया था, प्रशांत किशोर ने उस पर भी आरोप लगाए थे, इनकम टैक्स की रेड करवाई गई थी उसका भी असर नहीं हो पाया था, ये भी तो कहा जाएगा ना उसमें। भाई जीत तो आपके खिलाफ हुई है, विपक्ष के उम्मीदवार के खिलाफ नहीं हुई है जीत,
11: मुझे लगता
0: आपकी सीटिंग सीट थी एनडीए की।
11: मुझे लगता है कि इसका विश्लेषण इस रूप में करना चाहिए कि बिहार लोकतंत्र की जननी रही है और यहाँ विपक्ष भी मतलब स्वस्थ विपक्ष होना चाहिए। जब चुनाव हो रहा था तो हमारे नेता चिराग पासवान जी एयरपोर्ट पर ही कहे थे कि कहां है यहां पे आरजेडी, तो उस समय नहीं समझ में आया था, लेकिन आज समझ में आ रहा है कि विपक्ष में अगर रहेंगे, विपक्ष स्वस्थ विपक्ष रहने से सही मुद्दे उठते रहते हैं। और मेरी शुभकामना है कि बाकीपुर के मुद्दों को भी बिहार विधानसभा में वो उठाते रहेंगे, बाकी जो विकास के काम है हमारे
0: चेहरे उभर रहे हैं। वहां तमिलनाडु के भीतर विजय का उदय हुआ है, राष्ट्रीय राजनीति में प्रशांत किशोर पहली बार बांकीपुर से जीत रहे हैं और कांग्रेस जनता पार्टी जो युवाओं की पार्टी है जो अभी तक राजनीतिक पार्टी भी नहीं बनी है वो एक मंत्री का इस्तीफा ले रही है, चीजें बदल रही है। कुमार सौरभ सिंह, पहले ही आपने खाता खोला तो वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सीट से खोला है और अब हमला कर रहे हैं मुख्यमंत्री पर, अगला प्लान क्या नजर आएगा?
6: देखिए, कभी भी हमने सूट एंड स्कूट की राजनीति नहीं की है साहिल जी, कभी भी जो कहा है तथ्यों के आधार पर कहा है। हम नहीं कह रहे कि 100% जो हमने बातें कहीं वही हुई, लेकिन ये तो नरेंद्र मोदी जी के बॉस की सीट थी, 3 दशक से भारतीय जनता पार्टी के पास रहने वाली सीट थी, विकास की यहाँ गंगा बहाई गई थी। तो भाई आज ऐसा क्यों हुआ कि 202 सीट आई? बिल्कुल सही बात है, 7 महीने पहले चुनाव हुआ है, लेकिन आप एक चीज नहीं बता रहे हैं कि 7 महीने पहले किस प्रकार से 68,000 करोड़ के इनकम पर 42,200 करोड़ बिहार के फूंक दिए गए और आज बिहार की स्थिति ऐसी है कि सम्राट जी जब केंद्र में जा रहे हैं तो 12,000 करोड़, शिक्षा मंत्री जा रहे हैं तो 1130 करोड़, आपसे छात्रों का जो है पैसा नहीं मिल रहा है, आपका ट्रेजरी पे रोक लगा हुआ है, संवेदकों का बिल नहीं हो रहा है। और दूसरी तरफ भाई राष्ट्रीय जनता दल के लोग क्या कहेंगे? आप अभी 7 महीने पहले चुनाव लड़े हैं, 45,000-50,000 वोट दिया था बांकीपुर ने आपको और वो लोग आपसे पूछ रहे थे कि विपक्ष के रूप में आपकी क्या भूमिका थी, नामांकन में कहां थे तेजस्वी यादव जी या इनके 4 सांसद या दीदी जो अभी पता नहीं कौन कौन सा शब्दावली
0: प्रचार के लिए नहीं आया,
6: मेरे मित्र यहीं बैठे हैं।
0: अजय आलोक जी, गवर्नेंस पर सवाल है,
6: नहीं, प्रखर
0: चुनाव जीतने के लिए तो जीविका दीदी को 10,000 रुपए दे दिए थे, लेकिन आज की स्थिति में गवर्नेंस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात मुख्यमंत्री पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या इसका इसका कॉग्निजेंस लिया जाएगा पार्टी की तरफ से या सिर्फ एक सीट बोलकर इसको छोड़ दिया जाएगा?
8: देखिए साहिल जी, सबसे मजेदार बात यह है कि जीत नहार में न जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पे ये मिला वो भी सही, वो मिला ये भी सही। हम तो बिल्कुल सर झुटका के इस जनादेश का सम्मान करना स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन आपको एक दो चीज को समझना पड़ेगा। बीच में मैं नहीं बोल रहा था भाई, बीच में मैं नहीं बोल रहा था, एक पे डूब जाइए, इतना अति उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। आगे सुनिए ना साहिल जी, ऐसे क्या फायदा है, बीच में एक सीट नहीं हुआ लगता है मतलब आपने लंका बजा दिया है, रुक जाइए रुक जाइए,
0: अभी तो पहली जीत है, अभी आगे बहुत फासला काटना है,
8: की जरूरत नहीं है।
0: अजय आलोक जी ठीक है,
8: मैं दो बातों पे बस ध्यान देना चाहूंगा। निश्चित तौर पे मैंने शुरू से कहा, मैंने बधाई दी, मैंने बधाई दी लोगों को, अरे भाई क्यों बोल रहे हैं भाई, मेरी अगर इसी तरह से हो गया ना नैरेटिव
13: सब देख रहे हैं,
8: मैंने उसकी भी बधाई दे दी,
13: आगे भी सुधारिए
8: जी, जरा इनको शांत करवाएंगे
13: तो दिक्कत होगा,
8: अति उत्साह हो गया है ज्यादा
13: सर, बधाई
0: सुन लीजिए ठीक है,
8: अरे हम नहीं सुधरेंगे तो
0: ठीक है ठीक है,
13: अवली जो आप लोग गढ़ते हैं
0: सुन लीजिए ना,
13: प्रखर कुटिल
8: अरे भाई सुनिए,
13: प्रखर कुटिल
8: अति
13: से बाहर आइए,
8: वो तो आज भी मैं कह रहा हूँ प्रखर कुटिल तो है ही,
0: आज खुश है वो,
8: ये तो
0: 18,953 वोट से जीते हैं, अजय आलोक जी को बोलने नहीं दे रहे हैं।
13: हम लोग इस प्रकार के शब्द नहीं बोलते हैं,
8: अब ये देखिए प्रखर कुटिल अभी याद है इनको,
13: आप अपने अहंकार,
8: ये प्रखर कुटिल मैं नहीं बोला था, ना मैं नहीं बोला था,
13: बाकी नहीं बोला था, ने बता दिया है ना कि कितना बड़ा,
8: देखिए कितने प्यार से
0: 45% से ज्यादा वोट लेकर प्रशांत किशोर बांकीपुर की सीट जीत गए हैं। पटना की ये सीट है और पिछले 30 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, विपक्ष की किसी भी पार्टी को आरजेडी हो या कांग्रेस उस सीट पर बीजेपी को नहीं हरा पाई थी, लेकिन जनसुराज पार्टी दूसरा चुनाव और यहां पर प्रशांत किशोर जीत जाते हैं, एक बहुत बड़ी जीत, चर्चा करते रहेंगे, नजर बनाए रखेंगे, फिलहाल लेके एक ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए।
14: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
15: Ready to listen to all your favorite audio? With TuneIn, you can catch your favorite music, news, sports, and more anytime, anywhere, across all your devices. From your smart speakers to smartphone, from your car to your TV. With TuneIn, you can enjoy all your favorite stations wherever you are. Plus, you can fire it up with voice command. Just ask your smart device to play TuneIn and start listening.

आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबा केसरी, हिंट बड़े आराम से।
2: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
3: जहां जुर्म वहीं कहानी, जहां कहानी वहीं साजिश, जहां साजिश वहां क्राइम। जुर्म चाहे कितना ही उलझा हो, उसकी परतें हम सुलझाते हैं। देखिए क्राइम तक यूट्यूब पर और बचिए हर क्राइम से।
4: द कांग्रेस गवर्नमेंट इन द सेंटर गॉट रिड ऑफ इट्स ओन गवर्नमेंट बिकॉज ऑफ इट्स सीरीज ऑफ killings in Punjab, including many prominent people. So things had gone really bad in Punjab.
5: Congress party was trying to say that Akalis have to be defeated. You must not allow some other faction of the Akalis to prop up so that votes are divided.
6: They created this Frankenstein called Bhindranwala.

0: बांकीपुर की जनता की जीत है।
1: लाइट खोलो,
0: और जैसा कि चुनाव प्रचार के दौरान हम लोगों ने जो बात रखी थी, ये विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, ये भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये संदेश देने का एक प्रयास है बिहार की जनता के द्वारा कि बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। आपको जनता ने 202 विधायक जिताए हैं, किसी अपराधी, किसी गलत चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मत दीजिए, अच्छे आदमी को बनाइए ताकि बिहार में भी शिक्षा हो, बिहार में भी बच्चों के लिए रोजगार हो, बिहार के बच्चों को भी बाहर मजदूरी करने न जाना पड़े। ये संदेश बांकीपुर के लोगों ने दिया है। बाकी विधायक जीतना हारना ये तो राजनीति है, चलता रहता है। जिन लोगों ने मत दिया उनका धन्यवाद कर रहे हैं, जिन्होंने मत नहीं दिया है उनको यही कहेंगे कि आपसे आपका विश्वास जीतने के लिए और मेहनत और प्रयास करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार को अच्छा नेतृत्व मिलना चाहिए, बिहार सुधरना चाहिए, और लोकसभा से पहले मोदी जी को, भाजपा को, अमित शाह जी को ये देखना चाहिए कि बिहार में कैसे बेहतरी हो, बिहार में बच्चों को रोजगार कैसे हो, पलायन कैसे बंद हो। एकमात्र यही उद्देश्य है। हम लोग को विधायक बन के ठेका पट्टा नहीं करना है, एक और एकमात्र उद्देश्य है, चाहते हैं कि बिहार में बेहतरी हो, बिहार में भी सिर्फ 5 किलो अनाज के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट न मांगा जाए। अगर 25 MP गुजरात से जीत कर गए हैं, प्रधानमंत्री बनाने में मोदी जी को गुजरात के लोगों ने योगदान किया है, तो बिहार के भी 13 करोड़ लोगों ने आंख बंद करके मोदी जी को वोट दिया है। तो जितनी चिंता उनको गुजरात की है, उतनी थोड़ी चिंता उनको बिहार की भी करनी चाहिए। बिहार के जो 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चे बाहर मजदूरी कर रहे हैं, उनकी चिंता होनी चाहिए। बिहार के लिए कोई एक स्पेशल प्रोग्राम बनाना चाहिए ताकि बिहार से पलायन बंद हो, कोई भी बच्चा यहाँ से 10-15 हज़ार रुपये के लिए अपने घर परिवार समाज को छोड़कर उसको गुजरात, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, कोयम्बटूर, तमिलनाडु, कर्नाटक न जाना पड़े। इसी उद्देश्य को लेकर हम लोग यहाँ आए हैं, और आज की जीत उसी बात को फिर से मजबूत करने के लिए है कि NDA को, भाजपा को लोगों ने जिताया है। अब भाजपा के नेतृत्व की ये जिम्मेवारी है कि किसी ऐसे व्यक्ति को बिहार का मुख्यमंत्री बनाए जो कि बिहार में रोजगार लाए, बिहार में शिक्षा की स्थिति को सुधारे, भ्रष्टाचार कम हो, और सबसे बढ़कर पलायन बंद हो। ये सीधा सीधा मैसेज है। 30 बरस का जो गढ़ है वो सिर्फ 30 दिनों में ढह गया। वो सिर्फ इसलिए ढहा है कि बिहार के लोग भी चाहते हैं कि अब 4 किलो 5 किलो अनाज और जाति से ऊपर उठकर हम लोग के बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार काम करे। अगर वो काम नहीं करेंगे तो आगे चुनाव के परिणाम उनको ऐसे ही देखने को मिलेंगे।
2: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: गणतंत्र की जन्मभूमि पर लोकतंत्र के विजय का उत्सव ऐसा कि सावन की हरियाली पर हल्दी का रंग भारी है। पटना के बासीपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बीजेपी को पछाड़ दिया और ये जीत उस बीजेपी के खिलाफ जिसे चुनाव के मैदान में शिकस्त देना आसान नहीं माना गया। जिस देश की 4131 विधानसभा सीटों में 1810 सीट पर बीजेपी का कब्जा है, जिस देश की पूरी आबादी में 78% आबादी का प्रतिनिधित्व बीजेपी करती है, उसमें 28 में से महज एक राज्य की 243 विधानसभा सीटों में से सिर्फ एक सीट और 0.51% हिस्सेदारी रखने वाले बांकीपुर की विजय ने पटना से दिल्ली तक सियासी विमर्श बदल दिया है।
1: ये सीधा सीधा मैसेज है, 30 बरस का जो गढ़ है वो सिर्फ 30 दिनों में ढह गया। वो सिर्फ इसलिए ढहा है कि बिहार के लोग भी चाहते हैं कि अब 4 किलो 5 किलो अनाज और जाति से ऊपर उठकर हम लोग के बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार काम करे। अगर वो काम नहीं करेंगे तो आगे चुनाव के परिणाम उनको ऐसे ही देखने को मिलेंगे।
2: हम कभी भी ठीकरा चुनाव आयोग या ईवीएम पर नहीं फोड़ते हैं, ये विपक्ष के लोगों के तरह।
0: मतलब ये कि जनसुराज से लेकर तमाम विपक्षी दलों की नजर में ये हार बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की परंपरागत सीट पर मिली हार है और ये हार 3 दशकों से बीजेपी की गढ़ रही विधानसभा सीट पर हुई हार है। ये हार बीजेपी में बीजेपी के मुख्यमंत्री के शासन में हुए पहले चुनाव की हार है। ये हार परंपरागत राजनीति से अलग नई नवेली पार्टी से बीजेपी की हार है।
3: हर राउंड में प्रशांत जी को पॉजिटिव सपोर्ट लोगों से मिला है और बढ़त पॉजिटिव रही है। ये दिखाता है कि पूरे बांकेपुर में कोई भी ऐसा पॉकेट नहीं था जहां जनसुराज की आवाज नहीं पहुंची हो।
4: बिहार की राजनीति एक एमएलए से जीतने से थोड़ी स्थापित होता है।
0: इस विजय का महत्व बस ऐसे समझ में आता है कि 1995 के बाद से बीजेपी कभी बांकीपुर विधानसभा सीट नहीं हारी। 2005 के बाद से पार्टी को लगातार इस सीट पर 60% से ज्यादा वोट मिलते रहे। महागठबंधन की लहर के बावजूद 2015 में भी पार्टी ने ये सीट बचाए रखी थी और पिछले चुनाव के आंकड़े देखें तो 2025 के चुनाव में नितिन नवीन ने यहाँ 62.66% वोट हासिल कर आरजेडी को सिर्फ 29.55% तक समेट दिया। 2020 के चुनाव में 59.05% वोट पाकर नितिन नवीन ने कांग्रेस को 31.57% पर रोका और 2015 में भी नितिन नवीन ने 60.19% वोट लिए जबकि कांग्रेस 32.59% वोट पर रही थी। 2025 के चुनावी मैदान में जिन प्रशांत किशोर को पूरे राज्य में केवल 4.92% वोट मिल पाए, उन्होंने ऐसे किले में सेंध लगाई है जिससे बिहार में विपक्ष की राजनीति की धार बदलने की उम्मीद लगाई जाने लगी। बांकीपुर में बीजेपी के पिछड़ जाने का अंदेशा बीजेपी के ही नेताओं को हरगिज नहीं था क्योंकि बांकीपुर में 34% सामान्य, 20% ओबीसी, 8% दलित, 28% ईबीसी और 10% मुस्लिम वोटर है। इसी बांकीपुर में पिछली बार बीजेपी को सामान्य वर्ग का 75-80% वोट मिला तो इंडिया गठबंधन को 15-20%, बीजेपी को 80% ओबीसी वोट मिले थे तो इंडिया गठबंधन को 20%, बीजेपी को 50% दलित वोट मिला था, इंडिया गठबंधन को 40%। वहाँ आखिरकार उपचुनाव में ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की परंपरागत सीट हार गई? जानकार बताते हैं, एक तो 3 दशकों की एंटी इनकम्बेंसी, ऊपर से प्रशांत किशोर ने यह अफवाह उड़ा दी कि बीजेपी वाले कहते हैं कि किसी भी कुत्ते बिल्ली को भी लड़ा देंगे तो बांकीपुर जीत जाएंगे। इसके अलावा आरजेडी का वोट जनसुराज को शिफ्ट हो गया। बीजेपी के पारंपरिक शहरी वोटर्स ने वोट नहीं किया क्योंकि पिछली बार के मुकाबले 7% कम और सिर्फ 34.30% वोटिंग हुई। बिहार के विपक्षी दल कहते हैं कि बिहार में बीजेपी के सीएम सम्राट चौधरी के शासन के खिलाफ जनता का पहला रेफरेंडम है।
5: सम्राट जी को डरने की जरूरत कल परिणाम आने के बाद है क्योंकि हम लोगों ने कहा है कि कल का जो चुनाव है वो सम्राट सरकार पर रेफरेंडम है और जिस तरीके से पूरी सम्राट सरकार, उनके विधायक, मंत्री, सांसद, अफसर, पुलिस सब लगे हुए थे, अगर कल भाजपा हारी तो सम्राट चौधरी को उसकी नैतिक जिम्मेवारी लेनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए।
0: दरअसल इस हार ने बिहार के पहले बीजेपी के सीएम और बीजेपी के पहले बिहारी अध्यक्ष दोनों की साख पर सवाल खड़े किए हैं। बाकी राजनीतिक हालात कुछ ऐसे रहे हैं। कि नितिन नवीन की सीट पर वोटर दूसरे प्रत्याशी को कबूल नहीं कर सके। बीजेपी ने पहले चारा घोटाले से जुड़े परिवार के अभिषेक बंटी को टिकट दिया था, लेकिन फिर आनन फानन में उम्मीदवार बदला गया। इस बीच देश में नीट पेपर लीक और बिहार में भरत तिवारी एनकाउंटर जैसे मसले आए, जिसका प्रचार पीके ने बखूबी किया। रही सही कसर वोटिंग से ठीक पहले इनकम टैक्स के छापे ने पूरी कर दी और प्रशांत किशोर को बाकीपुर की जनता ने विजय का तिलक दे दिया। चंद महीनों पहले 238 सीटों पर लड़कर एक भी सीट नहीं जीतने वाले पीके अब एक सीट लड़कर 100% स्ट्राइक रेट से खाता खोलने वाले राजनीतिक दल हैं। शशि भूषण के साथ रोहित सिंह, पटना आज तक।

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: तो प्रशांत किशोर 18,953 वोट से बाकीपुर की सीट जीत चुके हैं। दतिया की सीट कांग्रेस के पास, जबकि गुजरात में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने बाईपोल जीत लिया है। तो फिलहाल दंगल में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे हल्ला बोल के साथ। देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: बीजेपी अध्यक्ष की सीट पर पिट गई पार्टी। बांकीपुर से शानदार जीत के बाद बोले प्रशांत, 30 दिन में ढहा दिया 30 साल पुराना किला। सीएम सम्राट पर किया बड़ा हमला, आरजेडी की जमानत जब्त। कांग्रेस के हाथ लगा मध्य प्रदेश का दतिया। यहां भी 6000 से ज्यादा वोटों से हार गई बीजेपी। गुजरात के मांजलपुर ने बचाई बीजेपी की इज्जत। 30,000 से ज्यादा वोटों से जीते सत्येंद्र भाई पटेल। यूपी विधानसभा में मानसून सत्र के पहले दिन चढ़ावा चोरी पर घमासान। विपक्ष की तरफ से जोरदार प्रदर्शन। योगी बोले, जनता को गुमराह ना करें, दम है तो विकास पर करें बात। झारखंड का रांची बना नया जंतर मंतर। जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी। 10 दिन से भूख हड़ताल पर देवेंद्र नाथ महतो। सीबीआई जांच की मांग। E20 के खिलाफ नागपुर में गडकरी के घर के बाहर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। मंत्री के इस्तीफे की मांग। सुरक्षा घेरा तोड़ने पर हिरासत में लिए गए कई नेता।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये संदेश देने का एक प्रयास है बिहार की जनता के द्वारा कि बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। आपको जनता ने 202 विधायक जिताए हैं। किसी अपराधी, किसी गलत चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मत दीजिए।
3: छह महीना भी नहीं बीता है, 202 सीट भी हम जीते हैं, ये याद रखते हैं।
4: तो जो नीरज सिन्हा जी थे वो असली उम्मीदवार नहीं है भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी का असली उम्मीदवार प्रशांत किशोर जी।
5: ये बदलाव के लिए वोट था, बीजेपी को लोग हराना चाहते थे, बीजेपी को सबक सिखाना चाहते थे।

नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। बिहार में आज बड़ा चुनावी उलटफेर हुआ। प्रशांत किशोर ने अपने चुनावी डेब्यू में बड़ी जीत हासिल कर ली है। बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव में उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार को जोरदार पटकनी दी है। बिहार में प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव में खाता नहीं खोल सकी थी, लेकिन इस बार पीके खुद चुनाव मैदान में आए और उन्होंने जिस सीट से सफलता हासिल की है वो सीट बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन की परंपरागत सीट है। बांकीपुर उपचुनाव में जीत गए हैं प्रशांत किशोर, और ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये जीत उस सीट से है जो कि नितिन नवीन बीजेपी के अध्यक्ष की सीट थी। कुल 63,000 से ज्यादा वोट मिले हैं प्रशांत किशोर को और 19,246 वोट से वो जीते हैं। यानी मार्जिन भी आप देख रहे हैं। नितिन नवीन ने बीजेपी का अध्यक्ष बनने के बाद ये सीट बांकीपुर खाली की थी, जिस पर ये बाईपोल था, और इसलिए इस सीट का सिग्निफिकेंस बहुत था क्योंकि बांकीपुर वो सीट थी जो लगातार बीजेपी जीत रही थी और लगातार उस सीट से नितिन नवीन विधायक चुनकर आ रहे थे। लेकिन इस सीट पर अब जब चुनाव हुआ है बाईपोल उनके सीट खाली करने के बाद, तो बांकीपुर से जीत गए हैं। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी के नीरज कुमार को मिला 44,700 वोट, वहीं 19,246 वोट के मार्जिन से जीते हैं प्रशांत किशोर। इस प्रदर्शन पर प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर निशाना साधा, जबकि सम्राट चौधरी ने जनादेश स्वीकार कर उन्हें बधाई दी है। सवाल है कि क्या पीके की यह जीत बिहार की राजनीति में एक नए समीकरण बनाएगी। बीजेपी तो हारी ही, आरजेडी कैंडिडेट की स्थिति ऐसी है कि उनको बहुत कम वोट मिले हैं। सवाल है कि प्रशांत किशोर एनडीए की ज्यादा बड़ी चुनौती है या महागठबंधन के जीते पीके, क्या बिहार में बदलाव ओके? क्योंकि एक वक्त पर यह माना जा रहा था कि अगर पीके बिहार में, हालांकि अभी 6 महीने

0: सीट रही है जिसे उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद छोड़ी है। ये वो सीट है जिसे 1995 के बाद से बीजेपी कभी नहीं हारी थी। पीके अपने प्रदर्शन को बिहार में सकारात्मक राजनीति को मिला समर्थन कह रहे हैं। उनके निशाने पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं।
1: रेफरेंडम है ये सम्राट चौधरी पे?
2: बिल्कुल वो तो है।
1: आप बार बार कह रहे थे जनमत संग्रह है ये।
2: बिल्कुल सम्राट चौधरी के नेतृत्व को बिहार की जनता स्वीकार्य नहीं करती है, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। भाजपा ने चुनाव जीतने के बाद यहाँ पर एक अपराधी प्रवृत्ति के आदमी को, एक गलत चाल चरित्र के चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व दिया है जो बिहार के लोगों को स्वीकार्य नहीं है।
0: बांकीपुर में पीके का प्रदर्शन न सिर्फ बीजेपी के उम्मीदवार नीरज कुमार पर भारी पड़ा है बल्कि आरजेडी के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि आरजेडी कैंडिडेट रेखा कुमारी मुकाबले में कहीं नहीं टिकी है। यानी अचानक पीके की मौजूदगी इस विश्लेषण को भी मजबूत करेगी कि क्या वो बिहार की राजनीति का मजबूत विकल्प है।
3: भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा ही एक सुनने को मिला, जो आप भी प्रश्न में पूछ रही थी कि हम कुत्ता बिल्ली को भी दे देंगे तो वहां से जीत जाएगा। लेकिन भैया, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कुत्ता बिल्ली पे विश्वास नहीं किया है, वो एक लोमड़ी दे दिया है।
4: लोमड़ी दे दिया है
3: प्रशांत किशोर के रूप में,
4: यानी कि जो जीते प्रशांत किशोर लोमड़ी है।
3: बस बिल्कुल, और उनको जिता दिया गया। तो जो नीरज सिन्हा जी थे वो असली उम्मीदवार नहीं है भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी का असली उम्मीदवार प्रशांत किशोर जी है।
0: हालांकि 2025 के बिहार चुनाव में पीके की पार्टी जनसुराज का खाता नहीं खोला था, जबकि पार्टी ने लंबी तैयारी के बाद बिहार चुनाव लड़ा था। वैसे अब नई शुरुआत हुई है और राज्य में पीके के दांव बड़े हो सकते हैं। काउंटिंग शुरू होने से पहले खुद पीके ने बांकीपुर के चुनाव को सम्राट सरकार के खिलाफ रेफरेंडम कहा था।
5: सम्राट जी को डरने की जरूरत कल परिणाम आने के बाद है, क्योंकि हम लोगों ने कहा है कि कल का जो चुनाव है वो सम्राट सरकार पर रेफरेंडम है। अगर कल भाजपा हारी तो सम्राट चौधरी को उसकी नैतिक जिम्मेवारी लेनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। अगर नहीं लेंगे तो भाजपा वाले खुद ही उनको हटाएंगे, हमको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं।
0: बांकीपुर के अलावा मध्य प्रदेश के दतिया में भी बीजेपी को झटका लगा है। सिर्फ गुजरात के मंजलपुर विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी दमदार प्रदर्शन के साथ जीत सकी है, इसीलिए इसे संकेत और संदेश के चुनाव के तौर पर भी देखा जा सकता है। आज तक ब्यूरो। बांकीपुर नितिन नवीन की सीट सोचिए आप। गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए, जिनके साथ हम चर्चा करेंगे। अक्षत सोनक हमारे साथ प्रवक्ता जनसुराज के जुड़ रहे हैं, अनुप्रिया यादव प्रवक्ता जेडीयू की जुड़ रही हैं, नवल किशोर प्रवक्ता आरजेडी के जुड़ रहे हैं, अतुल लौंडे पाटिल प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, और आशुतोष राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव भाटिया जी, आप ही के साथ शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बार रिपोर्टर के पास चलते हैं। शशि भूषण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शशि, मतलब फाइनल काउंटिंग खत्म और क्लियर विक्ट्री प्रशांत किशोर को?
6: अंजना, देखिए विक्ट्री तो कंफर्म है, और जो हमारे पास जानकारी थी 31 राउंड में ही वोटों की गिनती पूरी होनी थी, 31 राउंड की टैली भी आ गई, जो हमने खबर बताई भी अपने दर्शकों को, और उसके मुताबिक जो आंकड़ा था वो हम बता भी रहे थे कि प्रशांत किशोर 18,953 वोट से जीत गए हैं। लेकिन अब एक नया डेवलपमेंट है जो इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर दिख रहा है, और थोड़ा हमको भी अचरज हुआ है। हमने खुद इलेक्शन कमीशन को मैसेज किया, उनके अधिकारियों को, कि हमको क्लियर करें। अब जो राउंड्स है वो एक बार फिर बढ़ गई हैं, अब 32 राउंड की गिनती बताई जा रही है, और ऑब्लिक 36 कर दिया गया, मतलब शायद राउंड की संख्या 36 कर दी गई है। अब ये क्या पहली है, थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा है, जैसे ही क्लियर होगा हम बताएंगे, क्योंकि पहले तो यही जानकारी थी कि 31 राउंड में वोटिंग काउंटिंग खत्म हो जानी है, और जो फाइनल आंकड़ा था वो हमने बताया अभी दर्शकों को। हालांकि इतनी बढ़त है प्रशांत किशोर के पास कि अब वो चुनाव हारेंगे नहीं, ये तो तय बात है, लेकिन किन परिस्थितियों में क्यों ये आंकड़ा शो कर रहा है ये थोड़ा दिलचस्प है। इसको हम जैसे ही क्लियर करेंगे वो हम आपसे साझा भी करेंगे, दर्शकों से भी साझा करेंगे। लेकिन हाँ, प्रशांत किशोर ने एक बड़ी जीत दर्ज की है इस विधानसभा सीट पे, जो बीजेपी के पास 1995 से लगातार रही। और सबसे बड़ा मैसेज इसमें ये छिपा है कि तमाम दिग्गज, खुद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन यहाँ कैंप करते रहे, सब दिग्गज लगे रहे, स्टार प्रचारक पवन सिंह, मनोज तिवारी, सबको जनता ने एक तरह से धता बता दिया। और प्रशांत किशोर जो अकेले अपने पार्टी के नेता कह लीजिए, स्टार कैंपेनर कह लीजिए, उनके कार्यकर्ता के साथ वो घूमते रहे और उन्होंने ये बाजी मारी है, तो जीत तो उनकी बड़ी है, इससे इंकार नहीं किया जा सकता है। तेजस्वी यादव, उनके लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि उनके उम्मीदवार का जमानत जो है वो जब्त हो गया है। जी
0: ठीक है, जैसे ही कुछ क्लैरिटी आती है शशि फिर से कनेक्ट कर लीजिएगा, इशारा कीजिएगा सीधा आपका।

0: करेंगे क्योंकि ये समझना जरूरी है जो स्थिति इस वक्त दिख रही है। लेकिन गौरव भाटिया जी, आपके पास आते हुए जिसको हाई स्टेक सीट कहा जा सकता है, बांकीपुर की सीट, नितिन नवीन की खाली की हुई सीट, सेंट्रल पटना में की अर्बन असेंबली जिसको कहते हैं, एक शहरी सीट जहां पर भारी तादाद में जो आपका समर्थन करने वाले लोग हैं, अगड़े हैं, वो भी रहते हैं, इस सीट को हार जाना प्रशांत किशोर के हाथों, क्या कह रहा है ये?
1: देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ये कहा है, या तो हम चुनाव जीतते हैं और अगर कहीं हम चुनाव हारते हैं तो हम सीखते हैं उससे। तो मैं बधाई देना चाहूंगा प्रशांत किशोर जी को भी और जो भी बाकी लोग चुनाव, ये उपचुनाव जीते हैं। दूसरी बात, आपने कहीं नहीं देखा कि किसी भी नेता ने कहा हो ईवीएम में गड़बड़ी हो गई और चुनाव मैनिपुलेट हो गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बेईमान है। अंजना जी देखिए, ये चरित्र दिखाता है भारतीय जनता पार्टी का कि चाहे जीत हो या हार हो, लोकतंत्र मजबूत हुआ है और हम सबको उसका स्वागत करना चाहिए। अब ये तो राहुल गांधी को बताना चाहिए जो कहते हैं कि निर्वाचन आयोग बेईमान है, ईवीएम मैनिपुलेट होती है, तो फिर इतनी प्रतिष्ठित सीट पे जब भाजपा नंबर दो पे रहती है तो फिर ये चुनाव सही था या गलत था, ये पूरे विपक्ष के लिए एक सवाल है। अब हम लोग उपचुनाव की बात करते हैं। देखिए, जैसे आप बात कर रही हैं बांकीपुर की, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी वहां पे लगातार 5 बार विधायक रहे और जब वो 5 बार विधायक रहे तो उनका जो कद है, जो मिलनसार स्वभाव है, हम सबने देखा, जनता उसको सराहती थी। अब कोई और व्यक्ति आता है, उसे समय लगता है लोगों से जुड़ने में। अगर कोई कमी हमारे तरफ से रही है तो हम लोग आत्मचिंतन करेंगे और उसका सुधार करेंगे। दूसरी बात, हमें गुजरात में जो सीट है मांजलपुर, इसकी भी बात करनी चाहिए। अंजना जी, भारतीय जनता पार्टी वहां सत्ता में है, हम सब जानते हैं, 7 चुनाव लगातार जीती है, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है और विक्ट्री मार्जिन 30,630 बता रहे हैं।
0: और अब दतिया,
1: ये भी तो एक प्रश्न उठता है ना
0: दतिया,
1: कि वहां कांग्रेस पार्टी की क्या हाल है।
0: उस पर चर्चा करेंगे गौरव जी, उस पर चर्चा करेंगे,
1: मार्जिन हमारा रहता है
0: गौरव जी, उस पर चर्चा करेंगे।
1: दतिया, एक बात और कहूं,
0: अच्छा ठीक है, पूरा कीजिए, एक काउंटर क्वेश्चन है, ठीक है पूरा कीजिए।
1: दतिया, हाँ
0: दतिया भी आप हारे कांग्रेस,
1: दतिया पे आते हैं। देखिए, हम सब जानते हैं, हाँ दतिया में कांग्रेस का ही सिटिंग विधायक था, जब दोष सिद्ध होता है तो वो डिस्क्वालिफाई होता है, दोबारा उपचुनाव होते हैं। वहां विक्ट्री मार्जिन जो मेरे पास आ रहा है आंकड़ा, 6,000 के आसपास है। 6,000 कोई बहुत ज्यादा विक्ट्री मार्जिन तो नहीं है, आप ये मानेंगे। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, हर जगह पे या तो हम सीट जीते हैं या हम बहुत जीत के पास रहे हैं। सबसे मजबूत पार्टी कौन है? वो भारतीय जनता पार्टी है। सवाल ये होगा कि क्या 6 महीने पहले जब हम बिहार का चुनाव जीते थे और हमारी 91 सीटें अपने बल पे आई थी और एनडीए का 200 का आंकड़ा पार हो गया था, वो भी तो जनादेश था। अगर आज एक उपचुनाव में कोई और जीता है, मैं समझता हूं उससे हमें भी सीखने का मौका मिल रहा है और विपक्ष को भी चाहिए कि अपनी कमजोरी को वो अपनी ताकत ना समझे। आज कहां है आरजेडी, कहां है आरजेडी, आप बताइए, उन्होंने अपना वोट ट्रांसफर करा दिया या उनका वोट ट्रांसफर हो गया, ये तो चिंता का सबब उनके लिए।
0: ठीक है गौरव जी, मैं उस पर पूछूंगी, आरजेडी के भी प्रतिनिधि यहां पर है, लेकिन एक सवाल से आप नहीं आज बच सकते हैं, और वो सवाल ये है कि सरकार बनने के और सम्राट चौधरी को सीएम बनाने के 6 महीने बाद ये उपचुनाव होता है, क्या ये क्लियर मैंडेट नहीं है? और प्रशांत किशोर उस सीट पर हरा देते हैं जहां पर आपके दिग्गज सब पहुंचे थे प्रचार के लिए, क्या ये क्लियर मैंडेट नहीं है कि भाई इस सरकार को लेकर लोगों के मन में शंका है? कम से कम जितने लोगों ने 34% लोगों ने बांकीपुर में वोट किया।
1: देखिए अंजना जी, मेरी जितनी राजनीतिक समझ है मैं एक बात बिल्कुल कह दूंगा, एक उपचुनाव में किसी प्रत्याशी की जीत हो जाती है ये लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा है। हो सकता है प्रशांत किशोर जी में कोई खूबी ऐसी दिखी हो वहां की जनता को, जिन्हें हम सराखों पे बैठाते हैं, जो उन्हें भाजपा के प्रत्याशी में नहीं दिखी। लेकिन क्या इसका यह मतलब है कि, मैंने बताया 200 का आंकड़ा पार कर दिया था एनडीए ने, 91 सीट भाजपा की आई थी अभी 7 महीने पहले, क्या वो सब व्हाइट वॉश हो जाता है? लीपापोती कर देंगे, हम कहेंगे कुछ नहीं था वो जीत, ऐसा नहीं है अंजना जी। और मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी आज भी बहुत मजबूती से ये चुनाव लड़ी है।
0: अक्षत सोना,
1: हमने जो उच्च मापदंड होते हैं उसका पालन किया है और इसीलिए जनता हमारे साथ अभी भी दिखाई दे रही है। हम आगे और मजबूत होके आएंगे।
0: अक्षत सोनक आपके पास आते हैं क्योंकि भाई अभी तक की स्थिति ये बता रही है कि आप लोग जीत रहे हैं। बहुत सारे आपके साथ मतलब घूम घूम कर हम लोगों ने शोज किए थे चुनाव के पूरे बिहार में।
2: बिल्कुल अंजना जी,
0: अनुप्रिया जी का चेहरा आज थोड़ा सा मायूस मुझे भी दिख रहा है, लेकिन क्या करेंगी अनुप्रिया जी, सेटबैक तो है ही, समझ में आ रहा होगा उनको, बिहार में ही रहती हैं। लेकिन अक्षत जी, एक भी सीट ना आना वहां से जब प्रशांत किशोर लड़ते हैं, और एक बीजेपी की सीट पर जहां से लगातार नितिन नवीन जीत रहे हैं उस सीट पर जीत जाते हैं, क्या आप लोगों को ये नहीं लग रहा है कि उनको चुनाव लड़ना चाहिए था पिछली बार?
2: नहीं नहीं बिल्कुल। सबसे पहले तो अंजना जी बहुत धन्यवाद, पिछले चुनाव में भी आपने जन स्वराज की आवाज को और जनता तक ले जाने का बहुत अच्छा काम किया था। देखिए ये जीत कई मायनों में बहुत ही ऐतिहासिक है, क्योंकि ये जीत जन स्वराज अभियान की है। जैसे आपने बोला कि उन्होंने पिछली बार चुनाव नहीं लड़ा, बट वो अभियान उनके चुनाव लड़ने ना लड़ने तक सीमित नहीं रहा, और उसी का फल स्वरूप आज है कि आज जो बिहार की जनता ने आज एक दमदार विकल्प को जन्म दिया है, मतलब एक मौका जो जन स्वराज को बांकीपुर की जनता ने प्रशांत किशोर जी की दावेदारी पे ठप्पा लगाकर किया, इससे पूरे बिहार में एक आवाज उठी है कि कोई है जो जाएगा और विधानसभा में जन जन की बात करेगा, भरत तिवारी की बात करेगा, नीट छात्र हत्याकांड की बात करेगा, छात्रों की बात करेगा कि छात्रों पर AK-47 क्यों चलाई गई, लाठी क्यों बरसाई गई। एक ऐसा अपना विकल्प जनता ने मजबूत किया है इस चुनाव के दौरान, जिसको मुझे लगता है बहुत ही ऐतिहासिक रूप से हमें समझना चाहिए, और इसके मायने और इसके जो प्रभाव आपको है वो आने वाले समय में बहुत मजबूती से दिखेंगे। तो मेरा यही मानना है कि जन स्वराज ने जो भाजपा का सो कॉल्ड कहा जाने वाला था किला, जैसे अभी गौरव भाटिया जी कह रहे थे कि ये एक उपचुनाव है, उसको उतना महत्व नहीं देना चाहिए, मेरा मानना यह है कि जो ये सबसे महत्वपूर्ण बात को फिर से भूल रहे हैं कि ये बिहार सरकार का, बिहार के लोगों का रेफरेंडम था, जो सरकार का था, जो नीतीश जी के चेहरे पर लड़ा गया था और सम्राट चौधरी को जबरदस्ती वहां पर बैठा दिया गया, ये बिहार की जनता ने
0: आपकी बात का अक्षत जी भाजपा को, पर आपने मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया, उस समय काहे नहीं लड़े प्रशांत किशोर?
2: मैंने आपको पिछले बार
0: लड़ते तो अच्छा रिजल्ट रहता।
2: नहीं बिल्कुल, पिछली बार उनके उनके ऊपर अपनी पूरी पार्टी को चलाने का जिम्मा था, और उसके साथ जितने भी 243 विधायक खड़े थे उनके प्रत्याशियों को लड़ाने का जिम्मेवारी थी। वन मैन आर्मी की तरह उस आदमी ने काम किया है, पहली बार एक ऐसा मौका मिला है जब वो जनता से जाके डायरेक्ट रूबरू हुए हैं, उनके मुद्दों को उठाया है, बांकीपुर की गलियों की हालत दिखाई है, वहां की नालियों की हालत दिखाई है, तो पेरिस दिखाया उन्होंने।
0: ठीक है, इससे पहले कि मैं बाकी लोगों के पास जाऊं, गौरव जी दो बात का जवाब दीजिए, जो बिल्कुल आप काउंटर कीजिए, क्योंकि उनका सीधा आरोप है कि ये जेंजी आंदोलन, ये AK-47 का सिवान में चलना, ये तमाम ऐसे पेपर लीक के मुद्दे, अब चाहे वो बच्चे डायरेक्टली वोट करते हो ना करते हो और परिवार प्रभावित होते हैं, ये सब हवा बदला है बिहार का, जिसकी वजह से ये स्थिति आई है।
1: कुछ तथ्यों पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले जैसा मैंने कहा कि विधानसभा के चुनाव हुए, जन स्वराज पार्टी की कितनी सीटें आई थी? शून्य, अंडा सीटें आई, एक जगह भी जीते नहीं, हर जगह जमानत जब्त हुई, वो भी तो बैंडेड जनता का ही था ना अंजना जी। और उसके बाद जिस तरह से सम्राट चौधरी जी ने बड़ा दिल दिखा के आज भी बधाई का संदेश दिया है, ईवीएम को कोसा नहीं है, ये दिखाता है कि सम्राट चौधरी जी कैसे लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, आप कह रहे जेंजी का आंदोलन हुआ, जेंजी के लिए सबसे ज्यादा कार्य किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। नरेंद्र मोदी जी ने तो बड़ा दिल दिखा के कहा अगर कोई बच्चा उन्हें गाली भी दे रहा है तो उसे मैं माफ करता हूं, हमने उसके बाद ठोस कड़े कदम उठाए। क्या जेंजी गुजरात में नहीं है, जहां मैंने आपको बताया मांजलपुर सीट है जो हम जीत गए हैं, वहां की जेंजी को भाजपा अच्छी लगती है। दतिया में हम 6,000 से सिर्फ पीछे रहे, वहां की जेंजी को भाजपा अच्छी लगती है, लेकिन बांकीपुर जब हम हार गए तो वहां की जेंजी की वजह से हार गए, ऐसा नहीं है, जेंजी भी हमारे साथ है। बीच में ना बोले बिल्कुल बीच।
0: रुके रुके अक्षत जी आ रहे हैं, उनको पूरा।
1: जेंजी ये भी देखती है कि कौन सा प्रवक्ता सम्मान पूर्वक बोलता है और कौन सा प्रवक्ता बीच में बोलता है। अभी अक्षत जी आप बहुत युवा हैं, अपने समय का इंतजार करिए। हाँ अंजना जी, मैं केवल इतना कहूंगा, देखिए जेंजी का जो मुद्दा है वो उठाया गया, उसमें ठोस कार्रवाई हुई, हमने देखा। लेकिन आज जो उपचुनाव हुए, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, आप याद करिए, गोरखपुर, फूलपुर और कैराना, ये उपचुनाव हुए थे उत्तर प्रदेश में, हम हार गए थे, ये गढ़ माने जाते थे भाजपा के। लेकिन जब 2022 का विधानसभा का चुनाव हुआ तो हमने देखा योगी आदित्यनाथ जी ने किस तरह से ऐतिहासिक जीत दर्ज करी। तो क्या ये जो फूलपुर हारे थे, गोरखपुर कैराना हारे थे, इसकी वजह से हम विधानसभा हार गए? ऐसा नहीं हुआ।
0: ठीक है, और अक्षर जी एक छोटा सा, हो गया गौरव जी, अक्षर जी एक छोटा सा जवाब, वो कह रहे हैं कि उपचुनाव का बहुत लिमिटेड रेलेवेंस होता है। ठीक है, जल्दी से, उसके बाद में जाऊंगी बाकी मेहमानों के पास।
2: आप इसको गलत डायरेक्शन में आप इसको कंपैरिजन कर रहे हैं। किसी भी चीज को कंपेयर कर लेने से वो दोनों चीजें बराबर नहीं हो जाती, आपके विश्लेषण में ही फ्लॉ है। जो विश्लेषण हम कर रहे हैं कि ये जो उपचुनाव है, ये उपचुनाव क्यों स्ट्रेटेजिक है, क्योंकि ये अभी 2025 में ही नई सरकार बनी है, उसी 6 महीने के कार्यकाल से ज्यादा जो उसका हुआ है, उसके अंदर जो घटनाएं हुई हैं, सरकार का जो रिस्पांस रहा है और उप जो मुख्यमंत्री का जो रवैया रहा है जनता की ओर, उसका रेफरेंडम है ये। किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट को आप इससे कंपेयर ना करें, क्योंकि इसी बीच ऐसी महत्वपूर्ण ऐसी घटनाएं हुई हैं जो कि अलग अलग वर्ग के लोगों के साथ घटी हैं, अलग अलग जातियों के साथ घटी हैं, और उसमें ऐसा मुख्यमंत्री कहे कि गमछा देख के इनकाउंटर किया जाए, तो उसका जवाब मिला है आपको इसको, इसलिए आपको पूरे हाथ के साथ हाथ जोड़कर इसको आपको
0: अनुप्रिया जी को दिखाई जल्दी से। अनुप्रिया जी, उसके मैं आ रही हूँ, नवल किशोर जी और अतुल लौंडे पाटिल जी, आशुतोष जी। अनुप्रिया जी, आज ये जनसुराज वाले तो सीधा सीधा कह रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर रेफरेंडम है।
3: अंजना जी,
0: ये पोस्ट नीतीश चेहरा का भी अगर आप देखिए, पिछली बार नीतीश जी का चेहरा था चुनाव में, इस बार नहीं है, उसका भी खामियाजा है क्या अनुप्रिया जी?
3: नहीं अंजना जी, मुख्य चुनाव हो या उपचुनाव हो, चुनाव में जीत हमेशा जनता की होती है, और मैं हमेशा मानती हूँ कि लोकतंत्र की जीत होती है। ठीक है, बधाई हो जन स्वराज के जो आला कमान है उनको, बधाई है कि उनको चुनाव बाकीपुर की जनता ने चुना है। लेकिन अब जन स्वराज के अभी प्रवक्ता ही कह रहे थे कि विश्लेषण आप गलत कर रहे हैं, आप इस चुनाव को एक बार, मैं मानती हूँ कि चुनाव मुद्दे का चुनाव नहीं था, यह चुनाव रणनीति की चुनाव थे, और ऐसी कूटनीति रणनीति के साथ में थी जहां पे ऊंची राजनीति की प्रशांत किशोर की, और मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं चैलेंज भी करती हूँ प्रवक्ता को भी और जन स्वराज के प्रशांत किशोर जी को भी, कि आप एक स्टेटमेंट बता दीजिए जहां पे भाजपा या एनडीए के किसी भी व्यक्ति ने यह कहा कि अगर हम कुत्ता बिलाई को भी चुनाव लड़ाएंगे तो जीत जाएगी वो, या ऐसा किसी भी तरह का स्टेटमेंट हमारे द्वारा नहीं दी गई। ये एक राजनेता के रूप में कितने स्थापित होंगे ये तो बाकीपुर की जनता देखेगी, लेकिन स्ट्रैटेजिस्ट के रूप में ये अपने आप को स्थापित आज नहीं, कई वर्षों से करते आ रहे हैं, और कई पार्टियों के साथ उन्होंने काम भी किया है। तो ये चुनाव निश्चित तौर पे रणनीति की चुनाव जीते हुई है, और इनकी किसी भी तरह के विश्लेषण या ये कहते हैं कि अलग अलग जाति धर्म के साथ में, एक मुझे बताइए कि 6 महीना में क्या बिहार की जनता कैसा क्या बड़ा बवाल हो गया कि जो उनका उनकी रणनीति बदल गई, उनकी सोच बदल गई, उनकी स्ट्रैटेजी बदल गई। जो एक पार्टी जन स्वराज 243 सीट पे चुनाव लड़ती है, किसी भी सीट पे वो चुनाव जीत के नहीं आती
0: जी, वो आपको चैलेंज कर रहे हैं तो सुना दीजिए आपके पास, क्योंकि वो रवि शंकर प्रसाद भी कह रहे हैं कि उनकी बाइट एडिट करके चलाई जा रही है,
2: यही वीडियो को ये बोल रहे हैं कि हम गुमराह कर रहे हैं, और यही वीडियो आपको मैं लीजिए आपके मुंह पे अभी इसका जवाब मैं आपको देता हूँ, ये वीडियो को मैं आपको भेज भी दूंगा, इसको ध्यान से मेरी बहन सुन लीजिएगा, और ये बात प्रशांत किशोर जी ने नहीं बोली है, आदरणीय सांसद रविशंकर प्रसाद जी की बात पे उन्होंने टिप्पणी की है, सुन लीजिएगा इस वीडियो को।
3: आपने टिप्पणी कहा है, आपने उनके स्टेटमेंट में कहा कि,
0: अच्छा सुनिए एक बार, वो चला रहे हैं,
3: एक बार भी नहीं बोला,
0: एक बार वो सुना रहे हैं, बोलने दीजिए,
3: ये वीडियो है ही नहीं, ये झूठ है, और ये बाकीपुर की जनता जानती है। और इसमें मैं इस बात को मैं मानती हूँ कि एनडीए की हार हुई है, हम इसमें आकलन भी करेंगे, हम इसमें समीक्षा भी करेंगे क्यों चुनाव हम हारे।
0: ओहो, आपने चलाया नहीं, एक बार सुनिए। हाँ,
4: नेता लेंगे किसी नेता से,
2: बहुत छोटा क्लिप है मेरे पास जो मैं आपको अभी सुना दे रहा हूँ, जल्दी से
4: किसी नेता से,
3: झूठ है, मैं तो कहती हूँ
0: कहाँ पता चला,
3: छोटा क्लिप कहाँ है, आप बड़ा क्लिप दिखाइए।
2: अरे मैडम, मेरे पास पूरा वीडियो भी है, मैं आपको पूरा वीडियो भेज दूंगा,
3: प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिएगा। अंजना जी, मुझे 2 मिनट समय दीजिएगा,
2: 2 मिनट के समय में मैंने आपको छोटा सा दिखा दिया,
3: कोई नहीं है, ये झूठ है, और आपके चेहरे बता रहे हैं कि किस तरह से आपने बाकीपुर की जनता,
0: क्योंकि ओरिजिनल बाइट हम लोगों ने भी निकालने की कोशिश की, उनका एक सफाई वाला जरूर उस पर आ रहा है वीडियो कि भाई मैंने ऐसा कभी नहीं बोला है, उसी का पार्ट है ये लग रहा है। अक्षत जी,
3: अंजना जी,
0: अच्छा
2: मैडम,
0: जारी वाले वाले।
2: ये वीडियो यही वीडियो प्रशांत जी ने जो ये अनुप्रिया जी ने ये बोला कि प्रशांत किशोर जी ने ये बात बोली है कि कुत्ता बिलाई को हम अगर खड़ा कर देंगे तो, जबकि रविशंकर प्रसाद जी का ही वो वीडियो है जिसके
0: कहां है
2: रिस्पॉन्स
0: दिखाइए।
2: में प्रशांत
0: अच्छा
2: किशोर
0: ठीक है,
2: जी,
0: अभी एक सेकंड, एक पूरा टाइम आपको दे रहे हैं, चलाइए
2: यही प्रशांत किशोर जी ने उनके रिस्पॉन्स में बोला था, देखिए
0: जल्दी से जल्दी से,
4: सोचते हैं
0: माइक के पास ले जाइए, माइक के पास, अपने माइक के पास कीजिए, कैमरा के पास नहीं। हाँ
2: माइक नहीं है मैडम।
0: ओ अच्छा, मोबाइल से ही कर रहे हैं,
4: सही है ना? देखिए अब आपके बारे में
2: ये वीडियो कोई ऐसी नहीं है कि जो जन स्वराज ने कहीं से मैन्युफैक्चर करके इसको बुला लियो, ये एक्चुअली एक वीडियो है जो कि इंटरनेट पे अवेलेबल है और पिछले कई बार जीडीओ के लोगों ने इसका क्लैरिफिकेशन मुझसे मांगा था, इसलिए ये वीडियो
0: एक बार नवल किशोर जी को
2: अपने पास
0: रखा हुआ
2: है।
0: रुक जाइए, आपने चैलेंज किया, वो कह रहे हैं कि उनके पास वीडियो, अब हालांकि ऑडियो सुनाई नहीं दे रहा है ठीक से क्योंकि वो मोबाइल से लिंक है, लेकिन नवल किशोर जी, मीसा जी कह रही है कि ये क्या कह रहे हैं आप, गौरव जी क्या कह रहे हैं, वो कह रहे कुत्ता बिल्ली नहीं है तो लोमड़ी है।
1: हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग क्लैरिफिकेशन दें।
0: क्या है, क्या रविशंकर प्रसाद जी ने ये नहीं कहा है, वो तो बाइट सुना रहे हैं।
4: हम जिता लेंगे, ये बिल्कुल
1: मैं कुछ कहूँ इस पे, ये झूठ बोला जा रहा है।
0: कैसे
4: पार्टी अपने एक एक कार्यकर्ता का सम्मान करती है।
5: एक बात मुझे कहना है कि
1: अंजना जी मैं कुछ कहूँ, अब
0: जल्दी बोलिए सर, रविशंकर जी ने बोला है नहीं बोला है, वो बाइट सुना रहे हैं।
1: ये देखिए मेरे रवि शंकर प्रसाद जी का ही बयान चल रहा है और वो स्पष्ट कह रहे हैं, उसके बाद मैं चला दूंगा। वो कह रहे हैं कुछ लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि हम किसी कुत्ते बिल्ली को भी खड़े कर देंगे तो चुनाव जीत जाएंगे, ये बात गलत है। भाजपा अपने हर कार्यकर्ता का सम्मान करती है, वो खंडन कर रहे हैं इस बात का और ये उनका पूरा बाइक मेरे हाथ में है। तो अंजना जी कम से कम यहाँ पे झूठ नहीं बोलना चाहिए क्योंकि ये बहुत समझदार ऑडियंस है आज तक की, और जब झूठ बोलते हैं तो इनकी ही क्रेडिबिलिटी पे कहीं ना कहीं
0: क्या सच है क्या झूठ है। लेकिन गौरव जी एक बात सच है
1: और आप कहेंगे तो मैं चला दूंगा,
0: लोगों के बीच में गई, लोगों के बीच में गई और उसकी वजह से नवल किशोर जी जो मैंने कहा मीसा जी को कोट किया उस पर क्या कहेंगे आप, प्रशांत किशोर की जीत सरकार के खिलाफ है या बीजेपी के ही बहस पर आप लोग अभी भी कायम है कि बीजेपी की तरफ से लड़े हैं वो?
6: देखिए बांकीपुर का चुनाव का एकदम स्पष्ट संदेश है, चूंकि परंपरागत सीट रही है भाजपा की, तो जो वहां से संदेश मिलेगा वो भाजपा के लिए है कि जो पिछले 15 साल में बिहार में, तो खैर 15 साल से भी ज्यादा हो गया, और देश में जो आप काम कर रहे हैं उसके प्रति स्पष्ट संदेश है कि आप किसी काम के लायक नहीं है। और यह इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि एक एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो अपने आप को विश्व की महत्वपूर्ण पार्टी कहती है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष वहां से 4 बार चुनाव जीते हैं, उसके पहले भी उनके परिवार से जीते हुए थे लोग थे, वैसे सीट पर जहां पर की पूरी सरकार, डबल इंजन की सरकार बिहार की, पूरे देश के सारे गणमान्य लोग लगे हुए थे, उसके बावजूद भी पिछले चुनाव के तुलना में 55,000 वोट कम आना, भारतीय जनता पार्टी का 55,000 वोट कम आना, ये दर्शाता है कि बीजेपी के खिलाफ में एक बहुत बड़ा मत है जो कि केवल बिहार में ही नहीं देश में है। यह स्पष्ट संदेश जाता है कि ये जो निर्णय है वो सिर्फ लोग चाहते थे कि जो जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी एक बड़ी हार हो।
0: अतुल लौंडे पाटिल जी, लेकिन मीसा जी तो सीधा बीजेपी से भी कनेक्ट कर रही है इसके, अब रुक जाइए गौरव जी एक साथ जवाब दीजिएगा, दो लोग अभी बोल नहीं पाए। अतुल जी
7: देखिए अभी जिस तरह से छात्रों के साथ बर्ताव किया है, झूठ बोलना तो बीजेपी के फितरत में, उनका चाल चरित्र चलन वैसा ही है, कर लेंगे और फिर नहीं कहेंगे कि हमने नहीं किया है। आज यहाँ कोई वीडियो दिखा पाया नहीं दिखा पाया, लेकिन जेंजी है, अभी मिलेनियल भी है, सभी के हाथ में मोबाइल होता है, सभी लोग जो है वो निकाल कर देख लेंगे क्योंकि इतने सारे बयान आए हैं उस चीज को लेकर कुत्ते बिल्ली वाला, तो जो है वो वेरीफाई तो कर ही लेंगे। लेकिन एक बात है कि छात्रों का जिस तरह से बर्ताव हुआ, कल तमिलनाडु के 23 लोग उठाए हैं, किसी को नहीं पता लेकिन तमिलनाडु से 23 छात्र उठाए गए हैं। उसके बाद कंटिन्यू जो हॉन्टिंग चालू है, ये हॉन्टिंग पूरी जनता देख रही है, जिस तरह से एक आर्थिक असमानता बढ़ी है, जिस तरह से पेपर लीक की बात हुई है, जिस तरह का रिस्पांस है, समस्या तो है हर सरकार में, समस्या कहीं ना कहीं खड़ी होती है, लेकिन रिस्पॉन्स जिस तरह से अहंकार से आता है, रिस्पॉन्स कुचलने के तरीके से आता है, तो यहां से ये पता चलता है। मोहन यादव के पूरे परिवार ने भोलेनाथ के वहां किस तरह से जमीन का घपला किया है पूरे देश के सामने है, चढ़ावा चोरी हुई पूरे देश के सामने है। अब तो महिपाल जी का पूरा 20 पॉइंट का रिप्लाई जो आया है SIT में, उसमें चंपत राय का पूरा रोल दिखा है, लेकिन ये राम कि पैसे चुराने वाले को भी बचाने वाले लोग हैं, पहली एसआईटी में जो चोर था उसी को लाकर बिठाया था। तो ये सारा जो है ये जनता देख रही है, और सत्ता होने के बावजूद जब उपचुनाव हार जाते हैं वो पार्टी की।
0: अतुल जी एक काउंटर क्वेश्चन है, वो नवल किशोर जी से भी मैं पूछना चाह रही थी कि ठीक है लेकिन विकल्प के तौर पर वो प्रशांत किशोर को चुन रहे हैं, भाई आरजेडी से भी तो कैंडिडेट थी ना, उनको देखिए 10-12 जो मुझे लास्ट जानकारी मिली है इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट से 12 या 14 हजार वोट उनको 14,000-14,500 वोट मिले, तो विकल्प के रूप में क्या ये सेटबैक विपक्ष के लिए नहीं है जो पारंपरिक विपक्ष वहां पर है?
7: अंजना जी एक बात आप समझ लीजिए कि जैसा दतिया हो गया या फिर बांकीपुर हो गया, बांकीपुर तो बॉस की सीट है, नरेंद्र मोदी जी के बॉस की सीट है, उसके ऊपर इन्होंने कितना ध्यान दिया होगा। तो विपक्ष को यानी बीजेपी के खिलाफ का नैरेटिव है, एक सीट को लेकर पूरे स्टेट का आकलन जो है नहीं हो सकता, ये बात सही है, लेकिन ये किसके खिलाफ का है? ये बीजेपी के खिलाफ का वोट है, बीजेपी के खिलाफ के वातावरण की बात है, इथेनॉल के खिलाफ का वोट है, ये वोट छात्रों को पिटा उसके खिलाफ का है, ये चढ़ावा चोरी के खिलाफ का वोट है, ये जो है भोलेनाथ के वहां जो जमीन चोरी की है उसके खिलाफ का वोट है। तो ये स्पष्ट तरीके से दिखता है कि जो अहंकार है वो अहंकार के खिलाफ जाके किया है। और अभी कह रहे कि अभी तो ईवीएम को नहीं बोल रहे हैं, अभी तो चोरी, बिल्कुल चोरी की है, चंडीगढ़ से लेकर हर जगह चोरी पकड़ी गई है, सबूत सामने रखे हैं, और जंतर मंतर पर बच्चों ने ये बात को दोहराया है कि चोरी कर आप चुनाव जीतते हो और चोरी इलेक्शन कमीशन का इस्तेमाल करते हो, ये बात जो है सबूत के साथ कही है। तो ये बात कह देना कि नहीं नहीं इस बार तो कुछ कोई बोल नहीं रहा है, तो बोल नहीं रहा ये नहीं है, आपने चोरी की ऊपर जाके मतदान हुआ है, 52,000 की लीड जो है वो क्रॉस करके 19,000 की लीड आई है, 31 राउंड के आप 36 राउंड कर देते हो, पहले तो 31 राउंड हम सुबह से सुन रहे थे, अब 36 राउंड कैसे हो गए वो समझ में नहीं आ रहा है। तो जो है जादूगरी करने की कोशिश जो है चली रही है।
0: इसके बाद से गौरव जी आप सबका जवाब दीजिएगा। आशुतोष जी क्या है ये? मैं आ रही हूँ नवल जी, आ रही हूँ, लौट रही हूँ एक बार आशुतोष जी बोल रहे, उसके बाद आशुतोष जी आपकी नजर में ये क्या है? क्या ये सीधा सीधा जो कुछ अभी आंदोलन के दौरान बिहार में हुआ या दिल्ली में हुआ उसके खिलाफ लोगों का गुस्सा है क्योंकि परिवार जुड़े हुए हैं, या फिर ये विपक्ष के खिलाफ भी, मतलब क्योंकि एक विकल्प के तौर पर प्रशांत किशोर अपने आप को रखते हैं, क्या ये सम्राट चौधरी के खिलाफ है या फिर विपक्ष को भी कहीं ना कहीं एक नए बदलाव वो चाहती है बिहार की जनता और वो पीके को ला रहे हैं?
8: देखिए अंजना जी, किसी भी उपचुनाव में बहुत ज्यादा रीड करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि वो एक स्टैंड अलोन चुनाव होता है और उसमें अगर पीके जैसा कोई स्ट्रांग कैंडिडेट खड़ा होता है तो जाहिर सी बात है उसको एक एडेड एडवांटेज होता है। यहाँ पे तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण और मुझे लगता है बीजेपी को थोड़ा सा उस बारे में सोचना चाहिए कि ये एक मामूली सीट नहीं थी, ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा खाली की गई सीट थी जहां पर वो 5 बार लगातार जीते हैं और जो जीत का जो परसेंटेज है, मान ली 2025 में 62% वोट मिला था उनको, 2020 में 59% वोट मिला, 2015 में 60% वोट मिला, 2010 में 72% वोट मिला, यानी एक फॉर्मिडेबल सीट है भारतीय जनता पार्टी की और उनके पार्टी अध्यक्ष की। वहां पे अगर उनका वोट परसेंटेज गिर के 34 या 35% होता है, यानी अगर 28% अगर वोट ड्रॉप होता है तो निश्चित तौर पर ये नितिन नवीन जी के लिए एक चिंता का प्रश्न है। और इस सीट पर कैंडिडेट सिलेक्शन में भी बीजेपी ने मेसअप किया था क्योंकि जो पहले कैंडिडेट तुमको हटा के दूसरे कैंडिडेट को लाए तो जाहिर सी बात है ये सारी चीज अच्छी नहीं होती। दूसरी बात, कहीं ना कहीं अगर प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं रेफरेंडम है, मैं इसको पूरी तरीके से खारिज करता हूं, एक बाई इलेक्शन के आधार पर रेफरेंडम की बात नहीं कह सकते। हाँ, लेकिन एक बात जरूर है कि आरजेडी को जरूर सोचने की जरूरत है कि अगर आपका वोट परसेंट सिर्फ 10% प्राकृतिक जाए, यानी अगर आप कंसिस्टेंटली ट्रैक करें इलेक्शन को, जहां पे कभी आरजेडी चुनाव लड़ी है कभी कांग्रेस पार्टी यहां चुनाव लड़ी है, 28-29-30% वोट उनको कंसिस्टेंटली मिलता रहा है, अगर उसमें 20% का अगर ड्रॉप दिखाई पड़ रहा है तो यह आरजेडी के लिए सोचने की बात है। और लेकिन असली बात क्या है कि क्या पीके जब विधानसभा के अंदर पहुंचेंगे तब वो तेजस्वी यादव को ओवर शेडो करेंगे या नहीं करेंगे, ये अब आरजेडी के लिए चिंता का प्रश्न होना चाहिए क्योंकि पीके एग्रेसिव है, बहुत एग्रेसिव है और वो
0: निश्चित सम्राट चौधरी के खिलाफ तो स्पेशली अग्रेसिव है। आशुतोष जी, सम्राट चौधरी के खिलाफ सबसे ज्यादा अग्रेसिव है नवल किशोर जी, जो उन्होंने कहा है
8: उसका एक चीज और है, लेकिन सम्राट चौधरी जी को भी ये सोचना पड़ेगा कि उनके मुख्यमंत्री के रहते हुए भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव हारी है और वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट पर।
0: बिल्कुल
6: अंजना जी, उपचुनाव का इतिहास बहुत लंबा रहा है, ऐसा एक उदाहरण मैं आपको देता हूं जिससे पता चल जाएगा कि उपचुनाव मुख्य चुनाव में अंतर क्या होता है और किस तरह से लोग सोचते हैं। 1993 में आनंद मोहन नाम का एक व्यक्ति था, उसने उपचुनाव लड़ा और जीता, उनकी पत्नी 42 से जीती, दोनों लोग जीते और 95 में उन्होंने 259 सीट पर विधानसभा चुनाव लड़े जिसमें कि 248 सीट पर जमानत जब्त हो गई और दूसरे बाद उनकी पत्नी भी हार गई। तो ये एक बड़े स्तर पे ले जाकर जाना, ये हमको लगता है कि ज्यादा रीडिंग होगा किसी भी तरह से। मैं ये नहीं कहता, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ आनंद मोहन प्रशांत किशोर क्या है और क्या नहीं है, लेकिन उपचुनाव का एक अपना गणित होता है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि विपक्ष से सवाल क्यों, विपक्ष से परंपरा सीट ही नहीं है, 243 सीट में 100 ऐसे सीट है, 100 ऐसे सीट है जहां पर नरेंद्र मोदी जाएंगे फिर भी भाजपा हार जाएगी, ऐसे 100 सीट है जहां पर कि हमारे नेता जाएंगे फिर भी राष्ट्रीय जनता दल हार जाएगी। उससे उस पार्टी का आकलन करना, उससे उस पार्टी के नेतृत्व का आकलन करना
0: कर
6: मुझे लगता है कि ओवर रीडिंग है।
0: आशुतोष जी छोटा सा जवाब, ओवर रीडिंग कह रहे हो?
8: नहीं नहीं मैं देखिए मैं ओवर रीडिंग नहीं कर रहा हूं। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि इस वक्त देश के अंदर अगर तमिलनाडु में अचानक एक कोई जोसफ विजय उगते आते हैं सामने और वो वहां की पॉलिटिक्स में जो एस्टैब्लिश द्रविड़ियन पार्टीज अगर उनको ओवर शेडो करके वो खुद मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो क्या पीके वो कर सकते हैं बिहार के अंदर? ये कम से कम आरजेडी को सोचना चाहिए और अपनी कमर कसनी
0: लेकिन
8: चाहिए।
0: आज भी क्वेश्चनेबल है आशुतोष जी आज भी क्वेश्चनेबल है क्योंकि अगर आपको याद हो तो इसका जवाब जो जन स्वराज की तरफ से हमारे साथ अक्षत जुड़े हुए वही बताएंगे कि भाई अक्षत देखिए उस वक्त भी छात्रों का एक आंदोलन था जब ये चुनाव के एन पहले और पीके वहां भी जाके बैठे थे लेकिन फिर बाद में वहां पर क्या हालत हुई थी, क्या हालत मची थी और कहीं भी किसी सीट पर छात्रों का साथ नहीं मिला, ये भी तो एक सच्चाई है। तो एक सीट से भाई अब तो आंदोलन आ गया, अब तो एकदम क्रांति आ गई, सब कुछ बदल जाएगा, विपक्ष खत्म हो जाएगा और हम ही सबसे बड़े चैलेंजर बन जाएंगे बीजेपी के, ये भी तो आसान मुमकिन नहीं है साफ कहना।
2: देखिए ये कहना अतिशयोक्ति होगी कि हम नहीं कह रहे हैं कि हम ही एकमात्र विकल्प यहाँ पे दिख रहे हैं। बात जो मूल ये है कि एक तीसरे विकल्प की जो एक जगह थी जो हमने पिछले 2025 में गौरव भाई ने बोला कि हम शून्य पे सिमट गए, बिल्कुल सिमट गए, लेकिन हमने अपने आप को एक क्रेडिबल अल्टरनेटिव के रूप में स्थापित करने का जो जनता की बनुआ मजदूरी है कि भाजपा आरजेडी और जेडीयू तक के ही जो सीमित उनके पास ऑप्शंस थे उनके परे उनको एक ऐसा ऑप्शन देने का प्रयास किया जन स्वराज और प्रशांत किशोर जी के रूप में जो कि सामान्य लोगों के घर घर तक पिछले 3 साल 4 साल में प्रशांत जी 5,000 गांव में गए हैं और उन्हीं मुद्दों को उठाते रहे। रही छात्र आंदोलन की जो आपने बोला उस समय भी जनता के सामने दिखा था कि किस बर्बरता के साथ बिहार सरकार ने प्रशांत किशोर जी के उस पूरे मुहिम को खदेड़ा था, उन्हें बंद करके कहां कहां जेलों में घुमाया था और एक वहां पारदर्शिता भी मेंटेन नहीं की थी कि वो कहां है कैसे है, पुलिस गाइडलाइन का मैनिपुलेशन हुआ था। उसी प्रकार से सिमिलरली अभी वैसे ही ग्राउंड्स थे जिसकी वजह से एक सिमिलैरिटी उठती है कि जनता का उस वर्ग का इसीलिए सपोर्ट मिला है क्योंकि अब वो जनता जो वो वर्ग की है वो अपना एक मजबूत दावेदार विधानसभा में भेजना चाहती है, उन्हें ये चुनाव के बाद समझ आ गया है और इसी का कारण है कि आज हम देख रहे हैं कि इतने अप्रत्याशित रूप से भाजपा का किला और गढ़ कह जाने वाला बांकीपुर हमने उसमें जीत दर्ज की है और भारी मतों से जीत दर्ज की है।
0: ठीक है जल्दी से नेवल जी एकदम छोटा सा रिएक्शन फिर मैं जाऊंगी बाकी।
6: नहीं, नहीं, यही बांकीपुर था ना जिसमें कि इनके कैंडिडेट को 7,000 वोट आया था, पिछले बार 7,000 भी तो वोट आया था, ये भी तो सच है। सिर्फ सिर्फ एक ही चुनाव को देखकर आप कहे कि बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया ऐसा तो है नहीं।
0: और पीके खुद मैदान में थे इस बार, ठीक है पीके खुद इस बार मैदान में थे
6: और पीके को नहीं नहीं पीके पीके तो बाकी के लिए रणनीतिकार सफल रहे, कई पार्टियों को जिताने का दावा करते हैं, उन्होंने अपनी पार्टी खड़ा करके और 136 लोगों का जमानत जब्त कैसे करवाया, उनको आज भी जिला जिला बिहार में लोग खोज रहे हैं, क्यों नहीं जाते हैं, मिले उनसे पता चलेगा उनको।
0: चलिए ठीक है इसका जवाब अक्षत बाद में देंगे, लेकिन गौरव भाटिया जी देखिए कुल मिलाकर दतिया हो या फिर बिहार हो दोनों जगहों से जो संकेत है वो जनता की तरफ से ऐसे साफ आ रहे हैं, क्योंकि ये भी सच्चाई है ना कि नितिन नवीन जी वहां प्रचार के लिए गए थे, है ना, आपके दिग्गज नेता सब प्रचार के लिए गए थे, तो कुछ तो लर्निंग है, एक जो नाराजगी जनता में है वो कहीं ना कहीं इसमें उस प्रतिबिंबित हो रही है, इसको स्वीकारने में क्या गड़बड़ी है?
1: नहीं अंजना जी सबसे पहले तो आपने कहा कुछ तो लर्निंग है, मैंने शुरुआत ही एक की कही थी कि या तो हम जीतते हैं या सीखते हैं, इस हार का भी आकलन होगा और हम मजबूत होके आएंगे, आत्मचिंतन करेंगे, क्या कैंडिडेट बदलना हमारे लिए भारी रहा या हम और कुछ बेहतर कर सकते थे जो हमने नहीं किया, ये हम सोचेंगे। लेकिन सवाल देखिए कौन उठा रहा है, सवाल ये उठा रहा है आरजेडी। आरजेडी हम सब जानते हैं 243 सीटें हैं बिहार विधानसभा में। अभी 7 महीने पहले चुनाव जब हुआ 27 सीटें आई थी आरजेडी की, इस सीट पे बाकीपुर पे 14,273 वोट दिखा रही है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट। मतलब आप सोचिए कि भाजपा को इनसे 3 गुना ज्यादा वोट मिला है, उसके बाद भी यहां पे आके प्रवचन कौन देता है। ये हम लोग चुनाव हारे हैं और मैं अर्ज करूंगा गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में, गिरते हैं शह सवार ही मैदान जंग में। वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चला करते हैं। वो कांग्रेस पार्टी यहां पे आके बोलेगी जिनकी 5 सीटें आई थी 243 में। और क्या संदेश ये नहीं है, जैसे अक्षत मेरे छोटे भाई हैं जिनको मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, उन्होंने सही बात कही, हम तो सत्तारूढ़ हैं, हम अपना रिपोर्ट कार्ड रखेंगे, आगे चुनाव जीतेंगे। लेकिन विपक्ष की भूमिका भी आरजेडी और कांग्रेस और लेफ्ट को नहीं मिल रही। प्रशांत किशोर आके सीट जीत जाते हैं तो चिंता किसको होनी चाहिए? सबसे पहले तो चिंता होनी चाहिए चारा घोटाले वालों को, कांग्रेस पार्टी को जो 5 सीटें लाई है। और अंजना जी एक बात और कहूंगा, गुजरात में जो जीत है, मैंने बताया 30,000 वोटों से हम जीते हैं, हम लोग 7 बार वहां पे विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि बांकेपुर की सीट भाजपा हारी है, वो तो बड़ी खबर है, लेकिन गुजरात में अगर हम जीतते हैं 30,000 के मार्जिन से तो वो बड़ी खबर नहीं है या उसका महत्व नहीं है। हमने देखा तीनों सीटों में जहां बायपोल हुए, या तो हम जीते हैं या हम रनर अप है, दूसरे नंबर पे है। कोई और पार्टी जो इस चर्चा में है ये नहीं कह सकती है कि वो तीनों प्रदेशों में इतनी मजबूती से चुनाव लड़ती है जैसे कि भाजपा लड़ रही है।
0: ठीक है, चलिए इस बार एक बार नवल जी जवाब दे दीजिए, वो आपके परफॉर्मेंस पर बार बार हमला कर रहे हैं। और अतुल जी आपके पास भी आ रही हूँ, अपनी परफॉर्मेंस भी तो देखिए जरा। नवल जी
6: देखिए, अनुप्रिया जी मैं तो बहुत सिंपल बात कर रहा था। गौरव भाटिया बोल रहे थे कि वोट में गिरावट की, वहां तो उनके नेताओं के आचरण में इतनी गिरावट है कि खुद चंदा चोर और कई तरह के चोरी के सौदागर जहाँ पे हुए वो एक एक घोटाला का नाम लेकर पूरा जीवन बचा दिया उनके बेटे को। अरे अब फिर वही बात, अभी ज्ञान दे रहे थे जन सुना दू की बीच में मत बोलिए और आप बीच में बोल रहे हैं। आप बताइए आप कितने गिरे हुए आदमी हैं।
0: अच्छा सुनिए ना, एक सेकंड, ये जो मीसा जी बोल रही है कि ये बीजेपी के उन्होंने फिर कोई जानवर का नाम लिया, मैं ये सब नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन क्या ये कोई भय दिखा रहा है? बीजेपी का प्लांटेड आदमी है प्रशांत किशोर, वो आज भी इस जीत के बाद कह रही है। नवल जी
6: देखिए सिंपल बात है, जब वो कुत्ता बिलाई कह रहे थे तो अगर चुनाव में जिस तरह का आचरण वो दिखाते रहे हैं तो लोमड़ी का तो अपना आचरण है कि चालाकी है, चालाक तो है ही, चालाक तो है ही ना, उसमें उन्होंने गलत क्या कहा? उन्होंने चालाकी दिखाई है, परंतु उनका सुन लीजिएगा, चालाकी पता चल जाएगा। उन्होंने क्या कहा है कि भारतीय जनता पार्टी से नहीं, सुन लीजिए, अरे सुनिए तो पहले 10 सेकंड, उन्होंने अंतिम बयान प्रशांत किशोर जी का क्या है, ये रेफरेंडम जो है सम्राट चौधरी को हटाने के लिए है, भाजपा के खिलाफ उन्होंने कहा बयान दिया है, आप बता दीजिए अंजना जी, उन्होंने जो अंतिम बयान दिया है कि यह जीत सम्राट चौधरी को हटाने के लिए है, भाजपा को हटाने के लिए नहीं है, ये तो चलाती ही तो है, आप किससे चुनाव लड़ रहे थे? इस तरह से जो बातें कही जा रही है उसका मतलब और अर्थ अगर आप समझने की कोशिश
0: करें, सम्राट चौधरी किसके बीजेपी के सीएम है, किसी और के सीएम है?
6: ये उनका अहंकार है। आप बताइए तो, आप बताइए कि बीजेपी का सीएम अगर है तो उनको कहना बीजेपी से लड़ रहे हैं या सीएम से लड़ रहे हैं, किसका लड़ाई? हो सकता है कि विजय सिन्हा होते तो ये बात नहीं बोलते, हो सकता है गिरिराज सिंह होते तो ये बात नहीं बोलते, हो सकता है कोई और अश्विनी पांडे होते तो ये बात नहीं बोलते।
0: अक्षत वो कह रहे हैं कि बीजेपी का नाम नहीं लेते हैं, वो सम्राट चौधरी को हटाने का रेफरेंडम कह रहे हैं।
2: नहीं नहीं बिल्कुल गलत बात बोल रहे हैं, ये भाजपा की जो सरकार और उसके कार्य को प्रशांत जी ने उसको क्रिटिसाइज करते हुए बोला है। और ये क्या बोल रहे हैं, मतलब नवल जी को तो बोलना ही नहीं चाहिए, जिसके खुद के नेता अपने पार्टी के जो वहां पे प्रत्याशी थे उसके समर्थन में कहीं नहीं दिखे, वो अपने विदेश में जाकर कहीं पे अपना हॉलिडे मना रहे थे और वो आकर इस बात को कहते हैं कि प्रशांत जी क्या मुद्दे उठा रहे थे, आप 10 में से 1 बात पकड़ के उसको हाईलाइट कर रहे। प्रशांत जी ने यह भी तो बोला है कि बांकेपुर की नाली गली इतनी बदतर है कि वहां आधे घंटे की बारिश से जल जमाव हो जाता है, तो आप अच्छी जो उनकी मुद्दे की बातें उनको छोड़कर आप इधर उधर की बातों से मुद्दा भटकाने का प्रयास कर रहे हैं।
0: अनुप्रिया जी उसके अच्छे
3: अंजना जी, नवल किशोर जी को चिंतन करने की जरूरत है। और जो आचरण में गिरावट की बात करते हैं, इनकी राजनीतिक गिरावट
0: तो बीजेपी और जेडीयू क्या करेगी, हारे आप लोग हैं।
3: देखिए हम निश्चित हार रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि हम आकलन करेंगे, हम चिंतन करेंगे हम क्यों हार रहे हैं, और 6 महीना में हमारी इतनी भी कोई डाउनफॉल नहीं हो गई और ऐसी हमने कोई गलत कार्य नहीं कर दिया कि जनता हमसे दुखी हो गई। मैंने कहा ना कि ये रणनीति की जीत है और कोई जीत नहीं है, और यह 2030 के चुनाव में हम बता देंगे जनस्वराज जैसे 2025 में 0 पे आउट हुई थी उस समय भी 0 पे आउट होगी। लेकिन अभी आरजेडी के प्रवक्ता कहते हैं कि 100 ऐसी सीट है जहां पे जाकर के बीजेपी के नेता कुछ नहीं कर पाएंगे। अरे 243 सीट में 202 पे हम चुनाव जीते हैं, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप कहां पे पहुंच गए हैं?
0: और दो दो लाइन का कमेंट अतुल जी और गौरव जी, सिर्फ दो दो लाइन का कमेंट सर, टाइम आप है काट दूंगी मैं, दम टाइम कम है अतुल जी।
7: एकदम सीधा है कि भेड़ के खाल में शेर, अगर खुद को शेर कहे तो शेर नहीं होता है। बच्चों ने जंतर मंतर पे दिखा था, बलात्कारी कहाँ मिलेगा बीजेपी के दफ्तर में, भ्रष्टाचारी कहाँ मिलेगा बीजेपी के दफ्तर में, चंदा चोर कहाँ मिलेगा बीजेपी के दफ्तर में, हर कोई गलत चीज जो है
0: वो कहाँ मिलेगी
7: तो बीजेपी के दफ्तर में।
0: सिर्फ दो लाइन।
1: देखिए अंजना जी, बहुत कुछ सीखने को है, और जहां तक भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की बात है, हम लोग सीख के और मजबूत होकर लौटेंगे। और एक बात कहूंगा, इस तरह की वाहियात टिप्पणियां यहां करती है कांग्रेस पार्टी, इसीलिए उनका यह हश्र है कि आज ना 3 में है ना 13 में।
0: इसी के साथ हल्ला बोल में इतना ही, आज रात 9 बजे आप सभी का बहुत धन्यवाद। आज रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट में जरूर रहिएगा, आपको बताएंगे बिहार की बांकीपुर सीट पर हुए उपचुनाव में पीके के आगे सब फीके क्यों साबित हुए। इसके बाद आपको बताएंगे कि पेपर लीक के मुद्दे पर दिल्ली में दिन रात शोर मचाने वाले झारखंड में छात्र आंदोलन पर सन्नाटे में क्यों है। दिखाएंगे आपको तस्वीरें कैसे बच्चे वहां पर रात में भी जाग जाग कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि उनकी आवाज भी सुनी जाए। देखते रहिए आज।

आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
3: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद। लायन कश्मीर हनी,
2: असली शहद असली स्वाद।
4: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
5: कुछ तो बात है इस दिल में।
6: माँ भी हमेशा पी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
5: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।
8: सरसों
9: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
10: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
11: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
12: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉलमार्क
2: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
3: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
4: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
5: कुछ तो बात है इस दिल में।
6: तक डिजिटल फर्स्ट चैनल्स, 11 बिलियन व्यूज, 85 मिलियन यूनिक व्यूअर्स, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर ब्रांड, रीजनल और हाइपर लोकल रीच। हर शहर हर कस्बे तक एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल करें।
7: न्यू एंटरप्रेन्योर्स केम अप, देयर वाज धीरूभाई अंबानी, ही वाज अ रैग टू रिचेस स्टोरी। ही बिल्ट इंडस्ट्रीज, ही बिल्ट यू नो द होल नायलॉन बिजनेस, द टेक्सटाइल एंड देन ऑफ कोर्स देन इनटू पेट्रोकेमिकल।
8: There were others like him, but he was by far the biggest and the most prominent of them all. He was also the most controversial because of his business methods. We did the stories on him as a success. We did a story of him under pressure. It was a churn that was taking place, and it led to lots of stories.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: to finding myself. That's my moment of Sarah.
1: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉलमार्क
2: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
3: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
4: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
5: कुछ तो बात है इस दिल में।
6: चुनावों के दिग्गज रणनीतिकार की पहचान रखने वाले प्रशांत किशोर यानी पीके ने खुद की सियासी पारी से मानो अचानक बिहार का सियासी समीकरण बदल दिया है। कहने को तो बांकीपुर बिहार की सिर्फ एक विधानसभा सीट का उपचुनाव है, जिससे न राज्य की सम्राट चौधरी सरकार की सेहत पर फर्क पड़ेगा और केंद्र की बात तो दूर की कौड़ी है, लेकिन बांकीपुर में पीके के प्रदर्शन को सिर्फ एक हार जीत में नहीं देखा जा रहा है। पीके खुद पहली बार चुनाव मैदान में उतरे हैं। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये बिहार में पहला चुनाव है। बांकीपुर नितिन नवीन की परंपरागत सीट रही है, जिसे उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद छोड़ी है। ये वो सीट है जिसे 1995 के बाद से बीजेपी कभी नहीं हारी थी। पीके अपने प्रदर्शन को बिहार में सकारात्मक राजनीति को मिला समर्थन कह रहे हैं। उनके निशाने पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं।
7: रेफरेंडम है ये सम्राट चौधरी पे?
8: बिल्कुल, वो तो है।
7: आप बार बार कह रहे थे जनमत संग्रह है ये।
8: बिल्कुल, सम्राट चौधरी के नेतृत्व को बिहार की जनता स्वीकार्य नहीं करती है, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। भाजपा ने चुनाव जीतने के बाद यहाँ पर एक अपराधी प्रवृत्ति के आदमी को, एक गलत चाल चरित्र के चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व दिया है, जो बिहार के लोगों को स्वीकार्य नहीं है।
6: बांकीपुर में पीके का प्रदर्शन न सिर्फ बीजेपी के उम्मीदवार नीरज कुमार पर भारी पड़ा है, बल्कि आरजेडी के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि आरजेडी कैंडिडेट रेखा कुमारी मुकाबले में कहीं नहीं टिकी है। यानी अचानक पीके की मौजूदगी इस विश्लेषण को भी मजबूत करेगी कि क्या वो बिहार की राजनीति का मजबूत विकल्प है।
9: भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा ही एक सुनने को मिला, जो आप भी प्रश्न में पूछ रही थी कि हम कुत्ता बिल्ली को भी दे देंगे तो वहाँ से जीत जाएगा। लेकिन भैया, भारतीय जनता पार्टी का श्रेष्ठ नेतृत्व कुत्ता बिल्ली पे विश्वास नहीं किया है, वो एक लोमड़ी दे दिया है।
10: लोमड़ी
9: दे दिया है प्रशांत किशोर के रूप में,
10: यानी कि जो जीते प्रशांत किशोर लोमड़ी है।
9: बस बिल्कुल, और उनको जिता दिया गया। तो जो नीरज सिन्हा जी थे वो असली उम्मीदवार नहीं है भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी का असली उम्मीदवार प्रशांत किशोर जी है।
6: हालांकि 2025 के बिहार चुनाव में पीके की पार्टी जनसुराज का खाता नहीं खोला था, जबकि पार्टी ने लंबी तैयारी के बाद बिहार चुनाव लड़ा था। वैसे अब नई शुरुआत हुई है और राज्य में पीके के दांव बड़े हो सकते हैं। काउंटिंग शुरू होने से पहले खुद पीके ने बांकीपुर के चुनाव को सम्राट सरकार के खिलाफ रेफरेंडम कहा था।
11: सम्राट जी को डरने की जरूरत कल परिणाम आने के बाद है, क्योंकि हम लोगों ने कहा है कि कल का जो चुनाव है वो सम्राट सरकार पर रेफरेंडम है। अगर कल भाजपा हारी तो सम्राट चौधरी को उसकी नैतिक जिम्मेवारी लेनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। अगर नहीं लेंगे तो भाजपा वाले खुद ही उनको हटाएंगे, हमको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं।
6: बांकीपुर के अलावा मध्य प्रदेश के दतिया में भी बीजेपी को झटका लगा है। सिर्फ गुजरात के मंजलपुर विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी दमदार प्रदर्शन के साथ जीत सकी है, इसीलिए इसे संकेत और संदेश के चुनाव के तौर पर भी देखा जा सकता है। आज तक ब्यूरो।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: तो बांकीपुर सीट नितिन नवीन की सीट जो आज प्रशांत किशोर जीत गए और बीजेपी हार गई, इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल में चर्चा। अब देखिए साथ तक नेहा के साथ।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: आटम शाम के साथ बजने वाले हैं आज तक इस खास शो में। अगले आधे घंटे में दिन भर की तमाम बड़ी खबरें शामिल होंगी, लेकिन खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बीजेपी अध्यक्ष की सीट पर पिट गई पार्टी। बांकीपुर से शानदार जीत के बाद बोले प्रशांत किशोर, 30 दिन में ढहा दिया 30 साल का पुराना किला। सीएम सम्राट पर किया कड़ा हमला, आरजेडी की जमानत जब्त। कांग्रेस के हाथ लगा मध्यप्रदेश का दतिया, यहां भी 6,000 से ज्यादा वोटों से हार गई बीजेपी। गुजरात के मांजलपुर ने बचाई बीजेपी की इज्जत, 30,000 से ज्यादा वोटों से जीते सत्येन भाई पटेल। यूपी विधानसभा में मॉनसून सत्र के पहले दिन चढ़ावा चोरी पर घमासान, विपक्ष की तरफ से जोरदार प्रदर्शन। योगी बोले जनता को गुमराह ना करें, दम है तो विकास पर करें बात। झारखंड का रांची बना नया जंतर मंतर, जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी। 10 दिन से भूख हड़ताल पर देवेंद्र नाथ महतो, सीबीआई जांच की मांग। E20 के खिलाफ नागपुर में गडकरी के घर के बाहर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, मंत्री के इस्तीफे की मांग। सुरक्षा घेरा तोड़ने पर हिरासत में लिए गए कई नेता। तो शो की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। मध्यप्रदेश, गुजरात और बिहार यानी तीन राज्यों की तीन विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के परिणाम आ चुके हैं। सबसे पहले बात बांकीपुर सीट की, जिस पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। बांकीपुर बीजेपी का गढ़ माना जाता था, मगर जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर ने बीजेपी के इस किले को फतेह कर लिया है। बांकीपुर में प्रशांत किशोर ने बीजेपी के नीरज कुमार को 19,324 वोटों से हरा दिया है। मध्यप्रदेश दतिया में कांग्रेस के घनश्याम सिंह ने बीजेपी के आशुतोष तिवारी को 6,016 मतों से हरा दिया है, जबकि गुजरात के मंजलपुर में बीजेपी के सत्येन भाई पटेल ने कांग्रेस के भीका भाई राबरी को 30,630 वोटों से हरा दिया है। और आज से ही यूपी का मॉनसून सत्र शुरू हुआ, शुरुआती हंगामे के साथ हुई। सत्र शुरू होने से पहले समाजवादी पार्टी के विधायकों ने योगी सरकार के खिलाफ हल्ला बोला, विधानसभा के बाहर चढ़ावा चोरी और पेपर लीक पर जबरदस्त हंगामा हुआ।
1: यूपी का विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले जबरदस्त हंगामा बरपा। समाजवादी पार्टी के नेता तख्तियों पर तेवर लिख कर लाए थे, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी इनका अहम मुद्दा था। समाजवादी पार्टी के विधायक दान पात्र लेकर पहुंचे थे।
2: बीजेपी बेनकाब हो गई है। बीजेपी एक ही बात कहती थी कि आस्था पर फैसला अदालतें नहीं करती। आज आस्था पर सबसे बड़ी अगर लूट और आस्था के साथ कोई खिलवाड़ किया है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के मंदिर में चढ़ावा चोरी।
3: समाजवादी पार्टी आज तक उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दर्शन करने नहीं गए, ना अपने विधायकों को ले गए। तो वो जब उसके अस्तित्व को ही नहीं मानते, उनके नेताजी मुलायम सिंह जी संसद में कहते थे कि वहाँ बाबरी मस्जिद है।
1: समाजवादी पार्टी ने सदन के बाहर नीट पेपर लीक को लेकर भी जोरदार प्रदर्शन किया।
4: बीजेपी सरकार ने क्या कहा था, प्रोटेस्ट में कहा था कि इस छात्र छात्राओं पे FIR नहीं होगी, उन पे FIR वापस ली जाएगी। लेकिन ये मोदी जी की पुलिस, ये योगी जी की पुलिस उन्हीं छात्र छात्राओं को परेशान करने का काम कर रही है।
5: वहां से समाजवादी पार्टी ने स्कूलों को छोड़ा था, ना बच्चों के पैर में जूते चप्पल होते थे, ना किताबें मिलती थी, ना बैग मिलते थे। आज सब कुछ मिल रहा है। आज मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय मेरी विधानसभा देवरिया में आया है, 30 करोड़ का विद्यालय जिसमें गरीब बच्चों के लिए सुविधाएं। तो किन मुद्दों पर बात करेंगे, मुद्दे नहीं है, इसीलिए भगवा का अपमान करते हैं।
1: इस सत्र में जिन मुद्दों पर सदन में गर्मा गर्मी होनी तय है, पहले उन पर गौर करें। राम मंदिर चढ़ावा चोरी, नीट का पेपर लीक, सरकारी स्कूल मर्जर, E20 पेट्रोल और महंगाई, बेरोजगारी और आरक्षण, बिजली और खाद संकट, ये तो तय मुद्दे हैं। लेकिन लड़ाई इन्हीं दायरों में सीमित नहीं रहने वाली। सीएम योगी ने मॉनसून सत्र में मोर्चाबंदी की खास तैयारी कर रखी है। सीएम ने सदन में कम शब्दों में सटीक जवाब देने के निर्देश दिए हैं। जेन जी और जेन अल्फा से लगातार संवाद बनाए रखने को कहा है। बैठक में सीएम ने कहा कि 18 से 25 वर्ष के युवा जो नए वोटर बचे हैं, वो 2017 से पहले की एसपी सरकार की करतूतों को नहीं जानते हैं, इसलिए जेन जी युवाओं से नियमित संवाद जरूरी है। सूत्रों के मुताबिक योगी ने चढ़ावा चोरी पर भी विपक्ष को आक्रामकता से जवाब देने को कहा। तो सदन के भीतर और बाहर दोनों मोर्चों पर दोनों ओर से तैयारियां जारी हैं। साफ है कि आने वाले वक्त में 27 के समर की तैयारी देखने को मिलेगी। समर श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।
0: तो अयोध्या में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर सांसद

0: तो बेसिकली गलत चीज थी, होना नहीं चाहिए था।
1: मतलब चढ़ावा चोरी समाजवादी पार्टी के लिए मुद्दा तो है, मगर पप्पू यादव के तरीके से वो किनारा करते हैं। इसकी एक वजह ये भी है कि पिछले कुछ महीनों में समाजवादी पार्टी सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर आगे बढ़ी है। अखिलेश यादव ने अपने ब्राह्मण नेताओं के साथ बैठक की थी। एक दिन पहले ही श्रीराम और हनुमान के नाम पर उन्होंने दक्षिणा दी थी।
2: दूसरे हनुमान जी के रूप में मैं दोनों का सम्मान करता हूं, अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से 51,000 हम लोग दोनों को दे रहे
1: हैं। आगे भी ब्राह्मण सम्मेलन की तैयारी, 5 अगस्त को जनेश्वर मिश्रा की जयंती पर ब्राह्मण सम्मेलन की तैयारी है, इसीलिए समाजवादी पार्टी के लिए चढ़ावा चोरी बड़ा मुद्दा है।
3: ये जनता की श्रद्धा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उनके समर्पण से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उनके डिवोशन से जुड़ा हुआ मुद्दा है कहीं ना कहीं।
1: तस्वीर साफ है कि 27 दिसंबर में चढ़ावा चोरी पर जबरदस्त संग्राम देखने को मिलेगा। दिल्ली से मौसमी सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।
4: और वहीं पप्पू यादव पर हमला करने वाले आरोपी पर बीएनएस की धारा में केस दर्ज कर लिया गया, लेकिन दोनों आरोपियों में से एक ने आज तक से कहा कि वो पप्पू यादव से बात करने गया था और उसने पप्पू यादव पर कोई हमला नहीं किया। आरोपी ने इस बात से भी इनकार किया कि वो चाकू लेकर गया था, लेकिन पप्पू यादव आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने उनकी हत्या कराने की साजिश रची है।
5: एक दिन पहले आई इन तस्वीरों ने पप्पू यादव के स्वांग पर हो रही सियासत को नए सिरे से जोड़ दिया। पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि उनकी हत्या का प्रयास किया गया और ये प्रयास बीजेपी के इशारे पर हुआ।
6: मंडल अध्यक्ष बीजेपी का जोगी जी के साथ और डिप्टी सीएम के साथ तस्वीर
5: है। पप्पू यादव पर हमला करने वाले एक आरोपी सुमित को पुलिस ने कल ही पकड़ लिया था। अब इस मामले में पुलिस ने बीएनएस की धाराओं में एफआईआर भी दर्ज कर ली है। बताया जा रहा है कि सुमित अपने एक दोस्त हैप्पी शर्मा के साथ पप्पू यादव के घर में घुसा था। हैप्पी शर्मा ने बताया कि हम हमला करने नहीं बल्कि पप्पू यादव से बातचीत करने गए थे।
7: पप्पू यादव जी, आप सनातन को भगवा वस्त्र पहनकर नीचे घूम रहे हो उन डिब्बों को लेकर और भगवान राम की तस्वीर को नीचे कर रहे हो, कभी किसी के पैरों में गिर रहे हो, तो इसका क्या मतलब है? आप सनातन को इतना जो पैरों में गिर रहे हो इसका कोई मतलब है? इतने में तो उन्होंने मारपीट शुरू कर दी हमारे साथ।
5: हैप्पी शर्मा बताता है कि वो और उसका दोस्त चाकू लेकर नहीं गए थे।
7: कोई चाकू नहीं था, सांसद जी के जब घर गए थे तो जब चेकिंग हुई थी कोई चाकू नहीं था। अब क्या हम ऐसे लोग हैं क्या किसी को मानने जाएंगे? हम केवल बातचीत करने गए थे, लोकतंत्र में अधिकार है, सबको बातचीत तो कर सकते हैं।
5: आरोपी कह रहा है कि वो ना तो चाकू लेकर गया था और ना ही उसने चप्पल फेंका है। अब आगे की जांच पुलिस कर रही है कि आखिर पप्पू यादव पर हमले का सच क्या है। मौसमी सिंह के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक।
4: वही महिला पहलवानों के यौन शोषण मामले में बीजेपी नेता और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज ब्रजभूषण शरण सिंह और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व सचिव विनोद तोमर को बाइज्जत बरी कर दिया है।
8: महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण के मामले में 1133 दिनों तक वकीलों ने दलीलें दी, सुनवाई हुई, तथ्य परखे गए और फिर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि ब्रजभूषण और उनके सह आरोपी विनोद तोमर को बाइज्जत बरी किया जाता है।
9: बरी शब्द का इस्तेमाल के जगह पर कोर्ट ने बाइज्जत बरी शब्द का इस्तेमाल किया है। बरी और बाइज्जत बरी में फर्क होता है। एक बरी होता है कि सबूतों के अभाव में आपको छोड़ा जा रहा है, यहाँ सीधे सीधे कहा गया कि आपको नाम लेकर के कि आपको बाइज्जत बरी किया जा रहा है।
8: दरअसल 3 साल पुराने इस मामले की बंद कमरे में हुई सुनवाई और तमाम गवाहों सबूतों की पड़ताल के बाद अदालत के फैसले में जो बड़ी बातें सामने आई हैं, उनमें से एक तो ये है कि शिकायतकर्ता और पुलिस ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ के आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं कर पाए। दूसरा ये कि शिकायतकर्ताओं के बयानों में तारीख, समय और घटना स्थल को लेकर बड़े विरोधाभास दर्ज किए गए थे। महिला पहलवानों ने खेल मंत्रालय की ओवरसाइट कमेटी में दिए हलफनामे और अदालत में दिए बयानों में फर्क था। कुछ घटनाओं में ब्रजभूषण शरण सिंह कथित घटनाओं के समय दूसरी जगह मौजूद रहने के प्रमाण मौजूद थे और बरी होने की बड़ी वजह ये भी थी कि कथित घटनाएं 2016 से 2019 के बीच की थी, जिनका आरोप 2023 में लगाया गया था।

0: तब मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि ये सब झूठ है।
1: सच हुआ तो मैं आता
0: हूं। और अगर इसमें एक भी आरोप साबित होगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा।
2: अब महिला पहलवानों के मामले में बजरंग पुनिया ने लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करने की बात कही है, लेकिन इस मामले में जबरदस्त सियासत हो रही है।
3: क्यों नहीं सबको करेंगे, सब चोर जितने लोग पार्टी में दाखिल हुए दूसरे पार्टीज में, अरे यही तो प्रधानमंत्री थे, तो बंगाल के मुख्यमंत्री के बारे में क्या क्या बोले थे,
4: आरोप लगे थे, जांच होनी चाहिए थी, जांच होकर न्यायपालिका में गया, अब न्यायपालिका ने जो फैसला दे दिया उसका सम्मान करें, या तो सरकार को अगर लगता है कि सही नहीं है तो सरकार ऊपरी कोर्ट में जाए।
2: देखना यह है कि आरोप लगाने वाली महिला पहलवानों का रुख अब क्या होता है। मौसमी सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
5: और रुक करेंगे रांची का, जहां पर 14वीं जेपीएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। छात्र रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में 10 दिन से धरना दे रहे हैं। कल शाम बड़ी संख्या में छात्रों ने मशाल जुलूस निकाला, उन्होंने हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उधर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दीपके ने रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बात की और उन्हें अपना समर्थन देने का ऐलान किया।
6: सामाजिक कार्यकर्ता जो भेज देते हैं वही हम लोग खाके और दिन रात भर यही देखिए यही टेंट में आप तो देख रहे हैं पानी हो यही बहुत याद क्या करे सर, हम लोग मरता क्या नहीं करता वाला स्थिति है सर।
7: मदद की थाली हाथ में पकड़े इस युवा को देखने के बाद सवाल उठता है कि आखिर नीति नियंताओं के हलक के नीचे खाना उतरता कैसे।
6: ऐसे गाँव से आते हैं सर, वहाँ आज भी हम घर का पहला आदमी है, पूरे खानदान का, पूरे गाँव एक टोला मतलब खानदान का पहला आदमी है ना कि हम लोग बाहर निकले हैं पढ़ने। अभी तक हम लोग शिक्षा से इतना दूर है हमारा समाज, अगर हम यहाँ पढ़े आए हैं सर, अगर हम पढ़ के कुछ नहीं करेंगे तो हमारे आने वाला जो पीढ़ी है वो देखेगा तो कहेगा कि भैया या चाचा पढ़ लेते तो क्या कर लेते।
7: तो जीएम डीएम सीएम पीएम सब सुनिए इस छात्र की पुकार। अशिक्षा के अंधकार से निकल कर आया ये लड़का सवाल कर रहा है किसी में इतना ताप कि जवाब दे सके,
6: क्योंकि हम लोग तो गरीब आदमी हैं सर, और गरीब आदमी हैं अगर हम लोग कोई भी आदमी पढ़ के नौकरी का मतलब मांगता है ताकि हम लोग के आर्थिक समाज अति शैक्षणिक थोड़ा मजबूत हो, इसीलिए तो हम लोग पढ़ रहे हैं इतना मेहनत कर रहे हैं। एक रूम में हम लोग कितना दिन से जहाँ हम लोग कुछ भी मिल रहा है सर, कैसे कैसे खाते आप तो जानते हैं।
7: रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बेरोजगारी से त्रस्त युवा जो बात कहते हैं वो सत्ता के सीने में शून सी चुभनी चाहिए, क्योंकि ये युवा झारखंड में भर्ती आयोगों की धांधली से त्रस्त आ चुके हैं। प्रदर्शन करते ये नौजवान झारखंड में लगातार धरना देते हुए केवल झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और जेएसएससी के तहत होने वाली भर्तियों में होते भ्रष्टाचार से त्रस्त होकर एक हफ्ते से आंदोलन कर रहे हैं।
8: नारेबाजी चल रही है और अब इस आंदोलन को अलग अलग जगह से समर्थन भी मिलने लगा है। बीजेपी ने इस प्रोटेस्ट का खुलकर समर्थन किया है, एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया है, साथ ही साथ कॉकरोच जनता पार्टी ने भी बात की है, उसके संस्थापक अभिजीत दीपके ने भी बात की है यहाँ पे और कहा है कि जिस सपोर्ट की जरूरत है वो सपोर्ट देने को तैयार है ताकि जो आंदोलन अपने अंजाम तक पहुँच सके।
7: अब सवाल यह है कि छात्रों की पुकार क्यों नहीं सुन रही है हेमंत सरकार। सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।
5: इस बीच आपको बता दें पंजाब विधानसभा में आज से मॉनसून सेशन की शुरुआत हो चुकी है, शुरुआती कुछ ही घंटे में यह सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। अब कांग्रेस और बीजेपी पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रही है।
9: पेपर लीक चोर हर जोत
10: पंजाब विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो इसके पहले ही हंगामा बरपा। कांग्रेस के विधायक भगवंत मान के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। विपक्षी विधायकों के हाथ में विरोध की तख्तियां थी। पेपर लीक के मामले में ये पंजाब के शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे थे।
11: हरजोत बैंसी जाके जंतर मंतर थे जेडी कॉकरोच जनता पार्टी उन्होंने नौजवानों ने बैठे सी, बट अजी सारी कांग्रेस के डिमांड कर दी। पिछले साढ़े चार साल से छे बार पेपर लीक हुए, छिया पेपर लीकेजेस दे वेचे तकरीबन 10 लाख बच्चा साढ़ा पंजाब दा जेड़ा वो प्रभावित होया।
10: फार्मेसी पेपर लीक को लेकर बीजेपी भी भगवंत मान के खिलाफ मोर्चा खोले हुए है। बीजेपी मांग कर रही है कि भगवंत मान और उनके शिक्षा मंत्री की जवाबदेही तय होनी चाहिए।
12: इस तरीके से लोग पास हो रहे हैं तो मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। ये कहते हैं फार्मेसी डॉक्टर बलबीर सिंह का डिपार्टमेंट है, तो हरजोत बैंस जवाब दें, डॉक्टर बलबीर सिंह जवाब दें, पर जवाब तो देना बनता है ना।
10: हालांकि सदन शुरू हुआ तो शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि वो पूरी तैयारी के साथ आए हैं और हर सवाल का जवाब देने को तैयार है, लेकिन हंगामा इतना था कि चर्चा हो ही नहीं पाई। अब भगवंत मान सफाई दे रहे हैं।
13: पेपर लीक बहुत गंभीर मुद्दा है, उस पर पंजाब की विधानसभा में भी निंदा प्रस्ताव आया है, उस पर हमारे यंग जो MLA हैं सारे बोल रहे हैं और इसका एक स्थायी हल होना चाहिए।
10: सवाल यह है कि जब केंद्र के खिलाफ पेपर लीक का मामला आया तो आम आदमी पार्टी और पंजाब की सरकार ने उसकी आलोचना करते हुए विरोध किया, लेकिन अब अपनी ही सरकार में पेपर लीक के आरोप लग रहे हैं तो जिम्मेदारी से कैसे भागा जा सकता है। कमलजीत संधु, चंडीगढ़, आज तक।
5: बात अब शेयर बाजार की। घरेलू शेयर बाजार आज लगातार चौथे कारोबारी सत्र में बढ़त के साथ बंद हुआ है। जरान सेंसेक्स 544 अंक बढ़कर 78,639 और निफ्टी 391 अंक की बढ़त के साथ 24,774 पर बंद हुआ है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने की उम्मीद से कच्चे तेल की कीमतों में आई है तेज गिरावट। विदेशी निवेशकों की खरीदारी और बेहतर कॉरपोरेट नतीजों के चलते घरेलू शेयर बाजार में जोरदार खरीदारी देखने को मिली। शेयर बाजार की मजबूती के साथ रुपए में लगातार छठे कारोबारी सत्र में तेजी देखने को मिली और डॉलर के मुकाबले रुपया 12 पैसे मजबूत होकर 95.31 रुपए के स्तर पर बंद हुआ है। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट, डॉलर में नरमी, विदेशी पूंजी प्रवाह और घरेलू शेयर बाजार की मजबूती से रुपए को समर्थन मिला है। वहीं सराफा बाजार में आज तेजी का रुख कायम रहा। सोना 3 रुपए प्रति 10 ग्राम की मामूली बढ़त के साथ 1,42,863 रुपए और चांदी 105 रुपए बढ़कर 2,18,400 रुपए प्रति किलो पर बंद हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रिस्क सेंटिमेंट सुधरने के बावजूद घरेलू डिमांड और वैश्विक कीमतों में स्थिरता के चलते सोने और चांदी की कीमतों में हल्की तेजी देखने को मिली है। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। आतंकियों का पनाहगाह पाकिस्तान अब खुद आतंक के जख्म खा रहा है और आज पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में जबरदस्त धमाका हुआ। एक आत्मघाती हमला बताया जा रहा है। इस हमले में 15 लोगों की जान चली गई।
14: बाजार में चहल पहल थी कि अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। तहला देने वाली ये तस्वीरें पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा की हैं। तस्वीरें देखिए, फिदाइन हमलावर कबाल पुलिस स्टेशन परिसर में घुसने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही मुख्य द्वार पर मुस्तैद जवानों ने उसे रोका, उसने खुद को धमाके से उड़ा दिया। धमाका ठीक उस वक्त हुआ जब पास ही उलासी पसून शांति रैली हो रही थी। इस भीषण विस्फोट में 20 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 14 पुलिसकर्मी शामिल हैं। कई घायलों की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है, जिससे हताहतों का आंकड़ा और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। धमाके के तुरंत बाद बम निरोधक दस्ते और सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर जांच शुरू कर दी है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने हमले की कड़े शब्दों में निंदा की है। अब तक किसी भी आतंकी गुट ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन इसके पीछे TTP का हाथ होने का शक है। पुलिस हाई अलर्ट पर है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को सील कर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। यानी आतंकियों को पालने वाला पाकिस्तान अब खुद उन्हीं की जद में है। कहते हैं ना कि जब बोए पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। आज तक ब्यूरो।
5: वहीं ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम्स का रंगारंग समापन हो गया है और अगले खेलों की मेजबानी के लिए ध्वज अहमदाबाद को सौंप दिया गया। इस मौके पर भारतीय कलाकारों के प्रदर्शन ने खूब वाहवाही बटोरी।
14: गुड बाय ग्लासगो, अब अहमदाबाद में मिलेंगे। समापन समारोह में बिखरी भारतीय संस्कृति की छटा। धूम धड़ाके के साथ अहमदाबाद को सौंपा गया खेलों का ध्वज।
15: ग्लासगो का आसमान रंग बिरंगी आतिशबाजी से नहा रहा था और नीचे जमीन पर एक के बाद एक भारतीय सितारे जलवा बिखेर रहे थे। मौका था कॉमनवेल्थ गेम्स के समापन समारोह का, लेकिन इस समारोह में भारत का जादू ही सबका दिल जीत रहा था। दरअसल 2030 में अगले कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी अहमदाबाद को करनी है और परंपरा के मुताबिक इस समापन समारोह में स्कॉटलैंड ने आधिकारिक तौर पर कॉमनवेल्थ गेम्स का झंडा और बैटन भारत को सौंप दिया। समारोह में भारत ने अपनी सांस्कृतिक विरासत, आधुनिक सोच और परंपराओं की ऐसी झलक पेश की जिससे पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। पहले ये ध्वज दो बार के ओलंपिक मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को सौंपा गया, जिन्होंने भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा को दिया। फिर ये गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी के हाथों में आया। इस बार भारतीय खिलाड़ियों ने कुल 39 मेडल अपने नाम किए, जिनमें 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे। इस प्रदर्शन के साथ भारत मेडल टैली में चौथे पायदान पर रहा। इससे पहले 2010 में दिल्ली ने कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की थी। अब 2030 में भारत का दोहरा इम्तिहान होगा, शानदार मेजबानी करने का और ढेरों मेडल जीत कर तिरंगे की शान बढ़ाने का। आज तक ब्यूरो।
5: रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, देखते रहिए आज तक।
16: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परो।
17: इन एसोसिएशन विद
18: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
19: Want to hear something funny? Check out Just for Laughs Radio, your destination for all things comedy. Enjoy non-stop stand-up from your favorite comics, plus the ones you haven't discovered yet. Get your daily dose of laughter on Just for Laughs Radio, now on TuneIn.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
0: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
2: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
3: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933 बरसों से सरसों।
4: कुछ तो बात है इस तेल में।

0: to finding myself. That's my moment of Sarah.
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं?
3: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
4: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद
1: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
0: विमल बोलो जुबां केसरी, हिंट बड़े आराम से।
2: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
3: Today at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests.
4: Nobody expected that he would test within 3 months of taking over as Prime Minister.
5: Two more tests were conducted simultaneously on 13th May 1998.
4: Secretly fooled some of the best CIA experts, and that became the incredible story about the bomb makers, which made cover of India Today.
6: जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिस कहानी के बहुत अच्छे परिणाम हैं और बहुत दुखद परिणाम हैं। भारत एक राजमहल है, समृद्ध है, सोने की चिड़िया है। गहरी बात है वो ये है कि इस राजमहल के चारों तरफ झोपड़पट्टियां हैं, झुग्गियां हैं, चुनौती वाले क्षेत्र हैं। भारत आए अंग्रेज, यहाँ के लोगों को देखा उन्होंने, जब यहाँ के ग्रंथों को ट्रांसलेट करना शुरू किया, पढ़ा उन्होंने कि ब्राह्मण का जन्म मुंह से हुआ है। ये डिपार्टमेंट बनाया ही गया था शोषण के लिए। कौन सा? पुलिस। किसने बनाया था? कॉर्नवालिस ने। और पुलिस डिपार्टमेंट की खास बात यह है कि जब उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट भारत में बनाया, तब वो डिपार्टमेंट ब्रिटेन में नहीं था। जुडिशरी, मॉडर्न जुडिशरी उन्होंने अपने फायदे के लिए बनाया। अंग्रेजी कानून, अंग्रेजी जज। तुम कल्पना कर सकते हो, आधुनिक काल से पहले LGBT सड़क पर आकर प्रदर्शन करें, इनको तोप में बांध के उड़ा दिया होता।
7: तो क्या सिर्फ अब हिस्ट्री सिर्फ जो बाहर से लोग आए थे यहाँ पे शासन करने के लिए, उनको विलन के रूप में दिखा रहे हैं? या फिर
6: जो भी सरकार सत्ता में आती है वो शिक्षा का इस्तेमाल करती है अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने। वंदे मातरम पे बहस हो रही है, हर दिन मंदिर मस्जिद पे बहस हो रही है, मुसलमान पे बहस। ये संसद बनी किस लिए? औरंगजेब जो था भैया, डेली 200 किलो जनेऊ तोलता था। कितना? 200 किलो भी, मतलब डेली वो कम से कम 10,000 ब्राह्मणों को मारता था, हिंदुओं। मैं देखता हूँ मुसलमानों को और हिंदुओं को, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ। पहले मैं सोचता था पुलिस वाले यहाँ लगा के पॉइंट ब्लैंक से क्यों मारते, क्योंकि यहाँ ताला लगा हुआ है, तो इसीलिए मारते कि यहाँ मारे तो अगले जन्म में खुला हुआ रहेगा।
8: आपको लगता है कि आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद देश फिर बट सकता है?
6: इस बात को मैं रिपीटेडली कह चुका हूँ, एक विस्फोट होगा बेटा।
9: लेकिन आपके पढ़ाने के तरीके मुझे एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट लगता है कि आप जनता को ही बोल देते हैं कि जनता बड़ी बेवकूफ़ है, और फिर आप कहते हैं कि हमारे देश का युवा पढ़ना नहीं चाहता है।

जम्मू कश्मीर में संकट काल की ये पहली तस्वीर देखिए। पानी का रौद्र रूप ऐसा है मानो वो सब कुछ अपने में समेट कर ले जाने को बेताब हो। ये तस्वीरें शोपिया के हिरपुरा इलाके की हैं। रविवार को यहाँ अचानक बादल फटा। इस घटना के बाद वहाँ अचानक बाढ़ आ गई। इस घटना को अपनी आंखों से देखकर हर कोई हैरान रह गया। उधर जम्मू में कटरा के बालनी चेक पोस्ट के पास जोरदार लैंडस्लाइड हुआ। पहाड़ टूटकर तिनके की तरह बिखरे तो आने जाने वालों पर आफत टूटी। पहाड़ का मलबा कटरा रियासी नेशनल हाईवे 144 तक जा गिरा। इस घटना के बाद नेशनल हाईवे 144 को बंद कर दिया गया। गाड़ियों की आवाजाही ठप हो गई। देर तक ऐसी ही स्थिति बनी रही। उधर मिनमार जोजिला में भी तबाही हुई। शनिवार को वहां बादल फटे थे। घटना में कई कारें मलबे की चपेट में आईं। हालात ऐसे हो गए कि बचाव दल को जेसीबी और अन्य उपकरणों के साथ मोर्चा संभालना पड़ा। प्रशासन, पुलिस और प्रोजेक्ट विजयक टीम की संयुक्त टीम ने मिनमार जोजिला में बादल फटने की घटना में फंसी गाड़ियों को निकालने के लिए जोरदार बचाव अभियान चलाया। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ अशरफ वानी, श्रीनगर आज तक।

घर खरीदने का सपना हर किसी की जिंदगी में सबसे बड़ी उपलब्धि जैसा होता है। यही वजह है कि रियल एस्टेट मार्केट में जरा सी हलचल भी आम आदमी की जेब और उम्मीदों से सीधा जुड़ जाती है। हाल ही में आई नाइट फ्रैंक नारेडको की रिपोर्ट में रेजिडेंशियल सेगमेंट को लेकर कुछ बड़े रुझान सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक घरों की बिक्री में कमजोरी की आशंका जताने वालों की तादाद 52 से घटकर 45% रह गई है। वहीं नए प्रोजेक्ट लॉन्च कम होने की आशंका जताने वालों का आंकड़ा भी 45 से घटकर 38% पर आ गया है। इससे संकेत मिलता है कि बिक्री और नए लॉन्च को लेकर पहले के मुकाबले निराशा कुछ कम हुई है। हालांकि अब बात घरों की कीमतों की आती है तो तस्वीर थोड़ी अलग नजर आती है। रिपोर्ट के मुताबिक 74% लोगों का मानना है कि घरों के दाम या तो स्थिर रहेंगे या फिर इनमें और बढ़ोतरी होगी। यानी घर खरीदने का इरादा रखने वालों को महंगाई के मोर्चे पर फिलहाल राहत मिलने के आसार कम ही हैं। रेजिडेंशियल सेगमेंट की इस सुस्त रफ्तार को समझने के लिए ओवरऑल रियल एस्टेट सेंटीमेंट पर भी नजर डालना जरूरी है। रिपोर्ट के मुताबिक मौजूदा सेंटीमेंट स्कोर 48 है, जो पिछली तिमाही में 49 था और अब भी निराशा वाले दायरे में बना हुआ है। भविष्य को लेकर सेंटीमेंट स्कोर 50 पर स्थिर है, जिससे पिछली भारी गिरावट के बाद अब हालात संभलते दिख रहे हैं। इसकी एक बड़ी वजह देश की आर्थिक सूरत में दिख रहा हल्का सुधार भी माना जा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 36% लोगों को आर्थिक हालात बिगड़ने की आशंका है, जबकि पहली तिमाही में ही ये आंकड़ा 50% था, जबकि 31% लोगों को आर्थिक स्थिति में सुधार की उम्मीद है। फंडिंग को लेकर भी बाजार में बहुत ज्यादा हलचल के आसार नहीं है। आधे लोगों का मानना है कि कैपिटल की उपलब्धता में कोई बदलाव नहीं आएगा। वहीं करीब 19% लोगों को इसमें सुधार की उम्मीद है। कुल मिलाकर रेजिडेंशियल मार्केट भले ही तेज उछाल की स्थिति में ना हो, लेकिन बिक्री और लॉन्च को लेकर घटती निराशा घर खरीदारों और डेवलपर्स दोनों के लिए राहत की खबर जरूर है। आदित्य के राणा आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

कड़ा हमला, आरजेडी की जमानत जब्त। कांग्रेस के हाथ लगा मध्यप्रदेश का दतिया, यहां भी 6,000 से ज्यादा वोटों से हार गई बीजेपी। गुजरात के मांजलपुर ने बचाई बीजेपी की इज्जत, 30,000 से ज्यादा वोटों से जीते सतेन भाई पटेल। यूपी विधानसभा में मानसून सत्र के पहले दिन चढ़ावा चोरी पर घमासान, विपक्ष की तरफ से जोरदार प्रदर्शन, योगी बोले जनता को गुमराह ना करें, दम है तो विकास पर करें बात। झारखंड का रांची बना नया जंतर मंतर, जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जारी, 10 दिन से भूख हड़ताल पर देवेंद्रनाथ महतो, सीबीआई जांच की मांग। E20 के खिलाफ नागपुर में गडकरी के घर के बाहर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, मंत्री के इस्तीफे की मांग, सुरक्षा घेरा तोड़ने पर हिरासत में लिए गए कई नेता।

नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं विशेष, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। आज विशेष बात प्रशांत किशोर की, वही पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट प्रशांत किशोर जिन्होंने बहुत से नेताओं को सत्ता दिलाने के बाद अपनी पार्टी बनाई थी, वही प्रशांत किशोर जिन्होंने नवंबर 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ा और बुरी तरह से हार गए थे। 238 में से 236 उम्मीदवार अपनी जमानत भी नहीं बचा पाए, लेकिन आज उन्हें जीत का पहला स्वाद मिला है और जीत भी ऐसी मिली कि पूरे देश के राजनीतिक गलियारों में उसी जीत की चर्चा हो रही है। अब बांकीपुर सीट की बात कर लेते हैं, जहां पर प्रशांत किशोर ने 19,324 वोटों से जीत दर्ज की है। कुल वोट इन्हें मिले हैं 64,151। वहीं बीजेपी के प्रत्याशी नीरज कुमार को 44,827 वोट मिले हैं और ये इसी वोट से हार गए हैं, जिससे प्रशांत किशोर को जीत हासिल हुई है। बीजेपी के नीरज कुमार को उन्होंने हराया। ये सीट पहले नितिन नबीन की थी, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की सीट पर। प्रशांत किशोर ने ये कमाल कैसे किया है, हमारी इस रिपोर्ट के जरिए देखिए और समझिए।

0: ये सीधा सीधा मैसेज है, 30 बरस का जो गढ़ है वो सिर्फ 30 दिनों में ढह गया। वो सिर्फ इसलिए ढहा है कि बिहार के लोग भी चाहते हैं कि अब 4 किलो 5 किलो अनाज और जाति से ऊपर उठकर हम लोग के बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार काम कर।
1: आम तौर पर उपचुनाव के नतीजों की खबरें अखबारों के सिंगल कॉलम में छिप जाती है, लेकिन बिहार के बांकीपुर के उपचुनाव के नतीजे कुछ अलग है। इसीलिए चर्चा तो पूरे देश में हो ही रही है, बल्कि इस नतीजे के बड़े मायने भी खोजे जा रहे हैं। बांकीपुर से बीजेपी की हार में क्या बड़ा संदेश छिपा है? क्या प्रशांत किशोर बीजेपी के लिए कोई बड़ा खतरा बनने वाले हैं? क्या प्रशांत किशोर ने लोगों को एक तीसरे विकल्प के बारे में सोचने को मजबूर किया है? क्या प्रशांत किशोर की जीत बिहार में सम्राट चौधरी की सरकार का रेफरेंडम था?
0: ये भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये संदेश देने का एक प्रयास है बिहार की जनता के द्वारा कि बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए।
1: बांकीपुर उपचुनाव का नतीजा इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि ये बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की सीट थी। बांकीपुर की सीट पहले पटना पश्चिम कही जाती थी और इस सीट से नितिन नवीन के पिता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा 1995 से 2005 तक विधायक रहे। फिर नितिन नवीन पटना पश्चिम से ही पहली बार 2006 में विधायक बने और बाद में सीट बांकीपुर हुई तो नितिन नवीन 2010, 2015, 2020 और 2025 में विधायक बने। सोचिए पिछले 30 सालों से ये सीट बीजेपी का गढ़ थी और आज प्रशांत किशोर ने इसे बीजेपी से छीन लिया। अब ये विश्लेषण होते रहेंगे कि बीजेपी यहाँ क्यों हारी और प्रशांत किशोर कैसे जीते, लेकिन हकीकत यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जैसे ही सीट छोड़ी वैसे ही पार्टी हार गई। वो भी तब जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत बीजेपी के बहुत से वरिष्ठ नेता यहाँ खुद प्रचार कर रहे थे। ये भी पूछा जा रहा है कि क्या सवर्ण बीजेपी से नाराज है या फिर नीतीश के नाम पर चुनाव जीतना और सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाना भारी तो नहीं पड़ गया।
0: बांकीपुर की जनता की जीत है और जैसा कि चुनाव प्रचार के दौरान हम लोगों ने जो बात रखी थी, ये विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, ये भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये संदेश देने का एक प्रयास है बिहार की जनता के द्वारा कि बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। आपको जनता ने 202 विधायक जिताए हैं, किसी अपराधी किसी गलत चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मत दीजिए, अच्छे आदमी को बनाइए ताकि बिहार में भी शिक्षा हो, बिहार में भी बच्चों के लिए रोजगार हो, बिहार के बच्चों को भी बाहर मजदूरी करने न जाना पड़े। ये संदेश बांकीपुर के लोगों ने दिया है। बाकी विधायक जीतना हारना ये तो राजनीति है, चलता रहता है। जिन लोगों ने मत दिया उनका धन्यवाद कर रहे हैं, जिन्होंने मत नहीं दिया है उनको यही कहेंगे कि आपसे आपका विश्वास जीतने के लिए और मेहनत और प्रयास करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार को अच्छा नेतृत्व मिलना चाहिए, बिहार सुधरना चाहिए और लोकसभा से पहले मोदी जी को, भाजपा को, अमित शाह जी को ये देखना चाहिए कि बिहार में कैसे बेहतरी हो, बिहार में बच्चों को रोजगार कैसे हो, पलायन कैसे बंद हो। एकमात्र यही उद्देश्य है। हम लोग को विधायक बन के ठेका पट्टा नहीं करना है, एक और एकमात्र उद्देश्य है, चाहते हैं कि बिहार में बेहतरी हो।
1: शायद इस बार इस उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जीत की भविष्यवाणी तो बड़े बड़े विशेषज्ञ भी नहीं कर पाए, क्योंकि बीजेपी ने इस सीट को जीतने के लिए पूरा जोर लगाया था। प्रशांत किशोर ने 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव बहुत मजबूती से लड़ा था, लेकिन जब नतीजा आया तो वो कहीं नजर नहीं आए। सबको लगा कि प्रशांत किशोर राजनीति का वो गुब्बारा थे जिनमें चुनाव से पहले हवा भरी गई और चुनाव हुए तो हवा निकल गई। प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी ने 2025 के चुनावों में 238 सीटों पर उम्मीदवार उतारे, एक भी सीट नहीं जीत पाए। 238 में से 236 की जमानत जब्त हो गई और उन्हें कुल 16,77,583 वोट मिले, यानी करीब 3.34%। सबको लगा कि प्रशांत किशोर का चैप्टर ओवर है क्योंकि हार ही इतनी बड़ी थी, लेकिन प्रशांत किशोर ने उम्मीदें नहीं छोड़ी। नवंबर 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव हुए थे, प्रशांत किशोर ने अपने वक्त का इंतजार किया। बांकीपुर में उपचुनाव अनाउंस हुआ तो वो खुद लड़ने पहुंच गए, वो भी बीजेपी की उस पिच पर जहां 30 साल से कोई दूसरा जीता नहीं था। जातिगत से लेकर सारे समीकरण बीजेपी के पक्ष में थे, लेकिन पीके ने बीजेपी का यह किला ढहा दिया।
0: किला किसी का नहीं होता है। 30 साल का किला 30 दिन भी नहीं लगा, और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि भाजपा ने चुनाव जीतने के बाद यहाँ पर एक अपराधी प्रवृत्ति के आदमी को, एक गलत चाल चरित्र के चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व दिया है, जो बिहार के लोगों को स्वीकार्य नहीं है।
1: पीके लगातार उन मुद्दों को उठाते रहे हैं जो सीधे जनता से जुड़े रहे हैं। वो पढ़ाई की बात करते हैं, बिहार में संसाधनों की बात करते हैं, बिहार के पलायन को रोकने की बात करते हैं। अभी तक प्रशांत किशोर ये सब बातें चुनावी भाषणों और सेमिनारों में किया करते थे, लेकिन अब उनके पास बिहार विधानसभा का मंच है। भले ही वो अपनी पार्टी के अकेले विधायक होंगे, लेकिन क्या वो बिहार के लोगों की वो आवाज बन पाएंगे?
0: बिहार में भी सिर्फ 5 किलो अनाज के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट न मांगा जाए। अगर 25 MP गुजरात से जीत कर गए हैं, प्रधानमंत्री बनाने में मोदी जी को गुजरात के लोगों ने योगदान किया है, तो बिहार के भी 13 करोड़ लोगों ने आंख बंद करके मोदी जी को वोट दिया है। तो जितनी चिंता उनको गुजरात की है, उतनी थोड़ी चिंता उनको बिहार की भी करनी चाहिए। बिहार के जो 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे बाहर मजदूरी कर रहे हैं, उनकी चिंता होनी चाहिए। बिहार के लिए कोई एक स्पेशल प्रोग्राम बनाना चाहिए ताकि बिहार से पलायन बंद हो। कोई भी बच्चा यहाँ से 10-15 हजार रुपए के लिए अपने घर परिवार समाज को छोड़कर उसको गुजरात, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, कोयम्बटूर, तमिलनाडु, कर्नाटक न जाना पड़े। इसी उद्देश्य को लेकर हम लोग यहाँ आए हैं। और
2: तो वैसे तो प्रशांत किशोर इस जीत के बहुत मायने दिखाई दे रहे हैं और बताए भी जा रहे हैं, और ये भी पूछा जा रहा है कि प्रशांत जीत कर एक विधायक ही तो बने हैं, इससे क्या हो जाएगा? बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार चल रही है। ये बात बिल्कुल सही है कि प्रशांत की जीत से बीजेपी की सरकार की स्थिति में कोई फर्क नहीं आने वाला, लेकिन प्रशांत किशोर की जीत बिहार में विपक्ष के स्पेस में बहुत बड़ी सेंध लगने वाली है, और ये साफ साफ दिख रहा है।
1: जो किला 30 साल से अजेय था, जहां की हवाओं में सिर्फ एक ही दल का परचम लहराता था, पटना का वो बांकीपुर आज एक नए इतिहास का गवाह बना है। चाणक्य नीति से राजाओं को गद्दी पर बिठाने वाला रणनीतिकार जब खुद स्कूल का बस्ता लेकर रणभूमि में उतरा, तो दिल्ली से लेकर पटना तक के सिंहासन डोल गए।
0: लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है, सम्राट चौधरी का जो चाल चरित्र चेहरा है वो पब्लिक डोमेन में है। अगर आप किसी अपराधी को बिहार का राजा मुख्यमंत्री बनाएंगे तो बिहार की तरक्की नहीं हो सकती है। तो हम लोग की लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, बहुमत भाजपा का है, NDA का है, मुख्यमंत्री तो उन्हीं का बनेगा। हम लोग बस इतना ही आग्रह कर रहे हैं, बिहार की जनता इतना ही आग्रह कर रही है, बांकीपुर की जनता इतना ही मोदी जी से आग्रह कर रही है कि किसी अच्छे चरित्रवान काबिल आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए, ताकि बिहार के लोग भी इस बात का गौरव, बिहारी होने का गौरव कर सकें, ताकि हम लोग के बच्चों के लिए भी पढ़ाई रोजगार की व्यवस्था हो, सब कुछ सुविधा। अगर गुजरात के ही लोगों को मिलेगी तो सिर्फ बिहार के लोग कहाँ जाएंगे? गुजरात के लोग 1 लाख करोड़ के बुलेट ट्रेन पर चलेंगे वो ठीक है, लेकिन हम लोगों को कम से कम पैसेंजर भी तो मिलना चाहिए। बिहार के लोग सिर्फ मजदूरी करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं, और 5 साल के लिए भाजपा को मैंडेट मिला है, उनको अच्छा आदमी देना चाहिए, अच्छे लोगों को मंत्रिमंडल में रखना चाहिए, ताकि बिहार की तरक्की हो, बिहार का विकास हो।
1: इतिहास गवाह है कि जब व्यवस्थाएं अपनी ताकत के नशे में होती है, तब जनता बदलाव की स्याही से अपनी तकदीर का नया पन्ना लिख देती है। बिहार के बांकीपुर विधानसभा सीट पर 1995 से लगातार बीजेपी का कब्जा था। 2006 के उपचुनाव से लेकर 2025 के मुख्य चुनाव तक लगातार 5 बार जीतकर नितिन नवीन सरताज रहे, लेकिन नितिन नवीन के सीट खाली करने के बाद उपचुनाव में बीजेपी का तंबू उखड़ गया। चुनाव के चाणक्य और जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार को पूरी तरह से हरा दिया। बीजेपी के रणनीतिकार पन्नों पर जाति का गुणाभाग करते रहे। कायस्थ, ब्राह्मण, भूमिहार और युवाओं के जिस वोट बैंक को बीजेपी अपनी बपौती समझती थी, उस पारंपरिक चक्रव्यूह को प्रशांत किशोर ने मत कर रख दिया। यह हार सिर्फ एक उम्मीदवार की नहीं है, यह हार बीजेपी के अध्यक्ष से लेकर मुख्यमंत्री तक की है, और इसका संदेश तो दिल्ली तक भी जा रहा है।
3: मैं पूरा बांकीपुर आई थैंक द पीपल ऑफ बांकीपुर फ्रॉम द कोर ऑफ माय हार्ट।
4: जय बिहार।
3: बहुत लगा था कितनी मेहनत की है तो जीतना और बांकीपुर का जनता
1: ये सिर्फ एक उपचुनाव की जीत नहीं है, ये बिहार की उस वैकल्पिक राजनीति का शंखनाद है जिसका वादा प्रशांत किशोर अपनी पदयात्राओं में कर रहे थे। बांकीपुर ने साबित कर दिया कि बिहार अब लालू के लालटेन वाले खौफ और नीतीश बीजेपी के एक जैसे शासन के बीच पिसने को तैयार नहीं है। बिहार के सबसे पढ़े लिखे और शहरी क्षेत्र ने बता दिया कि नया बिहार अब जाति पर नहीं, शिक्षा, रोजगार और सुशासकीय विजन पर वोट करेगा।
5: ये लोग भौकाल बांध कर चुनाव लड़ते हैं, जमीन पर कुछ नहीं है। जमीन पर अगर कोई खड़ा हो गया तो इनके हाथ पांव फूल रहे हैं, क्योंकि कोई लड़ता नहीं है। लालू जी का डर दिखाकर ये लोग बांकीपुर जीत जाते हैं तो इनको लगता है कि पूरी जनता इन्हीं के पास है। ये हमारा सब्जेक्टिव एनालिसिस नहीं है, आप आंकड़ों को देख लीजिए। बांकीपुर में 40-41% वोट पड़ता है, उस वोट का अगर 60% भाजपा को मिलता है इसका मतलब है कि बांकीपुर के 24-25% मतदाता भाजपा को वोट देते हैं। 75% मतदाता या तो भाजपा को वोट नहीं दे रहे हैं या उनके खिलाफ में वोट दे रहे हैं, लेकिन उनकी एक खुशफहमी थी अभी तक ये हमारा किला है। अब जब वो किला दरक रहा है, ढह रहा है तो घबराहट में हर तरह का प्रपंच कर रहे हैं।
1: नितिन नवीन का किला ढह चुका है, बीजेपी का ओवर कॉन्फिडेंस दरक चुका है। ये जीत बिहार की सियासत में आने वाले उस तूफान की आहट है जो स्थापित सूरमाओं को उखाड़ फेंकेगा और राजनीतिक विशेषज्ञ सवाल उठाने लगे कि क्या आने वाले वक्त में जनसुराज बिहार में एक तीसरा विकल्प हो सकती है।
5: देश में विपक्ष कभी कमजोर नहीं हो सकता। 31-32% लोग, 35% लोग भाजपा को वोट देते हैं, 65% लोग तो उनके विरोध में ही है। वो ठीक है वो किसी एक पार्टी एक नेता के पीछे नहीं है, लेकिन 65% लोग विरोध में है। और एक समय आएगा कि जब आप बहुत उनको परेशान करेंगे तो लोग सड़क पर आएंगे। उसी का एक नजारा आपको जंतर मंतर पर दिखा, कुछ हद तक पटना में भी दिख रहा है और आगे भी दिखेगा। लोग रोजगार चाहते हैं, पढ़ाई चाहते हैं, सिर्फ धर्म के नाम पर आप ये नहीं कर सकते हैं। और तब तो और नहीं कर सकते हैं जब लोगों ने देख लिया है कि जिस राम मंदिर के नाम पर आप बरसों से वोट ले रहे हैं उसके चढ़ावे में भी चोरी से आप बाज नहीं आ रहे।
1: गणित के चश्मे से देखने वाले कहेंगे कि एक सीट से बिहार की एनडीए सरकार की सत्ता पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। नंबर गेम में बीजेपी आज भी महफूज है, लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि सत्ता नहीं बदली पर सत्ता का इकबाल बदल गया। बांकीपुर का ये नतीजा सरकार गिराने के लिए नहीं बल्कि सरकार चलाने वालों के जमीर को हिलाने के लिए आया है। आज तक ब्यूरो
2: रुकेंगे आज फिर से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, बने हुए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
6: Sports all the time right here on TuneIn. Catch live sports talk, expert analysis, and non-stop discussion from your favorite stations like ESPN Radio.
7: Not missed out on one player that the Yankees wanted.
6: Big 12 Radio.
8: Today is Big 12 Insiders game day. We're breaking
6: and
8: down.
6: Talk sports.
9: I just can't see a turnaround in the way that we're going to perform and result.
6: And much more. Get your head in the game and never miss a minute of the action. Just search sports or ask your device to play your favorite sports talk station on TuneIn.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
3: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
4: कुछ तो बात है इस तेल में।

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
2: बांकीपुर की जनता की जीत है
3: खोलो, लाइट खोलो।
2: और जैसा कि चुनाव प्रचार के दौरान हम लोगों ने जो बात रखी थी, ये विधायक बनाने का चुनाव नहीं है, ये भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये संदेश देने का एक प्रयास है बिहार की जनता के द्वारा कि बिहार में किसी अच्छे व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाइए। आपको जनता ने 202 विधायक जिताए हैं, किसी अपराधी किसी गलत चाल चरित्र चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व मत दीजिए, अच्छे आदमी को बनाइए ताकि बिहार में भी शिक्षा हो, बिहार में भी बच्चों के लिए रोजगार हो, बिहार के बच्चों को भी बाहर मजदूरी करने न जाना पड़े। ये संदेश बांकीपुर के लोगों ने दिया है। बाकी विधायक जीतना हारना ये तो राजनीति है, चलता रहता है। जिन लोगों ने मत दिया उनका धन्यवाद कर रहे हैं, जिन्होंने मत नहीं दिया है उनको यही कहेंगे कि आपसे आपका विश्वास जीतने के लिए और मेहनत और प्रयास करेंगे। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार को अच्छा नेतृत्व मिलना चाहिए, बिहार सुधरना चाहिए और लोकसभा से पहले मोदी जी को, भाजपा को, अमित शाह जी को ये देखना चाहिए कि बिहार में कैसे बेहतरी हो, बिहार में बच्चों को रोजगार कैसे हो, पलायन कैसे बंद हो। एकमात्र यही उद्देश्य है। हम लोग को विधायक बन के ठेका पट्टा नहीं करना है, एक और एकमात्र उद्देश्य है, चाहते हैं कि बिहार में बेहतरी हो। बिहार में भी सिर्फ 5 किलो अनाज के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट न मांगा जाए। अगर 25 MP गुजरात से जीत कर गए हैं, प्रधानमंत्री बनाने में मोदी जी को गुजरात के लोगों ने योगदान किया है, तो बिहार के भी 13 करोड़ लोगों ने आंख बंद करके मोदी जी को वोट दिया है। तो जितनी चिंता उनको गुजरात की है उतनी थोड़ी चिंता उनको बिहार की भी करनी चाहिए। बिहार के जो 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चे बाहर मजदूरी कर रहे हैं उनकी चिंता होनी चाहिए। बिहार के लिए कोई एक स्पेशल प्रोग्राम बनाना चाहिए ताकि बिहार से पलायन बंद हो, कोई भी बच्चा यहाँ से 10-15 हज़ार रुपए के लिए अपने घर परिवार समाज को छोड़कर उसको गुजरात, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, कोयम्बटूर, तमिलनाडु, कर्नाटक न जाना पड़े। इसी उद्देश्य को लेकर हम लोग यहाँ आए हैं और आज की जीत उसी बात को फिर से मजबूत करने के लिए है कि NDA को, भाजपा को लोगों ने जिताया है। अब भाजपा के नेतृत्व की ये जिम्मेवारी है कि किसी ऐसे व्यक्ति को बिहार का मुख्यमंत्री बनाए जो कि बिहार में रोजगार लाए, बिहार में शिक्षा की स्थिति को सुधारे, भ्रष्टाचार कम हो और सबसे बढ़कर पलायन बंद हो। ये सीधा सीधा मैसेज है। 30 बरस का जो गढ़ है वो सिर्फ 30 दिनों में ढह गया। वो सिर्फ इसलिए ढहा है कि बिहार के लोग भी चाहते हैं कि अब 4 किलो 5 किलो अनाज और जाति से ऊपर उठकर हम लोग के बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार काम करे। अगर वो काम नहीं करेंगे तो आगे चुनाव के परिणाम उनको ऐसे ही देखने को मिलेंगे।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
6: Need a good laugh? We know a place. Just for Laughs Radio brings you non-stop stand-up bits by the best comics in the game. From all-timers to rising stars. And the punchline? It's all waiting for you on TuneIn. Head on over to Just for Laughs Radio today.
7: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
8: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
9: कुछ तो बात है इस तेल में।

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: हमारे साथ है बातचीत करने के लिए बीजेपी के पूर्व सांसद, भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बृजभूषण शरण सिंह, जिनके ऊपर ये आरोप लगे थे कि उन्होंने महिला पहलवानों के साथ जो है वो सेक्सुअल हरासमेंट किया था। आज जो निचली अदालत है उन्होंने उनको इस पूरे मामले में जो है वो बरी कर दिया है। बृजभूषण जी, कैसा आपको लग रहा है जब इतने लगभग जो है 3 साल के करीब हो गए, अब पूरा मामला जो है वो क्लियर हो गया, आपको बरी कर दिया गया?
2: हिमांशु जी, बरी शब्द का इस्तेमाल की जगह पर कोर्ट ने बाइज्जत बरी शब्द का इस्तेमाल किया है। बरी और बाइज्जत बरी में फर्क होता है। एक बरी होता है कि सबूतों के अभाव में आपको छोड़ा जा रहा है। यहां सीधे सीधे कहा गया कि आपको नाम लेकर के कि आपको बाइज्जत बरी किया जा रहा है। और जहां तक आप भी मौजूद थे पहले दिन, और जब मुझे थोड़ा सा मौका मिला था तब मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि ये सब झूठ है। और अगर इसमें एक भी आरोप साबित होगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। इतना कॉन्फिडेंस इसलिए था कि मैं अपने आप को जानता था, सामने वाले को नहीं जानता था, लेकिन अपने आप को जानता था। और आज अभी कुछ दिन पहले भी मैंने कहा कि मैं उस बात पर कायम हूं। आज मेरी बात वो सत्य पाई गई और इस साजिश में पहलवानों के अलावा देश की लगभग लेफ्ट राइट, कांग्रेस, आम, ममता, यानी दो एक पार्टियों को छोड़ करके कोई बचा नहीं था। अब उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, क्योंकि उनके हिसाब से तो उसी दिन मुझे पकड़ करके फांसी दे देना चाहिए था।

0: विशेष मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही, आगे देखिए खबरदार मेरी सहयोगी श्वेता सिंह के साथ।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: बीजेपी अध्यक्ष की सीट पर पिट गई पार्टी। बांकीपुर से शानदार जीत के बाद बोले प्रशांत किशोर, 30 दिन में ढहा दिया 30 साल पुराना किला। सीएम सम्राट पर किया कड़ा हमला, आरजेडी की जमानत जब्त। कांग्रेस के हाथ लगा मध्य प्रदेश का दतिया, यहां भी 6000 से ज्यादा वोटों से हार गई बीजेपी। गुजरात के मांजलपुर में बीजेपी की जीत, 30,000 से ज्यादा वोटों से जीते सत्येंद्र भाई पटेल। पीएम मोदी का वीडियो हटाने पर मेटा ने मानी गलती, संसदीय समिति की बैठक में मांगी माफी। तकनीकी गड़बड़ी का दिया हवाला, समिति ने जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की। यूपी विधानसभा में मॉनसून सत्र के पहले दिन चढ़ावा मामले पर घमासान, विपक्ष की तरफ से जोरदार प्रदर्शन। योगी बोले जनता को गुमराह न करें, दम है तो विकास पर करें बात। झारखंड का रांची बना नया जंतर मंतर, जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी। 10 दिन से भूख हड़ताल पर देवेंद्र नाथ महतो, सीबीआई जांच की मांग।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: को खबरदार करने का। यूं तो एक वक्त था जब ये कहा जाता था कि उपचुनाव से बहुत कुछ बदलता है। फिर दौर राजनीति में ऐसा भी आया जब माना गया उपचुनाव में सत्ताधारी दल ही जीतता है, लेकिन जब सत्ता में रहकर भी उपचुनाव में सेफ से सेफ सीट सेफ न रह जाए तो जरूरी है कि इस बड़ी राजनीति से खबरदार किया जाए। गुजरात के उपचुनाव में जीत से ज्यादा बड़ी खबर बिहार के बांकीपुर से मध्य प्रदेश के दतिया तक बीजेपी की हुई हार है। लेकिन पहले एक बड़ी खबर हम बता दें, अब गुजरात सरकार ने भी नीट पेपर लीक के विरोध में प्रदर्शन में शामिल छात्रों और अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेने का आदेश दे दिया है। इससे पहले महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर केस वापस लेने का आदेश वहां की राज्य सरकारों ने दिया था। गुजरात इसमें नया राज्य जुड़ा है। चलिए अब बिहार चलते हैं। बिहार की राजनीति पर केंद्रित एक वेब सीरीज आई थी, नाम था महारानी, जिसमें एक डायलॉग काफी चर्चा में आया था जो आज बिहार के राजनीतिक माहौल पर एकदम फिट बैठता है। डायलॉग ये था कि बिहार की एक खासियत है, जब जब आपको लगेगा कि आप बिहार की राजनीति को समझ गए हैं, बिहार आपको झटका देता है। यही आज बिहार में हुआ, जहां बिहार के विधायक पद से सीधे बीजेपी के अध्यक्ष पद तक पहुंचे नितिन नवीन की खाली हुई सीट पर उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने 19,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल कर ली है। बीजेपी के सामने अब तक जहां मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी रही, वहां बांकीपुर में तेजस्वी यादव की पार्टी की जमानत तक जब्त हो गई।
1: बिहार की एक खासियत है, जब जब आपको लगता है कि आप बिहार को समझ गए हैं, बिहार आपको झटका देता है।
2: सच है कि बिहार ने चौंकाया है। लड्डू तो बीजेपी वाले बताते हैं कि 200 किलो बनवाया, लेकिन कहावत है, कहा जाता है हाथ खुआया मुंह ना लगा। यही तो साल की शुरुआत में सबको चौंकाकर बीजेपी अध्यक्ष बनकर लड्डू चखने वाले नितिन नवीन के राज्यसभा में जाने के बाद खाली हुई विधानसभा सीट बांकीपुर पर हुआ, जहां मुख्यमंत्री के साथ रोड शो करते बीजेपी अध्यक्ष दावा करते रहे जनता की लहर साथ है।
3: मुझे पूरा विश्वास है कि जो समर्थन जनता का दिख रहा है वो निश्चित रूप से 3 अगस्त को फिर से एनडीए का कमल, भाजपा का कमल बांकीपुर की जनता खिलाएगी।
2: लेकिन जब नतीजे बांकीपुर उपचुनाव के आए, पता चला जनता तो अध्यक्ष जी की ही पारंपरिक सीट पर पीके के साथ चली गई।

बीजेपी अपने ही अध्यक्ष की सीट पर उपचुनाव नहीं जीत पाई। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद पहली बार हुए उपचुनाव में बीजेपी हार गई। बिहार में बीजेपी के पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद हुए उपचुनाव में बीजेपी जीत नहीं पाई। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री रहते पहला ही उपचुनाव बीजेपी हार जाती है। 3 दशक से जीती जा रही सीट पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ता है। हिंदू बाहुल्य और बीजेपी के कोर समर्थक वोटर वाली सीट पर बीजेपी को हार मिलती है, वो भी उन प्रशांत किशोर से जिन्हें 9 महीने पहले बिहार के विधानसभा चुनाव में चूका हुआ मान लिया गया था। प्रशांत किशोर की जीत बड़ी या बीजेपी अध्यक्ष की छोड़ी हुई सीट पर बीजेपी की हार बड़ी, इन दो सवालों के कुछ जवाब हैं जो कहते हैं कि बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत सवर्ण वोटर छिटक गया है। सवर्ण वोटर विकल्प बेहतर मिले तो साथ बीजेपी का छोड़ सकता है और सेफ सीट का मतलब अब कुछ

0: जीत मिलते ही प्रशांत किशोर ने भले एक सीट जीती, भले वो अपनी पार्टी के इकलौते विजयी उम्मीदवार विधानसभा में बने, लेकिन एक उपचुनाव की चाल से वो सीधे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को शह और मात दे देना चाहते हैं।
1: रेफरेंडम है ये सम्राट चौधरी पे?
2: बिल्कुल, वो तो है।
1: बार बार कह रहे थे जनमत संग्रह है ये।
2: बिल्कुल, सम्राट चौधरी के नेतृत्व को बिहार की जनता स्वीकार नहीं करती है, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है।
1: और नितिन नवीन के सीट पे इतनी बड़ी जीत, किला ध्वस्त किया है बीजेपी का आपने?
2: किला किसी का नहीं होता है।
3: आराम से चलिए।
2: 30 साल का किला 30 दिन भी नहीं लगा, और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि भाजपा ने चुनाव जीतने के बाद यहाँ पर एक अपराधी प्रवृत्ति के आदमी को, एक गलत चाल चरित्र के चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व दिया है, जो बिहार के लोगों को स्वीकार्य नहीं है।
0: 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद 111 दिन के भीतर पहली चुनावी परीक्षा में वो पास नहीं हो पाए, जहाँ प्रशांत किशोर लगातार सीधे एक वोट एक सीट से सम्राट चौधरी पर निशाना प्रचार के दौरान साधते रहे।
4: आपका एक वोट विधायक नहीं चुनेगा, बिहार में मुख्यमंत्री बदल देगा। अगर आप सम्राट चौधरी को हटाना चाहते हैं तो अभी आपके पास रास्ता है। एक बार संकल्प लीजिए, भाजपा को बाकीपुर में हराइए, लिख के ले लीजिए, सम्राट चौधरी का कुर्सी हिलने लगेगा, सम्राट चौधरी को हटाने का रास्ता खुल जाएगा।
0: इसके बाद जैसे ही बांकीपुर में जीत का डंका प्रशांत किशोर बजाते, वो इस बात को दोहराते कि बांकीपुर में बीजेपी की हार का मतलब मुख्यमंत्री की हार है।
2: पहला काम बस यही है कि बांकीपुर की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, अपनी ओर से जो हो सकेगा बांकीपुर में सुधार का प्रयास करेंगे। अगले 2-3 महीने में आपको वो चीज दिखेंगे भी। मैं कोई बहुत बड़ी बड़ी बात बोलना नहीं चाहता हूँ। विधायक, मेरे विधायक बनने से बांकीपुर बंगलोर नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ सुधार होता अगले 2-3 महीने में दिखेगा। बड़ी बात यह है कि ये चुनाव बांकीपुर के नाली गली पर नहीं लड़ा गया है, ये चुनाव लड़ा गया है कि बिहार का नेतृत्व किसके हाथ में होना चाहिए। और बांकीपुर की जनता ने ये संदेश दिया है भाजपा के नेतृत्व को कि भाई आप अच्छे आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए, सम्राट चौधरी की जगह किसी कुशवाहा को बनाना है बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कुशवाहा को ही बनाइए, लेकिन कुशवाहा समाज के ही किसी अच्छे आदमी को बनाइए।
0: प्रशांत किशोर की जीत हुई। सम्राट चौधरी ने अब सोशल मीडिया पर लिखा है, लोकतंत्र के महापर्व में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनता ने जन सुराज को चुना है, मैं जनता के इस निर्णय का सम्मान करते हुए प्रशांत किशोर को उनकी जीत पर हार्दिक बधाई देता हूं।
5: लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो चुनाव परिणाम के रुझान आ रहे हैं उसको हम सिर झुकाकर स्वीकार करते हैं, और हम पूरी समीक्षा करेंगे। बांकीपुर के लोग हमारे हैं, हमसे अलग क्यों हुए इसकी भी हम समीक्षा करेंगे।
6: ये लोकतंत्र की भूमि है और जनता के जनादेश को भारतीय जनता पार्टी हमेशा शिरोधार्य की है। हम कभी भी ठीकरा चुनाव आयोग या ईवीएम पर नहीं फोड़ते हैं, ये विपक्ष के लोगों के तरह।
2: हम लोग की लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, बहुमत भाजपा का है, एनडीए का है, मुख्यमंत्री तो उन्हीं का बनेगा। हम लोग बस इतना ही आग्रह कर रहे हैं, बिहार की जनता इतना ही आग्रह कर रही है, बांकीपुर की जनता इतना ही मोदी जी से आग्रह कर रही है कि किसी अच्छे चरित्रवान काबिल आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए, ताकि बिहार के लोग भी इस बात का गौरव, बिहारी होने का गौरव कर सकें, ताकि हम लोग के बच्चों के लिए भी पढ़ाई रोजगार की व्यवस्था हो, सब कुछ सुविधा। अगर गुजरात के ही लोगों को मिलेगी तो सिर्फ बिहार के लोग कहाँ जाएंगे? गुजरात के लोग 1,00,000 करोड़ के बुलेट ट्रेन पर चलेंगे वो ठीक है, लेकिन हम लोगों को कम से कम पैसेंजर भी तो मिलना चाहिए। बिहार के लोग सिर्फ मजदूरी करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं, और 5 साल के लिए भाजपा को मैंडेट मिला है, उनको अच्छा आदमी देना चाहिए, अच्छे लोगों को मंत्रिमंडल में रखना चाहिए, ताकि बिहार की तरक्की हो, बिहार का विकास हो।
7: 2002 से 2026 के बीच 8 बार बीजेपी के अध्यक्ष बने, जिसमें राजनाथ सिंह 2 बार अध्यक्ष बने, 24 साल में 2 विधायक थे जो पार्टी अध्यक्ष बने, दोनों ही राज्यसभा सांसद बने। एक अमित शाह, जिनकी सीट पर 2017 में चुनाव हुआ बीजेपी जीती, लेकिन नितिन नवीन की सीट पर उपचुनाव हुआ तो बीजेपी हार गई। अब प्रशांत किशोर कैसे जीते इसको समझने में सब जुटे हैं। सबसे पहले तो सबके मन में यही सवाल घूम रहा है कि क्या पीके की जीत और बीजेपी की हार का संबंध नीट पेपर लीक, युवाओं का

0: सीजेपी इन सब से जुड़ा है, इसीलिए हमने बांकीपुर में युवाओं का गणित समझा। जहां कुल 3,79,616 वोटर हैं, वहां दावा है कि 18 से 29 साल के युवा वोटर करीब 1,20,000 से लेकर 1,35,000 के बीच रहे होंगे, यानी कुल वोटर का 32% से 35% के बीच, यानी वोटर का एक तिहाई हिस्सा। मतलब जेन जी वोटर तो बांकीपुर में थे, इसी बांकीपुर में वोटिंग दिल्ली के जंतर मंतर प्रदर्शन आंदोलन के बाद होती है। उससे पहले पटना तक में छात्र प्रदर्शन कर चुके थे, जिसमें 3 थानों में 268 लोग नामजद और 2,500 अज्ञात पर FIR हुई थी, जबकि 56 लोग पकड़े गए थे। यहां तक कि बिहार पुलिस ने अखबार में प्रदर्शन करने वालों की फोटो तक छापकर कहा था कि इनके बारे में बताएं। तो क्या जेन जी प्रदर्शन का असर पड़ा? दूसरी वजह पर जब चर्चा होती है तो भरत तिवारी फर्जी एनकाउंटर आता है। जून महीने की वो घटना जिसने बिहार ही नहीं बल्कि देश भर के अलग अलग हिस्सों में बहुत सवाल उठाया। जब हक और हित की बात करते युवा भरत तिवारी को आरोप लगा कि बिहार पुलिस ने फर्जी एनकाउंटर में मार दिया। भोजपुर के भरत तिवारी एनकाउंटर में सवर्णों के गुस्से को कहा जाता है कि प्रशांत किशोर ने भी अपने हक में इस्तेमाल किया। प्रशांत किशोर खुद बिलौटी गांव गए, भरत परिवार से मिले और उस परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी ली। तीसरा सवाल यह है कि क्या UGC रेगुलेशन के विरोध में सवर्ण जाति का गुस्सा भी बांकीपुर के नतीजों को प्रभावित किया है उसने? जहां बीजेपी के कोर वोटर्स माने जाने वाले सवर्ण समाज के युवा सड़क पर उतरे, लगातार प्रदर्शन किया, हालांकि सरकार इस पर तुरंत बैकफुट पर आई, आदेश वापस हुआ, लेकिन फिर भी इसका गुस्सा कहा गया कि सवर्ण समाज में कायम रहा। तो क्या इस वजह से बीजेपी का कोर वोटर खिसका और पीके की जीत हुई? चौथी वजह, बीजेपी की हार और पीके की जीत को लेकर यह पूछा जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार की प्रचार से दूरी बनी? नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद पर न रहने के बाद यह पहला चुनाव रहा। नीतीश कुमार OBC, EBC और सवर्ण को जोड़कर चलते रहे। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद पीके के निशाने पर वो लगातार रहे, क्योंकि नीतीश के नेतृत्व में चुनाव हुआ तब बीजेपी JDU ऐतिहासिक रूप से जीती, लेकिन नीतीश अभी स्वास्थ्य की वजह से फील्ड से दूर हैं। तब क्या इसका असर भी वोटर पर पड़ा, जहां लास्ट में उनसे वोट देने की अपील कराई गई? पांचवी वजह पर चर्चा यह आती है कि क्या उम्मीदवार को बदलने के कारण संशय पैदा हुआ? पीके भारी पड़े, जहां पहले अभिषेक मंटी को मौका दिया गया, लेकिन फिर दावा है कि उनके परिवार के चारा घोटाले के आरोप से जुड़े होने की वजह से अभिषेक को हटाकर नीरज कुमार को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया। हम आपको सीधे पटना लिए चलते हैं, हमारे संवाददाता रोहित सिंह वहां से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और रोहित, आकलन बहुत होगा इसका, हालांकि प्रशांत किशोर को हम देखें तो केवल बांकीपुर सीट नहीं, हमें यह देखना होगा कि विधानसभा चुनाव थे उससे पहले उनकी वो पूरी लंबी पदयात्रा, उस समय उनका ये निर्णय लेना कि मैं नहीं कंटेस्ट करूंगा चुनाव, और उसके बाद ऐसा लगा कि उनकी पार्टी का ग्राफ नीचे चला जाता रहा, लेकिन आज एक ऐसी जीत जिसमें शुरुआत से वो लीड किए, जिसका सीधा मतलब हर एक बूथ पर पीके को पसंद करने वाला ज्यादा बड़ी संख्या में रहा, क्या ये बिहार की बदली हुई सियासत का संकेत है या केवल एक सीट की जीत?
1: नहीं श्वेता, तो देखिए जो मुझे समझ में आ रहा है इस नतीजों के बाद कि प्रशांत किशोर ने उन सभी फैक्टर्स को अपने पक्ष में कर लिया, जो तमाम फैक्टर्स पिछले 2-3 महीनों में बीजेपी के खिलाफ काम कर रहे थे, चाहे जो आपने भी जिक्र किया नीट छात्रा की हत्या का मामला हो, या फिर भोजपुर में भरत तिवारी के एनकाउंटर का मामला हो, और या फिर छात्रों का जो अभी प्रदर्शन चला था। और ये छात्रों का प्रदर्शन कब हुआ है? वोटिंग से ठीक एक सप्ताह पहले, यानी 22 जुलाई और 25 जुलाई को इतना बड़ा आंदोलन हुआ, और किस तरीके से यहाँ पर दिल्ली के बाद सब घटना घटी सबने देखा है, और वोटिंग फिर 30 जुलाई को होती है। तो जाहिर सी बात है बहुत सारे फैक्टर जिसको लेकर जो लोकल मतदाता वहाँ के बीजेपी से नाराज होंगे, उस पर जो है कहीं ना कहीं उसका फायदा प्रशांत किशोर को मिला है, क्योंकि देखिए प्रशांत किशोर का अपना कोई वोट बैंक बांकीपुर में नहीं है, वहां पर हमेशा से बीजेपी का परंपरागत वोट रहा है या फिर महागठबंधन का वोट बैंक रहा है। प्रशांत किशोर कभी बांकीपुर में न चुनाव उन्होंने लड़ा, न उनका ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ नहीं है। तो उन्होंने उस सेंटिमेंट पर जो है, उन्होंने जो कहें तो उस फसल बोई है या फसल काटना शुरू किया है, क्योंकि वो सेंटिमेंट जो एक बीजेपी के खिलाफ जो वहां पे बन रहा था 2-3 महीनों में, उसका उन्होंने फायदा उठाया है, जो चुनावी नतीजों के रूप में दिख रहा है। तो मुझे लगता है यही दरअसल मुख्य कारण है। और बाकी जो कारण आपने गिनाए, नया चेहरा, एक कमजोर चेहरा प्रशांत किशोर के मुकाबले नीरज सिन्हा, वो भी एक बड़ा फैक्टर जो है, क्योंकि चेहरा जब मजबूत नहीं होगा तो लोगों को भी लगा कि भाई कैंडिडेट कमजोर है। फिर वो कुत्ता बिल्ली वाला जो बयान था उसका भी जिक्र करने लगे कि भाई कोई कुत्ता बिल्ली भी
0: जीत जाएगा वहां से। लेकिन जो नतीजा निकला, ये इसका आकलन बीजेपी को भी करना होगा और आरजेडी को भी शायद। बहुत शुक्रिया रोहित इस पूरी जानकारी के लिए, क्योंकि एक सीट की जीत भले ये हो, लेकिन एक तरीके से कहा जाए तो ये बिहार में विपक्ष के लिए भी एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है। 4 नवंबर 2025 को बिहार चुनाव के नतीजे आए थे। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने 238 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। जीतना दूर, 236 सीट पर पीके की पार्टी की जमानत जब्त हो गई थी। उससे पहले खुद 2025 के विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनकर न उतरने पर भी प्रशांत किशोर पर सबने सवाल उठाया। लेकिन 25 से पहले 4 उपचुनाव और 2025 में 238 यानी कुल 242 सीटों पर चुनाव लड़ने के बाद प्रशांत किशोर की पार्टी का बिहार विधानसभा में खाता पीके ने खुद लड़कर और जीतकर ही खोला। जहां बहुत से लोग कहने लगे थे कि पीके की पॉलिटिक्स बिहार में नहीं चलेगी, वहां बीजेपी अध्यक्ष की सीट पर जीत हासिल करके प्रशांत किशोर ने बिहार की राजनीति में इस बात को तो स्थापित कर दिया कि उनकी सियासत के बस्ते में अभी बहुत और किताबें बाकी हैं।
2: बिहार को जीतने के लिए, बदलने के लिए 3-4 लोग ही तो चाहिए भाई, 3-4 लोग ही चाहिए।
3: पर 150 सीट के लिए एक वेव
2: बस चाहिए। बस तीन लोग चाहिए। 10 में 3-4 लोग अगर मान गए 40% वोट होता है, त्रिकोणीय लड़ाई में 150 से ज्यादा सीट आ जाएगा।
4: 150 सीट जीतने का सपना पिछले साल चुनाव में देखते प्रशांत किशोर के 238 उम्मीदवारों में 236 की जमानत जब्त हुई थी। 3.5% से भी कम वोट मिला, कोई उम्मीदवार जीता नहीं। 2025 के चुनाव में अपना हर दावा मिट्टी में मिलता देख प्रेस कॉन्फ्रेंस तब करने आए प्रशांत किशोर, जो खुद की पार्टी जन सुराज को बिहार की तीसरी राजनीतिक शक्ति बताते थे, वो अचानक सवालों को सुनकर थोड़ा नाराज हुए थे।
5: मुझे बिहार की समझ कम है या नहीं है ये कह देने मात्र से अगर आप बहुत खुश हो जा रहे हैं तो आप खुश हो जाइए, हमको बिहार की समझ नहीं है।
4: जो प्रशांत किशोर 2025 के 238 सीटों पर अपनी पार्टी के नतीजों के बाद चुभते सवालों पर तीखे जवाब देते रहे।
5: आप लोग जो बात कर रहे हैं वो इस अंदाज में बात कर रहे हैं जैसे प्रशांत किशोर ने कोई गुनाह कर दिया, बिहार को सुधारने का प्रयास करके कोई गुनाह कर दिया है और आप लोग आए हैं हमारा यहाँ पर पोस्टमार्टम करने।
4: बिहार में बीजेपी और जेडीयू की ऐतिहासिक जीत नवंबर में होने से पहले जो प्रशांत किशोर नीतीश कुमार की पार्टी की सीट 25 से ज्यादा ना आने की भविष्यवाणी करते थे, वो सवाल पर कुछ यूं जवाब देते थे।
5: आपने सवाल किया है, जायज बात है। आपने कहा था कि 25 से ज्यादा आएगा तो आप संन्यास ले लेंगे। तो भैया किस पद पर हैं जिससे मैं इस्तीफा दे दूं? अगर किसी पद पर हैं, ये तो नहीं कहा था कि बिहार छोड़कर चले जाएंगे, बिहार में रहेंगे और राजनीति नहीं। बिल्कुल अरे भाई बिल्कुल, एक मिनट, बिल्कुल राजनीति छोड़ देंगे, राजनीति छोड़े हुए हैं हम, तो राजनीति करते ही नहीं हैं। लेकिन ये नहीं कहा है ना कि बिहार के लोगों की बात कहना छोड़ देंगे, ये तो नहीं कहा है।
4: प्रशांत किशोर ने जो कहा अब वही हुआ। जीरो का मतलब खत्म नहीं होता, जीरो का मतलब नई शुरुआत भी होता। जीरो सीट के बावजूद 9 महीने पहले पीके बिहार की राजनीति को छोड़कर बाहर नहीं निकले, डटे रहे। नतीजा ये, 9 महीने बाद प्रशांत किशोर ने धमाकेदार कमबैक किया, बांकीपुर सीट का उपचुनाव 19,000 से ज्यादा वोटों से जीता। ये वो कमबैक है जहां 1995 यानी करीब 30 साल से मजबूत बीजेपी का किला 30 दिन के उपचुनाव में पीके ने गिरा दिया।
2: महत्वपूर्ण बात ये है कि बिहार को अच्छा नेतृत्व मिलना चाहिए, बिहार सुधरना चाहिए और लोकसभा से पहले मोदी जी को, भाजपा को, अमित शाह जी को ये देखना चाहिए कि बिहार में कैसे बेहतरी हो, बिहार में बच्चों को रोजगार कैसे हो, पलायन कैसे बंद हो। एकमात्र यही उद्देश्य है, हम लोग को विधायक बन के ठेका पट्टा नहीं करना है। एक और एकमात्र उद्देश्य है, चाहते हैं कि बिहार में बेहतरी हो, बिहार में भी सिर्फ 5 किलो अनाज के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट न मांगा जाए। अगर 25 MP गुजरात से जीत कर गए हैं, प्रधानमंत्री बनाने में मोदी जी को गुजरात के लोगों ने योगदान किया है, तो बिहार के भी 13 करोड़ लोगों ने आंख बंद करके मोदी जी को वोट दिया है। तो जितनी चिंता उनको गुजरात की है, उतनी थोड़ी चिंता उनको बिहार की भी करनी चाहिए। बिहार के जो 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चे बाहर मजदूरी कर रहे हैं, उनकी चिंता होनी चाहिए। बिहार के लिए कोई एक स्पेशल प्रोग्राम बनाना चाहिए ताकि बिहार से पलायन बंद हो। कोई भी बच्चा यहाँ से 10-15 हज़ार रुपये के लिए अपने घर परिवार समाज को छोड़कर उसको गुजरात, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता, कोयम्बटूर, तमिलनाडु, कर्नाटक न जाना पड़े। इसी उद्देश्य को लेकर हम लोग यहाँ आए हैं और आज की जीत उसी बात को फिर से मजबूत करने के लिए है कि NDA को, भाजपा को लोगों ने जिताया है। अब भाजपा के नेतृत्व की ये जिम्मेवारी है कि किसी ऐसे व्यक्ति को बिहार का मुख्यमंत्री बनाए जो कि बिहार में रोजगार लाए, बिहार में शिक्षा की स्थिति को सुधारे, भ्रष्टाचार कम हो और सबसे बढ़कर पलायन बंद हो। ये सीधा सीधा मैसेज है। 30 बरस का जो गढ़ है वो सिर्फ 30 दिनों में ढह गया। वो सिर्फ इसलिए ढहा है कि बिहार के लोग भी चाहते हैं कि अब 4 किलो 5 किलो अनाज और जाति से ऊपर उठकर हम लोग के बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार काम करे। अगर वो काम नहीं करेंगे तो आगे चुनाव के परिणाम उनको ऐसे ही देखने को मिलेंगे।
4: 9 महीने पहले मिली हार और 9 महीने बाद मिली एक जीत से बहुत कुछ साबित कर देने वाली इस राजनीति में सबक ये है कि लड़ना है तो जमीन पर रहना होगा। जहां प्रशांत किशोर ने BJP की कमजोर नब्ज को दबाया, जैसे ही नितिन नवीन की मजबूत सीट पर उम्मीदवार BJP ने एक बार घोषित करके बदला और ये दिखाना चाहा कि वो तो कार्यकर्ता को उतार रहे हैं, तब वहां लाइट वेट कैंडिडेट के सामने हैवी वेट प्रत्याशी बनकर सीधे उतरकर ऐसा नैरेटिव PK ने फैलाया जिसके बाद जनता भी विकल्प देखती पाई गई।
2: आपने 30 वर्ष भाजपा को इतनी बार जिता दिया कि भाजपा को इतना अहंकार हो गया है, कहता है बाकी पुरहारिए नहीं सकते हैं। किसी ने पूछा, अरे भाई इस बार तो बड़ी लड़ाई है, प्रशांत किशोर खड़े हैं। भाजपा के नेताओं ने कहा, बांकीपुर में कोई डर नहीं, बांकीपुर इतना मजबूत किला है कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी लड़ाएंगे तो बांकीपुर का जनता हम ही को वोट देगा।
6: आपको, बिहार की जनता को, बांकीपुर के मतदाता को, जिन्होंने इनको वोट देकर इतना बड़ा बनाया, आपको कह रहा है कि आप इतने अंधभक्त हो गए हैं कि कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो हम लोग उसी को वोट देंगे। ये आत्मविश्वास नहीं है, ये भाजपा का अहंकार है। तो इस अहंकार को अगर आप तोड़ना चाहते हैं तो एक बार इनको हराइए ताकि इनको पता चले कि बांकीपुर की जनता कुत्ता बिल्ली को वोट देने वाली नहीं है।
4: इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने चुनाव में ये भी दिखाया कि जहां BJP की पूरी मशीनरी चुनाव लड़ने में लग जाती है, वहां वो अकेले घूम घूम कर चुनाव लड़ रहे हैं।
2: एक अदना सा आदमी प्रशांत किशोर खड़ा है और पूरा भाजपा थर थर थर थर कांप रही है। ये आपकी ताकत है मेरे भाई, आप अंदाजा लगा लीजिए। अभी आपने वोट दिया नहीं है, अभी वोट देने का चर्चा चला है, थर थर थर थर कांप रहे हैं। तो अगर वोट आपने दे दिया तो अगला चुनाव लोकसभा का है, लिख कर रखिए, भाजपा का एक एक नेता आपके घर आएगा, आपसे पूछेगा, ये चचा काहे नहीं वोट दिए, काहे नाराज है। आपकी पूछ बढ़ेगी, बिहार की पूछ बढ़ेगी।
4: प्रोफेशनल से ज्यादा समर्पित कार्यकर्ताओं पर भरोसा करने के साथ प्रशांत किशोर ने बांकीपुर को चुनकर एक तीर से दो निशाने साधे। BJP की सहयोगी पार्टी होने का विपक्षी दाव खारिज करना चाहा तो दूसरा, विधानसभा चुनाव में न उतर कर जो मायूसी अपने कार्यकर्ताओं में होने दी थी उसे बांकीपुर में लड़कर दूर किया।
2: ये वोट सरकार बनाने बिगाड़ने की नहीं है, भाजपा का सरकार है, आगे रहेगा, लेकिन एक बार अगर आप इनको हरा दीजिएगा तो आपकी पूछ बढ़ेगी, जनता की पूछ बढ़ेगी, बिहार की पूछ बढ़ेगी, बिहार में एक नई राजनीति की शुरुआत हो जाएगी।
0: बिहार में BJP ने कायस्थ प्रत्याशी उतारा। प्रशांत किशोर ब्राह्मण है, RJD की रेखा गुप्ता बनिया समाज से आती हैं, यानी तीनों प्रमुख प्रत्याशी उसी समाज जाति से, जो BJP का कोर वोटर माना जाता है उसी उन्हीं जातियों से जुड़े रहे। इस चुनाव में RJD का यादव और मुस्लिम वोट तो टूटकर PK के पास गया ही, साथ ही BJP का भी मुख्य वोटर टूटकर प्रशांत किशोर के पास गया। आंकड़ों में देखें तो बांकीपुर में 14% कायस्थ, 12% मुस्लिम, 9% चंद्रवंशी जो ईबीसी हैं, 9% बनिया, 9% एससी, 8% भूमिहार, 8% ब्राह्मण, 7% राजपूत, 5% कुर्मी और 3% कुशवाहा वर्ग के वोटर हैं। यानी इस वोट वर्ग को देखें तो बीजेपी के लिए हमेशा ये सीट मुफीद रही, लेकिन इस बार सवर्ण वर्ग का वोट ही ऐसा बटा कि जहां 60% तक वोट बीजेपी हासिल करती रही वो घटकर 34% पर आ गया। और जो प्रशांत किशोर की पार्टी पिछली बार यानी 9 महीने पहले चुनाव में जमानत तक इसी बांकीपुर सीट पर नहीं बचा पाई थी, वो इस बार 49% ज्यादा वोट हासिल की। इसीलिए बीजेपी नेता भी कहते हैं कि जरूरी है इस नतीजे की समीक्षा हो। विपक्ष को बीजेपी की हार में अपनी जीत दिखने लगी, लेकिन आरजेडी को अब भी लगता है कि पीके की जीत के पीछे खेल कुछ और है।
7: आप संकेत है कि बांकीपुर में बांका चल गया और भारतीय जनता पार्टी का जो मतदाता वर्ग है, नौजवान खासतौर से, उसका बुरी तरीके से मोह भंग हो चुका है प्रधानमंत्री जी से, मोदी जी की पूरी सरकार से। और ये नतीजा कहीं ना कहीं ये संकेत देता है, जैसे एक बार जनमोर्चा के प्रत्याशी के तौर पे बीपी सिंह जी ने उस समय प्रयागराज से जीत हासिल की थी, वैसी ही बड़ी जीत के रूप में, क्योंकि 35 साल से बीजेपी कभी हारी नहीं वहां पे,
8: 52,000 से जीती थी,
7: 35 साल से कभी हारी नहीं। तो जब 415 सीट थी कांग्रेस पार्टी की, उस वक्त बीपी सिंह जी बाय इलेक्शन जीते थे और उसके बाद पूरे देश में एक मैसेज गया था। तो ये जो खासतौर से बांकीपुर की सीट का जो परिणाम आया है, निश्चित रूप से ये इस बात का संकेत है कि नौजवान का बुरी तरीके से मोह भंग हुआ है और जेन जी ने पहला सबक मोदी जी को बांकीपुर में सिखाया है।
9: कहा जाए तो बीजेपी के कैंडिडेट की हार हुई है, लेकिन भारतीय प्रशांत किशोर जी वहां अगर जीत रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी की ही जीत हुई है। जिस तरह से वहां पे कैंडिडेट्स बदले गए, आखिर क्या कारण रहा वहां पे कैंडिडेट्स बदलने का? कहीं ना कहीं देखिए वो ये एक बीजेपी खुद अकेले मतलब जीत नहीं सकती थी शायद, इसलिए प्रशांत किशोर को उन लोगों ने आगे किया। प्रशांत किशोर ने बांकीपुर की जनता को बहुत सारे वादे किए और ऐसे ऐसे वादे किए हैं कि मैं चैनल पे आपको बता भी नहीं सकती है, जो कि असंभव है किसी भी पॉलिटिकल दल के, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो एमएलए हो, चाहे किसी भी संवैधानिक पद में, उसके लिए बड़ा मुश्किल है। क्योंकि आप देखिए बीजेपी का गढ़ कहा जा रहा है, जहां 35-40 वर्षों से विकास का कार्य नहीं हुआ है, उसको वो कैसे कहते हैं कि हम 4 साल ही बचा है, 4 साल में वो कैसे उसको बदल देंगे? आप बताइए कि जाके वहां कहते हैं गरीब बच्चों को हम पटना के अच्छे प्राइवेट स्कूल में, नोटोडेम में लड़कियां हैं तो सेंट जोसेफ कॉन्वेंट में, अगर लड़के हैं तो वो कहते हैं कि सन माइकल में एडमिशन करा देंगे, आपके बच्चों को सरकारी स्कूल में जाने की आवश्यकता नहीं है। जनता ने तो अपनी तरफ से एक संदेश देने का बिल्कुल प्रयास किया है, उनको सच्चाई पता नहीं है अभी कि प्रशांत किशोर जी ही ओरिजिनल बीजेपी के कैंडिडेट थे। तो अभी जनता को थोड़ा समय लगेगा इस बात को समझने में।
10: जो लोग ये कहते हैं कि जब वो हारता है तो कहता है कि अभी वो जीतता अगर तो कहता है कि ईवीएम जो है वो हैक कर लिया, ये लोग कर लिया गड़बड़, है ना। आज सरकार हमारी है देश में भी और वहां भी, तो आज यह साबित हो गया ना कि ईवीएम सही है। हम लोग लोकतंत्र में जनादेश का स्वागत करते हैं, जो जीता यह लोकतंत्र है, जनता की जीत है, परंतु विपक्ष इसको स्वीकार करे। विपक्ष कभी ईवीएम पर ठिठरा फूटता है।
11: बांकीपुर भी है और मध्य प्रदेश का दतिया भी है, और जिन नौजवानों को देशद्रोही आरएसएस कर रहा था उन नौजवानों का ट्रेलर है। मैं इस जीत का श्रेय नौजवानों को देता हूँ।
12: फिर पब्लिक का मैंडेट है, हम इन्हों स्वीकार करना पऊ, कला इतों नहीं, इन्हों की शुरुआत होगी। पहला कहने से इस्तीफा नहीं देंदे होंगे, असी इस्तीफा भी हो गया, फिर कहने से असी यू टर्न नहीं मारते होंगे, यू टर्न भी हो गया। तो बस आने वाले दिनों में जिड़िया चोणा हो गया उस लोग इन्हों रास्ता दिखा देंगे।
0: बिहार की तरह मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा उपचुनाव में भी बीजेपी की हार हुई। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह 6,000 वोटों से चुनाव जीत गए। इसी के साथ बीजेपी लगातार दूसरा उपचुनाव हार गई। दतिया विधानसभा उपचुनाव का नतीजा सिर्फ एक सीट का फैसला नहीं, कांग्रेस ने लगातार दूसरी बार बीजेपी को इस सीट पर हराकर यह साफ संकेत दिया कि दतिया की लड़ाई अब प्रदेश की बड़ी राजनीतिक बहस बन चुकी है। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के पोलिंग बूथ पर भी बीजेपी पीछे रही। यहां कांग्रेस को 291 और बीजेपी को 264 वोट मिले। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस की सीट कांग्रेस के पास रही, हमारे पिछली बार से 1700 वोट ज्यादा है। उन्हें जनता का फैसला मंजूर है।
13: कांग्रेस की सीट कांग्रेस के पास है, यह अलग बात है कि पिछले विधानसभा चुनाव से भी हमने 1700 वोट ज्यादा पाए हैं। चुनाव में जनतंत्र में हमारे प्रति जनता का विश्वास, बीते विधानसभा चुनाव के बाद 29 की 29 लोकसभा अगर जीती है तो आजादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। लोकसभा के बाद विधानसभा के उपचुनाव में बुधनी की बीजेपी की सीट बुधनी की वापस हमने हमारे पास रखी, बल्कि अमरवाड़ा की कांग्रेस की सीट भी बीजेपी ने जीती। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। इसी के साथ साथ तीनों राज्यसभा चुनाव, राज्यसभा की सीट आजादी के बाद वो भी भारतीय जनता पार्टी ने जीती। लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र में चुनाव इसी बात के लिए कहते हैं, हमने अपनी बात रखी, कांग्रेस ने अपनी बात रखी, जनता ने जो निर्णय किया हम उसको सिरोधारी करते हैं और उम्मीद करते हैं आने वाले चुनाव में और ताकत से लड़ेंगे और जीतेंगे।
0: बिहार के बांकीपुर उपचुनाव में जीत के बाद प्रशांत किशोर कहते हैं कि बात अनाज बांटने और जाति में बांटने की नहीं बल्कि स्कूल और शिक्षा मुद्दा बने। बिहार के स्कूलों की हालत वाकई खबरदार करने वाली है। बिहार सरकार दावा करती है कि स्कूलों में विज्ञान की शिक्षा को मजबूत करने के लिए वो कदम उठा रही है, लेकिन आज तक की टीम ने 5 शहरों में जाकर 9वीं से 12वीं के स्कूलों का रियलिटी चेक किया तो दावों से उलट तस्वीर देखी।
4: अखबारों और किताबों में छपने वाली बूझो तो जाने पहली प्रतियोगिता की तरह सबसे पहले आपसे सीधा सा सवाल है, ये क्या है? अगर आपको लग रहा है कि ये कोई साइकिल स्कूटर स्टैंड है तो आप पूरी तरह गलत साबित होते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये कोई घर है जिसके दरवाजे पर 2 बकरियां बैठी हैं तो आपका जवाब सरासर गलत है। सही जवाब है कि ये बिहार का एक स्कूल है जिसमें 9वीं से लेकर 12वीं तक की पढ़ाई होती है।
1: फिजिक्स का आपके पास लैब है अलग से?
14: नहीं नहीं नहीं,
1: यही केमिस्ट्री का अलग से कोई लैब है?
14: नहीं नहीं नहीं, लैब नहीं है।
1: बायोलॉजी का कोई लैब कमरा
14: अलग से? नहीं है, अलग से नहीं है।
4: लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं, बिहार में दरभंगा के दिलावरपुर का ये उच्च माध्यमिक विद्यालय इस बात का सबूत है कि बिहार में शिक्षा का भविष्य क्यों उज्ज्वल नहीं, क्योंकि अगर होता तो फिर 11वीं की कक्षा में पढ़ने वाले 40 बच्चों में सिर्फ 4 नहीं आते।
1: यहाँ पर साइंस स्ट्रीम में कितने छात्र एनरोल हैं 11वीं कक्षा में?
15: साइंस स्ट्रीम में सर 11th क्लास में।
1: 11th क्लास?
15: 11th क्लास में सर 40।
1: 40 बच्चे एनरोल हैं
15: जी।
1: तो कितने बच्चे जो आप भी आपके सामने बैठे हैं इसमें साइंस के
15: बच्चे हैं सर?
1: आर्ट्स के हैं
15: जी।
1: तो साइंस के बच्चे कहाँ हैं?
15: एक है केवल,
1: एक बच्चा आया है साइंस का। क्या आप साइंस के स्टूडेंट हैं यहाँ पे?
16: यस सर।
1: और आपके साथी लोग कहाँ हैं? आपको पता चला कि 40-40 बच्चे यहाँ पर एनरोल हैं साइंस में, बाकी लोग कहाँ हैं?
16: मेरे को नहीं पता सर।
1: आते नहीं हैं?
16: नहीं आते हैं।
4: सरकारी स्कूलों में टीचर और छात्र की गैर मौजूदगी नई बात नहीं है, लेकिन जब बिहार सरकार स्कूलों में विज्ञान की शिक्षा को मजबूत करने के दावे कर रही है तो फिर क्लासरूम खाली क्यों है?
1: कैसे लैब का इस्तेमाल क्या करते हैं आप वहाँ पे बता रहे हैं? आप लैब का इस्तेमाल करते हैं, कभी खोल के देखा है आप लैब में क्या क्या है? कुछ है
16: खोल के तो नहीं देखे?
1: नहीं देखे हैं आप लोग? तो पता भी नहीं है लैब में क्या है?
16: यस।
4: तो दरभंगा के स्कूल की क्लास में विज्ञान की पढ़ाई कर रहे बच्चे नहीं हैं, जो बच्चे मिले उन्हें लैब की खबर नहीं, वहीं टीचर का अता पता नहीं।
1: टीचर है फिजिक्स का?
16: फिजिक्स के नहीं है सर।
1: फिजिक्स के टीचर ही नहीं है आपके?
16: नहीं है।
1: तो फिर आप प्रैक्टिकल कैसे कर पाते हैं?
16: नहीं कर पाते,
1: नहीं कर पाते।
4: बिहार में
1: कि फिजिक्स का टीचर कभी भी आपने जब से यहाँ पर आप पढ़ रहे हैं फिजिक्स कभी भी फिजिक्स का टीचर नहीं रहा?
16: फिजिक्स के टीचर ही नहीं है।
1: टीचर ही नहीं है?
16: यस।
1: तो आपको फिजिक्स पढ़ाता कौन है?
16: मैम पढ़ाती है सर। पढ़ाते
1: हैं? कौन टीचर पढ़ाते हैं?
16: रवि रंजन सर।
1: वो क्या पढ़ाते हैं सर?
16: मैथ एंड
1: फिजिक्स पढ़ा देते हैं।
16: यस सर।
1: क्या कोई बायो का टीचर है आप लोग के यहाँ पे?
17: यस सर, बायो की टीचर है।
1: इलेवेंथ ट्वेल्थ में आपको पढ़ाती है वो?
17: यस सर।
4: बिहार की सरकार का दावा है कि वो 12वीं तक के स्कूलों को बेहतर करके मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए बेहतर माहौल देने की कोशिश कर रही है, लेकिन बिना टीचर के ये सब होगा कैसे? दुर्भाग्य देखिए 11वीं की तरह 12वीं में भी बच्चों की शिक्षा राम भरोसे, जहां 78 में 38 छात्र विज्ञान के मिले लेकिन हाजिर सिर्फ एक।
18: देखा जी, कोई फिजिक्स का टीचर है 12th में क्या?
19: नहीं है सर,
18: नहीं है।
19: नहीं,
18: कोई केमिस्ट्री का टीचर है 12th में?
19: केमिस्ट्री मैम ही पढ़ा लेती हैं, लेकिन है नहीं,
18: है नहीं। मतलब कोई जो स्पेशलाइजेशन होना चाहिए? नहीं,
19: नहीं, नहीं है, नहीं, नहीं, नहीं।
18: बायो की कोई टीचर?
19: हाँ जी है,
18: दो महिलाएं
19: जी जी जी, अनीता मैम है, एक ज्योत्सना मैम है, जो बॉटनी जूलॉजी दोनों।
18: बायो की टीचर ही केमिस्ट्री पढ़ा?
19: रवि रंजन सर हैं, वो भी खाली क्लास जो बच्चे आ जाते हैं उसको पढ़ा लेते हैं सर।
4: तो बिहार में बायोलॉजी की टीचर केमिस्ट्री पढ़ा रही हैं और फिजिक्स तो पढ़ाया ही नहीं जा रहा, लेकिन शिक्षा के नाम पर इस स्कूल में हर कोने पर मजाक चलता मिला। अगर हम कहें कि ये रास्ता लैब की तरफ ले जाता तो आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन लैब के रास्ते का इस्तेमाल टीचर्स की बैठकी के लिए हो रहा है और स्मार्ट क्लास के लिए लगे टीवी पर पढ़ाई की जगह मनोरंजन चल रहा है, वहीं लैब के तो क्या ही कहने।
18: दरभंगा के स्कूल में साइंस की पढ़ाई किस तरीके से हो रही है ये हम लोगों ने देख लिया है। 11वीं और 12वीं क्लास में कितने बच्चे एनरोल्ड हैं, कितने बच्चे दरअसल क्लास करने आते हैं, शिक्षक हैं या नहीं है, ये सब हमने देखा क्या स्थिति है।
4: अब अगर ये लैब है तो ये खाली क्यों है? इस सवाल का जवाब इन अलमारियों में रखे सामान ने दिया। बताया कि प्रयोग करने वाला हर उपकरण उपलब्ध है सिवाय टीचर के, जो इन पर छात्रों को प्रयोग करना सिखाए,
18: जो किसी भी एंगल से लैब नजर नहीं आता है। ये एक टेम्पररी व्यवस्था जो है, आप देख सकते हैं एस्बेस्टस लगाकर जो है ये टेम्पररी व्यवस्था यहाँ पर की गई है, और यहाँ अंदर आप आइए तो ये कहने को जो है ये प्रयोगशाला है, लैब है, जहाँ पर आप चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो किसी चीज़ की भी हो, यहाँ पर आप प्रैक्टिकल्स जो है यहाँ होना चाहिए।
4: बिहार में कुछ कुछ करके पढ़ाई के फॉर्मूले पर पढ़ाई हो रही है, फिजिक्स केमिस्ट्री के टीचरों की पूर्ति बायोलॉजी की टीचर कर रही है।
14: और जो
18: फिजिक्स का टीचर है?
14: नहीं, फिजिक्स के नहीं है।
18: केमिस्ट्री का टीचर?
14: केमिस्ट्री के नहीं है।
18: बायो के टीचर है?
14: बायो के हैं जी।
18: तो फिर फिजिक्स केमिस्ट्री की पढ़ाई कैसे होती है?
14: जो बायोलॉजी के टीचर हैं वही अपना किसी किसी प्रकार से थोड़ा अपना कुछ कुछ कर देते हैं, उतना
18: कुछ कुछ, कुछ कुछ से तो काम नहीं चलेगा। अभी समझ रहे हैं, साइंस साइंस कुछ कुछ वाला चीज पढ़ाई तो है नहीं। आप भले आर्ट्स और कॉमर्स में कुछ कुछ कर,
14: कम हो जाता है इसके चलते।
4: बिहार में 5 कमरों वाले इस स्कूल में 1 कमरा ऑफिस है और बाकी 4 में बच्चे पढ़ते हैं, जिनमें लैब भी शामिल है। टीचर नहीं है तो छात्र नहीं, जो टीचर है उनके पास बैठने तक की जगह नहीं, बस किसी तरह स्कूल चलाकर खाना पूर्ति की जाती है। टीचर छोड़िए, दरभंगा के इस स्कूल में शिक्षा का माहौल तक छात्रों को नहीं मिल पा रहा है।
18: सरकार को लिखा है, आप लोगों ने जानकारी दी है?
14: लिखे हैं सर,
18: दिए को बताया है?
14: जी जी जी, लिखित है।
18: करते हैं आप?
14: अभी तक तो नहीं हुआ है कुछ सर।
18: कितनी बार आप लोग लिख चुके हैं डीओ को, डीएम को?
14: कई बार लिख के दिए हैं सर, कई बार लिख के दिए हैं।
18: दरभंगा के स्कूल में साइंस की पढ़ाई तो होती है, लेकिन स्कूल में ना ही फिजिक्स का कोई शिक्षक है, ना ही केमिस्ट्री का, और ना ही स्कूल में कोई ढंग की प्रयोगशाला है। सवाल केवल स्कूल की बदहाली का नहीं है, बल्कि उस भविष्य का है जो साइंस की पढ़ाई पर टिका हुआ है।
3: शिक्षकों की कमी के मामले में बिहार नंबर 1 है। बिहार सरकार इस कमी को पूरा करने के लिए 30,000 से ज्यादा टीचरों की भर्ती करने जा रही, लेकिन टीचरों की कमी की वजह से जिन हजारों लाखों छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है उनका क्या?
4: बिहार में विज्ञान की पढ़ाई किस तरह मजाक बन गई, इसका उदाहरण बिहार के बक्सर का नेहरू स्मारक उच्च विद्यालय है, जहां हमें प्रयोगशाला पर ताला लगा मिला और जो खोल कर देखा उससे समझने में देर नहीं लगी कि ये लैब वर्षों से इस्तेमाल ही नहीं हुई।
20: हम आपको दिखाएंगे, धूल पड़ा हुआ है, ये धूल है, ये धूल एक ही जगह पर नहीं पड़ा हुआ है, यहाँ पर भी धूल पड़ा हुआ है, कई चीजें आप देख सकते हैं। तो बंद होने के चलते उनका कहना है कि यहाँ पर बोर्ड के एग्जाम की कॉपी रखी गई थी, इसीलिए इसको ऐसे व्यवस्था में रखा गया है।
4: तो बक्सर के इस स्कूल में लैब की हालत किसी डरावने कमरे जैसी है, जहाँ चारों तरफ धूल।
21: अर्निया कल हम लोग आँख के बारे में देख रहे थे, उसका एक चीज है तो एक चीज गायब है, उसमें से क्या दिखेगा बच्चा, क्या समझेगा बच्चा? एक बच्चे के देखने से थोड़ी नहीं हो जाएगा, सारे बच्चों को देखना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसमें सुधार करना चाहिए खुद सरकार को, हर इंसान को आके यहाँ पे देखना चाहिए कि हाँ इस स्कूल में किस चीज़ की कमी है, क्या नहीं है और कौन कैसा है, पर ऐसा नहीं होता है।
22: और हमारे स्कूल में
21: तीन साइंस के टीचर हैं, एक 12th के और दो 9th-10th के, तो वो लोग तो आते हैं क्लास में। और लैब की समस्या है जो वो लोग हम लोग से बताते हैं कि इतना लैब छोटा है, इस वजह से तुम लोग का क्लास नहीं करा पाते हैं।
5: टीचर्स यहाँ के बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो सामग्री चाहिए बच्चों के लिए वो उपलब्ध नहीं है यहाँ पे।
4: और बक्सर के इस स्कूल में टीचर हैं तो लैब छोटी और इस वजह से बच्चे उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। अब आपके सामने मुंगेर के बैजनाथ का बालिका उच्च विद्यालय है। यहाँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की लैब के लिए अलग अलग कमरे बने, लेकिन शिक्षकों की कमी के कारण लैब बंद है। जरूरी उपकरण पॉलिथीन और बोरों में बंद है। टेबल कुर्सी पर धूल की मोटी परत जमी। सबसे बड़ी बात, स्कूल में फिजिक्स का टीचर नहीं होने से लैब में प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहा। इसका सबूत ब्लैक बोर्ड पर लिखी तारीख
6: कि यहाँ पे फिजिक्स का जो शिक्षक है वो नहीं है, तो आप लोग कैसे फिजिक्स की पढ़ाई करते हैं, लैब कैसे प्रयोग करते हैं?
22: तो अभी हम लोग लैब नहीं आ रहे, लैब में भी नहीं आ रहे, और करते हैं हम लोग पढ़ाई।
4: जब हमारी टीम वहाँ पहुँचती है तो आनन फानन में तीनों लैब खुलवाए जाते हैं और कुछ छात्राओं को लाकर बैठा दिया जाता है, लेकिन इन्हीं छात्राओं ने सच से खबरदार कर दिया।
6: फिजिक्स का लैब जो है उसमें शिक्षक नहीं है, तो क्या यहाँ पे लैब चलता है?
22: चलता बहुत कम चलता है।
6: तो लगता है आप लोगों को कुछ बेसिक जानकारी जो होनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है?
22: जी सर, होना चाहिए बेसिक यहाँ भी।
4: इस स्कूल में बायोलॉजी और केमिस्ट्री की टीचर तो हैं, लेकिन फिजिक्स की टीचर नहीं, जिसकी वजह से फिजिक्स की लैब में जरूरी सामान धूल फांकते हैं।
23: यहाँ पर सारे विषय का अलग अलग हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तीनों का लैब अलग अलग है, और सारे विषय के जो भी शिक्षक हैं, जिसमें फिजिक्स के हमारे पास शिक्षक नहीं है, लेकिन सेकेंडरी की जो हमारी शिक्षिका हैं वो संचालित कराती हैं। प्लस टू के लिए स्पेशली कोई शिक्षक अभी तक नहीं है, हमने जिला शिक्षा पदाधिकारी से मांग किया है, लेकिन चूँकि पूरे शहर में ही फिजिक्स के शिक्षकों की बहुत कमी रही है, लेकिन जो भी हैं उन्हीं से हम करवाते हैं।
4: बिहार के मुजफ्फरपुर के सरकारी स्कूल में भी विज्ञान की पढ़ाई भगवान के भरोसे मिली। यहाँ पर विज्ञान की शिक्षा को लेकर बुनियादी व्यवस्था बेहाल दिखी। मुजफ्फरपुर के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 12वीं में 240 छात्र और छात्राएं विज्ञान पढ़ते हैं, जबकि 9वीं और 10वीं में 440 छात्र और छात्राएं। स्कूल में प्लस टू साइंस के लिए फिजिक्स के दो टीचर और बायोलॉजी के एक टीचर हैं, लेकिन केमिस्ट्री का एक भी टीचर नहीं। इतना ही नहीं, मैथ्स और अंग्रेजी के भी कोई शिक्षक यहाँ पढ़ाने को नहीं। स्थिति तब और गंभीर हो जाती है जब 9वीं और 10वीं के 440 विद्यार्थियों के लिए विज्ञान का सिर्फ एक टीचर मौजूद मिलता है, जो बच्चों को पढ़ाए या फिर लैब ले जाए।
24: फिजिक्स में प्लस टू में, पहले मैं प्लस टू की बात करती हूँ, प्लस टू में दो हैं और बायो में एक है, और
25: केमिस्ट्री में
24: नहीं, केमिस्ट्री इज नील,
25: मैथ्स भी नील,
24: इंग्लिश नहीं है, प्लस टू इंग्लिश नहीं है।
25: अच्छा, और प्लस टू के नीचे यदि आठवीं नौवीं दसवीं में,
24: आठवीं तो यहाँ नहीं, नौवीं दसवीं चलता है, तो उसमें एक है, ओनली वन।
4: मुजफ्फरपुर के इस स्कूल में भी विज्ञान की प्रयोगशाला के उपकरण धूल फांकते देखते हैं। लैब खुलती है लेकिन छात्र इसमें प्रयोग नहीं करते हैं।
26: लैब है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं होता है अभी।
25: प्रैक्टिकल किसी साइंस विषय में नहीं हो पाता?
26: साइंस विषय में नहीं हो पाता है। नहीं हो पाता है।
4: बिहार में बगहा की 11वीं और 12वीं के सरकारी स्कूल के हालात भी अलग नहीं है। 188 विज्ञान के छात्राओं का भविष्य अधर में है। एक शिक्षक के भरोसे यहाँ पढ़ाई चल रही, यहाँ भी लैब शोपीस बनकर रह गई।
27: तो अभी तक जो है सर फिजिक्स का टीचर आया नहीं है, और करीब 9th-10th मिला कर करके 800 बच्चे हैं हमारे यहाँ, और तो हाई स्कूल यूनिट में भी साइंस टीचर नहीं है, मुझे ही पढ़ाना पड़ता है, और प्लस टू में जो केमिस्ट्री 11वीं 12वीं है, तो अकेले मैं कितना क्या कर पाऊँगा, लैब वर्क भी ठीक से नहीं हो पा रहा है।
4: बिहार की हमारी इस पड़ताल में हमें ज्यादातर स्कूलों में लैब बंद मिली, इसकी वजह शिक्षकों की कमी रही। इस मामले में बिहार देश में सबसे आगे है। इस समस्या के खात्मे के लिए राज्य में 30,000 टीचर्स की भर्ती करने की बात सरकार करती है। सबसे ज्यादा भर्ती 11वीं और 12वीं के लिए होगी, तब तक बिहार के इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को बिना टीचर ही काम चलाना होगा, और आप सोचिए तब इनके भविष्य का क्या होगा।
3: 6 अगस्त को मुंबई में असिस्ट सर संघ चालक मोहन भागवत जेन जी से संवाद करेंगे। 100 शहरों के 15 से 19 साल के 2000 से ज्यादा छात्रों को इस यूथ कॉन्फ्रेंस में बुलाया गया है। इससे पहले आरएसएस के सर सहकार्यवाह अतुल लेमिया ने जंतर मंतर के प्रदर्शन को सिर्फ राजनीति के नजरिए से न देखने की बात कही थी।

0: जंतर मंतर पर जेंजी के जिस आंदोलन ने सरकार को खबरदार किया, जिस आंदोलन की वजह से सड़क से संसद पर सरकार को घेरने की कोशिश अब भी हो रही है, जिसकी वजह से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा, उसे लेकर आरएसएस की तरफ से जो बयान आया है, उससे इस मुद्दे पर नए सिरे से सियासी टकराव होना तय माना जा रहा है।
1: हे आंदोलन अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधानाच्या विरोधातला एक हत्यार म्हणून उपयोग केलेला आंदोलन आहे।
0: यातुल लिमे आरएसएस के सर सह कार्यवाह पद के हिसाब से आरएसएस में तीसरे बड़े पद पर बैठे नेता। इतने बड़े पद पर बैठे आरएसएस के नेता अगर दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए आंदोलन देश विरोधी और संविधान विरोधी कहेंगे तो विवाद तय है।
1: हे आंदोलन अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधानाच्या विरोधातला एक हत्यार म्हणून उपयोग केलेला आंदोलन आहे, या अर्थाने बघा। अगेन्स्ट द नेशन, भारत विरोधातलं एक आंदोलन, या अर्थाने उभं केलेलं आंदोलन आहे, या अर्थाने या शक्तीकडे आपण नीटपणे बघितलं पाहिजे।
0: महाराष्ट्र के संभाजीनगर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आरएसएस के सर सह कार्यवाह ने ये बातें कही और हिदायत दी कि इसे सिर्फ राजनीति के चश्मे से ना देखा जाए।
1: कि विकसित देश बनायचा असेल तर या युवा शक्तीचं एक मोठं योगदान आपल्याला पाहिजे, पण ही युवा शक्ती कशी पाहिजे, कुठले संस्कार पाहिजे, कुठली स्वप्न पाहिजे, कुठली गीतं पाहिजे त्यांच्या ओठी, हे मात्र नीट काळजीपूर्वक आपण ठरवलं पाहिजे। आणि त्याच्यासाठी जे काही आपल्याला म्हणजे हे आंदोलन फक्त पॉलिटिकल या दृष्टीने बघू नका, केवळ अँटी बीजेपी या अँगलनी हे बघू नका।
0: छात्रों के आंदोलन को लेकर विपक्ष पहले ही सरकार पर हमलावर, लेकिन आरएसएस की तरफ से आए इस ताजा बयान विपक्ष को हमले का नया मौका दे दिया।
2: छात्रों को एंटी नेशनल कहते हुए शर्म नहीं आती? बच्चों को, नौजवानों को, इस देश के भविष्य को एंटी नेशनल बता रहे हैं, इनको शर्म नहीं आ रही है?
3: देश के बच्चे देश की सरकार के खिलाफ देश की राजधानी की सड़कों पर प्रोटेस्ट नहीं करेंगे तो कहां नागपुर में जाकर करेंगे, यहीं ना करेंगे? ये क्या बदतमीजी है आरएसएस की? संघ वालों को कहो थोड़े दिन चुप रहे, उसी में उनका फायदा है। सरकार आने दो, हमारी बता देंगे इनको।
0: आरएसएस की तरह ही बीजेपी के पूर्व सांसद जो अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में रहे हैं, रमेश विधूड़ी, इन्होंने भी अब जेंजी के आंदोलन को लेकर नया विवादित बयान दिया है।
4: थोड़ी देर के लिए एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप रहिए खबरदार।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
6: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
7: लेस इंटरप्शन, मोर लिसनिंग विथ ट्यून इन प्रीमियम। गेट लेस एड्स ऑन ऑल म्यूजिक, न्यूज एंड स्पोर्ट्स सो यू कैन गेट बैक टू व्हाट रियली मैटर्स। लिसन टू ऑल योर फेवरेट स्टेशंस ऑन ओवर 200 डिवाइसेस so you never miss a second of airtime. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more with Premium Upgrade to TuneIn Premium and start listening now.

0: finding myself. That's my moment of Sarah.
1: आगे आगे
2: उधर
1: उधर करेक्ट करेक्ट
3: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: Where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst. Meets the cool UI UX designer. Meets the gifted content writer. Meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
3: लास्ट टाइम कश्मीर गई थी ना, वहाँ खाया शहद, पर उसके लिए कश्मीर जाना पड़ेगा। अरे कश्मीर क्यों जाना, कश्मीर ही यहाँ आ गया।
4: सुंदर वादियों में महकती खुशबू और रंग बिरंगे फूल, इनमें से शहद निकाल कर जमा किया जाता है असली शहद, लायन कश्मीर हनी।
3: असली शहद, असली स्वाद।
5: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
6: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
7: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा, रुंगटा स्टील TMT से बना।
8: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं, रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
9: टैंकर ने घुसकर मारी अलमारी को टक्कर।
10: आश्चर्य जनक, एक खरोच भी नहीं आई अलमारी पे। कैसे कदम?
9: क्रॉसबॉन सुपर स्ट्रॉन्ग।
10: सुपर स्ट्रॉन्ग
9: और मॉइस्चर प्रूफ।
10: वारंटी
9: 15 साल की।
10: कदम
9: सर प्लीज
10: ऑर्डर करो और मेरे घर भिजवाओ। वार्डरोब्स क्रॉसबॉन से ही बनेंगे।
11: क्रॉसबॉन HDMR Max फर्नीचर बने स्ट्रॉन्ग, चले वेरी वेरी लॉन्ग।
12: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
13: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
14: कुछ तो बात है इस तेल में।
15: आगे आगे,
16: करेक्ट करेक्ट।
17: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: Where the software engineer meets the talented photographer to create the big dream, the world comes together at Sharda University.

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
1: Get into the game with your favorite teams and never miss a game. Follow your teams on TuneIn and get live updates. Just select teams you want to follow on TuneIn and you'll get notifications like when the games start. Enjoy all the recommended stations, sports talk, and podcasts. Just favorite your teams and start listening.
2: मिल गया।
3: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: Finding myself. That's my moment of Sarah.
1: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
2: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
3: कुछ तो बात है इस तेल में।

शादी ब्याह का मौसम हो, त्योहारों की खरीदारी हो या फिर निवेश की योजना, सोना हमेशा भारतीयों की पहली पसंद रहा है। लेकिन जब कीमतें लगातार ऊपर नीचे होने लगे तो सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि खरीदारी की जाए या इंतजार किया जाए। दिलचस्प बात है कि इस वक्त सोने को लेकर दो बिल्कुल अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक तरफ वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल यानी WGC ने कीमतों पर दबाव बने रहने की आशंका जताई है, तो दूसरी तरफ एक बड़े विदेशी निवेश एक्सपर्ट ने सोने में ऐतिहासिक तेजी का अनुमान लगाया है। मजबूत डॉलर और ऊंचे बॉन्ड यील्ड्स फिलहाल सोने पर दबाव बनाए हुए हैं। WGC के मुताबिक अमेरिकी 10 वर्षीय TIPS यील्ड 2.44% तक पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। ये ऊंचे यील्ड्स आमतौर पर सोने जैसे गैर ब्याज वाले एसेट्स पर दबाव बढ़ाते हैं। ऐसे में अमेरिकी महंगाई और फेडरल रिजर्व के अगले संकेतों पर बाजार की नजर टिकी है। वहीं टेक्निकल एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर दबाव बढ़ा तो घरेलू बाजार में सोने का भाव 1,18,800 से 1,19,750 रुपए प्रति 10 ग्राम तक फिसल सकता है। लेकिन कहानी का दूसरा पक्ष बिल्कुल अलग है। टोरंटो के अनुभवी निवेश बैंकर जॉन इंग का मानना है कि आने वाले वर्षों में सोना $6,000 प्रति औंस तक पहुंच सकता है, जो मौजूदा स्तरों से काफी ऊपर होगा। इसकी वजह अमेरिका का बढ़ता कर्ज है, जो $39 ट्रिलियन तक पहुंच चुका है। इसके चलते सालाना ब्याज भुगतान करीब $1 ट्रिलियन के आसपास हो गया है और वैश्विक विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर की हिस्सेदारी 71% से घटकर 54% रह गई है। जॉन इंग का मानना है कि बढ़ता कर्ज और डॉलर पर घटती निर्भरता निवेशकों को सोने की तरफ आकर्षित कर सकती है। इसी बीच दुनिया भर के केंद्रीय बैंक भी लगातार सोना खरीद रहे हैं। डेटा के मुताबिक पहली तिमाही में केंद्रीय बैंकों ने 244 टन सोना खरीदा। इसमें चीन का बड़ा रोल है, जो लगातार अपने गोल्ड रिजर्व में बढ़ोतरी कर रहा है। वहीं पोलैंड ने भी इस साल बड़ी मात्रा में सोना अपने रिजर्व में जोड़ा है। कई देश अपने स्वर्ण भंडार को विदेशी वॉल्ट से वापस अपने देश लाने की रणनीति पर भी काम कर रहे हैं। इससे सोने की रणनीतिक अहमियत और बढ़ी है। यानी फिलहाल सोने की दिशा दो अलग ताकतों के बीच फंसी हुई है। एक तरफ मजबूत डॉलर और ऊंचे बॉन्ड यील्ड्स हैं, जो कीमतों पर दबाव डाल रहे हैं। दूसरी तरफ केंद्रीय बैंकों की खरीदारी और वैश्विक अनिश्चितता है, जो सोने को सहारा दे रही है। ऐसे में आने वाले महीनों में अमेरिकी आर्थिक आंकड़े ही तय करेंगे कि सोना नई ऊंचाई छुएगा या पहले कुछ और नीचे आएगा। आदित्य राणा, आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: खबरदार में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। आगे देखिए ब्लैक एंड व्हाइट अंजना के साथ और हरदम रहिए खबरदार।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के उस मजबूत गढ़ के बारे में बताएंगे जो 31 साल बाद ढह गया। हम बात कर रहे हैं बिहार की बांकीपुर सीट की, जहां पीके यानी प्रशांत किशोर के आगे सब फीके नजर आए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद इस सीट पर उपचुनाव हुआ और इस बार यहां बीजेपी के सारे समीकरण धरे के धरे रह गए। एक साल पहले जिस बांकीपुर सीट पर प्रशांत किशोर की पार्टी की जमानत तक जब्त हो गई थी, वहीं पीके ने बीजेपी को करीब 20,000 वोटों से हरा दिया। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बांकीपुर में बीजेपी के आगे सब फीके। तो इसका विस्तृत विश्लेषण आज आपको दिखाएंगे कि आखिर क्या वजह रही कि प्रशांत किशोर यहां पर बाजी मार गए। इधर पेपर लीक के मुद्दे पर दिल्ली के जंतर मंतर से उठी चिंगारी अब झारखंड की राजधानी रांची तक पहुंच चुकी है। हजारों जेंजी युवा सड़कों पर है। मुद्दा सिर्फ एक परीक्षा का नहीं बल्कि लाखों युवाओं के भविष्य और उस भरोसे का है जो पेपर लीक और धांधली के इन आरोपों के तले हर दिन टूट रहा है। आज सवाल ये भी है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर जो भी नेता, राजनीतिक दल, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और बहुत सारे सेलिब्रिटी युवाओं के हक के लिए जोर शोर से आवाज उठा रहे थे, आज झारखंड के इस आंदोलन पर कई जगहों से बहुत सन्नाटा है। लेकिन आज ब्लैक एंड व्हाइट में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे झारखंड और जंतर मंतर में एक अंतर दिख रहा है और यहां पर बच्चे कैसे अपने इस आंदोलन को बहुत तेजी के साथ, बहुत संजीदगी के साथ और लगातार निरंतर आगे ले जा रहे हैं। इसके बाद आपको बताएंगे कि कैसे बाढ़ और भूस्खलन की वजह से देश के कई इलाके मुसीबत में हैं। जम्मू कश्मीर हो, केरल, असम, यहां पर बारिश, बाढ़ और भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई है। 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, हजारों बेघर हो चुके हैं, लाखों लोग पानी की वजह से घरों में कैद हैं। तो आज असम से लेकर केरल तक हर जगह की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे और दिखाएंगे कितनी बड़ी ये मुश्किल इस बार सामने खड़ी है। और आखिर में आपको ग्लासगो में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में बताएंगे, जहां भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 39 मेडल अपने नाम किए। और सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि भारत अब 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने जा रहा है, जिसकी आधिकारिक घोषणा हो चुकी है। लेकिन आज सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि प्रशांत किशोर ने बीजेपी को बांकीपुर की उस सीट पर कैसे हरा दिया, जहां बीजेपी लगातार 9 चुनावों से जीत रही थी। साल 1995 से लेकर 2025 तक बांकीपुर में बीजेपी ने 9 चुनाव और उपचुनाव सब के सब जीते। इनमें 5 चुनाव अकेले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने जीते। न सिर्फ जीते बल्कि ये सीट बिहार में बीजेपी के लिए सबसे सुरक्षित सीट बन गई। साल 1995 के बाद एक बार भी ऐसा नहीं हुआ जब बीजेपी को इस सीट पर 50% से कम वोट मिले हों। 50% से कम, ये आंकड़े बताते हैं कि पिछले 5 चुनाव में बीजेपी को इस सीट पर 60% से ज्यादा वोट मिले और हर बार वो बांकीपुर की सीट कम से कम 30-60% वोटों के अंतर से जीती है। आपके सामने हमने इसीलिए सारे नंबर्स रख दिए। 1995 में देखिए लगभग 40.68% वोट, फिर साल 2000 आते आते 54.93, फिर 2005 की फरवरी में देखिए 59% के आसपास, 2005 में देखिए अक्टूबर का महीना 69%, 2006-2010, लेकिन ये 15, 20 और 25 आप देखिए लगातार कंसिस्टेंटली 60 और 60% से ऊपर है। ये सीट पर दूसरी पार्टियों को वोट नहीं मिलते थे, उतने वोटों से बीजेपी इस सीट पर हर बार चुनाव जीता करती थी। लेकिन इस बार के उपचुनाव में ऐसा उलटफेर हुआ कि आज हर कोई ये पूछ रहा है कि प्रशांत किशोर ने पिछले 30 दिनों में आखिर ऐसा क्या कर दिया कि उन्होंने बांकीपुर में बीजेपी का 30 साल पुराना सबसे सुरक्षित किला ढा दिया। सिर्फ एक साल पहले 2025 में जब बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए थे, तब बांकीपुर में बीजेपी को 62.6%, जो आप देख रहे हैं 62.6% वोट मिले थे। और हैरानी की बात यह है कि उस चुनाव में प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी भी लड़ी थी और इस सीट पर जनसुराज पार्टी की जमानत जब्त हो गई थी। 7,000 वोट हासिल हुए थे पूरे। अब चुनावी इतिहास में ऐसे बहुत कम उदाहरण मिलते हैं जब किसी पार्टी ने एक साल के अंदर इतना बड़ा कमबैक कर लिया। लेकिन इन उपचुनावों में सारी कहानियां, सारे विश्लेषण और सारे अनुमान धरे के धरे रह गए। जिस सीट पर प्रशांत किशोर की पार्टी पिछले साल जमानत भी नहीं बचा पाई थी,
वहां इस बार उपचुनाव में प्रशांत किशोर लगभग 20,000 वोटों से जीते हैं और उन्हें कुल 49.2% जो है वो वोट मिले, जबकि बीजेपी 34 यानी लगभग जो 50-60 वो लाती थी उसके आधे के से थोड़े ज्यादा पर यानी 34.4% वोट बीजेपी को मिले। इसका मतलब ये हुआ कि प्रशांत किशोर और बीजेपी के वोटों में 15% का अंतर रहा, और 15% का अंतर कोई छोटा मोटा अंतर नहीं होता, वो भी ऐसी सीट पर जहां बीजेपी लगातार जीतती थी। उनका गढ़ माना जाता है जहां की जातिगत समीकरण बीजेपी के पक्ष में माना जाता था। बांकीपुर में बीजेपी ने नीरज सिन्हा को उम्मीदवार बनाया जो कायस्थ समुदाय से आते हैं। पूर्व विधायक और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन भी इसी कायस्थ समुदाय से आते हैं, जिनकी बांकीपुर सीट पर जानते हैं आबादी सिर्फ कायस्थ वोट कितना है 14%। प्रशांत किशोर ब्राह्मण समुदाय से, जिनकी आबादी इस सीट पर लगभग 7% है। हमने इसीलिए आपके सामने पूरा ब्रेकअप निकाला है। आरजेडी ने रेखा कुमारी को चुनाव लड़ाया जो वैश्य समुदाय से आती है, और वैश्य भी आप देख रहे हैं कि लगभग 9% है। बांकीपुर में 9% आबादी वैश्य समुदाय के लोगों की है, 9% ही आबादी मुस्लिम समुदाय के लोगों की है। अब बीजेपी के लिए माना जाता था कि उसे बांकीपुर में कायस्थ वोट भी मिलते थे, ब्राह्मण वोट भी मिलते थे, भूमिहारों के वोट भी मिलते थे और राजपूत और कुर्मी समुदाय के वोट भी मिलते थे। तो ये पूरा नंबर जो है, और इन

वोट हासिल करने में कामयाब हो गए और उन्हें 15% यानी लगभग 20,000 वोटों के अंतर से जीत मिली और बाकीपुर में बीजेपी का किला ढह गया। देखिए।

0: ये चुनाव विधायक बनाने के लिए नहीं हुआ था। ये पहले दिन से हम लोग कह रहे थे कि बांकीपुर का चुनाव विधायक चुनने के लिए नहीं है, ये बिहार में भाजपा एनडीए की जो सरकार है उसका जो नेतृत्व है उस पर निर्णय लेने के लिए ये चुनाव हो रहा है। और बांकीपुर की जनता ने बड़ा स्पष्ट ये अपनी ओर से और बिहार के लोगों की ओर से ये मत दिया है कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और बिहार के हित में, बिहार के बच्चों के हित में, बिहार में एक अच्छे व्यक्ति को, चरित्रवान और काबिल व्यक्ति को बिहार की कमान सौंपनी चाहिए। बिहार में हर हालत में शिक्षा हो, रोजगार हो, पलायन रुके, यही संदेश मैं इस जीत में देखता हूं।
1: अब बांकीपुर में बीजेपी की यह हार सामान्य नहीं है। यह हार तब हुई है जब सिर्फ 111 दिन पहले 15 अप्रैल 2026 को सम्राट चौधरी बीजेपी की तरफ से बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने हैं और बतौर मुख्यमंत्री ये उनका पहला चुनावी टेस्ट था। यह हार तब हुई है जब ये सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने खुद खाली की थी और वो खुद बांकीपुर में मोर्चा संभाल रहे थे, यानी नितिन नवीन का भी ये पहला चुनावी टेस्ट था। इसके अलावा यह हार तब हुई है जब नीतीश कुमार अब बिहार के मुख्यमंत्री नहीं है और उन्हें राज्यसभा भेज दिया गया है और इस वजह से भी इन उपचुनाव को बीजेपी के लिए सबसे बड़ा टेस्ट माना जा रहा है। यह हार तब हुई है जब बीजेपी इस सीट पर लगातार 9 बार से जीत रही थी। साल 2015 में जब नीतीश कुमार और लालू यादव का गठबंधन हुआ तब उस दौर में भी बीजेपी ये सीट हारी नहीं थी, लेकिन इस बार प्रशांत किशोर ने सीट को बीजेपी से छीन लिया। ये भी तब हुआ जब भारत में पेपर लीक के मुद्दे पर एक बड़ा आंदोलन हुआ। इस आंदोलन के तहत दिल्ली और मुंबई के बाद सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन पटना की सड़कों पर हुए, जिनमें कई एफआईआर भी उस वक्त दर्ज हुई। ये उपचुनाव तब हुए जब भोजपुर में भरत तिवारी के एनकाउंटर के खिलाफ सवर्णों में बीजेपी के खिलाफ गुस्सा भी माना जा रहा था और ये बात प्रशांत किशोर भी समझ गए थे। वो बांकीपुर में उपचुनाव लड़ने से पहले भोजपुर के बिलौटी गांव गए थे और वहां भरत तिवारी के परिवार से मुलाकात के बाद उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी उठाने का ऐलान किया था। माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर के इस दांव ने बीजेपी के खिलाफ सवर्णों की नाराजगी को और बढ़ाया। यही गुस्सा तब और बढ़ा जब यूजीसी के नियमों के खिलाफ बिहार और पटना में विरोध प्रदर्शन जारी रहे और बीजेपी पर यह आरोप लगा कि वो अपने कोर वोटर्स का भरोसा खो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार ने इन उपचुनावों में बीजेपी के प्रचार से दूरी बनाकर रखी और उनका बांकीपुर में एक भी कार्यक्रम नहीं हुआ। प्रशांत किशोर ने इस बात को भी मुद्दा बनाया कि बीजेपी सीट को और यहां के मतदाताओं को गंभीरता से नहीं लेती, उसे लगता है कि यहां से उसका जीतना निश्चित है। इस नैरेटिव ने तब ज्यादा असर डाला जब बीजेपी ने अपने उम्मीदवार को बदला। अभिषेक कुमार सिन्हा के पिता का नाम घोटाले में होने के कारण उनका नाम वापस ले लिया गया और उनकी जगह उतारा गया चुनाव में नीरज सिन्हा को। यह मुद्दा इतना बड़ा बना कि प्रशांत किशोर अपने बनाए मुद्दों को बांकीपुर में गढ़ने में कामयाब रहे और बीजेपी ने प्रशांत किशोर के दावों का कई बार खंडन किया, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो अपनी बात लोगों तक वैसे नहीं पहुंचा पाई जैसे प्रशांत किशोर ने पहुंचाई। देखिए,
0: भाजपा किसी नेता से किसी ने पूछा कि अरे चर्चा है कि प्रशांत किशोर लड़ेंगे बांकीपुर में, आप क्या सोचते हैं? बोला कोई चिंता नहीं, बांकीपुर इतना बड़ा हम लोग का गढ़ है कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो बांकीपुर की जनता हम ही लोग को वोट देगी। अब सही है ना? देखिए, अब आपके बारे में भाजपा ही क्या सोचते हैं?

0: अपना बंधुआ मजदूर समझ रहा है कि कैमरे पर कहता है कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो बांकीपुर की जनता हमी को वोट देगी। इस अहंकार को तोड़ने के लिए एक बार हराइए, आपको अपने आप असर दिखेगा।
1: अब ये देखिए कि प्रशांत किशोर की पोल मशीनरी ने बीजेपी की पोल मशीनरी को आखिर कैसे हराया। आप खुद सोचिए, प्रशांत किशोर के सामने सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? वो जानते थे कि इन उपचुनाव में उनका मुकाबला उस बीजेपी से है जिसके पास दशकों पुराना संगठन है, हर बूथ पर कार्यकर्ता है, मजबूत जातीय समीकरण है, सरकार की ताकत है, संसाधन है और चुनाव लड़ने और चुनाव जीतने की एक सेट टेम्पलेट है। जबकि प्रशांत किशोर के पास ऐसी मशीनरी नहीं थी। उनकी जन स्वराज पार्टी केवल 2 साल पुरानी पार्टी थी, स्थापित वोट बैंक भी नहीं था, पिछली बार सारी सीटें हार गए थे, 1 सीट नहीं जीत पाए थे, सीमित संगठन था और सबसे बड़ी बात पिछले साल की करारी हार का एक बड़ा बोझ था। और ऐसे में ये मुकाबला चुनावी मशीनरी के स्तर पर बराबरी का कहीं से नहीं लग रहा था। और यहीं से प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी और अपनी रणनीति में कई बड़े बदलाव किए। सबसे पहले उन्होंने खुद चुनाव लड़ने का फैसला किया, जबकि पिछले साल उन्होंने ऐसा नहीं किया था, चुनाव ही नहीं लड़े थे। दूसरा, उन्होंने पार्टी के चुनावी ढांचे को छोटा और प्रभावी बनाया, यह तय किया कि उनकी मुख्य टीम में 100 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। इसके बाद उन्होंने हर टीम के लिए अलग अलग जिम्मेदारियां तय की, जिनमें बूथ प्रबंधन, महिलाओं तक पहुंच, जातीय संपर्क, जो डेटा और एनालिटिक्स है और सोशल मीडिया, सबको उन्होंने शामिल किया। यानी टीम में कम लोग रखे लेकिन उन्हें ऐसे काम सौंपे जो बिल्कुल स्पष्ट थे। इसके बाद जब बीजेपी और आरजेडी उपचुनाव की तैयारी कर रही थी, तब प्रशांत किशोर लगभग 2 महीने पहले ही बांकीपुर में सक्रिय हुए और यही सबसे बड़ा अंतर आया। प्रशांत किशोर और बीजेपी की पोल मशीनरी में एक और बड़ा अंतर यह था कि उन्होंने बड़ी रैलियों पर कम भरोसा किया। बड़ी रैलियां और रोड शो करने के बजाय प्रशांत किशोर ने पूरी रणनीति डोर टू डोर अभियान पर बनाई। अब देखिए, वो चुनाव प्रचार के दौरान गलियों में पैदल घूमे, चाय की दुकानों पर बैठे, अलग अलग मोहल्ले में गए और घर घर यात्रा की, बैठके की, रात तक पदयात्राएं की, छोटे छोटे समूह में लोगों से मुलाकात की और वार्ड स्तर पर वोट बैंक तैयार की। मंच पर चढ़कर नहीं बल्कि मंच से उतरकर लोगों के बीच जाकर ये चुनाव वो लड़े और उन्होंने जो मुद्दे उठाए वो बहुत अहम मुद्दे थे। उन्होंने लोगों से जाकर ये पूछा कि उनके यहाँ सड़क कब बनेगी, उनके यहाँ जल भराव क्यों होता है, ट्रैफिक की समस्या कब खत्म होगी, नौकरियां कहाँ है, शिक्षा का क्या हाल है, स्थानीय प्रशासन जवाबदेह क्यों नहीं है। ऐसे मुद्दे वो लोगों के बीच उठाते रहे और ये सारे मुद्दे उठाकर उन्होंने इस चुनाव को बांकीपुर के मुद्दों का चुनाव बनाया। और ऐसा नहीं है कि ये रणनीति पहली बार अपनाई गई, इस रणनीति को पहले भी कई चुनाव में अलग अलग नेताओं ने अपनाया है, लेकिन प्रशांत किशोर ने इन मुद्दों को एक योजना के तहत उठाया। और जानते हैं, बीजेपी को हराने के लिए उन्होंने बांकीपुर में 250 प्रोफेशनल वॉलंटियर्स को उतार दिया, जो प्रशांत किशोर को चुनाव जिताने के लिए सिर्फ काम नहीं कर रहे थे बल्कि प्रोफेशनल्स की तरह इस टास्क में पूरी तरह जुटे हुए थे। यानी जिस वक्त बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, नितिन नवीन, चिराग पासवान, रविशंकर प्रसाद, मनोज तिवारी, रवि किशन, कई केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री समेत 40 स्टार प्रचारक बीजेपी को जिताने के लिए रैलियां कर रहे थे, तब प्रशांत किशोर ने 250 लोगों की एक प्रोफेशनल टीम को मैदान में उतारा हुआ था, जो डेटा के साथ मुद्दों पर लोगों को प्रशांत किशोर से जोड़ने में जुटी हुई थी। यहां प्रशांत किशोर बांकीपुर के लोगों से एक बात बार बार कह रहे थे कि अगर लोग उन्हें चुनेंगे तो वो उन्हें शर्मिंदा नहीं करेंगे। यानी वो लोगों को ये भरोसा दिलाना चाहते थे कि अगर इन उपचुनाव में जनता ने उन्हें चुनकर विधानसभा भेजा तो वो अकेले ही सरकार के नीतिगत फैसलों पर उसे जवाबदेह बनाने के लिए काफी है और विधानसभा में विपक्ष की आवाज कमजोर नहीं होगी। पश्चिम देशों में इस सिद्धांत को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, जिससे लोग ये सोचते हैं कि सरकार पर दबाव बनाए रखने के लिए एक ऐसे नेता को चुनाव जीतकर जरूर भेजा जाए जो कम से कम अपनी आवाज उठा सके, उनकी आवाज उठा सके या इस मुद्दे को सही से पेश कर सके। जैसे भरत तिवारी एनकाउंटर, इस मुद्दे पर बिहार में बहुत विवाद हुआ लेकिन विधानसभा में यह मुद्दा इस तरह से उठा ही नहीं जैसे कई लोग सोच रहे थे, चाह रहे थे। और यहां चिंता सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं है बल्कि चिंता विपक्षी पार्टियों के लिए भी है। प्रशांत किशोर लंबे समय से कहते रहे हैं कि बिहार में काफी लोग बीजेपी को इसलिए वोट देते हैं क्योंकि वो आरजेडी को सत्ता में नहीं देखना चाहते। और प्रशांत किशोर के मुताबिक वो बांकीपुर के नतीजों से ऐसा संकेत देने में कामयाब रहे हैं कि अगर लोगों को कोई विश्वसनीय तीसरा विकल्प मिलता है तो वो बीजेपी और आरजेडी दोनों से हटकर भी वोट दे सकते हैं। और यही वजह भी है कि इस उपचुनाव में बीजेपी प्रशांत किशोर से 15% वोटों से पिछड़ी और आरजेडी की तो जमानत ही जब्त हो गई, जबकि आरजेडी बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी है। देखिए,
2: आपने जात के लिए वोट दिया, आपने धर्म के लिए वोट दिया, आपने मोदी के लिए वोट दिया, आपने लालू के लिए वोट दिया। एक बार इन सब से ऊपर उठिए। ये सरकार बनाने के लिए वोट नहीं है, किसी को हटाने के लिए वोट नहीं है। एक बार बिहार को नया रास्ता दिखाने के लिए वोट दीजिए।
3: वो सामान्य वो युवा थे जो रोज रोज हो रहे पेपर लीक से, अनएम्प्लॉयमेंट से, ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था से परेशान थे। वो किसी एक नेता के पीछे नहीं आए थे, वो अपने और अपने साथियों के लिए, बेहतर भविष्य के लिए वो आए थे वहां पर। और उसका परिणाम देखिए, अपने को दुनिया का सबसे बड़ा दल बताने वाली भाजपा 3 दिन के अंदर सारी हेकड़ी हवा हो गई।
2: पहली बार 30 वर्ष में भाजपा वाले थर थर थर थर कांप रहे हैं। 40 आदमी का टीम बनाया है, पूरी सरकार लगी है।
4: आप जब खड़े हुए हैं, भाजपा को खाली ये डर हुआ है कि कोई दूसरा विकल्प भी लोग ले सकते हैं।
5: अगर वोट आपने दे दिया तो अगला चुनाव लोकसभा का है, लिख कर रखिए। भाजपा का एक एक नेता आपके घर आएगा, आपसे पूछेगा, ए चचा काहे नहीं वोट दिए, काहे नाराज है। आपकी पूछ बढ़ेगी।
6: बांकीपुर बिहार का पहला विधानसभा बनेगा जहां अगर आपके बच्चे के पढ़ाई के लिए सरकारी स्कूल अच्छा नहीं है तो आप अपने बच्चे को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाइए। उसका खर्चा प्रशांत किशोर के जिम्मे अपने भाई अपने बेटे
7: छोड़ दिया। इतने बहुत से भाजपा हारेगी कि जीवन में कभी ये कहने का दुस्साहस नहीं कर पाएंगे कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो चुनाव जीत जाए।
1: अब तक प्रशांत किशोर से बार बार यही पूछा जाता था कि वो दूसरों को चुनाव जिता सकते हैं, लेकिन क्या खुद कोई चुनाव जीत सकते हैं? अगर आप इस ग्राफिक्स को देखेंगे तो चुनावी रणनीतिकार की भूमिका में प्रशांत किशोर ने कई राजनीतिक पार्टियों को चुनाव जिताए हैं, हालांकि कई जगह पर वो फेल भी हुए हैं। और कई लोग ये आरोप लगाते हैं कि जहां जहां जीतने की प्रोबेबिलिटी या चांस ज्यादा हो वहां पर प्रशांत किशोर पहुंच जाते हैं मदद करने। लेकिन देखिए, जब साल 2012 में नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और अपने कार्यकाल का लगातार तीसरा चुनाव लड़ रहे थे, तब प्रशांत किशोर ने ही उनके लिए चुनावी रणनीति पर काम किया था। इसके बाद साल 2014 के लोकसभा चुनाव में वो प्रधानमंत्री मोदी की टीम का हिस्सा थे और इसके बाद उन्होंने बिहार से लेकर पंजाब, पंजाब से लेकर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से लेकर दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में डीएमके को 2021 का विधानसभा चुनाव जो है उसमें वो रणनीतिकार रहे और ये लोग चुनाव जीते। और एक चुनावी रणनीतिकार के रूप में उनका करियर शानदार रहा, लेकिन जब 2024 में उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई, बिहार में तीसरा विकल्प बनने के लिए ताल ठोकी, बड़ी मेहनत की, 2 साल तक तो सिर्फ घूमते रहे अपनी पार्टी बनाने से पहले, तब पिछले साल विधानसभा चुनाव में 236 सीटों पर उनकी पार्टी की जमानत जब्त हुई। तो 236 पे तो जमानत जब्त हुई और मतलब कुल मिलाकर उनको लेकर, उनकी लीडरशिप को लेकर, उनकी पार्टी, उनकी सोच को लेकर बहुत सारे सवाल उठे। लेकिन आज प्रशांत किशोर ने अपना पहला जो चुनाव है, जब वो खुद चुनावी मैदान में उतरे तो जीत दर्ज की और कई चीजों को इसके साथ बदल दिया। अब ये नहीं कहा जा सकता कि जनसुराज पार्टी से प्रशांत किशोर का एक एक प्रयोग है। दूसरा, अगर बीजेपी का सबसे सुरक्षित गढ़ भी चुनौती में आ सकता है तो बिहार की बाकी सीटों पर मुकाबला और मुश्किल हो सकता है। तीसरा, जनसुराज पार्टी अब सिर्फ बीजेपी ही नहीं, आरजेडी और कांग्रेस के लिए भी चुनौती बन सकती है। यानी बिहार की राजनीति में तीसरे विकल्प की संभावना पहले से ज्यादा मजबूत दिख रही है। और प्रशांत किशोर ने खुद कहा है कि 30 साल का गैप सिर्फ 30 दिनों में भर गया। यानी इस बयान के जरिए उनका इशारा था कि सालों से जिस राजनीतिक जगह को खाली माना जा रहा था उसे उन्होंने बहुत कम समय में भर दिया। बांकीपुर के अलावा आज एक और सीट के उपचुनाव की चर्चा है, वो भी बीजेपी को हार वहां मिली है। ये सीट है मध्य प्रदेश की दतिया सीट, जहां कांग्रेस को जीत मिली। 2023 विधानसभा चुनाव के दौरान इस सीट पर बीजेपी के दिग्गज नेता नरोत्तम मिश्रा हार गए थे, लेकिन इस बार उपचुनाव में बीजेपी ने उन्हें टिकट ही नहीं दिया। जिस पर काफी विवाद भी हुआ था। नरोत्तम मिश्रा के समर्थक काफी नाराज थे और दतिया में बीजेपी के जिला कार्यकारिणी से सामूहिक इस्तीफे भी हुए। हालांकि बाद में नरोत्तम मिश्रा ने बीजेपी उम्मीदवार के लिए प्रचार भी किया और कहा समर्थन करेंगे, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी दतिया में उपचुनाव हार गई। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का कहना है कि इस बार पार्टी को पहले से ज्यादा वोट मिले हैं और पहले भी ये सीट कांग्रेस जीती थी, अभी भी कांग्रेस जीती है। सुनिए,
8: दतिया चुनाव कांग्रेस की सीट कांग्रेस के पास है, ये अलग बात है कि पिछले विधानसभा चुनाव से भी हमने 1700 वोट ज्यादा पाए। चुनाव में जनतंत्र में हमारे प्रति जनता का विश्वास, बीते विधानसभा चुनाव के बाद 29 की 29 लोकसभा अगर जीती है तो आजादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। लोकसभा के बाद विधानसभा के उपचुनाव में बुधनी की बीजेपी की सीट बुधनी की वापस हमने हमारे पास रखी, बल्कि अमरवाड़ा की कांग्रेस की सीट भी बीजेपी ने जीती, ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। इसी के साथ साथ तीनों राज्यसभा चुनाव, राज्यसभा की सीट आजादी के बाद वो भी भारतीय जनता पार्टी ने जीती। लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र में चुनाव इसी बात के लिए कहते हैं, हमने अपनी बात रखी, कांग्रेस ने अपनी बात रखी, जनता ने जो निर्णय किया हम उसको सिरोधारी करते हैं और उम्मीद करते हैं आने वाले चुनाव में और ताकत से लड़ेंगे और जीतेंगे।
1: तो चलिए, बांकीपुर और दतिया के अलावा एक और सीट पर उपचुनाव हुआ है जहां बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। ये सीट है गुजरात की मांझलपुर। यहां बीजेपी के सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार को 30,000 से ज्यादा वोटों के बड़े अंतर से हरा दिया है। अब अगली खबर का रुख करते हैं और बताते हैं आपको रांची का जंतर मंतर, दिखाते हैं बल्कि रांची का जंतर मंतर, जहां बड़ी संख्या में जेंजी युवा भर्ती परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। ये सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं है, ये उन लाखों युवाओं की बेचैनी की आवाज है जो मानते हैं कि अगर नौकरी की परीक्षा भी ईमानदारी से नहीं होगी तो मेहनत का मतलब क्या रह जाएगा। और हम चाहते हैं कि आज आपको इस विश्लेषण को भी ध्यान से देखना चाहिए और इन छात्रों के दर्द, इनकी पीड़ा को समझना चाहिए। लेकिन इसी के साथ आज जगह जगह पर पूरे देश में इनके संयम की भी बड़ी चर्चा है, तो हम आपको दिखाएंगे कैसे दो वजहों से आज इसकी बड़ी चर्चा है। चर्चा का पहला कारण है भर्ती परीक्षाओं में धांधली, जिसके कारण कई युवा प्रभावित हो रहे हैं और ये मुद्दा बहुत गंभीर है। लेकिन चर्चा का दूसरा कारण उन नेताओं, राजनीतिक पार्टियों, कलाकारों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर भी है जो जंतर मंतर के आंदोलन पर काफी सक्रिय थे। कुछ लोग सोशल मीडिया पर सक्रिय थे, कुछ लोग खुद भी पहुंचे थे। लेकिन झारखंड में इसी छात्र आंदोलन पर उन सब ने चुप्पी साध ली है। यहां सवाल उठता है कि ऐसा आखिर क्यों है? क्या इसलिए क्योंकि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है जिसमें विपक्ष की पार्टियां शामिल हैं, कांग्रेस और जेएमएम की सरकार चल रही है? अगर ऐसा है तो फिर सबसे बड़ा नुकसान हमारी राजनीति का नहीं बल्कि उन लाखों करोड़ों छात्रों का है जिनकी लड़ाई राजनीतिक रंग में खो जाती है और छात्रों के असली मुद्दे भी इस आधार पर तय होने लगते हैं कि वो किस पार्टी के राज्य में आंदोलन करेंगे तो उन्हें समर्थन मिलेगा। ये दुख की बात ही कही जा सकती है। बेरोजगारी, पेपर लीक, भर्ती घोटाला जैसे मुद्दों का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं और कोई विचारधारा नहीं हो सकती। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि जब जंतर मंतर पर हमने छात्रों को इतना आंदोलित देखा, लगातार उनकी खबरें चलती रही, लगातार समर्थन उनको मिलता रहा, तो ऐसे में आज इन बच्चों की क्या गलती है कि छात्रों के इस मुद्दे पर भी पार्टी वाली राजनीति हावी हो रही है, उससे कोई ऊपर उठने को तैयार नहीं है। इसीलिए हमने शुरुआत में एक शब्द का इस्तेमाल किया था, रांची का जंतर मंतर। हमने ये तुलना किसी राजनीतिक कारण से नहीं की थी, हमने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि हमें इन दोनों आंदोलनों में एक समानता दिखाई देती है। बच्चे निकले हैं, आप खुद देखिए, दिल्ली में भी जेंजी युवा अपने भविष्य के लिए लड़ रहे थे, रांची में भी जेंजी युवा अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। दिल्ली में भी सबसे बड़ा सवाल परीक्षाओं की विश्वसनीयता का था और रांची में भी सवाल वही है। देखिए आप रांची की तस्वीरें, दिल्ली में मांग थी कि छात्रों की मेहनत के साथ धोखा बंद हो और रांची में भी यही मांग है। इसीलिए असली तुलना जगह की नहीं मुद्दे की है। हालांकि रांची का आंदोलन सिर्फ इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि देश में पहले जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ था। यह आंदोलन अपनी अलग वजहों से पैदा हुआ, इसकी अपनी कहानी है, अपनी पीड़ा है और हम चाहते हैं कि पूरा देश इन छात्रों के दर्द को जाने। ये छात्र आंदोलन एक परीक्षा के नतीजे को लेकर शुरू है जो सरकारी अधिकारी बनने के लिए होनी थी। इसका आयोजन झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा किया जा रहा था। अब जेपीसीसी का ये एग्जाम इस बार आयोग ने 103 पदों के लिए प्रीलिम्स यानी प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की थी, जिसके 2 जुलाई को नतीजे घोषित हुए। इसमें 2204 उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए चुना गया, लेकिन नतीजे आते ही बड़ी संख्या में छात्रों ने आरोप लगाया कि परीक्षा में धांधली हुई और उनसे उनका हक चुरा लिया गया। इनमें भी सबसे पहली आपत्ति कट ऑफ लिस्ट को लेकर थी। हर बड़ी भर्ती परीक्षा में सामान्य, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस जैसी सभी श्रेणियों की कट ऑफ सार्वजनिक की जाती है, ताकि उम्मीदवार समझ सके कि चयन किस आधार पर हुआ। लेकिन छात्रों का आरोप है कि इस बार आयोग ने यह जानकारी जारी ही नहीं की। सोचिए, जब कट ऑफ ही नहीं होगी तो कोई जिम्मेदार कैसे, कोई भी जो जिसने दिया हो एग्जाम, कोई कैंडिडेट है, कोई उम्मीदवार है, वो कैसे जानेगा कि चयन का आधार क्या था। दूसरा विवाद मेरिट लिस्ट को लेकर सामने आया। आरोप लगाया गया कि आयोग द्वारा जारी लिस्ट पर संवैधानिक सदस्यों के हस्ताक्षर ही नहीं थे। यानी छात्रों ने सवाल उठाए कि क्या ये नतीजे प्रक्रिया के अनुसार घोषित किए गए या फिर नहीं। और सबसे बड़ा विवाद ओएमआर शीट को लेकर हुआ। सोशल मीडिया पर कुछ ओएमआर शीट्स वायरल होने लगी और इनमें भी एक ओएमआर शीट को लेकर दावा किया गया कि उसमें लगभग 48 प्रश्नों के ही सही उत्तर भरे गए थे। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि मुख्य परीक्षा में पहुंचने के लिए लगभग 144 अंक के आसपास की जरूरत थी, इससे 48 नंबर लाकर पास होना संभव ही नहीं है और इस परीक्षा में बड़े स्तर पर धांधली हुई है। ये वो तमाम आरोप थे जिनके बाद छात्रों ने आंदोलन शुरू किया। कुछ लोगों ने इसे दिल्ली के जंतर मंतर आंदोलन से जोड़ दिया, क्योंकि वहां भी भर्ती और परीक्षा व्यवस्था को लेकर आंदोलन हुआ था। लेकिन यह समझना जरूरी है कि रांची का आंदोलन किसी दूसरे आंदोलन की नकल नहीं है, यह अपनी वजहों से पैदा हुआ आंदोलन है और इस वक्त यह रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहा है, जहां से विधानसभा की दूरी 13 किलोमीटर है। झारखंड लोकसभा लोक सेवा आयोग का दफ्तर सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। शुरुआत में यहां मुश्किल से 200 छात्र जुटे थे, लेकिन अब संख्या हजारों में पहुंच चुकी है। एक दिन पहले छात्रों ने मशाल जुलूस निकाला और ये मशाल सिर्फ आग को नहीं जला रही थी, ये उस गुस्से का प्रतीक थी जो सालों से बेरोजगार युवाओं के भीतर जमा होता जा रहा है। छात्रों का आरोप है कि झारखंड में भर्ती परीक्षाओं पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं, लेकिन हर बार जांच की घोषणा कर दी जाती है और फिर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। इस बार भी सरकार ने सीआईडी की विशेष जांच टीम बनाई है और जांच के निर्देश दिए, लेकिन प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि उन्हें अब ऐसी जांच पर भरोसा ही नहीं रहा। उनकी मांग है कि जांच एक ऐसी एजेंसी करे जिस पर किसी भी तरह का राजनीतिक या प्रशासनिक प्रभाव ना हो। अब ये देखिए कि छात्रों को झारखंड सरकार पर विश्वास क्यों नहीं है, तो उसके पीछे एक नाम है और वो है अभय तिवारी। जांच एजेंसियों के मुताबिक अभय तिवारी गोड्डा जिले में ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर के पद पर तैनात एक सरकारी अधिकारी है, और हैरानी की बात यह है कि यही सरकारी अधिकारी उस TDPL नाम की कंपनी से भी मिला हुआ था जो इन भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करा रही थी। ये सब भी तब हुआ जब इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जा चुका था, और यहीं से सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर कोई कंपनी पहले ब्लैकलिस्ट हो चुकी थी तो फिर उसे दोबारा इतनी बड़ी परीक्षा कराने की जिम्मेदारी कैसे मिली। यही नहीं, झारखंड की जांच एजेंसियों का दावा है कि अभय तिवारी इन सरकारी नौकरियों की भर्ती परीक्षा में कहीं ना कहीं एक जिसको कहते हैं बीच में बिचौलिए की भूमिका निभा रहा था। सीआईडी के मुताबिक उसके पास सरकारी नौकरियों का एक रेट कार्ड मिला है, और आज यही रेट कार्ड प्रदर्शनकारी छात्र अपने मंच पर टांग कर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि अगर नौकरी भी पैसों से बिकेगी तो फिर पढ़ाई किस लिए की जा रही है, कोचिंग किस लिए की जा रही है, रात रात भर जागकर तैयारी किस लिए की जा रही है। सोचिए, आज किसी गांव का किसान अपना खेत बेचकर बेटे को शहर पढ़ने भेजता है, कोई माँ अपने गहने गिरवी रखती है, कोई पिता रिटायरमेंट की जमा पूंजी कोचिंग और किराए में खर्च कर देता है, सालों तक पूरा परिवार सिर्फ एक उम्मीद पर जीता है कि एक दिन सरकारी नौकरी मिलेगी, जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन अगर आखिर में नौकरी का फैसला मेहनत नहीं बल्कि पैसे पहुंच या सिफारिश से होने लगे तो सबसे पहले भरोसा मरता है। और जब किसी देश का युवा सिस्टम पर भरोसा खो देता है तो नुकसान सिर्फ एक परीक्षा का नहीं होता, वो जंतर मंतर हो या रांची का ये स्टेडियम, उसका गुस्सा सिस्टम पर निकलता है। इसीलिए रांची का आंदोलन सिर्फ 103 नौकरियों की लड़ाई नहीं है, ये उस भरोसे की लड़ाई है जो हर भर्ती घोटाले के बाद थोड़ा थोड़ा टूटता जा रहा है। शायद यही वजह है कि इस आंदोलन को किसी पार्टी के चश्मे से नहीं बल्कि एक छात्र की आंखों से देखने की जरूरत है।
9: सरकार को जगाना है तो नींद नहीं आती हम लोग को।
10: आज जाए तो जाए कहाँ? हेमंत चाचा बोलते हैं कि तुम भुस्का बेचो, गुलगुला बेचो और ये बकरी बेचो, बकरी पालो, हड़िया बेचो, तो झारखंडी हड़िया बेचेगा और आप पेपर बेचेगा। तो इसीलिए हेमंत चाचा के मेरी आग्रह है कि हमें मौत दे दीजिए और या तो इंसाफ दीजिए या न्याय दीजिए। तो हेमंत चाचा आप जरूर से जरूर इस पे इंसाफ कीजिए, क्योंकि ये जो छात्र है वो यूं ही नहीं निकले हैं।
11: प्लीज आप जल्दी से यहाँ पधारें, आप आइए, आप हमसे एक बार वार्तालाप करके देखें कि हम स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं, आप आखिर क्या चाह रहे हैं, आखिर क्यों इतने बच्चे त्रस्त हो चुके हैं। तो आप प्लीज जल्दी से आइए और हम स्टूडेंट्स की भावनाओं को थोड़ा कदर कीजिए।
12: मांगे यही है कि जो भी जेपीएससी जेएससी है उसकी जो रिजल्ट है उसको रद्द करना चाहिए।
13: कम से कम हम जैसे युवाओं को समस्या को समझिए आप, क्यों? क्योंकि हमें, हम इसी राज्य के युवा हैं, हम किसी और जगह से नहीं आए हुए हैं। और हम जैसे युवा जो हमारे अंदर पोटेंशियल, उस पोटेंशियल को आप समझिए।
14: एक होता है ना, सोया हुआ आदमी को जगाना आसान है, लेकिन जो जगा हुआ आदमी और सोने का नाटक कर रहा है उसको जगाना थोड़ा मुश्किल है। तो खैर हम लोग जगा लेंगे।
15: हम बता रहे कि मेरा माँ बाप कैसे कैसे पैसा, मेरा पापा का उम्र 80 वर्ष हो गया, वो अभी हमको कमा के पढ़ा रहे हैं। सोचिएगा हमको उम्र 26-27 साल हो गया और हमारा सरकार नहीं सुन रहा था, हम कैसे, हम आखिर माँ बाप का सहारा भी नहीं बन पा रहे हैं।
1: जैसे जंतर मंतर के आंदोलन को सोनम वांगचुक के रूप में एक बड़ा चेहरा मिला, उन्होंने 26 दिनों तक छात्रों की मांग को लेकर अनशन किया, ठीक उसी तरह झारखंड के इस छात्र आंदोलन को देवेंद्र नाथ महतो के रूप में एक बड़ा चेहरा मिल गया है जो परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ अनशन पर लगातार है। देवेंद्र नाथ महतो ने साल 2024 में विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था और अपने चुनावी हलफनामे में खुद को सामाजिक कार्यकर्ता, छात्र आंदोलन का नेता बताया था। यह उनका पहला आंदोलन नहीं है, इससे पहले भी वो स्कॉलरशिप, पेपर लीक, भर्ती नियम, आरक्षण नीति और परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ सवाल उठाते रहे हैं। और जानते हैं वो छात्रों की ये लड़ाई क्यों लड़ते हैं? वो कहते हैं कि जब झारखंड लोक सेवा आयोग की छठी परीक्षा हुई थी तब उसमें हुई गड़बड़ियों के खिलाफ आंदोलन करते हुए उन्होंने अपनी मां को खो दिया था और तभी से वो छात्र आंदोलन उनके अधिकारों की लड़ाई से जुड़ गए। सुनिए।
16: भूख हड़ताल पर यहाँ पे हैं देवेंद्र नाथ महतो, छात्र के नेता हैं और इनसे सीधे बातचीत करते हैं। दूसरा दिन है ये, कब तक जारी रहेगा देवेंद्र जी ये जो आपका आंदोलन है और इंडेफिनिट पास जो है, क्या यह अनिश्चितकालीन आपका पास?
17: हाँ, अनिश्चितकालीन है। यह संघर्ष का शुरुआत 5 जुलाई से हुई है और 25 जुलाई से दीवारात्रि सत्याग्रह दिन रात जागरण से हुआ और ये थकान शरीर में ही कल से अन्न का त्याग कर दिए हैं। आज भूख हड़ताल का दूसरा दिन है। ये सब लिफाफोती है, ऐसा बहुत बार हुआ है, कार्रवाई होती है, गिरफ्तारी होता है, इस्तीफा देते हैं, लेकिन अचानक एडमिट कार्ड जारी करके एग्जाम ले लिया जाता है और सीट को बेचने में सफल हो जाते हैं।
16: एक बुक जो है वो साथ में रखा हुआ है, भारत का संविधान इनके हाथ में है और यहाँ उनके समर्थक भी बैठे हुए हैं। इनडेफिनिट स्ट्राइक पे है, इन्हें कहा जा रहा है सोनम वांगचुक की तरह ही पार्ट टू है वो ये, और आर पार की लड़ाई के मूड में ये लोग साफ तौर से हैं। सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।
1: झारखंड सरकार ये कह रही है कि वो इस परीक्षा में हुई धांधली को लेकर कड़े कदम उठा रही है और झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और ऐसे में छात्रों का ये आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन आंदोलन पर बैठे छात्र सरकार से अब भी 5 बड़ी मांगे कर रहे हैं। उनकी पहली मांग यह है कि मौजूदा परीक्षा के नतीजों को रद्द किया जाए। दूसरी मांग है इन परीक्षाओं की जांच सीआईडी से नहीं बल्कि सीबीआई से कराई जाए और इनमें झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों को भी शामिल किया जाए। तीसरी मांग है कि भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता लाई जाए, उनकी प्रक्रिया में बड़े सुधार लागू हों जिसे हर परीक्षा की कट ऑफ सार्वजनिक हो, छात्रों को ओएमआर शीट उपलब्ध कराई जाए, आंसर की इवैल्यूएशन प्रोसेस पूरी तरह पारदर्शी हो, ओएमआर शीट में नो अटेम्प्टेड का विकल्प भी नॉट अटेम्प्टेड का विकल्प भी छोड़ा जाए। चौथी मांग यह है कि जवाबदेही तय हो, यानी जंतर मंतर के आंदोलन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का की जवाबदेही मांगी गई, उनका इस्तीफा हुआ, ठीक उसी तरह झारखंड में भी इस मुद्दे पर जवाबदेही तय हो, बड़े अधिकारियों को सामने लाया जाए। और आखिर मांग यह है कि झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो कार्य प्रणाली है उसमें सुधार किया जाए जिससे छात्रों की मेहनत बर्बाद ना हो। और ये क्यों जरूरी है इसके लिए आपको ये आंकड़े देखने होंगे। आपको यकीन नहीं होगा कि साल 2000 में झारखंड बनने के बाद ये लगभग हर बड़ी भर्ती परीक्षा किसी न किसी विवाद में रही है, सरकार चाहे किसी भी पार्टी की रही हो, हर बार इन परीक्षाओं की प्रक्रिया पर सवाल उठे, कोई सरकार कुछ नहीं कर पाई। जब झारखंड में साल 2014 से 2019 के बीच बीजेपी की सरकार थी तब पूरे कार्यकाल में झारखंड लोक सेवा आयोग की एक भी परीक्षा ही नहीं कराई गई। 2019 के बाद हेमंत सोरेन की सरकार ने बैकलॉग भरने के लिए अलग अलग परीक्षाएं कराई लेकिन हर बार इन परीक्षाओं के नतीजों में गड़बड़ी के आरोप लगे। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि झारखंड में ये जो छात्र आंदोलन चल रहा है ये अचानक नहीं हुआ, ये किसी राजनीतिक पार्टी के लिए नहीं है और इन छात्रों ने खुद अपने इस आंदोलन के बाहर जो बातें लिखी हैं वो सबको पढ़नी चाहिए। इन पर लिखा है कि आंदोलन के मंच से किसी भी तरह का राजनीतिक, धार्मिक, जातिगत भाषण या बयान ना दें, आंदोलन के मुद्दों पर ही अपनी बात रखें, दूसरी जो बात लिखी है, और आजादी जैसे नारे ना लगाएं। तीसरी बात ये लिखी है कि इन जेन जी छात्रों की लड़ाई सिस्टम से है इसलिए इस मुद्दे को राजनीतिक ना बनाएं। और चौथी बात ये लिखी गई है कि कोई भी छात्र अपने बयानों भाषणों में अपशब्दों का इस्तेमाल ना करे, गाली गलौच को कंप्लीट नो, और ना ही पोस्टर और बैनर पर गालियां और आपत्तिजनक बातें लिखे। और इस कोड ऑफ कंडक्ट को पढ़कर बहुत सारे लोग इस छात्र आंदोलन की तारीफ कर रहे हैं। देखिए,
18: आप लोग किसी को भी यहाँ पे सपोर्ट नहीं करना है, आजादी का नारा यहाँ ये जंतर मंतर नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये स्टूडेंट का भाषण है, जो वक्तव्य है वो हम स्टेज से नहीं देंगे। हम यहाँ डे वन से स्टूडेंट के साथ में बहुत मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पे सोशल मीडिया पे मेहनत कर रहे हैं, ग्राउंड पे मेहनत कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं आवेदन करना चाहूंगा सभी स्टूडेंट से कि कोई भी ऐसे लोगों का यहाँ पे साथ नहीं देगा जो आजादी के नारे लगाएंगे, जो धार्मिक नारे लगाएंगे और जो राजनीतिक यहाँ पे बयानबाजी करेंगे। धन्यवाद।
19: हम लोग बस इतना चाहते हैं कि आपका जो हम लोग का जो मांग है वो मांग तो हमेशा रहेगा ही, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि आप डेलीगेशन दीजिए, अपना बात रखें और हम लोग यहाँ से जितना अपना सामान बोरिया बिस्तर बांध के चले जाएं।
20: कोई अगर ये सोचेगा इस मंच का दुरुपयोग करना, कोई भी राजनीतिक पार्टी, तो मैंने कहा था मेरे मरने के बाद कोई इसका इस मंच का दुरुपयोग करेगा, कोई पार्टी इस मंच का प्रयोग, इसीलिए हम अलग हुए। कोई सोचा कि हम पार्टी का चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे, हम नहीं करने देंगे। मैंने खुद छात्रों से वादा किया था कि मैं मरूंगी उसके बाद इस मंच का दुरुपयोग किया जाएगा। आप देख रहे हैं सारे छात्र हैं।
1: और अब अगली खबर का रुख करते हैं। पिछले 3.5 साल से भारतीय कुश्ती महासंघ में मचे घमासान में बड़ी अपडेट है। आपको याद होगा 18 जनवरी साल 2023 को दिल्ली के जंतर मंतर पर विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया जैसे बड़े पहलवानों ने एक धरना प्रदर्शन किया था। यह धरना रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्कालीन अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ था। प्रदर्शनकारी पहलवानों ने ब्रिजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया और उन्हें पद से हटाने और गिरफ्तार करने की मांग की थी। आरोपों के मुताबिक महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के मामले साल 2012 से 2022 के बीच के थे। करीब 3.5 साल बाद इस मामले में दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने ब्रिजभूषण शरण सिंह पर लगे सारे आरोपों को खारिज कर दिया है और बरी किया है। कोर्ट ने माना है कि ब्रिजभूषण पर लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए पीड़ित पक्ष सबूत पेश नहीं कर पाया, यानी सबूतों के अभाव में यह फैसला दिया गया है। ब्रिजभूषण शरण सिंह पर 7 महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था जिसमें एक नाबालिग भी शामिल थी। उन पर महिला पहलवानों को जबरन पकड़ने या छूने, सांस की जांच के बहाने उन्हें गले लगाने, बैक टच के आरोप थे। यौन उत्पीड़न के इस मामले में सुनवाई के दौरान पॉक्सो केस की नाबालिग पीड़िता ने अपने आरोपों को वापस ले लिया था। माना जा रहा है कि ये केस वापस लिए जाने के बाद ब्रिजभूषण पर लगे अन्य पीड़ितों के आरोपों पर कई सारे संदेह खड़े हुए और वकीलों ने फिर उस पूरे मामले को उसी तरह से आगे उठाया। इधर दिल्ली पुलिस ने पॉक्सो केस में 550 पन्नों की रिपोर्ट में बताया कि नाबालिग के आरोपों को साबित करने वाले सबूत नहीं थे। इसी रिपोर्ट में पीड़िता की तरफ से दावा किया गया उसने ब्रिजभूषण शरण सिंह पर जो आरोप लगाए थे वो टीम में ना चुने जाने की निराशा मानसिक तनाव की वजह से लगाए गए थे। अब ये बातें जब सामने आई पीड़िता के नए बयान और जांच के बाद पुलिस ने पॉक्सो केस को रद्द करने की रिपोर्ट दाखिल की थी। फिलहाल राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले से पूर्व बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह बहुत खुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि वो पहले से ही जानते थे कि सारे आरोप कोर्ट में धराशायी होंगे और इसी वजह से वो साल 2023 में हुए बवाल के बावजूद अपना पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। इस समय देश के कई इलाकों में बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की वजह से तबाही मची है। 24 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। वहीं दूसरी तरफ कई राज्य ऐसे हैं जहां भारी बारिश, बाढ़, तबाही मची हुई है। देश के पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी और तटीय इलाकों तक कुदरत का कहर जारी है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भारी बारिश और फ्लैश फ्लड ने हाहाकार मचा दिया है। कटरा जो रियासी मार्ग है वहां पहाड़ भयानक तरीके से दरका। यहां लैंडस्लाइड की वजह से नेशनल हाईवे 144 बंद हो गया है। मीना मार्ग पर पानी के तेज बहाव में एक कार फंस गई थी जिसे जॉइंट ऑपरेशन के जरिए किसी तरह से बाहर निकाला गया। देखिए इधर कारगिल के चितकन इलाके में नाला उफान पर आने से कई गांव सैलाब की चपेट में आ गए हैं। गांदरबल में फ्लैश फ्लड के चलते कुछ ही देर में पूरा एक इलाका ही डूब गया। रास्तों में पानी भर गया और घरों में पानी की दीवार में इस वक्त एक तरह से जितने भी घर हैं वो कैद हो चुके हैं। सोनमर्ग इलाका पानी का सैलाब तेजी से आगे बढ़ रहा है। उधर श्रीनगर जाने वाले जो हाईवेज हैं उन पर ट्रक्स की लंबी कतारें लगी हुई हैं। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है जिससे संकट और गहरा सकता है।

और अब बात केरल की, असम से लेकर जम्मू कश्मीर, केरल में बाढ़ के ऐसे हालात हैं कि इंसान बेबस हो चुका है। ये तस्वीरें केरल के पथानाम थिट्टा की है। देखिए कैसे ये लोग घरों में कैद हैं, ये बाहर निकल नहीं सकते क्योंकि बाहर पानी का पहरा है। ऐसा हाल यहाँ पर इसलिए क्योंकि सड़कों पर गाड़ियों की जगह नावें इस वक्त चल रही हैं। लोग घरों में कैद हैं, सुरक्षा कर्मी कमर तक पानी में उतरकर लोगों तक किसी तरह से पीने का पानी और जो जरूरी खाने पीने का सामान है वो पहुंचा रहे हैं। इधर केरल के श्रीकंदपुरम की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बाजार, रिहायशी इलाके घुटनों तक पानी है, नदियां उफान पर है, पानी घरों के अंदर तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने केरल के 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 खत्म हो गए हैं। इस बार भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन दिखाया है। भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स में पिछली बार की तरह अपना चौथा स्थान बरकरार रखा है। इस बार भारतीय खिलाड़ियों ने 13 गोल्ड, 17 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज मेडल और साथ ही कुल मिलाकर 39 मेडल जीते हैं। खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन और इस प्रदर्शन के बीच और भी बड़ी खुशी की खबर बता दें कि साल 2030 में भारत कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने वाला है। इस मेजबानी की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। साल 2030 की मेजबानी पाने के एक समारोह में भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष पीटी उषा और जैवलिन के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा और गुजरात के डेप्टी सीएम हर्ष सांघवी ने कॉमनवेल्थ गेम्स का फ्लैग रिसीव करके 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी का ऐलान किया।

0: रिसीव करेंगे फ्लैग ऑफलाइन फ्लैग हैंड ओवर पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर गुजरात के हर्ष संघवी जी।
1: कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय दल का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा और इसने मेजबान की खुशी दोगुना कर दिया है। इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने कुल 39 मेडल जीते। साल 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स की तुलना में लेकिन अगर हम देखें तो ये बहुत कम है। तब हमने 61 मेडल पिछली बार जीते थे। हालांकि इस बार मेडल जीतना पिछली बार की तुलना में ज्यादा बड़ी बात है, क्योंकि पिछले बार भारत से 210 खिलाड़ियों का दल गया था और इस बार केवल 123 खिलाड़ियों का गया है। छोटा भारतीय दल होने की वजह यह थी कि इस बार ग्लासगो के जो कॉमनवेल्थ गेम्स थे उसमें केवल 10 खेल ही शामिल किए गए थे, जबकि 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में 19 खेल आयोजित किए गए। इस बार बैडमिंटन, कुश्ती, शूटिंग, हॉकी, टेबल टेनिस और क्रिकेट को शामिल ही नहीं किया गया। साल 2022 में करीब 30 पदक हमें इन्हीं खेलों से मिले थे। तो ऐसा देखा जाए तो 2022 में 210 खिलाड़ियों के दल ने कुल 61 मेडल जीते थे, जबकि इस साल 123 खिलाड़ियों के दल ने 39 मेडल जीते हैं। मतलब यह है कि इस बार का सक्सेस रेट करीब 31% है, जबकि 2022 में सक्सेस रेट 29% था। और इसी के साथ ब्लैक एंड व्हाइट में हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार अंजना की विचारधारा, देखते रहिए आज तक।

0: You're listening Uninterrupted. With TuneIn Premium, enjoy commercial-free news and music, plus ad-free ESPN Radio, and fewer ads across other stations. Whether you're listening for the latest news or the next big game, never miss a beat. Plus, you can listen to TuneIn on over 200 devices, at home, in the car, or on the go. So you can hear more. Ready to upgrade your listening? Upgrade to TuneIn Premium now.
1: क्रिकेट में हर खिलाड़ी का अलग रोल होता है। कोई विकेट कीपर, कोई फील्डर, कोई बॉलर, तो कोई बैट्समैन होता है। और जब सब एक साथ मिलकर खेलते हैं तब बनती है कंप्लीट टीम। जैसे पीएनबी वन ऐप, जिसमें फंड ट्रांसफर्स हो या अकाउंट ओपनिंग, लोन हो या एफडी, सब कुछ है जो बनाता है इसे कंप्लीट बैंकिंग ऐप।
2: पीएनबी वन ऐप, बैंकिंग का कैप्टन।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: Where the software engineer meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University.
3: टैंकर ने घुसकर मारी अलमारी को टक्कर।
4: आश्चर्य जनक, एक खरोच भी नहीं आई अलमारी पे। कैसे कदम?
3: क्रॉसबॉन्ड सुपर स्ट्रॉन्ग।
4: सुपर स्ट्रॉन्ग
3: और मॉइस्चर प्रूफ।
5: वारंटी
3: 15 साल की।
4: कदम
3: सर प्लीज
4: ऑर्डर करो और मेरे घर भिजवाओ। वार्डरोब्स क्रॉसबॉन्ड से ही बनेंगे।
6: क्रॉसबॉन्ड HDMR Max फर्नीचर बने स्ट्रॉन्ग, चले वेरी वेरी लॉन्ग।
7: In association with
8: Punjab National Bank, भरोसे का प्रतीक।
7: विमल बोलो जुबां केसरी। हिंट बड़े आराम से।
9: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी। वेयर आर यू?

0: या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: हमारे साथ है बातचीत करने के लिए बीजेपी के पूर्व सांसद, भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और बृजभूषण शरण सिंह, जिनके ऊपर ये आरोप लगे थे कि उन्होंने महिला पहलवानों के साथ जो है वो सेक्सुअल हरासमेंट किया था। आज जो निचली अदालत है उन्होंने उनको इस पूरे मामले में जो है वो बरी कर दिया है। बृजभूषण जी, कैसा आपको लग रहा है जब इतने लगभग जो है 3 साल के करीब हो गए, अब पूरा मामला जो है वो क्लियर हो गया, आपको बरी कर दिया गया?
2: हिमांशु जी, बरी शब्द का इस्तेमाल के जगह पर कोर्ट ने बाइज्जत बरी शब्द का इस्तेमाल किया है। बरी और बाइज्जत बरी में फर्क होता है। एक बरी होता है कि सबूतों के अभाव में आपको छोड़ा जा रहा है। यहां सीधे सीधे कहा गया कि आपको नाम लेकर के कि आपको बाइज्जत बरी किया जा रहा है। और जहां तक आप भी मौजूद थे पहले दिन, और जब मुझे थोड़ा सा मौका मिला था तब मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि ये सब झूठ है। और अगर इसमें एक भी आरोप साबित होगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। इतना कॉन्फिडेंस इसलिए था कि मैं अपने आप को जानता था, सामने वाले को नहीं जानता था लेकिन अपने आप को जानता था। और आज अभी कुछ दिन पहले भी मैंने कहा कि मैं उस बात पर कायम हूं। आज मेरी बात वो सत्य पाई गई और इस साजिश में पहलवानों के अलावा देश की लगभग लेफ्ट राइट, कांग्रेस, आम, ममता, यानी दो एक पार्टियों को छोड़ करके कोई बचा नहीं था। अब उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए क्योंकि उनके हिसाब से तो उसी दिन मुझे पकड़ करके फांसी दे देना चाहिए था।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
2: तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और याद रहे, टूटा हुआ कांच और टूटा हुआ इंसान कमजोर नहीं बल्कि घातक होते हैं। नमस्कार।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: बागीपुर से शानदार जीत के बाद बोले प्रशांत किशोर, 30 दिन में ढह गया 30 वर्ष पुराना किला, मुख्यमंत्री सम्राट पर कड़ा हमला, आरजेडी की जमानत जब्त। कांग्रेस के हाथ लगा मध्य प्रदेश का दतिया, यहां भी 6000 से अधिक वोटों से हार गई बीजेपी, गुजरात के मांजलपुर ने बचाई बीजेपी की इज्जत, 30,000 से अधिक वोटों से जीते सत्येंद्र भाई पटेल। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो हटाने पर मेटा ने मानी गलती, संसदीय समिति की बैठक में मांगी माफी, तकनीकी गड़बड़ी का दिया हवाला, समिति ने जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। रात के 10 बज रहे हैं और आज तक पर आप देख रहे हैं दस्तक। आज दस्तक में बात सीजेपी यानी कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट पर आरएसएस के सह सर कार्यवाह अतुल लिबिया के बयान की। अतुल लिबिया ने जंतर मंतर पर हुए सीजेपी के प्रदर्शन को राष्ट्र विरोधी और संविधान विरोधी करार दिया है। आरएसएस के बड़े पदाधिकारी के बयान पर अब राजनीतिक घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर विपक्ष ने छात्रों के प्रदर्शन पर आरएसएस की तरफ से आई इस टिप्पणी की निंदा की है। कॉकरोच जनता पार्टी प्रमुख अभिजीत दिपके ने आरएसएस के सह सर कार्यवाह के आरोप पर सीधा हमला बोला है। दिपके ने उल्टा आरएसएस को कटघरे में खड़ा करते हुए राष्ट्र विरोधी संगठन बता दिया है।
1: स्टूडेंट्स के विषयों को, डिमांड्स को लेकर के आप पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं राजनीतिक रोटियां से, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण
2: है। देश ने जो इनको मैंडेट नहीं दिया है, तो ये इस तरह की राजनीति, जिसे कहते हैं कि घटिया राजनीति जो है वो कर रहे
3: हैं। आंदोलन अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान विरोधातला एक हथियार उपयोग के लिए आंदोलन है।
4: जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या करी, उस विचारधारा के लोग हमें एंटीनेशनल कह रहे हैं। मुझे लगता है उनको कोई अधिकार नहीं है, कोई मॉरल राइट नहीं है।
5: आज आरएसएस के सह सर कार्यवाह अतुल लिमे को जंतर बंतर पर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को देश विरोधी बताने से पहले इन तस्वीरों को एक बार नहीं बल्कि 100 बार देखना चाहिए। अतुल लिमे जिन आंदोलनकारियों को देश विरोधी और संविधान विरोधी बता रहे हैं, उन्हीं आंदोलनकारियों से प्रदर्शन खत्म करने के लिए केंद्र सरकार के सीनियर मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने मुलाकात की। आंदोलनकारियों की मांग मानते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करवाया। अगर आंदोलनकारी देश विरोधी हैं, तो उनकी मांगों को पूरा करने वाली सरकार की नीति और नियत पर सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहले आरएसएस के सह सर कार्यवाह अतुल लिमे की तरफ से आंदोलनकारियों की व्याख्या को बहुत गौर से सुनिए।
3: ये आंदोलन अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधानाच्या विरोधातला एक हत्यार म्हणून उपयोग केलेला आंदोलन आहे, या अर्थाने बघा। अगेन्स्ट द नेशन, भारत विरोधातला एक आंदोलन, या अर्थाने उभं केलेलं आंदोलन आहे, या अर्थाने या शक्तीकडे आपण नीटपणे बघितलं पाहिजे। विकसित देश बनायचा असेल तर या युवा शक्तीचं एक मोठं योगदान आपल्याला पाहिजे। पण ही युवा शक्ती कशी पाहिजे, कुठले संस्कार पाहिजे, कुठली स्वप्न पाहिजे, कुठली गीतं पाहिजे त्यांच्या ओठी, हे मात्र नीट काळजीपूर्वक आपण ठरवलं पाहिजे। आणि त्याच्यासाठी जे काही आपल्याला, म्हणजे हे आंदोलन फक्त पॉलिटिकल या दृष्टीने बघू नका, केवळ अँटी बीजेपी या अँगलनी हे बघू नका।
5: ये टिप्पणी अतुल लिमे ने संभाजी नगर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए की। तो क्या संविधान विरोधी और देश विरोधी आंदोलनकारियों के आगे सरकार झुक गई? सवाल ये भी है कि अगर जंतर मंतर से जुड़े प्रदर्शनकारी देश विरोधी हैं, देश के नौजवानों की आवाज नहीं है, तो आरएसएस चीफ 6 अगस्त को मुंबई में जेन जी और जेन अल्फा से क्यों मिलने वाले हैं? आज आरएसएस के सह सर कार्यवाह को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नौजवानों के नाम संदेश सुनना चाहिए, क्योंकि आंदोलनकारियों को देश विरोधी बताकर आरएसएस के बड़े पदाधिकारी पीएम पर भी उंगली उठा रहे हैं।
6: मैं जानता हूं कि पेपर लीक एक कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है।
7: उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं।
5: पीएम उन प्रदर्शनकारियों को माफ कर देते हैं जिन्होंने उनके खिलाफ अमर्यादित और अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया, लेकिन बीजेपी के कुछ नेताओं और आरएसएस का स्टैंड अलग नजर आता है। ऐसे में सीजेपी के झंडे तले हुए सफल आंदोलन पर आरएसएस ने उंगली उठाई तो सीजेपी प्रमुख अभिजीत दिपके ने इतिहास के पन्ने पलटते हुए सनसनीखेज दावा किया।
4: जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या करी, उस विचारधारा के लोग हमें एंटीनेशनल कह रहे हैं। मुझे लगता है उनको कोई अधिकार नहीं है, कोई मॉरल राइट नहीं है। जो गांधी के हत्यारे हैं उनको कोई मॉरल राइट नहीं है किसी और को एंटी नेशनल कहने का।
5: आंदोलनकारियों को देश विरोधी बताने वाली टिप्पणी को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे आरएसएस और बीजेपी पर जमकर बरसे। आरोप यही लगाया कि आंदोलनकारी देश विरोधी हैं, तो केंद्र सरकार की जांच एजेंसियां हाथों पर हाथ बांध कर क्यों बैठी हैं?
8: अगर उसमें कोई बुरी एलिमेंट है, आपके पास विजिलेंस है, आपके पास सीबीआई है, आपके पास इंटेलिजेंस है, इतने सब रहते हुए आप विषय को बदलाने के लिए ऐसी चीजें बोलना ठीक नहीं।
5: वहीं उद्धव ठाकरे की पार्टी के सांसद अरविंद सावंत और समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क ने सीधा हमला बोला। अरविंद सावंत ने आरएसएस के अतीक और आज पर सवाल उठाए तो बर्क का दावा है कि इस देश में नया कल्चर बन गया है, जो बीजेपी और आरएसएस से सहमत नहीं वो देश विरोध।

0: है कि ये लोग किसी देश पे भक्त नहीं बल्कि ये अपनी कुर्सी बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं।
1: सिर्फ आरएसएस के बड़े पदाधिकारी ने आंदोलनकारियों पर सवाल नहीं उठाए, बीजेपी के पूर्व सांसद रमेश बिधूड़ी ने तो आंदोलनकारियों पर धार्मिक टिप्पणी तक कर दी। बीजेपी के गालीबाज नेता ने एक बार फिर मुंह खोला तो दिमाग की नफरत जुबान के रास्ते बाहर निकली।
2: भारत की बेटी या भारत का बेटा मोदी जी के बारे में, उनके परिवार के बारे में इस प्रकार की बातें कर सकते हैं क्या? वो पंचर लगाने वालों की ही औलादे होंगी, पंचर लगाने वालों के ही खानदान होंगे जो मोदी जी के बारे में इस प्रकार की बातों का उपयोग कर रहे थे। भाइयों बहनों,
1: इससे पहले बीजेपी सांसद कंगना भी प्रदर्शनकारियों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांट चुकी हैं। कंगना ने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट के स्टोरी सेक्शन में लिखा है, सबसे शर्मनाक बात उन युवा हिंदू महिलाओं का व्यवहार है जो स्वतंत्र और करियर बनाने वाली महिलाओं की जिंदगी की नकल करना चाहती हैं, लेकिन उस आजादी के साथ आने वाली जिम्मेदारियों को नहीं निभाना चाहती। असल में स्वतंत्र महिलाएं विद्रोही फैसले लेती हैं, बेबाक राय रखती हैं, परंपराओं से हटकर करियर चुनती हैं और अपने हर फैसले की पूरी जिम्मेदारी भी उठाती हैं। उन्हें अपने कर्मों की कीमत खुद चुकानी पड़ती है, वे अपने माता पिता व परिवार की कीमत पर ऐसा नहीं करती। मतलब यही है कि प्रदर्शनकारियों पर पीएम की सोच कुछ और है, लेकिन आरएसएस और उनकी पार्टी के कुछ बड़े चेहरों की लाइन लेंथ एकदम अलग है। ये संयोग है या फिर एक प्रयोग, आज यही सबसे बड़ा सवाल है। आज तक ब्यूरो।
3: और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी और सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दिपके ने अमेरिका में पढ़ाई और पढ़ाई के खर्च को लेकर सवाल उन पर उठाए जा रहे हैं। जी हां, सूरत के एक आरटीआई एक्टिविस्ट अमित तिवारी ने एक आरटीआई के द्वारा दिपके के पिता भगवान राव दिपके की इनकम और माली स्थिति की जांच की मांग की। आरटीआई एक्टिविस्ट अमित तिवारी ने प्रश्न उठाया कि महाराष्ट्र सरकार के कर्मचारी रहे भगवान राव दिपके ने अपने बेटे की विदेश में पढ़ाई का खर्च कैसे उठाया। इस पर कॉकरोच जनता पार्टी और दिपके भड़क उठे। अभिजीत दिपके ने जवाब दिया कि उन्होंने अमेरिका में पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन लिया था और बॉस्टन यूनिवर्सिटी ने उन्हें स्कॉलरशिप दी थी।
1: सीजेपी के आंदोलन पर लड़ाई दिपके की पहाई तक आई। अभिजीत दिपके की अमेरिका में पढ़ाई के खर्च पर उठा सवाल। गुजरात के आरटीआई एक्टिविस्ट ने उठाया सवाल, भड़क गई सीजेपी। आरटीआई एक्टिविस्ट पर सीजेपी बोली, पीएम केयर्स की ओर भी देखें। जंतर मंतर पर 36 दिन के आंदोलन से सीजेपी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करवाया और अब सीजेपी नए शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी को भी सवालों के कटघरे में खड़ा कर रही है।
4: हमारी जो डिमांड थी वो थी एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन तो होना ही चाहिए, वो उन्होंने कर दिया है, लेकिन उनके जगह उन्होंने किसको एजुकेशन मिनिस्टर बनाया? प्रहलाद जोशी जिनको देखा गया बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट थे, बलात्कारी थे, उनका वो हार माला डालकर स्वागत कर रहे थे। तो सोचिए जो बच्चे स्कूल में पढ़ते होंगे, जो लड़कियां स्कूल में पढ़ती होगी, उनको कैसा लग रहा होगा कि एजुकेशन मिनिस्टर कौन है, बलात्कारियों का स्वागत करने वाला इंसान बलात्कारी बना हुआ है। तो हम इसका तो बिल्कुल समर्थन नहीं करते।
1: सीजेपी ये भी कह रही है कि सरकार ने उनके साथ जिन तीन शर्तों पर समझौता किया है, अगर वो पूरी नहीं हुई तो फिर से आंदोलन होगा।
4: दूसरी चीज जो हमने कही थी कि 1 करोड़ का कंपनसेशन देना चाहिए सारी फैमिलीज को, उन सभी फैमिलीज को अभी तक 1 करोड़ का कंपनसेशन गवर्नमेंट ने दिया नहीं है। मुझे कुछ रिपोर्ट से पता चला है कि गवर्नमेंट कह रही है कि पहले हमें रूल्स और नॉर्म्स देखने पड़ेंगे, तो मुझे समझ नहीं आता कि जहां पर आपको सरकार गिरानी होती है वहां पर रातों रात सरकार गिरा देते हो, जहां पर आपको MP MLA खरीदने होते हैं वहां पर रातों रात करोड़ों सैकड़ों करोड़ों रुपए फेंक कर MP MLA खरीद लेते हो, वहां पर आपको कोई रूल्स और नॉर्म्स दिखते नहीं है, लेकिन जहां पर पीड़ित परिवारों को कंपनसेशन देने की बात आती है और 1 करोड़ का कंपनसेशन है, वहां पर आपको सारे रूल्स और नॉर्म्स याद आ रहे, इसका मतलब आपकी नीयत सही नहीं है।
1: लेकिन आंदोलन खत्म होने के बाद भी सरकार पर मोर्चे तानती सीजेपी और उसके संस्थापक अभिजीत दिपके पर भी अब सवाल उठाए जा रहे हैं। जी हां, सूरत के एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने अभिजीत दिपके की अमेरिका में पढ़ाई के खर्च को लेकर सवाल किए हैं। अमित तिवारी नाम के आरटीआई कार्यकर्ता ने 3 शिकायतें की हैं, जिनमें चुनाव आयोग में कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ 1 शिकायत दर्ज कराई है जिसमें सीजेपी के फंड के बारे में सवाल उठाया है। दूसरी शिकायत उन्होंने

0: सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम यानी CBIC में दर्ज कराई है कि CJP को राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने जो 1 करोड़ रुपए का फंड दिया है उस पर 18% GST वसूला जाए। तीसरी शिकायत महाराष्ट्र सरकार से की गई है। इसमें ये शिकायत की गई है कि अभिजीत दिपके के पिता भगवान राव दिपके MIDC में जूनियर इंजीनियर थे। उन्होंने 60 से 65 हजार की सैलरी में बच्चों को अमेरिका में कैसे पढ़ाया। अमेरिका में 1 साल की पढ़ाई का खर्च 30 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक आता है, तो इतनी रकम कहां से आई? अगर आय से अधिक संपत्ति का मामला है तो कड़ी कार्रवाई की जाए।
1: मैंने अलग अलग जगह पे 3 अलग अलग जगह पे शिकायत की है, जैसे कि CJP के विरुद्ध में एक ECI में कंप्लेन की है और कपिल सिब्बल साहब ने जो 1 करोड़ का फंड दिया है उसके विरुद्ध में मैंने CBIC में शिकायत की है कि इस पे 18% GST वसूल किया जाए। तथा महाराष्ट्र सरकार में भी मैंने एक शिकायत की है कि जो शंकर भगवान दिपके जी जो थे वो जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पर वहाँ पे MIDC में कार्यरत थे, तो अगर उनकी 60-65 हजार की सैलरी थी उसमें अपने बच्चों को अमेरिका पढ़ाना, क्योंकि अमेरिका में 30 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का साल भर का खर्च आता है, तो इतना बड़ा खर्च कहाँ से निकला? क्योंकि आपकी अगर 60-65 हजार की पगार है उसमें आप 30-35 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं तो वो चीज समझ में नहीं आती है।
0: इस पर CJP ने तीखी प्रतिक्रिया दी और CJP की प्रवक्ता वैष्णवी गौर ने अपनी एक्स पोस्ट में लिखा कि एक निजी व्यक्ति की शिक्षा पर हुए खर्च पर RTI लगाने वाले कभी PM केयर्स फंड की तरफ भी देखें, मोदी जी आपको माफ कर देंगे, घबराइए मत। आपको बता दें कि COVID-19 महामारी के दौरान मार्च 2020 में PM केयर्स फंड यानी द प्राइम मिनिस्टर सिटीजन्स असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस बनाया गया था। जून 2020 में PMO की ओर से बताया गया कि PM केयर्स फंड RTI एक्ट 2005 के दायरे में नहीं आता। इस फंड को लेकर कई सारी RTI दायर करने के बाद ये बयान जारी हुआ। 8 अगस्त 2020 को सुप्रीम कोर्ट भी इस पर जनहित याचिका खारिज कर चुका है। सूरत के RTI एक्टिविस्ट की शिकायत पर CJP के फाउंडर अभिजीत दिपके ने भी जवाब दिया है। दिपके ने कहा कि उन्होंने अमेरिका में पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन लिया है और साथ ही बोस्टन यूनिवर्सिटी से भी उन्हें स्कॉलरशिप मिली है।
2: तक्रार माझ्या एज्युकेशन क्वालिफिकेशन वर आहे की मी कसं बोस्टनचा खर्च घेऊ शकलो, थोडं बोस्टनचं शिक्षण घेऊ शकलो। त्यावर माझं असं म्हणणं आहे की मी माझं स्कॉलरशिप लेटर आणि एज्युकेशन लोनचं लेटर दाखवायला तयार आहे। पंतप्रधानांनी सुद्धा त्यांची डिग्री आहे ती दाखवावी, सार्वजनिक करावी। त्यांनी त्यांची डिग्री सार्वजनिक केली तर मी लगेच माझं स्कॉलरशिप लेटर आणि एज्युकेशन लेटर माझ्या डिग्री सोबत सार्वजनिक करायला तयार आहे।
0: लेकिन दिपके ने यह भी कहा कि मेरी डिग्री असली है और मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी भी अपनी डिग्री दिखाएंगे।
2: कि मैं अपने एजुकेशन लोन और मैं मेरी स्कॉलरशिप के लेटर दिखाने को तैयार हूँ। मैं नरेंद्र मोदी जी से भी रिक्वेस्ट करता हूँ वो भी अपनी डिग्री दिखा दे।
0: इतना ही नहीं, अभिजीत दिपके आरोप लगा रहे हैं कि सरकार आवाज उठाने वालों को परेशान करती है।
2: नहीं यू द्या घरापर्यंत यू द्या, जी चौकशी कराएगी करून घ्या। आपल्याला माहिती या देशात आपण जेव्हा जेव्हा या सरकारच्या विरोधात बोलतो, मी काय पहिला व्यक्ती नाहीये ज्याच्यासोबत असं होतंय। जेव्हा जेव्हा ज्यांनी ज्यांनी या सरकारच्या विरोधात आवाज उठवला आहे, त्यांना प्रश्न विचारले, हे लोक सगळ्यात पहिली गोष्ट तेच करतात, ED CBI पाठवणं सुरू करतात। पाठवून द्या, तुमची ED पाठवा, तुमची CBI पाठवा। पण जसं की मी म्हणलं, मी माझं एज्युकेशन लोनचं लेटर दाखवायला तयार आहे, मी माझं स्कॉलरशिपचं लेटर दाखवायला तयार आहे। पंतप्रधान मोदी यांनी सुद्धा जर ED पाठवत असाल तर ED सोबत तुमची डिग्रीही पाठवा, तुम्ही तुमची डिग्री सार्वजनिक करा, मी माझी डिग्री।
3: और आइए अब हम आपको दिखाते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली नाबालिग लड़की के विरुद्ध FIR दर्ज पर दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई न करने का निर्णय लिया है। साथ ही दिल्ली पुलिस ने यह भी कहा है कि लड़की के खिलाफ हम कोई केस नहीं करेंगे। पुलिस ने यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के माफी वाले बयान के बाद दिया है जिसमें उन्होंने बच्चों को माफ कर दिया था। उधर लड़की की मां ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे गांव गांव को गोद लेकर देश को संवार रहे हैं, वैसे ही मेरी बेटी को भी गोद ले लें और मेरी बेटी का जीवन भी संवार दें।
0: तेईस जुलाई को जंतर मंतर पर CJP के विरोध प्रदर्शन में PM मोदी को अपशब्द कहने वाली लड़की को पहले PM मोदी ने माफ किया और अब दिल्ली पुलिस ने भी क्लियर कर दिया है कि नाबालिग लड़की पर कोई कार्रवाई नहीं होगी और न ही कोई FIR दर्ज होगी। आपको बता दें कि 31 जुलाई को PM मोदी ने इंस्टाग्राम रील के जरिए लड़की को माफ करने की घोषणा की थी।
4: एक गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम है। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूं।
0: इसके बाद लड़की की मां ने पीएम मोदी का आभार जताते हुए भावुक अपील की और ये भी कहा कि जैसे आप गांव गांव को गोद लेकर देश को संवार रहे हैं, वैसे ही मेरी बेटी को भी गोद ले लें और उसका जीवन संवार दें।
5: मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी को प्रधानमंत्री जी गोद लें और जो मेरी बेटी का हक है, जो इसके पापा भी दुनिया में नहीं है, इसको अपने घर में, जहाँ अपने पापा के घर में, हर लाडली बेटी को उसके पापा के घर में जगह मिलती है। मेरी बेटी और मेरा बेटा एक साथ रहें, उसी घर में रहें, मेरे दोनों बच्चे, उसको उसका हक मिले। आज अगर वो अपने घर होती, कम से कम जिस बच्ची की हमें पता चल रही है, हम उसको तो न्याय दिलाएं।
0: आपको बता दें कि नोएडा पुलिस ने प्रधानमंत्री के लिए अपमानजनक टिप्पणी करने वाली लड़की के खिलाफ 0 FIR दर्ज की थी। इसके तुरंत बाद यानी 1 अगस्त को ही लड़की ने माफी मांग ली थी।
6: ये सब हुआ, मैंने माफी मांगी क्योंकि जो मैंने बोला था वो बहुत गलत था। एक्चुअली में मेरे को उस चीज का गिल्ट है। मैं स्टिल, जब तक मेरे को माफी नहीं मिलेगी तब तक मैं माफी मांगती रहूंगी। फिर जो मेरे पे FIR करवाई गई वो गलत था क्योंकि मेरी फेक एज, फेक नेम, फेक केस था, सब कुछ फेक एड्रेस। ना तो मैं रुचिका सिंह हूँ, ना ही मैं 25 साल की हूँ, मैं अभी 15 साल की हूँ।
0: लड़की ने बताया कि वो दिल्ली के कनॉट प्लेस में शॉपिंग के लिए गई थी, लेकिन मार्केट बंद होने के कारण वो जंतर मंतर CJP का प्रोटेस्ट देखने चली गई। लड़की ने यूट्यूबर्स पर भी आरोप लगाया है कि उसकी बिना अनुमति के वीडियो पोस्ट किया गया। दिल्ली से अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।
3: दस्तक में एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लौट कर आएंगे तो दस्तक के अगले हिस्से में आपको दिखाएंगे खूनी बगावत, मुनीर की शामत। आप देखते रहिए दस्तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो। इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
9: When your cat is acting weirder, or your dog is being louder, your turtle moves slower.
10: Hello, Ted.
9: Your cat seems thirstier.
11: Whoa, slow down, buddy.
9: Or your puppy is acting clumsier. Day or night, if you don't know what's wrong, know where to go.
10: Veg ER for pets. This is Kate.
9: Veg, the better, kinder ER for pets.
12: Hey, music lovers. Ready to take your listening to the next level? Upgrade to TuneIn Premium for curated music channels that fit every mood. Listen with less ads so you can keep the music going. So you get more of today's hits. More country roads. Classic rock. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more with Premium Upgrade to TuneIn Premium. And start listening now.
13: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में।
7: Where the software engineer meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University.
8: Goldie Hing ka tadka lage to sabhi daba ke khate hain. Goldie Hing kan kan mein jaan.
9: Honey, is ghar mein kuch hai jo tootta nahi?
10: Ye pillar kabhi nahi tootega. Rungta steel TMT se bana.
11: I wake up wearing someone's again.

0: in association with
1: Cera Sanitary Wear. It's your moment of Cera. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा.
2: His two biggest blunders have defined Indian politics since he responded to the Shahbano judgment.
3: Didn't quite understand the interplay between judiciary, society, Muslims, personal law. Shahbano was a disastrous decision.
2: That made the Hindus very angry. Then he made other mistakes with the unlocking of the doors at Ayodhya, the Shilanyas, and that's how the BJP rolled.
4: जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं जिस कहानी के बहुत अच्छे परिणाम हैं और बहुत दुखद परिणाम हैं। भारत एक राजमहल है, समृद्ध है, सोने की चिड़िया है। गहरी बात है वो ये है कि इस राजमहल के चारों तरफ झोपड़ पट्टियां हैं, झुग्गियां हैं, चुनौती वाले क्षेत्र हैं। भारत आए अंग्रेज, यहाँ के लोगों को देखा उन्होंने, जब यहाँ के ग्रंथों को ट्रांसलेट करना शुरू किया, पढ़ा उन्होंने कि ब्राह्मण का जन्म मुंह से हुआ है। ये डिपार्टमेंट बनाया ही गया था शोषण के लिए। कौन सा? पुलिस। किसने बनाया था? कॉर्नवालिस ने। और पुलिस डिपार्टमेंट की खास बात यह है कि जब उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट भारत में बनाया, तब वो डिपार्टमेंट ब्रिटेन में नहीं था। जुडिशरी, मॉडर्न जुडिशरी उन्होंने अपने फायदे के लिए बनाया। अंग्रेजी कानून, अंग्रेजी जज। तुम कल्पना कर सकते हो, आधुनिक काल से पहले LGBT सड़क पर आकर प्रदर्शन करें, इनको तोप में बांध के उड़ा दिया होता।
5: तो क्या सिर्फ अब हिस्ट्री सिर्फ जो बाहर से लोग आए थे यहाँ पे शासन करने के लिए, उनको विलन के रूप में दिखा रहे हैं? या फिर
4: जो भी सरकार सत्ता में आती है वो शिक्षा का इस्तेमाल करती है अपनी आइडियोलॉजी को प्रमोट करने। वंदे मातरम पे बहस हो रही है, हर दिन मंदिर मस्जिद पे बहस हो रही है, मुसलमान पे बहस। ये संसद बनी किस लिए? औरंगजेब जो था भैया, डेली 200 किलो जनेऊ तोलता था। कितना? 200 किलो भी, मतलब डेली वो कम से कम 10,000 ब्राह्मणों को मारता था, हिंदुओं को। मैं देखता हूँ मुसलमानों को और हिंदुओं को, मतलब कुछ तो प्रॉब्लम है यहाँ। पहले मैं सोचता था पुलिस वाले यहाँ लगा के पॉइंट ब्लैंक से क्यों मारते हैं, क्योंकि यहाँ ताला लगा हुआ है, तो इसीलिए मारते हैं कि यहाँ मारे तो अगले जन्म में खुला हुआ रहेगा।
6: आपको लगता है कि आज से 5 साल बाद 10 साल बाद देश फिर बट सकता है?
4: इस बात को मैं रिपीटेडली कह चुका हूँ, एक विस्फोट होगा बेटा।
7: लेकिन आपके पढ़ाने के तरीके मुझे एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट लगता है कि आप जनता को ही बोल देते हैं कि जनता बड़ी बेवकूफ है, और फिर आप कहते हैं कि हमारे देश का युवा पढ़ना नहीं चाहता है।
8: ₹6,000 करोड़ का AUM था, उसको बढ़ाकर 2 लाख करोड़ रुपए कर दिया।
9: ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़, यस। मैंने कमाना 2005 में शुरू किया, निवेश करना 2006 में किया, और सब पैसा इक्विटी में डाल दिया। एंड यू कैन इमेजिन 2008 में आधा हो गया। आपको एक पोर्टफोलियो बनाना चाहिए दाल चावल फंड। एवरीवन एस्पायर्स टू बी अ मैंगो मिलियनेयर। उसको वॉरेन बफेट नहीं बनना, उसको लेट राकेश झुनझुनवाला नहीं बनना। सिर्फ महीने की 1.5 लाख की ऐसा ही 18 साल तक अगर आप करते हैं इक्विटी फंड में, आपके 10 करोड़, क्योंकि आपने वो पैसा डाला मार्केट में, उसने रिटर्न कमाया, रिटर्न के ऊपर रिटर्न कमाया, वो पावर।
10: इकतीस जुलाई को भगवा कपड़े में पप्पू यादव ने चढ़ावा चोरी के खिलाफ संसद परिसर में प्रदर्शन किया। पप्पू यादव के इसी अंदाज की वजह से उन पर हमले की कोशिश की गई। उनका आरोप है कि रविवार को पहले उन पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान चप्पल फेंकी गई, फिर आरोपियों ने चाकू से हमला करना चाहा। तभी समर्थकों ने एक आरोपी को दबोच लिया, वहीं पर जमकर पिटाई की और फिर दिल्ली पुलिस के हवाले कर दिया। मौके से बरामद चाकू भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी दो थे, जिसने पप्पू यादव की तरफ चप्पल फेंकी। वो आरोपी पकड़ा गया, उसका नाम सुमित है। अब तक की जानकारी के मुताबिक बुलंदशहर के रहने वाले सुमित का अब तक कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला है। सुमित अपने दोस्त हैप्पी शर्मा के साथ क्रेडा गाड़ी में मौके पर पहुंचा था। क्रेडा सुमित की अपनी गाड़ी है। सूत्रों के मुताबिक संतों के अपमान को लेकर सुमित नाराज था। ऐसे बवाल के बीच पप्पू यादव ने दावा किया है कि पिछले कुछ दिनों से उन्हें लगातार धमकियां मिल रही हैं।
11: ये कह रहे हैं पप्पू यादव को जिंदा जला दो। हम बोल रहे हैं क्या? दूसरा ये बाबा बोल रहे हैं कि पप्पू यादव को एक सब नहीं रखते, पप्पू यादव को जो मार देगा उसको 11 लाख रुपया देंगे। रात में मेरे बच्चों के घर पे चले गए।
10: पप्पू यादव की लीगल टीम ने गंभीर सुरक्षा चूक बताया और इसके खिलाफ कानूनी टीम अदालत का रुख करने की तैयारी में है। अनमोल बाली, आज तक।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: पर पिट गई बीजेपी। बांकीपुर से शानदार जीत के बाद बोले प्रशांत, 30 दिन में ढह गया 30 साल पुराना किला। सीएम सम्राट पर हमला, आरजेडी की जमानत जब्त। कांग्रेस के हाथ लगा मध्य प्रदेश का दतिया, 6,000 से अधिक वोटों से हार गई बीजेपी। गुजरात के बांझलपुर ने बचाई बीजेपी की इज्जत, 30,000 से अधिक वोटों से जीते सत्येंद्र भाई पटेल। पीएम मोदी का वीडियो हटाने पर मेटा ने मानी गलती, संसदीय समिति की बैठक में मांगी माफी, तकनीकी गड़बड़ी का दिया हवाला, समिति ने जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की। यूपी विधानसभा में मॉनसून सत्र के पहले दिन चढ़ावा, चोरी पर घमासान, विपक्ष की तरफ से जोरदार प्रदर्शन। योगी बोले, जनता को गुमराह न करें, दम है तो विकास पर करें बात। और झारखंड का रांची बना नया जंतर मंतर, जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी। 10 दिन से भूख हड़ताल पर देवेंद्रनाथ महतो, सीबीआई जांच की मांग।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो।
0: आप देख रहे हैं दस्तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी, स्वागत एक बार फिर से आपका दस्तक में। और अब खबर पाकिस्तान की। जी हां, कैसे अब पाकिस्तान में खैबर पख्तूनवा प्रांत के स्वात जिले में आत्मघाती हमले से साफ नजर आ रहा है कि पाकिस्तान के टुकड़े होने जा रहे हैं, सिस्टम फेल हो चुका है। मुनीर का कहर ही अब पाकिस्तान के लिए नासूर बन रहा है। खैबर पख्तूनवा स्वात में हुआ यह हमला यह बताता है कि पाकिस्तान ने जो आतंक बोया अब वो उसी आतंक को काट रहा है। और ये भी सच है कि पाकिस्तान एक साथ आंतरिक आतंक्रवाद और पीओके में बढ़ते जनाक्रोश दोनों से जूझ रहा है। तो आइए दिखाएं आपको कि अब पाकिस्तान का क्या होगा।
2: पीओके में जनता का आक्रोश, खैबर पख्तूनख्वा में आत्मघाती हमला। पाकिस्तान में खूनी बगावत, अब आएगी मुनीर की असली शामत। खैबर पख्तूनख्वा में आत्मघाती हमले का मतलब क्या है? क्यों आत्मघाती हमलावर ने पुलिस स्टेशन को उड़ाने की कोशिश की? क्या खैबर पख्तूनख्वा के हमले के पीछे टीटीपी का बड़ा प्लान है? पाकिस्तान में चार प्रांत हैं, लेकिन कैसे हर तरफ से पाकिस्तान के अंदर अशांति मची हुई है, इसका एक सबूत खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के स्वात जिले में हुआ आत्मघाती हमला भी है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में कथित चुनावों को लेकर लोगों ने आसिम मुनीर और शहबाज सरकार के खिलाफ यलगार छेड़ दी है और पीओके के लोग चुनावों का बहिष्कार कर रहे हैं, तो बलूचिस्तान में विद्रोह की चिंगारी भड़की हुई है। मुनीर का कहर पीओके और बलूचिस्तान में टूट रहा है और लोग आर पार की लड़ाई के लिए सिर पर कफन बांध चुके हैं। और इस बीच अब खैबर पख्तूनख्वा में हुए आत्मघाती हमले ने मुनीर की शामत कंफर्म कर दी है। इस हमले का पूरा सच आपको दिखाएं, उससे पहले आपको आत्मघाती हमले का खौफनाक वीडियो दिखाते हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के स्वात जिले में कबल पुलिस स्टेशन के मुख्य गेट पर हुए आत्मघाती हमले का सीसीटीवी वीडियो सामने है। ये हमला शांति रैली के दौरान हुआ, उस समय वहाँ पुलिस कर्मियों के साथ बड़ी संख्या में लोग भी मौजूद थे। इस धमाके में 15 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 5 पुलिसकर्मी शामिल हैं। सीसीटीवी वीडियो में धमाके के बाद धुआं उठता और लोग जान बचाने के लिए भागते दिख रहे हैं। आपको बता दें कि शांति रैली पुलिस स्टेशन के पास से गुजर रही थी, तभी एक आत्मघाती हमलावर मुख्य गेट के पास पहुंचा और खुद को विस्फोट से उड़ा लिया। धमाका इतना तेज था कि आसपास खड़ी गाड़ियों और इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। कुछ ही सेकंड में पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। अब तक किसी भी आतंकी गुट ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन इसके पीछे टीटीपी का हाथ होने का शक है।
3: बात के अंदर जो हमला हुआ है वो बड़ा वाजे तौर के ऊपर नजर आ रहा है कि सवात वैली में दहशतगर्द हमले ने पुलिस को निशाना बनाया गया, दर्जनों पुलिस पर्सनल जो है वो हलाक और जख्मी हुए हैं। एक तरफ कश्मीर में सियासी बेचैनी है, दूसरी तरफ बलोचिस्तान के अंदर हालात इनके कंट्रोल से बाहर हैं, तीसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हालात इनके कंट्रोल से बाहर हैं, सवात खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है। ये तमाम वाकयात मिलकर पाकिस्तान के सिक्योरिटी मॉडल के ऊपर सवालात उठाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के जर्नलों का ख्याल है कि कोई गल नहीं, हम इसका भी फायदा उठाएंगे और कहेंगे हालात खराब है, सिक्योरिटी एमरजेंसी लगानी है, मार्शल लॉ लगाना है। लेकिन भाई आपका चीफ कहां है? आपका चीफ कहां है जानी? कहानियां जितनी मर्जी कर लो, ठीक है।
2: आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी प्रांत खैबर पख्तूनख्वा में हाल ही में हुए हमलों का कनेक्शन तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी और सुरक्षा बलों के बीच चल रही लड़ाई से है। ऐसे में इस हमले का मकसद पुलिस चौकियों, सुरक्षा मुख्यालयों और शांति रैलियों को निशाना बनाकर पाकिस्तान को झकझोरना है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत की सीमा पश्चिम और उत्तर में अफगानिस्तान से लगती है। इन दोनों के बीच की ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा ऐतिहासिक ड्यूरंड रेखा के रूप में जानी जाती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच भी जंग इस बात को लेकर है। पाकिस्तान कहता है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी के जरिए अफगानिस्तान पाकिस्तान में अशांति फैला रहा है, जबकि अफगानिस्तान का कहना है कि जिस आतंक को पाकिस्तान ने बोया अब वही उसके लिए भस्मासुर बन रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान सबसे ज्यादा आतंक प्रभावित इलाके हैं। देश भर की कुल आतंकी घटनाओं में से 90% इसी इलाके में हुई। और बड़ी बात यह है कि एक रिपोर्ट में तहरीके तालिबान पाकिस्तान को लगातार दूसरे साल पाकिस्तान का सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन बताया गया है। अब एक तरफ तो पाकिस्तान विद्रोह और अपने ही आतंक की आग में झुलस रहा है, दूसरी तरफ आसिम मुनीर एक बड़े गेम प्लान को अंजाम देने की कोशिश में लगे हैं। इस्लामाबाद की सड़कें सील कर दी गई हैं, जगह जगह कंटेनर्स लगा दिए गए हैं और पूरे देश में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन के बीच फिर से एक बहुत बड़े तख्ता पलट की आहट सुनाई दे रही है। पाकिस्तानी फौज के पूर्व मेजर और पत्रकार आदिल राजा से लेकर कई सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अब देश के नए राष्ट्रपति बन सकते हैं। इसके लिए सिस्टम के फेल होने और एक हाइब्रिड सिस्टम वाली सरकार लाने का नैरेटिव पिछले कई दिनों से चल रहा है। इसके तहत ये कहा जा रहा है कि मौजूदा राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को पाकिस्तान से सुरक्षित निकाले जाने का ऑफर दिया गया है। वहीं प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की कुर्सी पर भी खतरा मंडरा रहा है। मोहसिन नकवी को पाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है।
3: GHQ के अंदर प्लान बनाया गया है कि जनाब स्वीपिंग पॉलिटिकल ओवरऑल किया जाएगा और आसिम मुनीर को सदर बना दिया जाएगा और उसके पेशाब को डिक्टेटर को और उसके यूनिफॉर्म के अंदर सदर बनाया जाएगा और तमाम उसके पास पावर भी होगी, वो सिर्फ आसिफ जरदारी की तरह का सदर नहीं होगा और मोहसिन नकवी को वजीर आजम बनाया जाएगा। मोहसिन नकवी इसी सिलसिले में सदर जरदारी से कराची में जाके मिला है और सदर जरदारी ने हमारी इत्तला के मुताबिक बताया कि यार मैं तो मान भी लूं, जारी बात है उसकी फाइलें बहुत सी खुली हुई है, नैप की फाइलें बड़ी खुली हुई है, मेरा बेटा नहीं मानता और उसने तो कोई करप्शन भी नहीं की हुई और वो तो इसके अंदर इन्वॉल्व भी नहीं है। तो उसको कहा गया सदर जरदारी को, मोहसिन नकवी ने कहा कि देखें मैं भी तो आपका बेटा बना हुआ हूं लेकिन ऊपर से अब ऑर्डर ये आ गया है कि बेटे को साइडलाइन करें, बेटे के पर काटें और ये हमारे एग्रीमेंट के ऊपर आप आ जाएं, आपको सेफ एग्जिट मिल जाएगा, दुबई जाके रहना है, उसके अलावा अमेरिका में रहना है, जिधर भी रहना है वो आपको सेफ एग्जिट मिलेगा, नहीं तो आपको सेफ एग्जिट भी नहीं मिलेगा।
2: वैसे भी साल 1947 में आजादी के बाद से आज तक पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि किसी भी चुने हुए प्रधानमंत्री ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं किया है और अब एक बार फिर वही इतिहास दोहराने की कोशिश हो रही है। लोकतंत्र का मुखौटा पूरी तरह उतर चुका है और कमान सीधे तौर पर फौज के हाथ में जाने वाली है और मुनीर की मनमानी शुरू हो गई है। आज तक ब्यूरो।
0: हमारे साथ हमारे साथी प्रणय उपाध्याय हैं, और प्रणय आप हमें ये बताइए कि क्या वाकई पाकिस्तान तख्ता पलट की तरफ बढ़ रहा है? प्रणय
4: देखिए सईद, आप जानते हैं कि पाकिस्तान का फौजी जनरल जब भी ताकत इख्तियार करता है, हासिल करता है, तो उसकी ख्वाहिश या तो अयूब खान बनने की होती है, जनरल जियाउल हक बनने की होती है, या परवेज मुशर्रफ तक वो पहुंचना चाहता है, और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर उस मुकाम तक पहुंच चुके हैं, और अब उनकी कोशिश हो रही है इससे भी ज्यादा ताकत इख्तियार करने की, यानी पाकिस्तान के संविधान के दायरे में रहते हुए, यानी पाकिस्तान के संविधान में उस तरीके के बदलाव करते हुए कि वो न केवल ताउम्र फौजी वर्दी भी पहन सकें बल्कि ताउम्र वो राष्ट्रपति भी बनना चाहते हैं। पाकिस्तान को पर नजर रखने वाले जो जानकार हैं उनका ये मानना है कि पाकिस्तान के अंदर एक अजीब किस्म की जो उथल पुथल इस समय देखने को मिल रही है, जहां एक तरफ पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय पटल के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय छवि बनाने में जुटा हुआ है, जिसकी अगुवाई खुद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कर रहे हैं, उसके साथ साथ घरेलू राजनीति के अंदर भी उथल पुथल मचा हुआ है, और ऐसे में कोशिश हो रही है कि ताकत के जो की जो कड़ियां हैं, ताकत के जो की जो डोरियां हैं उन्हें और कसा जाए। आसिम मुनीर या जनरल हेडक्वार्टर जो रावलपिंडी का है वो अपनी ताकत को और कंसंट्रेट करे, और इसी लिहाज में ये तमाम थ्योरीज चल रही हैं कि पाकिस्तान के गृहमंत्री भी हैं उन्हें प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाए। लेकिन क्या यह मुमकिन होगा? क्योंकि इसके लिए पाकिस्तान की जो मौजूदा नेशनल असेंबली है, उस नेशनल असेंबली के अंदर एक राजनीतिक ताकत जो है वो चाहिए होगी आसिम मुनीर को, तो वो रास्ता कहां से मिल सकता है? उसके लिए थ्योरीज चल रही हैं पाकिस्तान के अंदर, जो कयासों का बाजार है वो गर्म है इस चीज को लेकर कि इमरान खान को बाहर निकाला जा सकता है, लेकिन इस शर्त के साथ कि पीटीआई जो है उसके जो नुमाइंदे हैं, उसके जो सांसद हैं वो समर्थन कर दें और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इस तरीके से किया जा सके। तो ये बहुत सारी थ्योरीज चल रही हैं, लेकिन अभी भी जो पाकिस्तान में है, जो इस समय सत्ता पर काबिज है, वो उसे हाइब्रिड निजाम कहा जाता है। खुद पाकिस्तान के अंदर इन चर्चाओं के अंदर इसका नाम हाइब्रिड निजाम के तौर पर लिया जाता है, यानी जनता के चुने हुए नुमाइंदे, लेकिन पीछे से उन सब की डोरियां जो हैं वो संचालित होती हैं पाकिस्तान के सेना मुख्यालय से। और हमने देखा है कि साल दर साल, मुकाम दर मुकाम जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं उनकी न केवल राजनीतिक ख्वाहिशें बढ़ी हैं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी उनकी हसरतें जो हैं वो अब बढ़ती चली जा रही हैं, और शायद उन्हें ऐसा लगता है कि अमेरिका फिलहाल उनके साथ भी है और ईरान की जंग में फंसे अमेरिका को उनकी ज़रूरत भी ज़्यादा है, इसलिए उस ज़रूरत को वो अपनी घरेलू राजनीति के अंदर भुनाने की कोशिश करने में लगे हैं।
0: और अब खबर अमेरिका ईरान युद्ध में युद्ध विराम की। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि मिडिल ईस्ट के सहयोगियों के कहने पर उन्होंने ईरान पर सबसे बड़ा हमला टाल दिया। अब ईरान के साथ बातचीत होगी, लेकिन ईरान ने ट्रंप के साथ किसी भी तरह की बातचीत को रद्द कर दिया। ईरान ने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया कि अमेरिका के साथ कोई भी बातचीत हमारी नहीं होगी, हम बातचीत नहीं करेंगे। अब सवाल यह है कि ईरान अगर कोई बात नहीं करेगा तो ट्रंप ने हमला क्यों टाला? क्या ईरान की उस धमकी से ट्रंप डर गए? जैसे ईरान सच्चाई में बदल देता तो पूरे मिडिल ईस्ट में तबाही मच जाती।

0: ट्रंप का ऐलान, ईरान पर हमला रोका। ट्रंप बोले बातचीत होगी, ईरान का इनकार। क्या ईरान की धमकी से डर गए ट्रंप? क्या धमकी की वजह से ट्रंप का यू टर्न? ट्रंप के हमला रोकने की इनसाइड स्टोरी। हमला करते तो ईरान मचा देता महातबाही। ये वही अमेरिकी राष्ट्रपति हैं जो बीते कुछ दिनों से लगातार ईरान पर सबसे बड़े हमले की धमकी दे रहे थे। अमेरिकी मीडिया में छपी रिपोर्ट में यही कहा गया है कि इजराइल और अमेरिका मिलकर एक बार फिर हमला करने वाले हैं। ये वही दावा है जिसके संकेत ट्रंप ने तमाम इंटरव्यूज में दिए थे।
1: Next week it gets really bad for them because next week comes the power plants, next week comes the bridges. We're going to knock out all their power plants, we're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate.
0: ईरान पर हमले की आशंका को इराक पर सऊदी अरब और अमेरिका की संयुक्त सैन्य कार्रवाई ने बढ़ा दिया, लेकिन बीते 48 घंटों में ऐसा क्या हुआ कि अमेरिकी राष्ट्रपति को अपनी धमकी से एक बार फिर यू टर्न लेना पड़ा?
1: Well, now what we're doing is we're talking to them in the form of a negotiation. It begins tomorrow afternoon, and we'll see if it's true. I'd love to do that, save a lot of lives, save a lot of unnecessary power, to be honest with you. It would take many, many years to ever build it back. If it could, I don't think it would be even buildable back. So we had an attack that would be the biggest attack since World War II, and it would have been disasters for them, and they didn't want us to do it. And frankly, Saudi Arabia didn't want it either. They thought that a deal is imminent.
0: अमेरिकी राष्ट्रपति का दावा है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वो सबसे बड़ा हमला ईरान पर करने वाले थे। हमले का ट्रायल भी शुरू कर दिया था। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक बीते गुरुवार को अमेरिकी सेना ने ईरान के केशम द्वीप पर 907 किलो का Mark 84 बम गिराया था। Mark 84 को अमेरिकी सेना के सबसे बड़े पारंपरिक बमों में गिना जाता है। अगर अमेरिकी सेना सबसे बड़े हमले के लिए तैयार थी तो अचानक ट्रंप ने हमला क्यों रोक दिया? क्यों ईरान के साथ एक बार फिर बातचीत की टेबल पर आ गए? तो इसका जवाब है ईरान की सबसे बड़ी धमकी। ईरान के नूर न्यूज में ईरानी सेना के हवाले से छपी खबर में धमकी दी गई थी कि अगर अमेरिका ने इसराइल के साथ मिलकर ईरान के पावर प्लांट या एटमी सेंटर पर हमला किया तो ईरान भी पलटवार करेगा। पलटवार के लिए ईरान ने खतरनाक प्लान तैयार कर रखा है। प्लान के मुताबिक ईरान की तैयारी सऊदी अरब और यूएई की ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बनाने की थी, साथ ही कतर और इसराइल की रिफाइनरी पर सबसे विनाशकारी हमले होते। ईरानी सेना से जुड़ी समाचार एजेंसी तस्नीम ने बाकायदा ईरान की हिट लिस्ट जारी कर दी। ईरान की हिट लिस्ट में सऊदी अरब का घाबर ऑयल फील्ड, अपकैक ऑयल फैसिलिटी जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी है, और खुरैस ऑयल फील्ड था। ये तीनों सऊदी अरब के ऑयल प्रोडक्शन के सबसे बड़े सेंटर हैं। ईरान के निशाने पर यूएई की जाकुम ऑयल फील्ड और रुवैस रिफाइनरी थी। तो वहीं कतर में मौजूद दुनिया के सबसे बड़े नेचुरल गैस फील्ड को निशाना बनाने की तैयारी थी। ईरान की मिसाइलें रास लफान इंडस्ट्रियल एरिया पर तबाही मचा देती। मतलब यही है कि अगर अमेरिका हमला करता तो ईरान का प्लान बहुत खतरनाक था, लिहाजा अमेरिकी राष्ट्रपति को हमले का प्लान ठंडे बस्ते में डालने के लिए मजबूर होना पड़ा।
1: We were all set to go just about at this time right now, and it would have been a massive attack. We're all set to go, but when the allies ask to call it off, you got to sort of say, well, let's see. And the reason they asked is I think there's a deal. There's a deal on Hormuz, and then there will be a deal on the nuclear, or you might call it the denuclearization of Iran. I call it the denuclearization of Iran.
0: दरअसल ईरान की धमकी के बाद मिडल ईस्ट के तमाम मुल्कों ने ट्रंप से संपर्क किया, क्योंकि ईरान के विदेश मंत्री ने मिडल ईस्ट के देशों को अपना खतरनाक प्लान बता दिया था। अगर अमेरिका ने हमला किया तो ईरान अब मिडल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को नहीं बल्कि उनके गैस और तेल के प्लांट्स को निशाना बनाएगा। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ट्रंप ने यू टर्न लेने से पहले सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बातचीत की। वहीं ईरान ने साफ कर दिया है कि अभी अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। अगर अमेरिका ने हमला किया तो ईरान पलटवार के लिए तैयार है। जब तक अमेरिका अपने उल्लंघन जारी रखता है तब तक होर्मुज के हालात में कोई अहम बदलाव नहीं होगा। ईरान की आने वाले दिनों में अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल का स्वागत करने या अमेरिकी अधिकारियों से मिलने के लिए ईरानी प्रतिनिधि मंडल भेजने की कोई योजना नहीं है। ईरान ओमान के साथ होर्मुज के माध्यम से एक नया रास्ता बनाने पर चर्चा कर रहा है, जिसमें एंट्री और एग्जिट लेन के साथ साथ एक एकल गलियारा शामिल होगा। दूसरी तरफ ईरान के प्रमुख अखबार कायान में छपी एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि महज 12 घंटे में मिडल ईस्ट के देशों को ईरान सरेंडर करने के लिए मजबूर कर देगा। अगर ईरान के बुनियादी ऊर्जा ढांचे पर हमला होता है तो वो 12 घंटे के अंदर मिसाइल हमलों से अरब देशों को संकट में डाल सकता है। ईरान के बुनियादी ऊर्जा ढांचे को नुकसान पहुंचाने से सेवाएं कम हो जाएंगी लेकिन पूरी तरह से बंद नहीं होंगी, जबकि अरब देशों को इसके विपरीत स्थिति का सामना करना होगा। ईरान ने अमेरिका के साथ किसी तरह की बातचीत पर ब्रेक लगा दिया है। तुर्की की सरकारी समाचार एजेंसी में छपी रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिका और ईरान के बीच सीधी बातचीत फिर से कब शुरू होगी अभी तारीख तय नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और ईरान शुरू में मध्यस्थों के जरिए ये अप्रत्यक्ष वार्ता करेंगे, जिसमें ईरान के एटमी प्रोग्राम को लेकर कोई चर्चा नहीं होगी। ईरान ने आर पार की जंग का ऐलान करते हुए अपनी लक्ष्मण रेखा खींच दी है। अब अमेरिका के साथ तभी बातचीत होगी जब अमेरिका अपनी शर्तों से पीछे हटेगा। ईरान न तो अपने परमाणु प्रोग्राम पर चर्चा करेगा और न ही अपने मिसाइल कार्यक्रम को रोकेगा। ईरान ने साफ कर दिया है कि जब तक अमेरिका युद्ध विराम के एमओयू में किए गए वादों को पूरा नहीं करता तब तक बातचीत की संभावना नहीं है। आज तक ब्यूरो।
2: दर्शक में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: When your cat is acting weirder, or your dog is being louder, your turtle moves slower.
6: Hello, Ted.
5: Your cat seems thirstier.
7: Whoa, slow down, buddy.
5: Or your puppy is acting clumsier. Day or night, if you don't know what's wrong, know where to go.
6: Veg ER for pets. This is Kate.
5: Veg, the better, kinder ER for pets.
8: Some mysteries lie beneath the ocean, others beyond the stars. Explore Earth's wildest places on Earth Day 365. Uncover nature's greatest mysteries and experience breathtaking IMAX theater documentary films. Watch Earth Day 365 free now on the Roku channel, LG channels, Amazon Fire, and more.
9: I'm Pamela Anderson. Explore your world every day on Earth Day 365.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुमा केसरी।
1: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
2: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
3: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
4: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों,
5: कुछ तो बात है इस दिल में।
6: In association with
7: Sera Sanitaryware, it's your moment of Sera. E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
1: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
2: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
3: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
4: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: चुनावों के दिग्गज रणनीतिकार की पहचान रखने वाले प्रशांत किशोर यानी पीके ने खुद की सियासी पारी से मानो अचानक बिहार का सियासी समीकरण बदल दिया है। कहने को तो बांकीपुर बिहार की सिर्फ एक विधानसभा सीट का उपचुनाव है, जिससे न राज्य की सम्राट चौधरी सरकार की सेहत पर फर्क पड़ेगा और केंद्र की बात तो दूर की कौड़ी है। लेकिन बांकीपुर में पीके के प्रदर्शन को सिर्फ एक हार जीत में नहीं देखा जा रहा। पीके खुद पहली बार चुनाव मैदान में उतरे हैं। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये बिहार में पहला चुनाव है। बांकीपुर नितिन नवीन की परंपरागत सीट रही है, जिसे उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद छोड़ी है। ये वो सीट है जिसे 1995 के बाद से बीजेपी कभी नहीं हारी थी। पीके अपने प्रदर्शन को बिहार में सकारात्मक राजनीति को मिला समर्थन कह रहे हैं। उनके निशाने पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं।
6: रेफरेंडम है ये सम्राट चौधरी पे?
7: बिल्कुल, वो तो है।
6: आप बार बार कह रहे थे जनमत संग्रह है ये।
7: बिल्कुल, सम्राट चौधरी के नेतृत्व को बिहार की जनता स्वीकार्य नहीं करती है, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। कि भाजपा ने चुनाव जीतने के बाद यहाँ पर एक अपराधी प्रवृत्ति के आदमी को, एक गलत चाल चरित्र के चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व दिया है, जो बिहार के लोगों को स्वीकार्य नहीं है।
5: बांकीपुर में पीके का प्रदर्शन न सिर्फ बीजेपी के उम्मीदवार नीरज कुमार पर भारी पड़ा है, बल्कि आरजेडी के लिए बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि आरजेडी कैंडिडेट रेखा कुमारी मुकाबले में कहीं नहीं टिकी है। यानी अचानक पीके की मौजूदगी इस विश्लेषण को भी मजबूत करेगी कि क्या वो बिहार की राजनीति का मजबूत विकल्प है।
8: भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा ही एक सुनने को मिला, जो आप भी प्रश्न में पूछ रही थी कि हम कुत्ता बिल्ली को भी दे देंगे तो वहां से जीत जाएगा। लेकिन भैया, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कुत्ता बिल्ली पे विश्वास नहीं किया है, वो एक लोमड़ी दे दिया है।
9: लोमड़ी दे दिया है
8: प्रशांत किशोर के रूप में,
9: यानी कि जो जीते प्रशांत किशोर लोमड़ी है।
8: बस बिल्कुल, और उनको जिता दिया गया। तो जो नीरज सिन्हा जी थे वो असली उम्मीदवार नहीं है भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी का असली उम्मीदवार प्रशांत किशोर जी है।
5: हालांकि 2025 के बिहार चुनाव में पीके की पार्टी जनसुराज का खाता नहीं खोला था, जबकि पार्टी ने लंबी तैयारी के बाद बिहार चुनाव लड़ा था। वैसे अब नई शुरुआत हुई है और राज्य में पीके के दांव बड़े हो सकते हैं। काउंटिंग शुरू होने से पहले खुद पीके ने बांकीपुर के चुनाव को सम्राट सरकार के खिलाफ रेफरेंडम कहा था।
10: सम्राट जी को डरने की जरूरत कल परिणाम आने के बाद है, क्योंकि हम लोगों ने कहा है कि कल का जो चुनाव है वो सम्राट सरकार पर रेफरेंडम है। अगर कल भाजपा हारी तो सम्राट चौधरी को उसकी नैतिक जिम्मेवारी लेनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। अगर नहीं लेंगे तो भाजपा वाले खुद ही उनको हटाएंगे, हमको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं।
5: बांकीपुर के अलावा मध्य प्रदेश के दतिया में भी बीजेपी को झटका लगा है। सिर्फ गुजरात के मंजलपुर विधानसभा के उपचुनाव में बीजेपी दमदार प्रदर्शन के साथ जीत सकी है, इसीलिए इसे संकेत और संदेश के चुनाव के तौर पर भी देखा जा सकता है। आज तक ब्यूरो,

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अब से कुछ क्षणों में वारदात लेकर हमारे साथी शम्स होंगे आपके साथ। आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

विपक्ष की सीट पर पिट गई पार्टी। बांकीपुर से शानदार जीत के बाद बोले प्रशांत, 30 दिन में ढहा दिया 30 साल का पुराना किला। सीएम सम्राट पर किया कड़ा हमला, आरजेडी की जमानत जब्त। कांग्रेस के हाथ लगा मध्य प्रदेश का दतिया, यहां भी 6000 से ज्यादा वोटों से हार गई बीजेपी। गुजरात के मांजलपुर ने बचाई बीजेपी की इज्जत, 30,000 से ज्यादा वोटों से जीत गए सत्येंद्र भाई पटेल। प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो हटाने पर मेटा ने माने गलती, संसदीय समिति की बैठक में माफी भी मांगी। तकनीकी गड़बड़ी का दिया हवाला, समिति ने जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। यूपी विधानसभा में मॉनसून सत्र के पहले दिन चढ़ावा, चोरी पर घमासान, विपक्ष की तरफ से जोरदार प्रदर्शन। योगी बोले जनता को गुमराह न करें, दम है तो विकास पर बात करें। झारखंड का रांची बना नया जंतर मंतर, जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी, 10 दिन से भूख हड़ताल पर देवेंद्र नाथ महतो, सीबीआई जांच की मांग।

0: नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। एक स्कूल की वार्डन और तीन बेटियों की मां की मौत हो जाती है। पुलिस से लेकर निचली अदालत तक यही कहती है कि उसने खुदकुशी की है, लेकिन तीनों बेटियां ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि उनकी मां इस तरह दुनिया में उन्हें अकेला छोड़कर जा सकती है। बस इसी के बाद मां की मौत का सच सामने लाने के लिए तीनों बेटियों की जद्दोजहद की जो कहानी शुरू होती है, वो आप में से हर एक को सुननी चाहिए। देश की अलग अलग अदालतों ने न जाने कितने ही फैसले सुनाए होंगे, लेकिन ये वो तारीख थी जब पटना हाई कोर्ट ने मौत की एक पहेली को सुलझाने के लिए एक केस में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। ऐतिहासिक इसलिए कि अमूमन ऐसे मामलों में अदालतें जांच कमेटी SIT, न्यायिक आयोग CID, CBI से जांच कराने का हुक्म देती है, लेकिन यह पहली बार था जब पटना हाई कोर्ट बाकायदा एक IPS अफसर का नाम लेती है और कहती है कि मौत की इस पहेली को सुलझाने की जिम्मेदारी उसी IPS अफसर को सौंपी जाए। इतना ही नहीं, हाईकोर्ट ये भी आदेश देती है कि जांच के लिए वो IPS अफसर खुद एक SIT यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाएंगे और उस टीम के सदस्यों को भी खुद चुनेंगे। पटना हाईकोर्ट ने जिन IPS अफसर का नाम लेकर उन्हें जांच की जिम्मेदारी सौंपी, वो ये है। बिहार के मगध रेंज के IG यानी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस विकास वैभव।
1: इस प्रकार के आदेश सामान्यता नहीं दिए जाते हैं, तो माननीय उच्च न्यायालय ने इतना ही नहीं कहा, उन्होंने ये भी कहा कि अपनी टीम के सदस्य भी आपको खुद चुनना है। तो टीम के सदस्य भी चुने गए हैं, अलग अलग बिहार के अलग अलग इकाइयों में आज काम कर रहे हैं, जिन पर मुझे विश्वास है कि अच्छे से इस केस को इन्वेस्टिगेट करके सही कंक्लूजन तक ले जाएंगे।
0: तो पटना हाईकोर्ट के ऐतिहासिक फैसले की जानकारी तो आपको मिल गई। अब सवाल ये है कि आखिर मौत की वो पहेली है क्या,

0: बेगूसराय खगड़िया रेंज के डीआईजी हैं, कई डीएसपी हैं, इंस्पेक्टर हैं, जो अभी घटनास्थल पर पहुंची है और लगातार आज दिन भर बेगूसराय डीआईजी कार्यालय में उनके परिजनों से बातचीत की, उनकी बेटियों से बात की गई कि किस तरह से उस वक्त घटना हुई थी, क्या क्या इनका आरोप है, इस बात को लेकर पूछताछ की गई है, जिसके बाद एसआईटी की टीम अभी घटनास्थल का मुआयना करने के लिए कस्तूरबा विद्यालय पहुंची है।
1: तो एसआईटी की टीम ने अपनी जांच शुरू कर दी, पर सवाल ये है कि 5 साल पुराने क्राइम सीन से एसआईटी को नए सबूत कहां से मिलेंगे। और उससे भी बड़ा सवाल ये कि 5 साल तक इस स्कूल की वार्डन रिंकू की मौत की पहेली ही बनकर क्यों रह गई। जो काम लोकल पुलिस का था उसे एसआईटी को क्यों करना पड़ रहा है, आखिर मामला एक आम मौत का ही तो है। तो इन सवालों के जवाब जानने से पहले आपको इन 3 लड़कियों से मिलना जरूरी है। ये तेजस्वनी है, ये चेतना और ये लूसी। ये तीनों कोई और नहीं, वार्डन रिंकू कुमारी की 3 बेटियां हैं। इनकी पूरी दुनिया बस इनकी माँ थी, क्योंकि पिता है नहीं। यही वो 3 बेटियां हैं जो बीते 5 सालों से सिर्फ एक जिद पकड़े हुए थी, और वो ये कि उनकी माँ कभी खुदकुशी कर ही नहीं सकती। न वो इतनी कमजोर थी और न ही वो अपनी 3 बेटियों को यूं अनाथ छोड़कर जा सकती थी। असल में इन्हीं 3 बेटियों की पूरी कहानी है ये। कहानी इनके हौसलों की, कहानी इनके जज्बों की, कहानी हार न मानने की और कहानी पूरे सिस्टम से लड़ जाने की।
2: हमें घटना के दिन से ही कोई संदेह नहीं था कि ये आत्महत्या है, ये हमें पूर्ण भरोसा था कि ये हत्या ही है। वो बहुत ही साजिश के तहत ये हत्या किया गया है। हमारी माँ कभी आत्महत्या कर ही नहीं सकती है, वो इतनी वो काबिल और इतनी वो टैलेंटेड थी, और वो निर्मम हत्या किया गया। जिस तरह 5 साल हम 3 बहन तड़पे हैं, आखिर हमारी गुहार को सर तक पहुँचे हैं, और हम पता है, हमें भरोसा है कि हमें न्याय मिलेगा।
1: बात 4 अप्रैल 2021 की है, तब कोरोना पूरे देश में फैला हुआ था, 2 गज की दूरी थी और देश के साथ साथ स्कूल भी बंद। पर रिंकू स्कूल की वार्डन थी, इसीलिए वो उस दिन स्कूल पहुंची। उसी दिन दोपहर 1 बजे स्कूल के इसी क्लासरूम में रिंकू की लाश पंखे से झूलती मिली।
3: दोपहर 1 बजे के आसपास हम लोगों को सूचना आई कि आपकी माँ ने आत्महत्या कर ली। फिर हम लोग जब मम्मी के स्कूल पे पहुंचे, कस्तूरबा और आवासीय विद्यालय पहुंचे, तो वहां पे देखे मेरी माँ का शव फर्श पे लिटाया हुआ है। फर्श पे लिटाया हुआ देखे और पुलिस प्रशासन और अन्य लोग जो वहां पे फोटोग्राफी किए थे वो सब हम लोगों को दिखाए, तो उसमें देखे कि मेरी माँ का शव गले में 2 फंदे का निशान था, एकदम गाढ़ा करके एक निशान था, और एक जो टांग के गया था उसका निशान था। तो हम लोगों और फिर घुटने के बल बैठी हुई थी, तो हम लोगों को पूरा विश्वास हो गया कि वो आत्महत्या नहीं, हत्या किया गया है। और इस चीज के लिए हम हर दरवाजे पे जाके खटखटाए, सबको आग्रह किए कि सर ये आत्महत्या नहीं, हत्या है। फिर आयो समरेंद्र कुमार FIR दर्ज करते हैं और FIR में लिख देते कहते हैं कि हम जैसा बोल रहे वैसा लिखो, नहीं तो हम FIR दर्ज नहीं करेंगे। इसके लिए भी हम हर जगह पे बोले, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं थे।
1: लोकल पुलिस ने पहले दिन से ही केस का खून कर डाला था, जांच की नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आधी अधूरी थी, जिसमें बस इतना लिखा था कि सांस रुकने से मौत हुई है। शुरू में तो पुलिस ने फॉरेंसिक टीम भी नहीं बुलाई, बाद में बुलाई भी तो उनकी सलाह ही नहीं मानी। शायद पुलिस ठान चुकी थी कि वो रिंकू की वही मौत दिखाना चाहती है जो उसे पसंद है।
4: SIT के द्वारा जब इस घटना का अनुसंधान प्रारंभ किया गया 13 जुलाई 2026 को, तो सबसे पहले पाया गया कि घटना के तुरंत बाद फोरेंसिक टीम के द्वारा उस घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था और फोरेंसिक टीम के द्वारा ओपिनियन दिया गया था कि घटना का कारण स्ट्रेंगुलेशन, लेकिन तत्कालीन जो आयु थे उनके द्वारा इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आधार बनाते हुए ही मुख्य रूप से अनुसंधान में अन्य विषयों पर नहीं ध्यान देते हुए इस केस का अनुसंधान बंद कर दिया गया।
1: हैरत की बात यह थी कि 4 अप्रैल 2026 को जिस दिन रिंकू की मौत हुई उस दिन स्कूल का CCTV कैमरा कुल 1.5 घंटे के लिए खराब रहा। जब ये सारी चीजें हुई 1.5 घंटे बाद हैरतअंगेज तौर पर CCTV कैमरा भी अपने आप ठीक हो गया, लेकिन इस हैरत या चमत्कार पर लोकल पुलिस ने जरा सा भी ध्यान नहीं दिया, वरना क्या पता शायद उसी दिन मौत की ये पहेली सुलझ जाती।
2: 4421।

0: को मेरी माँ कस्तूरबा विद्यालय में आई है और आने के बाद सीसीटीवी कैमरा बंद हो गया है। और बबलू कुमार का कहना है 12 बजे वो आया है और 1:30 बजे वो सीसीटीवी कैमरा चालू हुआ है। ये 1.5 घंटे का अंतराल वो बताएगा।
1: खैर, तीनों बेटियों की बार बार की गुहार के बावजूद लोकल पुलिस ने रिंकू की मौत को खुदकुशी बताकर केस बंद कर दिया। बाकायदा कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट भी दाखिल कर दी। लगा अब सब कुछ खत्म, लेकिन तब नई नई कॉलेज में पहुंची रिंकू की दोनों बड़ी बेटियां तेजस्विनी और चेतना ने अपनी छोटी बहन लूसी के साथ मिलकर ये तय किया कि वो अपनी माँ की मौत का सच जमाने के सामने लाकर रहेगी। इसी के बाद इनकी जद्दोजहद शुरू होती है, एक तरफ ग्रेजुएशन की पढ़ाई और दूसरी तरफ इंसाफ की लड़ाई। इन तीनों बहनों ने बिहार पुलिस का शायद ही कोई ऐसा अफसर हो जिसके दर पर हाजिरी न लगाई हो, मगर हर तरफ से नाउम्मीदी ही हाथ लगी।
2: पुलिस समरेंद्र कुमार इस चीज को बता दिया कि आत्महत्या है, क्योंकि वो भी मिले हुए थे इसमें। हमें पूरा भरोसा है कि वो भी मिले हुए थे, क्योंकि उस टाइम बहुत ऐसे एविडेंस थे जिससे पता लग सकता था, प्रूव हो सकता था तुरंत का तुरंत कि ये हत्या ही है। लेकिन उसने उसका सब चीज, सारे एविडेंस को समरेंद्र कुमार और उसके साथियों ने मिलके, जो भी इसमें था मिला हुआ, सबने उस प्रूफ को, सारे एविडेंस को उसने डिलीट कर दिया, उसने खत्म कर दिया। ये उसी टाइम सिद्ध हो जाता कि यह हत्या ही है, लेकिन नहीं, उसने दबाते गया है। और हम लोग का बेगूसराय में हर जगह अपना गुहार लगाए, लेकिन हम पीड़ित परिवार का उस समय नहीं सुने।
1: पुलिस से मायूस होकर एक वक्त ऐसा भी आया जब तीनों बहनें बेगूसराय लोअर कोर्ट पहुंची, पर कमाल देखिए कि एक भी सुनवाई किए बगैर बस तारीख पे तारीख देते हुए बिना तीनों बहनों को सुने हुए निचली अदालत ने भी यह मान लिया कि पुलिस की जांच सही थी और उनकी मां रिंकू ने खुदकुशी ही की थी।
2: हमारी माँ कभी आत्महत्या कर ही नहीं सकती है, वो इतनी वो काबिल और इतनी वो टैलेंटेड थी। और वो निर्मम हत्या किया गया, जिस तरह 5 साल हम तीनों बहन तड़पे हैं, आखिर हमारी गुहार को सर तक पहुँचे हैं।
0: हताश निराश हो गए थे जब हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हम लोगों को न्याय नहीं मिला, कोर्ट केस को खारिज कर दी थी, तब हम लोग फिर पूरा तरह से निराश हो गए।
1: पहले पुलिस फिर निचली अदालत का फैसला किसी की भी हिम्मत तोड़ कर रखते, और ये तो बच्चियां थी पर हारी नहीं। निचली अदालत से मायूस होने के बाद अब तीनों बहनें बिहार की सबसे बड़ी अदालत का रुख करती हैं, यानी पटना हाई कोर्ट। 5 साल से अपनी मां की मौत से जुड़े हर दस्तावेज इन तीनों बेटियों ने संभाल रखे थे। उन्हें देखते ही हाईकोर्ट को पहली नजर में ही लग जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर पूरे 5 साल की जद्दोजहद के बाद इस साल 8 अप्रैल को पहली बार तीनों बहनों को इंसाफ की लौ नजर आती है।
0: माननीय उच्च न्यायालय से हम लोगों को आदेश आया और आदेश में हम लोगों को थोड़ा सा खुशी हुई कि हम लोगों का बात कोई रखे हैं। और उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारी आकांक्षा मैम एडवोकेट हैं हाई कोर्ट की, आकांक्षा मालवीय, उसके बाद हमारे संदीप साहिल सर हैं जिन्होंने हमारे लिए आवाज उठाया, और उसके बाद सबसे बड़ा योगदान और सहयोग हमारे आईजी विकास वैभव सर, एसआईटी टीम, पूरे एसआईटी टीम का सहयोग है जिसमें आईजी विकास वैभव सर हैं, शैलेश कुमार सिन्हा सर हैं और अभिनव सर हैं, अलय वर्ष हैं, बाकी जो भी एसआईटी टीम है उन सब का बहुत बहुत आभार।
1: हाईकोर्ट के आदेश के बाद आईजी विकास वैभव की अगुवाई में 13 जुलाई को जांच शुरू होती है और सिर्फ 15 दिन के अंदर एसआईटी उस पहेली को सुलझा देती है जो बीते 5 सालों से अनसुलझी थी।
3: एसआईटी के द्वारा जब इस घटना का अनुसंधान प्रारंभ किया गया 13 जुलाई 2026 को, तो सबसे पहले पाया गया कि घटना के तुरंत बाद फोरेंसिक टीम के द्वारा उस घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था और फोरेंसिक टीम के द्वारा ओपिनियन दिया गया था कि घटना का कारण स्ट्रेंगुलेशन, लेकिन तत्कालीन जो आयु थे उनके द्वारा इस बात पर ध्यान नहीं दिया गया था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को आधार बनाते हुए मुख्य रूप से अनुसंधान में अन्य विषयों पर नहीं ध्यान देते हुए इस केस का अनुसंधान बंद कर दिया गया।
1: रिंकू की मौत को पहेली बनाने वालों में पुलिस के साथ साथ वो डॉक्टर भी शामिल था जिसने पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की। एसआईटी ने उस डॉक्टर से भी पूछताछ की, फिर बाकायदा एक मेडिकल बोर्ड से राय।
3: अभी जो हम लोगों ने इस केस का नए सिरे से अनुसंधान किया तो फोरेंसिक टीम का भी एग्जामिनेशन किया गया किस आधार पर उनके द्वारा ऐसे ओपिनियन को दिया गया। इस पर जो पूछताछ की गई तो अनेक महत्वपूर्ण बातें प्रकाश में आई। डॉक्टर जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था उनका भी जो एग्जामिनेशन किया गया और उनको फोरेंसिक टीम के साथ कन्फ्रंट किया गया जो बातें थी, तो नई बातें प्रकाश में आई, जिसमें कि जिन डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम किया था उन्होंने भी बताया कि ये होमिसाइडल हैंगिंग हो सकती है। तब मेडिकल बोर्ड के पास ओपिनियन के लिए जब मामले को भेजा गया तो और स्पष्ट हो गया कि स्ट्रैंगुलेशन के कारण ही हत्या हुई।
1: अब रिंकू की मौत का बाकी का सच जानने के लिए एसआईटी ने एक एक कर सारे चश्मदीदों से पूछताछ की। उस दिन स्कूल कौन कौन आया, कब गया, सारी जानकारी इकट्ठा की।
3: घटनास्थल पे साक्ष्य देने के लिए अनेक अपील हम लोगों ने पब्लिक में की थी। इन अपील के कारण इस केस से जुड़े बड़े अत्यंत महत्वपूर्ण फोटोग्राफ हम लोगों को मिले और अनेक ऐसे साक्षी उपस्थित हुए जिसमें प्रत्यक्षदर्शी साक्षी जो उस घटनास्थल पर घटना के समय उपस्थित हुए थे उनका भी बयान देने का एसआईटी को अवसर मिल पाया और साथ में टेक्निकल जो एविडेंस उस समय कलेक्ट हुए थे उनका भी हम लोगों ने निरीक्षण किया। ऐसे साक्षी जिन्होंने अभियुक्तों को देखा था जाते समय, उतरते समय, विद्यालय में प्रवेश करते समय, उनका भी बयान ले दिया गया।
1: अब तस्वीर पूरी तरह से साफ हो चुकी थी और कहानी सामने थी, वही कहानी जो बीते 5 सालों से रिंकू की 3 बेटियां कह कह कर थक चुकी थी। कहानी पूरी कुछ यूं थी। रिंकू ने इलाके के एक शख्स कौशल को 15 लाख रुपए दिए थे जमीन के लिए। वो पैसे लौटा नहीं रहा था। फिर मामला पंचायत तक गया। तय ये हुआ कि 4 अप्रैल 2021 को दोपहर 1 बजे कौशल पंचायत के सामने 15 लाख रुपए रिंकू को लौटाएगा। लेकिन उस दिन 1 बजे पैसे तो नहीं मिलते, रिंकू की मौत की खबर जरूर मिल जाती है।
0: मेरी माँ का 15 लाख रुपए का कौशल कुमार से लेन देन चल रहा था, जमीन के लिए वो पैसा दी थी, लेकिन ना हम लोगों को जमीन मिला ना पैसे मिले। फिर मेरी माँ जिन जिन से पैसे लिए थे उन सब का जोर पड़ने लगा मेरी माँ पे, तो उन लोगों का कह, फिर मेरी माँ ने कौशल कुमार को कहा कि मुझे मेरा जमीन दे दो या फिर मेरा पैसा लौटा दो। फिर 4/4/21 को पैसा देने का वादा किया था कौशल कुमार ने, और हम लोगों को 1 बजे के आसपास हम लोगों को सूचना आई कि आपकी माँ ने आत्महत्या कर ली।
3: जो मृतिका थी उनका अपने उनके पड़ोसी हैं कौशल कुमार, जिनसे लंबे समय से लेन देन पैसों की चल रही थी और मृतिका के द्वारा मांग भी की गई थी जिसके पुष्ट प्रमाण मिले हैं। इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिनसे लेन देन का विवाद चल रहा था, कौशल कुमार और विद्यालय के केयर टेकर अजीत कुमार बबलू, जिनके द्वारा इस घटना में घटना के समय उपस्थित होने की बात अनुसंधान में प्रकाश में आई है। इस घटना में अनेक ऐसी बातें थी जो इस घटना को और संदिग्ध बना रही थी। सीसीटीवी फुटेज बंद था और पुलिस का जो अनुसंधान हुआ था उसमें आईओ के द्वारा अनेक महत्वपूर्ण साक्ष्यों को संकलित नहीं किया गया जो अपने आप में एक अनुसंधान का बिंदु है। तो इन बिंदुओं पर हम लोग जांच कर रहे हैं और अभी 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, सभी साक्ष्यों के साथ माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहे हैं और अन्य बिंदुओं पर भी जांच चल रही है।
1: रिंकू के कत्ल के इल्जाम में कौशल के अलावा जिस दूसरे शख्स अजीत कुमार उस बबलू को गिरफ्तार किया गया है वो इसी स्कूल का केयरटेकर है। 4 अप्रैल 2026 को जब रिंकू स्कूल पहुंची उसके कुछ देर बाद ही बबलू ने सीसीटीवी कैमरा बंद कर दिया। इसी के बाद स्कूल के पिछले रास्ते से कौशल अंदर आया और फिर दोनों ने मिलकर इसी कमरे में रिंकू की गला घोंटकर हत्या कर दी। फिर इसे खुदकुशी का रंग देने के लिए गले में फंदा डालकर उसे पंखे से लटका दिया। लंबे 5 सालों बाद तीनों बहनों को अब जब इंसाफ मिला तो पहली बार पुलिस के लिए उनके मुंह से थैंक यू निकला।
4: थैंक यू सर,
5: आपका बहुत ज्यादा सहयोग है
4: सर। 5 साल हम लोग किस तरह गुजारे हैं, जिंदगी किस तरह जिए हैं तीनों बहन हम लोग जानते हैं, और आप सब जल्दी इसका खुलासा कर दिए, इसके लिए हम हमेशा आभारी रहेंगे।
1: सौरभ कुमार, बेगूसराय, आज तक। बिहार के एक नगर परिषद के एग्जीक्यूटिव अफसर विमल कुमार की मौत इस वक्त पूरे राज्य में सुर्खियों में है। विमल कुमार की मौत के सिलसिले में पुलिस ने एक ड्राइवर को गिरफ्तार जरूर किया है, लेकिन नगर परिषद के कर्मचारियों ने धमकी दी है कि अगर सच्चाई सामने नहीं आई तो वो फिर हड़ताल करेंगे। हालांकि विमल कुमार की पत्नी ने यह सनसनीखेज इल्जाम लगाया कि उनके पति की मौत के पीछे राज्य के एक ताकतवर विधायक का हाथ है।
6: ये मौका वारदात पर रात के अंधेरे में ली गई एक तस्वीर है। तस्वीर में ज्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन एक स्कॉर्पियो गाड़ी किसी गड्ढे में धंसी नजर आ रही है। गाड़ी के ऊपर हुटर वगैरह लगे हैं, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि गाड़ी किसी सरकारी अफसर की है। अब आइए इस गाड़ी की ये दूसरी तस्वीर देखिए। ये तस्वीर दिन के उजाले की है और इस वक्त इस तस्वीर में गाड़ी के इर्द गिर्द पुलिस का पूरा लवाजमा मौजूद है। असल में सिर्फ पुलिस का लवाजमा ही नहीं, बल्कि बिहार के चर्चित आईपीएस ऑफिसर और मगध जोन के आईजी वैभव कृष्ण भी यहां अपनी टीम के साथ आ पहुंचे हैं। कहानी ये है कि शुरुआती तौर पर जो केस सड़क हादसे का लग रहा था, वो अब कत्ल के मामले में बदल चुका है। और वारदात का शिकार होने वाला भी कोई मामूली आदमी नहीं, बल्कि बिहार के रोहतास जिले के डेहरी डालमिया नगर विकास परिषद के ईओ यानी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विमल कुमार है। यानी मामला हाई प्रोफाइल है। लेकिन इससे भी ज्यादा बड़ी और सनसनीखेज बात यह है कि इस कत्ल की साजिश में डेहरी के विधायक राजीव रंजन उर्फ सोनू सिंह का नाम भी जुड़ने लगा है। लेकिन आखिर विमल कुमार का कत्ल कैसे हुआ, उनकी जान किसने ली, वारदात के पीछे की असल वजह क्या है, और सबसे अहम ये कि कत्ल के इस मामले से इलाके के एमएलए सोनू सिंह का आखिर क्या कनेक्शन है, तो आइए इन सवालों के जवाब जानने के लिए आपको सिलसिलेवार तरीके से इस वारदात की पूरी कहानी सुनाता हूँ। टेहरी डालमिया नगर विकास परिषद के ईओ विमल कुमार शनिवार यानी 29 जुलाई की रात को अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी से टेहरी से दानापुर के लिए निकले थे। साथ में उनका ड्राइवर मिथिलेश कुमार भी था। विमल कुमार का परिवार दानापुर में रहता है, लेकिन इससे पहले कि वो दानापुर अपने घर पहुंचते, रात को औरंगाबाद जिले के इसी नहर के पास ये वारदात हो गई। रात को ही उनके ड्राइवर मिथिलेश कुमार ने पुलिस को फोन किया और गाड़ी के एक्सीडेंट होने की जानकारी दी। पुलिस जब मौके वारदात पर पहुंची तो मामला कुछ ऐसा ही लगा, क्योंकि गाड़ी नहर के गड्ढे में धंसी हुई थी। आनन फानन में पुलिस ने आसपास के लोगों की मदद से विमल कुमार को उठाकर पास के अस्पताल में लेकर गई, मगर डॉक्टरों ने उन्हें ब्रॉट डेड यानी मुर्दा करार दिया। उधर जब इस मामले के इकलौते चश्मदीद और विमल कुमार के ड्राइवर मिथिलेश से पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो उसकी बातों से कहानी पलटने लगी। जो मिथिलेश कुमार अब तक मामले को एक्सीडेंट का बता रहा था, उसी मिथिलेश ने आगे की पूछताछ में पुलिस को बताया कि मामला एक्सीडेंट का नहीं, असल में लूटपाट का है। उसने पहले ये कहानी सुनाई कि दो अपाचे बाइक पर आए लुटेरों ने उनके साथ लूटपाट की और इसी दौरान विमल कुमार का कत्ल कर दिया। जबकि पूछताछ आगे बढ़ने पर उसने कहा कि लुटेरे दो बाइक पर नहीं बल्कि एक ही पर सवार होकर आए थे। इससे पुलिस का शक उस पर गहरा गया।
7: देखिए, डेहरी नगर परिषद के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपनी गाड़ी से पटना की ओर जा रहे थे। इसी क्रम में पुलिस को सूचना मिली कि उनके ड्राइवर के द्वारा बताया गया कि कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा मारपीट करके इंजर्ड किया गया है और जाने के क्रम में अस्पताल जब ले जाए गए तो मृत घोषित कर दिए गए। ड्राइवर से जब पूछताछ की गई तो ड्राइवर के बयान बदल रहे थे। पहले बताया गया कि दो अपाची बाइक पर लोग आए थे, बाद में बताया गया कि एक अपाची बाइक पर आए थे, और इस प्रकार से धीरे धीरे जब कहानी बदलने लगी तो पुलिस को शक हुआ।
6: बहरहाल जब तफ्तीश और आगे बढ़ी तो इस वारदात की वजह भी सामने आ गई। पता चला कि विमल कुमार की अपने ही ड्राइवर मिथिलेश के साथ लंबे समय से अनबन चल रही थी। दोनों के बीच कई बार तीखी नोक झोंक भी हुई थी। यहाँ तक कि जिस रात ये वारदात हुई उस दिन भी विमल कुमार ने मिथिलेश को फटकारा था, जिससे वो गुस्से में था। लेकिन ये तो रही पुलिस की अब तक की तफ्तीश और उससे सामने आई कहानी। विमल कुमार का शव पटना पहुंचने के बाद उनकी पत्नी बबीता ने इस हत्याकांड को लेकर जो इल्जाम लगाया उसने पूरे बिहार में सियासी भूचाल ला दिया। बबीता का ये कहना था कि ड्राइवर इस वारदात का सिर्फ एक मोहरा भर है और कत्ल का असली मास्टरमाइंड डेहरी का विधायक राजीव रंजन उर्फ सोनू सिंह है।
8: रोज फोन कर आइए हमारे घर मिलने, आइए हमको 50 लाख दीजिए, हमको 25 लाख की, बोले हम गलत नहीं कर। कहाँ से?
9: कौन है विधायक? कौन है विधायक?
8: वही डेहरी का विधायक, रोज फोन करता था, जो नया बना रोज दिन फोन करता था रोज।
6: उधर विधायक सोनू सिंह का कहना है कि वो इस वारदात से पहले ईओ विमल कुमार के साथ ही एक प्रोग्राम में थे। और उनका कभी विमल कुमार के साथ कोई विवाद नहीं रहा।
10: अब वह किस परिस्थिति में उनकी पत्नी यह बात बोली है, मैं अपनी तरफ से आप मीडिया के माध्यम से हमारी पार्टी और एनडीए सरकार निरंतर कटिबद्ध है कि जो भी दोषी होंगे उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी।
6: मामले की चलती जांच के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या विमल कुमार का कातिल अकेले उनका ड्राइवर ही है या फिर इसकी साजिश कुछ वैसी ही है जैसा कि विमल कुमार के घर वाले इशारा कर रहे हैं। औरंगाबाद से अभिनेश कुमार सिंह के साथ रंजन कुमार, सासाराम, आज तक।
11: वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोस।
13: If you love podcasts, you never want to be without your favorite shows. That's where TuneIn comes in. Here's a quick tip. You can listen anytime, even without the internet. Just open a podcast, tap the three dots next to an episode, and hit download. Simple as that. Now you're free to listen wherever you are. On a flight, underground, or totally offline. Your downloads are always waiting on your library page. From true crime to lifestyle to health and science, TuneIn makes it easy to take your podcasts anywhere.
14: नहीं, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
15: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
16: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
1: Less interruption, more listening. With TuneIn Premium, get less ads on all music, news, and sports so you can get back to what really matters. Listen to all your favorite stations on over 200 devices so you never miss a second of airtime. Plus, enjoy commercial-free news, ESPN Radio, and more with Premium Upgrade to TuneIn Premium and start listening now.

0: अध्यक्ष की सीट पर पिट गई पार्टी। बांकीपुर से शानदार जीत के बाद बोले प्रशांत 30 दिन में ढहा दिया 30 साल का पुराना किला। सीएम सम्राट पर किया कड़ा हमला, आरजेडी की जमानत जब्त। कांग्रेस के हाथ लगा मध्य प्रदेश का दतिया, यहां भी 6000 से ज्यादा वोटों से हार गई बीजेपी। गुजरात के मांजलपुर ने बचाई बीजेपी की इज्जत, 30,000 से ज्यादा वोटों से जीत गए सत्येंद्र भाई पटेल। प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो हटाने पर मेटा ने माने गलती, संसदीय समिति की बैठक में माफी भी मांगी, तकनीकी गड़बड़ी का दिया हवाला, समिति ने जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। यूपी विधानसभा में मॉनसून सत्र के पहले दिन चढ़ावा चोरी पर घमासान, विपक्ष की तरफ से जोरदार प्रदर्शन, योगी बोले जनता को गुमराह न करें, दम है तो विकास पर बात करें। झारखंड का रांची बना नया जंतर मंतर, जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी, 10 दिन से भूख हड़ताल पर देवेंद्र नाथ महतो, सीबीआई जांच की मांग।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परो।
0: मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में चढ़ावा चोरी पर ट्रस्ट ने सफाई दी, उद्धव की पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लगाए गंभीर आरोप। सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष सदा सरवनकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा करीब 18 करोड़ की चोरी का मामला सामने आया था, जिसमें अब तक कुल 9 कर्मचारी अरेस्ट हुए, 46 निलंबित और शिवसेना यूबीटी से कनेक्शन का भी दावा किया गया। गुजरात के मांजलपुर उपचुनाव में बीजेपी की बंपर जीत, 30,000 से ज्यादा वोटों से जीते बीजेपी के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल। हिरोणी के खिलाफ नागपुर में गडकरी के घर के बाहर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, मंत्री के इस्तीफे की मांग, सुरक्षा घेरा तोड़ने पर हिरासत में लिए गए कई नेता। महाराष्ट्र टीटी पेपर लीक केस में सभी 15 आरोपियों की भिवंडी कोर्ट में पेशी, 17 अगस्त तक बढ़ाई गई है न्यायिक हिरासत। महाराष्ट्र के जलगांव में भारी बारिश के बाद मुंबई नागपुर हाईवे के पास टूटा बांध, मंत्रियों ने किया निरीक्षण, ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग। ठाणे में भारी बारिश से कामगारी नदी में उफान, कई इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा। मूसलाधार बारिश के चलते ठाणे शहर पूरी तरह से जलमग्न, निचले इलाकों के लिए प्रशासन ने जारी किया है अलर्ट। भारी बारिश की वजह से महाराष्ट्र के नांदेड़ का सहस्त्रकुंड झरना ओवरफ्लो हुआ, झरने को देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे सैलानी, सामने आया झरने का ड्रोन वीडियो। गुजरात के भावनगर में भी जोरदार बारिश, कई इलाकों में दुकानों में भरा बारिश का पानी। मुंबई हाईवे पर गड्ढे में जा गई बाइक, टीडीआरएफ जवान की गई जान, लापरवाही करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों पर कार्रवाई की मांग। गुजरात के अंबाजी जिले में सीएनजी पंप पर बड़ा हादसा, बेकाबू कार ने चारपाई पर बैठे टैंकर ड्राइवर को जोरदार टक्कर मारी, मौके पर मौत। गुजरात के अमरेली जिले में रिहायशी इलाकों में शेरों के घुसने से हड़कंप, एक जगह शेर ने मवेशी को शिकार बनाया और दूसरी जगह गलियों में बेखौफ घूमता हुआ शेरों का झुंड नजर आया। सूरत के ट्रैफिक पुलिस कर्मी ने समय पर सीपीआर देकर बताया बचाई एक व्यक्ति की जान, सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा है वायरल। गुजरात के आणंद रेलवे स्टेशन के पास मालगाड़ी की दो बोगी पटरी से उतरी, बड़ा हादसा टला। फिल्म गोकुल 1757 का पोस्टर जारी, 1757 में अहमद शाह अब्दाली की सेना के खिलाफ गोकुल में युद्ध की एक सच्ची और ऐतिहासिक घटना पर आधारित है फिल्म। सुखमिनी का वीडियो जारी किया गया, फिल्म में मुख्य भूमिका में नजर आएंगे नितिन। यश की फिल्म टॉक्सिक का 8 अगस्त को रिलीज होगा ट्रेलर, 26 अगस्त को रिलीज होगी ये फिल्म। फिल्म जुम्मा 3 की शूटिंग शुरू हुई, 1 जनवरी 2027 को रिलीज होगी फिल्म। सिंह वर्सेस स्कॉट 2 का टीजर जारी किया गया, 11 सितंबर को फिल्म रिलीज की जाएगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। मुंबई मेट्रो में आपका स्वागत है। सिद्धिविनायक वो दरबार जहां मुख्यमंत्री, मंत्री, अभिनेता और आम भक्त सब गणपति बप्पा के चरणों में एक समान होकर मत्था टेकते हैं, लेकिन अब उसी दरबार की दान पेटी सियासत के केंद्र में है। राज ठाकरे ने आरोप लगाया है कि सिद्धिविनायक मंदिर में हर साल 18 करोड़ रुपए का चंदा हड़प लिया जाता है। वहीं ट्रस्ट का दावा यह है कि ट्रस्ट की वजह से ही यह पूरा मामला उजागर हुआ है, लेकिन जब चढ़ावे पर ग्रहण की बात सामने आती है तो राजनीति भी जवाब देने से बच नहीं सकती।

0: घंटियों की गूंज, गणपति बप्पा की आरती, श्रद्धालुओं का सैलाब, ये दृश्य मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में होता है, जहां हर दिन हजारों श्रद्धालु अपनी मन्नतें लेकर पहुंचते हैं, जहां सत्ता भी सिर झुकाती है, विपक्ष भी नमन करता है, अभिनेता से लेकर आम आदमी तक हर कोई गणपति बप्पा के चरणों में आशीर्वाद देने पहुंचते हैं। लेकिन अब इसी मंदिर का चढ़ावा राजनीति के केंद्र में है। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने संगीन आरोप लगाया है। राज ठाकरे ने दावा किया है कि मुंबई के मशहूर सिद्धिविनायक मंदिर में हर साल 18 करोड़ रुपए का चंदा हड़प लिया जाता है।
1: महोदय, विश्वस्तांच्या सतर्कतेमुळे मंदिरातल्या दानपेटीतून पैसे चोरणारे कर्मचारी पकडले गेलेले आहेत। हे कर्मचारी पकडण्यापूर्वी दर बुधवारी मंदिरातल्या दानपेटीतील रकमेची मोजदाद ही 50 लाख रुपयाच्या आत होती। मात्र ही हे कर्मचारी पकडल्यानंतर गेले 3 आठवडे आठवड्याची दानपेटी रक्कम ही 1.5 कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचली आहे। याचाच अर्थ, यापूर्वी दर आठवड्याला दानपेटीतील जमा होणाऱ्या काही रकमेतील काही रक्कम ही लंपास होत होती। त्यामुळे दरवर्षी सुमारे 18 कोटी रुपयांचे मंदिराचे नुकसान होत होते।
0: वही सिद्धिविनायक ट्रस्ट के अध्यक्ष और शिवसेना नेता सदा सरवणकर कहते हैं कि ट्रस्ट की सतर्कता से ही गड़बड़ी सामने आई है। ट्रस्ट के मुताबिक 9 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया, FIR दर्ज कराई गई। ट्रस्ट के पूर्व अधिकारी राजन पेंडुलकर समेत 45 कर्मचारी सस्पेंड किए गए। गिरफ्तार आरोपियों के संबंध शिवसेना UPT की नेता विशाखा राउत और दूसरे नेताओं से है। इसके साथ ही ट्रस्ट के अध्यक्ष सदा सरवणकर इसके पक्के सबूत होने का भी दावा कर रहे हैं।
2: चोरी में जितने भी इन्वॉल्व है वो 9 जन को पकड़ा है। उसके बाद लूपहोल्स जो थे, आज दादर स्टेशन में अगर आप एक टैक्सी में बैठेंगे तो वो टैक्सी में भक्तगण अगर यहाँ आते हैं तो उनसे 5,000 लिया जाता था, दर्शन वगैरह सब लेके। वो पहला बंद किया, उसके बाद ये सब आजू बाजू में दलाल लोग घूमते थे, दर्शन के लिए 2,000 3,000 लेते थे, वो सारा बंद हो गया। ये हमारे जो यहाँ की सिक्योरिटी है, यहाँ के कर्मचारी है, उनको गूगल पे करके ये दर्शन दिया जाता था। हमने जितने भी कर्मचारी है सबका फोन बंद कर दिया। अभी किसी कर्मचारी के हाथ में फोन नहीं आपको मिलेगा। जितना भी हमको डाउट आएगा वो हर चीज के ऊपर हमने कुछ न कुछ एक्शन लिया होगा।
0: इसलिए भगवान के नाम पर चढ़े हर रुपए का हिसाब भी न्याय की कसौटी पर ही तय होना चाहिए।
3: मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर में चढ़ावे को लेकर अब महाराष्ट्र में नया सियासी तूफान खड़ा हो गया है, क्योंकि MNS प्रमुख राज ठाकरे ने एक चिट्ठी का हवाला देते हुए ये आरोप किया है कि इस चढ़ावे में बड़ी तादाद में घोटाला हो रहा है। छोटा मोटा नहीं बल्कि सालाना करीबन 18 करोड़ रुपए का घोटाला जो है इस चढ़ावे के पैसों में किया जा रहा है। ऐसी एक चिट्ठी इस ट्रस्ट के ही कुछ ट्रस्टियों ने मिलकर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लिखी थी। 21 अप्रैल 2026 को ये पत्र लिखा गया था, जिस पर ये आरोप किए गए हैं कि यहाँ से पैसों की अफरा तफरी हो रही है, दान पत्र से पैसे चुराए जा रहे हैं।
0: मामला 18 करोड़ का हो या फिर 18 रुपए का, बप्पा के नाम पर चढ़ाया गया एक एक रुपया पवित्र है। सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष सदा सरवणकर ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि मंदिर में हर साल करीब 18 करोड़ रुपए के दान का हेर फेर होता था, जिसे मौजूदा ट्रस्ट ने रोककर चढ़ावे की कमाई में भारी बढ़ोतरी की है। मंदिर की आय 2 साल में 114 करोड़ से बढ़कर 182 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। वहीं फडणवीस सरकार में मंत्री छगन भुजबल कहते हैं कि अगर किसी के पास ठोस जानकारी है तो सरकार को जानकारी मुहैया कराए, जाँच होगी और सच सामने आएगा।
4: चढ़ावा जो लोग चढ़ाते हैं भगवान को, सिद्धि विनायक, उस चढ़ावे में कुछ गलत हुआ है या कुछ, मतलब जो चंदा जमा होता है तो शायद उनके पास कोई मालूमात होगी, वो अगर सरकार को शासन को दे देंगे तो उसकी इंक्वायरी होगी और क्या गलत है क्या सही है उसका भी देंगे।
0: अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच का चैप्टर अभी बंद भी नहीं हुआ है। कि मुंबई के सिद्ध विनायक मंदिर में गड़बड़ियों ने अरब सागर से आने वाली सियासी हवा को गर्म कर दिया है। दान पेटी में गिरता हर सिक्का, हर चढ़ावा सिर्फ मुद्रा और नोट नहीं होते, उनमें किसी माँ की मन्नत होती है, किसी मेहनतकश शख्स की कमाई, किसी परिवार की आस्था। इसलिए मंदिर के चढ़ावे पर उठा हर सवाल करोड़ों श्रद्धालुओं के भरोसे पर सवाल बन जाता है।
5: अभी मार्च महीने में हमने जो बजट रखा वो 182 करोड़, ये जो उत्पन्न नहीं बोलेंगे चढ़ावा है, ये देनगी दी है मंदिर को। और इसी माध्यम से हमने यही बता रहे हैं कि हमारे मन में अगर पाप रहता, ये ट्रस्टी बोर्ड है, मैं अभी खुले मन से बताता हूँ, हमारे मन में अगर पाप रहता तो हम इतने चोर पकड़ते नहीं, हमारे मन में अगर पाप रहता तो 46 कर्मचारी निलंबित होते नहीं, हमारे मन में पाप रहता तो 9 जन पुलिस कस्टडी और एमसीआर कस्टडी में जाते नहीं, हमारे मन में पाप होता तो हम सरकार को विधि न्याय विभाग को एक पत्र भी लिखते नहीं। हमने यही कहा है कि ये जो तफावत 2 साल और अभी में है तो उसका ऑडिट होना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए।
0: गणपति बप्पा न्याय के देवता है, लिहाजा जांच सिर्फ पैसों की नहीं होनी चाहिए, जांच उस व्यवस्था की भी होनी चाहिए जिसे सिद्ध विनायक के घर की रखवाली सौंपी गई। मंदिर राजनीति का मंच नहीं, आस्था का केंद्र है, इसलिए आरोप भी तथ्यों के साथ होने चाहिए और जांच भी बिना किसी दबाव के।
3: सालाना 18 करोड़ तक का घोटाला जो है यहाँ मंदिर में हुआ है ऐसा दावा किया जा रहा है। अब विपक्ष से लेकर राज ठाकरे सभी मांग कर रहे हैं कि इस चोरी की जो है वो जांच की जाए, तफ्तीश की जाए, और किसके कार्यकाल में, यानी उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे तब उनके कार्यकाल में ये चोरी हुई थी, या फिर अब महायुति सरकार के कार्यकाल में इस तरह की चोरी सामने आई है, ये सामने आना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैमरा पर्सन सचिन सावन के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।
6: और अब बात करेंगे अभिजीत दीपके और उनकी पार्टी पर उठ रहे सवालों के बारे में। सवाल ये उठाए जा रहे हैं कि अभिजीत दीपके अमेरिका के बॉस्टन यूनिवर्सिटी जैसे महंगे विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए गए, लेकिन कैसे, उनकी फीस किसने दी थी, वो भी तब जब उनके पिता महाराष्ट्र सरकार में एक सामान्य कर्मचारी थे। दीपके ने इन तमाम सवालों के जवाब दिए हैं। इसके अलावा उनकी पार्टी पर बाकी के क्या क्या सवाल उठाए जा रहे हैं, स्पॉट के जरिए जानिए।

0: प्रदर्शन खत्म हो गया, इस्तीफा भी हो गया, आंदोलन से एक नए नेता अभिजीत दीपके का जन्म भी हो गया, लेकिन इस आंदोलन से जो लोग नाराज हुए हैं वो अब अभिजीत दीपके की डिग्री से लेकर उन्हें मिल रहे दान के पीछे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि जब दीपके के पिता महाराष्ट्र सरकार के एक साधारण कर्मचारी थे तो उन्होंने अमेरिका के एक महंगे विश्वविद्यालय में अपने बेटे को पढ़ने कैसे भेजा। ये सवाल उठाए हैं गुजरात के आरटीआई कार्यकर्ता अमित तिवारी। अमित तिवारी ने तीन शिकायतें की। पहली शिकायत कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव आयोग से की है। आरोप है कि जब सीजेपी एक राजनीतिक दल की तरह व्यवहार कर रही है तो इन्होंने चंदा लेने के लिए रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कराया। दूसरी शिकायत महाराष्ट्र सरकार से की गई है कि जब अभिजीत दीपके के पिता एक सामान्य कर्मचारी थे तो फिर उन्होंने अपने बेटे को पढ़ने के लिए अमेरिका कैसे भेजा। और तीसरी शिकायत सीबीआईसी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम से की गई है। ये शिकायत कपिल सिब्बल द्वारा सीजेपी को दिए गए 1 करोड़ रुपए पर 18% जीएसटी लगाने के लिए की गई है। हंगामा मचा है उस शिकायत पर जिसमें यह सवाल उठाए गए कि एक सामान्य परिवार से होने के बावजूद अभिजीत दीपके पढ़ाई के लिए अमेरिका कैसे चले गए।
1: जैसे कि मैंने अलग अलग जगह पे तीन अलग अलग जगह पे शिकायत की है, जैसे कि सीजेपी के विरुद्ध में एक ईसीआई में कंप्लेन की है और कपिल सिब्बल साहब ने जो 1 करोड़ का फंड दिया है उसके विरुद्ध में मैंने सीबीआईसी में शिकायत की है कि इस पे 18% जीएसटी वसूल किया जाए, तथा महाराष्ट्र सरकार में भी मैंने एक शिकायत की है कि जो शंकर भगवान दीपके जी जो थे वो जूनियर इंजीनियर के पोस्ट पर वहाँ पे एमआईडीसी में कार्यरत थे, तो अगर उनकी 60-65 हज़ार की सैलरी थी उसमें अपने बच्चों को अमेरिका पढ़ाना, क्योंकि अमेरिका में 30 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का साल भर का खर्च आता है, तो इतना बड़ा खर्च कहाँ से निकला, क्योंकि आपकी अगर 60-65 हज़ार की पगार है उसमें आप 30-35 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं तो वो चीज़ समझ में नहीं आती है। इसके विरुद्ध में हमने महाराष्ट्र सरकार में भी शिकायत की है कि इसकी जांच की जाए, अगर आय से अधिक संपत्ति का मामला है तो उस पर कड़ी कार्यवाही की जाए।
0: जवाब अभिजीत दीपके की तरफ से आया है। दीपके ने उस बॉस्टन यूनिवर्सिटी का लेटर जारी किया है जिसमें लिखा है कि अभिजीत दीपके को वहाँ स्कॉलरशिप मिली थी। जानकारी के मुताबिक बॉस्टन यूनिवर्सिटी की तरफ से 31 मई 2024 को अभिजीत दीपके को एडमिशन लेटर दिया गया था जिसमें उन्हें मास्टर ऑफ साइंस इन पब्लिक रिलेशन में डिग्री के लिए एडमिशन दिया गया। 3 सेमेस्टर के प्रोग्राम में $37,500 की डीन स्कॉलरशिप दी गई। अभिजीत दीपके का कहना है कि बॉस्टन यूनिवर्सिटी में उनकी एजुकेशन स्कॉलरशिप हुई थी और साथ ही उन्होंने कुछ एजुकेशन लोन भी लिया था जिसे उन्हें अब चुकाना है। इस पूरे मुद्दे पर अभिजीत दीपके को बीजेपी विरोधियों का साथ मिल रहा है।
2: वो खुद अमेरिका चला गया था तो उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क किया है। उसके बाप की इतनी 65,000 तनखा है, अभी लोन भी मिलता है स्टूडेंट को, कुछ भी हो सकता, किसी ने मदद भी की होगी, लेकिन इतने गिरे हुए सोच आपकी कैसे हो सकती है। और आप उसके पास कुछ मांग रहे तो वो भी आपके बड़े बड़े लोग का मांगेगा, दे दो, लोकशाही है।
0: अभिजीत दीपके ने एक सवाल का जवाब तो दिया है कि वो अमेरिका की बॉस्टन यूनिवर्सिटी कैसे पहुंचे, लेकिन उन्हें अभी अपनी पार्टी को मिल रहे चंदे पर उठ रहे सवालों का जवाब देना बाकी है।
1: सीजेपी पे हमने ये शिकायत की है कि ये पहली बात तो सीजेपी जो है कॉकरोच जनता पार्टी, जो ये अपने आप को जनता पार्टी लिखते हैं, पार्टी के हिसाब से ये जिस तरह से बिहेव कर रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, एक राजनीतिक दल की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो जब अगर आप राजनीतिक दल की तरह बिहेव कर रहे हैं तो आप चंदा लेते हैं, और अगर नॉन रजिस्टर्ड पर्सन हैं और आप चंदा लेते हैं तो रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 के धारा 29A के तहत आपको पहली बात तो रजिस्टर्ड होना पड़ता है, आपका जो भी चंदा और बाकी चीज़ें हैं वो आपको ईसीआई को देना होता है। तो उसके विरुद्ध में हमने शिकायत की है कि ये रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के हिसाब से ये रजिस्टर्ड नहीं है और 1 करोड़ का फंड जो ये ले रहे हैं ये अवैध है, इसके विरुद्ध में शिकायत दर्ज की है, इसके विरुद्ध एक्शन लिया जाए, ईसीआई से हमारी ये निवेदन है। इसके अलावा हमने कपिल सिब्बल साहब ने जो 1 करोड़ रुपए का फंड दिया है इसके विरुद्ध में भी हमने ये कंप्लेन किया है कि भाई आरसीएम में वकील फीस अगर देता है और दूसरे वकील को फीस देता है तो एज ए जो वकील पे कर रहा है वो वकील एज ए क्लाइंट होता है और वकील के ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, लेकिन जो क्लाइंट होता है उसे बेयर करना होता है। 20 लाख के टर्नओवर के ऊपर अगर सर्विस पोर्शन है उस पर 20 लाख पे आपको जीएसटी पे करना होता है, तो यहाँ तो सर्विस पे 1 करोड़ का सर्विस कपिल सिब्बल साहब कह रहे हैं कि 1 करोड़ का हम इसमें फंड रिलीज कर रहे हैं, फंड दे रहे हैं, तो 1 करोड़ का जो फंड दे रहे हैं उसके विरुद्ध में हमने सीबीआईसी को भी लिखा है कि आरसीएम के तहत कपिल सिब्बल साहब से 1 करोड़ का जो फंड इन्होंने डोनेट किया है या जो फीस दी है तो उसके ऊपर एक करोड़ पे 18 लाख रुपए इनसे जीएसटी लिया जाए।
0: आज तक ब्यूरो।
3: एक फेंका हुआ प्रश्न पत्र और उससे शुरू हुई लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ की साजिश। महाराष्ट्र टीटी पेपर लीक मामले की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। दावा किया गया है कि प्रिंटिंग प्रेस के डिस्पोजल बॉक्स से निकाली गई कॉपी को जूतों में छुपाकर बाहर ले जाया गया और वहीं से पूरा नेटवर्क सक्रिय हुआ। सवाल सिर्फ एक पेपर लीक का नहीं है बल्कि उस सुरक्षा व्यवस्था का है जो एक कूड़ेदान के सामने भी बेबस नजर आई। आपको बता दें कि महाराष्ट्र टीटी परीक्षा का पेपर 27 जून 2026 को लीक हुआ था, उसके बाद 28 जून 2026 को होने वाली परीक्षा को रद्द करना पड़ा था।
0: एक परीक्षा, लाखों सपने और उन सपनों पर सेंध लगाने की एक सुनियोजित साजिश। इस बार पेपर किसी सर्वर से हैक नहीं हुआ, किसी तिजोरी को तोड़कर नहीं निकाला गया, बल्कि एक कूड़ेदान से उठाया गया। जिस कॉपी को प्रिंटिंग की गलती मानकर फेंक दिया गया, वही कॉपी पूरे रैकेट की चाबी बन गई। महाराष्ट्र टीईटी परीक्षा लीक बताता है कि कैसे हमारा सिस्टम जर्जर हो चुका है।
4: अभी तक हमने टोटल 15 आरोपी को अरेस्ट किया हुआ है। इनमें से जो मेन किंगपिन रहता था उसके कॉन्टैक्ट्स प्रेस में रहते थे, तो प्रेस के जो कर्मचारी रहते थे वो लोकल किसी गुन से अरेस्ट अटैच रहते थे और उनसे ये बिजेंदर अटैच रहता था। तो ये पेपर निकाल के लोकल आदमी को देते थे जो बिजेंदर को देता था और बिजेंदर फिर नीचे एजेंट्स के मार्फत वो नीचे सेल आउट करता था अलग अलग कैंडिडेट्स को।
5: सर ये जानना चाहेंगे, कुछ वांटेड आरोपी भी हैं जिसको हम लोग ढूंढ रहे हैं, उनका क्या रोल था? पेपर लीक में उनका रोल था या फिर पेपर लीक के बाद डिस्ट्रीब्यूशन में उनका?
4: पेपर लीक के बाद जो कैंडिडेट्स को जमा करना और उनको फिर वो बेच के पैसे लेना, ये जो काम करता था वो आरोपी अभी फरार है, हम उसको ढूंढ रहे हैं।
0: जांच में सामने आया है कि आगरा के माहिम प्रिंटिंग प्रेस में छपाई के दौरान जिन प्रश्न पत्रों में हल्की प्रिंटिंग गड़बड़ी होती थी उन्हें मैनेजर के केबिन में रखे डिस्पोजल बॉक्स में डाल दिया जाता था। इसी व्यवस्था की सबसे कमजोर कड़ी पर आरोपियों की नजर थी। प्रेस कर्मचारी बाबूलाल का आरोप है कि उसने उसी डिस्पोजल बॉक्स से एक प्रश्न पत्र निकाला, उसे अपने जूते में छिपाकर प्रेस से बाहर ले गया और फिर वही कॉपी पूर्व कर्मचारियों संजय और सोनू तक पहुंची, जहां से मास्टरमाइंड बिजेंद्र गुप्ता तक पूरा नेटवर्क सक्रिय हो गया। जांच एजेंसियों का दावा है कि यह कोई पहली कोशिश नहीं थी बल्कि एक सुनियोजित मॉड्यूल था। आरोप है कि बिजेंद्र गुप्ता प्रिंटिंग प्रेस के निचले स्तर के कर्मचारियों को निशाना बनाता था, प्लॉट का वादा करता था, 8,000 से 15,000 रुपए तक का लालच देता था, निचले स्तर के कर्मचारियों से संपर्क में था ताकि सुरक्षा की सबसे अहम कड़ी भीतर से ही टूट जाए। जांच में यह भी दावा किया गया कि गिरोह महाराष्ट्र में होने वाली स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी एसईटी परीक्षा पर भी नजर रखे हुए था। हालांकि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने इस दावे की पुष्टि नहीं की है, लेकिन अगर ये सच साबित होता है तो सवाल सिर्फ एक परीक्षा का नहीं पूरे भर्ती तंत्र की सुरक्षा का है। आज पुलिस ने सभी 15 आरोपियों को भिवंडी कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सभी 15 आरोपियों को 17 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।
6: जेंदर गुप्ता और उसकी पत्नी सुमन गुप्ता, इनका रोल जो बताया जा रहा है कि ये महिम पत्रम कंपनी का जो सर्वे सर्वा है इसको जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था महाराष्ट्र टीईटी की तरफ से, महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद के तरफ से, तो उसको ये बताया गया था, उसको कॉन्ट्रैक्ट दिया था, तो कॉन्ट्रैक्ट दिया था उसके बेस पे उसने वो पेपर लीक किया है। पर पेपर लीक हुआ ही नहीं है, सबसे बड़ी बात ये हमारा बोलना है कि पेपर लीक हुआ ही नहीं है। पेपर लीक करने के लिए जो मुख्य सरगना है राजू, आकाश और धीरज, ये भिवंडी में आए थे डोंगराली में और इनको रेड हैंड पुलिस ने पकड़ा गया था। हमारा इसमें कोई रोल मद्देनजर आता है नजर नहीं आ रहा।
0: पेपर लीक की हर कहानी में सिर्फ एक प्रश्न पत्र चोरी नहीं होता, चोरी होती है किसी छात्र की महीनों की मेहनत, किसी परिवार की उम्मीद। अगर एक फेंका हुआ प्रश्न पत्र भी करोड़ों के रैकेट की शुरुआत बन सकता है तो अब सवाल सिर्फ आरोपियों का नहीं पूरे सुरक्षा तंत्र का है, क्योंकि जब परीक्षा की गोपनीयता टूटती है तब सिर्फ कानून नहीं युवाओं का भरोसा भी कटघरे में खड़ा हो जाता है।
7: आपको बता दें कि इसके अलावा एक और साजिश सामने आई है कि क्या स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम जुलाई में होनी थी उसका भी पेपर उसी प्रेस में छपना था जिस आगरा के प्रेस में टीईटी का पेपर छपा था, और उसी प्रेस से विजेंद्र गुप्ता और उसके साथी उस पेपर को भी लीक करने की साजिश कर रहे थे। यह बात सामने आई है, पर वरिष्ठ अधिकारियों ने इस बात को इनकार किया है कि इस पेपर को भी लीक किया जाना था, उसे अभी वेरीफाई करना बाकी है, ऐसा पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है। पर जो 16वां आरोपी है उसकी छानबीन, उसकी खोज अभी भी चल रही है, अन्य लोगों का भी नाम सामने आ सकता है। फिलहाल इन 15 आरोपियों को, जिसमें मास्टरमाइंड विजेंद्र गुप्ता भी शामिल है, उन सभी को जेल भेज दिया गया है, ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है 17 अगस्त तक। कैमरा पर्सन राकेश सालस्कर और मिथिलेश गुप्ता के साथ दिव्येश सिंह, भिवंडी आज तक।
3: और अब बात करेंगे उपचुनावों के आए नतीजों के बारे में, क्योंकि गुजरात के मांजलपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने बड़ी और निर्णायक जीत दर्ज की है। बीजेपी उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस के भिखाभाई रबारी को 30,630 वोटों के बड़े अंतर से हराकर सीट को बरकरार रखा। ये उपचुनाव बीजेपी के वरिष्ठ नेता और 8 बार के विधायक रहे योगेश पटेल के निधन के बाद हुआ था। कम मतदान के बावजूद बीजेपी ने अपनी मजबूत जनाधार को कायम रखते हुए स्पष्ट संदेश दिया है कि मांजलपुर में उसका संगठन और सियासी पकड़ अभी भी मजबूत है।
8: बांकीपुर ने मायूस किया, दतिया ने दर्द बढ़ा दिया, लेकिन गुजरात के मांजलपुर ने बीजेपी के चेहरे पर मुस्कान लौटा दी। मांजलपुर में बीजेपी के सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,630 वोटों से हरा दिया।
9: ये भाजपा की जीत, एक कार्यकर्ता की जीत, ये विकास की जीत, नरेंद्र भाई मोदी की जीत और हमारे सभी कार्यकर्ताओं को खूब खूब अभिनंदन। देखो खुशी का माहौल है, भारत देश के तने का बड़ा प्रधान अपने नरेंद्र भाई मोदी जी की ये सेना विकास के लिए काम करती है, तो लोग ऑब्वियसली भाजपा का ही वोट देंगे।
8: एक दिन 3 राज्य 3 नतीजे, 2 जगह झटका, 1 जगह बड़ी राहत। बिहार में सियासी किला दरका, मध्य प्रदेश में भी जीत हाथ से फिसल गई, लेकिन गुजरात के मांजलपुर ने बता दिया कि बीजेपी का गढ़ अब भी मजबूत है।
10: हमारे भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं को जाता है, जिन्होंने दिन रात एक करके ये चुनाव जीता है। मैं सभी नागरिक भाइयों बहनों का और कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
11: भारतीय जनता पार्टी हमेशा संगठनात्मक काम करती है, हरेक कार्यकर्ता इसमें इन्वॉल्व होता है और काम करता है, और उसका परिणाम है।
8: मांजलपुर सीट पूर्व मंत्री और 8 बार के विधायक योगेश पटेल के निधन के बाद खाली हुई थी। योगेश पटेल ने 1990 से 2007 के बीच बड़ोदरा की रावपुरा विधानसभा सीट का 5 बार प्रतिनिधित्व किया, फिर परिसीमन के बाद नई बनी मांजलपुर सीट से चुनाव लड़ा। योगेश पटेल ने 2012, 2017 और 2022 में मांजलपुर सीट से लगातार जीत दर्ज की, और इस तरह 36 वर्षों के दौरान गुजरात विधानसभा चुनावों में लगातार 8वीं जीत हासिल की। बड़ोदरा के मांजलपुर विधानसभा में हुए उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल की जीत ने साबित कर दिया कि बीजेपी का यहां दबदबा अब भी बरकरार है, कांग्रेस का इंतजार लंबा हो गया है। अतुल तिवारी, बड़ोदरा आज तक।
3: देश भर में E20 पेट्रोल को लेकर विरोध एक बार फिर से तेज होता जा रहा है। आज महाराष्ट्र के नागपुर में यूथ कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। नागपुर स्थित कांग्रेस के देवड़िया भवन से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के आवास तक रैली निकालने की कोशिश की गई। हालांकि पहले से तैनात पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रास्ते में ही रोक लिया था और सैकड़ों कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया।
12: जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है। प्रदर्शनकारी पुलिस की बैरिकेडिंग पर चढ़ गए हैं। व्यवहार में तल्खियां हैं, हाथों में तख्तियां हैं और जुबान पर तेवर हैं।
13: इसका हम कड़ी निंदा में निंदा करते हैं, हम इसका निषेध करते हैं।
12: तस्वीरें नागपुर की हैं, जहां यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। यह विरोध प्रदर्शन E20 यानी पेट्रोल में 20% एथेनॉल की मिलावट के खिलाफ है। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के घर तक रैली निकालने की कोशिश कर रहे थे। ये नितिन गडकरी के घर के सामने विरोध प्रदर्शन करना चाहते थे, मगर रास्ते में पुलिस ने इन्हें रोक दिया।
14: आज नितिन गडकरी जी के विरोध में हमने आंदोलन किया है। जिस तरीके से उन्होंने अपनी खुद की जेबें भरने का काम किया है, पूरी देश का पैसा समेट के वो अपनी कंपनी में डालने का काम जो कर रहे हैं, और देश हित के बारे में ना सोचते हुए वो खुद के और अपने परिवार के हित के बारे में ही बस सोच रहे हैं।
15: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

पार्टी बांकीपुर से शानदार जीत के बाद प्रशांत किशोर बोले 30 दिन में ढा दिया 30 साल पुराना किला। सीएम सम्राट पर किया बड़ा हमला, आरजेडी की जमानत जब्त। कांग्रेस के हाथ लगा मध्य प्रदेश का दतिया, यहां भी 6000 से ज्यादा वोटों से हार गई बीजेपी। गुजरात के मांजलपुर ने बचाई बीजेपी की इज्जत, 30000 से ज्यादा वोटों से जीते सत्येंद्र भाई पटेल। प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो हटाने पर मेटा ने मानी है गलती, संसदीय समिति की बैठक में माफी मांगी, तकनीकी गड़बड़ी का हवाला दिया, समिति ने जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग। यूपी विधानसभा में मॉनसून सत्र के पहले दिन चढ़ावा, चोरी पर घमासान, विपक्ष की तरफ से जोरदार प्रदर्शन, योगी बोले जनता को गुमराह न करें, दम है तो विकास पर बात करें। और झारखंड का रांची बना नया जंतर मंतर, जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी, 10 दिन से भूख हड़ताल पर देवेंद्र नाथ महतो, सीबीआई जांच की मांग।

बिहार में बीजेपी के गढ़ बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जन स्वराज के प्रशांत किशोर ने दर्ज की है जीत। बीजेपी प्रत्याशी को 19,324 वोटों से हराया। बांकीपुर विधानसभा सीट उपचुनाव में विजयी प्रशांत किशोर ने लिया अपनी जीत का प्रमाण पत्र। जन स्वराज समर्थकों में भारी उत्साह। बांकीपुर से शानदार जीत के बाद प्रशांत किशोर बोले 30 दिन में ढा दिया है 30 साल पुराना किला। प्रशांत किशोर का सीएम सम्राट चौधरी पर हमला बोले अपराधी को सीएम बनाएंगे तो तरक्की नहीं होगी। सीएम सम्राट पर प्रशांत किशोर ने साधा निशाना का आरजेडी की जमानत जब्त। बीजेपी सम्राट चौधरी को हटाए किसी और को बनाए मुख्यमंत्री। प्रशांत किशोर ने कहा हमारी प्राथमिकता जनता का सम्मान करना है। अगले 2-3 महीनों में यहां सब कुछ सुधर जाना चाहिए हम देखेंगे। सीएम सम्राट ने बांकीपुर उपचुनाव के नतीजों पर एक्स पर पोस्ट करके लिखा जनता के निर्णय का सम्मान करते हुए प्रशांत किशोर को बहुत बहुत बधाई। बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जीत पर डॉक्टर पत्नी डॉक्टर जानवी दास ने खुशी जताई जनता का धन्यवाद दिया। बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जीत पर रोहतास सासाराम स्थित पैतृक गांव में जश्न। ग्रामीणों ने अबीर गुलाल उड़ाकर मनाई खुशी। बांकीपुर में प्रशांत किशोर की जीत पर मंत्री विजय कुमार सिन्हा का बयान बोले बीजेपी हमेशा जनता के जनादेश का सम्मान करती है। हम हार की का ठीकरा भी कभी चुनाव आयोग या ईवीएम पर नहीं फोड़ते। बांकीपुर उपचुनाव में नतीजों पर आरजेडी सांसद मीसा भारती के तंज प्रशांत किशोर को बीजेपी की लोमड़ी बताया। अरविंद केजरीवाल ने बांकीपुर में जीत पर प्रशांत किशोर को बधाई दी कहा खिसक चुकी है बीजेपी की जमीन। बीजेपी के प्रति जनता में गहरा संतोष है बदलाव का साफ संकेत। मध्य प्रदेश के दतिया में विधानसभा उपचुनाव में हारी है बीजेपी। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह ने बीजेपी उम्मीदवार आशुतोष तिवारी को 6,000 से ज्यादा वोटों से हराया। दतिया विधानसभा उपचुनाव में अपनी जीत को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। भोपाल स्थित पार्टी दफ्तर में मनाया गया ढोल नगाड़ों के साथ जश्न। दतिया उपचुनाव में मिली हार पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बोले जनादेश शिरोधार्य है भविष्य में और ताकत से लड़ेंगे। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में चढ़ावा चोरी पर ट्रस्ट ने सफाई दी। उद्धव की पार्टी के कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप लगाए गए। सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष सदा सरवनकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा करीब 18 करोड़ रुपए की चोरी का मामला सामने आया जिसमें अब तक 9 की गिरफ्तारी हुई 45 निलंबित हुए और शिवसेना यूबीटी से कनेक्शन का भी दावा किया। गुजरात के मांजलपुर ने बचाई है बीजेपी की इज्जत। 30,000 से ज्यादा वोटों से जीते बीजेपी के उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल। ईटोड़ी के खिलाफ नागपुर में गडकरी के घर के बाहर यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। मंत्री के इस्तीफे की मांग सुरक्षा घेरा तोड़ने पर हिरासत में लिए गए कई नेता। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत जेनजी से बातचीत करेंगे। 6 अगस्त को मुंबई में IIMUN के 15वें वार्षिक सम्मेलन में देश भर से पहुंचेंगे 2000 से ज्यादा छात्र। महाराष्ट्र के टीटी पेपर लीक केस में सभी 15 आरोपियों की विभंडी कोर्ट में पेशी 17 अगस्त तक बढ़ाई गई है न्यायिक हिरासत। प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो हटाने पर मेटा ने गलती मानी है। संसदीय समिति की बैठक में माफी मांगी तकनीकी गड़बड़ी का हवाला दिया। समिति ने जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की। लोकसभा में हंगामे के बीच जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल बिना चर्चा के पास। सुप्रीम कोर्ट में अब 34 की जगह 38 जज होंगे। जंतर मंतर हिंसा से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान। पिछले आदेशों में संशोधन करते हुए कहा गंभीर अपराध वालों पर कोई राहत नहीं मिलेगी।

अलावा कहा CWMA और CWRC के आदेशों के बावजूद निर्धारित मात्रा में पानी नहीं छोड़ा गया। पंजाब कांग्रेस की तीसरे दिन की बैठक पर विरोध, चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थकों ने नारेबाजी करते हुए भूपेश बघेल गो बैक के नारे लगाए। आज पंजाब विधानसभा में E20 पेट्रोल के मुद्दे पर चर्चा होगी, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जानकारी दी। यूपी विधानसभा में मानसून सत्र के पहले दिन चढ़ावा चोरी का घमासान, विपक्ष की तरफ से जोरदार प्रदर्शन। सीएम योगी का विपक्ष पर हमला, बोले जनता को गुमराह न करें, हम हैं तो विकास की बात करें। उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के चलते प्रशासन का बड़ा फैसला, गाजियाबाद के स्कूलों में 4 से 12 अगस्त तक छुट्टी रहेगी। हरिद्वार में एसटीएफ के आईजी ने कांवड़ मेले की तैयारियों का जायजा लिया। कांवड़ पटरी, बैरागी कैंप, हर की पौड़ी क्षेत्र का निरीक्षण किया गया, ऑफिसर्स को निर्देश दिए गए। जयपुर में यूजीसी रोल बैक की मांग को लेकर रैली करनी सेना ने निकाली रैली, बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़े प्रदर्शनकारी, पुलिस ने लाठीचार्ज किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। इंदौर में डेंगू मलेरिया का बढ़ गया खतरा, साल 2026 से अब तक डेंगू के 45 मामले सामने आए, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले वेटलिफ्टिंग टीम का सम्मान, स्वर्ण पदक विजेता को 30 लाख, रजत पदक विजेता को 20 लाख, कांस्य पदक विजेता को मिलेंगे 10 लाख रुपए। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने शानदार प्रदर्शन दिखाया, वेटलिफ्टिंग में भारत ने 1 गोल्ड, 6 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज जीता है, कुल 8 मेडल झोली में। राष्ट्रमंडल खेलों में गोल्ड जीतने वाली मीराबाई चानू से दिल्ली में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुलाकात की, सिंधिया ने मीराबाई के प्रदर्शन की तारीफ की। वाराणसी में एनडीआरएफ ने 24 घंटे की गंगा पेट्रोलिंग, गंगा नदी में बढ़े हुए जलस्तर के बीच श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पेट्रोलिंग की। मशहूर हास्य अभिनेता सुनील ग्रोवर ने अपने जन्मदिन के मौके पर शिरडी पहुंचकर साईं बाबा का आशीर्वाद लिया, सुनील ग्रोवर ने मत्था टेक कर पूजा अर्चना की। सावन के पहले सोमवार पर बाबा केदारनाथ के दर्शनों के लेकर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह नजर आया, बाबा केदार के दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। इस साल अब तक 14,25,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए, मुश्किल रास्तों और बदलते हुए मौसम के बीच रोजाना पहुंच रहे हजारों भक्त। यूपी के मुजफ्फरनगर में देखी नोटों वाली कांवड़, कांवड़ में लगाए गए 10, 20, 50 और 100 के अनगिनत नोट, भोले के जलाभिषेक के बाद दिल्ली आ रही है कांवड़। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बारिश, राजौरी में लोगों को लैंडस्लाइड संभावित इलाकों से दूर रहने की सलाह दी गई। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बारिश के बाद भूस्खलन, सुरहोती गांव में कई मकान क्षतिग्रस्त हुए। जम्मू कश्मीर में जोजिला रोड पर भारी बारिश के बाद भूस्खलन, श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थायी रूप से यातायात पर रोक। चमोली में कर्णप्रयाग नैनीसैंण मार्ग पर भूस्खलन हुआ, अचानक से दरक गया था पहाड़, लैंडस्लाइड का खौफनाक मंजर सामने आया। उत्तरकाशी में गंगोत्री यमुनोत्री हाईवे पर बढ़ गया भूस्खलन का खतरा, गंगोत्री हाईवे पर भूसंधान से जगह जगह पड़ गई दरारें, घंटों ठप रहा आवागमन। अरुणाचल प्रदेश में भूस्खलन से राष्ट्रीय राजमार्ग 13 पर आवाजाही बाधित हुई, सीएम पेमा खांडू ने केंद्र से मांगी मदद। केरल के कई जिलों में भारी बारिश का कहर है, अरनमुला जिले में जलभराव से फंसे लोगों का नाव से किया गया रेस्क्यू, पहुंचाया गया राहत सामग्री। केरल के पथानामथिट्टा में बाढ़ जैसे हालात हैं, आवाजाही के लिए लोग ले रहे हैं नाव का सहारा। आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी उफान पर है, पोलावरम समेत कई जिलों में बाढ़ से हालत गंभीर, रेस्क्यू और राहत अभियान जारी, प्रशासन के लोगों से सावधान रहने की अपील। दक्षिण कोलकाता में कई इलाकों में झमाझम बारिश, सड़कों पर भारी जलभराव, जनजीवन प्रभावित हुआ। महाराष्ट्र के जलगांव में भारी बारिश के बाद मुंबई नागपुर हाईवे के पास टूट गया था बांध, मंत्रियों ने किया निरीक्षण, ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग की गई। ठाणे में भारी बारिश के बाद कामारी नदी में उफान, कई इलाकों में बाढ़ का पानी नजर आ रहा है। मूसलाधार बारिश के चलते ठाणे शहर में पूरी तरह से जलमग्न इलाका, निचले इलाकों में भर गया है पानी। भारी बारिश की वजह से महाराष्ट्र के नांदेड़ और सहस्त्रकुंड झरना ओवरफ्लो होने लगा, झरने को देखने के लिए बड़ी संख्या में सैलानी पहुंचे, कई वीडियो सामने आए। गुजरात के भावनगर में भी जोरदार बारिश, कई इलाकों में दुकानों में घुस गया है पानी। दिल्ली मेरठ हाईवे पर कांवड़ियों की ट्रैक्टर ट्रॉली से एक का एम्बुलेंस टकरा गई थी, कांवड़ खंडित होकर कांवड़ियों का हंगामा शुरू हुआ, लंबा जाम लगा। मुजफ्फरनगर में मामूली सी कहासुनी को लेकर कांवड़ियों के 2 गुटों में मारपीट हुई, पुलिस ने मामला शांत करा करके आगे रवाना किया। गुजरात के कच्छ में खड़ी एम्बुलेंस में लगी थी भीषण आग, फायर ब्रिगेड ने काबू पाया, कोई जनहानि नहीं। यूपी के बदायूं में पैसेंजर ट्रेन के इंजन में लगी थी भीषण आग, लोको पायलट के सूझबूझ से बड़ा हादसा टला, कुछ देर के लिए रेल मार्ग प्रभावित हुआ। आसनसोल में गौ चोरी के शक में ग्रामीणों ने युवक को पीट डाला, पुलिस ने बचाया और हिरासत में लिया।
फिल्म गोकुल 1757 का पोस्टर जारी किया गया। 1757 में अमर शाह अब्दाली की सेना के खिलाफ गोकुल के युद्ध की एक

सच्ची और ऐतिहासिक घटना पर आधारित है ये फिल्म। फिल्म रुक्मिणी का वीडियो जारी किया गया। फिल्म में मुख्य भूमिका में नजर आएंगे नितिन। यश की फिल्म टॉक्सिक का 8 अगस्त को रिलीज किया जाएगा ट्रेलर। 26 अगस्त को रिलीज होगी ये फिल्म। फिल्म जिम्मा 3 की शूटिंग शुरू हुई। 1 जनवरी 2027 को रिलीज की जाएगी ये फिल्म। फिल्म सिंह वर्सेस स्कॉट 2 का टीजर जारी किया गया। 11 सितंबर को फिल्म को रिलीज किया जाएगा। ईएमआई पर मंथन करने के लिए सोमवार से शुरू हुई आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक। अनुमान है कि महंगाई दर की जगह विकास दर पर फोकस रखने की वजह से फिलहाल नहीं बढ़ेगा रेपो रेट। शेयर बाजार में बड़ी अस्थिरता के बीच आईपीओ मार्केट की रफ्तार धीमा पड़ने का दावा है। निवेशकों की सतर्कता को देखते हुए कंपनियों ने अपने आईपीओ का साइज और वैल्यूएशन घटाना शुरू किया। जुलाई में यूपीआई के जरिए हुए ट्रांजेक्शन ने बनाया नया रिकॉर्ड। एक साल में 22% की तेजी के साथ डिजिटल पेमेंट्स ने रच दिया इतिहास। रिलीज में शांति वाली की उम्मीदों पर क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट आई है। ईरान के साथ बातचीत के संकेत मिलते ही क्रूड ऑयल 4% से ज्यादा लुढ़क कर $84 पर बैरल तक पहुंच गया। यूक्रेन युद्ध के बाद लगी पाबंदियों को दरकिनार करते हुए रूस ने भारत का तेल आयात रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। जुलाई में क्रूड इंपोर्ट में रूस की हिस्सेदारी 55% से भी ज्यादा। रूस के ब्लैक सी हॉलीडे रिजॉर्ट में यूक्रेन का भीषण हमला। 3 बच्चों समेत 7 लोगों की मौत की खबर। 40 से ज्यादा लोग घायल हुए। कई की हालत गंभीर। समुद्री बीच के पास अचानक से गिरा था ड्रोन। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ईरान पर निशाना। कहा ईरानी नेतृत्व अपना रहा है दोहरा रवैया। पहले बैठक करने के लिए कहते हैं और फिर पलट जाते हैं। कहते हैं हम ओमान से बात कर रहे हैं। ट्रंप के दावे के बीच ईरान ने अमेरिका से बातचीत का से साफ इनकार किया। ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा जब तक अमेरिकी उल्लंघन बंद नहीं होता तब तक बंद रहेगी बातचीत। 5 साल बाद पहली बार दिखी म्यांमार की पूर्व नेता आंग सान सू की। इंटरनेशनल कमेटी रेड क्रॉस के प्रतिनिधि से मुलाकात की। सैन्य सरकार ने आंग सान सू की तस्वीरें जारी की हैं। जापान के प्रधानमंत्री तकाइची ने भूकंप प्रभावित कुमामोटो का दौरा किया है। भूकंप पीड़ितों से मुलाकात की। चिकित्सा और सुविधा और सफाई अभियान को लेकर दिशा निर्देश दिए। सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा ने इराक के कुर्द क्षेत्र में राष्ट्रपति बारजानी से मुलाकात की है। दोनों ही नेताओं के बीच क्षेत्रीय तनाव को लेकर चर्चा। ब्रिटेन की राजनीतिक पार्टी रिफॉर्म यूके का बड़ा ऐलान। कहा इंग्लिश चैनल में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद चलाएंगे सबसे बड़ा सैन्य अभियान। इसका मुख्य उद्देश्य होगा अवैध प्रवासियों को रोकना। स्पेन के सेउटा में फंसे हुए प्रवासियों का छलका दर्द। कहा हम स्पेन में नौकरी चाहिए क्योंकि जान जोखिम में डालकर हम काम कर रहे हैं। रोमानिया में सूखे की वजह से घेरा गया संकट। डेन्यूब नदी में रुख मोड़ने के लिए नौसेना ने कराया लाइव विस्फोट। जल स्तर कम होने की वजह से चेरनावोडा परमाणु ऊर्जा प्लांट को भी बंद करना पड़ा। अमेरिका के जंगलों की आग से बड़ी तबाही। वॉशिंगटन राज्य में घरों तक पहुंच गई जंगल की आग। घर और दुकान समेत 600 से ज्यादा इमारतें खाक हुई। कई लोगों को घर खाली करने के लिए कहा गया।

नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के उस मजबूत गढ़ के बारे में बताएंगे जो 31 साल बाद ढह गया। हम बात कर रहे हैं बिहार की बांकीपुर सीट की, जहां पीके यानी प्रशांत किशोर के आगे सब फीके नजर आए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद इस सीट पर उपचुनाव हुआ और इस बार यहां बीजेपी के सारे समीकरण धरे के धरे रह गए। एक साल पहले जिस बांकीपुर सीट पर प्रशांत किशोर की पार्टी की जमानत तक जब्त हो गई थी, वहीं पीके ने बीजेपी को करीब 20,000 वोटों से हरा दिया। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि बांकीपुर में बीजेपी के आगे सब फीके। तो इसका विस्तृत विश्लेषण आज आपको दिखाएंगे कि आखिर क्या वजह रही कि प्रशांत किशोर यहां पर बाजी मार गए। इधर पेपर लीक के मुद्दे पर दिल्ली के जंतर मंतर से उठी चिंगारी अब झारखंड की राजधानी रांची तक पहुंच चुकी है। हजारों जेंजी युवा सड़कों पर है। मुद्दा सिर्फ एक परीक्षा का नहीं बल्कि लाखों युवाओं के भविष्य और उस भरोसे का है जो पेपर लीक और धांधली के इन आरोपों के तले हर दिन टूट रहा है। आज सवाल ये भी है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर जो भी नेता, राजनीतिक दल, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और बहुत सारे सेलिब्रिटी युवाओं के हक के लिए जोर शोर से आवाज उठा रहे थे, आज झारखंड के इस आंदोलन पर कई जगहों से बहुत सन्नाटा है। लेकिन आज ब्लैक एंड व्हाइट में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे झारखंड और जंतर मंतर में एक अंतर दिख रहा है और यहां पर बच्चे कैसे अपने इस आंदोलन को बहुत तेजी के साथ, बहुत संजीदगी के साथ और लगातार निरंतर आगे ले जा रहे हैं। इसके बाद आपको बताएंगे कि कैसे बाढ़ और भूस्खलन की वजह से देश के कई इलाके मुसीबत में हैं। जम्मू कश्मीर हो, केरल, असम, यहां पर बारिश, बाढ़ और भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई है। 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, हजारों बेघर हो चुके हैं, लाखों लोग पानी की वजह से घरों में कैद हैं। तो आज असम से लेकर केरल तक हर जगह की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे और दिखाएंगे कितनी बड़ी ये मुश्किल इस बार सामने खड़ी है। और आखिर में आपको ग्लासगो में हुए कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में बताएंगे, जहां भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 39 मेडल अपने नाम किए। और सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि भारत अब 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने जा रहा है, जिसकी आधिकारिक घोषणा हो चुकी है। लेकिन आज सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि प्रशांत किशोर ने बीजेपी को बांकीपुर की उस सीट पर कैसे हरा दिया, जहां बीजेपी लगातार 9 चुनावों से जीत रही थी। साल 1995 से लेकर 2025 तक बांकीपुर में बीजेपी ने 9 चुनाव और उपचुनाव सब के सब जीते। इनमें 5 चुनाव अकेले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने जीते। न सिर्फ जीते बल्कि ये सीट बिहार में बीजेपी के लिए सबसे सुरक्षित सीट बन गई। साल 1995 के बाद एक बार भी ऐसा नहीं हुआ जब बीजेपी को इस सीट पर 50% से कम वोट मिले हों। 50% से कम, ये आंकड़े बताते हैं कि पिछले 5 चुनाव में बीजेपी को इस सीट पर 60% से ज्यादा वोट मिले और हर बार वो बांकीपुर की सीट कम से कम 30-60% वोटों के अंतर से जीती है। आपके सामने हमने इसीलिए सारे नंबर्स रख दिए। 1995 में देखिए लगभग 40.68% वोट, फिर साल 2000 आते आते 54.93, फिर 2005 की फरवरी में देखिए 59% के आसपास, 2005 में देखिए अक्टूबर का महीना 69%, 2006-2010, लेकिन ये 15, 20 और 25 आप देखिए लगातार कंसिस्टेंटली 60% और 60% से ऊपर है। ये सीट पर दूसरी पार्टियों को वोट नहीं मिलते थे, उतने वोटों से बीजेपी इस सीट पर हर बार चुनाव जीता करती थी। लेकिन इस बार के उपचुनाव में ऐसा उलटफेर हुआ कि आज हर कोई ये पूछ रहा है कि प्रशांत किशोर ने पिछले 30 दिनों में आखिर ऐसा क्या कर दिया कि उन्होंने बांकीपुर में बीजेपी का 30 साल पुराना सबसे सुरक्षित किला ढा दिया। सिर्फ एक साल पहले 2025 में जब बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए थे तब बांकीपुर में बीजेपी को 62.6%, ये जो आप देख रहे हैं 62.6% वोट मिले थे। और हैरानी की बात यह है कि उस चुनाव में प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी भी लड़ी थी और इस सीट पर जनसुराज पार्टी की जमानत जब्त हो गई थी। 7,000 वोट हासिल हुए थे पूरे। अब चुनावी इतिहास में ऐसे बहुत कम उदाहरण मिलते हैं जब किसी पार्टी ने एक साल के अंदर इतना बड़ा कमबैक कर लिया। लेकिन इन उपचुनावों में सारी कहानियां, सारे विश्लेषण और सारे अनुमान धरे के धरे रह गए। जिस सीट पर प्रशांत किशोर की पार्टी पिछले साल जमानत भी नहीं बचा पाई थी,
वहां इस बार उपचुनाव में प्रशांत किशोर लगभग 20,000 वोटों से जीते हैं और उन्हें कुल 49.2% जो है वो वोट मिले, जबकि बीजेपी 34 यानी लगभग जो 50-60 वो लाती थी उसके आधे के से थोड़े ज्यादा पर यानी 34.4% वोट बीजेपी को मिले। इसका मतलब ये हुआ कि प्रशांत किशोर और बीजेपी के वोटों में 15% का अंतर रहा, और 15% का अंतर कोई छोटा मोटा अंतर नहीं होता है, वो भी ऐसी सीट पर जहां बीजेपी लगातार जीतती थी, उनका गढ़ माना जाता है जहां की जातिगत समीकरण बीजेपी के पक्ष में माना जाता था। बांकीपुर में बीजेपी ने नीरज सिन्हा को उम्मीदवार बनाया जो कायस्थ समुदाय से आते हैं। पूर्व विधायक और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन भी इसी कायस्थ समुदाय से आते हैं, जिनकी बांकीपुर सीट पर जानते हैं आबादी सिर्फ कायस्थ वोट कितना है 14%। प्रशांत किशोर ब्राह्मण समुदाय से हैं जिनकी आबादी इस सीट पर लगभग 7% है। हमने इसीलिए आपके सामने पूरा ब्रेकअप निकाला है। आरजेडी ने रेखा कुमारी को चुनाव लड़ाया जो वैश्य समुदाय से आती है और वैश्य भी आप देख रहे हैं कि लगभग 9% है। बांकीपुर में 9% आबादी वैश्य समुदाय के लोगों की है, 9% ही आबादी मुस्लिम समुदाय के लोगों की है। अब बीजेपी के लिए माना जाता था कि उसे बांकीपुर में कायस्थ वोट भी मिलते थे, ब्राह्मण वोट भी मिलते थे, भूमिहारों के वोट भी मिलते थे और राजपूत और कुर्मी समुदाय के वोट भी मिलते थे। तो ये पूरा नंबर जो है, और इन आंकड़ों से ऐसा ही लगता था कि बीजेपी के लिए बांकीपुर में जीतना मुश्किल नहीं होगा, और अगर बीजेपी को जातिगत समीकरणों में किसी पार्टी से टक्कर मिल सकती है तो वो पार्टी लालू यादव की आरजेडी होगी। लेकिन ये सारा गेम पलट गया है। अब सबसे बड़ी बात, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, आपको बताना चाहते हैं कि बांकीपुर सीट, आप सोचिए कि पटना में एक अर्बन सीट मानी जाती है, एक शहरी सीट जिसपे अगड़ों का अच्छा खासा बोलबाला है। ऐसे में अगर आप देखें तो कैरेक्टर और केमिस्ट्री से यह सीट बिल्कुल बीजेपी की लगती है, लेकिन बांकीपुर साल 2006 के बाद सबसे कम मतदान इस बार हुआ है बाई इलेक्शन में, सिर्फ 34% वोट इस बार डाले गए। तब प्रशांत किशोर सारे जातिगत समीकरण तोड़कर लगभग इन 34% वोट के 50% वोट हासिल करने में कामयाब हो गए और उन्हें 15% यानी लगभग 20,000 वोटों के अंतर से जीत मिली और बांकीपुर में बीजेपी का किला ढह गया। देखिए

0: चुनाव विधायक बनाने के लिए नहीं हुआ था। ये पहले दिन से हम लोग कह रहे थे कि बांकीपुर का चुनाव विधायक चुनने के लिए नहीं है। ये बिहार में भाजपा एनडीए की जो सरकार है उसका जो नेतृत्व है उस पर निर्णय लेने के लिए ये चुनाव हो रहा है, और बांकीपुर की जनता ने बड़ा स्पष्ट ये अपनी ओर से और बिहार के लोगों की ओर से ये मत दिया है कि भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को ये सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और बिहार के हित में, बिहार के बच्चों के हित में, बिहार में एक अच्छे व्यक्ति को, चरित्रवान और काबिल व्यक्ति को बिहार की कमान सौंपनी चाहिए। बिहार में हर हालत में शिक्षा हो, रोजगार हो, पलायन रुके, यही संदेश मैं इस जीत में देखता हूं।
1: बांकीपुर में बीजेपी की यह हार सामान्य नहीं है। यह हार तब हुई है जब सिर्फ 111 दिन पहले 15 अप्रैल 2026 को सम्राट चौधरी बीजेपी की तरफ से बिहार के पहले मुख्यमंत्री बने हैं, और बतौर मुख्यमंत्री यह उनका पहला चुनावी टेस्ट था। यह हार तब हुई है जब यह सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने खुद खाली की थी और वो खुद बांकीपुर में मोर्चा संभाल रहे थे, यानी नितिन नवीन का भी यह पहला चुनावी टेस्ट था। इसके अलावा यह हार तब हुई है जब नीतीश कुमार अब बिहार के मुख्यमंत्री नहीं है और उन्हें राज्यसभा भेज दिया गया है, और इस वजह से भी इन उपचुनाव को बीजेपी के लिए सबसे बड़ा टेस्ट माना जा रहा है। यह हार तब हुई है जब बीजेपी इस सीट पर लगातार 9 बार से जीत रही थी। साल 2015 में जब नीतीश कुमार और लालू यादव का गठबंधन हुआ तब उस दौर में भी बीजेपी ये सीट हारी नहीं थी, लेकिन इस बार प्रशांत किशोर ने सीट को बीजेपी से छीन लिया। ये भी तब हुआ जब भारत में पेपर लीक के मुद्दे पर एक बड़ा आंदोलन हुआ। इस आंदोलन के तहत दिल्ली और मुंबई के बाद सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन पटना की सड़कों पर हुए, जिनमें कई एफआईआर भी उस वक्त दर्ज हुई। ये उपचुनाव तब हुए जब भोजपुर में भरत तिवारी के एनकाउंटर के खिलाफ सवर्णों में बीजेपी के खिलाफ गुस्सा भी माना जा रहा था, और ये बात प्रशांत किशोर भी समझ गए थे। वो बांकीपुर में उपचुनाव लड़ने से पहले भोजपुर के बिलौटी गांव गए थे और वहां भरत तिवारी के परिवार से मुलाकात के बाद उनके भरण पोषण की जिम्मेदारी उठाने का ऐलान किया था। माना जा रहा है कि प्रशांत किशोर के इस दांव ने बीजेपी के खिलाफ सवर्णों की नाराजगी को और बढ़ाया। यही गुस्सा तब और बढ़ा जब यूजीसी के नियमों के खिलाफ बिहार और पटना में विरोध प्रदर्शन जारी रहे और बीजेपी पर यह आरोप लगा कि वो अपने कोर वोटर्स का भरोसा खो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार ने इन उपचुनावों में बीजेपी के प्रचार से दूरी बनाकर रखी और उनका बांकीपुर में एक भी कार्यक्रम नहीं हुआ। प्रशांत किशोर ने इस बात को भी मुद्दा बनाया कि बीजेपी इस सीट को और यहां के मतदाताओं को गंभीरता से नहीं ली, उसे लगता है कि यहां से उसका जीतना निश्चित है। इस नैरेटिव ने तब ज्यादा असर डाला जब बीजेपी ने अपने उम्मीदवार को बदला। अभिषेक कुमार सिन्हा के पिता का नाम घोटाले में होने के कारण उनका नाम वापस ले लिया गया और उनकी जगह उतारा गया चुनाव में नीरज सिन्हा को। यह मुद्दा इतना बड़ा बना कि प्रशांत किशोर अपने बनाए मुद्दों को बांकीपुर में गढ़ने में कामयाब रहे और बीजेपी ने प्रशांत किशोर के दावों का कई बार खंडन किया, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो अपनी बात लोगों तक वैसे नहीं पहुंचा पाई जैसे प्रशांत किशोर ने पहुंचाई। देखिए,
0: भाजपा किसी नेता से किसी ने पूछा कि अरे चर्चा है कि प्रशांत किशोर लड़ेंगे बांकीपुर में, आप क्या सोचते हैं? बोला कोई चिंता नहीं है, बांकीपुर इतना बड़ा हम लोग का गढ़ है कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो बांकीपुर की जनता हम ही लोग को वोट देगी। अब सही है ना? देखिए, अब आपके बारे में भाजपा क्या सोचते हैं? इतना बड़ा अपना बंधुआ मजदूर समझ रहा है कि कैमरे पर कहता है कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो बांकीपुर की जनता हम ही को वोट देगी। इस अहंकार को तोड़ने के लिए एक बार हराइए, आपको अपने आप असर दिखेगा।
1: अब ये देखिए कि प्रशांत किशोर की पोल मशीनरी ने बीजेपी की पोल मशीनरी को आखिर कैसे हराया। आप खुद सोचिए, प्रशांत किशोर के सामने सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ी चुनौती क्या थी? वो जानते थे कि इन उपचुनाव में उनका मुकाबला उस बीजेपी से है जिसके पास दशकों पुराना संगठन है, हर बूथ पर कार्यकर्ता है, मजबूत जातीय समीकरण है, सरकार की ताकत है, संसाधन है और चुनाव लड़ने और चुनाव जीतने की एक सेट टेम्पलेट है, जबकि प्रशांत किशोर के पास ऐसी मशीनरी नहीं थी। उनकी जन स्वराज पार्टी केवल 2 साल पुरानी पार्टी थी, स्थापित वोट बैंक भी नहीं था, पिछली बार सारी सीटें हार गए थे, एक सीट नहीं जीत पाए थे, सीमित संगठन था और सबसे बड़ी बात पिछले साल की करारी हार का एक बड़ा बोझ था। और ऐसे में ये मुकाबला चुनावी मशीनरी के स्तर पर बराबरी का कहीं से नहीं लग रहा था। और यहीं से प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी और अपनी रणनीति में कई बड़े बदलाव किए। सबसे पहले उन्होंने खुद चुनाव लड़ने का फैसला किया, जबकि पिछले साल उन्होंने ऐसा नहीं किया था, चुनाव ही नहीं लड़े थे। दूसरा, उन्होंने पार्टी के चुनावी ढांचे को छोटा और प्रभावी बनाया, यह तय किया कि उनकी मुख्य टीम में 100 से ज्यादा लोग नहीं होंगे। इसके बाद उन्होंने हर टीम के लिए अलग अलग जिम्मेदारियां तय की, जिनमें बूथ प्रबंधन, महिलाओं तक पहुंच, जातीय संपर्क, जो डेटा और एनालिटिक्स है, और सोशल मीडिया, सबको उन्होंने शामिल किया। यानी टीम में कम लोग रखे लेकिन उन्हें ऐसे काम सौंपे जो बिल्कुल स्पष्ट थे। इसके बाद जब बीजेपी और आरजेडी उपचुनाव की तैयारी कर रही थी, तब प्रशांत किशोर लगभग 2 महीने पहले ही बांकीपुर में सक्रिय हुए और यही सबसे बड़ा अंतर आया। प्रशांत किशोर और बीजेपी की पोल मशीनरी में एक और बड़ा अंतर यह था कि उन्होंने बड़ी रैलियों पर कम भरोसा किया। बड़ी रैलियां और रोड शो करने के बजाय प्रशांत किशोर ने पूरी रणनीति डोर टू डोर अभियान पर बनाई। अब देखिए, वो चुनाव प्रचार के दौरान गलियों में पैदल घूमे, चाय की दुकानों पर बैठे, अलग अलग मोहल्ले में गए और घर घर यात्रा की, बैठके की, रात तक पदयात्राएं की, छोटे छोटे समूह में लोगों से मुलाकात की और वार्ड स्तर पर वोट बैंक तैयार की। मंच पर चढ़कर नहीं बल्कि मंच से उतरकर लोगों के बीच जाकर ये चुनाव वो लड़े। और उन्होंने जो मुद्दे उठाए वो बहुत अहम मुद्दे थे। उन्होंने लोगों से जाकर ये पूछा कि उनके यहाँ सड़क कब बनेगी, उनके यहाँ जल भराव क्यों होता है, ट्रैफिक की समस्या कब खत्म होगी, नौकरियां कहाँ है, शिक्षा का क्या हाल है, स्थानीय प्रशासन जवाब दे क्यों नहीं है। ऐसे मुद्दे वो लोगों के बीच उठाते रहे और ये सारे मुद्दे उठाकर उन्होंने चुनाव को बांकीपुर के मुद्दों का चुनाव बनाया। और ऐसा नहीं है कि ये रणनीति पहली बार अपनाई गई, इस रणनीति को पहले भी कई चुनाव में अलग अलग नेताओं ने अपनाया है, लेकिन प्रशांत किशोर ने इन मुद्दों को एक योजना के तहत उठाया। और जानते हैं, बीजेपी को हराने के लिए उन्होंने बांकीपुर में 250 प्रोफेशनल वॉलंटियर्स को उतार दिया, जो प्रशांत किशोर को चुनाव जिताने के लिए सिर्फ काम नहीं कर रहे थे बल्कि प्रोफेशनल्स की तरह इस टास्क में पूरी तरह जुटे हुए थे। यानी जिस वक्त बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, नितिन नवीन, चिराग पासवान, रविशंकर प्रसाद, मनोज तिवारी, रवि किशन, कई केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री समेत 40 स्टार प्रचारक बीजेपी को जिताने के लिए रैलियां कर रहे थे, तब प्रशांत किशोर ने 250 लोगों की एक प्रोफेशनल टीम को मैदान में उतारा हुआ था, जो डेटा के साथ मुद्दों पर लोगों को प्रशांत किशोर से जोड़ने में जुटी हुई थी। यहां प्रशांत किशोर बांकीपुर के लोगों से एक बात बार बार कह रहे थे कि अगर लोग उन्हें चुनेंगे तो वो उन्हें शर्मिंदा नहीं करेंगे। यानी वो लोगों को ये भरोसा दिलाना चाहते थे कि अगर इन उपचुनाव में जनता ने उन्हें चुनकर विधानसभा भेजा तो वो अकेले ही सरकार के नीतिगत फैसलों पर उसे जवाबदेह बनाने के लिए काफी है और विधानसभा में विपक्ष की आवाज कमजोर नहीं होगी। पश्चिम देशों में इस सिद्धांत को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है, जिससे लोग ये सोचते हैं कि सरकार पर दबाव बनाए रखने के लिए एक ऐसे नेता को चुनाव जीतकर जरूर भेजा जाए जो कम से कम अपनी आवाज उठा सके, उनकी आवाज उठा सके या इस मुद्दे को सही से पेश कर सके। जैसे भरत तिवारी एनकाउंटर, इस मुद्दे पर बिहार में बहुत विवाद हुआ लेकिन विधानसभा में ये मुद्दा इस तरह से उठा ही नहीं जैसे कई लोग सोच रहे थे, चाह रहे थे। और यहां चिंता सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं है बल्कि चिंता विपक्षी पार्टियों के लिए भी है। प्रशांत किशोर लंबे समय से कहते रहे हैं कि बिहार में काफी लोग बीजेपी को इसलिए वोट देते हैं क्योंकि वो आरजेडी को सत्ता में नहीं देखना चाहते। और प्रशांत किशोर के मुताबिक वो बांकीपुर के नतीजों से ऐसा संकेत देने में कामयाब रहे हैं कि अगर लोगों को कोई विश्वसनीय तीसरा विकल्प मिलता है तो वो बीजेपी और आरजेडी दोनों से हटकर भी वोट दे सकते हैं। और यही वजह भी है कि इस उपचुनाव में बीजेपी प्रशांत किशोर से 15% वोटों से पिछड़ी और आरजेडी की तो जमानत ही जब्त हो गई, जबकि आरजेडी बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी है। देखिए,
2: आपने जात के लिए वोट दिया, आपने धर्म के लिए वोट दिया, आपने मोदी के लिए वोट दिया, आपने लालू के लिए वोट दिया, एक बार इन सबसे ऊपर उठिए। ये सरकार बनाने के लिए वोट नहीं है, किसी को हटाने के लिए वोट नहीं है, एक बार बिहार को नया रास्ता दिखाने के लिए वोट दीजिए।
0: वो सामान्य वो युवा थे जो रोज रोज हो रहे पेपर लीक से, अनएम्प्लॉयमेंट से, ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था से परेशान थे, वो किसी एक नेता के पीछे नहीं आए थे, वो अपने और अपने साथियों के लिए बेहतर भविष्य के लिए वो आए थे वहां पर। और उसका परिणाम देखिए, अपने को दुनिया का सबसे बड़ा दल बताने वाली भाजपा 3 दिन के अंदर सारी हेकड़ी हवा हो गई।
2: पहली बार 30 वर्ष में भाजपा वाले थर थर थर थर कांप रहे हैं। 40 आदमी का टीम बनाया है, पूरी सरकार लगी है।
3: आप जब खड़े हुए हैं, भाजपा को खाली ये डर हुआ है कि कोई दूसरा विकल्प भी लोग ले सकते हैं।
0: अगर वोट आपने दे दिया तो अगला चुनाव लोकसभा का है, लिख कर रखिए, भाजपा का एक एक नेता आपके घर आएगा, आपसे पूछेगा, ए चचा काहे नहीं वोट दिए, काहे नाराज है, आपकी पूछ बढ़ेगी।
4: बांकीपुर बिहार का पहला विधानसभा बनेगा जहां अगर आपके बच्चे के पढ़ाई के लिए सरकारी स्कूल अच्छा नहीं है तो आप अपने बच्चे को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाइए, उसका खर्चा प्रशांत किशोर के जिम्मे अपने भाई अपने बेटे
5: छोड़ दिए। इतने वोट से भाजपा हारेगी कि जीवन में कभी ये कहने का दुस्साहस नहीं कर पाएंगे कि हम लोग कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो चुनाव जीत जाएगा।
1: अब तक प्रशांत किशोर से बार बार यही पूछा जाता था कि वो दूसरों को चुनाव जिता सकते हैं, लेकिन क्या खुद कोई चुनाव जीत सकते हैं? अगर आप इस ग्राफिक्स को देखेंगे तो चुनावी रणनीतिकार की भूमिका में प्रशांत किशोर ने कई राजनीतिक पार्टियों को चुनाव जिताए हैं, हालांकि कई जगह पर वो फेल भी हुए हैं। और कई लोग ये आरोप लगाते हैं कि जहां जहां जीतने की प्रोबेबिलिटी या चांस ज्यादा हो वहां पर प्रशांत किशोर पहुंच जाते हैं मदद करने। लेकिन देखिए, जब साल 2012 में नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और अपने कार्यकाल का लगातार तीसरा चुनाव लड़ रहे थे, तब प्रशांत किशोर ने ही उनके लिए चुनावी रणनीति पर काम किया था। इसके बाद साल 2014 के लोकसभा चुनाव में वो प्रधानमंत्री मोदी की टीम का हिस्सा थे और इसके बाद उन्होंने बिहार से लेकर पंजाब, पंजाब से लेकर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से लेकर दिल्ली, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में डीएमके को 2021 का विधानसभा चुनाव जो है उसमें वो रणनीतिकार रहे और ये लोग चुनाव जीते। और एक चुनावी रणनीतिकार के रूप में उनका करियर शानदार रहा, लेकिन जब 2024 में उन्होंने अपनी खुद की पार्टी बनाई, बिहार में तीसरा विकल्प बनने के लिए ताल ठोकी, बड़ी मेहनत की, 2 साल तक तो सिर्फ घूमते रहे अपनी पार्टी बनाने से पहले, तब पिछले साल विधानसभा चुनाव में 236 सीटों पर उनकी पार्टी की जमानत जब्त हुई। तो 236 पे तो जमानत जब्त हुई और मतलब कुल मिलाकर उनको लेकर, उनकी लीडरशिप को लेकर, उनकी पार्टी, उनकी सोच को लेकर बहुत सारे सवाल उठे। लेकिन आज प्रशांत किशोर ने अपना पहला जो चुनाव है, जब वो खुद चुनावी मैदान में उतरे तो जीत दर्ज की और कई चीजों को इसके साथ बदल दिया। अब ये नहीं कहा जा सकता कि जनसुराज पार्टी से प्रशांत किशोर का एक एक प्रयोग है। दूसरा, अगर बीजेपी का सबसे सुरक्षित गढ़ भी चुनौती में आ सकता है तो बिहार की बाकी सीटों पर मुकाबला और मुश्किल हो सकता है। तीसरा, जनसुराज पार्टी अब सिर्फ बीजेपी ही नहीं, आरजेडी और कांग्रेस के लिए भी चुनौती बन सकती है, यानी बिहार की राजनीति में तीसरे विकल्प की संभावना पहले से ज्यादा मजबूत दिख रही है। और प्रशांत किशोर ने खुद कहा है कि 30 साल का गैप सिर्फ 30 दिनों में भर गया, यानी इस बयान के जरिए उनका इशारा था कि सालों से जिस राजनीतिक जगह को खाली माना जा रहा था उसे उन्होंने बहुत कम समय में भर दिया। बांकीपुर के अलावा आज एक और सीट के उपचुनाव की चर्चा है, वो भी बीजेपी को हार वहां मिली है। ये सीट है मध्य प्रदेश की दतिया सीट, जहां कांग्रेस को जीत मिली। 2023 विधानसभा चुनाव के दौरान इस सीट पर बीजेपी के दिग्गज नेता नरोत्तम मिश्रा हार गए थे, लेकिन इस बार उपचुनाव में बीजेपी ने उन्हें टिकट ही नहीं दिया, जिस पर काफी विवाद भी हुआ था। नरोत्तम मिश्रा के समर्थक काफी नाराज थे और दतिया में बीजेपी के जिला कार्यकारिणी से सामूहिक इस्तीफे भी हुए। हालांकि बाद में नरोत्तम मिश्रा ने बीजेपी उम्मीदवार के लिए प्रचार भी किया और कहा समर्थन करेंगे, लेकिन इसके बावजूद बीजेपी दतिया में उपचुनाव हार गई। अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का कहना है कि इस बार पार्टी को पहले से ज्यादा वोट मिले हैं और पहले भी ये सीट कांग्रेस जीती थी, अभी भी कांग्रेस जीती है। सुनिए,
6: दतिया चुनाव कांग्रेस की सीट कांग्रेस के पास है, ये अलग बात है कि पिछले विधानसभा चुनाव से भी हमने 1700 वोट ज्यादा पाए हैं। चुनाव में जनतंत्र में हमारे प्रति जनता का विश्वास, बीते विधानसभा चुनाव के बाद 29 की 29 लोकसभा अगर जीती है तो आजादी के बाद पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने जीती है। लोकसभा के बाद विधानसभा के उपचुनाव में बुधनी की बीजेपी की सीट बुधनी की वापस हमने हमारे पास रखी, बल्कि अमरवाड़ा की कांग्रेस की सीट भी बीजेपी ने जीती। ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है। इसी के साथ साथ तीनों राज्यसभा चुनाव, राज्यसभा की सीट आजादी के बाद वो भी भारतीय जनता पार्टी ने जीती। लेकिन मैं फिर कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र में चुनाव इसी बात के लिए कहते हैं, हमने अपनी बात रखी, कांग्रेस ने अपनी बात रखी, जनता ने जो निर्णय किया हम उसको सिरोधारी करते हैं और उम्मीद करते हैं आने वाले चुनाव में और ताकत से लड़ेंगे और जीतेंगे। धन्यवाद।
1: तो चलिए, बांकीपुर और दतिया के अलावा एक और सीट पर उपचुनाव हुआ है जहां बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। ये सीट है गुजरात की मांजलपुर। यहां बीजेपी के सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार को 30,000 से ज्यादा वोटों के बड़े अंतर से हरा दिया है। अब अगली खबर का रुख करते हैं और बताते हैं आपको रांची का जंतर मंतर, दिखाते हैं बल्कि रांची का जंतर मंतर, जहां बड़ी संख्या में जेंजी युवा भर्ती परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। ये सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं है, ये उन लाखों युवाओं की बेचैनी की आवाज है जो मानते हैं कि अगर नौकरी की परीक्षा भी ईमानदारी से नहीं होगी तो मेहनत का मतलब क्या रह जाएगा। और हम चाहते हैं कि आज आपको इस विश्लेषण को भी ध्यान से देखना चाहिए और इन छात्रों के दर्द, इनकी पीड़ा को समझना चाहिए। लेकिन इसी के साथ आज जगह जगह पर पूरे देश में इनके संयम की भी बड़ी चर्चा है, तो हम आपको दिखाएंगे कैसे दो वजहों से आज इसकी बड़ी चर्चा है। चर्चा का पहला कारण है भर्ती परीक्षाओं में धांधली, जिसके कारण कई युवा प्रभावित हो रहे हैं और ये मुद्दा बहुत गंभीर है। लेकिन चर्चा का दूसरा कारण उन नेताओं, राजनीतिक पार्टियों, कलाकारों, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पर भी है जो जंतर मंतर के आंदोलन पर काफी सक्रिय थे। कुछ लोग सोशल मीडिया पर सक्रिय थे, कुछ लोग खुद भी पहुंचे थे। लेकिन झारखंड में इसी छात्र आंदोलन पर उन सब ने चुप्पी साध ली है। यहां सवाल उठता है कि ऐसा आखिर क्यों है? क्या इसलिए क्योंकि झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार है जिसमें विपक्ष की पार्टियां शामिल है, कांग्रेस और जेएमएम की सरकार चल रही है? अगर ऐसा है तो फिर सबसे बड़ा नुकसान हमारी राजनीति का नहीं बल्कि उन लाखों करोड़ों छात्रों का है जिनकी लड़ाई राजनीतिक रंग में खो जाती है और छात्रों के असली मुद्दे भी इस आधार पर तय होने लगते हैं कि वो किस पार्टी के राज्य में आंदोलन करेंगे तो उन्हें समर्थन मिलेगा। ये दुख की बात ही कही जा सकती है। बेरोजगारी, पेपर लीक, भर्ती घोटाला जैसे मुद्दों का कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं और कोई विचारधारा नहीं हो सकती। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि जब जंतर मंतर पर हमने छात्रों को इतना आंदोलित देखा, लगातार उनकी खबरें चलती रहीं, लगातार समर्थन उनको मिलता रहा, तो ऐसे में आज इन बच्चों की क्या गलती है कि छात्रों के इस मुद्दे पर भी पार्टी वाली राजनीति हावी हो रही है, उससे कोई ऊपर उठने को तैयार नहीं है। इसीलिए हमने शुरुआत में एक शब्द का इस्तेमाल किया था, रांची का जंतर मंतर। हमने ये तुलना किसी राजनीतिक कारण से नहीं की थी, हमने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि हमें इन दोनों आंदोलनों में एक समानता दिखाई देती है। बच्चे निकले हैं, आप खुद देखिए, दिल्ली में भी जेंजी युवा अपने भविष्य के लिए लड़ रहे थे, रांची में भी जेंजी युवा अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। दिल्ली में भी सबसे बड़ा सवाल परीक्षाओं की विश्वसनीयता का था और रांची में भी सवाल वही है। देखिए आप रांची की तस्वीरें, दिल्ली में मांग थी कि छात्रों की मेहनत के साथ धोखा बंद हो और रांची में भी यही मांग है। इसीलिए असली तुलना जगह की नहीं मुद्दे की है। हालांकि रांची का आंदोलन सिर्फ इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि देश में पहले जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ था। यह आंदोलन अपनी अलग वजहों से पैदा हुआ, इसकी अपनी कहानी है, अपनी पीड़ा है और हम चाहते हैं कि पूरा देश इन छात्रों के दर्द को जाने। ये छात्र आंदोलन एक परीक्षा के नतीजे को लेकर शुरू है जो सरकारी अधिकारी बनने के लिए होनी थी। इसका आयोजन झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा किया जा रहा था। अब जेपीसीसी का ये एग्जाम इस बार आयोग ने 103 पदों के लिए प्रीलिम्स यानी प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की थी जिसके 2 जुलाई को नतीजे घोषित हुए। इसमें 2,204 उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए चुना गया, लेकिन नतीजे आते ही बड़ी संख्या में छात्रों ने आरोप लगाया कि परीक्षा में धांधली हुई और उनसे उनका हक चुरा लिया गया। इनमें भी सबसे पहली आपत्ति कट ऑफ लिस्ट को लेकर थी। हर बड़ी भर्ती परीक्षा में सामान्य, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस जैसी सभी श्रेणियों की कट ऑफ सार्वजनिक की जाती है ताकि उम्मीदवार समझ सके कि चयन किस आधार पर हुआ। लेकिन छात्रों का आरोप है कि इस बार आयोग ने यह जानकारी जारी ही नहीं की। सोचिए, जब कट ऑफ ही नहीं होगी तो कोई जिम्मेदार कैसे, कोई भी जो जिसने दिया हो एग्जाम, कोई कैंडिडेट है, कोई उम्मीदवार है, वो कैसे जानेगा कि चयन का आधार क्या था। दूसरा विवाद मेरिट लिस्ट को लेकर सामने आया। आरोप लगाया गया कि आयोग द्वारा जारी लिस्ट पर संवैधानिक सदस्यों के हस्ताक्षर ही नहीं थे। यानी छात्रों ने सवाल उठाए कि क्या ये नतीजे प्रक्रिया के अनुसार घोषित किए गए या फिर नहीं। और सबसे बड़ा विवाद ओएमआर शीट को लेकर हुआ। सोशल मीडिया पर कुछ ओएमआर शीट्स वायरल होने लगी और इनमें भी एक ओएमआर शीट को लेकर दावा किया गया कि उसमें लगभग 48 प्रश्नों के ही सही उत्तर भरे गए थे। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि मुख्य परीक्षा में पहुंचने के लिए लगभग 144 अंक के आसपास की जरूरत थी, इससे 48 नंबर लाकर पास होना संभव ही नहीं है और इस परीक्षा में बड़े स्तर पर धांधली हुई है। ये वो तमाम आरोप थे जिनके बाद छात्रों ने आंदोलन शुरू किया। कुछ लोगों ने इसे दिल्ली के जंतर मंतर आंदोलन से जोड़ दिया क्योंकि वहां भी भर्ती और परीक्षा व्यवस्था को लेकर आंदोलन हुआ था। लेकिन यह समझना जरूरी है कि रांची का आंदोलन किसी दूसरे आंदोलन की नकल नहीं है, यह अपनी वजहों से पैदा हुआ आंदोलन है और इस वक्त यह रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में चल रहा है, जहां से विधानसभा की दूरी 13 किलोमीटर है। झारखंड लोकसभा लोक सेवा आयोग का दफ्तर सिर्फ 1 किलोमीटर दूर है। शुरुआत में यहां मुश्किल से 200 छात्र जुटे थे लेकिन अब संख्या हजारों में पहुंच चुकी है। एक दिन पहले छात्रों ने मशाल जुलूस निकाला और ये मशाल सिर्फ आग को नहीं जला रही थी, ये उस गुस्से का प्रतीक थी जो सालों से बेरोजगार युवाओं के भीतर जमा होता जा रहा है। छात्रों का आरोप है कि झारखंड में भर्ती परीक्षाओं पर पहले भी सवाल उठते रहे हैं लेकिन हर बार जांच की घोषणा कर दी जाती है और फिर मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। इस बार भी सरकार ने CID की विशेष जांच टीम बनाई है और जांच के निर्देश दिए लेकिन प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि उन्हें अब ऐसी जांच पर भरोसा ही नहीं रहा। उनकी मांग है कि जांच एक ऐसी एजेंसी करे जिस पर किसी भी तरह का राजनीतिक या प्रशासनिक प्रभाव ना हो। अब ये देखिए कि छात्रों को झारखंड सरकार पर विश्वास क्यों नहीं है, तो उसके पीछे एक नाम है और वो है अभय तिवारी। जांच एजेंसियों के मुताबिक अभय तिवारी गोड्डा जिले में ब्लॉक सप्लाई ऑफिसर के पद पर तैनात एक सरकारी अधिकारी है और हैरानी की बात यह है कि यही सरकारी अधिकारी उस TDPL नाम की कंपनी से भी मिला हुआ था जो इन भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करा रही थी। ये सब भी तब हुआ जब इस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जा चुका था और यहीं से सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर कोई कंपनी पहले ब्लैकलिस्ट हो चुकी थी तो फिर उसे दोबारा इतनी बड़ी परीक्षा कराने की जिम्मेदारी कैसे मिली। यही नहीं, झारखंड की जांच एजेंसियों का दावा है कि अभय तिवारी इन सरकारी नौकरियों की भर्ती परीक्षा में कहीं ना कहीं एक जिसको कहते हैं बीच में बिचौलिए की भूमिका निभा रहा था। CID के मुताबिक उसके पास सरकारी नौकरियों का एक रेट कार्ड मिला है और आज यही रेट कार्ड प्रदर्शनकारी छात्र अपने मंच पर टांग कर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं कि अगर नौकरी भी पैसों से बिकेगी तो फिर पढ़ाई किस लिए की जा रही है, कोचिंग किस लिए की जा रही है, रात रात भर जागकर तैयारी किस लिए की जा रही है। सोचिए, आज किसी गांव का किसान अपना खेत बेचकर बेटे को शहर पढ़ने भेजता है, कोई माँ अपने गहने गिरवी रखती है, कोई पिता रिटायरमेंट की जमा पूंजी कोचिंग और किराए में खर्च कर देता है, सालों तक पूरा परिवार सिर्फ एक उम्मीद पर जीता है कि एक दिन सरकारी नौकरी मिलेगी, जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन अगर आखिर में नौकरी का फैसला मेहनत नहीं बल्कि पैसे पहुंच या सिफारिश से होने लगे तो सबसे पहले भरोसा मरता है। और जब किसी देश का युवा सिस्टम पर भरोसा खो देता है तो नुकसान सिर्फ एक परीक्षा का नहीं होता, वो जंतर मंतर हो या रांची का ये स्टेडियम, उसका गुस्सा सिस्टम पर निकलता है। इसीलिए रांची का आंदोलन सिर्फ 103 नौकरियों की लड़ाई नहीं है, ये उस भरोसे की लड़ाई है जो हर भर्ती घोटाले के बाद थोड़ा थोड़ा टूटता जा रहा है। शायद यही वजह है कि इस आंदोलन को किसी पार्टी के चश्मे से नहीं बल्कि एक छात्र की आंखों से देखने की जरूरत है।
7: सरकार को जगाना है तो नींद नहीं आती हम लोग को।
8: आज जाए तो जाए कहाँ, हेमंत चाचा बोलते हैं कि तुम उसका बेचो, गुलगुला बेचो और ये बकरी बेचो, बकरी पालो, हड़िया बेचो, तो झारखंडी हड़िया बेचेगा और आप पेपर बेचेगा। तो इसीलिए हेमंत चाचा के मेरी आग्रह है कि हमें मौत दे दीजिए और या तो इंसाफ दीजिए या न्याय दीजिए। तो हेमंत चाचा आप जरूर से जरूर इस पे इंसाफ कीजिए, क्योंकि ये जो छात्र है वो यूं ही नहीं निकले हैं।
9: प्लीज आप जल्दी से यहाँ पधारें, आप आइए, आप हमसे एक बार वार्तालाप करके देखें कि हम स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं, आप आखिर क्या चाह रहे हैं, आखिर क्यों इतने बच्चे त्रस्त हो चुके हैं। तो आप प्लीज जल्दी से आइए और हम स्टूडेंट्स की भावनाओं को थोड़ा कदर कीजिए।
10: मांगे यही है कि जो भी जेपीएससी जेएससी है उसकी जो रिजल्ट है उसको रद्द करना चाहिए।
11: कम से कम हम जैसे युवाओं को समस्या को समझिए आप, क्यों? क्योंकि हम इसी राज्य के युवा हैं, हम किसी और जगह से नहीं आए हुए हैं। और हम जैसे युवा जो हमारे अंदर पोटेंशियल, उस पोटेंशियल को आप समझिए।
12: एक होता है ना, सोया हुआ आदमी को जगाना आसान है, लेकिन जो जगा हुआ आदमी और सोने का नाटक कर रहा है उसको जगाना थोड़ा मुश्किल है। तो खैर हम लोग जगा लेंगे।
13: हम बता रहे हैं कि मेरा माँ बाप कैसे कैसे पैसा, मेरा पापा का उम्र 80 वर्ष हो गया, वो अभी हमको कमा के पढ़ा रहे हैं। सोचिएगा हमको उम्र 26-27 साल हो गया और हमारा सरकार नहीं सुन रहा था, हम कैसे, हम आखिर माँ बाप का सहारा भी नहीं बन पा रहे हैं।
1: जैसे जंतर मंतर के आंदोलन को सोनम वांगचुक के रूप में एक बड़ा चेहरा मिला, उन्होंने 26 दिनों तक छात्रों की मांग को लेकर अनशन किया, ठीक उसी तरह झारखंड के इस छात्र आंदोलन को देवेंद्र नाथ महतो के रूप में एक बड़ा चेहरा मिल गया है जो परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ अनशन पर लगातार है। देवेंद्र नाथ महतो ने साल 2024 में विधानसभा का चुनाव भी लड़ा था और अपने चुनावी हलफनामे में खुद को सामाजिक कार्यकर्ता, छात्र आंदोलन का नेता बताया था। यह उनका पहला आंदोलन नहीं है, इससे पहले भी वो स्कॉलरशिप, पेपर लीक, भर्ती नियम, आरक्षण नीति और परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ सवाल उठाते रहे हैं। और जानते हैं वो छात्रों की ये लड़ाई क्यों लड़ते हैं। वो कहते हैं कि जब झारखंड लोक सेवा आयोग की छठी परीक्षा हुई थी तब उसमें हुई गड़बड़ियों के खिलाफ आंदोलन करते हुए उन्होंने अपनी मां को खो दिया था और तभी से वो छात्र आंदोलन उनके अधिकारों की लड़ाई से जुड़ गए। सुनिए।
14: भूख हड़ताल पर यहाँ पे हैं देवेंद्र नाथ महतो, छात्र के नेता हैं और इनसे सीधे बातचीत करते हैं। दूसरा दिन है ये, कब तक जारी रहेगा देवेंद्र जी ये जो आपका आंदोलन है और इंडेफिनिट पास जो है, क्या ये अनिश्चितकालीन आपका पास?
15: हाँ, अनिश्चितकालीन है। यह संघर्ष का शुरुआत 5 जुलाई से हुई है और 25 जुलाई से दीवारात्रि सत्याग्रह दिन रात जागरण से हुआ और ये थकान शरीर में ही, कल से अन्न का त्याग कर दिए हैं, आज भूख हड़ताल का दूसरा दिन है। ये सब लिपापोती है, ऐसा बहुत बार हुआ है, कार्रवाई होती है, गिरफ्तारी होता है, इस्तीफा देते हैं, लेकिन अचानक एडमिट कार्ड जारी करके एग्जाम ले लिया जाता है और सीट को बेचने में सफल हो जाते हैं।
14: एक बुक जो है वो साथ में रखा हुआ है, भारत का संविधान इनके हाथ में है और यहाँ उनके समर्थक भी बैठे हुए हैं, इनडेफिनिट स्ट्राइक पे है, इन्हें कहा जा रहा है सोनम वांगचुक के तरह ही पार्ट टू है वो ये, और आर पार की लड़ाई के मूड में ये लोग साफ तौर से हैं। सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।
1: झारखंड सरकार ये कह रही है कि वो इस परीक्षा में हुई धांधली को लेकर कड़े कदम उठा रही है और झारखंड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और ऐसे में छात्रों का ये आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन आंदोलन पर बैठे छात्र सरकार से अब भी 5 बड़ी मांगे कर रहे हैं। उनकी पहली मांग यह है कि मौजूदा परीक्षा के नतीजों को रद्द किया जाए। दूसरी मांग है इन परीक्षाओं की जांच सीआईडी से नहीं बल्कि सीबीआई से कराई जाए और इनमें झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों को भी शामिल किया जाए। तीसरी मांग है कि भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता लाई जाए, उनकी प्रक्रिया में बड़े सुधार लागू हो जिसे हर परीक्षा की कट ऑफ सार्वजनिक हो, छात्रों को ओएमआर शीट उपलब्ध कराई जाए, आंसर की इवैल्यूएशन प्रोसेस पूरी तरह पारदर्शी हो, ओएमआर शीट में नो अटेम्प्टेड का विकल्प भी, नॉट अटेम्प्टेड का विकल्प भी छोड़ा जाए। चौथी मांग यह है कि जवाबदेही तय हो, यानी जंतर मंतर के आंदोलन में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का की जवाबदेही मांगी गई, उनका इस्तीफा हुआ। ठीक उसी तरह झारखंड में भी इस मुद्दे पर जवाबदेही तय हो, बड़े अधिकारियों को सामने लाया जाए। और आखिर मांग ये है कि झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो कार्य प्रणाली है उसमें सुधार किया जाए, जिससे छात्रों की मेहनत बर्बाद ना हो। और ये क्यों जरूरी है, इसके लिए आपको ये आंकड़े देखने होंगे। आपको यकीन नहीं होगा कि साल 2000 में झारखंड बनने के बाद ये लगभग हर बड़ी भर्ती परीक्षा किसी न किसी विवाद में रही है। सरकार चाहे किसी भी पार्टी की रही हो, हर बार इन परीक्षाओं की प्रक्रिया पर सवाल उठे, कोई सरकार कुछ नहीं कर पाई। जब झारखंड में साल 2014 से 2019 के बीच बीजेपी की सरकार थी, तब पूरे कार्यकाल में झारखंड लोक सेवा आयोग की एक भी परीक्षा ही नहीं कराई गई। 2019 के बाद हेमंत सोरेन की सरकार ने बैकलॉग भरने के लिए अलग अलग परीक्षाएं कराई, लेकिन हर बार इन परीक्षाओं के नतीजों में गड़बड़ी के आरोप लगे। और इससे आप ये समझ सकते हैं कि झारखंड में ये जो छात्र आंदोलन चल रहा है, ये अचानक नहीं हुआ, ये किसी राजनीतिक पार्टी के लिए नहीं है। और इन छात्रों ने खुद अपने इस आंदोलन के बाहर जो बातें लिखी हैं, वो सबको पढ़नी चाहिए। इन पर लिखा है कि आंदोलन के मंच से किसी भी तरह का राजनीतिक, धार्मिक, जातिगत भाषण या बयान ना दें। आंदोलन के मुद्दों पर ही अपनी बात रखें, दूसरी जो बात लगी है, और आजादी जैसे नारे ना लगाएं। तीसरी बात यह लिखी है कि इन जेन जी छात्रों की लड़ाई सिस्टम से है, इसलिए इस मुद्दे को राजनीतिक ना बनाएं। और चौथी बात यह लिखी गई है कि कोई भी छात्र अपने बयानों भाषणों में अपशब्दों का इस्तेमाल ना करें, गाली गलौच को कंप्लीट नो, और ना ही पोस्टर और बैनर पर गालियां और आपत्तिजनक बातें लिखें। और इस कोड ऑफ कंडक्ट को पढ़कर बहुत सारे लोग इस छात्र आंदोलन की तारीफ कर रहे हैं। देखिए,
16: आप लोग किसी को भी यहाँ पे सपोर्ट नहीं करना है, आजादी का नारा यहाँ, ये जंतर मंतर नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये स्टूडेंट का भाषण है, जो वक्तव्य है वो हम स्टेज से नहीं देंगे। हम यहाँ डे वन से स्टूडेंट के साथ में बहुत मेहनत कर रहे हैं, यहाँ पे सोशल मीडिया पे मेहनत कर रहे हैं, ग्राउंड पे मेहनत कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं आवेदन करना चाहूंगा सभी स्टूडेंट से कि कोई भी ऐसे लोगों का यहाँ पे साथ नहीं देगा जो आजादी के नारे लगाएंगे, जो धार्मिक नारे लगाएंगे और जो राजनीतिक यहाँ पे बयानबाजी करेंगे। धन्यवाद।
17: हम लोग बस इतना चाहते हैं कि आपका जो, हम लोग का जो मांग है वो मांग तो हमेशा रहेगा ही, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि आप डेलीगेशन दीजिए, अपना बात रखें और हम लोग यहाँ से जितना अपना सामान बोरिया बिस्तर बांध के चले जाएं।
18: कोई अगर ये सोचेगा इस मंच का दुरुपयोग करना, कोई भी राजनीतिक पार्टी, तो मैंने कहा था मेरे मरने के बाद कोई इसका, इस मंच का दुरुपयोग करेगा, कोई पार्टी इस मंच का प्रयोग, इसीलिए हम अलग हुए। कोई सोचा कि हम पार्टी का चुनाव प्रचार प्रसार करेंगे, हम नहीं करने देंगे। मैंने खुद छात्रों से वादा किया था कि मैं मरूंगी उसके बाद इस मंच का दुरुपयोग किया जाएगा। आप देख रहे हैं सारे छात्र हैं।
1: और अब अगली खबर का रुख करते हैं। पिछले 3.5 साल से भारतीय कुश्ती महासंघ में मचे घमाहा घमासान में बड़ी अपडेट है। आपको याद होगा 18 जनवरी साल 2023 को दिल्ली के जंतर मंतर पर विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया जैसे बड़े पहलवानों ने एक धरना प्रदर्शन किया था। ये धरना रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्कालीन अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ था। प्रदर्शनकारी पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया और उन्हें पद से हटाने और गिरफ्तार करने की मांग की थी। आरोपों के मुताबिक महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न के मामले साल 2012 से 2022 के बीच के थे। करीब 3.5 साल बाद इस मामले में दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने बृजभूषण शरण सिंह पर लगे सारे आरोपों को खारिज कर दिया है और बरी किया है। कोर्ट ने माना है कि बृजभूषण पर लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए पीड़ित पक्ष सबूत पेश नहीं कर पाया, यानी सबूतों के अभाव में यह फैसला दिया गया है। बृजभूषण शरण सिंह पर 7 महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया था, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल थी। उन पर महिला पहलवानों को जबरन पकड़ने या छूने, सांस की जांच के बहाने उन्हें गले लगाने, बैक टच के आरोप थे। यौन उत्पीड़न के इस मामले में सुनवाई के दौरान पॉक्सो केस की नाबालिग पीड़िता ने अपने आरोपों को वापस ले लिया था। माना जा रहा है कि यह केस वापस लिए जाने के बाद बृजभूषण पर लगे अन्य पीड़ितों के आरोपों पर कई सारे संदेह खड़े हुए और वकीलों ने फिर उस पूरे मामले को उसी तरह से आगे उठाया। इधर दिल्ली पुलिस ने पॉक्सो केस में 550 पन्नों की रिपोर्ट में बताया कि नाबालिग के आरोपों को साबित करने वाले सबूत नहीं थे। इसी रिपोर्ट में पीड़िता की तरफ से दावा किया गया उसने बृजभूषण शरण सिंह पर जो आरोप लगाए थे वो टीम में ना चुने जाने की निराशा, मानसिक तनाव की वजह से लगाए गए थे। अब ये बातें जब सामने आई पीड़िता के नए बयान और जांच के बाद, पुलिस ने पॉक्सो केस को रद्द करने की रिपोर्ट दाखिल की थी। फिलहाल राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले से पूर्व बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह बहुत खुश नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि वो पहले से ही जानते थे कि सारे आरोप कोर्ट में धराशायी होंगे और इसी वजह से वो साल 2023 में हुए बवाल के बावजूद अपना पद छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। अगली खबर का रुख कर रहे हैं। इस समय देश के कई इलाकों में बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की वजह से तबाही मची है। 24 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। वहीं दूसरी तरफ कई राज्य ऐसे हैं जहां भारी बारिश, बाढ़, तबाही मची हुई है। देश के पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी और तटीय इलाकों तक कुदरत का कहर जारी है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भारी बारिश और फ्लैश फ्लड ने हाहाकार मचा दिया है। कटरा जो रियासी मार्ग है वहां पहाड़ भयानक तरीके से दरका। यहां लैंडस्लाइड की वजह से नेशनल हाईवे 144 बंद हो गया है। मीना मार्ग पर पानी के तेज बहाव में एक कार फंस गई थी जिसे जॉइंट ऑपरेशन के जरिए किसी तरह से बाहर निकाला गया। देखिए इधर करगिल के चितकन इलाके में नाला उफान पर आने से कई गांव सैलाब की चपेट में आ गए हैं। गांदरबल में फ्लैश फ्लड के चलते कुछ ही देर में पूरा एक इलाका ही डूब गया। रास्तों में पानी भर गया और घरों में पानी की दीवार में इस वक्त एक तरह से जितने भी घर हैं वो कैद हो चुके हैं। सोनमर्ग इलाका पानी का सैलाब तेजी से आगे बढ़ रहा है। उधर श्रीनगर जाने वाले जो हाईवेज हैं उन पर ट्रक्स की लंबी कतारें लगी हुई हैं। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों तक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है जिससे संकट और गहरा सकता है।

0: और अब बात केरल की, असम से लेकर जम्मू कश्मीर, केरल में बाढ़ के ऐसे हालात हैं कि इंसान बेबस हो चुका है। ये तस्वीरें केरल के पथानाम थिट्टा की है। देखिए कैसे ये लोग घरों में कैद हैं, ये बाहर निकल नहीं सकते क्योंकि बाहर पानी का पहरा है। ऐसा हाल यहाँ पर इसलिए क्योंकि सड़कों पर गाड़ियों की जगह नावें इस वक्त चल रही हैं। लोग घरों में कैद हैं, सुरक्षा कर्मी कमर तक पानी में उतरकर लोगों तक किसी तरह से पीने का पानी और जो जरूरी खाने पीने का सामान है वो पहुंचा रहे हैं। इधर केरल के श्रीकंदपुरम की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बाजार, रिहायशी इलाके घुटनों तक पानी है, नदियां उफान पर है, पानी घरों के अंदर तक पहुंच गया है। मौसम विभाग ने केरल के 12 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 खत्म हो गए हैं। इस बार भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन दिखाया है। भारत ने कॉमनवेल्थ गेम्स में पिछली बार की तरह अपना चौथा स्थान बरकरार रखा है। इस बार भारतीय खिलाड़ियों ने 13 गोल्ड, 17 सिल्वर, 9 ब्रॉन्ज मेडल और साथ ही कुल मिलाकर 39 मेडल जीते हैं। खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन और इस प्रदर्शन के बीच और भी बड़ी खुशी की खबर बता दें कि साल 2030 में भारत कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी करने वाला है। इस मेजबानी की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। साल 2030 की मेजबानी पाने के एक समारोह में भारतीय ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष पीटी उषा और जैवलिन के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा और गुजरात के डेप्टी सीएम हर्ष सांघवी ने कॉमनवेल्थ गेम्स का फ्लैग रिसीव करके 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी का ऐलान किया। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय दल का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा और इसने मेजबान की खुशी दोगुना कर दिया है। इस बार के कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत ने कुल 39 मेडल जीते। साल 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स की तुलना में लेकिन अगर हम देखें तो ये बहुत कम है। तब हमने 61 मेडल पिछली बार जीते थे। हालांकि इस बार मेडल जीतना पिछली बार की तुलना में ज्यादा बड़ी बात है क्योंकि पिछले बार भारत से 210 खिलाड़ियों का दल गया था और इस बार केवल 123 खिलाड़ियों का गया है। छोटा भारतीय दल होने की वजह यह थी कि इस बार ग्लासगो के जो कॉमनवेल्थ गेम्स थे उसमें केवल 10 खेल ही शामिल किए गए थे जबकि 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में 19 खेल आयोजित किए गए। इस बार बैडमिंटन, कुश्ती, शूटिंग, हॉकी, टेबल टेनिस और क्रिकेट को शामिल ही नहीं किया गया। साल 2022 में करीब 30 पदक हमें इन्हीं खेलों से मिले थे। तो ऐसा देखा जाए तो 2022 में 210 खिलाड़ियों के दल ने कुल 61 मेडल जीते थे जबकि इस साल 123 खिलाड़ियों के दल ने 39 मेडल जीते हैं। मतलब यह है कि इस बार का सक्सेस रेट करीब 31% है जबकि 2022 में सक्सेस रेट 29% था। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और याद रहे, टूटा हुआ कांच और टूटा हुआ इंसान कमजोर नहीं बल्कि घातक होते हैं। नमस्कार।
1: बिहार के विधायक पद से सीधे बीजेपी के अध्यक्ष पद तक पहुंचे नितिन नवीन की खाली हुई सीट पर उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने 19,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल कर ली है। बीजेपी के सामने अब तक जहां मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी रही वहां बांकीपुर में तेजस्वी यादव की पार्टी की जमानत तक जब्त हो गई।
2: बिहार की एक खासियत है, जब जब आपको लगता है कि आप बिहार को समझ गए, बिहार आपको झटका देता है।
3: सच है कि बिहार ने चौंकाया है। लड्डू तो बीजेपी वाले बताते हैं कि 200 किलो बनवाया,
4: 200 किलो लड्डू बनाया जा रहा।
3: लेकिन कहावत है, कहा जाता है हाथ खुआया मुंह ना लगा। यही तो साल की शुरुआत में सबको चौंकाकर बीजेपी अध्यक्ष बनकर लड्डू चखने वाले नितिन नवीन के राज्यसभा में जाने के बाद खाली हुई विधानसभा सीट बांकीपुर पर हुआ, जहां मुख्यमंत्री के साथ रोड शो करते बीजेपी अध्यक्ष दावा करते रहे जनता की लहर साथ है।
5: मुझे पूरा विश्वास है कि जो समर्थन जनता का दिख रहा है वो निश्चित रूप से 3 अगस्त को फिर से एनडीए का कमल, भाजपा का कमल बांकीपुर की जनता खिलाएगी।
3: लेकिन जब नतीजे बांकीपुर उपचुनाव के आए, पता चला जनता तो अध्यक्ष जी की ही पारंपरिक सीट पर पीके के साथ चली गई। जिस

बीजेपी अपने ही अध्यक्ष की सीट पर उपचुनाव नहीं जीत पाई। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद पहली बार हुए उपचुनाव में बीजेपी हार गई। बिहार में बीजेपी के पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद हुए उपचुनाव में बीजेपी जीत नहीं पाई। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री रहते पहला ही उपचुनाव बीजेपी हार जाती है। 3 दशक से जीती जा रही सीट पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ता है। हिंदू बाहुल्य और बीजेपी के कोर समर्थक वोटर वाली सीट पर बीजेपी को हार मिलती है, वो भी उन प्रशांत किशोर से जिन्हें 9 महीने पहले बिहार के विधानसभा चुनाव में चूका हुआ मान लिया गया था। प्रशांत किशोर की जीत बड़ी या बीजेपी अध्यक्ष की छोड़ी हुई सीट पर बीजेपी की हार बड़ी,

0: सबसे बड़ी ताकत सवर्ण वोटर छिटक गया है। सवर्ण वोटर विकल्प बेहतर मिले तो साथ बीजेपी का छोड़ सकता है और सेफ सीट का मतलब अब कुछ नहीं, क्योंकि 1995 से जहां बीजेपी लगातार जिस इलाके में जीतती आई वहां भगवा रंग की जगह पीके का पीला रंग चढ़ जाना कोई छोटी सियासी खबर नहीं। पटना के जिस बांकीपुर में बीजेपी को कभी भी कुल वोटों का 59% से कम वोट नहीं मिला, जिस बांकीपुर में 9 महीने पहले विधानसभा चुनाव में नितिन नवीन की उम्मीदवारी पर बीजेपी को 63% वोट मिलता है, वहाँ अब की बार बीजेपी प्रत्याशी केवल 34.50% वोट पाते हैं। आरजेडी प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाती है और प्रशांत किशोर 49.19% वोट लेकर जीतते हैं। जिस बांकीपुर में 9 महीने पहले बीजेपी ने 51,936 वोट के अंतर से जीत हासिल की, वहां अब की बार बीजेपी के प्रत्याशी नीरज कुमार को 44,827 वोट ही मिले। बीजेपी को प्रशांत किशोर ने अपने पहले ही चुनाव में 64,151 वोट हासिल करके 19,000 से ज्यादा वोट के अंतर से हराया है। जीत मिलते ही प्रशांत किशोर ने भले एक सीट जीती हो, भले वो अपनी पार्टी के इकलौते विजयी उम्मीदवार विधानसभा में बने हो, लेकिन एक उपचुनाव की चाल से वो सीधे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को शह और मात दे देना चाहते हैं।
1: रेफरेंडम है ये सम्राट चौधरी पे?
2: बिल्कुल, वो तो है।
1: बार बार कह रहे थे जनमत संग्रह है ये।
2: बिल्कुल, सम्राट चौधरी के नेतृत्व को बिहार की जनता स्वीकार्य नहीं करती है, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है।
1: और नितिन नवीन के सीट पे इतनी बड़ी जीत, किला ध्वस्त किया है बीजेपी का आपने?
2: किला किसी का नहीं होता है।
3: आराम से चलिए।
2: 30 साल का किला 30 दिन भी नहीं लगा, और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि भाजपा ने चुनाव जीतने के बाद यहाँ पर एक अपराधी प्रवृत्ति के आदमी को, एक गलत चाल चरित्र के चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व दिया है, जो बिहार के लोगों को स्वीकार्य नहीं है।
0: 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद 111 दिन के भीतर पहली चुनावी परीक्षा में वो पास नहीं हो पाए, जहां प्रशांत किशोर लगातार सीधे एक वोट एक सीट से सम्राट चौधरी पर निशाना प्रचार के दौरान साधते रहे।
4: आपका एक वोट विधायक नहीं चुनेगा, बिहार में मुख्यमंत्री बदल देगा। अगर आप सम्राट चौधरी को हटाना चाहते हैं तो अभी आपके पास रास्ता है। एक बार संकल्प लीजिए, भाजपा को बांकीपुर में हराइए, लिख के ले लीजिए, सम्राट चौधरी का कुर्सी हिलने लगेगा, सम्राट चौधरी को हटाने का रास्ता खुल जाएगा।
0: इसके बाद जैसे ही बांकीपुर में जीत का डंका प्रशांत किशोर बजाते, वो इस बात को दोहराते कि बांकीपुर में बीजेपी की हार का मतलब मुख्यमंत्री की हार है।
4: पहला काम बस यही है कि बांकीपुर की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, अपनी ओर से जो हो सकेगा बांकीपुर में सुधार का प्रयास करेंगे। अगले 2-3 महीने में आपको वो चीज दिखेंगे भी। मैं कोई बहुत बड़ी बड़ी बात बोलना नहीं चाहता हूँ। विधायक, मेरे विधायक बनने से बांकीपुर बंगलोर नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ सुधार होता अगले 2-3 महीने में दिखेगा। बड़ी बात यह है कि ये चुनाव बांकीपुर के नाली गली पर नहीं लड़ा गया है, ये चुनाव लड़ा गया है कि बिहार का नेतृत्व किसके हाथ में होना चाहिए। और बांकीपुर की जनता ने ये संदेश दिया है भाजपा के नेतृत्व को कि भाई आप अच्छे आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए, सम्राट चौधरी की जगह किसी कुशवाहा को बनाना है बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कुशवाहा को ही बनाइए, लेकिन कुशवाहा समाज के ही किसी अच्छे आदमी को बनाइए।
0: प्रशांत किशोर की जीत हुई, सम्राट चौधरी ने अब सोशल मीडिया पर लिखा है, लोकतंत्र के महापर्व में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनता ने जन सुराज को चुना है, मैं जनता के इस निर्णय का सम्मान करते हुए प्रशांत किशोर को उनकी जीत पर हार्दिक बधाई देता हूं।
5: लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो चुनाव परिणाम के रुझान आ रहे हैं उसको हम सिर झुकाकर स्वीकार करते हैं, और हम पूरी समीक्षा करेंगे। बांकीपुर के लोग हमारे हैं, हमसे अलग क्यों हुए इसकी भी हम समीक्षा करेंगे।
6: ये लोकतंत्र की भूमि है और जनता के जनादेश को भारतीय जनता पार्टी हमेशा शिरोधार्य की है। हम कभी भी ठीकरा चुनाव आयोग या ईवीएम पर नहीं फोड़ते हैं, ये विपक्ष के लोगों के तरह।
4: हम लोग की लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, बहुमत भाजपा का है, एनडीए का है, मुख्यमंत्री तो उन्हीं का बनेगा। हम लोग बस इतना ही आग्रह कर रहे हैं, बिहार की जनता इतना ही आग्रह कर रही है, बांकीपुर की जनता इतना ही मोदी

0: से आग्रह कर रही है कि किसी अच्छे चरित्रवान काबिल आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए, ताकि बिहार के लोग भी इस बात का गौरव, बिहारी होने का गौरव कर सकें, ताकि हम लोग के बच्चों के लिए भी पढ़ाई रोजगार की व्यवस्था हो, सब कुछ सुविधा अगर गुजरात के ही लोगों को मिलेगी तो सिर्फ बिहार के लोग कहाँ जाएंगे। गुजरात के लोग 1,00,000 करोड़ के बुलेट ट्रेन पर चलेंगे वो ठीक है, लेकिन हम लोगों को कम से कम पैसेंजर भी तो मिलना चाहिए। बिहार के लोग सिर्फ मजदूरी करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं, और 5 साल के लिए भाजपा को मैंडेट मिला है, उनको अच्छा आदमी देना चाहिए, अच्छे लोगों को मंत्रिमंडल में रखना चाहिए, ताकि बिहार की तरक्की हो, बिहार का विकास हो।
1: गुजरात के मांझलपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने बड़ी और निर्णायक जीत हासिल की है। बीजेपी उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस के भिखाभाई रबारी को 30,630 वोटों के बड़े अंतर से हराकर सीट बरकरार रखी। ये उपचुनाव बीजेपी के वरिष्ठ नेता और 8 बार के विधायक रहे योगेश पटेल के निधन के बाद हुआ था। कम मतदान के बावजूद बीजेपी ने अपने मजबूत जनाधार को कायम रखते हुए स्पष्ट संदेश दिया कि मांझलपुर में उनका संगठन और सियासी पकड़ अभी भी मजबूत है।
2: बाकीपुर ने मायूस किया, दतिया ने दर्द बढ़ा दिया, लेकिन गुजरात के मांझलपुर ने बीजेपी के चेहरे पर मुस्कान लौटा दी। मांझलपुर में बीजेपी के सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखाभाई रबारी को 30,630 वोटों से हरा दिया।
3: ये भाजपा की जीत, एक कार्यकर्ता की जीत, ये विकास की जीत, नरेंद्र भाई मोदी की जीत और हमारे सभी कार्यकर्ताओं को खूब खूब अभिनंदन।
4: खुशी का माहौल है। भारत देश के प्रणेता वड़ा प्रधान अपने नरेंद्र भाई मोदी जी की ये सेना विकास के लिए काम करती है, तो लोग ऑब्वियसली भाजपा का ही वोट देंगे।
2: एक दिन 3 राज्य 3 नतीजे, 2 जगह झटका, 1 जगह बड़ी राह। बिहार में सियासी किला दरका, मध्य प्रदेश में भी जीत हाथ से फिसल गई, लेकिन गुजरात के मांझलपुर ने बता दिया कि बीजेपी का गढ़ अब भी मजबूत है।
5: हमारे भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं को जाता है, जिन्होंने दिन रात एक करके ये चुनाव जीता है। मैं सभी नागरिक भाइयों बहनों का और कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
6: भारतीय जनता पार्टी हमेशा संगठनात्मक काम करती है, हर एक कार्यकर्ता इसमें इन्वॉल्व होता है और काम करता है, और उसका परिणाम है।
2: मांझलपुर सीट पूर्व मंत्री और 8 बार के विधायक योगेश पटेल के निधन के बाद खाली हुई थी। योगेश पटेल ने 1990 से 2007 के बीच बड़ोदरा की रावपुरा विधानसभा सीट का 5 बार प्रतिनिधित्व किया, फिर परिसीमन के बाद नई बनी मांझलपुर सीट से चुनाव लड़ा। योगेश पटेल ने 2012, 2017 और 2022 में मांझलपुर सीट से लगातार जीत दर्ज की, और इस तरह 36 वर्षों के दौरान गुजरात विधानसभा चुनावों में लगातार 8वीं जीत हासिल की। बड़ोदरा के मांझलपुर विधानसभा में हुए उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल की जीत ने साबित कर दिया कि बीजेपी का यहां दबदबा अब भी बरकरार है, कांग्रेस का इंतजार लंबा हो गया है। अतुल तिवारी, बड़ोदरा आज तक।
1: सिद्धिविनायक वो दरबार जहां मुख्यमंत्री, मंत्री, अभिनेता और आम भक्त सब गणपति बप्पा के चरणों में एक समान होकर मत्था टेकते हैं, लेकिन अब उसी दरबार की दान पेटी सियासत के केंद्र में आ चुकी है, क्योंकि राज ठाकरे ने आरोप लगाया है कि सिद्धिविनायक मंदिर में हर साल 18 करोड़ रुपए का चंदा हड़प लिया जाता है। वहीं ट्रस्ट का दावा यह है कि ट्रस्ट की वजह से ही मामला उजागर हुआ है, लेकिन जब चढ़ावे पर ग्रहण की बात सामने आती है तो राजनीति भी जवाब देने से बच नहीं सकती।

0: घंटियों की गूंज, गणपति बप्पा की आरती, श्रद्धालुओं का सैलाब, ये दृश्य मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में होता है, जहां हर दिन हजारों श्रद्धालु अपनी मन्नतें लेकर पहुंचते हैं, जहां सत्ता भी सिर झुकाती है, विपक्ष भी नमन करता है, अभिनेता से लेकर आम आदमी तक हर कोई गणपति बप्पा के चरणों में आशीर्वाद देने पहुंचते हैं। लेकिन अब इसी मंदिर का चढ़ावा राजनीति के केंद्र में है। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने संगीन आरोप लगाया है। राज ठाकरे ने दावा किया है कि मुंबई के मशहूर सिद्धिविनायक मंदिर में हर साल 18 करोड़ रुपए का चंदा हड़प लिया जाता है।
1: महोदय, विश्वस्तांच्या सतर्कतेमुळे मंदिरातल्या दानपेटीतून पैसे चोरणारे कर्मचारी पकडले गेलेले आहेत। हे कर्मचारी पकडण्यापूर्वी दर बुधवारी मंदिरातल्या दानपेटीतील रकमेची मोजदाद ही 50 लाख रुपयाच्या आत होती। मात्र हे कर्मचारी पकडल्यानंतर गेले 3 आठवड्याची दानपेटी रक्कम ही 1.5 कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचली आहे। याचाच अर्थ, यापूर्वी दर आठवड्याला दानपेटीतील जमा होणाऱ्या काही रकमेतील काही रक्कम ही लंपास होत होती। त्यामुळे दरवर्षी सुमारे 18 कोटी रुपयांचे मंदिराचे नुकसान होत होते।
0: वहीं सिद्धिविनायक ट्रस्ट के अध्यक्ष और शिवसेना नेता सदा सरवणकर कहते हैं कि ट्रस्ट की सतर्कता से ही गड़बड़ी सामने आई है। ट्रस्ट के मुताबिक 9 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया, FIR दर्ज कराई गई। ट्रस्ट के पूर्व अधिकारी राजन पेंडुलकर समेत 45 कर्मचारी सस्पेंड किए गए। गिरफ्तार आरोपियों के संबंध शिवसेना UPT की नेता विशाखा राउत और दूसरे नेताओं से है। इसके साथ ही ट्रस्ट के अध्यक्ष सदा सरवणकर इसके पक्के सबूत होने का भी दावा कर रहे हैं।
2: चोरी में जितने भी इन्वॉल्व है वो 9 जन को पकड़ा है। उसके बाद लूपहोल्स जो थे, आज दादर स्टेशन में अगर आप एक टैक्सी में बैठेंगे तो वो टैक्सी में भक्तगण अगर यहाँ आते हैं तो उनसे 5,000 लिया जाता था, दर्शन वगैरह सब लेके। वो पहला बंद किया, उसके बाद ये सब आजू बाजू में दलाल लोग घूमते थे, दर्शन के लिए 2,000 3,000 लेते थे, वो सारा बंद हो गया। ये हमारे जो यहाँ की सिक्योरिटी है, यहाँ के कर्मचारी है, उनको गूगल पे करके ये दर्शन दिया जाता था। हमने जितने भी कर्मचारी है सबका फोन बंद कर दिया। अभी किसी कर्मचारी के हाथ में फोन नहीं आपको मिलेगा। जितना भी हमको डाउट आएगा वो हर चीज के ऊपर हमने कुछ न कुछ एक्शन लिया होगा।
0: इसलिए भगवान के नाम पर चढ़े हर रुपए का हिसाब भी न्याय की कसौटी पर ही तय होना चाहिए।
3: मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर में चढ़ावे को लेकर अब महाराष्ट्र में नया सियासी तूफान खड़ा हो गया है, क्योंकि MNS प्रमुख राज ठाकरे ने एक चिट्ठी का हवाला देते हुए ये आरोप किया है कि इस चढ़ावे में बड़ी तादाद में घोटाला हो रहा है। छोटा मोटा नहीं बल्कि सालाना करीबन 18 करोड़ रुपए का घोटाला जो है इस चढ़ावे के पैसों में किया जा रहा है। ऐसी एक चिट्ठी इस ट्रस्ट के ही कुछ ट्रस्टियों ने मिलकर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लिखी थी। 21 अप्रैल 2026 को ये पत्र लिखा गया था, जिस पर ये आरोप किए गए हैं कि यहाँ से पैसों की अफरा तफरी हो रही है, दान पत्र से पैसे चुराए जा रहे हैं।
0: मामला 18 करोड़ का हो या फिर 18 रुपए का, बप्पा के नाम पर चढ़ाया गया एक एक रुपया पवित्र है। सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष सदा सरवणकर ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि मंदिर में हर साल करीब 18 करोड़ रुपए के दान का हेर फेर होता था, जिसे मौजूदा ट्रस्ट ने रोककर चढ़ावे की कमाई में भारी बढ़ोतरी की है। मंदिर की आय 2 साल में 114 करोड़ से बढ़कर 182 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। वहीं फडणवीस सरकार में मंत्री छगन भुजबल कहते हैं कि अगर किसी के पास ठोस जानकारी है तो सरकार को जानकारी मुहैया कराए, जांच होगी और सच सामने आएगा।
4: चढ़ावा जो लोग चढ़ाते हैं भगवान को, सिद्धिविनायक, उस चढ़ावे में कुछ गलत हुआ है या कुछ, मतलब जो चंदा जमा होता है तो शायद उनके पास कोई मालूमात होगी, वो अगर सरकार को शासन को दे देंगे उसकी इंक्वायरी होगी और क्या गलत है क्या सही है साबित करेंगे।
0: अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच का चैप्टर अभी बंद भी नहीं हुआ है कि मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में गड़बड़ियों ने अरब सागर से आने वाली सियासी हवा को गर्म कर दिया है। दान पेटी में गिरता हर सिक्का, हर चढ़ावा सिर्फ मुद्रा और नोट नहीं होते, उनमें किसी माँ की मन्नत होती है, किसी मेहनतकश शख्स की कमाई, किसी परिवार की आस्था। इसलिए मंदिर के चढ़ावे पर उठा हर सवाल करोड़ों श्रद्धालुओं के भरोसे पर सवाल बन जाता है।
5: महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में बीजेपी नेता और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत मिल गई है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने ब्रजभूषण शरण सिंह और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व सचिव विनोद तोमर को बाइज्जत बरी कर दिया है।
6: महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण के मामले में 1133 दिनों तक वकीलों ने दलीलें दी। सुनवाई हुई, तथ्य परखे गए और फिर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि ब्रजभूषण और उनके सह आरोपी विनोद तोमर को बाइज्जत बरी किया जाता है।
7: बरी शब्द का इस्तेमाल की जगह पर कोर्ट ने बाइज्जत बरी शब्द का इस्तेमाल किया है। बरी और बाइज्जत बरी में फर्क होता है। एक बरी होता है कि सबूतों के अभाव में आपको छोड़ा जा रहा है, यहाँ सीधे सीधे कहा गया कि आपको नाम लेकर के कि आपको बाइज्जत बरी किया जा रहा है।
6: दरअसल 3 साल पुराने इस मामले की बंद कमरे में हुई सुनवाई और तमाम गवाहों सबूतों की पड़ताल के बाद अदालत के फैसले में जो बड़ी बातें सामने आई हैं, उनमें से एक तो ये है कि शिकायतकर्ता और पुलिस ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ के आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं कर पाए। दूसरा ये कि शिकायतकर्ताओं के बयानों में तारीख, समय और घटना स्थल को लेकर बड़े विरोधाभास दर्ज किए गए थे। महिला पहलवानों ने खेल मंत्रालय की ओवरसाइट कमेटी में दिए हलफनामे और अदालत में दिए बयानों में फर्क था। कुछ घटनाओं में ब्रजभूषण शरण सिंह कथित घटनाओं के समय दूसरी जगह मौजूद रहने के प्रमाण मौजूद थे और बरी होने की बड़ी वजह ये भी थी कि कथित घटनाएं 2016 से 2019 के बीच की थी, जिनका आरोप 2023 में लगाया गया था।
7: तब मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि ये सब झूठ है, और अगर इसमें एक भी आरोप साबित होगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा।
6: अब महिला पहलवानों के मामले में बजरंग पुनिया ने लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करने की बात कही है, लेकिन इस मामले में जबरदस्त सियासत हो रही है।
8: क्यों नहीं सबको करेंगे, सब चोर जितने लोग पार्टी में दाखिल हुए दूसरे पार्टीज में, अरे यही तो प्रधानमंत्री थे, तो बंगाल के मुख्यमंत्री के बारे में क्या क्या बोले थे,
9: आरोप लगे थे, जांच होनी चाहिए थी, जांच होकर न्यायपालिका में गया, अब न्यायपालिका ने जो फैसला दे दिया उसका सम्मान करें, या तो सरकार को अगर लगता है कि सही नहीं है तो सरकार ऊपरी कोर्ट में जाए।
6: देखना यह है कि आरोप लगाने वाली महिला पहलवानों का रुख अब क्या होता है। मौसमी सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
5: रांची में 14वीं जेपीएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। छात्र रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में 10 दिन से धरना दे रहे हैं। कल शाम बड़ी संख्या में छात्रों ने मशाल जुलूस निकाला था। उन्होंने हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की थी। उधर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दिपके ने रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बात की है और उन्हें अपना समर्थन देने का ऐलान किया है।
10: सामाजिक कार्यकर्ता जो भेज देते हैं वही हम लोग खाके और दिन रात भर यही देखिए यही टेंट में आप तो देख रहे हैं पानी हो यही बहुत याद क्या करे सर, हम लोग मरता क्या नहीं करता वाला स्थिति है सर।
11: मदद की थाली हाथ में पकड़े इस युवा को देखने के बाद सवाल उठता है कि आखिर नीति नियंताओं के हलक के नीचे खाना उतरता कैसे।
10: ऐसे गाँव से आते हैं सर, वहाँ आज भी हम घर का पहला आदमी है, पूरे खानदान का, पूरे गाँव एक टोला मतलब खानदान का पहला आदमी है ना कि हम लोग बाहर निकले हैं पढ़ने लगे। अभी तक हम लोग शिक्षा से इतना दूर है हमारा समाज, अगर हम यहाँ पढ़े आए हैं सर, अगर हम पढ़ के कुछ नहीं करेंगे तो हमारे आने वाला जो पीढ़ी है वो देखेगा तो कहेगा कि भैया या चाचा पढ़ लेते तो क्या कर लेते।
11: तो GM, DM, CM, PM सब सुनिए, सुनिए इस छात्र की पुकार। अशिक्षा के अंधकार से निकल कर आया ये लड़का सवाल कर रहा है किसी में इतना ताप कि जवाब दे सके,
10: क्योंकि हम लोग तो गरीब आदमी हैं सर, और गरीब आदमी हैं, अगर हम लोग कोई भी आदमी पढ़ के नौकरी का मतलब मांगता है ताकि हम लोग के आर्थिक समाज अति शैक्षणिक थोड़ा मजबूत हो, इसीलिए तो हम लोग पढ़ रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं। एक रूम में हम लोग कितना दिन से, हम लोग कुछ भी मिल रहा है सर, कैसे कैसे खाते आप तो जानते हैं।
11: रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बेरोजगारी से त्रस्त युवा जो बात कहते हैं वो सत्ता के सीने में शून सी चुभनी चाहिए, क्योंकि ये युवा झारखंड में भर्ती आयोगों की धांधली से त्रस्त आ चुके हैं। प्रदर्शन करते ये नौजवान झारखंड में लगातार धरना देते हुए केवल झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और JSSC के तहत होने वाली भर्तियों में होते भ्रष्टाचार से त्रस्त होकर एक हफ्ते से आंदोलन कर रहे हैं।
12: नारेबाजी चल रही है और अब इस आंदोलन को अलग अलग जगह से समर्थन भी मिलने लगा है। BJP ने इस प्रोटेस्ट का खुलकर समर्थन किया है। एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया है। साथ ही साथ कॉकरोच जनता पार्टी ने भी बात की है, उसके संस्थापक अभिजीत दीपके ने भी बात की है यहाँ पे और कहा है कि जिस सपोर्ट की जरूरत है वो सपोर्ट देने को तैयार है ताकि जो आंदोलन अपने अंजाम तक पहुँच सके।
11: अब सवाल यह है कि छात्रों की पुकार क्यों नहीं सुन रही है हेमंत सरकार। सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।
5: बारिश कभी राहत बनकर आती है तो कभी आफत बनकर सब कुछ बहा ले जाती है। पश्चिम भारत इस वक्त पानी के ऐसे ही प्रहार से जूझ रहा है। महाराष्ट्र से गुजरात तक आसमान से बरसता पानी अब जिंदगी की रफ्तार को रोक रहा है। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, कई शहरों की गलियां तालाब बन चुकी हैं, तो कहीं करोड़ों की गाड़ियां बाढ़ के पानी में कबाड़ में बदल चुकी हैं।
11: ये तस्वीरें महाराष्ट्र के भिवंडी की हैं। कामवारी नदी अब सिर्फ बह नहीं रही बल्कि खतरे का इशारा दे रही है। पानी इतना बढ़ चुका है कि नदी किनारे खड़ी गाड़ियां एक एक कर डूबने लगी हैं। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की हर नजर नदी के बढ़ते जलस्तर पर टिकी है। अब जरा रुक कीजिए जलगांव का। यहाँ पहली ही तेज बारिश ने मुंबई नागपुर नेशनल हाईवे के फ्लाईओवर के नीचे की जमीन बहा दी। जिस सड़क पर रफ्तार दौड़ती थी वहाँ अब सवाल खड़े हैं। मंत्री मौके पर हैं, जांच के आदेश हैं, लेकिन तस्वीरें विकास की गुणवत्ता पर बड़ा सवाल छोड़ रही हैं।
13: अतिशय गंभीर है। मान्य गडकरी साहबांच्या कारवाई मी स्रोत टाकलेला आहे, त्यांनी सांगितलं की जर कडक ऍक्शन आपण त्या ठिकाणी घेऊ, पण मोठी दुर्घटना टळली असे म्हणायला हरकत नाही। अन्यथा या ठिकाणी वाहन चालले असताना जर असं झालं असतं तर मला वाटतं मोठी दुर्घटना त्या ठिकाणी झाली असती। पण या संदर्भामध्ये तर आम्ही सर्वजण, म्हणजे मी बाहेरगावी होतो, रात्री नाशिकहून आलो, गुलाबभाऊ पण या ठिकाणी बाहेर, आम्ही आज ठिकाणी निघालो, राजू मामा इथले आमदार आहेत, आम्ही या ठिकाणी आलेलो आहोत। पण कडक कारवाई करण्याच्या संदर्भामध्ये ठेकेदारावर मग त्याला ब्लॅकलिस्ट करा, त्याच्यावर कारवाई करा।
11: महाराष्ट्र के नांदेड़ के सहस्रकुंड झरने का नजारा अद्भुत है, लेकिन 100 फीट की ऊंचाई से गिरते पानी में चेतावनी भी छिपी है। यही बारिश कहीं सैलानियों को आकर्षित कर रही है तो कहीं लोगों की जिंदगी को बेबस बना रही है। ये मंजर गुजरात के वलसाड़ जिले के वापी का है, जहां सड़कें नदी बन गई और हजारों कारें पानी में डूबकर कबाड़ में बदल गई। बाढ़ का पानी उतर जाएगा लेकिन करोड़ों के नुकसान और हजारों इंश्योरेंस क्लेम की लड़ाई अभी बाकी है।
14: 150 से 200 सर्वेयरों की टीम इस डिजास्टर में काम कर रही है, सब कंपनियों की मिलके, और पूरे गुजरात से, पूरे महाराष्ट्र मुंबई से इन लोगों ने अपने अपने सर्वेयर बुलवा लिए हैं। तो काम तो बहुत स्पीड में हो रहा है, काम को दिक्कत नहीं है।
15: मुझे आशा है कि क्लेम्स हमारे बहुत स्मूथली प्रोसेस हो जाएंगे और गाड़ियों का जो नुकसान हुआ है वो तो अब हम रोक नहीं सकते, जो कुदरती आफत है, बट उसके बाद जो हमारे हाथ में है इंश्योरेंस क्लेम्स और ये सब, और लोगों की पॉजिटिविटी देख के, लोगों का जज्बा देख के ये लग रहा है कि हमारे क्लेम्स इजीली प्रोसेस हो जाएंगे।
11: अब देखिए खेड़ा जिले के महमदाबाद के रिंछोल गाँव की तस्वीरें। बाढ़ का पानी अपने साथ मगरमच्छों को इंसानी बस्तियों तक ले आया है। घर के भीतर 7 फीट लंबा मगरमच्छ, बाहर सहमे हुए लोग और बीच में जान जोखिम में डालकर चलता रेस्क्यू ऑपरेशन। कुदरत के अलग अलग रंग, कहीं जानलेवा तो कहीं खुशनुमा। जब बारिश रिकॉर्ड तोड़ती है तो सिर्फ नदियां नहीं उफनती हैं, सिस्टम की तैयारी भी बेनकाब हो जाती है। बारिश अभी जारी है इसलिए खतरा भी टला नहीं है। आज तक ब्यूरो।
5: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: कार्यकारी अध्यक्ष की सीट पर पिट गई पार्टी। बांकीपुर से शानदार जीत के बाद प्रशांत किशोर बोले, 30 दिन में ढा दिया 30 साल पुराना किला। सीएम सम्राट पर किया बड़ा हमला, आरजेडी की जमानत जब्त। कांग्रेस के हाथ लगा मध्य प्रदेश का दतिया, यहां भी 6,000 से ज्यादा वोटों से हार गई बीजेपी। गुजरात के मांजलपुर ने बचाई बीजेपी की इज्जत, 30,000 से ज्यादा वोटों से जीते सत्येंद्र भाई पटेल। प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो हटाने पर मेटा ने मानी है गलती, संसदीय समिति की बैठक में माफी मांगी, तकनीकी गड़बड़ी का हवाला दिया, समिति ने जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग। यूपी विधानसभा में मानसून सत्र के पहले दिन चढ़ावा, चोरी पर घमासान, विपक्ष की तरफ से जोरदार प्रदर्शन, योगी बोले जनता को गुमराह न करें, दम है तो विकास पर बात करें। और झारखंड का रांची बना नया जंतर मंतर, जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी, 10 दिन से भूख हड़ताल पर देवेंद्र नाथ महतो, सीबीआई जांच की मांग। बिहार के विधायक पद से सीधे बीजेपी के अध्यक्ष पद तक पहुंचे नितिन नवीन की खाली हुई सीट पर उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने 19,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल कर ली है। बीजेपी के सामने अब तक जहां मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी रही, वहां बांकीपुर में तेजस्वी यादव की पार्टी की जमानत तक जब्त हो गई।
1: बिहार की एक खासियत है, जब जब आपको लगता है कि आप बिहार को समझ गए, बिहार आपको झटका देता है।
2: सच है कि बिहार ने चौंकाया है। लड्डू तो बीजेपी वाले बताते हैं कि 200 किलो बनवाया, लेकिन कहावत है, कहा जाता है हाथ खुआया मुंह ना लगा। यही तो साल की शुरुआत में सबको चौंकाकर बीजेपी अध्यक्ष बनकर लड्डू चखने वाले नितिन नवीन के राज्यसभा में जाने के बाद खाली हुई विधानसभा सीट बांकीपुर पर हुआ, जहां मुख्यमंत्री के साथ रोड शो करते बीजेपी अध्यक्ष दावा करते रहे जनता की लहर साथ है।
3: मुझे पूरा विश्वास है कि जो समर्थन जनता का दिख रहा है वो निश्चित रूप से 3 अगस्त को फिर से एनडीए का कमल, भाजपा का कमल बांकीपुर की जनता खिलाएगी।
2: लेकिन जब नतीजे बांकीपुर उपचुनाव के आए, पता चला जनता तो अध्यक्ष जी की ही पारंपरिक सीट पर पीके के साथ चली गई।

0: बीजेपी अपने ही अध्यक्ष की सीट पर उपचुनाव नहीं जीत पाई। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद पहली बार हुए उपचुनाव में बीजेपी हार गई। बिहार में बीजेपी के पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद हुए उपचुनाव में बीजेपी जीत नहीं पाई। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री रहते पहला ही उपचुनाव बीजेपी हार जाती है। 3 दशक से जीती जा रही सीट पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ता है। हिंदू बाहुल्य और बीजेपी के कोर समर्थक वोटर वाली सीट पर बीजेपी को हार मिलती है, वो भी उन प्रशांत किशोर से जिन्हें 9 महीने पहले बिहार के विधानसभा चुनाव में चूका हुआ मान लिया गया था। प्रशांत किशोर की जीत बड़ी या बीजेपी अध्यक्ष की छोड़ी हुई सीट पर बीजेपी की हार बड़ी, इन दो सवालों के कुछ जवाब हैं जो कहते हैं कि बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत सवर्ण वोटर छिटक गया है। सवर्ण वोटर विकल्प बेहतर मिले तो साथ बीजेपी का छोड़ सकता है और सेफ सीट का मतलब अब कुछ नहीं, क्योंकि 1995 से जहां बीजेपी लगातार जिस इलाके में जीतती आई वहां भगवा रंग की जगह पीके का पीला रंग चढ़ जाना कोई छोटी सियासी खबर नहीं। पटना के जिस बांकीपुर में बीजेपी को कभी भी कुल वोटों का 59% से कम वोट नहीं मिला, जिस बांकीपुर में 9 महीने पहले विधानसभा चुनाव में नितिन नवीन की उम्मीदवारी पर बीजेपी को 63% वोट मिलता है, वहाँ अब की बार बीजेपी प्रत्याशी केवल 34.50% वोट पाते हैं। आरजेडी प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाती है और प्रशांत किशोर 49.19% वोट लेकर जीतते हैं। जिस बांकीपुर में 9 महीने पहले बीजेपी ने 51,936 वोट के अंतर से जीत हासिल की, वहां अब की बार बीजेपी के प्रत्याशी नीरज कुमार को 44,827 वोट ही मिले। बीजेपी को प्रशांत किशोर ने अपने पहले ही चुनाव में 64,151 वोट हासिल करके 19,000 से ज्यादा वोट के अंतर से हराया है। जीत मिलते ही प्रशांत किशोर ने भले एक सीट जीती हो, भले वो अपनी पार्टी के इकलौते विजयी उम्मीदवार विधानसभा में बने हो, लेकिन एक उपचुनाव की चाल से वो सीधे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को शह और मात दे देना चाहते हैं।
1: रेफरेंडम है ये सम्राट चौधरी पे?
2: बिल्कुल, वो तो है।
1: बार बार कह रहे थे जनमत संग्रह है ये।
2: बिल्कुल, सम्राट चौधरी के नेतृत्व को बिहार की जनता स्वीकार्य नहीं करती है, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है।
1: और नितिन नवीन के सीट पे इतनी बड़ी जीत, किला ध्वस्त किया है बीजेपी का आपने?
2: किला किसी का नहीं होता है।
1: रुक
3: जाइए, आराम से चलिए।
2: 30 साल का किला 30 दिन भी नहीं लगा, और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि भाजपा ने चुनाव जीतने के बाद यहाँ पर एक अपराधी प्रवृत्ति के आदमी को, एक गलत चाल चरित्र के चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व दिया है, जो बिहार के लोगों को स्वीकार्य नहीं है।
0: 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद 111 दिन के भीतर पहली चुनावी परीक्षा में वो पास नहीं हो पाए, जहां प्रशांत किशोर लगातार सीधे एक वोट एक सीट से सम्राट चौधरी पर निशाना प्रचार के दौरान साधते रहे।
4: आपका एक वोट विधायक नहीं चुनेगा, बिहार में मुख्यमंत्री बदल देगा। अगर आप सम्राट चौधरी को हटाना चाहते हैं तो अभी आपके पास रास्ता है। एक बार संकल्प लीजिए, भाजपा को बांकीपुर में हराइए, लिख के ले लीजिए, सम्राट चौधरी का कुर्सी हिलने लगेगा, सम्राट चौधरी को हटाने का रास्ता खुल जाएगा।
0: इसके बाद जैसे ही बांकीपुर में जीत का डंका प्रशांत किशोर बजाते, वो इस बात को दोहराते कि बांकीपुर में बीजेपी की हार का मतलब मुख्यमंत्री की हार है।
2: पहला काम बस यही है कि बांकीपुर की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, अपनी ओर से जो हो सकेगा बांकीपुर में सुधार का प्रयास करेंगे। अगले 2-3 महीने में आपको वो चीज दिखेंगे भी। मैं कोई बहुत बड़ी बड़ी बात बोलना नहीं चाहता हूँ। विधायक, मेरे विधायक बनने से बांकीपुर बंगलोर नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ सुधार होता अगले 2-3 महीने में दिखेगा। बड़ी बात यह है कि ये चुनाव बांकीपुर के नाली गली पर नहीं लड़ा गया है, ये चुनाव लड़ा गया है कि बिहार का नेतृत्व किसके हाथ में होना चाहिए। और बांकीपुर की जनता ने ये संदेश दिया है भाजपा के नेतृत्व को कि भाई आप अच्छे आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए, सम्राट चौधरी की जगह किसी कुशवाहा को बनाना है बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कुशवाहा को ही बनाइए, लेकिन कुशवाहा समाज के ही किसी अच्छे आदमी को बनाइए।
0: प्रशांत किशोर की जीत हुई, सम्राट चौधरी ने अब सोशल मीडिया पर लिखा है, लोकतंत्र के महापर्व में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनता ने जन सुराज को चुना है, मैं जनता के इस निर्णय का सम्मान करते हुए प्रशांत किशोर को उनकी जीत पर हार्दिक बधाई देता हूं।
5: लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो चुनाव परिणाम के रुझान आ रहे हैं उसको हम सूर्य झुकाकर स्वीकार करते हैं और हम पूरी समीक्षा करेंगे। बांकीपुर के लोग हमारे हैं, हमसे अलग क्यों हुए इसकी भी हम समीक्षा करेंगे।
6: ये लोकतंत्र की भूमि है और जनता के जनादेश को भारतीय जनता पार्टी हमेशा शिरोधार्य की है। हम कभी भी ठीकरा चुनाव आयोग या ईवीएम पर नहीं फोड़ते हैं, ये विपक्ष के लोगों के तरह।
2: हम लोग की लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, बहुमत भाजपा का है, एनडीए का है, मुख्यमंत्री तो उन्हीं का बनेगा। हम लोग बस इतना ही आग्रह कर रहे हैं, बिहार की जनता इतना ही आग्रह कर रही है, बांकीपुर की जनता इतना ही मोदी जी से आग्रह कर रही है कि किसी अच्छे चरित्रवान काबिल आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए, ताकि बिहार के लोग भी इस बात का गौरव, बिहारी होने का गौरव कर सकें, ताकि हम लोग के बच्चों के लिए भी पढ़ाई रोजगार की व्यवस्था हो, सब कुछ सुविधा अगर गुजरात के ही लोगों को मिलेगी तो सिर्फ बिहार के लोग कहाँ जाएंगे। गुजरात के लोग 1,00,000 करोड़ के बुलेट ट्रेन पर चलेंगे वो ठीक है, लेकिन हम लोगों को कम से कम पैसेंजर भी तो मिलना चाहिए। बिहार के लोग सिर्फ मजदूरी करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं और 5 साल के लिए भाजपा को मैंडेट मिला है, उनको अच्छा आदमी देना चाहिए, अच्छे लोगों को मंत्रिमंडल में रखना चाहिए, ताकि बिहार की तरक्की हो, बिहार का विकास हो।
7: गुजरात के मांझलपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने बड़ी और निर्णायक जीत हासिल की है। बीजेपी उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस के भिखाभाई रबारी को 30,630 वोटों के बड़े अंतर से हराकर सीट बरकरार रखी। ये उपचुनाव बीजेपी के वरिष्ठ नेता और 8 बार के विधायक रहे योगेश पटेल के निधन के बाद हुआ था। कम मतदान के बावजूद बीजेपी ने अपने मजबूत जनाधार को कायम रखते हुए स्पष्ट संदेश दिया कि मांझलपुर में उनका संगठन और सियासी पकड़ अभी भी मजबूत है।
8: बांकीपुर ने मायूस किया, दतिया ने दर्द बढ़ा दिया, लेकिन गुजरात के मांझलपुर ने बीजेपी के चेहरे पर मुस्कान लौटा। मांझलपुर में बीजेपी के सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,630 वोटों से हरा दिया।
9: ये भाजपा की जीत, एक कार्यकर्ता की जीत, ये विकास की जीत, नरेंद्र भाई मोदी की जीत और हमारे सभी कार्यकर्ताओं को खूब खूब अभिनंदन।
10: खुशी का माहौल है, भारत देश के पहले का बड़ा प्रधान अपने नरेंद्र भाई मोदी जी की ये सेना विकास के लिए काम करती है, तो लोग ऑब्वियसली भाजपा का ही वोट देंगे।
8: एक दिन 3 राज्य 3 नतीजे, 2 जगह झटका, 1 जगह बड़ी राहत। बिहार में सियासी किला दरका, मध्य प्रदेश में भी जीत हाथ से फिसल गई, लेकिन गुजरात के मांझलपुर ने बता दिया कि बीजेपी का गढ़ अब भी मजबूत।
11: हमारे भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं को जाता है, इन्होंने दिन रात एक करके ये चुनाव जीता है। मैं सभी नागरिक भाइयों बहनों का और कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
12: भारतीय जनता पार्टी हमेशा संगठनात्मक काम करती है, हरेक कार्यकर्ता इसमें इन्वॉल्व होता है और काम करता है और उसका परिणाम है।
8: मांझलपुर सीट पूर्व मंत्री और 8 बार के विधायक योगेश पटेल के निधन के बाद खाली हुई थी। योगेश पटेल ने 1990 से 2007 के बीच बड़ोदरा की रावपुरा विधानसभा सीट का 5 बार प्रतिनिधित्व किया, फिर परिसीमन के बाद नई बनी मांझलपुर सीट से चुनाव लड़ा। योगेश पटेल ने 2012, 2017 और 2022 में मांझलपुर सीट से लगातार जीत दर्ज की और इस तरह 36 वर्षों के दौरान गुजरात विधानसभा चुनावों में लगातार 8वीं जीत हासिल की। बड़ोदरा के मांझलपुर विधानसभा में हुए उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल की जीत ने साबित कर दिया कि बीजेपी का यहां दबदबा अब भी बरकरार है, कांग्रेस का इंतजार लंबा हो गया है। अतुल तिवारी, बड़ोदरा, आज तक।
7: सिद्धिविनायक वो दरबार जहां मुख्यमंत्री, मंत्री, अभिनेता और आम भक्त सब गणपति बप्पा के चरणों में एक समान होकर मत्था टेकते हैं, लेकिन अब उसी दरबार की दान पेटी सियासत के केंद्र में आ चुकी है, क्योंकि राज ठाकरे ने आरोप लगाया है कि सिद्धिविनायक मंदिर में हर साल 18 करोड़ रुपए का चंदा हड़प लिया जाता है। वहीं ट्रस्ट का दावा यह है कि ट्रस्ट की वजह से ही मामला उजागर हुआ है, लेकिन जब चढ़ावे पर ग्रहण की बात सामने आती है तो राजनीति भी जवाब देने से बच नहीं सकती।

0: घंटियों की गूंज, गणपति बप्पा की आरती, श्रद्धालुओं का सैलाब, ये दृश्य मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में होता है, जहां हर दिन हजारों श्रद्धालु अपनी मन्नतें लेकर पहुंचते हैं, जहां सत्ता भी सिर झुकाती है, विपक्ष भी नमन करता है। अभिनेता से लेकर आम आदमी तक हर कोई गणपति बप्पा के चरणों में आशीर्वाद देने पहुंचते हैं। लेकिन अब इसी मंदिर का चढ़ावा राजनीति के केंद्र में है। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने संगीन आरोप लगाया है। राज ठाकरे ने दावा किया है कि मुंबई के मशहूर सिद्धिविनायक मंदिर में हर साल 18 करोड़ रुपए का चंदा हड़प लिया जाता है।
1: महोदय, विश्वस्तांच्या सतर्कतेमुळे मंदिरातल्या दानपेटीतून पैसे चोरणारे कर्मचारी पकडले गेलेले आहेत। हे कर्मचारी पकडण्यापूर्वी दर बुधवारी मंदिरातल्या दानपेटीतील रकमेची मोजदाद ही 50 लाख रुपयाच्या आत होती। मात्र हे कर्मचारी पकडल्यानंतर गेले 3 आठवडे आठवड्याची दानपेटी रक्कम ही 1.5 कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचली आहे। याचाच अर्थ यापूर्वी दर आठवड्याला दानपेटीतील जमा होणाऱ्या काही रकमेतील काही रक्कम ही लंपास होत होती। त्यामुळे दरवर्षी सुमारे 18 कोटी रुपयांचे मंदिराचे नुकसान होत होते।
0: वहीं सिद्धिविनायक ट्रस्ट के अध्यक्ष और शिवसेना नेता सदा सरवणकर कहते हैं कि ट्रस्ट की सतर्कता से ही गड़बड़ी सामने आई है। ट्रस्ट के मुताबिक 9 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया, FIR दर्ज कराई गई। ट्रस्ट के पूर्व अधिकारी राजन पेंडुलकर समेत 45 कर्मचारी सस्पेंड किए गए। गिरफ्तार आरोपियों के संबंध शिवसेना UPT के नेता विशाखा राउत और दूसरे नेताओं से है। इसके साथ ही ट्रस्ट के अध्यक्ष सदा सरवणकर इसके पक्के सबूत होने का भी दावा कर रहे हैं।
2: ये चोरी में जितने भी इन्वॉल्व है वो 9 जन को पकड़ा है। उसके बाद लूपहोल्स जो थे, आज दादर स्टेशन में अगर आप एक टैक्सी में बैठेंगे तो वो टैक्सी में भक्तगण अगर यहां आते हैं तो उनसे 5,000 लिया जाता था, दर्शन वगैरह सब लेके। वो पहला बंद किया, उसके बाद ये सब आजू बाजू में दलाल लोग घूमते थे, दर्शन के लिए 2,000 3,000 लेते थे, वो सारा बंद हो गया। ये हमारे जो यहाँ की सिक्योरिटी है, यहाँ के कर्मचारी है, उनको गूगल पे करके ये दर्शन दिया जाता था। हमने जितने भी कर्मचारी है सबका फोन बंद कर दिया। अभी किसी कर्मचारी के हाथ में फोन नहीं आपको मिलेगा। जितना भी हमको डाउट आएगा वो हर चीज के ऊपर हमने कुछ न कुछ एक्शन लिया होगा।
0: इसलिए भगवान के नाम पर चढ़े हर रुपए का हिसाब भी न्याय की कसौटी पर ही तय होना चाहिए।
3: मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर में चढ़ावे को लेकर अब महाराष्ट्र में नया सियासी तूफान खड़ा हो गया है, क्योंकि MNS प्रमुख राज ठाकरे ने एक चिट्ठी का हवाला देते हुए ये आरोप किया है कि इस चढ़ावे में बड़ी तादाद में घोटाला हो रहा है। छोटा मोटा नहीं बल्कि सालाना करीबन 18 करोड़ रुपए का घोटाला जो है इस चढ़ावे के पैसों में किया जा रहा है। ऐसी एक चिट्ठी इस ट्रस्ट के ही कुछ ट्रस्टियों ने मिलकर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लिखी थी। 21 अप्रैल 2026 को ये पत्र लिखा गया था, जिस पर ये आरोप किए गए हैं कि यहाँ से पैसों की अफरा तफरी हो रही है, दान पत्र से पैसे चुराए जा रहे हैं।
0: मामला 18 करोड़ का हो या फिर 18 रुपए का, बप्पा के नाम पर चढ़ाया गया एक एक रुपया पवित्र है। सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष सदा सरवणकर ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि मंदिर में हर साल करीब 18 करोड़ रुपए के दान का हेर फेर होता था, जिसे मौजूदा ट्रस्ट ने रोककर चढ़ावे की कमाई में भारी बढ़ोतरी की है। मंदिर की आय 2 साल में 114 करोड़ से बढ़कर 182 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। वहीं फडणवीस सरकार में मंत्री छगन भुजबल कहते हैं कि अगर किसी के पास ठोस जानकारी है तो सरकार को जानकारी मुहैया कराए, जांच होगी और सच सामने आएगा।
4: चढ़ावा जो लोग चढ़ाते हैं भगवान को, सिद्धिविनायक को, उस चढ़ावे में कुछ गलत हुआ है या कुछ, मतलब जो चंदा जमा होता है तो शायद उनके पास कोई मालूमात होगी। वो अगर सरकार को, शासन को दे देंगे तो उसकी इंक्वायरी होगी और क्या गलत है क्या सही है साबित होगा।
0: अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच का चैप्टर अभी बंद भी नहीं हुआ है कि मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में गड़बड़ियों ने अरब सागर से आने वाली सियासी हवा को गर्म कर दिया है। दान पेटी में गिरता हर सिक्का, हर चढ़ावा सिर्फ मुद्रा और नोट नहीं होते। उनमें किसी माँ की मन्नत होती है, किसी मेहनतकश शख्स की कमाई, किसी परिवार की आस्था। इसलिए मंदिर के चढ़ावे पर उठा हर सवाल करोड़ों श्रद्धालुओं के भरोसे पर सवाल बन जाता है।
5: मार्च महीने में हमने जो बजट रखा वो 182 करोड़, 182 करोड़, ये जो उत्पन्न नहीं बोलेंगे चढ़ावा है, ये देनगी दी है मंदिर को। और इसी माध्यम से हमने यही बता रहे हैं कि हमारे मन में अगर पाप रहता, ये ट्रस्टी बोर्ड है, मैं अभी खुले मन से बताता हूँ, हमारे मन में अगर पाप रहता तो हम इतने चोर पकड़ दे नहीं, हमारे मन में अगर पाप रहता तो 46 कर्मचारी निलंबित होते नहीं, हमारे मन में पाप रहता तो 9 जन पुलिस कस्टडी और एमसीआर कस्टडी में जाते नहीं, हमारे मन में पाप होता तो हम सरकार को विधि न्याय विभाग को एक पत्र भी लिखते नहीं। हमने यही कहा है कि ये जो तफावत 2 साल और अभी में है तो उसका ऑडिट होना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए।
0: गणपति बप्पा न्याय के देवता है, लिहाजा जांच सिर्फ पैसों की नहीं होनी चाहिए, जांच उस व्यवस्था की भी होनी चाहिए जिसे सिद्ध विनायक के घर की रखवाली सौंपी गई। मंदिर राजनीति का मंच नहीं, आस्था का केंद्र है, इसलिए आरोप भी तथ्यों के साथ होने चाहिए और जांच भी बिना किसी दबाव के।
3: सालाना 18 करोड़ तक का घोटाला जो है यहाँ मंदिर में हुआ है ऐसा दावा किया जा रहा है। अब विपक्ष से लेकर राज ठाकरे सभी मांग कर रहे हैं कि इस चोरी की जो है वो जांच की जाए, तफ्तीश की जाए। और किसके कार्यकाल में, यानी उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे तब उनके कार्यकाल में ये चोरी हुई थी, या फिर अब महायुति सरकार के कार्यकाल में इस तरह की चोरी सामने आई है, ये सामने आना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैमरा पर्सन सचिन सावन के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।
6: महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में बीजेपी नेता और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत मिल गई है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने ब्रिजभूषण शरण सिंह और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व सचिव विनोद तोमर को बाइज्जत बरी कर दिया है।
7: महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण के मामले में 1133 दिनों तक वकीलों ने दलीलें दी, सुनवाई हुई, तथ्य परखे गए और फिर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि ब्रिजभूषण और उनके सह आरोपी विनोद तोमर को बाइज्जत बरी किया जाता है।
8: बरी शब्द का इस्तेमाल के जगह पर कोर्ट ने बाइज्जत बरी शब्द का इस्तेमाल किया है। बरी और बाइज्जत बरी में फर्क होता है। एक बरी होता है कि सबूतों के अभाव में आपको छोड़ा जा रहा है, यहाँ सीधे सीधे कहा गया कि आपको नाम लेकर के कि आपको बाइज्जत बरी किया जा रहा है।
7: दरअसल 3 साल पुराना इस मामले की बंद कमरे में हुई सुनवाई और तमाम गवाहों सबूतों की पड़ताल के बाद अदालत के फैसले में जो बड़ी बातें सामने आई हैं, उनमें से एक तो ये है कि शिकायतकर्ता और पुलिस ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ के आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं कर पाए। दूसरा ये कि शिकायतकर्ताओं के बयानों में तारीख, समय और घटनास्थल को लेकर बड़े विरोधाभास दर्ज किए गए थे। महिला पहलवानों ने खेल मंत्रालय की ओवरसाइट कमेटी में दिए हलफनामे और अदालत में दिए बयानों में फर्क था। कुछ घटनाओं में ब्रजभूषण शरण सिंह कथित घटनाओं के समय दूसरी जगह मौजूद रहने के प्रमाण मौजूद थे और बरी होने की बड़ी वजह ये भी थी कि कथित घटनाएं 2016 से 2019 के बीच की थी, जिनका आरोप 2023 में लगाया गया था।
8: तब मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि ये सब झूठ है,
9: सच हुआ तो मैं आता हूं,
8: और अगर इसमें एक भी आरोप साबित होगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा।
7: अब महिला पहलवानों के मामले में बजरंग पुनिया ने लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करने की बात कही है, लेकिन इस मामले में जबरदस्त सियासत हो रही है।
10: क्यों नहीं सबको करेंगे, सब चोर जितने लोग पार्टी में दाखिल हुए दूसरे पार्टीज में, अरे यही तो प्रधानमंत्री थे तो बंगाल के मुख्यमंत्री के बारे में क्या क्या बोले थे,
11: आरोप लगे थे, जांच होनी चाहिए थी, जांच होकर न्यायपालिका में गया, अब न्यायपालिका ने जो फैसला दे दिया उसका सम्मान करे, या तो सरकार को अगर लगता है कि सही नहीं है तो सरकार ऊपरी कोर्ट में जाए।
7: देखना यह है कि आरोप लगाने वाली महिला पहलवानों का रुख अब क्या होता है। मौसमी सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
6: रांची में 14वीं जेपीएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। छात्र रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में 10 दिन से धरना दे रहे हैं। कल शाम बड़ी संख्या में छात्रों ने मशाल जुलूस निकाला था। उन्होंने हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की थी। उधर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दिपके ने रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बात की है और उन्हें अपना समर्थन देने का ऐलान किया है।
12: सामाजिक कार्यकर्ता जो भेज देते हैं वही हम लोग खा के और दिन रात भर यही देखिए यही टेंट में आप तो देख रहे हैं पानी हो यही बहुत याद क्या करे सर हम लोग मरता क्या नहीं करता वाला स्थिति है सर।
13: मदद की थाली हाथ में पकड़े इस युवा को देखने के बाद सवाल उठता है कि आखिर नीति नियंताओं के हलक के नीचे खाना उतरता कैसे।
12: ऐसे गाँव से आते हैं सर वहाँ आज भी हम घर का पहला आदमी है पूरे खानदान का पूरे गाँव एक टोला मतलब खानदान का पहला आदमी है ना कि हम लोग बाहर निकले हैं पढ़ने अभी तक हम लोग शिक्षा से इतना दूर है हमारा समाज अगर हम यहाँ पढ़े आए हैं सर अगर हम पढ़ के कुछ नहीं करेंगे तो हमारा आने वाला जो पीढ़ी है वो देखेगा तो कहेगा कि भैया या चाचा पढ़ लेते तो क्या कर ले।
13: तो जीएम डीएम सीएम पीएम सब सुनिए इस छात्र की पुकार। अशिक्षा के अंधकार से निकल कर आया ये लड़का सवाल कर रहा है किसी में इतना ताप कि जवाब दे सके
12: क्योंकि हम लोग तो गरीब आदमी हैं सर और गरीब आदमी हैं अगर हम लोग कोई भी आदमी पढ़ के नौकरी का मतलब मांगता है ताकि हम लोग के आर्थिक समाज अति शैक्षणिक थोड़ा मजबूत हो इसीलिए तो हम लोग पढ़ रहे हैं इतना मेहनत कर रहे हैं एक रूम में हम लोग कितना दिन से जहाँ हम लोग कुछ भी मिल रहा है सर कैसे कैसे खाते आप तो जानते हैं।
13: रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बेरोजगारी से त्रस्त युवा जो बात कहते हैं वो सत्ता के सीने में शून सी चुभनी चाहिए क्योंकि ये युवा झारखंड में भर्ती आयोगों की धांधली से त्रस्त आ चुके हैं। प्रदर्शन करते ये नौजवान झारखंड में लगातार धरना देते हुए केवल झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और जेएसएससी के तहत होने वाली भर्तियों में होते भ्रष्टाचार से त्रस्त होकर एक हफ्ते से आंदोलन कर रहे हैं।
14: नारेबाजी चल रही है और अब इस आंदोलन को अलग अलग जगह से समर्थन भी मिलने लगा है। बीजेपी ने इस प्रोटेस्ट का खुलकर समर्थन किया है। एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया है। साथ ही साथ कॉकरोच जनता पार्टी ने भी बात की है उसके संस्थापक अभिजीत दीपके ने भी बात की है यहाँ पे और कहा है कि जिस सपोर्ट की जरूरत है वो सपोर्ट देने को तैयार है ताकि जो आंदोलन अपने अंजाम तक पहुँच सके।
13: अब सवाल यह है कि छात्रों की पुकार क्यों नहीं सुन रही है हेमंत सरकार। सत्यजीत कुमार रांची आज तक।
6: बारिश कभी राहत बनकर आती है तो कभी आफत बनकर सब कुछ बहा ले जाती है। पश्चिम भारत इस वक्त पानी के ऐसे ही प्रहार से जूझ रहा है। महाराष्ट्र से गुजरात तक आसमान से बरसता पानी अब जिंदगी की रफ्तार को रोक रहा है। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, कई शहरों की गलियां तालाब बन चुकी हैं, तो कई करोड़ों की गाड़ियां बाढ़ के पानी में कबाड़ में बदल चुकी हैं।
13: ये तस्वीरें महाराष्ट्र की भिवंडी की हैं। कामवारी नदी अब सिर्फ बह नहीं रही बल्कि खतरे का इशारा दे रही है। पानी इतना बढ़ चुका है कि नदी किनारे खड़ी गाड़ियां एक एक कर डूबने लगी हैं। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की हर नजर नदी के बढ़ते जलस्तर पर टिकी है। अब जरा रुक कीजिए जलगांव का। यहाँ पहली ही तेज बारिश ने मुंबई नागपुर नेशनल हाईवे के फ्लाईओवर के नीचे की जमीन बहा दी। जिस सड़क पर रफ्तार दौड़ती थी वहाँ अब सवाल खड़े हैं। मंत्री मौके पर हैं, जांच के आदेश हैं, लेकिन तस्वीरें विकास की गुणवत्ता पर बड़ा सवाल छोड़ रही हैं।
15: है अतिशय गंभीर है। माननीय गडकरी साहेबांच्या कारवर मी स्रोत टाकलेला आहे। त्यांनी सांगितलं की जर कडक ऍक्शन आपण त्या ठिकाणी घेऊ पण मोठी दुर्घटना टळली असे म्हणायला हरकत नाही। अन्यथा या ठिकाणी वाहन चालले असताना जर असं झालं असतं तर मला वाटतं मोठी दुर्घटना त्या ठिकाणी झाली असती। पण या संदर्भामध्ये तर आम्ही सर्वजण म्हणजे मी बाहेरगावी होतो रात्री नाशिकहून आलो गुलाब भाऊ पण या ठिकाणी बाहेर आम्ही आज ठिकाणी गेलो राजू मामा इथले आमदार आहेत आम्ही या ठिकाणी आलेलो आहोत। पण एक कडक कारवाई करण्याच्या संदर्भामध्ये ठेकेदारावर मग त्याला ब्लॅकलिस्ट करा त्याच्यावर कारवाई करा।
13: महाराष्ट्र के नांदेड के सहस्रकुंड झरने का नजारा अद्भुत है लेकिन 100 फीट की ऊंचाई से गिरते पानी में चेतावनी भी छिपी है। यही बारिश कहीं सैलानियों को आकर्षित कर रही है तो कहीं लोगों की जिंदगी को बेबस बना रही है। ये मंजर गुजरात के वलसाड़ जिले के वापी का है जहां सड़कें नदी बन गई और हजारों कारें पानी में डूबकर कबाड़ में बदल गई। बाढ़ का पानी उतर जाएगा, लेकिन करोड़ों के नुकसान और हजारों इंश्योरेंस क्लेम की लड़ाई अभी बाकी है।
16: 150 से 200 सर्वेयरों की टीम इस डिजास्टर में काम कर रही है, सब कंपनियों की मिलके, और पूरे गुजरात से, पूरे महाराष्ट्र मुंबई से इन लोगों ने अपने अपने सर्वेयर बुलवा लिए हैं। तो काम तो बहुत स्पीड में हो रहा है, काम को दिक्कत नहीं है।
17: मुझे आशा है कि क्लेम्स हमारे बहुत स्मूथली प्रोसेस हो जाएंगे, और गाड़ियों का जो नुकसान हुआ है वो तो अब हम रोक नहीं सकते, जो कुदरती आफत है, बट उसके बाद जो हमारे हाथ में है इंश्योरेंस क्लेम्स और ये सब, और लोगों की पॉजिटिविटी देख के, लोगों का जज्बा देख के, ये लग रहा है कि हमारे क्लेम्स इजीली प्रोसेस हो जाएंगे।
13: अब देखिए खेड़ा जिले के महमदाबाद के रिंछोल गाँव की तस्वीरें। बाढ़ का पानी अपने साथ मगरमच्छों को इंसानी बस्तियों तक ले आया है। घर के भीतर 7 फीट लंबा मगरमच्छ, बाहर सहमे हुए लोग, और बीच में जान जोखिम में डालकर चलता रेस्क्यू ऑपरेशन। कुदरत के अलग अलग रंग, कहीं जानलेवा तो कहीं खुशनुमा। जब बारिश रिकॉर्ड तोड़ती है तो सिर्फ नदियां नहीं उफनती हैं, सिस्टम की तैयारी भी बेनकाब हो जाती है। बारिश अभी जारी है, इसलिए खतरा भी टला नहीं है। आज तक ब्यूरो।
6: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: बीजेपी अध्यक्ष की सीट पर पिट गई पार्टी। बांकीपुर से शानदार जीत के बाद प्रशांत किशोर बोले, 30 दिन में ढा दिया 30 साल पुराना किला। सीएम सम्राट पर किया बड़ा हमला, आरजेडी की जमानत जब्त। कांग्रेस के हाथ लगा मध्य प्रदेश का दतिया, यहां भी 6000 से ज्यादा वोटों से हार गई बीजेपी। गुजरात के मांजलपुर ने बचाई बीजेपी की इज्जत, 30,000 से ज्यादा वोटों से जीते सत्येंद्र भाई पटेल। प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो हटाने पर मेटा ने मानी गलती, संसदीय समिति की बैठक में माफी मांगी, तकनीकी गड़बड़ी का हवाला दिया, समिति ने जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग। यूपी विधानसभा में मानसून सत्र के पहले दिन चढ़ावा, चोरी पर घमासान, विपक्ष की तरफ से जोरदार प्रदर्शन, योगी बोले जनता को गुमराह न करें, दम है तो विकास पर बात करें। और झारखंड का रांची बना नया जंतर मंतर, जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी, 10 दिन से भूख हड़ताल पर देवेंद्र नाथ महतो, सीबीआई जांच की मांग। बिहार के विधायक पद से सीधे बीजेपी के अध्यक्ष पद तक पहुंचे नितिन नवीन की खाली हुई सीट पर उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने 19,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल कर ली है। बीजेपी के सामने अब तक जहां मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी रही, वहां बांकीपुर में तेजस्वी यादव की पार्टी की जमानत तक जब्त हो गई।
1: बिहार की एक खासियत है, जब जब आपको लगता है कि आप बिहार को समझ गए, बिहार आपको झटका देता है।
2: सच है कि बिहार ने चौंकाया है। लड्डू तो बीजेपी वाले बताते हैं कि 200 किलो बनवाया,
3: 200 किलो लड्डू बनाया जा रहा
2: है। लेकिन कहावत है, कहा जाता है हाथ खुआया मुंह ना लगा। यही तो साल की शुरुआत में सबको चौंकाकर बीजेपी अध्यक्ष बनकर लड्डू चखने वाले नितिन नवीन के राज्यसभा में जाने के बाद खाली हुई विधानसभा सीट बांकीपुर पर हुआ, जहां मुख्यमंत्री के साथ रोड शो करते बीजेपी अध्यक्ष दावा करते रहे जनता की लहर साथ है।
4: मुझे पूरा विश्वास है कि जो समर्थन जनता का दिख रहा है वो निश्चित रूप से 3 अगस्त को फिर से एनडीए का कमल, भाजपा का कमल बांकीपुर की जनता खिलाएगी।
2: लेकिन जब नतीजे बांकीपुर उपचुनाव के आए, पता चला जनता तो अध्यक्ष जी की ही पारंपरिक सीट पर पीके के साथ चली गई।

0: बीजेपी अपने ही अध्यक्ष की सीट पर उपचुनाव नहीं जीत पाई। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद पहली बार हुए उपचुनाव में बीजेपी हार गई। बिहार में बीजेपी के पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद हुए उपचुनाव में बीजेपी जीत नहीं पाई। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री रहते पहला ही उपचुनाव बीजेपी हार जाती है। 3 दशक से जीती जा रही सीट पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ता है। हिंदू बाहुल्य और बीजेपी के कोर समर्थक वोटर वाली सीट पर बीजेपी को हार मिलती है, वो भी उन प्रशांत किशोर से जिन्हें 9 महीने पहले बिहार के विधानसभा चुनाव में चूका हुआ मान लिया गया था। प्रशांत किशोर की जीत बड़ी या बीजेपी अध्यक्ष की छोड़ी हुई सीट पर बीजेपी की हार बड़ी, इन दो सवालों के कुछ जवाब हैं जो कहते हैं कि बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत सवर्ण वोटर छिटक गया है। सवर्ण वोटर विकल्प बेहतर मिले तो साथ बीजेपी का छोड़ सकता है और सेफ सीट का मतलब अब कुछ नहीं, क्योंकि 1995 से जहां बीजेपी लगातार जिस इलाके में जीतती आई वहां भगवा रंग की जगह पीके का पीला रंग चढ़ जाना कोई छोटी सियासी खबर नहीं। पटना के जिस बाकीपुर में बीजेपी को कभी भी कुल वोटों का 59% से कम वोट नहीं मिला, जिस बाकीपुर में 9 महीने पहले विधानसभा चुनाव में नितिन नवीन की उम्मीदवारी पर बीजेपी को 63% वोट मिलता है, वहां अब की बार बीजेपी प्रत्याशी केवल 34.50% वोट पाते हैं। आरजेडी प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाती है और प्रशांत किशोर 49.19% वोट लेकर जीतते हैं। जिस बाकीपुर में 9 महीने पहले बीजेपी ने 51,936 वोट के अंतर से जीत हासिल की, वहां अब की बार बीजेपी के प्रत्याशी नीरज कुमार को 44,827 वोट ही मिले। बीजेपी को प्रशांत किशोर ने अपने पहले ही चुनाव में 64,151 वोट हासिल करके 19,000 से ज्यादा वोट के अंतर से हराया है। जीत मिलते ही प्रशांत किशोर ने भले एक सीट जीती हो, भले वो अपनी पार्टी के इकलौते विजयी उम्मीदवार विधानसभा में बने, लेकिन एक उपचुनाव की चाल से वो सीधे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को शह और मात दे देना चाहते हैं।
1: रेफरेंडम है ये सम्राट चौधरी पे?
2: बिल्कुल, वो तो है।
1: आप बार बार कह रहे थे जनमत संग्रह है ये।
2: बिल्कुल, सम्राट चौधरी के नेतृत्व को बिहार की जनता स्वीकार्य नहीं करती है, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है।
1: और नितिन नवीन के सीट पे इतनी बड़ी जीत, किला ध्वस्त किया है बीजेपी का आपने?
2: किला किसी का नहीं होता है।
1: रुक जाइए,
3: आराम से चलिए।
2: 30 साल का किला 30 दिन भी नहीं लगा, और उसकी एक बड़ी वजह यह है

0: के बाद 111 दिन के भीतर पहली चुनावी परीक्षा में वो पास नहीं हो पाए। यहाँ प्रशांत किशोर लगातार सीधे एक वोट एक सीट से सम्राट चौधरी पर निशाना प्रचार के दौरान साधते रहे।
1: आपका एक वोट विधायक नहीं चुनेगा, बिहार में मुख्यमंत्री बदल देगा। अगर आप सम्राट चौधरी को हटाना चाहते हैं तो अभी आपके पास रास्ता है। एक बार संकल्प लीजिए, भाजपा को बांकीपुर में हराइए, लिख के ले लीजिए, सम्राट चौधरी का कुर्सी हिलने लगेगा, सम्राट चौधरी को हटाने का रास्ता खुल जाएगा।
0: इसके बाद जैसे ही बांकीपुर में जीत का डंका प्रशांत किशोर बजाते, वो इस बात को दोहराते कि बांकीपुर में बीजेपी की हार का मतलब मुख्यमंत्री की हार है।
2: पहला काम बस यही है कि बांकीपुर की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, अपनी ओर से जो हो सकेगा बांकीपुर में सुधार का प्रयास करेंगे। अगले 2-3 महीने में आपको वो चीज दिखेंगे भी। मैं कोई बहुत बड़ी बड़ी बात बोलना नहीं चाहता हूँ। विधायक, मेरे विधायक बनने से बांकीपुर बंगलोर नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ सुधार होता अगले 2-3 महीने में दिखेगा। बड़ी बात यह है कि ये चुनाव बांकीपुर के नाली गली पर नहीं लड़ा गया है, ये चुनाव लड़ा गया है कि बिहार का नेतृत्व किसके हाथ में होना चाहिए। और बांकीपुर की जनता ने ये संदेश दिया है भाजपा के नेतृत्व को कि भाई आप अच्छे आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए, सम्राट चौधरी की जगह किसी कुशवाहा को बनाना है बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कुशवाहा को ही बनाइए, लेकिन कुशवाहा समाज के ही किसी अच्छे आदमी को बनाइए।
0: प्रशांत किशोर की जीत हुई। सम्राट चौधरी ने अब सोशल मीडिया पर लिखा है, लोकतंत्र के महापर्व में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनता ने जन सुराज को चुना है। मैं जनता के इस निर्णय का सम्मान करते हुए प्रशांत किशोर को उनकी जीत पर हार्दिक बधाई देता हूं।
3: लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो चुनाव परिणाम के रुझान आ रहे हैं उसको हम सिर झुकाकर स्वीकार करते हैं और हम पूरी समीक्षा करेंगे। बांकीपुर के लोग हमारे हैं, हमसे अलग क्यों हुए इसकी भी हम समीक्षा करेंगे।
4: ये लोकतंत्र की भूमि है और जनता के जनादेश को भारतीय जनता पार्टी हमेशा शिरोधार्य की है। हम कभी भी ठीकरा चुनाव आयोग या ईवीएम पर नहीं फोड़ते हैं, ये विपक्ष के लोगों के तरह।
2: हम लोग की लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, बहुमत भाजपा का है, एनडीए का है, मुख्यमंत्री तो उन्हीं का बनेगा। हम लोग बस इतना ही आग्रह कर रहे हैं, बिहार की जनता इतना ही आग्रह कर रही है, बांकीपुर की जनता इतना ही मोदी जी से आग्रह कर रही है कि किसी अच्छे चरित्रवान काबिल आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए, ताकि बिहार के लोग भी इस बात का गौरव, बिहारी होने का गौरव कर सके, ताकि हम लोग के बच्चों के लिए भी पढ़ाई रोजगार की व्यवस्था हो, सब कुछ सुविधा। अगर गुजरात के ही लोगों को मिलेगी तो सिर्फ बिहार के लोग कहाँ जाएंगे? गुजरात के लोग 1,00,000 करोड़ के बुलेट ट्रेन पर चलेंगे वो ठीक है, लेकिन हम लोगों को कम से कम पैसेंजर भी तो मिलना चाहिए। बिहार के लोग सिर्फ मजदूरी करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं और 5 साल के लिए भाजपा को मैंडेट मिला है, उनको अच्छा आदमी देना चाहिए, अच्छे लोगों को मंत्रिमंडल में रखना चाहिए, ताकि बिहार की तरक्की हो, बिहार का विकास हो।
5: गुजरात के मांझलपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने बड़ी और निर्णायक जीत हासिल की है। बीजेपी उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस के भिखाभाई रबारी को 30,630 वोटों के बड़े अंतर से हराकर सीट बरकरार रखी। ये उपचुनाव बीजेपी के वरिष्ठ नेता और 8 बार के विधायक रहे योगेश पटेल के निधन के बाद हुआ था। कम मतदान के बावजूद बीजेपी ने अपने मजबूत जनाधार को कायम रखते हुए स्पष्ट संदेश दिया कि मांझलपुर में उनका संगठन और सियासी पकड़ अभी भी मजबूत है।
6: बांकीपुर ने मायूस किया, दतिया ने दर्द बढ़ा दिया, लेकिन गुजरात के मांझलपुर ने बीजेपी के चेहरे पर मुस्कान लौटा। मांझलपुर में बीजेपी के सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,630 वोटों से हरा दिया।
7: ये भाजपा की जीत, एक कार्यकर्ता की जीत, ये विकास की जीत, नरेंद्र भाई मोदी की जीत और हमारे सभी कार्यकर्ताओं को खूब खूब अभिनंदन।
8: खुशी का माहौल है। भारत देश के प्रणेता बड़ा प्रधान अपने नरेंद्र भाई मोदी जी की ये सेना विकास के लिए काम करती है, तो लोग ऑब्वियसली भाजपा का ही वोट देंगे।
6: एक दिन 3 राज्य 3 नतीजे, 2 जगह झटका, 1 जगह बड़ी राहत। बिहार में सियासी किला दरका, मध्य प्रदेश में भी जीत हाथ।

0: से फिसल गई, लेकिन गुजरात के मांजलपुर ने बता दिया कि बीजेपी का गढ़ अब भी मजबूत है।
1: हमारे भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं को जाता है, इन्होंने दिन रात एक करके ये चुनाव जीता है। मैं सभी नागरिक भाइयों बहनों का और कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
2: भारतीय जनता पार्टी हमेशा संगठनात्मक काम करती है, हरेक कार्यकर्ता इसमें इन्वॉल्व होता है और काम करता है और उसका परिणाम है।
0: मांजलपुर सीट पूर्व मंत्री और 8 बार के विधायक योगेश पटेल के निधन के बाद खाली हुई थी। योगेश पटेल ने 1990 से 2007 के बीच बड़ोदरा की रावपुरा विधानसभा सीट का 5 बार प्रतिनिधित्व किया, फिर परिसीमन के बाद नई बनी मांजलपुर सीट से चुनाव लड़ा। योगेश पटेल ने 2012, 2017 और 2022 में मांजलपुर सीट से लगातार जीत दर्ज की और इस तरह 36 वर्षों के दौरान गुजरात विधानसभा चुनावों में लगातार 8वीं जीत हासिल की। बड़ोदरा के मांजलपुर विधानसभा में हुए उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार सतेंद्र भाई पटेल की जीत ने साबित कर दिया कि बीजेपी का यहां दबदबा अब भी बरकरार है, कांग्रेस का इंतजार लंबा हो गया है। अतुल तिवारी, बड़ोदरा आज तक।
3: सिद्धिविनायक वो दरबार जहां मुख्यमंत्री, मंत्री, अभिनेता और आम भक्त सब गणपति बप्पा के चरणों में एक समान होकर मत्था टेकते हैं, लेकिन अब उसी दरबार की दान पेटी सियासत के केंद्र में आ चुकी है, क्योंकि राज ठाकरे ने आरोप लगाया है कि सिद्धिविनायक मंदिर में हर साल 18 करोड़ रुपए का चंदा हड़प लिया जाता है। वहीं ट्रस्ट का दावा यह है कि ट्रस्ट की वजह से ही मामला उजागर हुआ है, लेकिन जब चढ़ावे पर ग्रहण की बात सामने आती है तो राजनीति भी जवाब देने से बच नहीं सकती।

0: घंटियों की गूंज, गणपति बप्पा की आरती, श्रद्धालुओं का सैलाब, यह दृश्य मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में होता है, जहां हर दिन हजारों श्रद्धालु अपनी मन्नतें लेकर पहुंचते हैं, जहां सत्ता भी सिर झुकाती है, विपक्ष भी नमन करता है, अभिनेता से लेकर आम आदमी तक हर कोई गणपति बप्पा के चरणों में आशीर्वाद देने पहुंचते हैं। लेकिन अब इसी मंदिर का चढ़ावा राजनीति के केंद्र में है। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने संगीन आरोप लगाया है। राज ठाकरे ने दावा किया है कि मुंबई के मशहूर सिद्धिविनायक मंदिर में हर साल 18 करोड़ रुपए का चंदा हड़प लिया जाता है।
1: महोदय, विश्वस्तांच्या सतर्कतेमुळे मंदिरातल्या दानपेटीतून पैसे चोरणारे कर्मचारी पकडले गेलेले आहेत। हे कर्मचारी पकडण्यापूर्वी दर बुधवारी मंदिरातल्या दानपेटीतील रकमेची मोजदात ही 50 लाख रुपयाच्या आत होती। मात्र ही हे कर्मचारी पकडल्यानंतर गेले 3 आठवडे आठवड्याची दानपेटी रक्कम ही 1.5 कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचली आहे। याचाच अर्थ यापूर्वी दर आठवड्याला दानपेटीतील जमा होणाऱ्या काही रकमेतील काही रक्कम ही लंपास होत होती। त्यामुळे दरवर्षी सुमारे 18 कोटी रुपयांचे मंदिराचे नुकसान होत होते।
0: वहीं सिद्धिविनायक ट्रस्ट के अध्यक्ष और शिवसेना नेता सदा सरवणकर कहते हैं कि ट्रस्ट की सतर्कता से ही गड़बड़ी सामने आई है। ट्रस्ट के मुताबिक 9 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया, FIR दर्ज कराई गई। ट्रस्ट के पूर्व अधिकारी राजन पेंडुलकर समेत 45 कर्मचारी सस्पेंड किए गए। गिरफ्तार आरोपियों के संबंध शिवसेना UPT की नेता विशाखा राउत और दूसरे नेताओं से है। इसके साथ ही ट्रस्ट के अध्यक्ष सदा सरवणकर इसके पक्के सबूत होने का भी दावा कर रहे हैं।
2: चोरी में जितने भी इन्वॉल्व है वो 9 जन को पकड़ा है। उसके बाद लूपहोल्स जो थे, आज दादर स्टेशन में अगर आप एक टैक्सी में बैठेंगे तो वो टैक्सी में भक्तगण अगर यहाँ आते तो उनसे 5,000 लिया जाता था, दर्शन वगैरह सब लेके। वो पहला बंद किया। उसके बाद ये सब आजू बाजू में दलाल लोग घूमते थे, दर्शन के लिए 2,000, 3,000 लेते थे, वो सारा बंद हो गया। ये हमारे जो यहाँ की सिक्योरिटी है, यहाँ के कर्मचारी है, उनको गूगल पे करके ये दर्शन दिया जाता था। हमने जितने भी कर्मचारी है सबका फोन बंद कर दिया। अभी किसी कर्मचारी के हाथ में फोन नहीं आपको मिलेगा। जितना भी हमको डाउट आएगा वो हर चीज के ऊपर हमने कुछ न कुछ एक्शन लिया होगा।
0: इसलिए भगवान के नाम पर चढ़े हर रुपए का हिसाब भी न्याय की कसौटी पर ही तय होना चाहिए।
3: मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर में चढ़ावे को लेकर अब महाराष्ट्र में नया सियासी तूफान खड़ा हो गया है, क्योंकि MNS प्रमुख राज ठाकरे ने एक चिट्ठी का हवाला देते हुए ये आरोप किया है कि इस चढ़ावे में बड़ी तादाद में घोटाला हो रहा है। छोटा मोटा नहीं बल्कि सालाना करीबन 18 करोड़ रुपए का घोटाला जो है इस चढ़ावे के पैसों में किया जा रहा है। ऐसी एक चिट्ठी इस ट्रस्ट के ही कुछ ट्रस्टियों ने मिलकर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लिखी थी। 21 अप्रैल 2026 को ये पत्र लिखा गया था, जिस पर ये आरोप किए गए हैं कि यहाँ से पैसों की अफरा तफरी हो रही है, दान पत्र से पैसे चुराए जा रहे हैं।
0: मामला 18 करोड़ का हो या फिर 18 रुपए का, बप्पा के नाम पर चढ़ाया गया एक एक रुपया पवित्र है। सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष सदा सरवणकर ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि मंदिर में हर साल करीब 18 करोड़ रुपए के दान का हेर फेर होता था, जिसे मौजूदा ट्रस्ट ने रोककर चढ़ावे की कमाई में भारी बढ़ोतरी की है। मंदिर की आय 2 साल में 114 करोड़ से बढ़कर 182 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। वहीं फडणवीस सरकार में मंत्री छगन भुजबल कहते हैं कि अगर किसी के पास ठोस जानकारी है तो सरकार को जानकारी मुहैया कराए, जाँच होगी और सच सामने आएगा।
4: चढ़ावा जो लोग चढ़ाते हैं भगवान को, सिद्धिविनायक, उस चढ़ावे में कुछ गलत हुआ है या कुछ, मतलब जो चंदा जमा होता है तो शायद उनके पास कोई मालूमात होगी, वो अगर सरकार को शासन को दे देंगे तो उसकी इंक्वायरी होगी और क्या गलत है क्या सही है साबित होगी।
0: अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच का चैप्टर अभी बंद भी नहीं हुआ है कि मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में गड़बड़ियों ने अरब सागर से आने वाली सियासी हवा को गर्म कर दिया है। दान पेटी में गिरता हर सिक्का, हर चढ़ावा सिर्फ मुद्रा और नोट नहीं होते, उनमें किसी माँ की मन्नत होती है, किसी मेहनतकश शख्स की कमाई, किसी परिवार की आस्था। इसलिए मंदिर के चढ़ावे पर उठा हर सवाल करोड़ों श्रद्धालुओं के भरोसे पर सवाल बन जाता है।
5: मार्च महीने में हमने जो बजट रखा वो 182 करोड़, ये जो उत्पन्न नहीं बोलेंगे चढ़ावा है, ये देनगी दी है मंदिर को। और इसी माध्यम से हमने यही बता रहे कि हमारे मन में अगर पाप रहता, ये ट्रस्टी बोर्ड है, मैं अभी खुले मन से बताता हूँ, हमारे मन में अगर पाप रहता तो हम इतने चोर पकड़ते नहीं, हमारे मन में अगर पाप रहता तो 46 कर्मचारी निलंबित होते नहीं, हमारे मन में पाप रहता तो 9 जन पुलिस कस्टडी और एमसीआर कस्टडी में जाते नहीं, हमारे मन में पाप होता तो हम सरकार को विधि न्याय विभाग को एक पत्र भी लिखते नहीं। हमने यही कहा है कि ये जो तफावत 2 साल और अभी भी है तो उसका ऑडिट होना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए।
0: गणपति बप्पा न्याय के देवता है, लिहाजा जांच सिर्फ पैसों की नहीं होनी चाहिए, जांच उस व्यवस्था की भी होनी चाहिए जिसे सिद्ध विनायक के घर की रखवाली सौंपी गई। मंदिर राजनीति का मंच नहीं, आस्था का केंद्र है, इसलिए आरोप भी तथ्यों के साथ होने चाहिए और जांच भी बिना किसी दबाव के।
3: सालाना 18 करोड़ तक का घोटाला जो है यहाँ मंदिर में हुआ है ऐसा दावा किया जा रहा है। अब विपक्ष से लेकर राज ठाकरे सभी मांग कर रहे हैं कि इस चोरी की जो है वो जांच की जाए, तफ्तीश की जाए। और किसके कार्यकाल में, यानी उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे तब उनके कार्यकाल में ये चोरी हुई थी, या फिर अब महायुति सरकार के कार्यकाल में इस तरह की चोरी सामने आई है, ये सामने आना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैमरा पर्सन सचिन सावन के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।
6: महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में बीजेपी नेता और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत मिल गई है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने ब्रिजभूषण शरण सिंह और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व सचिव विनोद तोमर को बाइज्जत बरी कर दिया है।
7: महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण के मामले में 1133 दिनों तक वकीलों ने दलीलें दी, सुनवाई हुई, तथ्य परखे गए और फिर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि ब्रजभूषण और उनके सह आरोपी विनोद तोमर को बाइज्जत बरी किया जाता है।
8: बरी शब्द का इस्तेमाल के जगह पर कोर्ट ने बाइज्जत बरी शब्द का इस्तेमाल किया है। बरी और बाइज्जत बरी में फर्क होता है। एक बरी होता है कि सबूतों के अभाव में आपको छोड़ा जा रहा है, यहाँ सीधे सीधे कहा गया कि आपको नाम लेकर के कि आपको बाइज्जत बरी किया जा रहा है।
7: दरअसल 3 साल पुराने इस मामले की बंद कमरे में हुई सुनवाई और तमाम गवाहों सबूतों की पड़ताल के बाद अदालत के फैसले में जो बड़ी बातें सामने आई हैं, उनमें से एक तो ये है कि शिकायतकर्ता और पुलिस ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ के आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं कर पाए। दूसरा ये कि शिकायतकर्ताओं के बयानों में तारीख, समय और घटना स्थल को लेकर बड़े विरोधाभास दर्ज किए गए थे। महिला पहलवानों ने खेल मंत्रालय की ओवरसाइट कमेटी में दिए हलफनामे और अदालत में दिए बयानों में फर्क था। कुछ घटनाओं में ब्रजभूषण शरण सिंह कथित घटनाओं के समय दूसरी जगह मौजूद रहने के प्रमाण मौजूद थे और बरी होने की बड़ी वजह ये भी थी कि कथित घटनाएं 2016 से 2019 के बीच की थी, जिनका आरोप 2023 में लगाया गया था।
8: तब मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि ये सब झूठ है, और अगर इसमें एक भी आरोप साबित होगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा।
7: अब महिला पहलवानों के मामले में बजरंग पुनिया ने लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करने की बात कही है, लेकिन इस मामले में जबरदस्त सियासत हो रही है।
9: क्यों नहीं सबको करेंगे, सब चोर, जितने लोग पार्टी में दाखिल हुए दूसरे पार्टीज में, अरे यही तो प्रधानमंत्री थे, तो बंगाल के मुख्यमंत्री के बारे में क्या क्या बोले थे,
10: क्या आरोप लगे थे, जांच होनी चाहिए थी, जांच होकर न्यायपालिका में गया, अब न्यायपालिका ने जो फैसला दे दिया उसका सम्मान करें, या तो सरकार को अगर लगता है कि सही नहीं है तो सरकार ऊपरी कोर्ट में जाए।
7: देखना यह है कि आरोप लगाने वाली महिला पहलवानों का रुख अब क्या होता है। मौसमी सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
6: रांची में 14वीं जेपीएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। छात्र रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में 10 दिन से धरना दे रहे हैं। कल शाम बड़ी संख्या में छात्रों ने मशाल जुलूस निकाला था। उन्होंने हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की थी। उधर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दिपके ने रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बात की है और उन्हें अपना समर्थन देने का ऐलान किया है।
11: सामाजिक कार्यकर्ता जो भेज देते हैं वही हम लोग खा के और दिन रात भर यही देखिए यही टेंट में आप तो देख रहे हैं पानी हो यही बहुत याद क्या करें सर हम लोग मरता क्या नहीं करता वाला स्थिति है सर।
12: मदद की थाली हाथ में पकड़े इस युवा को देखने के बाद सवाल उठता है कि आखिर नीति नियंताओं के हलक के नीचे खाना उतरता कैसे।
11: ऐसे गाँव से आते हैं सर वहाँ आज भी हम घर का पहला आदमी है पूरे खानदान का पूरे गाँव एक टोला मतलब खानदान का पहला आदमी है ना कि हम लोग बाहर निकले हैं पढ़ने लगे अभी तक हम लोग शिक्षा से इतना दूर है हमारा समाज अगर हम यहाँ पढ़े आए हैं सर अगर हम पढ़ के कुछ नहीं करेंगे तो हमारे आने वाला जो पीढ़ी है वो देखेगा तो कहेगा कि भैया या चाचा पढ़ लेते तो क्या कर लेते।
12: तो जीएम डीएम सीएम पीएम सब सुनिए इस छात्र की पुकार। अशिक्षा के अंधकार से निकल कर आया ये लड़का सवाल कर रहा है किसी में इतना ताप कि जवाब दे सके
11: क्योंकि हम लोग तो गरीब आदमी हैं सर और गरीब आदमी हैं अगर हम लोग कोई भी आदमी पढ़ के नौकरी का मतलब मांगता है ताकि हम लोग के आर्थिक समाज अति शैक्षणिक थोड़ा मजबूत हो इसीलिए तो हम लोग पढ़ रहे हैं इतना मेहनत कर रहे हैं एक रूम में हम लोग कितना दिन से या हम लोग कुछ भी मिल रहा है सर कैसे कैसे खाते आप तो जानते हैं।
12: रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बेरोजगारी से त्रस्त युवा जो बात कहते हैं वो सत्ता के सीने में शून सी चुभनी चाहिए क्योंकि ये युवा झारखंड में भर्ती आयोगों की धांधली से त्रस्त आ चुके हैं। प्रदर्शन करते ये नौजवान झारखंड में लगातार धरना देते हुए केवल झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और जेएसएससी के तहत होने वाली भर्तियों में होते भ्रष्टाचार से त्रस्त होकर एक हफ्ते से आंदोलन कर रहे हैं।
13: नारेबाजी चल रही है और अब इस आंदोलन को अलग अलग जगह से समर्थन भी मिलने लगा है। बीजेपी ने इस प्रोटेस्ट का खुलकर समर्थन किया है। एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया है। साथ ही साथ कॉकरोच जनता पार्टी ने भी बात की है उसके संस्थापक अभिजीत दीपके ने भी बात की है यहाँ पे और कहा है कि जिस सपोर्ट की जरूरत है वो सपोर्ट देने को तैयार है ताकि जो आंदोलन अपने अंजाम तक पहुँच सके।
12: अब सवाल यह है कि छात्रों की पुकार क्यों नहीं सुन रही है हेमंत सरकार। सत्यजीत कुमार रांची आज तक।
6: बारिश कभी राहत बनकर आती है तो कभी आफत बनकर सब कुछ बहा ले जाती है। पश्चिम भारत इस वक्त पानी के ऐसे ही प्रहार से जूझ रहा है। महाराष्ट्र से गुजरात तक आसमान से बरसता पानी अब जिंदगी की रफ्तार को रोक रहा है। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, कई शहरों की गलियां तालाब बन चुकी हैं, तो कई करोड़ों की गाड़ियां बाढ़ के पानी में कबाड़ में बदल चुकी हैं।
12: ये तस्वीरें महाराष्ट्र के भिवंडी की हैं। कामबारी नदी अब सिर्फ बह नहीं रही बल्कि खतरे का इशारा दे रही है। पानी इतना बढ़ चुका है कि नदी किनारे खड़ी गाड़ियां एक एक कर डूबने लगी हैं। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की हर नजर नदी के बढ़ते जलस्तर पर टिकी है। अब जरा रुक कीजिए जलगांव का। यहाँ पहली ही तेज बारिश ने मुंबई नागपुर नेशनल हाईवे के फ्लाईओवर के नीचे की जमीन बहा दी। जिस सड़क पर रफ्तार दौड़ती थी वहाँ अब सवाल खड़े हैं। मंत्री मौके पर हैं, जांच के आदेश हैं, लेकिन तस्वीरें विकास की गुणवत्ता पर बड़ा सवाल छोड़ रही हैं।
14: अतिशय गंभीर है। म्हणजे गडकरी साहेबांच्या कारवर मी स्रोत टाकलेला आहे। त्यांनी सांगितलं की जर कडक ऍक्शन आपण त्या ठिकाणी घेऊ पण मोठी दुर्घटना टळली असे म्हणायला हरकत नाही। अन्यथा या ठिकाणी वाहन चालले असताना जर असं झालं असतं तर मला वाटतं मोठी दुर्घटना त्या ठिकाणी झाली असती। पण या संदर्भामध्ये तर आम्ही सर्वजण म्हणजे मी बाहेरगावी होतो, रात्री नाशिकहून आलो, गुलाबो पण या ठिकाणी बाहेर आम्ही आज ठिकाणी निघालो, राजू मामा इथले आमदार आहेत, आम्ही या ठिकाणी आलेलो आहोत। पण कडक कारवाई करण्याच्या संदर्भामध्ये ठेकेदारावर मग त्याला ब्लॅकलिस्ट करा, त्याच्यावर कारवाई करा।
12: महाराष्ट्र के नांदेड़ के सहस्रकुंड झरने का नजारा अद्भुत है, लेकिन 100 फीट की ऊंचाई से गिरते पानी में चेतावनी भी छिपी है। यही बारिश कहीं सैलानियों को आकर्षित कर रही है तो कहीं लोगों की जिंदगी को बेबस बना रही है। ये मंजर गुजरात के वलसाड़ जिले के वापी का है, जहां सड़कें नदी बन गई और हजारों कारें पानी में डूबकर कबाड़ में बदल गई। बाढ़ का पानी उतर जाएगा, लेकिन करोड़ों के नुकसान और हजारों इंश्योरेंस क्लेम की लड़ाई अभी बाकी है।
15: 150 से 200 सर्वेयरों की टीम इस डिजास्टर में काम कर रही है, सब कंपनियों की मिलके, और पूरे गुजरात से, पूरे महाराष्ट्र, मुंबई से इन लोगों ने अपने अपने सर्वेयर बुलवा लिए हैं। तो काम तो बहुत स्पीड में हो रहा है, काम को दिक्कत नहीं है।
16: मुझे आशा है कि क्लेम्स हमारे बहुत स्मूथली प्रोसेस हो जाएंगे, और गाड़ियों का जो नुकसान हुआ है वो तो अब हम रोक नहीं सकते, जो कुदरती आफत है, बट उसके बाद जो हमारे हाथ में है इंश्योरेंस क्लेम्स और ये सब, और लोगों की पॉजिटिविटी देख के, लोगों का जज्बा देख के, ये लग रहा है कि हमारे क्लेम्स इजीली प्रोसेस हो जाएंगे।
12: अब देखिए खेड़ा जिले के महमदाबाद के रिंचोल गांव की तस्वीरें। बाढ़ का पानी अपने साथ मगरमच्छों को इंसानी बस्तियों तक ले आया है। घर के भीतर 7 फीट लंबा मगरमच्छ, बाहर सहमे हुए लोग, और बीच में जान जोखिम में डालकर चलता रेस्क्यू ऑपरेशन। कुदरत के अलग अलग रंग, कहीं जानलेवा तो कहीं खुशनुमा। जब बारिश रिकॉर्ड तोड़ती है तो सिर्फ नदियां नहीं उफनती हैं, सिस्टम की तैयारी भी बेनकाब हो जाती है। बारिश अभी जारी है, इसलिए खतरा भी टला नहीं है। आज तक ब्यूरो।
6: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: संसदीय अध्यक्ष की सीट पर पिट गई पार्टी। बांकीपुर से शानदार जीत के बाद प्रशांत किशोर बोले, 30 दिन में ढा दिया 30 साल पुराना किला। सीएम सम्राट पर किया बड़ा हमला, आरजेडी की जमानत जब्त। कांग्रेस के हाथ लगा मध्य प्रदेश का दतिया, यहां भी 6,000 से ज्यादा वोटों से हार गई बीजेपी। गुजरात के मांजलपुर ने बचाई बीजेपी की इज्जत, 30,000 से ज्यादा वोटों से जीते सत्येंद्र भाई पटेल। प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो हटाने पर मेटा ने मानी है गलती, संसदीय समिति की बैठक में माफी मांगी, तकनीकी गड़बड़ी का हवाला दिया, समिति ने जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग। यूपी विधानसभा में मानसून सत्र के पहले दिन चढ़ावा, चोरी पर घमासान, विपक्ष की तरफ से जोरदार प्रदर्शन। योगी बोले, जनता को गुमराह न करें, दम है तो विकास पर बात करें। और झारखंड का रांची बना नया जंतर मंतर, जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी, 10 दिन से भूख हड़ताल पर देवेंद्र नाथ महतो, सीबीआई जांच की मांग। बिहार के विधायक पद से सीधे बीजेपी के अध्यक्ष पद तक पहुंचे नितिन नवीन की खाली हुई सीट पर उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने 19,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल कर ली है। बीजेपी के सामने अब तक जहां मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी रही, वहां बांकीपुर में तेजस्वी यादव की पार्टी की जमानत तक जब्त हो गई।
1: बिहार की एक खासियत है, जब जब आपको लगता है कि आप बिहार को समझ गए, बिहार आपको झटका देता है।
2: सच है कि बिहार ने चौंकाया है। लड्डू तो बीजेपी वाले बताते हैं कि 200 किलो बनवाया,
3: 200 किलो लड्डू बनाया जा रहा।
2: लेकिन कहावत है, कहा जाता है हाथ खुआया मुंह ना लगा। यही तो साल की शुरुआत में सबको चौंका कर बीजेपी अध्यक्ष बनकर लड्डू चखने वाले नितिन नवीन के राज्यसभा में जाने के बाद खाली हुई विधानसभा सीट बांकीपुर पर हुआ, जहां मुख्यमंत्री के साथ रोड शो करते बीजेपी अध्यक्ष दावा करते रहे, जनता की लहर साथ है।
4: मुझे पूरा विश्वास है कि जो समर्थन जनता का दिख रहा है वो निश्चित रूप से 3 अगस्त को फिर से एनडीए का कमल, भाजपा का कमल बांकीपुर की जनता खिलाएगी।
2: लेकिन जब नतीजे बांकीपुर उपचुनाव के आए, पता चला जनता तो अध्यक्ष जी की ही पारंपरिक सीट पर पीके के साथ चली गई।

0: बीजेपी अपने ही अध्यक्ष की सीट पर उपचुनाव नहीं जीत पाई। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद पहली बार हुए उपचुनाव में बीजेपी हार गई। बिहार में बीजेपी के पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद हुए उपचुनाव में बीजेपी जीत नहीं पाई। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री रहते पहला ही उपचुनाव बीजेपी हार जाती है। 3 दशक से जीती जा रही सीट पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ता है। हिंदू बाहुल्य और बीजेपी के कोर समर्थक वोटर वाली सीट पर बीजेपी को हार मिलती है, वो भी उन प्रशांत किशोर से जिन्हें 9 महीने पहले बिहार के विधानसभा चुनाव में चूका हुआ मान लिया गया था। प्रशांत किशोर की जीत बड़ी या बीजेपी अध्यक्ष की छोड़ी हुई सीट पर बीजेपी की हार बड़ी, इन दो सवालों के कुछ जवाब हैं जो कहते हैं कि बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत सवर्ण वोटर छिटक गया है। सवर्ण वोटर विकल्प बेहतर मिले तो साथ बीजेपी का छोड़ सकता है और सेफ सीट का मतलब अब कुछ नहीं, क्योंकि 1995 से जहां बीजेपी लगातार जिस इलाके में जीतती आई वहां भगवा रंग की जगह पीके का पीला रंग चढ़ जाना कोई छोटी सियासी खबर नहीं। पटना के जिस बांकीपुर में बीजेपी को कभी भी कुल वोटों का 59% से कम वोट नहीं मिला, जिस बांकीपुर में 9 महीने पहले विधानसभा चुनाव में नितिन नवीन की उम्मीदवारी पर बीजेपी को 63% वोट मिलता है, वहाँ अब की बार बीजेपी प्रत्याशी केवल 34.50% वोट पाते हैं। आरजेडी प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाती है और प्रशांत किशोर 49.19% वोट लेकर जीतते हैं। जिस बांकीपुर में 9 महीने पहले बीजेपी ने 51,936 वोट के अंतर से जीत हासिल की, वहां अब की बार बीजेपी के प्रत्याशी नीरज कुमार को 44,827 वोट ही मिले। बीजेपी को प्रशांत किशोर ने अपने पहले ही चुनाव में 64,151 वोट हासिल करके 19,000 से ज्यादा वोट के अंतर से हराया है। जीत मिलते ही प्रशांत किशोर ने भले एक सीट जीती हो, भले वो अपनी पार्टी के इकलौते विजयी उम्मीदवार विधानसभा में बने, लेकिन एक उपचुनाव की चाल से वो सीधे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को शह और मात दे देना चाहते हैं।
1: रेफरेंडम है ये सम्राट चौधरी पे?
2: बिल्कुल, वो तो है।
1: आप बार बार कह रहे थे जनमत संग्रह है ये।
2: बिल्कुल, सम्राट चौधरी के नेतृत्व को बिहार की जनता स्वीकार नहीं करती है, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है।
1: और नितिन नवीन के सीट पे इतनी बड़ी जीत, किला ध्वस्त किया है बीजेपी का आपने?
2: किला किसी का नहीं होता है।
1: रुक जाइए,
3: आराम से चलिए।
2: 30 साल का किला 30 दिन भी नहीं लगा, और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि भाजपा ने चुनाव जीतने के बाद यहाँ पर एक अपराधी प्रवृत्ति के आदमी को, एक गलत चाल चरित्र के चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व दिया है, जो बिहार के लोगों को स्वीकार्य नहीं है।
0: 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद 111 दिन के भीतर पहली चुनावी परीक्षा में वो पास नहीं हो पाए, जहां प्रशांत किशोर लगातार सीधे एक वोट एक सीट से सम्राट चौधरी पर निशाना प्रचार के दौरान साधते रहे।
4: आपका एक वोट विधायक नहीं चुनेगा, बिहार में मुख्यमंत्री बदल देगा। अगर आप सम्राट चौधरी को हटाना चाहते हैं तो अभी आपके पास रास्ता है। एक बार संकल्प लीजिए, भाजपा को बांकीपुर में हराइए, लिख के ले लीजिए, सम्राट चौधरी का कुर्सी हिलने लगेगा, सम्राट चौधरी को हटाने का रास्ता खुल जाएगा।
0: इसके बाद जैसे ही बांकीपुर में जीत का डंका प्रशांत किशोर बजाते, वो इस बात को दोहराते कि बांकीपुर में बीजेपी की हार का मतलब मुख्यमंत्री की हार है।
2: पहला काम बस यही है कि बांकीपुर की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, अपनी ओर से जो हो सकेगा बांकीपुर में सुधार का प्रयास करेंगे। अगले 2-3 महीने में आपको वो चीज दिखेंगी भी। मैं कोई बहुत बड़ी बड़ी बात बोलना नहीं चाहता हूँ। विधायक, मेरे विधायक बनने से बांकीपुर बंगलोर नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ सुधार होता अगले 2-3 महीने में दिखेगा। बड़ी बात यह है कि ये चुनाव बांकीपुर के नाली गली पर नहीं लड़ा गया है, ये चुनाव लड़ा गया है कि बिहार का नेतृत्व किसके हाथ में होना चाहिए। और बांकीपुर की जनता ने ये संदेश दिया है भाजपा के नेतृत्व को कि भाई आप अच्छे आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए, सम्राट चौधरी की जगह किसी कुशवाहा को बनाना है बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कुशवाहा को ही बनाइए, लेकिन कुशवाहा समाज के ही किसी अच्छे आदमी को बनाइए।
0: प्रशांत किशोर की जीत हुई, सम्राट चौधरी ने अब सोशल मीडिया पर लिखा है, लोकतंत्र के महापर्व में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनता ने जन सुराज को चुना है, मैं जनता के इस निर्णय का सम्मान करते हुए प्रशांत किशोर को उनकी जीत पर हार्दिक बधाई देता हूं।
5: लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो चुनाव परिणाम के रुझान आ रहे हैं उसको हम सिर झुकाकर स्वीकार करते हैं और हम पूरी समीक्षा करेंगे। बांकीपुर के लोग हमारे हैं, हमसे अलग क्यों हुए इसकी भी हम समीक्षा करेंगे।
6: ये लोकतंत्र की भूमि है और जनता के जनादेश को भारतीय जनता पार्टी हमेशा शिरोधार्य की है। हम कभी भी ठीकरा चुनाव आयोग या ईवीएम पर नहीं फोड़ते हैं, ये विपक्ष के लोगों के तरह।
2: हम लोग की लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, बहुमत भाजपा का है, एनडीए का है, मुख्यमंत्री तो उन्हीं का बनेगा। हम लोग बस इतना ही आग्रह कर रहे हैं, बिहार की जनता इतना ही आग्रह कर रही है, बांकीपुर की जनता इतना ही मोदी जी से आग्रह कर रही है कि किसी अच्छे चरित्रवान काबिल आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए, ताकि बिहार के लोग भी इस बात का गौरव, बिहारी होने का गौरव कर सके, ताकि हम लोग के बच्चों के लिए भी पढ़ाई रोजगार की व्यवस्था हो, सब कुछ सुविधा अगर गुजरात के ही लोगों को मिलेगी तो सिर्फ बिहार के लोग कहाँ जाएंगे। गुजरात के लोग 1,00,000 करोड़ के बुलेट ट्रेन पर चलेंगे वो ठीक है, लेकिन हम लोगों को कम से कम पैसेंजर भी तो मिलना चाहिए। बिहार के लोग सिर्फ मजदूरी करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं और 5 साल के लिए भाजपा को मैंडेट मिला है, उनको अच्छा आदमी देना चाहिए, अच्छे लोगों को मंत्रिमंडल में रखना चाहिए, ताकि बिहार की तरक्की हो, बिहार का विकास हो।
7: गुजरात के मांझलपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने बड़ी और निर्णायक जीत हासिल की है। बीजेपी उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस के भिखाभाई रबारी को 30,630 वोटों के बड़े अंतर से हराकर सीट बरकरार रखी। ये उपचुनाव बीजेपी के वरिष्ठ नेता और 8 बार के विधायक रहे योगेश पटेल के निधन के बाद हुआ था। कम मतदान के बावजूद बीजेपी ने अपने मजबूत जनाधार को कायम रखते हुए स्पष्ट संदेश दिया कि मांझलपुर में उनका संगठन और सियासी पकड़ अभी भी मजबूत है।
8: बांकीपुर ने मायूस किया, दतिया ने दर्द बढ़ा दिया, लेकिन गुजरात के मांझलपुर ने बीजेपी के चेहरे पर मुस्कान लौटा। मांझलपुर में बीजेपी के सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,630 वोटों से हरा दिया।
9: ये भाजपा की जीत, एक कार्यकर्ता की जीत, ये विकास की जीत, नरेंद्र भाई मोदी की जीत और हमारे सभी कार्यकर्ताओं को खूब खूब अभिनंदन।
10: खुशी का माहौल है, भारत देश के बने का बड़ा प्रधान अपने नरेंद्र भाई मोदी जी की ये सेना विकास के लिए काम करती है, तो लोग ऑब्वियसली भाजपा का ही वोट देंगे।
8: एक दिन 3 राज्य 3 नतीजे, 2 जगह झटका, 1 जगह बड़ी राहत। बिहार में सियासी किला दरका, मध्य प्रदेश में भी जीत हाथ से फिसल गई, लेकिन गुजरात के मांझलपुर ने बता दिया कि बीजेपी का गढ़ अब भी मजबूत है।
11: हमारे भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं को जाता है, जिन्होंने दिन रात एक करके ये चुनाव जीता है। मैं सभी नागरिक भाइयों बहनों का और कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
12: भारतीय जनता पार्टी हमेशा संगठनात्मक काम करती है, हरेक कार्यकर्ता इसमें इन्वॉल्व होता है और काम करता है और उसका परिणाम है।
8: मांझलपुर सीट पूर्व मंत्री और 8 बार के विधायक योगेश पटेल के निधन के बाद खाली हुई थी। योगेश पटेल ने 1990 से 2007 के बीच बड़ोदरा की रावपुरा विधानसभा सीट का 5 बार प्रतिनिधित्व किया, फिर परिसीमन के बाद नई बनी मांझलपुर सीट से चुनाव लड़ा। योगेश पटेल ने 2012, 2017 और 2022 में मांझलपुर सीट से लगातार जीत दर्ज की और इस तरह 36 वर्षों के दौरान गुजरात विधानसभा चुनावों में लगातार 8वीं जीत हासिल की। बड़ोदरा के मांझलपुर विधानसभा में हुए उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल की जीत ने साबित कर दिया कि बीजेपी का यहां दबदबा अब भी बरकरार है, कांग्रेस का इंतजार लंबा हो गया है। अतुल तिवारी, बड़ोदरा आज तक।
7: सिद्धिविनायक वो दरबार जहां मुख्यमंत्री, मंत्री, अभिनेता और आम भक्त सब गणपति बप्पा के चरणों में एक समान होकर मत्था टेकते हैं, लेकिन अब उसी दरबार की दान पेटी सियासत के केंद्र में आ चुकी है, क्योंकि राज ठाकरे ने आरोप लगाया है कि सिद्धिविनायक मंदिर में हर साल 18 करोड़ रुपए का चंदा हड़प लिया जाता है। वहीं ट्रस्ट का दावा यह है कि ट्रस्ट की वजह से ही मामला उजागर हुआ है, लेकिन जब चढ़ावे पर ग्रहण की बात सामने आती है तो राजनीति भी जवाब देने से बच नहीं सकती।

0: घंटियों की गूंज, गणपति बप्पा की आरती, श्रद्धालुओं का सैलाब, ये दृश्य मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में होता है, जहां हर दिन हजारों श्रद्धालु अपनी मन्नतें लेकर पहुंचते हैं, जहां सत्ता भी सिर झुकाती है, विपक्ष भी नमन करता है, अभिनेता से लेकर आम आदमी तक हर कोई गणपति बप्पा के चरणों में आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। लेकिन अब इसी मंदिर का चढ़ावा राजनीति के केंद्र में है। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने संगीन आरोप लगाया है। राज ठाकरे ने दावा किया है कि मुंबई के मशहूर सिद्धिविनायक मंदिर में हर साल 18 करोड़ रुपए का चंदा हड़प लिया जाता है।
1: महोदय, विश्वस्तांच्या सतर्कतेमुळे मंदिरातल्या दानपेटीतून पैसे चोरणारे कर्मचारी पकडले गेलेले आहेत। हे कर्मचारी पकडण्यापूर्वी दर बुधवारी मंदिरातल्या दानपेटीतील रकमेची मोजदात ही 50 लाख रुपयाच्या आत होती। मात्र ही हे कर्मचारी पकडल्यानंतर गेले 3 आठवडे आठवड्याची दानपेटी रक्कम ही 1.5 कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचली आहे। याचाच अर्थ यापूर्वी दर आठवड्याला दानपेटीतील जमा होणाऱ्या काही रकमेतील काही रक्कम ही लंपास होत होती। त्यामुळे दरवर्षी सुमारे 18 कोटी रुपयांचे मंदिराचे नुकसान होत होते।
0: वहीं सिद्धिविनायक ट्रस्ट के अध्यक्ष और शिवसेना नेता सदा सरवणकर कहते हैं कि ट्रस्ट की सतर्कता से ही गड़बड़ी सामने आई है। ट्रस्ट के मुताबिक 9 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया, FIR दर्ज कराई गई। ट्रस्ट के पूर्व अधिकारी राजन पेंडुलकर समेत 45 कर्मचारी सस्पेंड किए गए। गिरफ्तार आरोपियों के संबंध शिवसेना UPT की नेता विशाखा राउत और दूसरे नेताओं से है। इसके साथ ही ट्रस्ट के अध्यक्ष सदा सरवणकर इसके पक्के सबूत होने का भी दावा कर रहे हैं।
2: चोरी में जितने भी इन्वॉल्व है वो 9 जन को पकड़ा है। उसके बाद लूपहोल्स जो थे, आज दादर स्टेशन में अगर आप एक टैक्सी में बैठेंगे तो वो टैक्सी में भक्तगण अगर यहाँ आते तो उनसे 5,000 लिया जाता था, दर्शन वगैरह सब लेके। वो पहला बंद किया। उसके बाद ये सब आजू बाजू में दलाल लोग घूमते थे, दर्शन के लिए 2,000 3,000 लेते थे, वो सारा बंद हो गया। ये हमारे जो यहाँ की सिक्योरिटी है, यहाँ के कर्मचारी है, उनको गूगल पे करके ये दर्शन दिया जाता था। हमने जितने भी कर्मचारी है सबका फोन बंद कर दिया। अभी किसी कर्मचारी के हाथ में फोन नहीं आपको मिलेगा। जितना भी हमको डाउट आएगा वो हर चीज के ऊपर हमने कुछ न कुछ एक्शन लिया होगा।
0: इसलिए भगवान के नाम पर चढ़े हर रुपए का हिसाब भी न्याय की कसौटी पर ही तय होना चाहिए।
3: मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर में चढ़ावे को लेकर अब महाराष्ट्र में नया सियासी तूफान खड़ा हो गया है, क्योंकि MNS प्रमुख राज ठाकरे ने एक चिट्ठी का हवाला देते हुए ये आरोप किया है कि इस चढ़ावे में बड़ी तादाद में घोटाला हो रहा है। छोटा मोटा नहीं बल्कि सालाना करीबन 18 करोड़ रुपए का घोटाला जो है इस चढ़ावे के पैसों में किया जा रहा है। ऐसी एक चिट्ठी इस ट्रस्ट के ही कुछ ट्रस्टियों ने मिलकर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लिखी थी। 21 अप्रैल 2026 को ये पत्र लिखा गया था, जिस पर ये आरोप किए गए हैं कि यहाँ से पैसों की अफरा तफरी हो रही है, दान पत्र से पैसे चुराए जा रहे हैं।
0: मामला 18 करोड़ का हो या फिर 18 रुपए का, बप्पा के नाम पर चढ़ाया गया एक एक रुपया पवित्र है। सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष सदा सरवणकर ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि मंदिर में हर साल करीब 18 करोड़ रुपए के दान का हेर फेर होता था, जिसे मौजूदा ट्रस्ट ने रोककर चढ़ावे की कमाई में भारी बढ़ोतरी की है। मंदिर की आय 2 साल में 114 करोड़ से बढ़कर 182 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। वहीं फडणवीस सरकार में मंत्री छगन भुजबल कहते हैं कि अगर किसी के पास ठोस जानकारी है तो सरकार को जानकारी मुहैया कराए, जाँच होगी और सच सामने आएगा।
4: चढ़ावा जो लोग चढ़ाते हैं भगवान को, सिद्धिविनायक को, उस चढ़ावे में कुछ गलत हुआ है या कुछ, मतलब जो चंदा जमा होता है तो शायद उनके पास कोई मालूमात होगी, वो अगर सरकार को शासन को दे देंगे तो उसकी इंक्वायरी होगी और क्या गलत है क्या सही है साबित होगी।
0: अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच का चैप्टर अभी बंद भी नहीं हुआ है कि मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में गड़बड़ियों ने अरब सागर से आने वाली सियासी हवा को गर्म कर दिया है। दान पेटी में गिरता हर सिक्का, हर चढ़ावा सिर्फ मुद्रा और नोट नहीं होते। उनमें किसी माँ की मन्नत होती है, किसी मेहनतकश शख्स की कमाई, किसी परिवार की आस्था। इसलिए मंदिर के चढ़ावे पर उठा हर सवाल करोड़ों श्रद्धालुओं के भरोसे पर सवाल बन जाता है।
5: मार्च महीने में हमने जो बजट रखा वो 182 करोड़, ये जो उत्पन्न नहीं बोलेंगे चढ़ावा है, ये देनगी दी है मंदिर को। और इसी माध्यम से हमने यही बता रहे कि हमारे मन में अगर पाप रहता, ये ट्रस्टी बोर्ड है, मैं अभी खुले मन से बताता हूँ, हमारे मन में अगर पाप रहता तो हम इतने चोर पकड़ते नहीं, हमारे मन में अगर पाप रहता तो 46 कर्मचारी निलंबित होते नहीं, हमारे मन में पाप रहता तो 9 जन पुलिस कस्टडी और एमसीआर कस्टडी में जाते नहीं, हमारे मन में पाप होता तो हम सरकार को विधि न्याय विभाग को एक पत्र भी लिखते नहीं। हमने यही कहा है कि ये जो तफावत 2 साल और अभी भी है तो उसका ऑडिट होना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए।
0: गणपति बप्पा न्याय के देवता है, लिहाजा जांच सिर्फ पैसों की नहीं होनी चाहिए, जांच उस व्यवस्था की भी होनी चाहिए जिसे सिद्ध विनायक के घर की रखवाली सौंपी गई। मंदिर राजनीति का मंच नहीं, आस्था का केंद्र है, इसलिए आरोप भी तथ्यों के साथ होने चाहिए और जांच भी बिना किसी दबाव के।
3: सालाना 18 करोड़ तक का घोटाला जो है यहाँ मंदिर में हुआ है ऐसा दावा किया जा रहा है। अब विपक्ष से लेकर राज ठाकरे सभी मांग कर रहे हैं कि इस चोरी की जो है वो जांच की जाए, तफ्तीश की जाए। और किसके कार्यकाल में, यानी उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे तब उनके कार्यकाल में ये चोरी हुई थी, या फिर अब महायुति सरकार के कार्यकाल में इस तरह की चोरी सामने आई है, ये सामने आना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैमरा पर्सन सचिन सावन के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।
6: महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में बीजेपी नेता और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत मिल गई है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने ब्रिजभूषण शरण सिंह और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व सचिव विनोद तोमर को बाइज्जत बरी कर दिया है।
7: महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण के मामले में 1133 दिनों तक वकीलों ने दलीलें दी, सुनवाई हुई, तथ्य परखे गए और फिर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि ब्रिजभूषण और उनके सह आरोपी विनोद तोमर को बाइज्जत बरी किया जाता है।
8: बरी शब्द का इस्तेमाल के जगह पर कोर्ट ने बाइज्जत बरी शब्द का इस्तेमाल किया है। बरी और बाइज्जत बरी में फर्क होता है। एक बरी होता है कि सबूतों के अभाव में आपको छोड़ा जा रहा है, यहाँ सीधे सीधे कहा गया कि आपको नाम लेकर के कि आपको बाइज्जत बरी किया जा रहा है।
7: दरअसल 3 साल पुराना इस मामले की बंद कमरे में हुई सुनवाई और तमाम गवाहों सबूतों की पड़ताल के बाद अदालत के फैसले में जो बड़ी बातें सामने आई हैं, उनमें से एक तो ये है कि शिकायतकर्ता और पुलिस ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ के आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं कर पाए। दूसरा ये कि शिकायतकर्ताओं के बयानों में तारीख, समय और घटना स्थल को लेकर बड़े विरोधाभास दर्ज किए गए थे। महिला पहलवानों ने खेल मंत्रालय की ओवरसाइट कमेटी में दिए हलफनामे और अदालत में दिए बयानों में फर्क था। कुछ घटनाओं में ब्रजभूषण शरण सिंह कथित घटनाओं के समय दूसरी जगह मौजूद रहने के प्रमाण मौजूद थे और बरी होने की बड़ी वजह ये भी थी कि कथित घटनाएं 2016 से 2019 के बीच की थी, जिनका आरोप 2023 में लगाया गया था।
8: तब मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि ये सब झूठ है, और अगर इसमें एक भी आरोप साबित होगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा।
7: अब महिला पहलवानों के मामले में बजरंग पुनिया ने लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करने की बात कही है, लेकिन इस मामले में जबरदस्त सियासत हो रही है।
9: क्यों नहीं सबको करेंगे, सब चोर जितने लोग पार्टी में दाखिल हुए दूसरे पार्टीज में, अरे यही तो प्रधानमंत्री थे, तो बंगाल के मुख्यमंत्री के बारे में क्या क्या बोले थे,
10: आरोप लगे थे, जांच होनी चाहिए थी, जांच होकर न्यायपालिका में गया, अब न्यायपालिका ने जो फैसला दे दिया उसका सम्मान करें, या तो सरकार को अगर लगता है कि सही नहीं है तो सरकार ऊपरी कोर्ट में दे।
7: देखना यह है कि आरोप लगाने वाली महिला पहलवानों का रुख अब क्या होता है। मौसमी सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
6: रांची में 14वीं जेपीएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। छात्र रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में 10 दिन से धरना दे रहे हैं। कल शाम बड़ी संख्या में छात्रों ने मशाल जुलूस निकाला था। उन्होंने हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की थी। उधर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दिपके ने रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बात की है और उन्हें अपना समर्थन देने का ऐलान किया है।
11: सामाजिक कार्यकर्ता जो भेज देते हैं वही हम लोग खा के और दिन रात भर यही देखिए यही टेंट में आप तो देख रहे हैं पानी हो यही बहुत याद क्या करे सर हम लोग मरता क्या नहीं करता वाला स्थिति है सर।
12: मदद की थाली हाथ में पकड़े इस युवा को देखने के बाद सवाल उठता है कि आखिर नीति नियंताओं के हलक के नीचे खाना उतरता कैसे।
11: ऐसे गाँव से आते हैं सर वहाँ आज भी हम घर का पहला आदमी है पूरे खानदान का पूरे गाँव एक टोला मतलब खानदान का पहला आदमी है ना कि हम लोग बाहर निकले हैं पढ़ने लगे अभी तक हम लोग शिक्षा से इतना दूर है हमारा समाज अगर हम यहाँ पढ़े आए हैं सर अगर हम पढ़ के कुछ नहीं करेंगे तो हमारा आने वाला जो पीढ़ी है वो देखेगा तो कहेगा कि भैया या चाचा पढ़ लेते तो क्या कर लेते।
12: तो जीएम डीएम सीएम पीएम सब सुनिए इस छात्र की पुकार। अशिक्षा के अंधकार से निकल कर आया ये लड़का सवाल कर रहा है किसी में इतना ताप की जवाब दे सके
11: क्योंकि हम लोग तो गरीब आदमी हैं सर और गरीब आदमी हैं अगर हम लोग कोई भी आदमी पढ़ के नौकरी का मतलब मांगता है ताकि हम लोग के आर्थिक समाज अति शैक्षणिक थोड़ा मजबूत हो इसीलिए तो हम लोग पढ़ रहे हैं इतना मेहनत कर रहे हैं एक रूम में हम लोग कितना दिन से या हम लोग कुछ भी मिल रहा है सर कैसे कैसे खाते आप तो जानते हैं।
12: रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बेरोजगारी से त्रस्त युवा जो बात कहते हैं वो सत्ता के सीने में शून सी चुभनी चाहिए क्योंकि ये युवा झारखंड में भर्ती आयोगों की धांधली से त्रस्त आ चुके हैं। प्रदर्शन करते ये नौजवान झारखंड में लगातार धरना देते हुए केवल झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और JSSC के तहत होने वाली भर्तियों में होते भ्रष्टाचार से त्रस्त होकर एक हफ्ते से आंदोलन कर रहे हैं।
13: नारेबाजी चल रही है और अब इस आंदोलन को अलग अलग जगह से समर्थन भी मिलने लगा है। बीजेपी ने इस प्रोटेस्ट का खुलकर समर्थन किया है। एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया है। साथ ही साथ कॉकरोच जनता पार्टी ने भी बात की है। उसके संस्थापक अभिजीत दीपके ने भी बात की है यहाँ पे और कहा है कि जिस सपोर्ट की जरूरत है वो सपोर्ट देने को तैयार है ताकि जो आंदोलन अपने अंजाम तक पहुँच सके।
12: अब सवाल यह है कि छात्रों की पुकार क्यों नहीं सुन रही है हेमंत सरकार। सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।
6: बारिश कभी राहत बनकर आती है तो कभी आफत बनकर सब कुछ बहा ले जाती है। पश्चिम भारत इस वक्त पानी के ऐसे ही प्रहार से जूझ रहा है। महाराष्ट्र से गुजरात तक आसमान से बरसता पानी अब जिंदगी की रफ्तार को रोक रहा है। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, कई शहरों की गलियां तालाब बन चुकी हैं, तो कई करोड़ों की गाड़ियां बाढ़ के पानी में कबाड़ में बदल चुकी हैं।
12: ये तस्वीरें महाराष्ट्र के भिवंडी की हैं। कामबारी नदी अब सिर्फ बह नहीं रही बल्कि खतरे का इशारा दे रही है। पानी इतना बढ़ चुका है कि नदी किनारे खड़ी गाड़ियां एक एक कर डूबने लगी हैं। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की हर नजर नदी के बढ़ते जलस्तर पर टिकी है। अब जरा रुक कीजिए जलगांव का। यहाँ पहली ही तेज बारिश ने मुंबई नागपुर नेशनल हाईवे के फ्लाईओवर के नीचे की जमीन बहा दी। जिस सड़क पर रफ्तार दौड़ती थी वहाँ अब सवाल खड़े हैं। मंत्री मौके पर हैं, जांच के आदेश हैं, लेकिन तस्वीरें विकास की गुणवत्ता पर बड़ा सवाल छोड़ रही हैं।
14: अतिशय गंभीर है। मान्य गडकरी साहेबांच्या कारवर मी स्रोत टाकलेला आहे। त्यांनी सांगितलं की जर कडक ऍक्शन आपण त्या ठिकाणी घेऊ पण मोठी दुर्घटना टळली असे म्हणायला हरकत नाही। अन्यथा या ठिकाणी वाहन चालल्यासारखं जर असं झालं असतं तर मला वाटतं मोठी दुर्घटना त्या ठिकाणी झाली असती। पण या संदर्भामध्ये तर आम्ही सर्वजण म्हणजे मी बाहेरगावी होतो, रात्री नाशिकहून आलो, गुलाब भोपण या ठिकाणी बाहेर आम्ही आज ठिकाणी गेलो, राजू मामा इथले आमदार आहेत, आम्ही या ठिकाणी आलेलो आहोत। पण कडक कारवाई करण्याच्या संदर्भामध्ये ठेकेदारावर मग त्याला ब्लॅकलिस्ट करा, त्याच्यावर कारवाई करा।
12: महाराष्ट्र के नांदेड़ के सहस्रकुंड झरने का नजारा अद्भुत है, लेकिन 100 फीट की ऊंचाई से गिरते पानी में चेतावनी भी छिपी है। यही बारिश कहीं सैलानियों को आकर्षित कर रही है तो कहीं लोगों की जिंदगी को बेबस बना रही है। ये मंजर गुजरात के वलसाड जिले के वापी का है, जहां सड़कें नदी बन गई और हजारों कारें पानी में डूबकर कबाड़ में बदल गई। बाढ़ का पानी उतर जाएगा लेकिन करोड़ों के नुकसान और हजारों इंश्योरेंस क्लेम की लड़ाई अभी बाकी है।
15: 150 से 200 सर्वेयरों की टीम इस डिजास्टर में काम कर रही है, सब कंपनियों की मिलके, और पूरे गुजरात से, पूरे महाराष्ट्र मुंबई से इन लोगों ने अपने अपने सर्वेयर बुलवा लिए हैं। तो काम तो बहुत स्पीड में हो रहा है, काम को दिक्कत नहीं है।
16: मुझे आशा है कि क्लेम्स हमारे बहुत स्मूथली प्रोसेस हो जाएंगे, और गाड़ियों का जो नुकसान हुआ है वो तो अब हम रोक नहीं सकते, जो कुदरती आफत है, बट उसके बाद जो हमारे हाथ में है इंश्योरेंस क्लेम्स और ये सब, और लोगों की पॉजिटिविटी देख के, लोगों का जज्बा देख के, ये लग रहा है कि हमारे क्लेम्स इजीली प्रोसेस हो जाएंगे।
12: अब देखिए खेड़ा जिले के महमदाबाद के रिंचोल गांव की तस्वीरें। बाढ़ का पानी अपने साथ मगरमच्छों को इंसानी बस्तियों तक ले आया है। घर के भीतर 7 फीट लंबा मगरमच्छ, बाहर सहमे हुए लोग, और बीच में जान जोखिम में डालकर चलता रेस्क्यू ऑपरेशन। कुदरत के अलग अलग रंग, कहीं जानलेवा तो कहीं खुशनुमा। जब बारिश रिकॉर्ड तोड़ती है तो सिर्फ नदियां नहीं उफनती हैं, सिस्टम की तैयारी भी बेनकाब हो जाती है। बारिश अभी जारी है इसलिए खतरा भी टला नहीं है। आज तक ब्यूरो।
6: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: कार्यकारी अध्यक्ष की सीट पर पिट गई पार्टी। बांकीपुर से शानदार जीत के बाद प्रशांत किशोर बोले, 30 दिन में ढा दिया 30 साल पुराना किला। सीएम सम्राट पर किया बड़ा हमला, आरजेडी की जमानत जब्त। कांग्रेस के हाथ लगा मध्य प्रदेश का दतिया, यहां भी 6,000 से ज्यादा वोटों से हार गई बीजेपी। गुजरात के मांजलपुर ने बचाई बीजेपी की इज्जत, 30,000 से ज्यादा वोटों से जीते सत्येंद्र भाई पटेल। प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो हटाने पर मेटा ने मानी है गलती, संसदीय समिति की बैठक में माफी मांगी, तकनीकी गड़बड़ी का हवाला दिया, समिति ने जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग। यूपी विधानसभा में मानसून सत्र के पहले दिन चढ़ावा, चोरी पर घमासान, विपक्ष की तरफ से जोरदार प्रदर्शन, योगी बोले जनता को गुमराह न करें, दम है तो विकास पर बात करें। और झारखंड का रांची बना नया जंतर मंतर, जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी, 10 दिन से भूख हड़ताल पर देवेंद्र नाथ महतो, सीबीआई जांच की मांग। बिहार के विधायक पद से सीधे बीजेपी के अध्यक्ष पद तक पहुंचे नितिन नवीन की खाली हुई सीट पर उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने 19,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल कर ली है। बीजेपी के सामने अब तक जहां मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी रही, वहां बांकीपुर में तेजस्वी यादव की पार्टी की जमानत तक जब्त हो गई।
1: बिहार की एक खासियत है, जब जब आपको लगता है कि आप बिहार को समझ गए, बिहार आपको झटका देता है।
2: सच है कि बिहार ने चौंकाया है। लड्डू तो बीजेपी वाले बताते हैं कि 200 किलो बनवाया, लेकिन कहावत है, कहा जाता है हाथ खुआया मुंह ना लगा। यही तो साल की शुरुआत में सबको चौंकाकर बीजेपी अध्यक्ष बनकर लड्डू चखने वाले नितिन नवीन के राज्यसभा में जाने के बाद खाली हुई विधानसभा सीट बांकीपुर पर हुआ, जहां मुख्यमंत्री के साथ रोड शो करते बीजेपी अध्यक्ष दावा करते रहे जनता की लहर साथ है।
3: मुझे पूरा विश्वास है कि जो समर्थन जनता का दिख रहा है वो निश्चित रूप से 3 अगस्त को फिर से एनडीए का कमल, भाजपा का कमल बांकीपुर की जनता खिलाएगी।
2: लेकिन जब नतीजे बांकीपुर उपचुनाव के आए, पता चला जनता तो अध्यक्ष जी की ही पारंपरिक सीट पर पीके के साथ चली गई।

0: बीजेपी अपने ही अध्यक्ष की सीट पर उपचुनाव नहीं जीत पाई। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद पहली बार हुए उपचुनाव में बीजेपी हार गई। बिहार में बीजेपी के पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद हुए उपचुनाव में बीजेपी जीत नहीं पाई। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री रहते पहला ही उपचुनाव बीजेपी हार जाती है। 3 दशक से जीती जा रही सीट पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ता है। हिंदू बाहुल्य और बीजेपी के कोर समर्थक वोटर वाली सीट पर बीजेपी को हार मिलती है, वो भी उन प्रशांत किशोर से जिन्हें 9 महीने पहले बिहार के विधानसभा चुनाव में चूका हुआ मान लिया गया था। प्रशांत किशोर की जीत बड़ी या बीजेपी अध्यक्ष की छोड़ी हुई सीट पर बीजेपी की हार बड़ी, इन दो सवालों के कुछ जवाब हैं जो कहते हैं कि बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत सवर्ण वोटर छिटक गया है। सवर्ण वोटर विकल्प बेहतर मिले तो साथ बीजेपी का छोड़ सकता है और सेफ सीट का मतलब अब कुछ नहीं, क्योंकि 1995 से जहां बीजेपी लगातार जिस इलाके में जीतती आई वहां भगवा रंग की जगह पीके का पीला रंग चढ़ जाना कोई छोटी सियासी खबर नहीं। पटना के जिस बांकीपुर में बीजेपी को कभी भी कुल वोटों का 59% से कम वोट नहीं मिला, जिस बांकीपुर में 9 महीने पहले विधानसभा चुनाव में नितिन नवीन की उम्मीदवारी पर बीजेपी को 63% वोट मिलता है, वहाँ अब की बार बीजेपी प्रत्याशी केवल 34.50% वोट पाते हैं। आरजेडी प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाती है और प्रशांत किशोर 49.19% वोट लेकर जीतते हैं। जिस बांकीपुर में 9 महीने पहले बीजेपी ने 51,936 वोट के अंतर से जीत हासिल की, वहां अब की बार बीजेपी के प्रत्याशी नीरज कुमार को 44,827 वोट ही मिले। बीजेपी को प्रशांत किशोर ने अपने पहले ही चुनाव में 64,151 वोट हासिल करके 19,000 से ज्यादा वोट के अंतर से हराया है। जीत मिलते ही प्रशांत किशोर ने भले एक सीट जीती हो, भले वो अपनी पार्टी के इकलौते विजयी उम्मीदवार विधानसभा में बने, लेकिन एक उपचुनाव की चाल से वो सीधे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को शह और मात दे देना चाहते हैं।
1: रेफरेंडम है ये सम्राट चौधरी पे?
2: बिल्कुल, वो तो है।
1: बार बार कह रहे थे जनमत संग्रह है ये।
2: बिल्कुल, सम्राट चौधरी के नेतृत्व को बिहार की जनता स्वीकार्य नहीं करती है, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है।
1: और नितिन नवीन के सीट पे इतनी बड़ी जीत, किला ध्वस्त किया है बीजेपी का आपने?
2: किला किसी का नहीं होता है।
3: आराम से चलिए।
2: 30 साल का किला 30 दिन भी नहीं लगा, और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि भाजपा ने चुनाव जीतने के बाद यहाँ पर एक अपराधी प्रवृत्ति के आदमी को, एक गलत चाल चरित्र के चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व दिया है, जो बिहार के लोगों को स्वीकार्य नहीं है।
0: 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद 111 दिन के भीतर पहली चुनावी परीक्षा में वो पास नहीं हो पाए, जहां प्रशांत किशोर लगातार सीधे एक वोट एक सीट से सम्राट चौधरी पर निशाना प्रचार के दौरान साधते रहे।
4: आपका एक वोट विधायक नहीं चुनेगा, बिहार में मुख्यमंत्री बदल देगा।

0: का रास्ता खुल जाएगा।
1: इसके बाद जैसे ही बांकीपुर में जीत का डंका प्रशांत किशोर बजाते, वो इस बात को दोहराते हैं कि बांकीपुर में बीजेपी की हार का मतलब मुख्यमंत्री की हार है।
2: पहला काम बस यही है कि बांकीपुर की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, अपनी ओर से जो हो सकेगा बांकीपुर में सुधार का प्रयास करेंगे। अगले 2-3 महीने में आपको वो चीज दिखेंगी भी। मैं कोई बहुत बड़ी बड़ी बात बोलना नहीं चाहता हूँ। विधायक, मेरे विधायक बनने से बांकीपुर बंगलोर नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ सुधार होता अगले 2-3 महीने में दिखेगा। बड़ी बात यह है कि ये चुनाव बांकीपुर के नाली गली पर नहीं लड़ा गया है, ये चुनाव लड़ा गया है कि बिहार का नेतृत्व किसके हाथ में होना चाहिए। और बांकीपुर की जनता ने ये संदेश दिया है भाजपा के नेतृत्व को कि भाई आप अच्छे आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए। सम्राट चौधरी की जगह किसी कुशवाहा को बनाना है बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कुशवाहा को ही बनाइए, लेकिन कुशवाहा समाज के ही किसी अच्छे आदमी को बनाइए।
1: प्रशांत किशोर की जीत हुई, सम्राट चौधरी ने अब सोशल मीडिया पर लिखा है, लोकतंत्र के महापर्व में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनता ने जन सुराज को चुना है। मैं जनता के इस निर्णय का सम्मान करते हुए प्रशांत किशोर को उनकी जीत पर हार्दिक बधाई देता हूं।
3: लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो चुनाव परिणाम के रुझान आ रहे हैं उसको हम सिर झुकाकर स्वीकार करते हैं और हम पूरी समीक्षा करेंगे। बांकीपुर के लोग हमारे हैं, हमसे अलग क्यों हुए इसकी भी हम समीक्षा करेंगे।
4: ये लोकतंत्र की भूमि है और जनता के जनादेश को भारतीय जनता पार्टी हमेशा शिरोधार्य की है। हम कभी भी ठीकरा चुनाव आयोग या ईवीएम पर नहीं फोड़ते हैं, ये विपक्ष के लोगों के तरह।
2: हम लोग की लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, बहुमत भाजपा का है, एनडीए का है, मुख्यमंत्री तो उन्हीं का बनेगा। हम लोग बस इतना ही आग्रह कर रहे हैं, बिहार की जनता इतना ही आग्रह कर रही है, बांकीपुर की जनता इतना ही मोदी जी से आग्रह कर रही है कि किसी अच्छे चरित्रवान काबिल आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए, ताकि बिहार के लोग भी इस बात का गौरव, बिहारी होने का गौरव कर सके, ताकि हम लोग के बच्चों के लिए भी पढ़ाई रोजगार की व्यवस्था हो, सब कुछ सुविधा। अगर गुजरात के ही लोगों को मिलेगी तो सिर्फ बिहार के लोग कहाँ जाएंगे। गुजरात के लोग 1,00,000 करोड़ के बुलेट ट्रेन पर चलेंगे वो ठीक है, लेकिन हम लोगों को कम से कम पैसेंजर भी तो मिलना चाहिए। बिहार के लोग सिर्फ मजदूरी करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं और 5 साल के लिए भाजपा को मैंडेट मिला है, उनको अच्छा आदमी देना चाहिए, अच्छे लोगों को मंत्रिमंडल में रखना चाहिए, ताकि बिहार की तरक्की हो, बिहार का विकास हो।
5: गुजरात के मांझिलपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने बड़ी और निर्णायक जीत हासिल की है। बीजेपी उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस के भिखाभाई रबारी को 30,630 वोटों के बड़े अंतर से हराकर सीट बरकरार रखी। ये उपचुनाव बीजेपी के वरिष्ठ नेता और 8 बार के विधायक रहे योगेश पटेल के निधन के बाद हुआ था। कम मतदान के बावजूद बीजेपी ने अपने मजबूत जनाधार को कायम रखते हुए स्पष्ट संदेश दिया कि मांझिलपुर में उनका संगठन और सियासी पकड़ अभी भी मजबूत है।
6: बांकीपुर ने मायूस किया, दतिया ने दर्द बढ़ा दिया, लेकिन गुजरात के मांझिलपुर ने बीजेपी के चेहरे पर मुस्कान लौटा। मांझिलपुर में बीजेपी के सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखाभाई रबारी को 30,630 वोटों से हरा दिया।
7: ये भाजपा की जीत, एक कार्यकर्ता की जीत, ये विकास की जीत, नरेंद्र भाई मोदी की जीत और हमारे सभी कार्यकर्ताओं को खूब खूब अभिनंदन।
8: खुशी का माहौल है, भारत देश के प्रणेता वड़ा प्रधान अपने नरेंद्र भाई मोदी जी की ये सेना विकास के लिए काम करती है, तो लोग ऑब्वियसली भाजपा का ही वोट देंगे।
6: एक दिन 3 राज्य 3 नतीजे, 2 जगह झटका, 1 जगह बड़ी राह। बिहार में सियासी किला दरका, मध्य प्रदेश में भी जीत हाथ से फिसल गई, लेकिन गुजरात के मांझिलपुर ने बता दिया कि बीजेपी का गढ़ अब भी मजबूत है।
9: हमारे भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं को जाता है, जिन्होंने दिन रात एक करके ये चुनाव जीता है। मैं सभी नागरिक भाइयों बहनों का और कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
10: भारतीय जनता पार्टी हमेशा संगठनात्मक काम करती है, हर एक कार्यकर्ता इसमें इन्वॉल्व होता है और काम करता है और उसका परिणाम है।
6: मांझिलपुर सीट पूर्व मंत्री और 8 बार के विधायक योगेश पटेल के निधन के बाद खाली हुई थी।

0: योगेश पटेल ने 1990 से 2007 के बीच बड़ोदरा की रावपुरा विधानसभा सीट का 5 बार प्रतिनिधित्व किया, फिर परिसीमन के बाद नई बनी मांजलपुर सीट से चुनाव लड़ा। योगेश पटेल ने 2012, 2017 और 2022 में मांजलपुर सीट से लगातार जीत दर्ज की और इस तरह 36 वर्षों के दौरान गुजरात विधानसभा चुनावों में लगातार 8वीं जीत हासिल की। बड़ोदरा के मांजलपुर विधानसभा में हुए उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार सतेंद्र भाई पटेल की जीत ने साबित कर दिया कि बीजेपी का यहां दबदबा अब भी बरकरार है, कांग्रेस का इंतजार लंबा हो गया है। अतुल तिवारी, बड़ोदरा आज तक।
1: सिद्धिविनायक वो दरबार जहां मुख्यमंत्री, मंत्री, अभिनेता और आम भक्त सब गणपति बप्पा के चरणों में एक समान होकर मत्था टेकते हैं, लेकिन अब उसी दरबार की दान पेटी सियासत के केंद्र में आ चुकी है, क्योंकि राज ठाकरे ने आरोप लगाया है कि सिद्धिविनायक मंदिर में हर साल 18 करोड़ रुपए का चंदा हड़प लिया जाता है। वहीं ट्रस्ट का दावा यह है कि ट्रस्ट की वजह से ही मामला उजागर हुआ है, लेकिन जब चढ़ावे पर ग्रहण की बात सामने आती है तो राजनीति भी जवाब देने से बच नहीं सकती।

0: घंटियों की गूंज, गणपति बप्पा की आरती, श्रद्धालुओं का सैलाब, ये दृश्य मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में होता है, जहां हर दिन हजारों श्रद्धालु अपनी मन्नतें लेकर पहुंचते हैं, जहां सत्ता भी सिर झुकाती है, विपक्ष भी नमन करता है। अभिनेता से लेकर आम आदमी तक हर कोई गणपति बप्पा के चरणों में आशीर्वाद लेने पहुंचते हैं। लेकिन अब इसी मंदिर का चढ़ावा राजनीति के केंद्र में है। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने संगीन आरोप लगाया है। राज ठाकरे ने दावा किया है कि मुंबई के मशहूर सिद्धिविनायक मंदिर में हर साल 18 करोड़ रुपए का चंदा हड़प लिया जाता है।
1: महोदय, विश्वस्तांच्या सतर्कतेमुळे मंदिरातल्या दानपेटीतून पैसे चोरणारे कर्मचारी पकडले गेलेले आहेत। हे कर्मचारी पकडण्यापूर्वी दर बुधवारी मंदिरातल्या दानपेटीतील रकमेची मोजदाद ही 50 लाख रुपयाच्या आत होती। मात्र हे कर्मचारी पकडल्यानंतर गेले 3 आठवडे आठवड्याची दानपेटी रक्कम ही 1.5 कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचली आहे। याचाच अर्थ यापूर्वी दर आठवड्याला दानपेटीतील जमा होणाऱ्या काही रकमेतील काही रक्कम ही लंपास होत होती। त्यामुळे दरवर्षी सुमारे 18 कोटी रुपयांचे मंदिराचे नुकसान होत होते।
0: वहीं सिद्धिविनायक ट्रस्ट के अध्यक्ष और शिवसेना नेता सदा सरवणकर कहते हैं कि ट्रस्ट की सतर्कता से ही गड़बड़ी सामने आई है। ट्रस्ट के मुताबिक 9 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया, FIR दर्ज कराई गई। ट्रस्ट के पूर्व अधिकारी राजन पेंडुलकर समेत 45 कर्मचारी सस्पेंड किए गए। गिरफ्तार आरोपियों के संबंध शिवसेना UPT की नेता विशाखा राउत और दूसरे नेताओं से है। इसके साथ ही ट्रस्ट के अध्यक्ष सदा सरवणकर इसके पक्के सबूत होने का भी दावा कर रहे हैं।
2: चोरी में जितने भी इन्वॉल्व है वो 9 जन को पकड़ा है। उसके बाद लूपहोल्स जो थे, आज दादर स्टेशन में अगर आप एक टैक्सी में बैठेंगे तो वो टैक्सी में भक्तगण अगर यहाँ आते हैं तो उनसे 5,000 लिया जाता था, दर्शन वगैरह सब लेके। वो पहला बंद किया, उसके बाद ये सब आजू बाजू में दलाल लोग घूमते थे, दर्शन के लिए 2,000 3,000 लेते थे, वो सारा बंद हो गया। ये हमारे जो यहाँ की सिक्योरिटी है, यहाँ के कर्मचारी है, उनको गूगल पे करके ये दर्शन दिया जाता था। हमने जितने भी कर्मचारी है सबका फोन बंद कर दिया। अभी किसी कर्मचारी के हाथ में फोन नहीं आपको मिलेगा। जितना भी हमको डाउट आएगा वो हर चीज के ऊपर हमने कुछ न कुछ एक्शन लिया होगा।
0: इसलिए भगवान के नाम पर चढ़े हर रुपए का हिसाब भी न्याय की कसौटी पर ही तय होना चाहिए।
3: मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर में चढ़ावे को लेकर अब महाराष्ट्र में नया सियासी तूफान खड़ा हो गया है, क्योंकि MNS प्रमुख राज ठाकरे ने एक चिट्ठी का हवाला देते हुए ये आरोप किया है कि इस चढ़ावे में बड़ी तादाद में घोटाला हो रहा है। छोटा मोटा नहीं बल्कि सालाना करीबन 18 करोड़ रुपए का घोटाला जो है इस चढ़ावे के पैसों में किया जा रहा है। ऐसी एक चिट्ठी इस ट्रस्ट के ही कुछ ट्रस्टियों ने मिलकर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लिखी थी। 21 अप्रैल 2026 को ये पत्र लिखा गया था, जिस पर ये आरोप किए गए हैं कि यहाँ से पैसों की अफरा तफरी हो रही है, दान पत्र से पैसे चुराए जा रहे हैं।
0: मामला 18 करोड़ का हो या फिर 18 रुपए का, बप्पा के नाम पर चढ़ाया गया एक एक रुपया पवित्र है। सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष सदा सरवणकर ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि मंदिर में हर साल करीब 18 करोड़ रुपए के दान का हेर फेर होता था, जिसे मौजूदा ट्रस्ट ने रोककर चढ़ावे की कमाई में भारी बढ़ोतरी की है। मंदिर की आय 2 साल में 114 करोड़ से बढ़कर 182 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। वहीं फडणवीस सरकार में मंत्री छगन भुजबल कहते हैं कि अगर किसी के पास ठोस जानकारी है तो सरकार को जानकारी मुहैया कराए, जांच होगी और सच सामने आएगा।
4: चढ़ावा जो लोग चढ़ाते हैं भगवान को, सिद्धिविनायक को, उस चढ़ावे में कुछ गलत हुआ है या कुछ, मतलब जो चंदा जमा होता है तो शायद उनके पास कोई मालूमात होगी, वो अगर सरकार को शासन को दे देंगे तो उसकी इंक्वायरी होगी और क्या गलत है क्या सही है साबित होगा।
0: अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच का चैप्टर अभी बंद भी नहीं हुआ है कि मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में गड़बड़ियों ने अरब सागर से आने वाली सियासी हवा को गर्म कर दिया है। दान पेटी में गिरता हर सिक्का, हर चढ़ावा सिर्फ मुद्रा और नोट नहीं होते, उनमें किसी माँ की मन्नत होती है, किसी मेहनतकश शख्स की कमाई, किसी परिवार की आस्था। इसलिए मंदिर के चढ़ावे पर उठा हर सवाल करोड़ों श्रद्धालुओं के भरोसे पर सवाल बन जाता है।
5: अभी मार्च महीने में हमने जो बजट रखा वो 182 करोड़, ये जो उत्पन्न नहीं बोलेंगे चढ़ावा है, ये देनगी दी है मंदिर को। और इसी माध्यम से हमने यही बता रहे कि हमारे मन में अगर पाप रहता, ये ट्रस्टी बोर्ड है, मैं अभी खुले मन से बताता हूँ, हमारे मन में अगर पाप रहता तो हम इतने चोर पकड़ते नहीं, हमारे मन में अगर पाप रहता तो 46 कर्मचारी निलंबित होते नहीं, हमारे मन में पाप रहता तो 9 जन पुलिस कस्टडी और एमसीआर कस्टडी में जाते नहीं, हमारे मन में पाप होता तो हम सरकार को विधि न्याय विभाग को एक पत्र भी लिखते नहीं। हमने यही कहा है कि ये जो तफावत 2 साल और अभी भी है तो उसका ऑडिट होना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए।
0: गणपति बप्पा न्याय के देवता है, लिहाजा जांच सिर्फ पैसों की नहीं होनी चाहिए, जांच उस व्यवस्था की भी होनी चाहिए जिसे सिद्ध विनायक के घर की रखवाली सौंपी गई। मंदिर राजनीति का मंच नहीं, आस्था का केंद्र है, इसलिए आरोप भी तथ्यों के साथ होने चाहिए और जांच भी बिना किसी दबाव के।
3: सालाना 18 करोड़ तक का घोटाला जो है यहाँ मंदिर में हुआ है ऐसा दावा किया जा रहा है। अब विपक्ष से लेकर राज ठाकरे सभी मांग कर रहे हैं कि इस चोरी की जो है वो जांच की जाए, तफ्तीश की जाए। और किसके कार्यकाल में, यानी उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे तब उनके कार्यकाल में ये चोरी हुई थी, या फिर अब महायुति सरकार के कार्यकाल में इस तरह की चोरी सामने आई है, ये सामने आना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैमरा पर्सन सचिन सावन के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।
6: महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में बीजेपी नेता और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत मिल गई है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने ब्रिजभूषण शरण सिंह और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व सचिव विनोद तोमर को बाइज्जत बरी कर दिया है।
7: महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण के मामले में 1133 दिनों तक वकीलों ने दलीलें दी, सुनवाई हुई, तथ्य परखे गए और फिर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि ब्रजभूषण और उनके सह आरोपी विनोद तोमर को बाइज्जत बरी किया जाता है।
8: बरी शब्द का इस्तेमाल के जगह पर कोर्ट ने बाइज्जत बरी शब्द का इस्तेमाल किया है। बरी और बाइज्जत बरी में फर्क होता है। एक बरी होता है कि सबूतों के अभाव में आपको छोड़ा जा रहा है, यहाँ सीधे सीधे कहा गया कि आपको नाम लेकर के कि आपको बाइज्जत बरी किया जा रहा है।
7: दरअसल 3 साल पुराना इस मामले की बंद कमरे में हुई सुनवाई और तमाम गवाहों सबूतों की पड़ताल के बाद अदालत के फैसले में जो बड़ी बातें सामने आई हैं, उनमें से एक तो ये है कि शिकायतकर्ता और पुलिस ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ के आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं कर पाए। दूसरा ये कि शिकायतकर्ताओं के बयानों में तारीख, समय और घटना स्थल को लेकर बड़े विरोधाभास दर्ज किए गए थे। महिला पहलवानों ने खेल मंत्रालय की ओवरसाइट कमेटी में दिए हलफनामे और अदालत में दिए बयानों में फर्क था। कुछ घटनाओं में ब्रजभूषण शरण सिंह कथित घटनाओं के समय दूसरी जगह मौजूद रहने के प्रमाण मौजूद थे और बरी होने की बड़ी वजह ये भी थी कि कथित घटनाएं 2016 से 2019 के बीच की थी, जिनका आरोप 2023 में लगाया गया था।
8: तब मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि ये सब झूठ है, और अगर इसमें एक भी आरोप साबित होगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा।
7: अब महिला पहलवानों के मामले में बजरंग पुनिया ने लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करने की बात कही है, लेकिन इस मामले में जबरदस्त सियासत हो रही है।
9: क्यों नहीं सबको करेंगे, सब चोर जितने लोग पार्टी में दाखिल हुए दूसरे पार्टीज में, अरे यही तो प्रधानमंत्री थे तो बंगाल के मुख्यमंत्री के बारे में क्या क्या बोले थे,
10: आरोप लगे थे, जांच होनी चाहिए थी, जांच होकर न्यायपालिका में गया, अब न्यायपालिका ने जो फैसला दे दिया उसका सम्मान करे, या तो सरकार को अगर लगता है कि सही नहीं है तो सरकार ऊपरी कोर्ट में दे।
7: देखना यह है कि आरोप लगाने वाली महिला पहलवानों का रुख अब क्या होता है। मौसमी सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
6: रांची में 14वीं जेपीएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। छात्र रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में 10 दिन से धरना दे रहे हैं। कल शाम बड़ी संख्या में छात्रों ने मशाल जुलूस निकाला था। उन्होंने हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की थी। उधर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दिपके ने रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बात की है और उन्हें अपना समर्थन देने का ऐलान किया है।
11: सामाजिक कार्यकर्ता जो भेज देते हैं वही हम लोग खा के और दिन रात भर यही देखिए यही टेंट में आप तो देख रहे हैं पानी हो यही बहुत याद क्या करें सर हम लोग मरता क्या नहीं करता वाला स्थिति है सर।
12: मदद की थाली हाथ में पकड़े इस युवा को देखने के बाद सवाल उठता है कि आखिर नीति नियंताओं के हलक के नीचे खाना उतरता कैसे।
11: ऐसे गाँव से आते हैं सर वहाँ आज भी हम घर का पहला आदमी है पूरे खानदान का पूरे गाँव एक टोला मतलब खानदान का पहला आदमी है ना कि हम लोग बाहर निकले हैं पढ़ने लगा अभी तक हम लोग शिक्षा से इतना दूर है हमारा समाज अगर हम यहाँ पढ़े आए हैं सर अगर हम पढ़ के कुछ नहीं करेंगे तो हमारा आने वाला जो पीढ़ी है वो देखेगा तो कहेगा कि भैया या चाचा पढ़ लेते तो क्या कर लेते।
12: तो जीएम डीएम सीएम पीएम सब सुनिए इस छात्र की पुकार। अशिक्षा के अंधकार से निकल कर आया ये लड़का सवाल कर रहा है किसी में इतना ताप कि जवाब दे सके
11: क्योंकि हम लोग तो गरीब आदमी हैं सर और गरीब आदमी हैं अगर हम लोग कोई भी आदमी पढ़ के नौकरी का मतलब मांगता है ताकि हम लोग के आर्थिक समाज अति शैक्षणिक थोड़ा मजबूत हो इसीलिए तो हम लोग पढ़ रहे हैं इतना मेहनत कर रहे हैं एक रूम में हम लोग कितना दिन से यहाँ हम लोग कुछ भी मिल रहा है सर कैसे कैसे खाते आप तो जानते हैं।
12: रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बेरोजगारी से त्रस्त युवा जो बात कहते हैं वो सत्ता के सीने में शून सी चुभनी चाहिए क्योंकि ये युवा झारखंड में भर्ती आयोगों की धांधली से त्रस्त आ चुके हैं। प्रदर्शन करते ये नौजवान झारखंड में लगातार धरना देते हुए केवल झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और जेएसएससी के तहत होने वाली भर्तियों में होते भ्रष्टाचार से त्रस्त होकर एक हफ्ते से आंदोलन कर रहे हैं।
13: नारेबाजी चल रही है और अब इस आंदोलन को अलग अलग जगह से समर्थन भी मिलने लगा है। बीजेपी ने इस प्रोटेस्ट का खुलकर समर्थन किया है। एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया है। साथ ही साथ कॉकरोच जनता पार्टी ने भी बात की है उसके संस्थापक अभिजीत दीपके ने भी बात की है यहाँ पे और कहा है कि जिस सपोर्ट की जरूरत है वो सपोर्ट देने को तैयार है ताकि जो आंदोलन अपने अंजाम तक पहुँच सके।
12: अब सवाल यह है कि छात्रों की पुकार क्यों नहीं सुन रही है हेमंत सरकार। सत्यजीत कुमार रांची आज तक।
6: बारिश कभी राहत बनकर आती है तो कभी आफत बनकर सब कुछ बहा ले जाती है। पश्चिम भारत इस वक्त पानी के ऐसे ही प्रहार से जूझ रहा है। महाराष्ट्र से गुजरात तक आसमान से बरसता पानी अब जिंदगी की रफ्तार को रोक रहा है। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, कई शहरों की गलियां तालाब बन चुकी हैं, तो कई करोड़ों की गाड़ियां बाढ़ के पानी में कबाड़ में बदल चुकी हैं।
12: ये तस्वीरें महाराष्ट्र के भिवंडी की हैं। कामवारी नदी अब सिर्फ बह नहीं रही बल्कि खतरे का इशारा। ये तस्वीरें महाराष्ट्र के भिवंडी की हैं। कामवारी नदी अब सिर्फ बह नहीं रही बल्कि खतरे का इशारा दे रही है। पानी इतना बढ़ चुका है कि नदी किनारे खड़ी गाड़ियां एक एक कर डूबने लगी हैं। निचले अब जरा रुक कीजिए जलगांव का। यहाँ पहली ही तेज बारिश ने मुंबई नागपुर नेशनल हाईवे के फ्लाईओवर के नीचे की जमीन बहा दी। जिस सड़क पर रफ्तार दौड़ती थी वहाँ अब सवाल खड़े हैं। मंत्री मौके पर हैं, जांच के आदेश हैं, लेकिन तस्वीरें विकास की गुणवत्ता पर बड़ा सवाल छोड़ रही हैं।
14: हा अतिशय गंभीर आहे। माननीय गडकरी साहेबांच्या कारवर मी स्रोत टाकलेला आहे। त्यांनी सांगितलं की जर कडक ऍक्शन आपण त्या ठिकाणी घेऊ पण मोठी दुर्घटना टळली असे म्हणायला हरकत नाही। अन्यथा या ठिकाणी वाहन चालले असताना जर असं झालं असतं तर मला वाटतं मोठी दुर्घटना त्या ठिकाणी झाली असती। पण या संदर्भामध्ये तर आम्ही सर्वजण म्हणजे मी बाहेरगावी होतो, रात्री नाशिकहून आलो, गुलाबभाऊ पण या ठिकाणी बाहेर आम्ही आज श्रीनगरलो, राजू मामा इथले आमदार आहेत, आम्ही या ठिकाणी आलेलो आहोत। पण कडक कारवाई करण्याच्या संदर्भामध्ये ठेकेदारावर मग त्याला ब्लॅकलिस्ट करा, त्याच्यावर कारवाई करा।
12: महाराष्ट्र के नांदेड़ के सहस्रकुंड झरने का नजारा अद्भुत है, लेकिन 100 फीट की ऊंचाई से गिरते पानी में चेतावनी भी छिपी है। यही बारिश कहीं सैलानियों को आकर्षित कर रही है तो कहीं लोगों की जिंदगी को बेबस बना रही है। ये मंजर गुजरात के वलसाड़ जिले के वापी का है, जहां सड़कें नदी बन गई और हजारों कारें पानी में डूबकर कबाड़ में बदल गई। बाढ़ का पानी उतर जाएगा, लेकिन करोड़ों के नुकसान और हजारों इंश्योरेंस क्लेम की लड़ाई अभी बाकी है।
15: 150 से 200 सर्वेयरों की टीम इस डिजास्टर में काम कर रही है, सब कंपनियों की मिलके, और पूरे गुजरात से, पूरे महाराष्ट्र मुंबई से इन लोगों ने अपने अपने सर्वेयर बुलवा लिए हैं। तो काम तो बहुत स्पीड में हो रहा है, काम को दिक्कत नहीं है।
16: मुझे आशा है कि क्लेम्स हमारे बहुत स्मूथली प्रोसेस हो जाएंगे, और गाड़ियों का जो नुकसान हुआ है वो तो अब हम रोक नहीं सकते, जो कुदरती आफत है, बट उसके बाद जो हमारे हाथ में है इंश्योरेंस क्लेम्स और ये सब, और लोगों की पॉजिटिविटी देख के, लोगों का जज्बा देख के, ये लग रहा है कि हमारे क्लेम्स इजीली प्रोसेस हो जाएंगे।
12: अब देखिए खेड़ा जिले के महमदाबाद के रिंचोल गाँव की तस्वीरें। बाढ़ का पानी अपने साथ मगरमच्छों को इंसानी बस्तियों तक ले आया है। घर के भीतर 7 फीट लंबा मगरमच्छ, बाहर सहमे हुए लोग, और बीच में जान जोखिम में डालकर चलता रेस्क्यू ऑपरेशन। कुदरत के अलग अलग रंग, कहीं जानलेवा तो कहीं खुशनुमा। जब बारिश रिकॉर्ड तोड़ती है तो सिर्फ नदियां नहीं उफनती हैं, सिस्टम की तैयारी भी बेनकाब हो जाती है। बारिश अभी जारी है, इसलिए खतरा भी टला नहीं है। आज तक ब्यूरो।
6: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: बीजेपी अध्यक्ष की सीट पर पिट गई पार्टी। बांकीपुर से शानदार जीत के बाद प्रशांत किशोर बोले, 30 दिन में ढा दिया 30 साल पुराना किला। सीएम सम्राट पर किया बड़ा हमला, आरजेडी की जमानत जब्त। कांग्रेस के हाथ लगा मध्य प्रदेश का दतिया, यहां भी 6,000 से ज्यादा वोटों से हार गई बीजेपी। गुजरात के मांजलपुर ने बचाई बीजेपी की इज्जत, 30,000 से ज्यादा वोटों से जीते सत्येंद्र भाई पटेल। प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो हटाने पर मेटा ने मानी है गलती, संसदीय समिति की बैठक में माफी मांगी, तकनीकी गड़बड़ी का हवाला दिया, समिति ने जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग। यूपी विधानसभा में मानसून सत्र के पहले दिन चढ़ावा, चोरी पर घमासान, विपक्ष की तरफ से जोरदार प्रदर्शन, योगी बोले जनता को गुमराह न करें, दम है तो विकास पर बात करें। और झारखंड का रांची बना नया जंतर मंतर, जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी, 10 दिन से भूख हड़ताल पर देवेंद्र नाथ महतो, सीबीआई जांच की मांग। बिहार के विधायक पद से सीधे बीजेपी के अध्यक्ष पद तक पहुंचे नितिन नवीन की खाली हुई सीट पर उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने 19,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल कर ली है। बीजेपी के सामने अब तक जहां मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी रही, वहां बांकीपुर में तेजस्वी यादव की पार्टी की जमानत तक जब्त हो गई।
1: बिहार की एक खासियत है, जब जब आपको लगता है कि आप बिहार को समझ गए, बिहार आपको झटका देता है।
2: सच है कि बिहार ने चौंकाया है। लड्डू तो बीजेपी वाले बताते हैं कि 200 किलो बनवाया, लेकिन कहावत है, कहा जाता है हाथ खुआया मुंह ना लगा। यही तो साल की शुरुआत में सबको चौंकाकर बीजेपी अध्यक्ष बनकर लड्डू चखने वाले नितिन नवीन के राज्यसभा में जाने के बाद खाली हुई विधानसभा सीट बांकीपुर पर हुआ, जहां मुख्यमंत्री के साथ रोड शो करते बीजेपी अध्यक्ष दावा करते रहे जनता की लहर साथ है।
3: मुझे पूरा विश्वास है कि जो समर्थन जनता का दिख रहा है वो निश्चित रूप से 3 अगस्त को फिर से एनडीए का कमल, भाजपा का कमल बांकीपुर की जनता खिलाएगी।
2: लेकिन जब नतीजे बांकीपुर उपचुनाव के आए, पता चला जनता तो अध्यक्ष जी की ही पारंपरिक सीट पर पीके के साथ चली गई।

0: बीजेपी अपने ही अध्यक्ष की सीट पर उपचुनाव नहीं जीत पाई। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद पहली बार हुए उपचुनाव में बीजेपी हार गई। बिहार में बीजेपी के पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद हुए उपचुनाव में बीजेपी जीत नहीं पाई। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री रहते पहला ही उपचुनाव बीजेपी हार जाती है। 3 दशक से जीती जा रही सीट पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ता है। हिंदू बाहुल्य और बीजेपी के कोर समर्थक वोटर वाली सीट पर बीजेपी को हार मिलती है, वो भी उन प्रशांत किशोर से जिन्हें 9 महीने पहले बिहार के विधानसभा चुनाव में चूका हुआ मान लिया गया था। प्रशांत किशोर की जीत बड़ी या बीजेपी अध्यक्ष की छोड़ी हुई सीट पर बीजेपी की हार बड़ी, इन दो सवालों के कुछ जवाब हैं जो कहते हैं कि बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत सवर्ण वोटर छिटक गया है। सवर्ण वोटर विकल्प बेहतर मिले तो साथ बीजेपी का छोड़ सकता है और सेफ सीट का मतलब अब कुछ नहीं, क्योंकि 1995 से जहां बीजेपी लगातार जिस इलाके में जीतती आई वहां भगवा रंग की जगह पीके का पीला रंग चढ़ जाना कोई छोटी सियासी खबर नहीं। पटना के जिस बांकीपुर में बीजेपी को कभी भी कुल वोटों का 59% से कम वोट नहीं मिला, जिस बांकीपुर में 9 महीने पहले विधानसभा चुनाव में नितिन नवीन की उम्मीदवारी पर बीजेपी को 63% वोट मिलता है, वहाँ अब की बार बीजेपी प्रत्याशी केवल 34.50% वोट पाते हैं। आरजेडी प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाती है और प्रशांत किशोर 49.19% वोट लेकर जीतते हैं। जिस बांकीपुर में 9 महीने पहले बीजेपी ने 51,936 वोट के अंतर से जीत हासिल की, वहां अब की बार बीजेपी के प्रत्याशी नीरज कुमार को 44,827 वोट ही मिले। बीजेपी को प्रशांत किशोर ने अपने पहले ही चुनाव में 64,151 वोट हासिल करके 19,000 से ज्यादा वोट के अंतर से हराया है। जीत मिलते ही प्रशांत किशोर ने भले एक सीट जीती हो, भले वो अपनी पार्टी के इकलौते विजयी उम्मीदवार विधानसभा में बने, लेकिन एक उपचुनाव की चाल से वो सीधे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को शह और मात दे देना चाहते हैं।
1: रेफरेंडम है ये सम्राट चौधरी पे?
2: बिल्कुल, वो तो है।
1: बार बार कह रहे थे जनमत संग्रह है ये।
2: बिल्कुल, सम्राट चौधरी के नेतृत्व को बिहार की जनता स्वीकार्य नहीं करती है, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है।
1: और नितिन नवीन के सीट पे इतनी बड़ी जीत, किला ध्वस्त किया है बीजेपी का आपने?
2: किला किसी का नहीं होता है।
3: आराम से चलिए।
2: 30 साल का किला 30 दिन भी नहीं लगा, और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि भाजपा ने चुनाव जीतने के बाद यहाँ पर एक अपराधी प्रवृत्ति के आदमी को, एक गलत चाल चरित्र के चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व दिया है, जो बिहार के लोगों को स्वीकार्य नहीं है।
0: 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद 111 दिन के भीतर पहली चुनावी परीक्षा में वो पास नहीं हो पाए, जहां प्रशांत किशोर लगातार सीधे एक वोट एक सीट से सम्राट चौधरी पर निशाना प्रचार के दौरान साधते रहे।
4: आपका एक वोट विधायक नहीं चुनेगा, बिहार में मुख्यमंत्री बदल देगा। अगर आप सम्राट चौधरी को हटाना चाहते हैं तो अभी आपके पास रास्ता है। एक बार संकल्प लीजिए, भाजपा को बांकीपुर में हराइए, लिख के ले लीजिए, सम्राट चौधरी का कुर्सी हिलने लगेगा, सम्राट चौधरी को हटाने का रास्ता खुल जाएगा।
0: इसके बाद जैसे ही बांकीपुर में जीत का डंका प्रशांत किशोर बजाते, वो इस बात को दोहराते कि बांकीपुर में बीजेपी की हार का मतलब मुख्यमंत्री की हार है।
2: पहला काम बस यही है कि बांकीपुर की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, अपनी ओर से जो हो सकेगा बांकीपुर में सुधार का प्रयास करेंगे। अगले 2-3 महीने में आपको वो चीज दिखेंगे भी। मैं कोई बहुत बड़ी बड़ी बात बोलना नहीं चाहता हूँ। विधायक, मेरे विधायक बनने से बांकीपुर बंगलोर नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ सुधार होता अगले 2-3 महीने में दिखेगा। बड़ी बात यह है कि ये चुनाव बांकीपुर के नाली गली पर नहीं लड़ा गया है, ये चुनाव लड़ा गया है कि बिहार का नेतृत्व किसके हाथ में होना चाहिए। और बांकीपुर की जनता ने ये संदेश दिया है भाजपा के नेतृत्व को कि भाई आप अच्छे आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए, सम्राट चौधरी की जगह किसी कुशवाहा को बनाना है बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कुशवाहा को ही बनाइए, लेकिन कुशवाहा समाज के ही किसी अच्छे आदमी को बनाइए।
0: प्रशांत किशोर की जीत हुई, सम्राट चौधरी ने अब सोशल मीडिया पर लिखा है, लोकतंत्र के महापर्व में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनता ने जन सुराज को चुना है, मैं जनता के इस निर्णय का सम्मान करते हुए प्रशांत किशोर को उनकी जीत पर हार्दिक बधाई देता हूं।
5: लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो चुनाव परिणाम के रुझान आ रहे हैं उसको हम सिर झुकाकर स्वीकार करते हैं और हम पूरी समीक्षा करेंगे। बांकीपुर के लोग हमारे हैं, हमसे अलग क्यों हुए इसकी भी हम समीक्षा करेंगे।
6: ये लोकतंत्र की भूमि है और जनता के जनादेश को भारतीय जनता पार्टी हमेशा शिरोधार्य की है। हम कभी भी ठीकरा चुनाव आयोग या ईवीएम पर नहीं फोड़ते हैं, ये विपक्ष के लोगों के तरह।
2: हम लोग की लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, बहुमत भाजपा का है, एनडीए का है, मुख्यमंत्री तो उन्हीं का बनेगा। हम लोग बस इतना ही आग्रह कर रहे हैं, बिहार की जनता इतना ही आग्रह कर रही है, बांकीपुर की जनता इतना ही मोदी जी से आग्रह कर रही है कि किसी अच्छे चरित्रवान काबिल आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए, ताकि बिहार के लोग भी इस बात का गौरव, बिहारी होने का गौरव कर सकें, ताकि हम लोग के बच्चों के लिए भी पढ़ाई रोजगार की व्यवस्था हो, सब कुछ सुविधा। अगर गुजरात के ही लोगों को मिलेगी तो सिर्फ बिहार के लोग कहाँ जाएंगे? गुजरात के लोग 1,00,000 करोड़ के बुलेट ट्रेन पर चलेंगे वो ठीक है, लेकिन हम लोगों को कम से कम पैसेंजर भी तो मिलना चाहिए। बिहार के लोग सिर्फ मजदूरी करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं और 5 साल के लिए भाजपा को मैंडेट मिला है, उनको अच्छा आदमी देना चाहिए, अच्छे लोगों को मंत्रिमंडल में रखना चाहिए, ताकि बिहार की तरक्की हो, बिहार का विकास हो।
7: गुजरात के मांझलपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने बड़ी और निर्णायक जीत हासिल की है। बीजेपी उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस के भिखाभाई रबारी को 30,630 वोटों के बड़े अंतर से हराकर सीट बरकरार रखी। ये उपचुनाव बीजेपी के वरिष्ठ नेता और 8 बार के विधायक रहे योगेश पटेल के निधन के बाद हुआ था। कम मतदान के बावजूद बीजेपी ने अपने मजबूत जनाधार को कायम रखते हुए स्पष्ट संदेश दिया कि मांझलपुर में उनका संगठन और सियासी पकड़ अभी भी मजबूत है।
8: बांकीपुर ने मायूस किया, दतिया ने दर्द बढ़ा दिया, लेकिन गुजरात के मांझलपुर ने बीजेपी के चेहरे पर मुस्कान लौटा। मांझलपुर में बीजेपी के सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखाभाई रबारी को 30,630 वोटों से हरा दिया।
9: ये भाजपा की जीत, एक कार्यकर्ता की जीत, ये विकास की जीत, नरेंद्र भाई मोदी की जीत और हमारे सभी कार्यकर्ताओं को खूब खूब अभिनंदन।
10: खुशी का माहौल है, भारत देश के पहले का बड़ा प्रधान अपने नरेंद्र भाई मोदी जी की ये सेना विकास के लिए काम करती है, तो लोग ऑब्वियसली भाजपा का ही वोट देंगे।
8: एक दिन 3 राज्य 3 नतीजे, 2 जगह झटका, 1 जगह बड़ी राहत। बिहार में सियासी किला दरका, मध्य प्रदेश में भी जीत हाथ से फिसल गई, लेकिन गुजरात के मांझलपुर ने बता दिया कि बीजेपी का गढ़ अब भी मजबूत है।
11: हमारे भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं को जाता है, जिन्होंने दिन रात एक करके ये चुनाव जीता है। मैं सभी नागरिक भाइयों बहनों का और कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
12: भारतीय जनता पार्टी हमेशा संगठनात्मक काम करती है, हरेक कार्यकर्ता इसमें इन्वॉल्व होता है और काम करता है और उसका परिणाम है।
8: मांझलपुर सीट पूर्व मंत्री और 8 बार के विधायक योगेश पटेल के निधन के बाद खाली हुई थी। योगेश पटेल ने 1990 से 2007 के बीच बड़ोदरा की रावपुरा विधानसभा सीट का 5 बार प्रतिनिधित्व किया, फिर परिसीमन के बाद नई बनी मांझलपुर सीट से चुनाव लड़ा। योगेश पटेल ने 2012, 2017 और 2022 में मांझलपुर सीट से लगातार जीत दर्ज की और इस तरह 36 वर्षों के दौरान गुजरात विधानसभा चुनावों में लगातार 8वीं जीत हासिल की। बड़ोदरा के मांझलपुर विधानसभा में हुए उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल की जीत ने साबित कर दिया कि बीजेपी का यहां दबदबा अब भी बरकरार है, कांग्रेस का इंतजार लंबा हो गया है। अतुल तिवारी, बड़ोदरा, आज तक।
7: सिद्धिविनायक वो दरबार जहां मुख्यमंत्री, मंत्री, अभिनेता और आम भक्त सब गणपति बप्पा के चरणों में एक समान होकर मत्था टेकते हैं, लेकिन अब उसी दरबार की दान पेटी सियासत के केंद्र में आ चुकी है, क्योंकि राज ठाकरे ने आरोप लगाया है कि सिद्धिविनायक मंदिर में हर साल 18 करोड़ रुपए का चंदा हड़प लिया जाता है। वहीं ट्रस्ट का दावा यह है कि ट्रस्ट की वजह से ही मामला उजागर हुआ है, लेकिन जब चढ़ावे पर ग्रहण की बात सामने आती है तो राजनीति भी जवाब देने से बच नहीं सकती।

0: घंटियों की गूंज, गणपति बप्पा की आरती, श्रद्धालुओं का सैलाब, ये दृश्य मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में होता है, जहां हर दिन हजारों श्रद्धालु अपनी मन्नतें लेकर पहुंचते हैं, जहां सत्ता भी सिर झुकाती है, विपक्ष भी नमन करता है। अभिनेता से लेकर आम आदमी तक हर कोई गणपति बप्पा के चरणों में आशीर्वाद देने पहुंचते हैं। लेकिन अब इसी मंदिर का चढ़ावा राजनीति के केंद्र में है। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने संगीन आरोप लगाया है। राज ठाकरे ने दावा किया है कि मुंबई के मशहूर सिद्धिविनायक मंदिर में हर साल 18 करोड़ रुपए का चंदा हड़प लिया जाता है।
1: महोदय, विश्वस्तांच्या सतर्कतेमुळे मंदिरातल्या दानपेटीतून पैसे चोरणारे कर्मचारी पकडले गेलेले आहेत। हे कर्मचारी पकडण्यापूर्वी दर बुधवारी मंदिरातल्या दानपेटीतील रकमेची मोजदाद ही 50 लाख रुपयाच्या आत होती। मात्र हे कर्मचारी पकडल्यानंतर गेले 3 आठवडे आठवड्याची दानपेटी रक्कम ही 1.5 कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचली आहे। याचाच अर्थ यापूर्वी दर आठवड्याला दानपेटीतील जमा होणाऱ्या काही रकमेतील काही रक्कम ही लंपास होत होती। त्यामुळे दरवर्षी सुमारे 18 कोटी रुपयांचे मंदिराचे नुकसान होत होते।
0: वहीं सिद्धिविनायक ट्रस्ट के अध्यक्ष और शिवसेना नेता सदा सरवणकर कहते हैं कि ट्रस्ट की सतर्कता से ही गड़बड़ी सामने आई है। ट्रस्ट के मुताबिक 9 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया, FIR दर्ज कराई गई। ट्रस्ट के पूर्व अधिकारी राजन पेंडुलकर समेत 45 कर्मचारी सस्पेंड किए गए। गिरफ्तार आरोपियों के संबंध शिवसेना UPT की नेता विशाखा राउत और दूसरे नेताओं से है। इसके साथ ही ट्रस्ट के अध्यक्ष सदा सरवणकर इसके पक्के सबूत होने का भी दावा कर रहे हैं।
2: ये चोरी में जितने भी इन्वॉल्व है वो 9 जन को पकड़ाए, उसके बाद लूपहोल्स जो थे, आज दादर स्टेशन में अगर आप एक टैक्सी में बैठेंगे तो वो टैक्सी में भक्तगण अगर यहाँ आते तो उनसे 5,000 लिया जाता था, दर्शन वगैरह सब लेके। वो पहला बंद किया, उसके बाद ये सब आजू बाजू में दलाल लोग घूमते थे, दर्शन के लिए 2,000 3,000 लेते थे, वो सारा बंद हो गया। ये हमारे जो यहाँ की सिक्योरिटी है, यहाँ के कर्मचारी है, उनको गूगल पे करके ये दर्शन दिया जाता था। हमने जितने भी कर्मचारी है सबका फोन बंद कर दिया, अभी किसी कर्मचारी के हाथ में फोन नहीं आपको मिलेगा। जितना भी हमको डाउट आएगा वो हर चीज के ऊपर हमने कुछ न कुछ एक्शन लिया होगा।
0: इसलिए भगवान के नाम पर चढ़े हर रुपए का हिसाब भी न्याय की कसौटी पर ही तय होना चाहिए।
3: मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर में चढ़ावे को लेकर अब महाराष्ट्र में नया सियासी तूफान खड़ा हो गया है, क्योंकि MNS प्रमुख राज ठाकरे ने एक चिट्ठी का हवाला देते हुए ये आरोप किया है कि इस चढ़ावे में बड़ी तादाद में घोटाला हो रहा है। छोटा मोटा नहीं बल्कि सालाना करीबन 18 करोड़ रुपए का घोटाला जो है इस चढ़ावे के पैसों में किया जा रहा है। ऐसी एक चिट्ठी इस ट्रस्ट के ही कुछ ट्रस्टियों ने मिलकर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लिखी थी। 21 अप्रैल 2026 को ये पत्र लिखा गया था, जिस पर ये आरोप किए गए हैं कि यहाँ से पैसों की अफरा तफरी हो रही है, दान पत्र से पैसे चुराए जा रहे हैं।
0: मामला 18 करोड़ का हो या फिर 18 रुपए का, बप्पा के नाम पर चढ़ाया गया एक एक रुपया पवित्र है। सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष सदा सरवणकर ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि मंदिर में हर साल करीब 18 करोड़ रुपए के दान का हेर फेर होता था, जिसे मौजूदा ट्रस्ट ने रोककर चढ़ावे की कमाई में भारी बढ़ोतरी की है। मंदिर की आय 2 साल में 114 करोड़ से बढ़कर 182 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। वहीं फडणवीस सरकार में मंत्री छगन भुजबल कहते हैं कि अगर किसी के पास ठोस जानकारी है तो सरकार को जानकारी मुहैया कराए, जाँच होगी और सच सामने आएगा।
4: चढ़ावा जो लोग चढ़ाते हैं भगवान को, सिद्धिविनायक जी को, उस चढ़ावे में कुछ गलत हुआ है या कुछ, मतलब जो चंदा जमा होता है तो शायद उनके पास कोई मालूम होगी, वो अगर सरकार को शासन को दे देंगे तो उसकी इंक्वायरी होगी और क्या गलत है क्या सही है साबित होगा।
0: अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच का चैप्टर अभी बंद भी नहीं हुआ है कि मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में गड़बड़ियों ने अरब सागर से आने वाली सियासी हवा को गर्म कर दिया है। दान पेटी में गिरता हर सिक्का, हर चढ़ावा सिर्फ मुद्रा और नोट नहीं होते। उनमें किसी माँ की मन्नत होती है, किसी मेहनतकश शख्स की कमाई, किसी परिवार की आस्था। इसलिए मंदिर के चढ़ावे पर उठा हर सवाल करोड़ों श्रद्धालुओं के भरोसे पर सवाल बन जाता है।
5: मार्च महीने में हमने जो बजट रखा वो 182 करोड़, 182 करोड़, ये जो उत्पन्न नहीं बोलेंगे चढ़ावा है, ये देनगी दी है मंदिर को। और इसी माध्यम से हमने यही बता रहे कि हमारे मन में अगर पाप रहता, ये ट्रस्टी बोर्ड है, मैं अभी खुले मन से बताता हूँ, हमारे मन में अगर पाप रहता तो हम इतने चोर पकड़ दे नहीं, हमारे मन में अगर पाप रहता तो 46 कर्मचारी निलंबित होते नहीं, हमारे मन में पाप रहता तो 9 जन पुलिस कस्टडी और एमसीआर कस्टडी में जाते नहीं, हमारे मन में पाप होता तो हम सरकार को विधि न्याय विभाग को एक पत्र भी लिखते नहीं। हमने यही कहा है कि ये जो तफावत 2 साल और अभी भी है तो उसका ऑडिट होना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए।
0: गणपति बप्पा न्याय के देवता है, लिहाजा जांच सिर्फ पैसों की नहीं होनी चाहिए, जांच उस व्यवस्था की भी होनी चाहिए जिसे सिद्ध विनायक के घर की रखवाली सौंपी गई। मंदिर राजनीति का मंच नहीं, आस्था का केंद्र है, इसलिए आरोप भी तथ्यों के साथ होने चाहिए और जांच भी बिना किसी दबाव के।
3: सालाना 18 करोड़ तक का घोटाला जो है यहाँ मंदिर में हुआ है ऐसा दावा किया जा रहा है। अब विपक्ष से लेकर राज ठाकरे सभी मांग कर रहे हैं कि इस चोरी की जो है वो जांच की जाए, तफ्तीश की जाए। और किसके कार्यकाल में, यानी उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे तब उनके कार्यकाल में ये चोरी हुई थी, या फिर अब महायुति सरकार के कार्यकाल में इस तरह की चोरी सामने आई है, ये सामने आना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैमरा पर्सन सचिन सावन के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।
6: महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में बीजेपी नेता और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत मिल गई है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने ब्रिजभूषण शरण सिंह और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व सचिव विनोद तोमर को बाइज्जत बरी कर दिया है।
7: महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण के मामले में 1133 दिनों तक वकीलों ने दलीलें दी, सुनवाई हुई, तथ्य परखे गए और फिर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि ब्रिजभूषण और उनके सह आरोपी विनोद तोमर को बाइज्जत बरी किया जाता है।
8: बरी शब्द का इस्तेमाल के जगह पर कोर्ट ने बाइज्जत बरी शब्द का इस्तेमाल किया है। बरी और बाइज्जत बरी में फर्क होता है। एक बरी होता है कि सबूतों के अभाव में आपको छोड़ा जा रहा है, यहाँ सीधे सीधे कहा गया कि आपको नाम लेकर के कि आपको बाइज्जत बरी किया जा रहा है।
7: दरअसल 3 साल पुराना इस मामले की बंद कमरे में हुई सुनवाई और तमाम गवाहों सबूतों की पड़ताल के बाद अदालत के फैसले में जो बड़ी बातें सामने आई हैं, उनमें से एक तो ये है कि शिकायतकर्ता और पुलिस ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ के आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं कर पाए। दूसरा ये कि शिकायतकर्ताओं के बयानों में तारीख, समय और घटना स्थल को लेकर बड़े विरोधाभास दर्ज किए गए थे। महिला पहलवानों ने खेल मंत्रालय की ओवरसाइट कमेटी में दिए हलफनामे और अदालत में दिए बयानों में फर्क था। कुछ घटनाओं में ब्रजभूषण शरण सिंह कथित घटनाओं के समय दूसरी जगह मौजूद रहने के प्रमाण मौजूद थे और बरी होने की बड़ी वजह ये भी थी कि कथित घटनाएं 2016 से 2019 के बीच की थी, जिनका आरोप 2023 में लगाया गया था।
8: तब मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि ये सब झूठ है,
9: सच हुआ तो मैं आता हूं,
8: और अगर इसमें एक भी आरोप साबित होगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा।
7: अब महिला पहलवानों के मामले में बजरंग पुनिया ने लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करने की बात कही है, लेकिन इस मामले में जबरदस्त सियासत हो रही है।
10: क्यों नहीं सबको करेंगे, सब चोर जितने लोग पार्टी में दाखिल हुए दूसरे पार्टीज में, अरे यही तो प्रधानमंत्री थे तो बंगाल के मुख्यमंत्री के बारे में क्या क्या बोले थे,
11: आरोप लगे थे, जांच होनी चाहिए थी, जांच होकर न्यायपालिका में गया, अब न्यायपालिका ने जो फैसला दे दिया उसका सम्मान करें, या तो सरकार को अगर लगता है कि सही नहीं है तो सरकार ऊपरी कोर्ट में जाए।
7: देखना यह है कि आरोप लगाने वाली महिला पहलवानों का रुख अब क्या होता है। मौसमी सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
6: रांची में 14वीं जेपीएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। छात्र रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में 10 दिन से धरना दे रहे हैं। कल शाम बड़ी संख्या में छात्रों ने मशाल जुलूस निकाला था। उन्होंने हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की थी। उधर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दिपके ने रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बात की है और उन्हें अपना समर्थन देने का ऐलान किया है।
12: सामाजिक कार्यकर्ता जो भेज देते हैं वही हम लोग खाक है और दिन रात भर यही देखिए यही टेंट में आप तो देख रहे हैं पानी हो यही बहुत याद क्या करें सर हम लोग मरता क्या नहीं करता वाला स्थिति है सर।
13: मदद की थाली हाथ में पकड़े इस युवा को देखने के बाद सवाल उठता है कि आखिर नीति नियंताओं के हलक के नीचे खाना उतरता कैसे।
12: ऐसे गाँव से आते हैं सर वहाँ आज भी हम घर का पहला आदमी है पूरे खानदान का पूरे गाँव एक टोला मतलब खानदान का पहला आदमी है ना कि हम लोग बाहर निकले हैं पढ़ने लगे अभी तक हम लोग शिक्षा से इतना दूर है हमारा समाज अगर हम यहाँ पढ़े आए हैं सर अगर हम पढ़ के कुछ नहीं करेंगे तो हमारा आने वाला जो पीढ़ी है वो देखेगा तो कहेगा कि भैया या चाचा पढ़ लेते तो क्या कर लेंगे।
13: तो जीएम डीएम सीएम पीएम सब सुनिए इस छात्र की पुकार। अशिक्षा के अंधकार से निकल कर आया ये लड़का सवाल कर रहा है किसी में इतना ताप कि जवाब दे सके
12: क्योंकि हम लोग तो गरीब आदमी हैं सर और गरीब आदमी हैं अगर हम लोग कोई भी आदमी पढ़ के नौकरी का मतलब मांगता है ताकि हम लोग के आर्थिक समाज अति शैक्षणिक थोड़ा मजबूत हो इसीलिए तो हम लोग पढ़ रहे हैं इतना मेहनत कर रहे हैं एक रूम में हम लोग कितना दिन से यहाँ हम लोग कुछ भी मिल रहा है सर कैसे कैसे खाते आप तो जानते हैं।
13: रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बेरोजगारी से त्रस्त युवा जो बात कहते हैं वो सत्ता के सीने में शून से चुभनी चाहिए क्योंकि ये युवा झारखंड में भर्ती आयोगों की धांधली से त्रस्त आ चुके हैं। प्रदर्शन करते ये नौजवान झारखंड में लगातार धरना देते हुए केवल झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और जेएसएससी के तहत होने वाली भर्तियों में होते भ्रष्टाचार से त्रस्त होकर एक हफ्ते से आंदोलन कर रहे हैं।
14: नारेबाजी चल रही है और अब इस आंदोलन को अलग अलग जगह से समर्थन भी मिलने लगा है। बीजेपी ने इस प्रोटेस्ट का खुलकर समर्थन किया है। एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया है। साथ ही साथ कॉकरोच जनता पार्टी ने भी बात की है उसके संस्थापक अभिजीत दीपके ने भी बात की है यहाँ पे और कहा है कि जिस सपोर्ट की जरूरत है वो सपोर्ट देने को तैयार है ताकि जो आंदोलन अपने अंजाम तक पहुँच सके।
13: अब सवाल यह है कि छात्रों की पुकार क्यों नहीं सुन रही है हेमंत सरकार। सत्यजीत कुमार रांची आज तक।
6: बारिश कभी राहत बनकर आती है तो कभी आफत बनकर सब कुछ बहा ले जाती है। पश्चिम भारत इस वक्त पानी के ऐसे ही प्रहार से जूझ रहा है। महाराष्ट्र से गुजरात तक आसमान से बरसता पानी अब जिंदगी की रफ्तार को रोक रहा है। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, कई शहरों की गलियां तालाब बन चुकी हैं, तो कई करोड़ों की गाड़ियां बाढ़ के पानी में कबाड़ में बदल चुकी हैं।
13: ये तस्वीरें महाराष्ट्र के भिवंडी की हैं। कामवारी नदी अब सिर्फ बह नहीं रही बल्कि खतरे का इशारा दे रही है। पानी इतना बढ़ चुका है कि नदी किनारे खड़ी गाड़ियां एक एक कर डूबने लगी हैं। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की हर नजर नदी के बढ़ते जलस्तर पर टिकी है। अब जरा रुक कीजिए जलगांव का। यहाँ पहली ही तेज बारिश ने मुंबई नागपुर नेशनल हाईवे के फ्लाईओवर के नीचे की जमीन बहा दी। जिस सड़क पर रफ्तार दौड़ती थी वहाँ अब सवाल खड़े हैं। मंत्री मौके पर हैं, जांच के आदेश हैं, लेकिन तस्वीरें विकास की गुणवत्ता पर बड़ा सवाल छोड़ रही हैं।
15: है अतिशय गंभीर है। माननीय गडकरी साहेबांच्या कारवर मी स्रोत टाकलेला आहे। त्यांनी सांगितलं की जर कडक ॲक्शन आपण त्या ठिकाणी घेऊ पण मोठी दुर्घटना टळली असे म्हणायला हरकत नाही। अन्यथा या ठिकाणी वाहन चालले असताना जर असं झालं असतं तर मला वाटतं मोठी दुर्घटना त्या ठिकाणी झाली असती। पण या संदर्भामध्ये आम्ही सर्वजण म्हणजे मी बाहेरगावी होतो, रात्री नाशिकहून आलो, गुलाब भाऊ पण या ठिकाणी बाहेर आम्ही आज ठिकाणी गेलो, राजू मामा इथले आमदार आहेत, आम्ही या ठिकाणी आलेलो आहोत। पण कडक कारवाई करण्याच्या संदर्भामध्ये ठेकेदारावर मग त्याला ब्लॅकलिस्ट करा, त्याच्यावर कारवाई करा।
13: महाराष्ट्र के नांदेड के सहस्रकुंड झरने का नजारा अद्भुत है, लेकिन 100 फीट की ऊंचाई से गिरते पानी में चेतावनी भी छिपी है। यही बारिश कहीं सैलानियों को आकर्षित कर रही है तो कहीं लोगों की जिंदगी को बेबस बना रही है। ये मंजर गुजरात के वलसाड़ जिले के वापी का है, जहां सड़कें नदी बन गई और हजारों कारें पानी में डूबकर कबाड़ में बदल गई। बाढ़ का पानी उतर जाएगा, लेकिन करोड़ों के नुकसान और हजारों इंश्योरेंस क्लेम की लड़ाई अभी बाकी है।
16: 150 से 200 सर्वेयरों की टीम इस डिजास्टर में काम कर रही है, सब कंपनियों की मिलके, और पूरे गुजरात से, पूरे महाराष्ट्र मुंबई से इन लोगों ने अपने अपने सर्वेयर बुलवा लिए हैं। तो काम तो बहुत स्पीड में हो रहा है, काम को दिक्कत नहीं है।
17: मुझे आशा है कि क्लेम्स हमारे बहुत स्मूथली प्रोसेस हो जाएंगे, और गाड़ियों का जो नुकसान हुआ है वो तो अब हम रोक नहीं सकते, जो कुदरती आफत है, बट उसके बाद जो हमारे हाथ में है इंश्योरेंस क्लेम्स और ये सब, और लोगों की पॉजिटिविटी देख के, लोगों का जज्बा देख के, ये लग रहा है कि हमारे क्लेम्स इजीली प्रोसेस हो जाएंगे।
13: अब देखिए खेड़ा जिले के महमदाबाद के रिंछोल गाँव की तस्वीरें। बाढ़ का पानी अपने साथ मगरमच्छों को इंसानी बस्तियों तक ले आया है। घर के भीतर 7 फीट लंबा मगरमच्छ, बाहर सहमे हुए लोग, और बीच में जान जोखिम में डालकर चलता रेस्क्यू ऑपरेशन। कुदरत के अलग अलग रंग, कहीं जानलेवा तो कहीं खुशनुमा। जब बारिश रिकॉर्ड तोड़ती है तो सिर्फ नदियां नहीं उफनती हैं, सिस्टम की तैयारी भी बेनकाब हो जाती है। बारिश अभी जारी है, इसलिए खतरा भी टला नहीं है। आज तक ब्यूरो।
6: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: बीजेपी अध्यक्ष की सीट पर पिट गई पार्टी। बांकीपुर से शानदार जीत के बाद प्रशांत किशोर बोले, 30 दिन में ढा दिया 30 साल पुराना किला। सीएम सम्राट पर किया बड़ा हमला, आरजेडी की जमानत जब्त। कांग्रेस के हाथ लगा मध्य प्रदेश का दतिया, यहां भी 6000 से ज्यादा वोटों से हार गई बीजेपी। गुजरात के मांजलपुर ने बचाई बीजेपी की इज्जत, 30000 से ज्यादा वोटों से जीते सत्येंद्र भाई पटेल। प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो हटाने पर मेटा ने मानी है गलती, संसदीय समिति की बैठक में माफी मांगी, तकनीकी गड़बड़ी का हवाला दिया, समिति ने जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग। यूपी विधानसभा में मानसून सत्र के पहले दिन चढ़ावा, चोरी पर घमासान, विपक्ष की तरफ से जोरदार प्रदर्शन, योगी बोले जनता को गुमराह न करें, दम है तो विकास पर बात करें। और झारखंड का रांची बना नया जंतर मंतर, जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी, 10 दिन से भूख हड़ताल पर देवेंद्र नाथ महतो, सीबीआई जांच की मांग। बिहार के विधायक पद से सीधे बीजेपी के अध्यक्ष पद तक पहुंचे नितिन नवीन की खाली हुई सीट पर उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने 19000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल कर ली है। बीजेपी के सामने अब तक जहां मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी रही, वहां बांकीपुर में तेजस्वी यादव की पार्टी की जमानत तक जब्त हो गई।
1: बिहार की एक खासियत है, जब जब आपको लगता है कि आप बिहार को समझ गए, बिहार आपको झटका देता है।
2: सच है कि बिहार ने चौंकाया है। लड्डू तो बीजेपी वाले बताते हैं कि 200 किलो बनवाया,
3: 200 किलो लड्डू बनाया जा रहा
2: है। लेकिन कहावत है, कहा जाता है हाथ खुआया मुंह ना लगा। यही तो साल की शुरुआत में सबको चौंकाकर बीजेपी अध्यक्ष बनकर लड्डू चखने वाले नितिन नवीन के राज्यसभा में जाने के बाद खाली हुई विधानसभा सीट बांकीपुर पर हुआ, जहां मुख्यमंत्री के साथ रोड शो करते बीजेपी अध्यक्ष दावा करते रहे जनता की लहर साथ है।
4: मुझे पूरा विश्वास है कि जो समर्थन जनता का दिख रहा है वो निश्चित रूप से 3 अगस्त को फिर से एनडीए का कमल, भाजपा का कमल बांकीपुर की जनता खिलाएगी।
2: लेकिन जब नतीजे बांकीपुर उपचुनाव के आए, पता चला जनता तो अध्यक्ष जी की ही पारंपरिक सीट पर पीके के साथ चली गई।

0: बीजेपी अपने ही अध्यक्ष की सीट पर उपचुनाव नहीं जीत पाई। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद पहली बार हुए उपचुनाव में बीजेपी हार गई। बिहार में बीजेपी के पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद हुए उपचुनाव में बीजेपी जीत नहीं पाई। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री रहते पहला ही उपचुनाव बीजेपी हार जाती है। 3 दशक से जीती जा रही सीट पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ता है। हिंदू बाहुल्य और बीजेपी के कोर समर्थक वोटर वाली सीट पर बीजेपी को हार मिलती है, वो भी उन प्रशांत किशोर से जिन्हें 9 महीने पहले बिहार के विधानसभा चुनाव में चूका हुआ मान लिया गया था। प्रशांत किशोर की जीत बड़ी या बीजेपी अध्यक्ष की छोड़ी हुई सीट पर बीजेपी की हार बड़ी, इन दो सवालों के कुछ जवाब हैं जो कहते हैं कि बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत सवर्ण वोटर छिटक गया है। सवर्ण वोटर विकल्प बेहतर मिले तो साथ बीजेपी का छोड़ सकता है और सेफ सीट का मतलब अब कुछ नहीं, क्योंकि 1995 से जहां बीजेपी लगातार जिस इलाके में जीतती आई वहां भगवा रंग की जगह पीके का पीला रंग चढ़ जाना कोई छोटी सियासी खबर नहीं। पटना के जिस बांकीपुर में बीजेपी को कभी भी कुल वोटों का 59% से कम वोट नहीं मिला, जिस बांकीपुर में 9 महीने पहले विधानसभा चुनाव में नितिन नवीन की उम्मीदवारी पर बीजेपी को 63% वोट मिलता है, वहाँ अब की बार बीजेपी प्रत्याशी केवल 34.50% वोट पाते हैं। आरजेडी प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाती है और प्रशांत किशोर 49.19% वोट लेकर जीतते हैं। जिस बांकीपुर में 9 महीने पहले बीजेपी ने 51,936 वोट के अंतर से जीत हासिल की, वहां अब की बार बीजेपी के प्रत्याशी नीरज कुमार को 44,827 वोट ही मिले। बीजेपी को प्रशांत किशोर ने अपने पहले ही चुनाव में 64,151 वोट हासिल करके 19,000 से ज्यादा वोट के अंतर से हराया है। जीत मिलते ही प्रशांत किशोर ने भले एक सीट जीती हो, भले वो अपनी पार्टी के इकलौते विजयी उम्मीदवार विधानसभा में बने हो, लेकिन एक उपचुनाव की चाल से वो सीधे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को शह और मात दे देना चाहते हैं।
1: रेफरेंडम है ये सम्राट चौधरी पे?
2: बिल्कुल, वो तो है।
1: बार बार कह रहे थे जनमत संग्रह है ये।
2: बिल्कुल, सम्राट चौधरी के नेतृत्व को बिहार की जनता स्वीकार नहीं करती है, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है।
1: और नितिन नवीन के सीट पे इतनी बड़ी जीत, किला ध्वस्त किया है बीजेपी का आपने?
2: किला किसी का नहीं होता है।
1: रुक जाइए,
3: आराम से चलिए।
2: 30 साल का किला 30 दिन भी नहीं लगा, और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि भाजपा ने चुनाव जीतने के बाद यहाँ पर एक अपराधी प्रवृत्ति के आदमी को, एक गलत चाल चरित्र के चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व दिया है, जो बिहार के लोगों को स्वीकार्य नहीं है।
0: 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद 111 दिन के भीतर पहली चुनावी परीक्षा में वो पास नहीं हो पाए, जहां प्रशांत किशोर लगातार सीधे एक वोट एक सीट से सम्राट चौधरी पर निशाना प्रचार के दौरान साधते रहे।
4: आपका एक वोट विधायक नहीं चुनेगा, बिहार में मुख्यमंत्री बदल देगा। अगर आप सम्राट चौधरी को हटाना चाहते हैं तो अभी आपके पास रास्ता है। एक बार संकल्प लीजिए, भाजपा को बांकीपुर में हराइए, लिख के ले लीजिए, सम्राट चौधरी का कुर्सी हिलने लगेगा, सम्राट चौधरी को हटाने का रास्ता खुल जाएगा।
0: इसके बाद जैसे ही बांकीपुर में जीत का डंका प्रशांत किशोर बजाते, वो इस बात को दोहराते कि बांकीपुर में बीजेपी की हार का मतलब मुख्यमंत्री की हार है।
2: पहला काम बस यही है कि बांकीपुर की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, अपनी ओर से जो हो सकेगा बांकीपुर में सुधार का प्रयास

0: यहाँ पर आपको कुछ सुधार होता अगले 2-3 महीने में दिखेगा। बड़ी बात यह है कि ये चुनाव बाकीपुर के नाली गली पर नहीं लड़ा गया है, ये चुनाव लड़ा गया है कि बिहार का नेतृत्व किसके हाथ में होना चाहिए। और बाकीपुर की जनता ने ये संदेश दिया है भाजपा के नेतृत्व को कि भाई आप अच्छे आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए, सम्राट चौधरी की जगह किसी कुशवाहा को बनाना है बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कुशवाहा को ही बनाइए, लेकिन कुशवाहा समाज के ही किसी अच्छे आदमी को बनाइए।
1: प्रशांत किशोर की जीत हुई, सम्राट चौधरी ने अब सोशल मीडिया पर लिखा है, लोकतंत्र के महापर्व में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनता ने जन सुराज को चुना है, मैं जनता के इस निर्णय का सम्मान करते हुए प्रशांत किशोर को उनकी जीत पर हार्दिक बधाई देता हूं।
2: लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो चुनाव परिणाम के रुझान आ रहे हैं उसको हम सिर झुकाकर स्वीकार करते हैं और हम पूरी समीक्षा करेंगे। बांकीपुर के लोग हमारे हैं, हमसे अलग क्यों हुए इसकी भी हम समीक्षा करेंगे।
3: ये लोकतंत्र की भूमि है और जनता के जनादेश को भारतीय जनता पार्टी हमेशा शिरोधार्य की है। हम कभी भी ठीकरा चुनाव आयोग या ईवीएम पर नहीं फोड़ते हैं, ये विपक्ष के लोगों के तरह।
0: हम लोग की लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, बहुमत भाजपा का है, एनडीए का है, मुख्यमंत्री तो उन्हीं का बनेगा। हम लोग बस इतना ही आग्रह कर रहे हैं, बिहार की जनता इतना ही आग्रह कर रही है, बांकीपुर की जनता इतना ही मोदी जी से आग्रह कर रही है कि किसी अच्छे चरित्रवान काबिल आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए, ताकि बिहार के लोग भी इस बात का गौरव, बिहारी होने का गौरव कर सके, ताकि हम लोग के बच्चों के लिए भी पढ़ाई रोजगार की व्यवस्था हो, सब कुछ सुविधा अगर गुजरात के ही लोगों को मिलेगी तो सिर्फ बिहार के लोग कहाँ जाएंगे। गुजरात के लोग 1,00,000 करोड़ के बुलेट ट्रेन पर चलेंगे वो ठीक है, लेकिन हम लोगों को कम से कम पैसेंजर भी तो मिलना चाहिए। बिहार के लोग सिर्फ मजदूरी करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं और 5 साल के लिए भाजपा को मैंडेट मिला है, उनको अच्छा आदमी देना चाहिए, अच्छे लोगों को मंत्रिमंडल में रखना चाहिए, ताकि बिहार की तरक्की हो, बिहार का विकास हो।
4: गुजरात के मांझलपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने बड़ी और निर्णायक जीत हासिल की है। बीजेपी उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस के भिखाभाई रबारी को 30,630 वोटों के बड़े अंतर से हराकर सीट बरकरार रखी। ये उपचुनाव बीजेपी के वरिष्ठ नेता और 8 बार के विधायक रहे योगेश पटेल के निधन के बाद हुआ था। कम मतदान के बावजूद बीजेपी ने अपने मजबूत जनाधार को कायम रखते हुए स्पष्ट संदेश दिया कि मांझलपुर में उनका संगठन और सियासी पकड़ अभी भी मजबूत है।
5: बांकीपुर ने मायूस किया, दतिया ने दर्द बढ़ा दिया, लेकिन गुजरात के मांझलपुर ने बीजेपी के चेहरे पर मुस्कान लौटा दी। मांझलपुर में बीजेपी के सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखाभाई रबारी को 30,630 वोटों से हरा दिया।
6: ये भाजपा की जीत, एक कार्यकर्ता की जीत, ये विकास की जीत, नरेंद्र भाई मोदी की जीत और हमारे सभी कार्यकर्ताओं को खूब खूब अभिनंदन।
7: खुशी का माहौल है, भारत देश के तने का बड़ा प्रधान अपने नरेंद्र भाई मोदी जी की ये सेना विकास के लिए काम करती है तो लोग ऑब्वियसली भाजपा का ही वोट देंगे।
5: एक दिन 3 राज्य 3 नतीजे, 2 जगह झटका, 1 जगह बड़ी राहत। बिहार में सियासी किला दरका, मध्य प्रदेश में भी जीत हाथ से फिसल गई, लेकिन गुजरात के मांझलपुर ने बता दिया कि बीजेपी का गढ़ अब भी मजबूत।
8: हमारे भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं को जाता है जिन्होंने दिन रात एक करके ये चुनाव जीता है। मैं सभी नागरिक भाइयों बहनों का और कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
9: भारतीय जनता पार्टी हमेशा संगठनात्मक काम करती है, हर एक कार्यकर्ता इसमें इन्वॉल्व होता है और काम करता है और उसका परिणाम है।
5: मांझलपुर सीट पूर्व मंत्री और 8 बार के विधायक योगेश पटेल के निधन के बाद खाली हुई थी। योगेश पटेल ने 1990 से 2007 के बीच बड़ोदरा की रावपुरा विधानसभा सीट का 5 बार प्रतिनिधित्व किया, फिर परिसीमन के बाद नई बनी मांझलपुर सीट से चुनाव लड़ा। योगेश पटेल ने 2012, 2017 और 2022 में मांझलपुर सीट से लगातार जीत दर्ज की और इस तरह 36 वर्षों के दौरान गुजरात विधानसभा चुनावों में लगातार 8वीं जीत हासिल की। वडोदरा के मांजलपुर विधानसभा में हुए उपचुनाव में

0: बीजेपी उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल की जीत ने साबित कर दिया कि बीजेपी का यहां दबदबा अब भी बरकरार है। कांग्रेस का इंतजार लंबा हो गया है। अतुल तिवारी, वडोदरा, आज तक।
1: सिद्धिविनायक वो दरबार जहां मुख्यमंत्री, मंत्री, अभिनेता और आम भक्त सब गणपति बप्पा के चरणों में एक समान होकर मत्था टेकते हैं। लेकिन अब उसी दरबार की दान पेटी सियासत के केंद्र में आ चुकी है, क्योंकि राज ठाकरे ने आरोप लगाया है कि सिद्धिविनायक मंदिर में हर साल 18 करोड़ रुपए का चंदा हड़प लिया जाता है। वहीं ट्रस्ट का दावा यह है कि ट्रस्ट की वजह से ही मामला उजागर हुआ है। लेकिन जब चढ़ावे पर ग्रहण की बात सामने आती है तो राजनीति भी जवाब देने से बच नहीं सकती।

0: घंटियों की गूंज, गणपति बप्पा की आरती, श्रद्धालुओं का सैलाब, ये दृश्य मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में होता है, जहां हर दिन हजारों श्रद्धालु अपनी मन्नतें लेकर पहुंचते हैं, जहां सत्ता भी सिर झुकाती है, विपक्ष भी नमन करता है, अभिनेता से लेकर आम आदमी तक हर कोई गणपति बप्पा के चरणों में आशीर्वाद देने पहुंचते हैं। लेकिन अब इसी मंदिर का चढ़ावा राजनीति के केंद्र में है। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने संगीन आरोप लगाया है। राज ठाकरे ने दावा किया है कि मुंबई के मशहूर सिद्धिविनायक मंदिर में हर साल 18 करोड़ रुपए का चंदा हड़प लिया जाता है।
1: महोदय, विश्वस्तांच्या सतर्कतेमुळे मंदिरातल्या दानपेटीतून पैसे चोरणारे कर्मचारी पकडले गेलेले आहेत। हे कर्मचारी पकडण्यापूर्वी दर बुधवारी मंदिरातल्या दानपेटीतील रकमेची मोजदात ही 50 लाख रुपयाच्या आत होती। मात्र ही हे कर्मचारी पकडल्यानंतर गेले 3 आठवडे आठवड्याची दानपेटी रक्कम ही 1.5 कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचली आहे। याचाच अर्थ यापूर्वी दर आठवड्याला दानपेटीतील जमा होणाऱ्या काही रकमेतील काही रक्कम ही लंपास होत होती। त्यामुळे दरवर्षी सुमारे 18 कोटी रुपयांचे मंदिराचे नुकसान होत होते।
0: वहीं सिद्धिविनायक ट्रस्ट के अध्यक्ष और शिवसेना नेता सदा सरवणकर कहते हैं कि ट्रस्ट की सतर्कता से ही गड़बड़ी सामने आई है। ट्रस्ट के मुताबिक 9 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया, FIR दर्ज कराई गई। ट्रस्ट के पूर्व अधिकारी राजन पेंडुलकर समेत 45 कर्मचारी सस्पेंड किए गए। गिरफ्तार आरोपियों के संबंध शिवसेना UPT की नेता विशाखा राउत और दूसरे नेताओं से है। इसके साथ ही ट्रस्ट के अध्यक्ष सदा सरवणकर इसके पक्के सबूत होने का भी दावा कर रहे हैं।
2: चोरी में जितने भी इन्वॉल्व है वो 9 जन को पकड़ा है। उसके बाद लूपहोल्स जो थे, आज दादर स्टेशन में अगर आप एक टैक्सी में बैठेंगे तो वो टैक्सी में भक्तगण अगर यहाँ आते तो उनसे 5,000 लिया जाता था, दर्शन वगैरह सब लेके। वो पहला बंद किया। उसके बाद ये सब आजू बाजू में दलाल लोग घूमते थे, दर्शन के लिए 2,000 3,000 लेते थे, वो सारा बंद हो गया। ये हमारे जो यहाँ की सिक्योरिटी है, यहाँ के कर्मचारी है, उनको गूगल पे करके ये दर्शन दिया जाता था। हमने जितने भी कर्मचारी है सबका फोन बंद कर दिया। अभी किसी कर्मचारी के हाथ में फोन नहीं आपको मिलेगा। जितना भी हमको डाउट आएगा वो हर चीज के ऊपर हमने कुछ न कुछ एक्शन लिया होगा।
0: इसलिए भगवान के नाम पर चढ़े हर रुपए का हिसाब भी न्याय की कसौटी पर ही तय होना चाहिए।
3: मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर में चढ़ावे को लेकर अब महाराष्ट्र में नया सियासी तूफान खड़ा हो गया है, क्योंकि MNS प्रमुख राज ठाकरे ने एक चिट्ठी का हवाला देते हुए ये आरोप किया है कि इस चढ़ावे में बड़ी तादाद में घोटाला हो रहा है। छोटा मोटा नहीं बल्कि सालाना करीबन 18 करोड़ रुपए का घोटाला जो है इस चढ़ावे के पैसों में किया जा रहा है। ऐसी एक चिट्ठी इस ट्रस्ट के ही कुछ ट्रस्टियों ने मिलकर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लिखी थी। 21 अप्रैल 2026 को ये पत्र लिखा गया था, जिस पर ये आरोप किए गए हैं कि यहाँ से पैसों की अफरा तफरी हो रही है, दान पत्र से पैसे चुराए जा रहे हैं।
0: मामला 18 करोड़ का हो या फिर 18 रुपए का, बप्पा के नाम पर चढ़ाया गया एक एक रुपया पवित्र है। सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष सदा सरवणकर ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि मंदिर में हर साल करीब 18 करोड़ रुपए के दान का हेर फेर होता था, जिसे मौजूदा ट्रस्ट ने रोककर चढ़ावे की कमाई में भारी बढ़ोतरी की है। मंदिर की आय 2 साल में 114 करोड़ से बढ़कर 182 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। वहीं फडणवीस सरकार में मंत्री छगन भुजबल कहते हैं कि अगर किसी के पास ठोस जानकारी है तो सरकार को जानकारी मुहैया कराए, जांच होगी और सच सामने आएगा।
4: चढ़ावा जो लोग चढ़ाते हैं भगवान को, सिद्धिविनायक को, उस चढ़ावे में कुछ गलत हुआ है या कुछ, मतलब जो चंदा जमा होता है तो शायद उनके पास कोई मालूमात होगी, वो अगर सरकार को शासन को दे देंगे तो उसकी इंक्वायरी होगी और क्या गलत है क्या सही है साबित होगा।
0: अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच का चैप्टर अभी बंद भी नहीं हुआ है कि मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में गड़बड़ियों ने अरब सागर से आने वाली सियासी हवा को गर्म कर दिया है। दान पेटी में गिरता हर सिक्का, हर चढ़ावा सिर्फ मुद्रा और नोट नहीं होते। उनमें किसी माँ की मन्नत होती है, किसी मेहनत कश शख्स की कमाई, किसी परिवार की आस्था। इसलिए मंदिर के चढ़ावे पर उठा हर सवाल करोड़ों श्रद्धालुओं के भरोसे पर सवाल बन जाता है।
5: मार्च महीने में हमने जो बजट रखा वो 182 करोड़, ये जो उत्पन्न नहीं बोलेंगे चढ़ावा है, ये देनगी दी है मंदिर को। और इसी माध्यम से हम यही बता रहे हैं कि हमारे मन में अगर पाप रहता, ये ट्रस्टी बोर्ड है, मैं अभी खुले मन से बताता हूँ, हमारे मन में अगर पाप रहता तो हम इतने चोर पकड़ते नहीं, हमारे मन में अगर पाप रहता तो 46 कर्मचारी निलंबित होते नहीं, हमारे मन में पाप रहता तो 9 जन पुलिस कस्टडी और एमसीआर कस्टडी में जाते नहीं, हमारे मन में पाप होता तो हम सरकार को विधि न्याय विभाग को एक पत्र भी लिखते नहीं। हमने यही कहा है कि ये जो तफावत 2 साल और अभी भी है तो उसका ऑडिट होना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए।
0: गणपति बप्पा न्याय के देवता है, लिहाजा जांच सिर्फ पैसों की नहीं होनी चाहिए, जांच उस व्यवस्था की भी होनी चाहिए जिसे सिद्ध विनायक के घर की रखवाली सौंपी गई। मंदिर राजनीति का मंच नहीं, आस्था का केंद्र है, इसलिए आरोप भी तथ्यों के साथ होने चाहिए और जांच भी बिना किसी दबाव के।
3: सालाना 18 करोड़ तक का घोटाला जो है यहाँ मंदिर में हुआ है ऐसा दावा किया जा रहा है। अब विपक्ष से लेकर राज ठाकरे सभी मांग कर रहे हैं कि इस चोरी की जो है वो जांच की जाए, तफ्तीश की जाए। और किसके कार्यकाल में, यानी उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे तब उनके कार्यकाल में ये चोरी हुई थी, या फिर अब महायुति सरकार के कार्यकाल में इस तरह की चोरी सामने आई है, ये सामने आना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैमरा पर्सन सचिन सावन के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।
6: महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में बीजेपी नेता और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत मिल गई है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने ब्रिजभूषण शरण सिंह और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व सचिव विनोद तोमर को बाइज्जत बरी कर दिया है।
7: महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण के मामले में 1133 दिनों तक वकीलों ने दलीलें दी, सुनवाई हुई, तथ्य परखे गए और फिर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि ब्रिजभूषण और उनके सह आरोपी विनोद तोमर को बाइज्जत बरी किया जाता है।
8: बरी शब्द का इस्तेमाल के जगह पर कोर्ट ने बाइज्जत बरी शब्द का इस्तेमाल किया है। बरी और बाइज्जत बरी में फर्क होता है। एक बरी होता है कि सबूतों के अभाव में आपको छोड़ा जा रहा है, यहाँ सीधे सीधे कहा गया कि आपको नाम लेकर के कि आपको बाइज्जत बरी किया जा रहा है।
7: दरअसल 3 साल पुराना इस मामले की बंद कमरे में हुई सुनवाई और तमाम गवाहों सबूतों की पड़ताल के बाद अदालत के फैसले में जो बड़ी बातें सामने आई हैं, उनमें से एक तो ये है कि शिकायतकर्ता और पुलिस ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ के आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं कर पाए। दूसरा ये कि शिकायतकर्ताओं के बयानों में तारीख, समय और घटना स्थल को लेकर बड़े विरोधाभास दर्ज किए गए थे। महिला पहलवानों ने खेल मंत्रालय की ओवरसाइट कमेटी में दिए हलफनामे और अदालत में दिए बयानों में फर्क था। कुछ घटनाओं में ब्रजभूषण शरण सिंह कथित घटनाओं के समय दूसरी जगह मौजूद रहने के प्रमाण मौजूद थे और बरी होने की बड़ी वजह ये भी थी कि कथित घटनाएं 2016 से 2019 के बीच की थी, जिनका आरोप 2023 में लगाया गया था।
8: तब मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि ये सब झूठ है, और अगर इसमें एक भी आरोप साबित होगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा।
7: अब महिला पहलवानों के मामले में बजरंग पुनिया ने लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करने की बात कही है, लेकिन इस मामले में जबरदस्त सियासत हो रही है।
9: क्यों नहीं सबको करेंगे, सब चोर जितने लोग पार्टी में दाखिल हुए दूसरे पार्टीज में, अरे यही तो प्रधानमंत्री थे, तो बंगाल के मुख्यमंत्री के बारे में क्या क्या बोले थे,
10: आरोप लगे थे, जांच होनी चाहिए थी, जांच होकर न्यायपालिका में गया, अब न्यायपालिका ने जो फैसला दे दिया उसका सम्मान करें, या तो सरकार को अगर लगता है कि सही नहीं है तो सरकार ऊपरी कोर्ट में दे।
7: देखना यह है कि आरोप लगाने वाली महिला पहलवानों का रुख अब क्या होता है। मौसमी सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
6: रांची में 14वीं जेपीएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। छात्र रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में 10 दिन से धरना दे रहे हैं। कल शाम बड़ी संख्या में छात्रों ने मशाल जुलूस निकाला था। उन्होंने हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की थी। उधर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दिपके ने रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बात की है और उन्हें अपना समर्थन देने का ऐलान किया है।
11: सामाजिक कार्यकर्ता जो भेज देते हैं वही हम लोग खा के और दिन रात भर यही देखिए यही टेंट में आप तो देख रहे हैं पानी हो यही बहुत याद क्या करे सर हम लोग मरता क्या नहीं करता वाला स्थिति है सर।
12: मदद की थाली हाथ में पकड़े इस युवा को देखने के बाद सवाल उठता है कि आखिर नीति नियंताओं के हलक के नीचे खाना उतरता कैसे।
11: ऐसे गाँव से आते हैं सर वहाँ आज भी हम घर का पहला आदमी है पूरे खानदान का पूरे गाँव एक टोला मतलब खानदान का पहला आदमी है ना कि हम लोग बाहर निकले हैं पढ़ने लगे अभी तक हम लोग शिक्षा से इतना दूर है हमारा समाज अगर हम यहाँ पढ़े आए हैं सर अगर हम पढ़ के कुछ नहीं करेंगे तो हमारा आने वाला जो पीढ़ी है वो देखेगा तो कहेगा कि भैया या चाचा पढ़ लेते तो क्या कर लेते।
12: तो जीएम डीएम सीएम पीएम सब सुनिए इस छात्र की पुकार। अशिक्षा के अंधकार से निकल कर आया ये लड़का सवाल कर रहा है किसी में इतना ताप कि जवाब दे सके
11: क्योंकि हम लोग तो गरीब आदमी हैं सर और गरीब आदमी हैं अगर हम लोग कोई भी आदमी पढ़ के नौकरी का मतलब मांगता है ताकि हम लोग के आर्थिक समाज अति शैक्षणिक थोड़ा मजबूत हो इसीलिए तो हम लोग पढ़ रहे हैं इतना मेहनत कर रहे हैं एक रूम में हम लोग कितना दिन से या हम लोग कुछ भी मिल रहा है सर कैसे कैसे खाते आप तो जानते हैं।
12: रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बेरोजगारी से त्रस्त युवा जो बात कहते हैं वो सत्ता के सीने में शूल से चुभनी चाहिए क्योंकि ये युवा झारखंड में भर्ती आयोगों की धांधली से त्रस्त आ चुके हैं। प्रदर्शन करते ये नौजवान झारखंड में लगातार धरना देते हुए केवल झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और जेएसएससी के तहत होने वाली भर्तियों में होते भ्रष्टाचार से त्रस्त होकर एक हफ्ते से आंदोलन कर रहे हैं।
13: नारेबाजी चल रही है और अब इस आंदोलन को अलग अलग जगह से समर्थन भी मिलने लगा है। बीजेपी ने इस प्रोटेस्ट का खुलकर समर्थन किया है। एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया है। साथ ही साथ कॉकरोच जनता पार्टी ने भी बात की है उसके संस्थापक अभिजीत दीपके ने भी बात की है यहाँ पे और कहा है कि जिस सपोर्ट की जरूरत है वो सपोर्ट देने को तैयार है ताकि जो आंदोलन अपने अंजाम तक पहुँच सके।
12: अब सवाल यह है कि छात्रों की पुकार क्यों नहीं सुन रही है हेमंत सरकार। सत्यजीत कुमार रांची आज तक।
6: बारिश कभी राहत बनकर आती है तो कभी आफत बनकर सब कुछ बहा ले जाती है। पश्चिम भारत इस वक्त पानी के ऐसे ही प्रहार से जूझ रहा है। महाराष्ट्र से गुजरात तक आसमान से बरसता पानी अब जिंदगी की रफ्तार को रोक रहा है। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, कई शहरों की गलियां तालाब बन चुकी हैं, तो कई करोड़ों की गाड़ियां बाढ़ के पानी में कबाड़ में बदल चुकी हैं।
12: ये तस्वीरें महाराष्ट्र के भिवंडी की हैं। कामबारी नदी अब सिर्फ बह नहीं रही बल्कि खतरे का इशारा दे रही है। पानी इतना बढ़ चुका है कि नदी किनारे खड़ी गाड़ियां एक एक कर डूबने लगी हैं। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की हर नजर नदी के बढ़ते जलस्तर पर टिकी है। अब जरा रुक कीजिए जलगांव का। यहाँ पहली ही तेज बारिश ने मुंबई नागपुर नेशनल हाईवे के फ्लाईओवर के नीचे की जमीन बहा दी। जिस सड़क पर रफ्तार दौड़ती थी वहाँ अब सवाल खड़े हैं। मंत्री मौके पर हैं, जांच के आदेश हैं, लेकिन तस्वीरें विकास की गुणवत्ता पर बड़ा सवाल छोड़ रही हैं।
14: अतिशय गंभीर है। म्हणजे गडकरी साहेबांच्या कारवर मी रोड टाकलेला आहे। त्यांनी सांगितलं की जर कडक ऍक्शन आपण त्या ठिकाणी घेऊ पण मोठी दुर्घटना टळली असे म्हणायला हरकत नाही। अन्यथा या ठिकाणी वाहन चालल्या असताना जर असं झालं असतं तर मला वाटतं मोठी दुर्घटना त्या ठिकाणी झाली असती। पण या संदर्भामध्ये आता आम्ही सर्वजण म्हणजे मी बाहेरगावी होतो, रात्री नाशिकहून आलो, गुलाब भाऊ पण या ठिकाणी बाहेर आम्ही आज ठिकाणी गेलो, राजू मामा इथले आमदार आहेत, आम्ही या ठिकाणी आलेलो आहोत। पण कडक कारवाई करण्याच्या संदर्भामध्ये ठेकेदारावर मग त्याला ब्लॅकलिस्ट करा, त्याच्यावर कारवाई करा।
12: महाराष्ट्र के नांदेड के सहस्रकुंड झरने का नजारा अद्भुत है, लेकिन 100 फीट की ऊंचाई से गिरते पानी में चेतावनी भी छिपी है। यही बारिश कहीं सैलानियों को आकर्षित कर रही है तो कहीं लोगों की जिंदगी को बेबस बना रही है। ये मंजर गुजरात के वलसाड जिले के वापी का है, जहां सड़कें नदी बन गई और हजारों कारें पानी में डूबकर कबाड़ में बदल गई। बाढ़ का पानी उतर जाएगा, लेकिन करोड़ों के नुकसान और हजारों इंश्योरेंस क्लेम की लड़ाई अभी बाकी है।
15: 150 से 200 सर्वेयरों की टीम इस डिजास्टर में काम कर रही है, सब कंपनियों की मिलके, और पूरे गुजरात से, पूरे महाराष्ट्र मुंबई से इन लोगों ने अपने अपने सर्वेयर बुलवा लिए हैं। तो काम तो बहुत स्पीड में हो रहा है, काम को दिक्कत नहीं है।
16: मुझे आशा है कि क्लेम्स हमारे बहुत स्मूथली प्रोसेस हो जाएंगे, और गाड़ियों का जो नुकसान हुआ है वो तो अब हम रोक नहीं सकते, जो कुदरती आफत है, बट उसके बाद जो हमारे हाथ में है इंश्योरेंस क्लेम्स और ये सब, और लोगों की पॉजिटिविटी देख के, लोगों का जज्बा देख के, ये लग रहा है कि हमारे क्लेम्स इजीली प्रोसेस हो जाएंगे।
12: अब देखिए खेड़ा जिले के महमदाबाद के रिंचोल गाँव की तस्वीरें। बाढ़ का पानी अपने साथ मगरमच्छों को इंसानी बस्तियों तक ले आया है। घर के भीतर 7 फीट लंबा मगरमच्छ, बाहर सहमे हुए लोग, और बीच में जान जोखिम में डालकर चलता रेस्क्यू ऑपरेशन। कुदरत के अलग अलग रंग, कहीं जानलेवा तो कहीं खुशनुमा। जब बारिश रिकॉर्ड तोड़ती है तो सिर्फ नदियां नहीं उफनती हैं, सिस्टम की तैयारी भी बेनकाब हो जाती है। बारिश अभी जारी है इसलिए खतरा भी टला नहीं है। आज तक ब्यूरो।
6: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: पार्टी बांकीपुर से शानदार जीत के बाद प्रशांत किशोर बोले, 30 दिन में ढा दिया 30 साल पुराना किला। सीएम सम्राट पर किया बड़ा हमला, आरजेडी की जमानत जब्त। कांग्रेस के हाथ लगा मध्य प्रदेश का दतिया, यहां भी 6000 से ज्यादा वोटों से हार गई बीजेपी। गुजरात के मांजलपुर ने बचाई बीजेपी की इज्जत, 30000 से ज्यादा वोटों से जीते सत्येंद्र भाई पटेल। प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो हटाने पर मेटा ने मानी है गलती, संसदीय समिति की बैठक में माफी मांगी, तकनीकी गड़बड़ी का हवाला दिया, समिति ने जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग। यूपी विधानसभा में मानसून सत्र के पहले दिन चढ़ावा, चोरी पर घमासान, विपक्ष की तरफ से जोरदार प्रदर्शन, योगी बोले जनता को गुमराह न करें, दम है तो विकास पर बात करें। और झारखंड का रांची बना नया जंतर मंतर, जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी, 10 दिन से भूख हड़ताल पर देवेंद्र नाथ महतो, सीबीआई जांच की मांग। बिहार के विधायक पद से सीधे बीजेपी के अध्यक्ष पद तक पहुंचे नितिन नवीन की खाली हुई सीट पर उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने 19000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल कर ली है। बीजेपी के सामने अब तक जहां मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी रही, वहां बांकीपुर में तेजस्वी यादव की पार्टी की जमानत तक जब्त हो गई।
1: बिहार की एक खासियत है, जब जब आपको लगता है कि आप बिहार को समझ गए, बिहार आपको झटका देता है।
2: सच है कि बिहार ने चौंकाया है। लड्डू तो बीजेपी वाले बताते हैं कि 200 किलो बनवाया, लेकिन कहावत है, कहा जाता है हाथ खुआया मुंह ना लगा। यही तो साल की शुरुआत में सबको चौंकाकर बीजेपी अध्यक्ष बनकर लड्डू चखने वाले नितिन नवीन के राज्यसभा में जाने के बाद खाली हुई विधानसभा सीट बांकीपुर पर हुआ, जहां मुख्यमंत्री के साथ रोड शो करते बीजेपी अध्यक्ष दावा करते रहे जनता की लहर साथ है।
3: मुझे पूरा विश्वास है कि जो समर्थन जनता का दिख रहा है वो निश्चित रूप से 3 अगस्त को फिर से एनडीए का कमल, भाजपा का कमल बांकीपुर की जनता खिलाएगी।
2: लेकिन जब नतीजे बांकीपुर उपचुनाव के आए, पता चला जनता तो अध्यक्ष जी की ही पारंपरिक सीट पर पीके के साथ चली गई। जिस

0: बीजेपी अपने ही अध्यक्ष की सीट पर उपचुनाव नहीं जीत पाई। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद पहली बार हुए उपचुनाव में बीजेपी हार गई। बिहार में बीजेपी के पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद हुए उपचुनाव में बीजेपी जीत नहीं पाई। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री रहते पहला ही उपचुनाव बीजेपी हार जाती है। 3 दशक से जीती जा रही सीट पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ता है। हिंदू बाहुल्य और बीजेपी के कोर समर्थक वोटर वाली सीट पर बीजेपी को हार मिलती है, वो भी उन प्रशांत किशोर से जिन्हें 9 महीने पहले बिहार के विधानसभा चुनाव में चूका हुआ मान लिया गया था। प्रशांत किशोर की जीत बड़ी या बीजेपी अध्यक्ष की छोड़ी हुई सीट पर बीजेपी की हार बड़ी, इन दो सवालों के कुछ जवाब हैं जो कहते हैं कि बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत सवर्ण वोटर छिटक गया है। सवर्ण वोटर विकल्प बेहतर मिले तो साथ बीजेपी का छोड़ सकता है और सेफ सीट का मतलब अब कुछ नहीं, क्योंकि 1995 से जहां बीजेपी लगातार जिस इलाके में जीतती आई वहां भगवा रंग की जगह पीके का पीला रंग चढ़ जाना कोई छोटी सियासी खबर नहीं। पटना के जिस बांकीपुर में बीजेपी को कभी भी कुल वोटों का 59% से कम वोट नहीं मिला, जिस बांकीपुर में 9 महीने पहले विधानसभा चुनाव में नितिन नवीन की उम्मीदवारी पर बीजेपी को 63% वोट मिलता है, वहाँ अब की बार बीजेपी प्रत्याशी केवल 34.50% वोट पाते हैं। आरजेडी प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाती है और प्रशांत किशोर 49.19% वोट लेकर जीतते हैं। जिस बांकीपुर में 9 महीने पहले बीजेपी ने 51,936 वोट के अंतर से जीत हासिल की, वहां अब की बार बीजेपी के प्रत्याशी नीरज कुमार को 44,827 वोट ही मिले। बीजेपी को प्रशांत किशोर ने अपने पहले ही चुनाव में 64,151 वोट हासिल करके 19,000 से ज्यादा वोट के अंतर से हराया है। जीत मिलते ही प्रशांत किशोर ने भले एक सीट जीती हो, भले वो अपनी पार्टी के इकलौते विजयी उम्मीदवार विधानसभा में बने हो, लेकिन एक उपचुनाव की चाल से वो सीधे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को शह और मात दे देना चाहते हैं।
1: रेफरेंडम है ये सम्राट चौधरी पे?
2: बिल्कुल, वो तो है।
1: आप बार बार कह रहे थे जनमत संग्रह है ये।
2: बिल्कुल, सम्राट चौधरी के नेतृत्व को बिहार की जनता स्वीकार नहीं करती है, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है।
1: और नितिन नवीन के सीट पे इतनी बड़ी जीत, किला ध्वस्त किया है बीजेपी का आपने?
2: किला किसी का नहीं होता है।
1: रुक जाइए,
3: आराम से चलिए।
2: 30 साल का किला 30 दिन भी नहीं लगा, और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि भाजपा ने चुनाव जीतने के बाद यहाँ पर एक अपराधी प्रवृत्ति के आदमी को, एक गलत चाल चरित्र के चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व दिया है, जो बिहार के लोगों को स्वीकार्य नहीं है।
0: 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद 111 दिन के भीतर पहली चुनावी परीक्षा में वो पास नहीं हो पाए, जहां प्रशांत किशोर लगातार सीधे एक वोट एक सीट से सम्राट चौधरी पर निशाना प्रचार के दौरान साधते रहे।
4: आपका एक वोट विधायक नहीं चुनेगा, बिहार में मुख्यमंत्री बदल देगा। अगर आप सम्राट चौधरी को हटाना चाहते हैं तो अभी आपके पास रास्ता है। एक बार संकल्प लीजिए, भाजपा को बांकीपुर में हराइए, लिख के ले लीजिए, सम्राट चौधरी का कुर्सी हिलने लगेगा, सम्राट चौधरी को हटाने का रास्ता खुल जाएगा।
0: इसके बाद जैसे ही बांकीपुर में जीत का डंका प्रशांत किशोर बजाते, वो इस बात को दोहराते कि बांकीपुर में बीजेपी की हार का मतलब मुख्यमंत्री की हार है।
2: पहला काम बस यही है कि बांकीपुर की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, अपनी ओर से जो हो सकेगा बांकीपुर में सुधार का प्रयास करेंगे। अगले 2-3 महीने में आपको वो चीज दिखेंगी भी। मैं कोई बहुत बड़ी बड़ी बात बोलना नहीं चाहता हूँ। विधायक, मेरे विधायक बनने से बांकीपुर बंगलोर नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ सुधार होता अगले 2-3 महीने में दिखेगा। बड़ी बात यह है कि ये चुनाव बांकीपुर के नाली गली पर नहीं लड़ा गया है, ये चुनाव लड़ा गया है कि बिहार का नेतृत्व किसके हाथ में होना चाहिए। और बांकीपुर की जनता ने ये संदेश दिया है भाजपा के नेतृत्व को कि भाई आप अच्छे आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए, सम्राट चौधरी की जगह किसी कुशवाहा को बनाना है बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कुशवाहा को ही बनाइए, लेकिन कुशवाहा समाज के ही किसी अच्छे आदमी को बनाइए।
0: प्रशांत किशोर की जीत हुई, सम्राट चौधरी ने अब सोशल मीडिया पर लिखा है, लोकतंत्र के महापर्व में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनता ने जन सुराज को चुना है, मैं जनता के इस निर्णय का सम्मान करते हुए प्रशांत किशोर को उनकी जीत पर हार्दिक बधाई देता हूं।
5: लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो चुनाव परिणाम के रुझान आ रहे हैं उसको हम सिर झुकाकर स्वीकार करते हैं और हम पूरी समीक्षा करेंगे। बांकीपुर के लोग हमारे हैं, हमसे अलग क्यों हुए इसकी भी हम समीक्षा करेंगे।
6: ये लोकतंत्र की भूमि है और जनता के जनादेश को भारतीय जनता पार्टी हमेशा शिरोधार्य की है। हम कभी भी ठीकरा चुनाव आयोग या ईवीएम पर नहीं फोड़ते हैं, ये विपक्ष के लोगों के तरह।
2: हम लोग की लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, बहुमत भाजपा का है, एनडीए का है, मुख्यमंत्री तो उन्हीं का बनेगा। हम लोग बस इतना ही आग्रह कर रहे हैं, बिहार की जनता इतना ही आग्रह कर रही है, बांकीपुर की जनता इतना ही मोदी जी से आग्रह कर रही है कि किसी अच्छे चरित्रवान काबिल आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए, ताकि बिहार के लोग भी इस बात का गौरव, बिहारी होने का गौरव कर सके, ताकि हम लोग के बच्चों के लिए भी पढ़ाई रोजगार की व्यवस्था हो, सब कुछ सुविधा अगर गुजरात के ही लोगों को मिलेगी तो सिर्फ बिहार के लोग कहाँ जाएंगे। गुजरात के लोग 1,00,000 करोड़ के बुलेट ट्रेन पर चलेंगे वो ठीक है, लेकिन हम लोगों को कम से कम पैसेंजर भी तो मिलना चाहिए। बिहार के लोग सिर्फ मजदूरी करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं और 5 साल के लिए भाजपा को मैंडेट मिला है, उनको अच्छा आदमी देना चाहिए, अच्छे लोगों को मंत्रिमंडल में रखना चाहिए, ताकि बिहार की तरक्की हो, बिहार का विकास हो।
7: गुजरात के मांझलपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने बड़ी और निर्णायक जीत हासिल की है। बीजेपी उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस के भिखाभाई रबारी को 30,630 वोटों के बड़े अंतर से हराकर सीट बरकरार रखी। ये उपचुनाव बीजेपी के वरिष्ठ नेता और 8 बार के विधायक रहे योगेश पटेल के निधन के बाद हुआ था। कम मतदान के बावजूद बीजेपी ने अपने मजबूत जनाधार को कायम रखते हुए स्पष्ट संदेश दिया कि मांझलपुर में उनका संगठन और सियासी पकड़ अभी भी मजबूत है।
8: बांकीपुर ने मायूस किया, दतिया ने दर्द बढ़ा दिया, लेकिन गुजरात के मांझलपुर ने बीजेपी के चेहरे पर मुस्कान लौटा दी। मांझलपुर में बीजेपी के सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखा भाई रबारी को 30,630 वोटों से हरा दिया।
9: ये भाजपा की जीत, एक कार्यकर्ता की जीत, ये विकास की जीत, नरेंद्र भाई मोदी की जीत और हमारे सभी कार्यकर्ताओं को खूब खूब अभिनंदन।
10: खुशी का माहौल है, भारत देश के तने का बड़ा प्रधान अपने नरेंद्र भाई मोदी जी की ये सेना विकास के लिए काम करती है तो लोग ऑब्वियसली भाजपा का ही वोट देंगे।
8: एक दिन 3 राज्य 3 नतीजे, 2 जगह झटका, 1 जगह बड़ी राहत। बिहार में सियासी किला दरका, मध्य प्रदेश में भी जीत हाथ से फिसल गई, लेकिन गुजरात के मांझलपुर ने बता दिया कि बीजेपी का गढ़ अब भी मजबूत।
11: हमारे भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं को जाता है जिन्होंने दिन रात एक करके ये चुनाव जीता है। मैं सभी नागरिक भाइयों बहनों का और कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
12: भारतीय जनता पार्टी हमेशा संगठनात्मक काम करती है, हर एक कार्यकर्ता इसमें इन्वॉल्व होता है और काम करता है और उसका परिणाम है।
8: मांझलपुर सीट पूर्व मंत्री और 8 बार के विधायक योगेश पटेल के निधन के बाद खाली हुई थी। योगेश पटेल ने 1990 से 2007 के बीच बड़ोदरा की रावपुरा विधानसभा सीट का 5 बार प्रतिनिधित्व किया, फिर परिसीमन के बाद नई बनी मांझलपुर सीट से चुनाव लड़ा। योगेश पटेल ने 2012, 2017 और 2022 में मांझलपुर सीट से लगातार जीत दर्ज की और इस तरह 36 वर्षों के दौरान गुजरात विधानसभा चुनावों में लगातार 8वीं जीत हासिल की। बड़ोदरा के मांझलपुर विधानसभा में हुए उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल की जीत ने साबित कर दिया कि बीजेपी का यहां दबदबा अब भी बरकरार है, कांग्रेस का इंतजार लंबा हो गया है। अतुल तिवारी, बड़ोदरा आज तक।
7: सिद्धिविनायक वो दरबार जहां मुख्यमंत्री, मंत्री, अभिनेता और आम भक्त सब गणपति बप्पा के चरणों में एक समान होकर मत्था टेकते हैं, लेकिन अब उसी दरबार की दान पेटी सियासत के केंद्र में आ चुकी है, क्योंकि राज ठाकरे ने आरोप लगाया है कि सिद्धिविनायक मंदिर में हर साल 18 करोड़ रुपए का चंदा हड़प लिया जाता है। वहीं ट्रस्ट का दावा यह है कि ट्रस्ट की वजह से ही मामला उजागर हुआ है, लेकिन जब चढ़ावे पर ग्रहण की बात सामने आती है तो राजनीति भी जवाब देने से बच नहीं सकती।

0: घंटियों की गूंज, गणपति बप्पा की आरती, श्रद्धालुओं का सैलाब, ये दृश्य मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में होता है, जहां हर दिन हजारों श्रद्धालु अपनी मन्नतें लेकर पहुंचते हैं, जहां सत्ता भी सिर झुकाती है, विपक्ष भी नमन करता है, अभिनेता से लेकर आम आदमी तक हर कोई गणपति बप्पा के चरणों में आशीर्वाद देने पहुंचते हैं। लेकिन अब इसी मंदिर का चढ़ावा राजनीति के केंद्र में है। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने संगीन आरोप लगाया है। राज ठाकरे ने दावा किया है कि मुंबई के मशहूर सिद्धिविनायक मंदिर में हर साल 18 करोड़ रुपए का चंदा हड़प लिया जाता है।
1: महोदय, विश्वस्तांच्या सतर्कतेमुळे मंदिरातल्या दानपेटीतून पैसे चोरणारे कर्मचारी पकडले गेलेले आहेत। हे कर्मचारी पकडण्यापूर्वी दर बुधवारी मंदिरातल्या दानपेटीतील रकमेची मोजदाद ही 50 लाख रुपयाच्या आत होती। मात्र ही हे कर्मचारी पकडल्यानंतर गेले 3 आठवडे आठवड्याची दानपेटी रक्कम ही 1.5 कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचली आहे। याचाच अर्थ, यापूर्वी दर आठवड्याला दानपेटीतील जमा होणाऱ्या काही रकमेतील काही रक्कम ही लंपास होत होती। त्यामुळे दरवर्षी सुमारे 18 कोटी रुपयांचे मंदिराचे नुकसान होत होते।
0: वहीं सिद्धिविनायक ट्रस्ट के अध्यक्ष और शिवसेना नेता सदा सरवणकर कहते हैं कि ट्रस्ट की सतर्कता से ही गड़बड़ी सामने आई है। ट्रस्ट के मुताबिक 9 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया, FIR दर्ज कराई गई। ट्रस्ट के पूर्व अधिकारी राजन पेंडुलकर समेत 45 कर्मचारी सस्पेंड किए गए। गिरफ्तार आरोपियों के संबंध शिवसेना UPT की नेता विशाखा राउत और दूसरे नेताओं से है। इसके साथ ही ट्रस्ट के अध्यक्ष सदा सरवणकर इसके पक्के सबूत होने का भी दावा कर रहे हैं।
2: चोरी में जितने भी इन्वॉल्व है वो 9 जन को पकड़ा है। उसके बाद लूपहोल्स जो थे, आज दादर स्टेशन में अगर आप एक टैक्सी में बैठेंगे तो वो टैक्सी में भक्तगण अगर यहाँ आते तो उनसे 5,000 लिया जाता था, दर्शन वगैरह सब लेके। वो पहला बंद किया, उसके बाद ये सब आजू बाजू में दलाल लोग घूमते थे, दर्शन के लिए 2,000 3,000 लेते थे, वो सारा बंद हो गया। ये हमारे जो यहाँ की सिक्योरिटी है, यहाँ के कर्मचारी है, उनको गूगल पे करके ये दर्शन दिया जाता था। हमने जितने भी कर्मचारी है सबका फोन बंद कर दिया। अभी किसी कर्मचारी के हाथ में फोन नहीं आपको मिलेगा। जितना भी हमको डाउट आएगा वो हर चीज के ऊपर हमने कुछ न कुछ एक्शन लिया होगा।
0: इसलिए भगवान के नाम पर चढ़े हर रुपए का हिसाब भी न्याय की कसौटी पर ही तय होना चाहिए।
3: मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर में चढ़ावे को लेकर अब महाराष्ट्र में नया सियासी तूफान खड़ा हो गया है, क्योंकि MNS प्रमुख राज ठाकरे ने एक चिट्ठी का हवाला देते हुए ये आरोप किया है कि इस चढ़ावे में बड़ी तादाद में घोटाला हो रहा है। छोटा मोटा नहीं बल्कि सालाना करीबन 18 करोड़ रुपए का घोटाला जो है इस चढ़ावे के पैसों में किया जा रहा है। ऐसी एक चिट्ठी इस ट्रस्ट के ही कुछ ट्रस्टियों ने मिलकर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लिखी थी। 21 अप्रैल 2026 को ये पत्र लिखा गया था, जिस पर ये आरोप किए गए हैं कि यहाँ से पैसों की अफरा तफरी हो रही है, दान पत्र से पैसे चुराए जा रहे हैं।
0: मामला 18 करोड़ का हो या फिर 18 रुपए का, बप्पा के नाम पर चढ़ाया गया एक एक रुपया पवित्र है। सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष सदा सरवणकर ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि मंदिर में हर साल करीब 18 करोड़ रुपए के दान का हेर फेर होता था, जिसे मौजूदा ट्रस्ट ने रोककर चढ़ावे की कमाई में भारी बढ़ोतरी की है। मंदिर की आय 2 साल में 114 करोड़ से बढ़कर 182 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। वहीं फडणवीस सरकार में मंत्री छगन भुजबल कहते हैं कि अगर किसी के पास ठोस जानकारी है तो सरकार को जानकारी मुहैया कराए, जाँच होगी और सच सामने आएगा।
4: चढ़ावा जो लोग चढ़ाते हैं भगवान को, सिद्धि विनायक को, उस चढ़ावे में कुछ गलत हुआ है या कुछ, मतलब जो चंदा जमा होता है तो शायद उनके पास कोई मालूमात होगी, वो अगर सरकार को शासन को दे देंगे तो उसकी इंक्वायरी होगी और क्या गलत है क्या सही है साबित होगा।
0: अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच का चैप्टर अभी बंद भी नहीं हुआ है कि मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में गड़बड़ियों ने अरब सागर से आने वाली सियासी हवा को गर्म कर दिया है। दान पेटी में गिरता हर सिक्का, हर चढ़ावा सिर्फ मुद्रा और नोट नहीं होते, उनमें किसी माँ की मन्नत होती है, किसी मेहनतकश शख्स की कमाई, किसी परिवार की आस्था। इसलिए मंदिर के चढ़ावे पर उठा हर सवाल करोड़ों श्रद्धालुओं के भरोसे पर सवाल बन जाता है।
5: मार्च महीने में हमने जो बजट रखा वो 182 करोड़, 182 करोड़ ये जो उत्पन्न नहीं बोलेंगे चढ़ावा है, ये देनगी दी है मंदिर को। और इसी माध्यम से हमने यही बता रहे कि हमारे मन में अगर पाप रहता, ये ट्रस्टी बोर्ड है, मैं अभी खुले मन से बताता हूँ, हमारे मन में अगर पाप रहता तो हम इतने चोर पकड़ते नहीं, हमारे मन में अगर पाप रहता तो 46 कर्मचारी निलंबित होते नहीं, हमारे मन में पाप रहता तो 9 जन पुलिस कस्टडी और एमसीआर कस्टडी में जाते नहीं, हमारे मन में पाप होता तो हम सरकार को विधि न्याय विभाग को एक पत्र भी लिखते नहीं। हमने यही कहा है कि ये जो तफावत 2 साल और अभी भी है तो उसका ऑडिट होना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए।
0: गणपति बप्पा न्याय के देवता है, लिहाजा जांच सिर्फ पैसों की नहीं होनी चाहिए, जांच उस व्यवस्था की भी होनी चाहिए जिसे सिद्ध विनायक के घर की रखवाली सौंपी गई। मंदिर राजनीति का मंच नहीं, आस्था का केंद्र है, इसलिए आरोप भी तथ्यों के साथ होने चाहिए और जांच भी बिना किसी दबाव के।
3: सालाना 18 करोड़ तक का घोटाला जो है यहाँ मंदिर में हुआ है ऐसा दावा किया जा रहा है। अब विपक्ष से लेकर राज ठाकरे सभी मांग कर रहे हैं कि इस चोरी की जो है वो जांच की जाए, तफ्तीश की जाए। और किसके कार्यकाल में, यानी उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे तब उनके कार्यकाल में ये चोरी हुई थी, या फिर अब महायुति सरकार के कार्यकाल में इस तरह की चोरी सामने आई है, ये सामने आना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।
6: महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में बीजेपी नेता और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत मिल गई है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने ब्रिजभूषण शरण सिंह और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व सचिव विनोद तोमर को बाइज्जत बरी कर दिया है।
7: महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण के मामले में 1133 दिनों तक वकीलों ने दलीलें दी, सुनवाई हुई, तथ्य परखे गए और फिर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि ब्रजभूषण और उनके सह आरोपी विनोद तोमर को बाइज्जत बरी किया जाता है।
8: बरी शब्द का इस्तेमाल के जगह पर कोर्ट ने बाइज्जत बरी शब्द का इस्तेमाल किया है। बरी और बाइज्जत बरी में फर्क होता है। एक बरी होता है कि सबूतों के अभाव में आपको छोड़ा जा रहा है, यहाँ सीधे सीधे कहा गया कि आपको नाम लेकर के कि आपको बाइज्जत बरी किया जा रहा है।
7: दरअसल 3 साल पुराना इस मामले की बंद कमरे में हुई सुनवाई और तमाम गवाहों सबूतों की पड़ताल के बाद अदालत के फैसले में जो बड़ी बातें सामने आई हैं, उनमें से एक तो ये है कि शिकायतकर्ता और पुलिस ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ के आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं कर पाए। दूसरा ये कि शिकायतकर्ताओं के बयानों में तारीख, समय और घटना स्थल को लेकर बड़े विरोधाभास दर्ज किए गए थे। महिला पहलवानों ने खेल मंत्रालय की ओवरसाइट कमेटी में दिए हलफनामे और अदालत में दिए बयानों में फर्क था। कुछ घटनाओं में ब्रजभूषण शरण सिंह कथित घटनाओं के समय दूसरी जगह मौजूद रहने के प्रमाण मौजूद थे और बरी होने की बड़ी वजह ये भी थी कि कथित घटनाएं 2016 से 2019 के बीच की थी, जिनका आरोप 2023 में लगाया गया था।
8: तब मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि ये सब झूठ है, और अगर इसमें एक भी आरोप साबित होगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा।
7: अब महिला पहलवानों के मामले में बजरंग पुनिया ने लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करने की बात कही है, लेकिन इस मामले में जबरदस्त सियासत हो रही है।
9: क्यों नहीं सबको करेंगे, सब चोर जितने लोग पार्टी में दाखिल हुए दूसरे पार्टीज में, अरे यही तो प्रधानमंत्री थे, तो बंगाल के मुख्यमंत्री के बारे में क्या क्या बोले थे,
10: आरोप लगे थे, जांच होनी चाहिए थी, जांच होकर न्यायपालिका में गया, अब न्यायपालिका ने जो फैसला दे दिया उसका सम्मान करें, या तो सरकार को अगर लगता है कि सही नहीं है तो सरकार ऊपरी कोर्ट में जाए।
7: देखना यह है कि आरोप लगाने वाली महिला पहलवानों का रुख अब क्या होता है। मौसमी सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
6: रांची में 14वीं जेपीएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। छात्र रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में 10 दिन से धरना दे रहे हैं। कल शाम बड़ी संख्या में छात्रों ने मशाल जुलूस निकाला था। उन्होंने हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की थी। उधर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दिपके ने रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बात की है और उन्हें अपना समर्थन देने का ऐलान किया है।
11: सामाजिक कार्यकर्ता जो भेज देते हैं वही हम लोग खा के और दिन रात भर यही देखिए यही टेंट में आप तो देख रहे हैं पानी हो यही बहुत याद क्या करें सर हम लोग मरता क्या नहीं करता वाला स्थिति है सर।
12: मदद की थाली हाथ में पकड़े इस युवा को देखने के बाद सवाल उठता है कि आखिर नीति नियंताओं के हलक के नीचे खाना उतरता कैसे।
11: ऐसे गाँव से आते हैं सर वहाँ आज भी हम घर का पहला आदमी है पूरे खानदान का पूरे गाँव एक टोला मतलब खानदान का पहला आदमी है ना कि हम लोग बाहर निकले हैं पढ़ने लगे अभी तक हम लोग शिक्षा से इतना दूर है हमारा समाज अगर हम यहाँ पढ़े आए हैं सर अगर हम पढ़ के कुछ नहीं करेंगे तो हमारे आने वाला जो पीढ़ी है वो देखेगा तो कहेगा कि भैया या चाचा पढ़ लेते तो क्या कर लेते।
12: तो जीएम डीएम सीएम पीएम सब सुनिए इस छात्र की पुकार। अशिक्षा के अंधकार से निकल कर आया ये लड़का सवाल कर रहा है किसी में इतना ताप कि जवाब दे सके
11: क्योंकि हम लोग तो गरीब आदमी हैं सर और गरीब आदमी हैं अगर हम लोग कोई भी आदमी पढ़ के नौकरी का मतलब मांगता है ताकि हम लोग के आर्थिक समाज अति शैक्षणिक थोड़ा मजबूत हो इसीलिए तो हम लोग पढ़ रहे हैं इतना मेहनत कर रहे हैं एक रूम में हम लोग कितना दिन से या हम लोग कुछ भी मिल रहा है सर कैसे कैसे खाते आप तो जानते हैं।
12: रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बेरोजगारी से त्रस्त युवा जो बात कहते हैं वो सत्ता के सीने में शून सी चुभनी चाहिए क्योंकि ये युवा झारखंड में भर्ती आयोगों की धांधली से त्रस्त आ चुके हैं। प्रदर्शन करते ये नौजवान झारखंड में लगातार धरना देते हुए केवल झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और जेएसएससी के तहत होने वाली भर्तियों में होते भ्रष्टाचार से त्रस्त होकर एक हफ्ते से आंदोलन कर रहे हैं।
13: नारेबाजी चल रही है और अब इस आंदोलन को अलग अलग जगह से समर्थन भी मिलने लगा है। बीजेपी ने इस प्रोटेस्ट का खुलकर समर्थन किया है। एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया है। साथ ही साथ कॉकरोच जनता पार्टी ने भी बात की है उसके संस्थापक अभिजीत दीपके ने भी बात की है यहाँ पे और कहा है कि जिस सपोर्ट की जरूरत है वो सपोर्ट देने को तैयार है ताकि जो आंदोलन अपने अंजाम तक पहुँच सके।
12: अब सवाल यह है कि छात्रों की पुकार क्यों नहीं सुन रही है हेमंत सरकार। सत्यजीत कुमार रांची आज तक।
6: बारिश कभी राहत बनकर आती है तो कभी आफत बनकर सब कुछ बहा ले जाती है। पश्चिम भारत इस वक्त पानी के ऐसे ही प्रहार से जूझ रहा है। महाराष्ट्र से गुजरात तक आसमान से बरसता पानी अब जिंदगी की रफ्तार को रोक रहा है। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, कई शहरों की गलियां तालाब बन चुकी हैं, तो कई करोड़ों की गाड़ियां बाढ़ के पानी में कबाड़ में बदल चुकी हैं।
12: ये तस्वीरें महाराष्ट्र के भिवंडी की हैं। कामवारी नदी अब सिर्फ बह नहीं रही बल्कि खतरे का इशारा दे रही है। पानी इतना बढ़ चुका है कि नदी किनारे खड़ी गाड़ियां एक एक कर डूबने लगी हैं। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की हर नजर नदी के बढ़ते जलस्तर पर टिकी है। अब जरा रुक कीजिए जलगांव का। यहाँ पहले ही तेज बारिश ने मुंबई नागपुर नेशनल हाईवे के फ्लाईओवर के नीचे की जमीन बहा दी। जिस सड़क पर रफ्तार दौड़ती थी वहाँ अब सवाल खड़े हैं। मंत्री मौके पर हैं, जांच के आदेश हैं, लेकिन तस्वीरें विकास की गुणवत्ता पर बड़ा सवाल छोड़ रही हैं।
14: हा अतिशय गंभीर आहे। माननीय गडकरी साहेबांच्या कारवर मी स्रोत टाकलेला आहे। त्यांनी सांगितलं की जर कडक ऍक्शन आपण त्या ठिकाणी घेऊ पण मोठी दुर्घटना टळली असे म्हणायला हरकत नाही। अन्यथा या ठिकाणी वाहन चालले असताना जर असं झालं असतं तर मला वाटतं मोठी दुर्घटना त्या ठिकाणी झाली असती। पण या संदर्भामध्ये तर आम्ही सर्वजण म्हणजे मी बाहेरगावी होतो, रात्री नाशिकहून आलो, गुलाब भोपण या ठिकाणी बाहेर आम्ही आज ठिकाणी निघालो, राजू मामा इथले आमदार आहेत, आम्ही या ठिकाणी आलेलो आहोत। पण कडक कारवाई करण्याच्या संदर्भामध्ये ठेकेदारावर मग त्याला ब्लॅकलिस्ट करा, त्याच्यावर कारवाई करा।
12: महाराष्ट्र के नांदेड़ के सहस्रकुंड झरने का नजारा अद्भुत है, लेकिन 100 फीट की ऊंचाई से गिरते पानी में चेतावनी भी छिपी है। यही बारिश कहीं सैलानियों को आकर्षित कर रही है तो कहीं लोगों की जिंदगी को बेबस बना रही है। ये मंजर गुजरात के वलसाड़ जिले के वापी का है, जहां सड़कें नदी बन गई और हजारों कारें पानी में डूबकर कबाड़ में बदल गई। बाढ़ का पानी उतर जाएगा, लेकिन करोड़ों के नुकसान और हजारों इंश्योरेंस क्लेम की लड़ाई अभी बाकी है।
15: 150 से 200 सर्वेयरों की टीम इस डिजास्टर में काम कर रही है, सब कंपनियों की मिलके, और पूरे गुजरात से, पूरे महाराष्ट्र मुंबई से इन लोगों ने अपने अपने सर्वेयर बुलवा लिए हैं। तो काम तो बहुत स्पीड में हो रहा है, काम को दिक्कत नहीं है।
16: मुझे आशा है कि क्लेम्स हमारे बहुत स्मूथली प्रोसेस हो जाएंगे, और गाड़ियों का जो नुकसान हुआ है वो तो अब हम रोक नहीं सकते, जो कुदरती आफत है, बट उसके बाद जो हमारे हाथ में है इंश्योरेंस क्लेम्स और ये सब, और लोगों की पॉजिटिविटी देख के, लोगों का जज्बा देख के, ये लग रहा है कि हमारे क्लेम्स इजीली प्रोसेस हो जाएंगे।
12: अब देखिए खेड़ा जिले के महमदाबाद के रिंछोल गाँव की तस्वीरें। बाढ़ का पानी अपने साथ मगरमच्छों को इंसानी बस्तियों तक ले आया है। घर के भीतर 7 फीट लंबा मगरमच्छ, बाहर सहमे हुए लोग, और बीच में जान जोखिम में डालकर चलता रेस्क्यू ऑपरेशन। कुदरत के अलग अलग रंग, कहीं जानलेवा तो कहीं खुशनुमा। जब बारिश रिकॉर्ड तोड़ती है तो सिर्फ नदियां नहीं उफनती हैं, सिस्टम की तैयारी भी बेनकाब हो जाती है। बारिश अभी जारी है, इसलिए खतरा भी टला नहीं है। आज तक ब्यूरो।
6: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: पार्टी अध्यक्ष की सीट पर पिट गई पार्टी। बांकीपुर से शानदार जीत के बाद प्रशांत किशोर बोले, 30 दिन में ढा दिया 30 साल पुराना किला। सीएम सम्राट पर किया बड़ा हमला, आरजेडी की जमानत जब्त। कांग्रेस के हाथ लगा मध्य प्रदेश का दतिया, यहां भी 6,000 से ज्यादा वोटों से हार गई बीजेपी। गुजरात के मांजलपुर ने बचाई बीजेपी की इज्जत, 30,000 से ज्यादा वोटों से जीते सत्येंद्र भाई पटेल। प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो हटाने पर मेटा ने मानी गलती, संसदीय समिति की बैठक में माफी मांगी, तकनीकी गड़बड़ी का हवाला दिया, समिति ने जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग। यूपी विधानसभा में मानसून सत्र के पहले दिन चढ़ावा, चोरी पर घमासान, विपक्ष की तरफ से जोरदार प्रदर्शन। योगी बोले, जनता को गुमराह न करें, दम है तो विकास पर बात करें। और झारखंड का रांची बना नया जंतर मंतर, जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी, 10 दिन से भूख हड़ताल पर देवेंद्र नाथ महतो, सीबीआई जांच की मांग। बिहार के विधायक पद से सीधे बीजेपी के अध्यक्ष पद तक पहुंचे नितिन नवीन की खाली हुई सीट पर उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने 19,000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल कर ली है। बीजेपी के सामने अब तक जहां मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी रही, वहां बांकीपुर में तेजस्वी यादव की पार्टी की जमानत तक जब्त हो गई।
1: बिहार की एक खासियत है, जब जब आपको लगता है कि आप बिहार को समझ गए, बिहार आपको झटका देता है।
2: सच है कि बिहार ने चौंकाया है। लड्डू तो बीजेपी वाले बताते हैं कि 200 किलो बनवाया,
3: 200 किलो लड्डू बनाया जा रहा
2: है। लेकिन कहावत है, कहा जाता है हाथ खुआया मुंह ना लगा। यही तो साल की शुरुआत में सबको चौंका कर बीजेपी अध्यक्ष बनकर लड्डू चखने वाले नितिन नवीन के राज्यसभा में जाने के बाद खाली हुई विधानसभा सीट बांकीपुर पर हुआ, जहां मुख्यमंत्री के साथ रोड शो करते बीजेपी अध्यक्ष दावा करते रहे, जनता की लहर साथ है।
4: मुझे पूरा विश्वास है कि जो समर्थन जनता का दिख रहा है वो निश्चित रूप से 3 अगस्त को फिर से एनडीए का कमल, भाजपा का कमल बांकीपुर की जनता खिलाएगी।
2: लेकिन जब नतीजे बांकीपुर उपचुनाव के आए, पता चला जनता तो अध्यक्ष जी की ही पारंपरिक सीट पर पीके के साथ चली गई।

0: बीजेपी अपने ही अध्यक्ष की सीट पर उपचुनाव नहीं जीत पाई। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद पहली बार हुए उपचुनाव में बीजेपी हार गई। बिहार में बीजेपी के पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद हुए उपचुनाव में बीजेपी जीत नहीं पाई। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री रहते पहला ही उपचुनाव बीजेपी हार जाती है। 3 दशक से जीती जा रही सीट पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ता है। हिंदू बाहुल्य और बीजेपी के कोर समर्थक वोटर वाली सीट पर बीजेपी को हार मिलती है, वो भी उन प्रशांत किशोर से जिन्हें 9 महीने पहले बिहार के विधानसभा चुनाव में चूका हुआ मान लिया गया था। प्रशांत किशोर की जीत बड़ी या बीजेपी अध्यक्ष की छोड़ी हुई सीट पर बीजेपी की हार बड़ी, इन दो सवालों के कुछ जवाब हैं जो कहते हैं कि बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत सवर्ण वोटर छिटक गया है। सवर्ण वोटर विकल्प बेहतर मिले तो साथ बीजेपी का छोड़ सकता है और सेफ सीट का मतलब अब कुछ नहीं, क्योंकि 1995 से जहां बीजेपी लगातार जिस इलाके में जीतती आई वहां भगवा रंग की जगह पीके का पीला रंग चढ़ जाना कोई छोटी सियासी खबर नहीं। पटना के जिस बांकीपुर में बीजेपी को कभी भी कुल वोटों का 59% से कम वोट नहीं मिला, जिस बांकीपुर में 9 महीने पहले विधानसभा चुनाव में नितिन नवीन की उम्मीदवारी पर बीजेपी को 63% वोट मिलता है, वहाँ अब की बार बीजेपी प्रत्याशी केवल 34.50% वोट पाते हैं। आरजेडी प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाती है और प्रशांत किशोर 49.19% वोट लेकर जीतते हैं। जिस बांकीपुर में 9 महीने पहले बीजेपी ने 51,936 वोट के अंतर से जीत हासिल की, वहां अब की बार बीजेपी के प्रत्याशी नीरज कुमार को 44,827 वोट ही मिले। बीजेपी को प्रशांत किशोर ने अपने पहले ही चुनाव में 64,151 वोट हासिल करके 19,000 से ज्यादा वोट के अंतर से हराया है। जीत मिलते ही प्रशांत किशोर ने भले एक सीट जीती हो, भले वो अपनी पार्टी के इकलौते विजयी उम्मीदवार विधानसभा में बने, लेकिन एक उपचुनाव की चाल से वो सीधे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को शह और मात दे देना चाहते हैं।
1: रेफरेंडम है ये सम्राट चौधरी पे?
2: बिल्कुल, वो तो है।
1: आप बार बार कह रहे थे जनमत संग्रह है ये।
2: बिल्कुल, सम्राट चौधरी के नेतृत्व को बिहार की जनता स्वीकार नहीं करती है, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है।
1: और नितिन नवीन के सीट पे इतनी बड़ी जीत, किला ध्वस्त किया है बीजेपी का आपने?
2: किला किसी का नहीं होता है।
1: रुक जाइए,
3: आराम से चलिए।
2: 30 साल का किला 30 दिन भी नहीं लगा, और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि भाजपा ने चुनाव जीतने के बाद यहाँ पर एक अपराधी प्रवृत्ति के आदमी को, एक गलत चाल चरित्र के चेहरा वाले व्यक्ति को बिहार का नेतृत्व दिया है, जो बिहार के लोगों को स्वीकार्य नहीं है।
0: 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने के बाद 111 दिन के भीतर पहली चुनावी परीक्षा में वो पास नहीं हो पाए, जहां प्रशांत किशोर लगातार सीधे एक वोट एक सीट से सम्राट चौधरी पर निशाना प्रचार के दौरान साधते रहे।
4: आपका एक वोट विधायक नहीं चुनेगा, बिहार में मुख्यमंत्री बदल देगा। अगर आप सम्राट चौधरी को हटाना चाहते हैं तो अभी आपके पास रास्ता है। एक बार संकल्प लीजिए, भाजपा को बांकीपुर में हराइए, लिख के ले लीजिए, सम्राट चौधरी का कुर्सी हिलने लगेगा, सम्राट चौधरी को हटाने का रास्ता खुल जाएगा।
0: इसके बाद जैसे ही बांकीपुर में जीत का डंका प्रशांत किशोर बजाते, वो इस बात को दोहराते कि बांकीपुर में बीजेपी की हार का मतलब मुख्यमंत्री की हार है।
2: पहला काम बस यही है कि बांकीपुर की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, अपनी ओर से जो हो सकेगा बांकीपुर में सुधार का प्रयास करेंगे। अगले 2-3 महीने में आपको वो चीज दिखेंगी भी। मैं कोई बहुत बड़ी बड़ी बात बोलना नहीं चाहता हूँ। विधायक, मेरे विधायक बनने से बांकीपुर बंगलोर नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ सुधार होता अगले 2-3 महीने में दिखेगा। बड़ी बात यह है कि ये चुनाव बांकीपुर के नाली गली पर नहीं लड़ा गया है, ये चुनाव लड़ा गया है कि बिहार का नेतृत्व किसके हाथ में होना चाहिए। और बांकीपुर की जनता ने ये संदेश दिया है भाजपा के नेतृत्व को कि भाई आप अच्छे आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए, सम्राट चौधरी की जगह किसी कुशवाहा को बनाना है बनाइए।

0: सोशल मीडिया पर लिखा है। लोकतंत्र के महापर्व में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनता ने जन सुराज को चुना है। मैं जनता के इस निर्णय का सम्मान करते हुए प्रशांत किशोर को उनकी जीत पर हार्दिक बधाई देता हूँ।
1: लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जो चुनाव परिणाम के रुझान आ रहे हैं उसको हम सिर झुकाकर स्वीकार करते हैं और हम पूरी समीक्षा करेंगे। बांकीपुर के लोग हमारे हैं, हमसे अलग क्यों हुए इसकी भी हम समीक्षा करेंगे।
2: ये लोकतंत्र की भूमि है और जनता के जनादेश को भारतीय जनता पार्टी हमेशा शिरोधार्य की है। हम कभी भी ठीकरा चुनाव आयोग या ईवीएम पर नहीं फोड़ते हैं, ये विपक्ष के लोगों के तरह।
3: हम लोग की लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, बहुमत भाजपा का है, एनडीए का है, मुख्यमंत्री तो उन्हीं का बनेगा। हम लोग बस इतना ही आग्रह कर रहे हैं, बिहार की जनता इतना ही आग्रह कर रही है, बांकीपुर की जनता इतना ही मोदी जी से आग्रह कर रही है कि किसी अच्छे चरित्रवान काबिल आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए, ताकि बिहार के लोग भी इस बात का गौरव, बिहारी होने का गौरव कर सकें, ताकि हम लोग के बच्चों के लिए भी पढ़ाई रोजगार की व्यवस्था हो, सब कुछ सुविधा अगर गुजरात के ही लोगों को मिलेगी तो सिर्फ बिहार के लोग कहाँ जाएंगे। गुजरात के लोग 1,00,000 करोड़ के बुलेट ट्रेन पर चलेंगे वो ठीक है, लेकिन हम लोगों को कम से कम पैसेंजर भी तो मिलना चाहिए। बिहार के लोग सिर्फ मजदूरी करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं और 5 साल के लिए भाजपा को मैंडेट मिला है, उनको अच्छा आदमी देना चाहिए, अच्छे लोगों को मंत्रिमंडल में रखना चाहिए, ताकि बिहार की तरक्की हो, बिहार का विकास हो।
4: गुजरात के मांझलपुर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी ने बड़ी और निर्णायक जीत हासिल की है। बीजेपी उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस के भिखाभाई रबारी को 30,630 वोटों के बड़े अंतर से हराकर सीट बरकरार रखी। ये उपचुनाव बीजेपी के वरिष्ठ नेता और 8 बार के विधायक रहे योगेश पटेल के निधन के बाद हुआ था। कम मतदान के बावजूद बीजेपी ने अपने मजबूत जनाधार को कायम रखते हुए स्पष्ट संदेश दिया कि मांझलपुर में उनका संगठन और सियासी पकड़ अभी भी मजबूत है।
5: बांकीपुर ने मायूस किया, दतिया ने दर्द बढ़ा दिया, लेकिन गुजरात के मांझलपुर ने बीजेपी के चेहरे पर मुस्कान लौटा दी। मांझलपुर में बीजेपी के सत्येंद्र भाई पटेल ने कांग्रेस उम्मीदवार भीखाभाई रबारी को 30,630 वोटों से हरा दिया।
6: ये भाजपा की जीत, एक कार्यकर्ता की जीत, ये विकास की जीत, नरेंद्र भाई मोदी की जीत और हमारे सभी कार्यकर्ताओं को खूब खूब अभिनंदन।
7: खुशी का माहौल है, भारत देश के तने का बड़ा प्रधान अपने नरेंद्र भाई मोदी जी की ये सेना विकास के लिए काम करती है, तो लोग ऑब्वियसली भाजपा का ही वोट देंगे।
5: एक दिन 3 राज्य 3 नतीजे, 2 जगह झटका, 1 जगह बड़ी राहत। बिहार में सियासी किला दरका, मध्य प्रदेश में भी जीत हाथ से फिसल गई, लेकिन गुजरात के मांझलपुर ने बता दिया कि बीजेपी का गढ़ अब भी मजबूत।
8: हमारे भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं को जाता है जिन्होंने दिन रात एक करके ये चुनाव जीता है। मैं सभी नागरिक भाइयों बहनों का और कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।
9: भारतीय जनता पार्टी हमेशा संगठनात्मक काम करती है, हर एक कार्यकर्ता इसमें इन्वॉल्व होता है और काम करता है और उसका परिणाम है।
5: मांझलपुर सीट पूर्व मंत्री और 8 बार के विधायक योगेश पटेल के निधन के बाद खाली हुई थी। योगेश पटेल ने 1990 से 2007 के बीच बड़ोदरा की रावपुरा विधानसभा सीट का 5 बार प्रतिनिधित्व किया, फिर परिसीमन के बाद नई बनी मांझलपुर सीट से चुनाव लड़ा। योगेश पटेल ने 2012, 2017 और 2022 में मांझलपुर सीट से लगातार जीत दर्ज की और इस तरह 36 वर्षों के दौरान गुजरात विधानसभा चुनावों में लगातार 8वीं जीत हासिल की। बड़ोदरा के मांझलपुर विधानसभा में हुए उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार सत्येंद्र भाई पटेल की जीत ने साबित कर दिया कि बीजेपी का यहां दबदबा अब भी बरकरार है, कांग्रेस का इंतजार लंबा हो गया है। अतुल तिवारी, बड़ोदरा आज तक।
4: सिद्धिविनायक वो दरबार जहां मुख्यमंत्री, मंत्री, अभिनेता और आम भक्त सब गणपति बप्पा के चरणों में एक समान होकर मत्था टेकते हैं, लेकिन अब उसी दरबार की दान पेटी सियासत के केंद्र में आ चुकी है, क्योंकि राज ठाकरे ने आरोप लगाया है कि सिद्धिविनायक मंदिर में हर साल

करोड़ रुपए का चंदा हड़प लिया जाता है। वहीं ट्रस्ट का दावा यह है कि ट्रस्ट की वजह से ही मामला उजागर हुआ है, लेकिन जब चढ़ावे पर ग्रहण की बात सामने आती है तो राजनीति भी जवाब देने से बच नहीं सकती।

0: घंटियों की गूंज, गणपति बप्पा की आरती, श्रद्धालुओं का सैलाब, ये दृश्य मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में होता है, जहां हर दिन हजारों श्रद्धालु अपनी मन्नतें लेकर पहुंचते हैं, जहां सत्ता भी सिर झुकाती है, विपक्ष भी नमन करता है, अभिनेता से लेकर आम आदमी तक हर कोई गणपति बप्पा के चरणों में आशीर्वाद देने पहुंचते हैं। लेकिन अब इसी मंदिर का चढ़ावा राजनीति के केंद्र में है। एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने संगीन आरोप लगाया है। राज ठाकरे ने दावा किया है कि मुंबई के मशहूर सिद्धिविनायक मंदिर में हर साल 18 करोड़ रुपए का चंदा हड़प लिया जाता है।
1: महोदय, विश्वस्तांच्या सतर्कतेमुळे मंदिरातल्या दानपेटीतून पैसे चोरणारे कर्मचारी पकडले गेलेले आहेत। हे कर्मचारी पकडण्यापूर्वी दर बुधवारी मंदिरातल्या दानपेटीतील रकमेची मोजदाद ही 50 लाख रुपयाच्या आत होती। मात्र ही हे कर्मचारी पकडल्यानंतर गेले 3 आठवडे आठवड्याची दानपेटी रक्कम ही 1.5 कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचली आहे। याचाच अर्थ, यापूर्वी दर आठवड्याला दानपेटीतील जमा होणाऱ्या काही रकमेतील काही रक्कम ही लंपास होत होती। त्यामुळे दरवर्षी सुमारे 18 कोटी रुपयांचे मंदिराचे नुकसान होत होते।
0: वहीं सिद्धिविनायक ट्रस्ट के अध्यक्ष और शिवसेना नेता सदा सरवणकर कहते हैं कि ट्रस्ट की सतर्कता से ही गड़बड़ी सामने आई है। ट्रस्ट के मुताबिक 9 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया, FIR दर्ज कराई गई। ट्रस्ट के पूर्व अधिकारी राजन पेंडुलकर समेत 45 कर्मचारी सस्पेंड किए गए। गिरफ्तार आरोपियों के संबंध शिवसेना UPT की नेता विशाखा राउत और दूसरे नेताओं से है। इसके साथ ही ट्रस्ट के अध्यक्ष सदा सरवणकर इसके पक्के सबूत होने का भी दावा कर रहे हैं।
2: चोरी में जितने भी इन्वॉल्व है वो 9 जन को पकड़ा है। उसके बाद लूपहोल्स जो थे, आज दादर स्टेशन में अगर आप एक टैक्सी में बैठेंगे तो वो टैक्सी में भक्तगण अगर यहाँ आते तो उनसे 5,000 लिया जाता था, दर्शन वगैरह सब लेके। वो पहला बंद किया, उसके बाद ये सब आजू बाजू में दलाल लोग घूमते थे, दर्शन के लिए 2,000 3,000 लेते थे, वो सारा बंद हो गया। ये हमारे जो यहाँ की सिक्योरिटी है, यहाँ के कर्मचारी है, उनको गूगल पे करके ये दर्शन दिया जाता था। हमने जितने भी कर्मचारी है सबका फोन बंद कर दिया। अभी किसी कर्मचारी के हाथ में फोन नहीं आपको मिलेगा। जितना भी हमको डाउट आएगा वो हर चीज के ऊपर हमने कुछ न कुछ एक्शन लिया होगा।
0: इसलिए भगवान के नाम पर चढ़े हर रुपए का हिसाब भी न्याय की कसौटी पर ही तय होना चाहिए।
3: मुंबई के प्रसिद्ध सिद्धिविनायक मंदिर में चढ़ावे को लेकर अब महाराष्ट्र में नया सियासी तूफान खड़ा हो गया है, क्योंकि MNS प्रमुख राज ठाकरे ने एक चिट्ठी का हवाला देते हुए ये आरोप किया है कि इस चढ़ावे में बड़ी तादाद में घोटाला हो रहा है। छोटा मोटा नहीं बल्कि सालाना करीबन 18 करोड़ रुपए का घोटाला जो है इस चढ़ावे के पैसों में किया जा रहा है। ऐसी एक चिट्ठी इस ट्रस्ट के ही कुछ ट्रस्टियों ने मिलकर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को लिखी थी। 21 अप्रैल 2026 को ये पत्र लिखा गया था, जिस पर ये आरोप किए गए हैं कि यहाँ से पैसों की अफरा तफरी हो रही है, दान पत्र से पैसे चुराए जा रहे हैं।
0: मामला 18 करोड़ का हो या फिर 18 रुपए का, बप्पा के नाम पर चढ़ाया गया एक एक रुपया पवित्र है। सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष सदा सरवणकर ने बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि मंदिर में हर साल करीब 18 करोड़ रुपए के दान का हेर फेर होता था, जिसे मौजूदा ट्रस्ट ने रोककर चढ़ावे की कमाई में भारी बढ़ोतरी की है। मंदिर की आय 2 साल में 114 करोड़ से बढ़कर 182 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। वहीं फडणवीस सरकार में मंत्री छगन भुजबल कहते हैं कि अगर किसी के पास ठोस जानकारी है तो सरकार को जानकारी मुहैया करा।
4: मार्च महीने में हमने जो बजट रखा वो 182 करोड़, ये जो उत्पन्न नहीं बोलेंगे चढ़ावा है, ये देनगी दी है मंदिर को। और इसी माध्यम से हमने यही बता रहे कि हमारे मन में अगर पाप रहता, ये ट्रस्टी बोर्ड है, मैं अभी खुले मन से बताता हूँ, हमारे मन में अगर पाप रहता तो हम इतने चोर पकड़ते नहीं, हमारे मन में अगर पाप रहता तो 46 कर्मचारी निलंबित होते नहीं, हमारे मन में पाप रहता तो 9 जन पुलिस कस्टडी और MCR कस्टडी में जाते नहीं, हमारे मन में पाप होता तो हम सरकार को विधि न्याय विभाग को एक पत्र भी लिखते नहीं। हमने यही कहा है कि ये जो तफावत 2 साल और अभी में है तो उसका ऑडिट होना चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए।
0: गणपति बप्पा न्याय के देवता हैं, लिहाजा जांच सिर्फ पैसों की नहीं होनी चाहिए, जांच उस व्यवस्था की भी होनी चाहिए जिसे सिद्ध विनायक के घर की रखवाली सौंपी गई। मंदिर राजनीति का मंच नहीं, आस्था का केंद्र है, इसलिए आरोप भी तथ्यों के साथ होने चाहिए और जांच भी बिना किसी दबाव के।
3: सालाना 18 करोड़ तक का घोटाला जो है यहाँ मंदिर में हुआ है ऐसा दावा किया जा रहा है। अब विपक्ष से लेकर राज ठाकरे सभी मांग कर रहे हैं कि इस चोरी की जो है वो जांच की जाए, तफ्तीश की जाए, और किसके कार्यकाल में, यानी उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे तब उनके कार्यकाल में ये चोरी हुई थी, या फिर अब महायुति सरकार के कार्यकाल में इस तरह की चोरी सामने आई है, ये सामने आना बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैमरा पर्सन सचिन सावंत के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक।
5: महिला पहलवानों के यौन शोषण के मामले में बीजेपी नेता और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत मिल गई है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने ब्रिजभूषण शरण सिंह और भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व सचिव विनोद तोमर को बाइज्जत बरी कर दिया है।
6: महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण के मामले में 1133 दिनों तक वकीलों ने दलीलें दी, सुनवाई हुई, तथ्य परखे गए और फिर दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि ब्रजभूषण और उनके सह आरोपी विनोद तोमर को बाइज्जत बरी किया जाता है।
7: बरी शब्द का इस्तेमाल के जगह पर कोर्ट ने बाइज्जत बरी शब्द का इस्तेमाल किया है। बरी और बाइज्जत बरी में फर्क होता है। एक बरी होता है कि सबूतों के अभाव में आपको छोड़ा जा रहा है, यहाँ सीधे सीधे कहा गया कि आपको नाम लेकर के कि आपको बाइज्जत बरी किया जा रहा है।
6: दरअसल 3 साल पुराना इस मामले की बंद कमरे में हुई सुनवाई और तमाम गवाहों सबूतों की पड़ताल के बाद अदालत के फैसले में जो बड़ी बातें सामने आई हैं, उनमें से एक तो ये है कि शिकायतकर्ता और पुलिस ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ लगाए गए यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ के आरोपों को संदेह से परे साबित नहीं कर पाए। दूसरा ये कि शिकायतकर्ताओं के बयानों में तारीख, समय और घटना स्थल को लेकर बड़े विरोधाभास दर्ज किए गए थे। महिला पहलवानों ने खेल मंत्रालय की ओवरसाइट कमेटी में दिए हलफनामे और अदालत में दिए बयानों में फर्क था। कुछ घटनाओं में ब्रजभूषण शरण सिंह कथित घटनाओं के समय दूसरी जगह मौजूद रहने के प्रमाण मौजूद थे, और बरी होने की बड़ी वजह ये भी थी कि कथित घटनाएं 2016 से 2019 के बीच की थी, जिनका आरोप 2023 में लगाया गया था।
7: तब मैंने एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि ये सब झूठ है, और अगर इसमें एक भी आरोप साबित होगा तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा।
6: अब महिला पहलवानों के मामले में बजरंग पुनिया ने लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील करने की बात कही है, लेकिन इस मामले में जबरदस्त सियासत हो रही है।
8: क्यों नहीं, सबको करेंगे, सब चोर, जितने लोग पार्टी में दाखिल हुए दूसरे पार्टीज में, अरे यही तो प्रधानमंत्री थे, तो बंगाल के मुख्यमंत्री के बारे में क्या क्या बोले थे,
9: आरोप लगे थे, जांच होनी चाहिए थी, जांच होकर न्यायपालिका में गया, अब न्यायपालिका ने जो फैसला दे दिया उसका सम्मान करे, या तो सरकार को अगर लगता है कि सही नहीं है तो सरकार ऊपरी कोर्ट में जाए।
6: देखना यह है कि आरोप लगाने वाली महिला पहलवानों का रुख अब क्या होता है। मौसमी सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।
5: रांची में 14वीं जेपीएससी परीक्षा में कथित गड़बड़ी को लेकर छात्रों का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। छात्र रांची के जयपाल सिंह स्टेडियम में 10 दिन से धरना दे रहे हैं। कल शाम बड़ी संख्या में छात्रों ने मशाल जुलूस निकाला था। उन्होंने हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की थी। उधर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रमुख अभिजीत दिपके ने रांची में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से बात की है और उन्हें अपना समर्थन देने का ऐलान किया है।
10: सामाजिक कार्यकर्ता जो भेज देते हैं वही हम लोग खाके और दिन रात भर यही देखिए यही टेंट में आप तो देख रहे हैं पानी हो यही बहुत याद क्या करे सर हम लोग मरता क्या नहीं करता वाला स्थिति है सर।
11: मदद की थाली हाथ में पकड़े इस युवा को देखने के बाद सवाल उठता है कि आखिर नीति नियंताओं के हलक के नीचे खाना उतरता कैसे।
10: ऐसे गाँव से आते हैं सर, वहाँ आज भी हम घर का पहला आदमी है, पूरे खानदान का, पूरे गाँव एक टोला मतलब खानदान का पहला आदमी है ना कि हम लोग बाहर निकले हैं पढ़ने। अभी तक हम लोग शिक्षा से इतना दूर है हमारा समाज, अगर हम यहाँ पढ़े आए हैं सर, अगर हम पढ़ के कुछ नहीं करेंगे तो हमारे आने वाला जो पीढ़ी है वो देखेगा तो कहेगा कि भैया या चाचा पढ़ लेते तो क्या कर लेते।
11: तो जीएम डीएम सीएम पीएम सब सुनिए, सुनिए इस छात्र की पुकार। अशिक्षा के अंधकार से निकल कर आया ये लड़का सवाल कर रहा है किसी में इतना ताप कि जवाब दे सके।
10: क्योंकि हम लोग तो गरीब आदमी हैं सर, और गरीब आदमी हैं, अगर हम लोग कोई भी आदमी पढ़ के नौकरी का मतलब मांगता है ताकि हम लोग के आर्थिक समाज अति शैक्षणिक थोड़ा मजबूत हो, इसीलिए तो हम लोग पढ़ रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं। एक रूम में हम लोग कितना दिन से, या हम लोग कुछ भी मिल रहा है सर, कैसे कैसे खाते आप तो जानते हैं।
11: रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बेरोजगारी से त्रस्त युवा जो बात कहते हैं वो सत्ता के सीने में शून सी चुभनी चाहिए, क्योंकि ये युवा झारखंड में भर्ती आयोगों की धांधली से त्रस्त आ चुके हैं। प्रदर्शन करते ये नौजवान झारखंड में लगातार धरना देते हुए केवल झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और JSSC के तहत होने वाली भर्तियों में होते भ्रष्टाचार से त्रस्त होकर एक हफ्ते से आंदोलन कर रहे हैं।
12: नारेबाजी चल रही है और अब इस आंदोलन को अलग अलग जगह से समर्थन भी मिलने लगा है। बीजेपी ने इस प्रोटेस्ट का खुलकर समर्थन किया है। एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया है। साथ ही साथ कॉकरोच जनता पार्टी ने भी बात की है, उसके संस्थापक अभिजीत दीपके ने भी बात की है यहाँ पे, और कहा है कि जिस सपोर्ट की जरूरत है वो सपोर्ट देने को तैयार है ताकि जो आंदोलन अपने अंजाम तक पहुँच सके।
11: अब सवाल यह है कि छात्रों की पुकार क्यों नहीं सुन रही है हेमंत सरकार। सत्यजीत कुमार, रांची आज तक।
5: बारिश कभी राहत बनकर आती है तो कभी आफत बनकर सब कुछ बहा ले जाती है। पश्चिम भारत इस वक्त पानी के ऐसे ही प्रहार से जूझ रहा है। महाराष्ट्र से गुजरात तक आसमान से बरसता पानी अब जिंदगी की रफ्तार को रोक रहा है। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, कई शहरों की गलियां तालाब बन चुकी हैं, तो कई करोड़ों की गाड़ियां बाढ़ के पानी में कबाड़ में बदल चुकी हैं।
11: ये तस्वीरें महाराष्ट्र के भिवंडी की हैं। कामवारी नदी अब सिर्फ बह नहीं रही बल्कि खतरे का इशारा दे रही है। पानी इतना बढ़ चुका है कि नदी किनारे खड़ी गाड़ियां एक एक कर डूबने लगी हैं। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की हर नजर नदी के बढ़ते जलस्तर पर टिकी है। अब जरा रुक कीजिए जलगांव का। यहाँ पहले ही तेज बारिश ने मुंबई नागपुर नेशनल हाईवे के फ्लाईओवर के नीचे की जमीन बहा दी। जिस सड़क पर रफ्तार दौड़ती थी वहाँ अब सवाल खड़े हैं। मंत्री मौके पर हैं, जांच के आदेश हैं, लेकिन तस्वीरें विकास की गुणवत्ता पर बड़ा सवाल छोड़ रही हैं।
13: हा अतिशय गंभीर आहे। म्हणजे गडकरी साहेबांच्या कारवर मी स्रोत टाकलेला आहे। त्यांनी सांगितलं की जर कडक ॲक्शन आपण त्या ठिकाणी घेऊ, पण मोठी दुर्घटना टळली असे म्हणायला हरकत नाही। अन्यथा या ठिकाणी वाहन चालले असताना जर असं झालं असतं तर मला वाटतं मोठी दुर्घटना त्या ठिकाणी झाली असती। पण या संदर्भामध्ये तर आम्ही सर्वजण, म्हणजे मी बाहेरगावी होतो, रात्री नाशिकहून आलो, गुलाब भाऊ पण या ठिकाणी बाहेर, आम्ही आज ठिकाणी काढलो, राजू मामा इथले आमदार आहेत, आम्ही या ठिकाणी आलेलो आहोत। पण कडक कारवाई करण्याच्या संदर्भामध्ये ठेकेदारावर मग त्याला ब्लॅकलिस्ट करा, त्याच्यावर कारवाई करा।
11: महाराष्ट्र के नांदेड़ के सहस्रकुंड झरने का नजारा अद्भुत है, लेकिन 100 फीट की ऊंचाई से गिरते पानी में चेतावनी भी छिपी है। यही बारिश कहीं सैलानियों को आकर्षित कर रही है तो कहीं लोगों की जिंदगी को बेबस बना रही है। ये मंजर गुजरात के वलसाड़ जिले के वापी का है, जहां सड़कें नदी बन गई और हजारों कारें पानी में डूबकर कबाड़ में बदल गई। बाढ़ का पानी उतर जाएगा, लेकिन करोड़ों के नुकसान और हजारों इंश्योरेंस क्लेम की लड़ाई अभी बाकी है।
14: 150 से 200 सर्वेयरों की टीम इस डिजास्टर में काम कर रही है, सब कंपनियों की मिलके, और पूरे गुजरात से, पूरे महाराष्ट्र मुंबई से इन लोगों ने अपने अपने सर्वेयर बुलवा लिए हैं। तो काम तो बहुत स्पीड में हो रहा है, काम को दिक्कत नहीं है।
15: मुझे आशा है कि क्लेम्स हमारे बहुत स्मूथली प्रोसेस हो जाएंगे, और गाड़ियों का जो नुकसान हुआ है वो तो अब हम रोक नहीं सकते, जो कुदरती आफत है, बट उसके बाद जो हमारे हाथ में है इंश्योरेंस क्लेम्स और ये सब, और लोगों की पॉजिटिविटी देख के, लोगों का जज्बा देख के ये लग रहा है कि हमारे क्लेम्स इजीली प्रोसेस हो जाएंगे।
11: अब देखिए खेड़ा जिले के महमदाबाद के रिंचोल गाँव की तस्वीरें। बाढ़ का पानी अपने साथ मगरमच्छों को इंसानी बस्तियों तक ले आया है। घर के भीतर 7 फीट लंबा मगरमच्छ, बाहर सहमे हुए लोग, और बीच में जान जोखिम में डालकर चलता रेस्क्यू ऑपरेशन। कुदरत के अलग अलग रंग, कहीं जानलेवा तो कहीं खुशनुमा। जब बारिश रिकॉर्ड तोड़ती है तो सिर्फ नदियां नहीं उफनती हैं, सिस्टम की तैयारी भी बेनकाब हो जाती है। बारिश अभी जारी है इसलिए खतरा भी टला नहीं है। आज तक ब्यूरो।
5: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: बांकीपुर से शानदार जीत के बाद प्रशांत किशोर बोले 30 दिन में ढा दिया 30 साल पुराना किला। सीएम सम्राट पर किया बड़ा हमला, आरजेडी की जमानत जब्त। कांग्रेस के हाथ लगा मध्य प्रदेश का दतिया, यहां भी 6000 से ज्यादा वोटों से हार गई बीजेपी। गुजरात के मांजलपुर ने बचाई बीजेपी की इज्जत, 30000 से ज्यादा वोटों से जीते सत्येंद्र भाई पटेल। प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो हटाने पर मेटा ने मानी है गलती, संसदीय समिति की बैठक में माफी मांगी, तकनीकी गड़बड़ी का हवाला दिया, समिति ने जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग। यूपी विधानसभा में मानसून सत्र के पहले दिन चढ़ावा, चोरी पर घमासान, विपक्ष की तरफ से जोरदार प्रदर्शन, योगी बोले जनता को गुमराह न करें, दम है तो विकास पर बात करें। और झारखंड का रांची बना नया जंतर मंतर, जेपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी, 10 दिन से भूख हड़ताल पर देवेंद्र नाथ महतो, सीबीआई जांच की मांग। बिहार के विधायक पद से सीधे बीजेपी के अध्यक्ष पद तक पहुंचे नितिन नवीन की खाली हुई सीट पर उपचुनाव में प्रशांत किशोर ने 19000 से ज्यादा वोटों से जीत हासिल कर ली है। बीजेपी के सामने अब तक जहां मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी रही, वहां बांकीपुर में तेजस्वी यादव की पार्टी की जमानत तक जब्त हो गई।
1: बिहार की एक खासियत है, जब जब आपको लगता है कि आप बिहार को समझ गए हैं, बिहार आपको झटका देता है।
2: सच है कि बिहार ने चौंकाया है। लड्डू तो बीजेपी वाले बताते हैं कि 200 किलो बनवाया,
3: 200 किलो लड्डू बनाया जा रहा
2: है। लेकिन कहावत है, कहा जाता है हाथ खुआया मुंह ना लगा। यही तो साल की शुरुआत में सबको चौंकाकर बीजेपी अध्यक्ष बनकर लड्डू चखने वाले नितिन नवीन के राज्यसभा में जाने के बाद खाली हुई विधानसभा सीट बांकीपुर पर हुआ, जहां मुख्यमंत्री के साथ रोड शो करते बीजेपी अध्यक्ष दावा करते रहे जनता की लहर साथ है।
4: मुझे पूरा विश्वास है कि जो समर्थन जनता का दिख रहा है वो निश्चित रूप से 3 अगस्त को फिर से एनडीए का कमल, भाजपा का कमल बांकीपुर की जनता खिलाएगी।
2: लेकिन जब नतीजे बांकीपुर उपचुनाव के आए, पता चला जनता तो अध्यक्ष जी की ही पारंपरिक सीट पर पीके के साथ चली गई।

बीजेपी अपने ही अध्यक्ष की सीट पर उपचुनाव नहीं जीत पाई। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद पहली बार हुए उपचुनाव में बीजेपी हार गई। बिहार में बीजेपी के पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद हुए उपचुनाव में बीजेपी जीत नहीं पाई। सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री रहते पहला ही उपचुनाव बीजेपी हार जाती है। 3 दशक से जीती जा रही सीट पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ता है। हिंदू बाहुल्य और बीजेपी के कोर समर्थक वोटर वाली सीट पर बीजेपी को हार मिलती है, वो भी उन प्रशांत किशोर से जिन्हें 9 महीने पहले बिहार के विधानसभा चुनाव में चूका हुआ मान लिया गया था।